0: तरीके से समाज की शक्ति को राष्ट्र की शक्ति में बदलते हैं। दूसरी प्रजाति उन लोगों की है जो कोई भी काम शुरू होने पर नाराज फूफा बन जाते हैं। उनका फेवरेट काम होता है हर काम का विरोध करना। इनका एक ही डायलॉग होता है, इसकी क्या जरूरत है। इसकी क्या जरूरत है, ये हर फूफा का परमानेंट डायलॉग होता है। जब हम दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू बना रहे थे तो फूफा जी ने कमर कस ली, कहा इसकी जरूरत ही क्या है। हमने हाई स्पीड ट्रेन पर काम शुरू किया तो फूफा जी फिर बोले इसकी जरूरत ही क्या है। हम यूपीआई लेकर आए तो यही फूफा लोगों को कहते थे वाह यूपीआई, यूपीआई की जरूरत ही क्या है। हमने चिप बनाने की बात की तो फिर कहा गया कि जरूरत ही क्या है। हमने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई तो ये फिर बोले इसकी जरूरत ही क्या है। हमने देश के लिए मरने मिटने वाले सर्वश्रेष्ठ बलिदान देने वाले हमारे वीर सेना नायकों का मेमोरियल बनाया, फूफा फिर मैदान में आ गए इसकी क्या जरूरत थी। लेकिन भारत ने ऐसे सारे फूफाओं को जवाब दिया। जो देश के लिए जरूरी है वो भारत को करने से कोई रोक नहीं सकता। साथियों, आज 2013 के मुकाबले देश आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कहीं अधिक सुरक्षित है। लेकिन ये देखकर कुछ लोगों की छटपटाहट बढ़ रही है, बौखलाहट बढ़ रही है। अभी 15 अगस्त का मेरा भाषण आपने सुना होगा। ऐसे लोगों के लिए मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी का डोज दिया था, होम्योपैथी की गोली, छोटी सी गोली दी थी लाल किले से। और आप जानते हैं होम्योपैथी के कहते हैं कि स्वभाव ऐसा है कि होम्योपैथी की दवाई जब शुरू करते हैं तो शुरू के दौर में बीमारी एकदम से ज्यादा बढ़ जाती है, ये होम्योपैथी का स्वभाव है। तो मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी की गोली दी थी दिमागी नक्सल। ये दिमागी नक्सल होम्योपैथी का इलाज, जैसा मैंने कहा, बीमारी को कुछ समय के लिए और उभार देता है और उसके बाद उसका इलाज शुरू करता है। इसी तरह जैसे ही मैंने दिमागी नक्सल वाली होम्योपैथी की गोली दी, सारे दिमागी नक्सल निकल निकल के बाहर आने लगे। और जो इस बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं, अब जनता उनका भी असली रंग देख रही है।
1: अब आती यूपी के सहारनपुर में मचे घमासान की, जहां कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने एक मस्जिद को गिरा दिया, जिसके बाद से अब पूरे यूपी में सियासत तेज है।

0: सहारनपुर का जिला कलेक्टर ऑफिस है, जहां आज भारी सुरक्षा बल के बीच परिसर में बनी एक मस्जिद को ढा दिया गया। ये वही मस्जिद है जिसे सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने अवैध घोषित किया था।
1: सहारनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद को गिरा दिया गया है। इस वक्त हम लोग कलेक्ट्रेट परिसर में ही मौजूद है, जहां पर आप देखिए आपको बुलडोजर इस मस्जिद के ऊपर, जो पूरा ये मस्जिद था इसे ढाया गया। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन थी, सिटी मजिस्ट्रेट ने सबसे पहले आदेश जारी किया था इसे हटाने के लिए यहां से। उसके बाद जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो कोर्ट गए, और जब जिला जज का आदेश आया और साथ साथ आदेश आया 6,41,00,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया। इस मस्जिद में कुछ लोग किराए पर भी रहते थे, एक डाकखाना भी चलता था। उसके बाद उन लोगों से कहा गया कि आप लोग ये पूरा परिसर खाली कर दीजिए, और शुक्रवार को इस परिसर को खाली कराया गया। और उसके बाद देर रात यहाँ पर आप देखिए जो तमाम अब आप देख रहे हैं बुलडोजर डंफर, वो यहाँ पे आने शुरू हुए, और सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास से इसे यहाँ पर गिराने का काम शुरू कर दिया गया।
0: सहारनपुर कलेक्ट्रेट में 315 वर्ग मीटर जमीन पर बनी ये मस्जिद थी। शिकायत करने वालों ने दावा किया था ये मस्जिद अवैध तरीके से बनाई गई थी। कोर्ट में जब मस्जिद की फाइल खुली तो अदालत ने पाया कि खसरा संख्या 539 सरकारी अभिलेखों में कचहरी कलेक्ट्रेट के नाम दर्ज है। इसी भूमि पर 315 वर्ग मीटर हिस्से पर मस्जिद का निर्माण किया गया था, लिहाजा कोर्ट ने इसे अवैध माना और 30 दिनों के अंदर हटाने का आदेश दिया। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की, अपील खारिज हुई तो प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद करीब 70 साल पुरानी थी, लेकिन पुलिस ने उसे तोड़ दिया, जबकि पुलिस का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन हुआ है।
2: सीएम परिसर में जो मस्जिद बनी हुई थी इसको अब यहाँ पर ध्वस्तीकरण किया जा रहा है।
3: देखिए, यहाँ जनपद सहारनपुर के कलेक्ट्रेट में एक मस्जिद थी जिसको सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा अवैध पाया गया था। उस आदेश के विरुद्ध जो मस्जिद कमेटी थी वो फर्स्ट अपील में गई थी, उनकी अपील खारिज हो गई है। इसमें सिटी मजिस्ट्रेट का जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसको पुष्ट किया गया है। इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ जारी है।
0: उधर पहले मस्जिद तोड़ने की अफवाह उड़ी, तनाव और संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर था। विपक्ष के कई नेता रात को ही सोशल मीडिया लाइव पर आ गए। कार्रवाई के खिलाफ सहारनपुर आ रही कैराना सांसद इकरा हसन को पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया, जिन्हें बाद में हाउस अरेस्ट कर लिया।
4: जब सभी लोग ये चाहते थे कि हम लोग अधिकारियों से बात करें कि इसमें कुछ वक्त दिया जाए, लोग हाईकोर्ट जाना चाहते थे, वो वक्त ना देने की वजह से हम लोगों को यहाँ पर हाउस अरेस्ट किया गया। तमाम जितने भी सहारनपुर जिले के जिम्मेदार लोग हैं सभी को हाउस अरेस्ट किया गया।
0: उधर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इसे संविधान के लिए काला दिन बताया और मामले को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कही।
5: चुनाव की रणनीति से जोड़कर नहीं देखता हूं, ये हम लोगों के लिए चुनाव का विषय नहीं है, ना हम इसको पर राजनीति करना चाहते हैं। हमारी मस्जिद शहीद हुई है, हमें तकलीफ है, और हम अपने दर्द को और अपनी तकलीफ को कोर्ट के सामने बयान करेंगे।
0: सहारनपुर पुलिस ने दावा किया कि मुस्लिम पक्ष को पर्याप्त समय दिया गया था। अपील के बाद भी जब उन्हें राहत नहीं मिली तो कानून ने अपना काम किया। तनाव और सियासत को देखते हुए इलाके में भारी संख्या बल में सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। हिमांशु मिश्रा के साथ राहुल कुमार सिंह, सहारनपुर आज तक।
6: मस्जिद गिराने पर विपक्ष सरकार को टारगेट कर रहा है, और विपक्ष का सवाल है कि आखिर ऊपर की अदालतों के फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया गया? आखिर प्रशासन को मस्जिद गिराने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी?
0: सहारनपुर में जिला कलेक्टर के ऑफिस की ये तस्वीरें यूपी में सियासी जंग का नया अखाड़ा बन गई हैं। यूपी में जारी सनातन की सियासत पर अब अखिलेश यादव सवाल कर रहे हैं।
7: वो सनातनी कभी नहीं हो सकते जो दूसरे धर्म के सम्मान न करते हों। वो सनातनी कभी नहीं हो सकते जो दूसरे की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हों। वो सनातनी कभी नहीं हो सकते, और एक सच्चा हिंदू कभी दूसरे का अपमान नहीं कर सकता है। हमने तो यही सीखा है सनातन धर्म में।
0: विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आखिर
7: मस्जिद के साथ खिलवाड़ करते हो। वो सनातनी कभी नहीं हो सकते, और एक सच्चा हिंदू कभी दूसरे का अपमान नहीं कर सकता है। हमने तो यही सीखा है सनातन धर्म में।
0: विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आखिर मस्जिद को गिराने की इतनी जल्दी क्या थी? क्या ऊंची अदालत के फैसले का इंतजार प्रशासन नहीं कर सकता था? विपक्ष योगी सरकार पर जानबूझकर मस्जिदों को टारगेट करने का आरोप लगा रहा है।
7: क्यों हो रहा है ये सब? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम के धन में ये चोरी करते हुए पकड़े गए, इसलिए क्रिमिनल एंगल दे रहे हैं जानबूझकर। ये क्या हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिल सकता था? क्या सुप्रीम कोर्ट में वो नहीं जा सकते थे अपील के लिए? वो अधिकारियों ने मिलकर के सरकार के सारे पर ये काम किया कि जिससे अगले कोर्ट में उन्हें न्याय न मिल जाए।
8: बीजेपी को, देश के प्रधानमंत्री को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लफ्ज मस्जिद से नफरत है, इसीलिए मस्जिद को देखते ही इनके दिलो दिमाग में दर्द शुरू हो जाता है। अरे आपके दिलो दिमाग में दर्द शुरू होगा, हो सकता है वो आपका प्रॉब्लम है। आप मस्जिद को की तरफ देखना नहीं चाहते, उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहते, वो आपका प्रॉब्लम है। मगर आपको देखना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमको दिया गया है।
0: उधर बीजेपी का कहना है कि कोर्ट के फैसले पर एक्शन हुआ है जिसे धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए।
9: जहां तक सहारनपुर की घटना के संदर्भ में है, वो एजेंसीज और सरकार की जो भी डिपार्टमेंट है वो विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर किसी प्रकार का राजनीतिक नजरिया से देखने की जरूरत है या किसी भी बिल्डिंग को उसकी धार्मिक पहचान से देखने की जरूरत है। किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर हो उसे सिर्फ इस दृष्टि से देखना चाहिए कि वो कानूनी है अथवा गैर कानूनी है।
0: इस सियासत के बीच एक दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया था।
10: इनकी आस्था बाबर और औरंगजेब में होगी, क्या वे आपकी आस्था को सम्मान दे पाएंगे? ये बाबरी और औरंगजेब के अनुयायी जहर घोलने का काम फिर से करने जा रहे हैं।
0: यूपी में चुनाव है, ऐसे में भले ही मस्जिद सहारनपुर में टूटी लेकिन इसकी गूंज यूपी की राजनीतिक गलियारों में लंबे समय तक सुनाई देगी। हिमांशु मिश्रा के साथ राहुल कुमार सिंह, सहारनपुर आज तक।
6: यूपी में एक सियासत स्कूलों को लेकर भी जारी है, जहां समाजवादी पार्टी ने शिक्षक दिवस के बहाने बीजेपी को घेरने का प्लान तैयार किया है।
11: दो दिन पहले ही लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और सीजेपी नेता आशुतोष रांका की मुलाकात हुई। दोनों ओर से दावा हुआ कि मुलाकात में किसी सियासी एजेंडे पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन इस मुलाकात के ठीक बाद समाजवादी पार्टी ने जिस नए चुनावी एजेंडे की ओर कदम बढ़ाया वो कुछ अलग ही इशारा कर रहा है। दरअसल यूपी के चुनावी माहौल के बीच अब समाजवादी पार्टी ने शिक्षा को बड़ा मुद्दा बनाकर योगी सरकार को घेरने का प्लान तैयार किया।
7: और यहाँ जितने हमारे साथी खड़े हैं वो जानते हैं होंगे कि एक शिक्षक के साथ इस सरकार का व्यवहार क्या था। केवल एक शिक्षक के साथ नहीं, एक दुखी माँ के साथ। एक दुखी माँ अपने दुख में जब आई थी तो सोचो क्या कह रही थी सरकार कि हमें भाषण नहीं सुनना है तुम्हारा, बहुत हो चुका भाषण। इसलिए हमारा समाज और देश तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर जाए। जो कोई भी कहता विकसित भारत तब बनेगा जब ईमानदारी से शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा।
12: ने शासन की ओर से कहा कि भाई हर बच्चे को हम दो यूनिफॉर्म देंगे, बैग देंगे, बुक्स देंगे, शूज देंगे, सॉक्स देंगे और स्वेटर भी उपलब्ध करवाएंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज के दिन पे हमारी सरकार 1,60,00,000 बच्चों को सुविधा उपलब्ध करवा रही है। ड्रॉप आउट रेट जो 19-20% था, आज मुझे प्रसन्नता है कि ड्रॉप आउट रेट को हम 19-20% से घटा करके 3% से नीचे लाने में हमने सफलता प्राप्त की है।
11: जिसके तहत समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारी आज से 11 सितंबर तक प्रदेश में पाठशाला पुकारे अभियान चला रहे हैं। इस दौरान यूपी में बंद हुए प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों का सम्मान कार्यक्रम किया जा रहा है। ये कार्यक्रम बंद स्कूलों के आसपास ही आयोजित किए जा रहे हैं।
13: ये सभी वो बच्चे हैं जो कि आसपास रहते हैं गोमती नगर के एरिया में। इनका दावा है अपना कि ये चाहते हैं कि स्कूल्स खुले जिससे कि ये स्कूल जा सके। आज समाजवादी पार्टी यहाँ पर पहुंचकर इनको बुक, कॉपी, पेंसिल, बैग, पीडीए की पाठशाला चला रही है और मौके पर इन सभी बच्चों को वो हर शिक्षा का जो कागज है वो उपलब्ध करा रही है। जो दावा किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि सरकार ने उसको उपलब्ध नहीं कराया है, वह समाजवादी पार्टी उपलब्ध कराकर ये पीडीए पाठशाला 5 सितंबर से कैंपेन के तौर पर पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में चला रही है।
11: यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, कई मुद्दों पर विपक्ष और सरकार आमने सामने है। अब समाजवादी पार्टी ने शिक्षा व्यवस्था पर यूपी सरकार की घेराबंदी की तैयारी की है।
14: प्रदेश में तमाम प्राइमरी और मिडिल स्कूल बंद कर दिए गए, जिससे ग्रामीण अंचल में गरीबों के, किसानों के बच्चों के लिए पाठशालाएं थी, बंद करके इन्होंने अन्याय किया।
11: उधर इस अभियान ने सीजेपी नेताओं से अखिलेश की मुलाकात के मुद्दे को और गर्म कर दिया, बीजेपी से लेकर हमलावर हो गई।
15: अब देखिए, नेता हैं, सीजेपी वाले भी अपना नेता अग्री कर रहे हैं, मिले होंगे, मुझे उस पर कोई कमेंट नहीं करना।
11: यूपी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, कानून व्यवस्था पर पहले ही तल्खी बड़ी हुई है। अब समाजवादी पार्टी के अभियान से सूबे की सियासत में नई जंग छिड़ती दिख रही है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
6: अब बात कंगना रनौत की, जो कि अधिकारियों पर जमकर बरसी हैं। अपने लोकसभा क्षेत्र मंडी में कैसे कंगना ने अधिकारियों के क्लास लगाए, आपको दिखाते हैं।
16: मंडी में दिशा कमेटी की बैठक में सांसद कंगना रनौत पहुंची तो अधिकारियों की जमकर क्लास ली।
17: ये जो फालतू के जुमले है ना, मुझे मत देना। ये मुझे हर दिशा कमेटी में जुमले मिल रहे हैं। पिछली बार भी जब मैंने एमपी लैट के बारे में, आज दिशा कमेटीज आर सो रेगुलर, जब भी मैंने एमपी लैट के बारे में पूछा था तो मुझे कहा था कि देयर इज एब्सोल्युटली नो हिकअप और हम लोगों का जो है 90।
16: अधिकारियों के कामकाज को लेकर कंगना ने सवाल खड़े किए। सांसद ने सरकारी फंड के उपयोग पर भी नाराजगी जताई। सांसद ने चेतावनी देते हुए कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों पर पूरे देश की नजर है और विभागीय लापरवाही से गलत संदेश नहीं जाना चाहिए।
17: ये क्या है, महीना चला गया, दो महीने चले गए, छह महीने चले गए, साल चला गया, व्हाट इज दिस? जो भी हमने पिछली बार बात की है, अगर वो इंप्लीमेंट नहीं हुई है, then there will be serious implications of that. That person is going to be noted and I will send the report to center. Enough of enough. I am not going to slow down because of your speed. You will have to catch up with me.
16: कंगना का कहना है कि अधिकारी उनकी बातों को हल्के में ले रहे थे, ऐसे में उन्हें फटकार लगाना जरूरी था।
18: तो मैं कहती हूँ बाबू लोग जो हैं, उनकी जो एक जैसे बस कुर्सी पीड़ने की आदत पड़ चुकी है, उसको देखकर जो है चिंताजनक है ये चीजें, क्योंकि अब मैंने काफी काफी जो इनकी मीटिंग्स है बहुत ही हर तरीके से मैंने इनसे बात करके देखी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं मेरे जो इनसे बात करने का तरीका है उसको लेकर ये ज्यादा ही मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं।
16: कंगना ने प्रदेश सरकार को भी घेरा और अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाया।
18: देखिए, प्रदेश सरकार ने जो है इस जगह का जो है बेड़ा गर्क कर दिया है पूरी तरीके से, और आज जो है लोग बहुत शिकायतें कर रहे थे, चाहे वो पुलिस भी हो गई, अधिकारियों के साथ जो है तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, चाहे वो ड्रग्स की समस्या हो गई, चाहे ऐसी बहुत जितने भी, आज हम लोगों ने आपने देखा कहीं करीब चार पाँच घंटे से हम लोग बैठे हुए हैं, तो इसमें हमने हर तरीके की जो बात डिस्कस करी, लेकिन अधिकतर बातों में यही आ रहा था कि जो अधिकारी है जो और जो यहाँ की जो सरकार है वो पूरी तरीके से जो है फेलियर है।
16: बहरहाल कंगना अपने लोकसभा क्षेत्र मंडी में आज फुल एक्शन में नजर आई। धर्मवीर मंडी आज तक।
6: दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान हुई मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को गिरफ्तार किया है। अब इस गिरफ्तारी को लेकर सियासी घमासान तेज है।
11: दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन को लेकर ऐसी जंग छिड़ी कि आए दिन इस प्रदर्शन पर नई सियासत सुलगती है, आए दिन नए मुद्दों पर सियासी जंग छिड़ती है। अब नया विवाद है प्रदर्शन में शामिल शख्स पर हमले के केस में हिरासत में लिए गए स्वतंत्र भारद्वाज को लेकर, जिस पर एससी एसटी एक्ट में केस दर्ज होने का विरोध शुरू हो गया। हिंदूवादी संगठनों के लोग दिल्ली के जंतर मंतर थाने पहुंचे और आरोप लगाया कि स्वतंत्र भारद्वाज को गलत फंसाया गया है।
19: मेरा भाई कोई ऐसा अपराध नहीं किया कि उसको उसके ऊपर पोस्को जैसा एक्ट और एससी एसटी लगा दिया जाए। जब यही दिल्ली पुलिस, इस दिल्ली पुलिस को यहाँ दल्ला पुलिस बोला जा रहा था, जो दिल्ली पुलिस को गाली दिया जा रहा था, जब दिल्ली पुलिस को मारा जा रहा था, तो उस टाइम दिल्ली पुलिस कहाँ गई थी? उनको गिरफ्तार करने जो ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के तिरहमी का समोसा खिला रहे हैं, उनको गिरफ्तार करिए। हमेशा भगवान राम को गाली देती है, हमेशा सनातन धर्म पे गलत टिप्पणियां करती है, उस टाइम दिल्ली पुलिस कहाँ चली जाती है? स्वतंत्र भारद्वाज ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके ऊपर एस सी एस टी एक्ट लगा दिया गया है।
20: भारद्वाज पे आप एस सी एस टी पोस्ट को लगा रहे हो तो उन देश विरोधी ताकतों, जो देश विरोधी लोग थे, जो ये कह रहे थे कि देश तोड़ने की बात कर रहे थे, उन पे यूएपीए लगाइए ना। जब सौरभ दास ने खुद एक्सेप्ट किया कि जब जो प्रोटेस्टर हैं उन पर जो भी मुकदमे हुए सरकार वापस ले, नहीं तो हम मार्च करेंगे।
11: थाने पर इकट्ठा हुए हिंदूवादी संगठनों के लोग एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। दावा है कि भीड़ के दबाव में केस में नई धाराएं जोड़ी गई।
21: स्वतंत्र भारद्वाज देश का एक भटका हुआ युवा साथी है। स्वतंत्र भारद्वाज को मानसिक चिकित्सा की जरूरत है। स्वतंत्र भारद्वाज जैसे कई साथी प्रधानमंत्री मोदी की बातों पर आके गुमराह हो गए थे और ऐसे लोगों पर एक मेरे को लगता है एक साइकोलॉजिकल हेल्प की भी इनको ज़रूरत है, साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। किस तरीके से वो बयान दे रहे थे, कड़े से लोगों को मार रहे थे, उनके अंदर की नफरत को ख़त्म करना है।
22: अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी गुनाह में लिप्त होगा तो देश के संविधान के अनुसार, देश की संसद के द्वारा बनाए गए नियम और कानून के हिसाब से सरकार काम करेगी और सरकार पूरी तरह वचनबद्ध है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उसका कंप्लायंस करते हुए, जांच करते हुए, जो भी उसमें कहीं भी गुनाहगार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इसका हम स्वागत करते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति बचना नहीं चाहिए जो व्यक्ति अपने आप को संविधान से और देश से ऊपर समझता हो अपने आप।
11: उधर स्वतंत्र भारद्वाज को हिरासत में लिए जाने पर सियासत भी गरमाई हुई है। विपक्षी दलों का हमला जारी है, वहीं सत्ता में शामिल पार्टियां भी सदा हुआ बयान दे रही हैं। जंतर मंतर पर पिटाई का मामला गरमाया हुआ है, नई सियासत शुरू हो गई है और ये लड़ाई जल्द थमती नहीं दिख रही है। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ अंशुल सिंह आज तक।
6: अब बात मौसम की करते हैं, जिसने बिहार में तबाही मचा रखी है। नदियां उफान पर हैं तो कहीं बस्तियों में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। बिहार के 8 जिले इस समय बाढ़ की चपेट में हैं।
11: बिहार में गंगा, कोसी, गंडक, सोन समेत कई नदियों के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ का कहर लगातार खौफनाक होता जा रहा है। सबसे ज्यादा असर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में हालात गंभीर है। वैशाली जिले के राघोपुर दियारा के कई गांव पानी में डूब गए। मुख्य संपर्क मार्गों के ऊपर से गंगा का पानी बह रहा है और सैकड़ों लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगह जा रहे हैं।
23: बिहार में बाढ़ ने किस तरीके से हाहाकार मचाया है, इसकी तस्वीर दिखाने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं वैशाली जिले के राघोपुर में। राघोपुर तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है जहां से वो जीतते हैं और राघोपुर में आप देख सकते हैं स्थिति किस तरीके के हैं कि गंगा का पानी अब देख सकते हैं, अब ग्रामीण सड़कों पर जो है वो गुजर रहा है और आप नीचे रफ्तार आप पहले आप देख सकते हैं गंगा नदी की, आप रफ्तार देखिए किस रफ्तार के साथ नदी जो है वो इस ग्रामीण सड़क को पार करते हुए गुजर रही है। और ऊपर आप देखिए गंगा के ऊपर ये आप पुल देख सकते हैं, ये नवनिर्मित पुल है कच्ची दरगाह से बिद्दूपुर, यानी गंगा के ऊपर सरकार ने जो एक नया पुल बनाया है वो पुल है। लेकिन नीचे आप देखिए किस तरीके से गंगा नदी जो है वो लगातार हर तरफ चारों तरफ फैल रही है। लोग देखिए अपना जान माल यहाँ सिलेंडर लेकर जो है वो किसी तरीके से सूखे और सुरक्षित स्थान पर निकलने की कोशिश कर रहे हैं।
11: कटिहार में भी गंगा, कोसी, ब्रांडी और महानंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात बद से बदतर हो गए। स्थिति इतनी खराब हो गई कि बच्चे नाव पर सवार होकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। कटिहार के जिला शिक्षा पदाधिकारी राहुल चंद्र चौधरी ने छात्र छात्राओं के नाव से स्कूल आने जाने की बात सामने आते ही स्कूल को दूसरे स्कूल में शिफ्ट करने का आदेश दिया।
24: बच्चों के नाव से आने की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी, हम लोगों ने हेडमास्टर से संपर्क करते हुए उन्हें निर्देश दिया है कि किसी भी हालत में बच्चे नाव से विद्यालय नहीं आएंगे और संपत्ति हम लोगों ने उत्कर्मित मध्य विद्यालय को मध्य विद्यालय अनारकली से टैग कर दिया है और वहीं पर जो है बच्चों को हम लोग टैग कर वहाँ हमारे पतागुन के शिक्षक भी रहेंगे और बच्चे भी वहीं उपस्थित रहकर शिक्षा ग्रहण करेंगे।
11: गंडक नदी का लगातार कटाव बगहा के दियारा इलाके में ग्रामीणों के लिए मुसीबत बना है। मधुबनी प्रखंड के चिरौही और सिसई पंचायत के कई गांव बाढ़ और कटाव की दोहरी मार झेल रहे हैं। लगातार कटाव की वजह से परिवार अपने घर खाली कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों के मुताबिक गंडक हर दिन करीब 5-6 एकड़ जमीन निकल रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि समय पर कटाव रोधी काम शुरू नहीं होने से संकट बढ़ रहा है। बिहार में गंगा नदी लगभग हर जगह पर रौद्र रूप में है। पटना के गांधी घाट पर गंगा नदी का जलस्तर उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर 50.45 मीटर तक रिकॉर्ड किया गया, जो इसके 50.52 मीटर के सर्वकालिक उच्चतम बाढ़ स्तर से महज 7-9 सेंटीमीटर नीचे बना हुआ है। दीक्षा घाट पर गंगा 51.77 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से 50.45 मीटर से काफी ऊपर है। पटना के हाथीदेह में गंगा 43.37 मीटर पर बह रही है, जो खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर है। हाथीदेह में गंगा नदी का खतरा स्तर 41.76 मीटर है और वर्तमान में जलस्तर इससे ऊपर बह रहा है। पटना, भागलपुर, भोजपुर, वैशाली, सारण और मुंगेर समेत कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। पटना के निचले इलाकों में पानी घुस रहा है। घाट के साथ साथ वहां बने मंदिर पानी में डूब गए। नवगछिया में कोसी नदी का कहर टूटा। जिन गलियों में कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, जिन सड़कों पर लोग रोजमर्रा की जिंदगी का सफर तय करते थे, वहां अब पानी है। जिन घरों में सुबह चूल्हे का धुआं उठता था, वहां अब लोग पानी के बीच जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। बेगूसराय जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। राज्य सरकार अलर्ट पर है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए सीएम सम्राट चौधरी आज बेगूसराय जाएंगे। सीएम न केवल हवाई सर्वेक्षण के जरिए बाढ़ के फैलाव का आकलन करेंगे, बल्कि ग्राउंड जीरो पर उतरकर प्रभावित लोगों का हाल भी जानेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। दानापुर दियारा की गंगा के बड़े जलस्तर ने पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी। दियारा के कई गांवों में हालात ऐसे हैं कि घर से बाहर निकलने के लिए भी नाव ही सहारा है। लोगों के सामने सबसे बड़ी चिंता है खाने का इंतजाम कैसे हो और परिवार को सुरक्षित कैसे रखा जाए। बाढ़ के बीच स्थानीय जनप्रतिनिधि भी प्रभावित इलाकों में पहुंचे। बिहार में बाढ़ की तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। प्रशासन अलर्ट पर है। राहत और बचाव अभियान जारी है, लेकिन प्रभावित लोगों की मुश्किलें अभी भी बरकरार हैं।

0: खबरों का सिलसिला जारी है, फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: आज तक इस वक्त पहुंचा है नेपाल के रूपनदेही जिले के भुटवल इलाके में। अभी तक 700 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और तकरीबन 2500 से भी ज्यादा जो लोग हैं अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। आई है इस बार नेपाल में, उसने पूरे नेपाल को हिला कर रख दिया है। सहयोगी अभिषेक पांडे के साथ रोहित सिंह, नेपाल आज तक।

कहा सच की हुंकार के आगे नहीं टिकेगी झूठ की गूंज, माए बाप कल्चर से लेकर दिमागी नक्सल तक का किया जिक्र। अंदरूनी कलह के बीच पंजाब कांग्रेस में बदला, भूपेश बघेल की जगह सचिन पायलट को बनाया गया है प्रभारी, सुरजेवाला को मिली गुजरात की जिम्मेदारी। सहारनपुर मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन से बढ़ गया है सियासी टेंशन, अखिलेश और मायावती ओवैसी ने उठाए हैं सवाल, बीजेपी ने दिया कानूनी आदेश का हवाला। बिहार में उफान पर गंगा, 11 जिलों पर मंडराया बाढ़ का खतरा, 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, दूसरी नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर। और महिला एशिया कप में भारत की शानदार जीत, पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया, टीम इंडिया को मिला था 56 रन का लक्ष्य।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। सबसे पहले आज तक में इस बुलेटिन में हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार शाम दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसआरसीसी कॉलेज में पहुंचकर जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमला किया है विपक्ष के ऊपर, कॉलेज के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री ने छात्रों को संबोधित किया और इस दौरान प्रधानमंत्री ने विरोधियों पर जमकर तंज कसा।
1: आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, एक वो लोग जो पॉजिटिव तरीके से समाज की शक्ति को राष्ट्र की शक्ति में बदलते हैं, दूसरी प्रजाति उन लोगों की है जो कोई भी काम शुरू होने पर नाराज फूफा बन जाते हैं। उनका फेवरेट काम होता है हर काम का विरोध करना। इनका एक ही डायलॉग होता है, इसकी क्या जरूरत है। इसकी क्या जरूरत है, ये हर फूफा का परमानेंट डायलॉग होता है। जब हम दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू बना रहे थे तो फूफा जी ने कमर कस ली, कहा इसकी जरूरत ही क्या है। हमने हाई स्पीड ट्रेन पर काम शुरू किया तो फूफा जी फिर बोले इसकी जरूरत ही क्या है। हम यूपीआई लेकर आए तो यही फूफा लोगों को कहते थे वाह यूपीआई, यूपीआई की जरूरत ही क्या है। हमने चिप बनाने की बात की तो फिर कहा गया कि जरूरत ही क्या है। हमने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई तो ये फिर बोले इसकी जरूरत ही क्या है। हमने देश के लिए मरने मिटने वाले सर्वश्रेष्ठ बलिदान देने वाले हमारे वीर सेना नायकों का मेमोरियल बनाया, फूफा फिर मैदान में आ गए, इसकी क्या जरूरत थी। लेकिन भारत ने ऐसे सारे फूफाओं को जवाब दिया। जो देश के लिए जरूरी है वो भारत को करने से कोई रोक नहीं सकता। साथियों, आज 2013 के मुकाबले देश आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कहीं अधिक सुरक्षित है। लेकिन ये देखकर कुछ लोगों की छटपटाहट बढ़ रही है, बौखलाहट बढ़ रही है। अभी 15 अगस्त का मेरा भाषण आपने सुना होगा। ऐसे लोगों के लिए मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी का डोज दिया था, होम्योपैथी की गोली, छोटी सी गोली दी थी लाल किले से। और आप जानते हैं होम्योपैथी के कहते हैं कि स्वभाव ऐसा है कि होम्योपैथी की दवाई जब शुरू करते हैं तो शुरू के दौर में बीमारी एकदम से ज्यादा बढ़ जाती है, ये होम्योपैथी का स्वभाव है। तो मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी की गोली दी थी दिमागी नक्सल। ये दिमागी नक्सल होम्योपैथी का इलाज, जैसा मैंने कहा, बीमारी को कुछ समय के लिए और उभार देता है और उसके बाद उसका इलाज शुरू करता है। इसी तरह जैसे ही मैंने दिमागी नक्सल वाली होम्योपैथी की गोली दी, सारे दिमागी नक्सल निकल निकल के बाहर आने लगे। और जो इस बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं, अब जनता उनका भी असली रंग देख रही है।
0: दिल्ली के धौलाकुआ फ्लाईओवर पर चलती कार में अचानक से आग लग गई और आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई थी। कार से उठती हुई आग की लपटें और धुएं के गुबार कैमरे में कैद हुए। फिलहाल आग लगने की वजह कह रही है साफ नहीं हो पाई है, किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। एक अच्छी खबर है, समय रहते इस आग पर काबू पा लिया गया था। रात का समय था तो ट्रैफिक पर ज्यादा इसका असर नहीं पड़ा, लेकिन तस्वीरें देखिए किस तरीके से पूरी की पूरी कार जलकर खाक हो गई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक इस आग पर पूरी तरह से काबू पाया जाता कार जलकर राख हो चुकी थी। और अब बात करेंगे यूपी के सहारनपुर में मचे हुए घमासान के बारे में, जहां कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने एक मस्जिद को गिरा दिया है, जिसके बाद अब यूपी में सियासत तेज हो गई है।

0: ये सहारनपुर का जिला कलेक्टर ऑफिस है, जहाँ आज भारी सुरक्षा बल के बीच परिसर में बनी एक मस्जिद को ढा दिया गया। ये वही मस्जिद है जिसे सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने अवैध घोषित किया था।
1: सहारनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद को गिरा दिया गया है। इस वक्त हम लोग कलेक्ट्रेट परिसर में ही मौजूद हैं, जहां पर आप देखिए आपको बुलडोजर इस मस्जिद के ऊपर, जो पूरा ये मस्जिद था इसे ढाया गया। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन थी, सिटी मजिस्ट्रेट ने सबसे पहले आदेश जारी किया था इसे हटाने के लिए यहां से। उसके बाद जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो कोर्ट गए, और जब जिला जज का आदेश आया और साथ साथ आदेश आया 6,41,00,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया। इस मस्जिद में कुछ लोग किराए पर भी रहते थे, एक डाकखाना भी चलता था। उसके बाद उन लोगों से कहा गया कि आप लोग ये पूरा परिसर खाली कर दीजिए, और शुक्रवार को इस परिसर को खाली कराया गया। और उसके बाद देर रात यहाँ पर आप देखिए जो तमाम अब आप देख रहे हैं बुलडोजर डंफर, वो यहाँ पे आने शुरू हुए, और सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास से इसे यहाँ पर गिराने का काम शुरू कर दिया गया।
0: सहारनपुर कलेक्ट्रेट में 315 वर्ग मीटर जमीन पर बनी ये मस्जिद थी। शिकायत करने वालों ने दावा किया था कि ये मस्जिद अवैध तरीके से बनाई गई थी। कोर्ट में जब मस्जिद की फाइल खुली तो अदालत ने पाया कि खसरा संख्या 539 सरकारी अभिलेखों में कचहरी कलेक्ट्रेट के नाम दर्ज है। इसी भूमि पर 315 वर्ग मीटर हिस्से पर मस्जिद का निर्माण किया गया था, लिहाजा कोर्ट ने इसे अवैध माना और 30 दिनों के अंदर हटाने का आदेश दिया। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की, अपील खारिज हुई तो प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद करीब 70 साल पुरानी थी, लेकिन पुलिस ने उसे तोड़ दिया, जबकि पुलिस का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन हुआ है।
2: डीएम परिसर में जो मस्जिद बनी हुई थी इसको अब यहाँ पर ध्वस्तीकरण किया जा रहा है।
3: देखिए, यहाँ जनपद सहारनपुर के कलेक्ट्रेट में एक मस्जिद थी जिसको सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा अवैध पाया गया था। उस आदेश के विरुद्ध जो मस्जिद कमेटी थी वो फर्स्ट अपील में गई थी, उनकी अपील खारिज हो गई है। इसमें सिटी मजिस्ट्रेट का जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसको पुष्ट किया गया है। इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ जारी है।
0: उधर पहले मस्जिद तोड़ने की अफवाह उड़ी, तनाव और संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर था। विपक्ष के कई नेता रात को ही सोशल मीडिया लाइव पर आ गए। कार्रवाई के खिलाफ सहारनपुर आ रही कैराना सांसद इकरा हसन को पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया, जिन्हें बाद में हाउस अरेस्ट कर लिया।
4: जब सभी लोग ये चाहते थे कि हम लोग अधिकारियों से बात करें कि इसमें कुछ वक्त दिया जाए, लोग हाईकोर्ट जाना चाहते थे, वो वक्त ना देने की वजह से हम लोगों को यहाँ पर हाउस अरेस्ट किया गया। तमाम जितने भी सहारनपुर जिले के जिम्मेदार लोग हैं सभी को हाउस अरेस्ट किया गया।
0: उधर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इसे संविधान के लिए काला दिन बताया और मामले को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कही।
5: चुनाव की रणनीति से जोड़कर नहीं देखता हूं, ये हम लोगों के लिए चुनाव का विषय नहीं है, ना हम इसको पर राजनीति करना चाहते हैं। हमारी मस्जिद शहीद हुई है, हमें तकलीफ है, और हम अपने दर्द को और अपनी तकलीफ को कोर्ट के सामने बयान करेंगे।
0: सहारनपुर पुलिस ने दावा किया कि मुस्लिम पक्ष को पर्याप्त समय दिया गया था। अपील के बाद भी जब उन्हें राहत नहीं मिली तो कानून ने अपना काम किया। तनाव और सियासत को देखते हुए इलाके में भारी संख्या बल में सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। हिमांशु मिश्रा के साथ राहुल कुमार सिंह, सहारनपुर आज तक।
6: मस्जिद गिराने पर विपक्ष सरकार को टारगेट कर रहा है। विपक्ष का सवाल यह है कि आखिर ऊपर की अदालत के फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया गया? आखिर प्रशासन को मस्जिद गिराने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी?
0: सहारनपुर में जिला कलेक्टर के ऑफिस की ये तस्वीरें यूपी में सियासी जंग का नया अखाड़ा बन गई हैं। यूपी में जारी सनातन की सियासत पर अब अखिलेश यादव सवाल कर रहे हैं।
7: वो सनातनी कभी नहीं हो सकते जो दूसरे धर्म के सम्मान न करते हों। वो सनातनी कभी नहीं हो सकते जो दूसरे की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हों। वो सनातनी कभी नहीं हो सकते, और एक सच्चा हिंदू कभी दूसरे का अपमान नहीं कर सकता है। हमने तो यही सीखा है सनातन धर्म में।
0: विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आखिर मस्जिद को गिराने की इतनी जल्दी क्या थी? क्या ऊंची अदालत के फैसले का इंतजार प्रशासन नहीं कर सकता था? विपक्ष योगी सरकार पर जानबूझकर मस्जिदों को टारगेट करने का आरोप लगा रहा है।
7: ये क्यों हो रहा है ये सब? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम के धन में ये चोरी करते हुए पकड़े गए, इसलिए क्रिमिनल एंगल दे रहे हैं जानबूझकर। क्या हाईकोर्ट में न्याय नहीं मिल सकता था? क्या सुप्रीम कोर्ट में वो नहीं जा सकते थे अपील के लिए? वो अधिकारियों ने मिलकर के सरकार के सारे पर ये काम किया कि जिससे अगले कोर्ट में उन्हें न्याय न मिल जाए।
8: बीजेपी को देश के प्रधानमंत्री को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लफ्ज मस्जिद से नफरत है, इसीलिए मस्जिद को देखते ही इनके दिलो दिमाग में दर्द शुरू हो जाता है। अरे आपके दिलो दिमाग में दर्द शुरू होगा, हो सकता है वो आपका प्रॉब्लम है, आप मस्जिद को की तरफ देखना नहीं चाहते, उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहते, वो आपका प्रॉब्लम है, मगर आपको देखना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमको दिया गया है।
0: उधर बीजेपी का कहना है कि कोर्ट के फैसले पर एक्शन हुआ है, जिसे धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए।
9: जहां तक सहारनपुर की घटना के संदर्भ में है, वो एजेंसीज और सरकार की जो भी डिपार्टमेंट है वो विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर किसी प्रकार का राजनीतिक नजरिया से देखने की जरूरत है, या किसी भी बिल्डिंग को उसकी धार्मिक पहचान से देखने की जरूरत है। किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर हो, उसे सिर्फ इस दृष्टि से देखना चाहिए कि वो कानूनी है अथवा गैर कानूनी है।
0: इस सियासत के बीच एक दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया था।
10: इनकी आस्था बाबर और औरंगजेब में होगी, क्या वे आपकी आस्था को सम्मान दे पाएंगे? ये बाबरी और औरंगजेब के अनुयायी जहर घोलने का काम फिर से करने जा रहे हैं।
0: यूपी में चुनाव है, ऐसे में भले ही मस्जिद सहारनपुर में टूटी, लेकिन इसकी गूंज यूपी की राजनीतिक गलियारों में लंबे समय तक सुनाई देगी। हिमांशु मिश्रा के साथ राहुल कुमार सिंह, सहारनपुर आज तक।
6: उधर यूपी में एक सियासत स्कूलों को लेकर भी लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी ने शिक्षक दिवस के बहाने बीजेपी को घेरने के लिए प्लान तैयार किया है।
11: दो दिन पहले ही लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और सीजेपी नेता आशुतोष रांका की मुलाकात हुई। दोनों ओर से दावा हुआ कि मुलाकात में किसी सियासी एजेंडे पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन इस मुलाकात के ठीक बाद समाजवादी पार्टी ने जिस नए चुनावी एजेंडे की ओर कदम बढ़ाया, वो कुछ अलग ही इशारा कर रहा है। दरअसल यूपी के चुनावी माहौल के बीच अब समाजवादी पार्टी ने शिक्षा को बड़ा मुद्दा बनाकर योगी सरकार को घेरने का प्लान तैयार किया।
7: और यहाँ जितने हमारे साथी खड़े हैं, वो जानते हैं होंगे कि एक शिक्षक के साथ इस सरकार का व्यवहार क्या था। केवल एक शिक्षक के साथ नहीं, एक दुखी माँ के साथ। एक दुखी माँ अपने दुख में जब आई थी तो सोचो क्या कह रही थी सरकार, कि हमें भाषण नहीं सुनना है तुम्हारा, बहुत हो चुका भाषण। इसलिए हमारा समाज और देश तरक्की और खुशहाली के रास्ते बजाए, जो कोई भी कहता विकसित भारत तब बनेगा जब ईमानदारी से शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा।
12: ने शासन की ओर से कहा कि भाई हर बच्चे को हम 2 यूनिफॉर्म देंगे, बैग देंगे, बुक्स देंगे, शूज देंगे, सॉक्स देंगे और स्वेटर भी उपलब्ध करवाएंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज के दिन पे हमारी सरकार 1,60,00,000 बच्चों को इस सुविधा उपलब्ध करवा रही है। ड्रॉप आउट रेट जो 19-20% था, आज मुझे प्रसन्नता है कि ड्रॉप आउट रेट को हम 19-20% से घटा करके 3% से नीचे लाने में हमने सफलता प्राप्त की है।
11: जिसके तहत समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारी आज से 11 सितंबर तक प्रदेश में पाठशाला पुकारे अभियान चला रहे हैं। इस दौरान यूपी में बंद हुए प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों का सम्मान कार्यक्रम किया जा रहा है। ये कार्यक्रम बंद स्कूलों के आसपास ही आयोजित किए जा रहे हैं।
13: ये सभी वो बच्चे हैं जो कि आसपास रहते हैं गोमती नगर के एरिया में। इनका दावा है अपना कि ये चाहते हैं कि स्कूल खुले, जिससे कि ये स्कूल जा सके। आज समाजवादी पार्टी यहाँ पर पहुंचकर इनको बुक, कॉपी, पेंसिल, बैग, पीडीए की पाठशाला चला रही है और मौके पर इन सभी बच्चों को वो हर शिक्षा का जो कागज है वो उपलब्ध करा रही है, जो दावा किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि सरकार ने उसको उपलब्ध नहीं कराया है, वह समाजवादी पार्टी उपलब्ध कराकर ये पीडीए पाठशाला 5 सितंबर से कैंपेन के तौर पर पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में चला रही है।
11: यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, कई मुद्दों पर विपक्ष और सरकार आमने सामने हैं। अब समाजवादी पार्टी ने शिक्षा व्यवस्था पर यूपी सरकार की घेराबंदी की तैयारी की है।
14: प्रदेश में तमाम प्राइमरी और मिडिल स्कूल बंद कर दिए गए, जिससे ग्रामीण अंचल में गरीबों के, किसानों के, बच्चों के लिए पाठशालाएं थी, बंद करके इन्होंने न्याय किया।
11: उधर इस अभियान ने सीजेपी नेताओं से अखिलेश की मुलाकात के मुद्दे को और गर्म कर दिया, बीजेपी से लेकर हमलावर हो गई।
15: अब देखिए नेता हैं, सीजेपी वाले भी अपना नेतागिरी कर रहे हैं, मिले होंगे उससे, मुझे उस पर कोई कमेंट नहीं करना।
11: यूपी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, कानून व्यवस्था पर पहले ही तल्खी बढ़ी हुई है। अब समाजवादी पार्टी के अभियान से सूबे की सियासत में नई जंग छिड़ती दिख रही है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
6: और अब बात करेंगे कंगना रनौत की, जो अधिकारियों पर जमकर बरसी हैं अपने लोकसभा क्षेत्र मंडी में। कैसे कंगना ने लगाई है क्लास, अभी देखिए।
16: मंडी में दिशा कमेटी की बैठक में सांसद कंगना रनौत पहुंची तो अधिकारियों की जमकर क्लास ली।
17: ये जो फालतू के जुमले है ना, मुझे मत देना, ये मुझे हर दिशा कमेटी में जुमले मिल रहे हैं। पिछली बार भी जब मैंने एमपी लैट के बारे में, आज दिशा कमेटीज आर सो रेगुलर, जब भी मैंने एमपी लैट के बारे में पूछा था तो मुझे कहा था कि देयर इज एब्सोल्युटली नो हिकअप और हम लोगों का जो है 90।
16: अधिकारियों के कामकाज को लेकर कंगना ने सवाल खड़े किए। सांसद ने सरकारी फंड के उपयोग पर भी नाराजगी जताई। सांसद ने चेतावनी देते हुए कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों पर पूरे देश की नजर है और विभागीय लापरवाही से गलत संदेश नहीं जाना चाहिए।
17: ये क्या है, महीना चला गया, दो महीने चले गए, छह महीने चले गए, साल चला गया, व्हाट इज दिस? जो भी हमने पिछली बार बात की है, अगर वो इंप्लीमेंट नहीं हुई है, देन देयर विल बी सीरियस इंप्लिकेशंस ऑफ दैट, दैट पर्सन इज गोइंग टू बी नोटेड एंड आई विल सेंड द रिपोर्ट टू सेंटर। एनफ ऑफ एनफ, आई एम नॉट गोइंग टू स्लो डाउन बिकॉज ऑफ योर स्पीड, यू विल हैव टू कैच अप विद मी।
16: कंगना का कहना है कि अधिकारी उनकी बातों को हल्के में ले रहे थे, ऐसे में उन्हें फटकार लगाना जरूरी था।
18: तो मैं कहती हूँ बाबू लोग जो हैं, उनकी जो एक जैसे बस कुर्सी पीड़ने की आदत पड़ चुकी है, उसको देखकर जो है चिंताजनक है ये चीजें, क्योंकि अब मैंने काफी काफी जो इनकी मीटिंग्स है बहुत ही हर तरीके से मैंने इनसे बात करके देखी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं मेरे जो इनसे बात करने का तरीका है उसको लेकर ये ज्यादा ही मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं।
16: कंगना ने प्रदेश सरकार को भी घेरा और अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाया।
18: देखिए प्रदेश सरकार ने जो है इस जगह का जो है बेड़ा गर्क कर दिया है पूरी तरीके से, और आज जो है लोग बहुत शिकायतें कर रहे थे, चाहे वो पुलिस भी हो गई, अधिकारियों के साथ जो है तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, चाहे वो ड्रग्स की समस्या हो गई, चाहे ऐसी बहुत जितने भी, आज हम लोगों ने आपने देखा करीब चार पाँच घंटे से हम लोग बैठे हुए हैं, तो इसमें हमने हर तरीके की जो बात डिस्कस करी, लेकिन अधिकतर बातों में यही आ रहा था कि जो अधिकारी है जो और जो यहाँ की जो सरकार है वो पूरी तरीके से जो है फेलियर है।
16: बहरहाल कंगना अपने लोकसभा क्षेत्र मंडी में आज फुल एक्शन में नजर आई। धर्मवीर मंडी आज तक।
6: दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान हुई मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया है। अब गिरफ्तारी को लेकर भी घमासान तेज हो गया है।
11: दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन को लेकर ऐसी जंग छिड़ी कि आए दिन इस प्रदर्शन पर नई सियासत सुलगती है, आए दिन नए मुद्दों पर सियासी जंग छिड़ती है। अब नया विवाद है प्रदर्शन में शामिल शख्स पर हमले के केस में हिरासत में लिए गए स्वतंत्र भारद्वाज को लेकर, जिस पर SC/ST एक्ट में केस दर्ज होने का विरोध शुरू हो गया। हिंदुवादी संगठनों के लोग दिल्ली के जंतर मंतर थाने पहुंचे और आरोप लगाया कि स्वतंत्र भारद्वाज को गलत फंसाया गया है।
19: मेरा भाई कोई ऐसा अपराध नहीं किया कि उसको उसके ऊपर पोस्को जैसा एक्ट और SC/ST लगा दिया जाए। जब यही दिल्ली पुलिस, इस दिल्ली पुलिस को यहाँ दल्ला पुलिस बोला जा रहा था, जो दिल्ली पुलिस को गाली दिया जा रहा था, जब दिल्ली पुलिस को मारा जा रहा था, तो उस टाइम दिल्ली पुलिस कहाँ गई थी? उनको गिरफ्तार करे ना, जो ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के तिरहमी का समोसा खिला रहे हैं, उनको गिरफ्तार करिए। हमेशा भगवान राम को गाली देती है, हमेशा सनातन धर्म पे गलत टिप्पणियां करती है, उस टाइम दिल्ली पुलिस कहां चली जाती है? स्वतंत्र भारद्वाज ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके ऊपर एससी एसटी एक्ट लगा दिया गया है।
20: भारद्वाज पे आप एससी एसटी पोस्ट को लगा रहे हो तो उन देश विरोधी ताकत जो देश विरोधी लोग थे जो ये कह रहे थे कि देश तोड़ने की बात कर रहे थे उन पे यूएपीए लगाई है ना। जब सौरभ दास ने खुद एक्सेप्ट किया कि जब जो प्रोटेस्टर हैं उन पर जो भी मुकदमे हुए सरकार वापस ले नहीं तो हम मार्च करेंगे।
11: थाने पर इकट्ठा हुए हिंदूवादी संगठनों के लोग एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। दावा है कि भीड़ के दबाव में केस में नई धाराएं जोड़ी गई।
21: स्वतंत्र भारद्वाज देश का एक भटका हुआ युवा साथी है। स्वतंत्र भारद्वाज को मानसिक चिकित्सा की जरूरत है। स्वतंत्र भारद्वाज जैसे कई साथी प्रधानमंत्री मोदी की बातों पर आके गुमराह हो गए थे और ऐसे लोगों पर एक मेरे को लगता है एक साइकोलॉजिकल हेल्प की भी इनको ज़रूरत है, साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। किस तरीके से वो बयान दे रहे थे, कड़े से लोगों को मार रहे थे, उनके अंदर की नफरत को ख़त्म करना है।
22: अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी गुनाह में लिप्त होगा तो देश के संविधान के अनुसार, देश की संसद के द्वारा बनाए गए नियम और कानून के हिसाब से सरकार काम करेगी और सरकार पूरी तरह वचनबद्ध है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उसका कंप्लायंस करते हुए, जांच करते हुए जो भी उसमें कहीं भी गुनाहगार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इसका हम स्वागत करते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति बचना नहीं चाहिए जो व्यक्ति अपने आप को संविधान से और देश से ऊपर समझता हो अपने आप।
11: उधर स्वतंत्र भारद्वाज को हिरासत में लिए जाने पर सियासत भी गरमाई हुई है। विपक्षी दलों का हमला जारी है, वहीं सत्ता में शामिल पार्टियां भी सदा हुआ बयान दे रही हैं। जंतर मंतर पर पिटाई का मामला गरमाया हुआ है, नई सियासत शुरू हो गई है और ये लड़ाई जल्द थमती नहीं दिख रही। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ अंशुल सिंह आज तक।
6: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
23: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
24: आपके जीवन में माता पिता का सुख कब रहता है? कब आपके संबंध माता पिता से खराब हो जाते हैं? माता पिता का सुख पाने के लिए, माता पिता को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
25: कोटा से ऊपर मैं त्रिशूली में आया हूँ, देख लीजिए सैलाब का ये सितम।
26: ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया।
25: पीछे जो आपको इमारतें दिख रही है ना, वो सारी बिल्कुल खंडहर हो चुकी है।
26: जो निचले इलाके हैं उन सबसे ऊंचाई की तरफ लोगों को जाने के लिए कहा गया है।
27: चितवन में आज तक की टीम मौजूद है और आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं।
25: मैं आशुतोष मिश्रा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: गांधी जी के आंदोलन करने का तरीका क्या आज के समय भी उतना प्रासंगिक है?
2: जो तुम गाली देते हो ना गांधी जी, 70 साल की उम्र में दो लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए, पढ़ लो।
3: जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जो गांधी जी ने वापस ले लिया था, वो भी तो किसी और की वजह से लिया था। चौरी चौरा में जो हुआ इंसिडेंट, उनसे उनको क्या मतलब था? अगर वो उसको जाए रखते, क्या पता उस समय इंडिपेंडेंस थोड़ा जल्दी हो जाता।
2: ताली बजाओ इनके लिए, ये ताली डिजर्व करते हैं।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

जीवन में माता पिता का सुख कब रहता है? कब आपके संबंध माता पिता से खराब हो जाते हैं? माता पिता का सुख पाने के लिए, माता पिता को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

आवाज सच की हुंकार के आगे नहीं टिकेगी, झूठ की गूंज, माए बाप कल्चर से लेकर दिमागी नक्सल तक का किया जिक्र। अंदरूनी कलह के बीच पंजाब कांग्रेस में बदला, भूपेश बघेल की जगह सचिन पायलट को बनाया गया है प्रभारी, सुरजेवाला को मिली गुजरात की जिम्मेदारी। सहारनपुर मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन से बढ़ गया है सियासी टेंशन, अखिलेश और मायावती ओवैसी ने उठाए हैं सवाल, बीजेपी ने दिया कानूनी आदेश का हवाला। बिहार में उफान पर गंगा, 11 जिलों पर मंडराया बाढ़ का खतरा, 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, दूसरी नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर। और महिला एशिया कप में भारत की शानदार जीत, पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया, टीम इंडिया को मिला था 56 रन का लक्ष्य।

0: इस आग पर काबू पा लिया है, लेकिन आपको बता दें कि जब तक इस आग पर पूरी तरह से काबू पाया जाता, ये जो कार है जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, फ्लाईओवर के ऊपर ये कार जली है। वजह क्या रही है ये साफ नहीं हो पाया, और सबसे अच्छी बात ये रही है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। रात का समय होने की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या से भी दो चार नहीं होना पड़ा यहाँ से आने जाने वाले लोगों को, क्योंकि काफी देर तक फायर ब्रिगेड की टीमें यहाँ आग बुझाने में जुटी हुई थी। देर तक आग की लपटें इसी तरह से देखी जाती रही। रुक करेंगे एक और बड़ी और अहम खबर का। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार शाम दिल्ली यूनिवर्सिटी के SRCC कॉलेज पहुंचे और कॉलेज के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री ने छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विरोधियों पर जमकर तंज कसा।
1: आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, एक वो लोग जो पॉजिटिव तरीके से समाज की शक्ति को राष्ट्र की शक्ति में बदलते हैं, दूसरी प्रजाति उन लोगों की है जो कोई भी काम शुरू होने पर नाराज फूफा बन जाते हैं। उनका फेवरेट काम होता है हर काम का विरोध करना। इनका एक ही डायलॉग होता है, इसकी क्या जरूरत है। इसकी क्या जरूरत है, ये हर फूफा का परमानेंट डायलॉग होता है। जब हम दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू बना रहे थे तो फूफा जी ने कमर कस ली, कहा इसकी जरूरत ही क्या है। हमने हाई स्पीड ट्रेन पर काम शुरू किया तो फूफा जी फिर बोले इसकी जरूरत ही क्या है। हम UPI लेकर आए तो यही फूफा लोगों को कहते थे वाह UPI, UPI की जरूरत ही क्या है। हमने चिप बनाने की बात की तो फिर कहा गया कि जरूरत ही क्या है। हमने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई तो ये फिर बोले इसकी जरूरत ही क्या है। हमने देश के लिए मरने मिटने वाले सर्वश्रेष्ठ बलिदान देने वाले हमारे वीर सेना नायकों का मेमोरियल बनाया, फूफा फिर मैदान में आ गए, इसकी क्या जरूरत थी। लेकिन भारत ने ऐसे सारे फूफाओं को जवाब दिया, जो देश के लिए जरूरी है वो भारत को करने से कोई रोक नहीं सकता। साथियों, आज 2013 के मुकाबले देश आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कहीं अधिक सुरक्षित है, लेकिन ये देखकर कुछ लोगों की छटपटाहट बढ़ रही है, बौखलाहट बढ़ रही है। अभी 15 अगस्त का मेरा भाषण आपने सुना होगा, ऐसे लोगों के लिए मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी का डोज दिया था, होम्योपैथी की गोली, छोटी सी गोली दी थी लाल किले से। और आप जानते हैं होम्योपैथी के कहते हैं कि स्वभाव ऐसा है कि होम्योपैथी की दवाई जब शुरू करते हैं तो शुरू के दौर में बीमारी एकदम से ज्यादा बढ़ जाती है, ये होम्योपैथी का स्वभाव है। तो मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी की गोली दी थी दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल होम्योपैथी का इलाज, जैसा मैंने कहा बीमारी को कुछ समय के लिए और उभार देता है, और उसके बाद उसका इलाज शुरू करता है। इसी तरह जैसे ही मैंने दिमागी नक्सल वाली होम्योपैथी की गोली दी, सारे दिमागी नक्सल निकल निकल के बाहर आने लगे, और जो इस बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं, अब जनता उनका भी असली रंग देख रही है।
0: और अब बात करेंगे यूपी के सहारनपुर में मचे हुए घमासान के बारे में, जहां कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने एक मस्जिद को गिरा दिया है, जिसके बाद अब यूपी में सियासत तेज हो गई है।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। दिल्ली के धौलाकुआ फ्लाईओवर पर चलती हुई कार में अचानक से भीषण आग लगी और आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई थी। कार से उठती हुई आग की लपटें और धुएं का गुबार कैमरे में कैद हुआ है। फिलहाल आग लगने की वजह क्या रही ये साफ नहीं हो पाया और अच्छी बात ये रही है कि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर

0: ये सहारनपुर का जिला कलेक्टर ऑफिस है, जहाँ आज भारी सुरक्षा बल के बीच परिसर में बनी एक मस्जिद को ढा दिया गया। ये वही मस्जिद है जिसे सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने अवैध घोषित किया था।
1: सहारनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद को गिरा दिया गया है। इस वक्त हम लोग कलेक्ट्रेट परिसर में ही मौजूद हैं, जहां पर आप देखिए आपको बुलडोजर इस मस्जिद के ऊपर, जो पूरा ये मस्जिद था इसे ढाया गया। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन थी, सिटी मजिस्ट्रेट ने सबसे पहले आदेश जारी किया था इसे हटाने के लिए यहां से। उसके बाद जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो कोर्ट गए, और जब जिला जज का आदेश आया और साथ साथ आदेश आया 6,41,00,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया। इस मस्जिद में कुछ लोग किराए पर भी रहते थे, एक डाकखाना भी चलता था। उसके बाद उन लोगों से कहा गया कि आप लोग ये पूरा परिसर खाली कर दीजिए, और शुक्रवार को इस परिसर को खाली कराया गया। और उसके बाद देर रात यहाँ पर आप देखिए जो तमाम अब आप देख रहे हैं बुलडोजर डंफर, वो यहाँ पे आने शुरू हुए, और सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास से इसे यहाँ पर गिराने का काम शुरू कर दिया गया।
0: सहारनपुर कलेक्ट्रेट में 315 वर्ग मीटर जमीन पर बनी ये मस्जिद थी। शिकायत करने वालों ने दावा किया था ये मस्जिद अवैध तरीके से बनाई गई थी। कोर्ट में जब मस्जिद की फाइल खुली तो अदालत ने पाया कि खसरा संख्या 539 सरकारी अभिलेखों में कचहरी कलेक्ट्रेट के नाम दर्ज है। इसी भूमि पर 315 वर्ग मीटर हिस्से पर मस्जिद का निर्माण किया गया था, लिहाजा कोर्ट ने इसे अवैध माना और 30 दिनों के अंदर हटाने का आदेश दिया। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की, अपील खारिज हुई तो प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद करीब 70 साल पुरानी थी, लेकिन पुलिस ने उसे तोड़ दिया, जबकि पुलिस का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन हुआ है।
2: डीएम परिसर में जो मस्जिद बनी हुई थी इसको अब यहाँ पर ध्वस्तीकरण किया जा रहा है।
3: देखिए, यहाँ जनपद सहारनपुर के कलेक्ट्रेट में एक मस्जिद थी जिसको सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा अवैध पाया गया था। उस आदेश के विरुद्ध जो मस्जिद कमेटी थी वो फर्स्ट अपील में गई थी, उनकी अपील खारिज हो गई है। इसमें सिटी मजिस्ट्रेट का जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसको पुष्ट किया गया है। इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ जारी है।
0: उधर पहले मस्जिद तोड़ने की अफवाह उड़ी, तनाव और संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर था। विपक्ष के कई नेता रात को ही सोशल मीडिया लाइव पर आ गए। कार्रवाई के खिलाफ सहारनपुर आ रही कैराना सांसद इकरा हसन को पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया, जिन्हें बाद में हाउस अरेस्ट कर लिया।
4: जब सभी लोग ये चाहते थे कि हम लोग अधिकारियों से बात करें कि इसमें कुछ वक्त दिया जाए, लोग हाईकोर्ट जाना चाहते थे, वो वक्त ना देने की वजह से हम लोगों को यहाँ पर हाउस अरेस्ट किया गया। तमाम जितने भी सहारनपुर जिले के जिम्मेदार लोग हैं सभी को हाउस अरेस्ट किया गया।
0: उधर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इसे संविधान के लिए काला दिन बताया और मामले को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कही।
5: चुनाव की रणनीति से जोड़कर नहीं देखता हूँ, ये हम लोगों के लिए चुनाव का विषय नहीं है, ना हम इसके ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। हमारी मस्जिद शहीद हुई है, हमें तकलीफ है, और हम अपने दर्द को और अपनी तकलीफ को कोर्ट के सामने बयान करेंगे।
0: सहारनपुर पुलिस ने दावा किया कि मुस्लिम पक्ष को पर्याप्त समय दिया गया था। अपील के बाद भी जब उन्हें राहत नहीं मिली तो कानून ने अपना काम किया। तनाव और सियासत को देखते हुए इलाके में भारी संख्या बल में सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। हिमांशु मिश्रा के साथ राहुल कुमार सिंह, सहारनपुर आज तक।
6: मस्जिद गिराने पर विपक्ष सरकार को टारगेट कर रहा है। विपक्ष का सवाल यह है कि आखिर ऊपर की अदालत के फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया गया? आखिर प्रशासन को मस्जिद गिराने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी?
0: सहारनपुर में जिला कलेक्टर के ऑफिस की ये तस्वीरें यूपी में सियासी जंग का नया अखाड़ा बन गई हैं। यूपी में जारी सनातन की सियासत पर अब अखिलेश यादव सवाल कर रहे हैं।
7: वो सनातनी कभी नहीं हो सकते हैं जो दूसरे धर्म के सम्मान न करते हों। वो सनातनी कभी नहीं हो सकते जो दूसरे की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हों। वो सनातनी कभी नहीं हो सकते, और एक सच्चा हिंदू कभी दूसरे का अपमान नहीं कर सकता है। हमने तो यही सीखा है सनातन धर्म में।
0: विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आखिर मस्जिद को गिराने की इतनी जल्दी क्या थी? क्या ऊंची अदालत के फैसले का इंतजार प्रशासन नहीं कर सकता था? विपक्ष योगी सरकार पर जानबूझकर मस्जिदों को टारगेट करने का आरोप लगा रहा है।
7: ये क्यों हो रहा है ये सब? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम के धन में ये चोरी करते हुए पकड़े गए, इसलिए क्रिमिनल एंगल दे रहे हैं जानबूझ कर। क्या हाईकोर्ट में न्याय नहीं मिल सकता था? क्या सुप्रीम कोर्ट में वो नहीं जा सकते थे अपील के लिए? वो अधिकारियों ने मिलकर के सरकार के सारे पर ये काम किया कि जिससे अगले कोर्ट में उन्हें न्याय न मिल जाए।
8: बीजेपी को देश के प्रधानमंत्री को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लफ्ज मस्जिद से नफरत है, इसीलिए मस्जिद को देखते ही इनके दिलो दिमाग में दर्द शुरू हो जाता है। अरे आपके दिलो दिमाग में दर्द शुरू होगा, हो सकता है वो आपका प्रॉब्लम है, आप मस्जिद को की तरफ देखना नहीं चाहते, उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहते, वो आपका प्रॉब्लम है, मगर आपको देखना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमको दिया गया है।
0: उधर बीजेपी का कहना है कि कोर्ट के फैसले पर एक्शन हुआ है, जिसे धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए।
9: जहां तक सहारनपुर की घटना के संदर्भ में है, वो एजेंसीज और सरकार की जो भी डिपार्टमेंट है वो विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर किसी प्रकार का राजनीतिक नजरिया से देखने की जरूरत है, या किसी भी बिल्डिंग को उसकी धार्मिक पहचान से देखने की जरूरत है। किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर हो, उसे सिर्फ इस दृष्टि से देखना चाहिए कि वो कानूनी है अथवा गैर कानूनी है।
0: इस सियासत के बीच एक दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया था।
10: इनकी आस्था बाबर और औरंगजेब में होगी, क्या वे आपकी आस्था को सम्मान दे पाएंगे? ये बाबरी और औरंगजेब के अनुयायी जहर घोलने का काम फिर से करने जा रहे हैं।
0: यूपी में चुनाव है, ऐसे में भले ही मस्जिद सहारनपुर में टूटी, लेकिन इसकी गूंज यूपी के राजनीतिक गलियारों में लंबे समय तक सुनाई देगी। हिमांशु मिश्रा के साथ राहुल कुमार सिंह, सहारनपुर आज तक।
6: उधर यूपी में एक सियासत स्कूलों को लेकर भी लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी ने शिक्षक दिवस के बहाने बीजेपी को घेरने के लिए प्लान तैयार किया है।
11: दो दिन पहले ही लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और सीजेपी नेता आशुतोष रांका की मुलाकात हुई। दोनों ओर से दावा हुआ कि मुलाकात में किसी सियासी एजेंडे पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन इस मुलाकात के ठीक बाद समाजवादी पार्टी ने जिस नए चुनावी एजेंडे की ओर कदम बढ़ाया, वो कुछ अलग ही इशारा कर रहा है। दरअसल यूपी के चुनावी माहौल के बीच अब समाजवादी पार्टी ने शिक्षा को बड़ा मुद्दा बनाकर योगी सरकार को घेरने का प्लान तैयार किया।
12: और यहाँ जितने हमारे साथी खड़े हैं, वो जानते हैं होंगे कि एक शिक्षक के साथ इस सरकार का व्यवहार क्या था। केवल एक शिक्षक के साथ नहीं, एक दुखी माँ के साथ। एक दुखी माँ अपने दुख में जब आई थी तो सोचो क्या कह रही थी सरकार, कि हमें भाषण नहीं सुनना है तुम्हारा, बहुत हो चुका भाषण। इसलिए हमारा समाज और देश तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर जाए। जो कोई भी कहता विकसित भारत तब बनेगा जब ईमानदारी से शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा।
13: ने शासन की ओर से कहा कि भाई हर बच्चे को हम 2 यूनिफॉर्म देंगे, बैग देंगे, बुक्स देंगे, शूज देंगे, सॉक्स देंगे और स्वेटर भी उपलब्ध करवाएंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज के दिन पे हमारी सरकार 1,60,00,000 बच्चों को इस सुविधा उपलब्ध करवा रही है। ड्रॉप आउट रेट जो 19-20% था, आज मुझे प्रसन्नता है कि ड्रॉप आउट रेट को हम 19-20% से घटा करके 3% से नीचे लाने में हमने सफलता प्राप्त की है।
11: जिसके तहत समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारी आज से 11 सितंबर तक प्रदेश में पाठशाला पुकारे अभियान चला रहे हैं। इस दौरान यूपी में बंद हुए प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों का सम्मान कार्यक्रम किया जा रहा है। ये कार्यक्रम बंद स्कूलों के आसपास ही आयोजित किए जा रहे हैं।
14: ये सभी वो बच्चे हैं जो कि आसपास रहते हैं गोमती नगर के एरिया में। इनका दावा है अपना कि चाहते हैं कि स्कूल्स खुले, जिससे कि ये स्कूल जा सके। आज समाजवादी पार्टी यहां पर पहुंचकर इनको बुक, कॉपी, पेंसिल, बैग, पीडीए की पाठशाला चला रही है और मौके पर इन सभी बच्चों को वो हर शिक्षा का जो कागज है वो उपलब्ध करा रही है, जो दावा किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि सरकार ने उसको उपलब्ध नहीं कराया है, वह समाजवादी पार्टी उपलब्ध कराकर ये पीडीए पाठशाला 5 सितंबर से कैंपेन के तौर पर पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में चला रही है।
11: यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। कई मुद्दों पर विपक्ष और सरकार आमने सामने है। अब समाजवादी पार्टी ने शिक्षा व्यवस्था पर यूपी सरकार की घेराबंदी की तैयारी की है।
15: प्रदेश में तमाम प्राइमरी और मिडिल स्कूल बंद कर दिए गए, जिससे ग्रामीण अंचल में गरीबों के, किसानों के बच्चों के लिए पाठशालाएं थी, बंद करके इन्होंने अन्याय किया।
11: उधर इस अभियान ने सीजेपी नेताओं से अखिलेश की मुलाकात के मुद्दे को और गर्म कर दिया, बीजेपी से लेकर हमलावर हो गई।
16: अब देखिए, नेता हैं, सीजेपी वाले भी अपना नेता अग्री कर रहे हैं, मिले होंगे, मुझे उस पर कोई कमेंट नहीं करना।
11: यूपी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, कानून व्यवस्था पर पहले ही तल्खी बड़ी हुई है। अब समाजवादी पार्टी के अभियान से सूबे की सियासत में नई जंग छिड़ती दिख रही है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
6: और अब बात करेंगे कंगना रनौत की, जो अधिकारियों पर जमकर बरसी हैं। अपने लोकसभा क्षेत्र मंडी में कैसे कंगना ने लगाई है क्लास, अभी देखें।
17: मंडी में दिशा कमेटी की बैठक में सांसद कंगना रनौत पहुंची तो अधिकारियों की जमकर क्लास ली।
18: ये जो फालतू के जुमले है ना, मुझे मत देना, ये मुझे हर दिशा कमेटी में जुमले मिल रहे हैं। पिछली बार भी जब मैंने एमपी लैट के बारे में, आज दिशा कमेटी इज आल्सो रेगुलर, जब भी मैंने एमपी लैट के बारे में पूछा था तो मुझे कहा था कि देयर इज एब्सोल्युटली नो हिकअप और हम लोगों का जो है 90।
17: अधिकारियों के कामकाज को लेकर कंगना ने सवाल खड़े किए। सांसद ने सरकारी फंड के उपयोग पर भी नाराजगी जताई। सांसद ने चेतावनी देते हुए कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों पर पूरे देश की नजर है और विभागीय लापरवाही से गलत संदेश नहीं जाना चाहिए।
18: ये क्या है, महीना चला गया, दो महीने चले गए, छह महीने चले गए, साल चला गया, व्हाट इज दिस? जो भी हमने पिछली बार बात की है, अगर वो इंप्लीमेंट नहीं हुई है, then there will be serious implications of that. That person is going to be noted and I will send the report to center. Enough of enough. I am not going to slow down because of your speed. You will have to catch up with me.
17: कंगना का कहना है कि अधिकारी उनकी बातों को हल्के में ले रहे थे, ऐसे में उन्हें फटकार लगाना जरूरी था।
19: तो मैं कहती हूँ बाबू लोग जो हैं, उनकी जो एक जैसे बस कुर्सी पीटने की आदत पड़ चुकी है, उसको देखकर जो है चिंताजनक है ये चीजें, क्योंकि अब मैंने काफी जो इनकी मीटिंग्स है बहुत ही हर तरीके से मैंने इनसे बात करके देखी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं मेरे जो इनसे बात करने का तरीका है उसको लेकर ये ज्यादा ही मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं।
17: कंगना ने प्रदेश सरकार को भी घेरा और अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाया।
19: देखिए, प्रदेश सरकार ने जो है इस जगह का जो है बेड़ा गर्क कर दिया है पूरी तरीके से, और आज जो है लोग बहुत शिकायतें कर रहे थे, चाहे वो पुलिस भी हो गई, अधिकारियों के साथ जो है तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, चाहे वो ड्रग्स की समस्या हो गई, चाहे ऐसे बहुत जितने भी आज हम लोगों ने आपने देखा कहीं करीब चार पाँच घंटे से हम लोग बैठे हुए हैं, तो इसमें हमने हर तरीके की जो बात डिस्कस करी, लेकिन अधिकतर बातों में यही आ रहा था कि जो अधिकारी है जो और जो यहाँ की जो सरकार है वो पूरी तरीके से जो है फेलियर है।
17: बहरहाल कंगना अपने लोकसभा क्षेत्र मंडी में आज फुल एक्शन में नजर आई। धर्मवीर मंडी आज तक।
6: दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान हुई मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया है। अब गिरफ्तारी को लेकर भी घमासान तेज हो गया है।
11: दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन को लेकर ऐसी जंग छिड़ी कि आए दिन इस प्रदर्शन पर नई सियासत सुलगती है, आए दिन नए मुद्दों पर सियासी जंग छिड़ती है। अब नया विवाद है प्रदर्शन में शामिल शख्स पर हमले के केस में हिरासत में लिए गए स्वतंत्र भारद्वाज को लेकर, जिस पर SC/ST एक्ट में केस दर्ज होने का विरोध शुरू हो गया। हिंदूवादी संगठनों के लोग दिल्ली के जंतर मंतर थाने पहुंचे और आरोप लगाया कि स्वतंत्र भारद्वाज को गलत फंसाया गया है।
20: मेरा भाई कोई ऐसा अपराध नहीं किया कि उसको उसके ऊपर पोस्को जैसा एक्ट और SC/ST लगा दिया जाए। जब यही दिल्ली पुलिस, इस दिल्ली पुलिस को यहाँ दल्ला पुलिस बोला जा रहा था, जो दिल्ली पुलिस को गाली दिया जा रहा था, जब दिल्ली पुलिस को मारा जा रहा था, तो उस टाइम दिल्ली पुलिस कहाँ गई थी? उनको गिरफ्तार करें ना, जो ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के तिरहमी का समोसा खिला रहे हैं, उनको गिरफ्तार करिए। हमेशा भगवान राम को गाली देती है, हमेशा सनातन धर्म पे गलत टिप्पणियां करती है, उस टाइम दिल्ली पुलिस कहां चली जाती है? स्वतंत्र भारद्वाज ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके ऊपर एससी एसटी एक्ट लगा दिया गया है।
1: भारद्वाज पे आप एससी एसटी पोस्ट को लगा रहे हो तो उन देश विरोधी ताकतों, जो देश विरोधी लोग थे, जो ये कह रहे थे कि देश तोड़ने की बात कर रहे थे, उन पे यूएपीए लगाइए ना। जब सौरभ दास ने खुद एक्सेप्ट किया कि जब जो प्रोटेस्टर है उन पर जो भी मुकदमे हुए सरकार वापस ले, नहीं तो हम मार्च करेंगे।
11: थाने पर इकट्ठा हुए हिंदूवादी संगठनों के लोग एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। दावा है कि भीड़ के दबाव में केस में नई धाराएं जोड़ी गईं।
21: स्वतंत्र भारद्वाज देश का एक भटका हुआ युवा साथी है। स्वतंत्र भारद्वाज को मानसिक चिकित्सा की जरूरत है। स्वतंत्र भारद्वाज जैसे कई साथी प्रधानमंत्री मोदी की बातों पर आके गुमराह हो गए थे और ऐसे लोगों पर एक मेरे को लगता है एक साइकोलॉजिकल हेल्प की भी इनको ज़रूरत है, साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। किस तरीके से वो बयान दे रहे थे, कड़े से लोगों को मार रहे थे, उनके अंदर की नफरत को ख़त्म करना है।
22: अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी गुनाह में लिप्त होगा तो देश के संविधान के अनुसार, देश की संसद के द्वारा बनाए गए नियम और कानून के हिसाब से सरकार काम करेगी और सरकार पूरी तरह वचनबद्ध है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उसका कंप्लायंस करते हुए, जांच करते हुए, जो भी उसमें कहीं भी गुनाहगार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इसका हम स्वागत करते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति बचना नहीं चाहिए जो व्यक्ति अपने आप को संविधान से और देश से ऊपर समझता हो अपने आप।
11: उधर स्वतंत्र भारद्वाज को हिरासत में लिए जाने पर सियासत भी गरमाई हुई है। विपक्षी दलों का हमला जारी है, वहीं सत्ता में शामिल पार्टियां भी सदा हुआ बयान दे रही हैं। जंतर मंतर पर पिटाई का मामला गरमाया हुआ है, नई सियासत शुरू हो गई है और ये लड़ाई जल्द थमती नहीं दिख रही है। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ अंशुल सिंह आज तक।
6: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
23: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
24: आपके जीवन में माता पिता का सुख कब रहता है? कब आपके संबंध माता पिता से खराब हो जाते हैं? माता पिता का सुख पाने के लिए, माता पिता को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: सॉरी।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

टीसी के शताब्दी समारोह में विपक्ष पर प्रधानमंत्री का ताबड़तोड़ हमला, कहा सच की हुंकार के आगे नहीं टिकेगी झूठ की गूंज, माए बाप कल्चर से लेकर दिमागी नक्सल तक का किया जिक्र। अंदरूनी कलह के बीच पंजाब कांग्रेस में बदला, भूपेश बघेल की जगह सचिन पायलट को बनाया गया है प्रभारी, सुरजेवाला को मिली गुजरात की जिम्मेदारी। सहारनपुर मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन से बढ़ गया है सियासी टेंशन, अखिलेश और मायावती ओवैसी ने उठाए हैं सवाल, बीजेपी ने दिया कानूनी आदेश का हवाला। बिहार में उफान पर गंगा, 11 जिलों पर मंडराया बाढ़ का खतरा, 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, दूसरी नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर। और महिला एशिया कप में भारत की शानदार जीत, पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया, टीम इंडिया को मिला था 56 रन का लक्ष्य।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे कि जीवन में किन ग्रहों से, किन वजहों से आपको माता पिता का सुख मिलता है और माता पिता का सुख पाने के उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। हम आज बात कर रहे हैं माता पिता के सुख के बारे में। जीवन में कब माता पिता का सुख मिलता है, कब नहीं मिलता, और माता पिता का सुख पाने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि माता पिता के सुख का ग्रहों से क्या संबंध है। किसी भी कुंडली में सूर्य पिता के बारे में बताता है। इसके अलावा कुंडली का नवम भाव और दशम भाव भी पिता से संबंध रखता है। कुंडली में चंद्रमा से माता की स्थिति देखी जाती है और चतुर्थ भाव से भी माता की स्थिति पता चलती है, स्पष्ट होती है। इन ग्रहों या स्थानों के मजबूत होने पर माता पिता का सुख जीवन में मिल जाता है। सूर्य नवम भाव और नवम भाव का स्वामी, ये पिता के सुख के बारे में बताएंगे। चंद्रमा चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी, ये माता के सुख के बारे में जानकारी देंगे। तो इनको देख करके माता पिता के सुख के बारे में पूरा पूरा अनुमान लगाया जा सकता है। माता पिता के सुख पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर के नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, परिवार में खुशहाली आएगी। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।
मिथुन राशि, रोजगार में सफलता मिलेगी, नया काम शुरू होगा, खान पान का ध्यान बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। बहुत लोगों के जीवन में ऐसा होता है या ऐसा देखा गया है कि उनके संबंध पिता के साथ खराब होते हैं, इसलिए पिता का सुख जीवन में नहीं मिलता। तो पिता के साथ संबंध कब खराब होते हैं? कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति कमजोर है, सूर्य की स्थिति ताकतवर नहीं है, तो पिता के साथ संबंध खराब होंगे। सूर्य का संबंध अगर शनि के साथ बने तो संतान और पिता के आपसी संबंध खराब होंगे। कुंडली के नवम भाव का स्वामी अगर गड़बड़ हो, गड़बड़ स्थिति में हो, तो पिता के साथ संबंध खराब होंगे। सूर्य भी कुंडली में गड़बड़ हो और नवम भाव भी अगर गड़बड़ हो तो पिता का सुख जीवन में बिल्कुल नहीं मिलता। पिता का सुख पाने में लगातार दिक्कतें जीवन में बनी रहती हैं। अगर आपके संबंध पिता से ठीक नहीं हैं, पिता का सुख जीवन में नहीं मिल रहा है, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिए, सादा पानी, प्लेन वाटर। इसके बाद सूर्य मंत्र का जप करिएगा 108 बार, ओम आदित्याय नमः। कुंडली का जो नवम भाव है और जो नवम भाव का स्वामी है, इसको मजबूत करने का प्रयास करिए। और घर का मुख्य द्वार सूर्य होता है, इसीलिए घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखिए। अगर कुंडली में ज्यादा खराबी है, सूर्य भी गड़बड़, नवम भाव भी गड़बड़, उसका स्वामी भी गड़बड़, तो रविवार को गुड़ का दान करिएगा। अगर ऐसा निरंतर करें और सूर्य

आपको जीवन में प्राप्त होगा। आगे माता के सुख पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।

से बचाव करें, धन खर्च पर ध्यान दें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी, करियर में सफलता मिलेगी। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के

कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप

आज का पहला प्रश्न विकास जी ने हमें लिखा है और विकास जी हमें जम्मू से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 जनवरी सन 2000, जन्म का समय शाम के 4 बजे, जन्म का स्थान है जम्मू। विकास जी कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना बनती है? विकास जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप बैंक की तैयारी करें, फाइनेंशियल सेक्टर की तैयारी करें या प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें तो इन क्षेत्रों में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। साल 2027 आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, अगर आप परिश्रम करेंगे तो आपको लाभ होगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और सुबह के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। अब जानते हैं कि माता के साथ रिश्तों में कब गड़बड़ी होती है, कब जीवन में माता का सुख नहीं मिल पाता। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा की स्थिति कमजोरी वाली है, तो माता के साथ संबंध गड़बड़ हो सकते हैं। अगर चंद्रमा पाप ग्रहों से पीड़ित है तो माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता और माता के साथ संबंध भी अच्छे नहीं रहते। अगर कुंडली का चौथा भाव खराब हो तो माता के साथ अटैचमेंट नहीं होता और माता के साथ संबंध गड़बड़ होते हैं। चौथा भाव भी गड़बड़ हो, चौथे भाव का स्वामी भी गड़बड़ हो तो माता के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे। कभी कभी रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। चंद्रमा भी खराब हो, चतुर्थ भाव भी खराब हो तो माता का सुख नहीं मिलता। माता की आयु या तो लंबी नहीं होती या जीवन में माता के आशीर्वाद की कमी बनी रहती है। तो कुल मिलाकर चंद्रमा, चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है माता के साथ संबंधों के लिए और माता का सुख पाने के लिए। क्या उपाय करें कि माता के साथ संबंध बेहतर हो? शुक्ल पक्ष की रात के समय में जो 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं उसमें रात में चंद्रमा को जल अर्पित करिएगा। रोज रात में 9 बजे के बाद कम से कम चंद्रमा के मंत्र का जप करें, ओम श्रांग श्रींग श्रौंग सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जप करें। सोमवार को शिव जी के मंदिर जाएं, उनको सफेद फूल और जल अर्पित करें। कुंडली का चतुर्थ भाव कैसा है, उसका स्वामी कैसा है, इसको देख करके मजबूत करने का प्रयास करें। अगर माता के साथ संबंध बहुत ज्यादा गड़बड़ हैं या माता का सुख बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है तो सोमवार को सफेद चीज का, जैसे चावल, चीनी या दूध का दान करना अच्छा होगा। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे
आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, सेहत अच्छी बनी रहेगी, धन की प्राप्ति होगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज

वृश्चिक राशि, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, वाहन सावधानी से चलाएं, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी, करियर में सफलता मिलेगी। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। देखिए, सामान्यतः हम सब चाहते हैं कि हमारे माता पिता की आयु लंबी हो और हमारे माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी माता हमेशा स्वस्थ रहें, उनको स्वास्थ्य की दिक्कतें ना हो, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करिए और जल अर्पित करने के बाद 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिए और जप करने के बाद प्रार्थना करिए कि मेरे माता की आयु की रक्षा हो और उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे। सोमवार को ही जब आप मंत्र जप कर लें सुबह के समय, इसके बाद सफेद वस्तुओं का दान करिएगा किसी निर्धन व्यक्ति को और ये प्रार्थना करिएगा कि इस दान का फल मेरी माता को मिले। दान केवल सप्ताह में एक दिन करना है, जल रोज चढ़ाना है, मंत्र का जप रोज करना है। अगर आप ऐसा करें तो आपके माता का स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। अब बात करते हैं पिता की। पिता का स्वास्थ्य कैसे बेहतर रखा जाए? रोज सुबह स्नान करके जितना जल्दी संभव हो सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। जल अर्पित करने के बाद ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा, प्रार्थना करिएगा कि मेरे पिता की आयु की रक्षा हो और मेरे पिता का स्वास्थ्य बेहतर हो। इसके अलावा हर रविवार को गुड़ का, गेहूं का या गेहूं के आटे का दान करिएगा। अगर ऐसा नियमित रूप से करें और अपने पिता के लिए प्रार्थना करें तो आपके पिता के स्वास्थ्य में और जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज के दिन की विशेषता क्या है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।

उद्धार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, उपहार सम्मान की प्राप्ति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाब।

के रुक सकते हैं। नौकरी में लापरवाही ना करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, क्या ऐसा है? देखिए, आप अपने घर में शिवलिंग रख सकते हैं लेकिन उसके कुछ नियम हैं। शिवलिंग 12 अंगुल यानी 6 इंच से बड़ा नहीं होगा। घर में पारद शिवलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग रखना बेहतर है और जब घर में शिवलिंग रखें तो आप नियमित रूप से उसके ऊपर जल अर्पित करते रहें, ये आपके लिए आवश्यक है। और अगर घर से कहीं बाहर जाएं तो शिवलिंग को जल में डुबा करके जाइएगा, बिना जल के आप शिवलिंग घर में नहीं रख सकते। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 2, मानसिक स्थिति बेहतर होगी। नंबर 3, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 6, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 7, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 8, करियर में कुछ बदलाव होगा। नंबर 9, धन की प्राप्ति होगी। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा।

उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में एक बार सुंदर कांड का पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपके करियर की बाधाएं दूर होंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न प्रेरणा ने हमें लिखा है और प्रेरणा हमें बेंगलोर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 जुलाई 1985। जन्म का समय सुबह के 6 बजे। जन्म का स्थान है लखनऊ। प्रेरणा कह रही हैं कि मैंने अभी अभी नौकरी बदली है लेकिन मुझे नौकरी में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या मुझे दोबारा नौकरी बदलनी चाहिए? करियर में मुझे कैसा निर्णय लेना चाहिए? प्रेरणा, अभी बार बार नौकरी बदलने का उचित समय नहीं है। ज्योतिष के हिसाब से मैं कहूंगा कि आप लगभग 20 सितंबर तक शांति से एडजस्ट करके रहिए। उसके बाद इसी नौकरी की स्थितियां आपके लिए बेहतर हो जाएंगी और आने वाले समय में इसी नौकरी में आप तरक्की करेंगी। नौकरी बदलने का विचार फिलहाल ना करें। एडजस्टमेंट में आपको प्रॉब्लम ना आए एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, पान का पत्ता खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए जाना है तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो लाल रुमाल साथ में रखिएगा, लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

कुंभ राशि वालों के लिए कार्यों में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा। वृषभ राशि वालों के लिए रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। और आज सावधान रहना होगा वृश्चिक राशि के लोगों को, बेवजह की चिंताएं और तनाव बढ़ सकते हैं। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।

क्रिकेट के मैदान से भारत के लिए गुड न्यूज, महिला एशिया कप में भारत की शानदार जीत, पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। पाकिस्तान की पूरी टीम महज 55 रन पर सिमट गई, टीम इंडिया ने 8.4 ओवर में 3 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल किया। महिला एशिया कप में भारत की जीत की हैट्रिक, टूर्नामेंट के लिए एक भी मैच नहीं हारा भारत, 6 पॉइंट्स के साथ अंक तालिका में टॉप पर। भारतीय स्पिनर्स की फिरकी में फंसी पाकिस्तानी टीम, श्री चरणी और प्रेमा रावत ने 3-3 विकेट झटके, दीप्ति शर्मा को 2 सफलता। हरमनप्रीत कौर T20 में 150 मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली कप्तान बनी, 10 सितंबर को भारत का सेमीफाइनल मैच। बिहार में लगातार गहराता जा रहा है बाढ़ का संकट, गंगा और गंडक के उफान से कई जिलों में हालात बिगड़े। बिहार के 11 जिलों में 16 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। भारी बारिश के बीच पटना के गांधी घाट पर गंगा नदी का जलस्तर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचा। गंगा और पुनपुन नदी के बढ़ते हुए जलस्तर से पटना के ग्रामीण इलाकों में कई स्थानों पर पानी भरा, बाढ़ के कारण सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित। मुंगेर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, गंगा के खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और जिले के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर। गंगा के बढ़ते जलस्तर का असर मुंगेर की 38 पंचायतों पर भी पड़ा है, करीब 3,75,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। पटना के आसपास बाढ़ पीड़ितों से पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने मुलाकात की, उन्होंने हजारों प्रभावित लोगों को 500-500 रुपए की आर्थिक सहायता देकर मदद भी की। बिहार के खगड़िया में गंगा का रौद्र रूप, एक दर्जन से ज्यादा पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं, ऊंचे जगहों पर जाने के लिए लोग मजबूर हुए। बेगूसराय में गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद ग्रामीण इलाकों का रिहायशी इलाकों में घुस गया है अब पानी और लोग कमर तक पानी में आने जाने के लिए मजबूर हुए। सीएम सम्राट चौधरी ने बेगूसराय के बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण किया, बोले स्थायी समाधान के लिए बनेंगे रिंग बांध और नए स्ट्रेच। गंडक नदी के लगातार कटाव ने बगहा के दियारा इलाके में ग्रामीणों की मुश्किलों को बढ़ा दिया, कई परिवार अपने घर खाली करके सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर हुए। नेपाल में भारी बारिश के बाद उफान पर है गंडक, हाजीपुर शहर से 8 वार्ड्स में घुस गया है पानी, बढ़ा बाढ़ का खतरा। हाजीपुर में गंडक नदी के तेज बहाव से निचले इलाकों में तबाही, पलायन करने को मजबूर हुए लोग, स्थिति और भी ज्यादा बदतर होने की संभावना। राजस्थान के बारा में पिछले 2 दिनों से हो रही झमाझम बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, सिरसा नदी दर्जनों नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बारा की जीवनदायिनी कही जाने वाली रैपी नदी भी पूरे उफान पर है, लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर बाइक और पैदल पुल पार करने के लिए मजबूर। राजस्थान के धौलपुर में भी लगातार बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव, आवाजाही में लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के सतारा में कोयना डैम 100% भरा, 6 गेट खोले गए, 4,232 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया। ललितपुर में लगातार हो रही बारिश के चलते जिले में स्थिति सभी 14 बांध हुए हैं, लबालब 12 बांधों के गेटों को खोलकर निकाला जा रहा है पानी। पठानकोट में बारिश से सड़कों पर भर गया है पानी, सरकारी हॉस्पिटल मेन गेट तक पानी भरा, नालों की सफाई न होने के कारण मरीजों को बहुत दिक्कत है। मुर्शिदाबाद में भारी बारिश से मिट्टी धस गई है, न्यू फरक्का के पास रेल सेवा प्रभावित, रेल ट्रैक धसने से कई ट्रेनें रद्द हो गई, फरक्का में 30 से ज्यादा घंटे से युद्ध स्तर पर लगातार मरम्मत जारी। वैशाली में राघोपुर में बाढ़ का संकट गहराया, गंगा का जलस्तर बढ़ने से दियारा इलाके में बढ़ गई है परेशानी। राघोपुर में गांव तक पहुंच गया गंगा का पानी, ग्रामीण सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर। चमोली में भारी बारिश का असर, गोपेश्वर चोपता मार्ग बैरागना के पास भारी मलबा आने से सब कुछ बंद, 3 दिनों से लगातार भूस्खलन और मलबे में प्रभावित है मार्ग, सड़क पर आवाजाही पूरी तरह से ठप हुई। बागेश्वर में भारी बारिश के बाद पहाड़ दरके हैं, लाहौर मिकिला खलपट्टा सड़क पर मलबा और बोल्डर का बौछार। दिल्ली यूनिवर्सिटी के SRCC के शताब्दी समारोह में विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी ने ताबड़तोड़ हमला बोला, सच की हुंकार के आगे नहीं टिकेगी झूठ की गूंज। अलग ही अंदाज में निशाना साधते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी, कहा जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं कुछ लोग फूफा बनकर सवाल करने लगते हैं, लेकिन भारत ने ऐसे लोगों को जवाब दे दिया है। 15 अगस्त के भाषण का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा लाल किले से होम्योपैथी की दवा दे दी थी, जिसके बाद से सभी दिमागी नक्सल निकलकर बाहर आ गए।
देश के विकास का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि आज 2013 के मुकाबले देश आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से कहीं और ज्यादा सुरक्षित और मजबूत। 7.8 जीडीपी ग्रोथ पर प्रधानमंत्री ने आलोचकों पर साधा निशाना कहा फ्रेजाइल 5 वाले ये आंकड़े पचा नहीं पा रहे। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद कांग्रेस का आरोप छात्रों की गूंज से प्रधानमंत्री घबराए एसआरसीसी में भाषण सिर्फ एक पीआर कवायद थी। प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस का निशाना कहा गिलास आधा भरा होने का मतलब है बाकी आधा हिस्सा पीआर से भरा है। अंदरूनी कला के बीच पंजाब कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ भूपेश बघेल की जगह सचिन पायलट को बनाया गया है प्रभारी। 2027 में यूपी चुनावों से पहले बीजेपी के विनोद तावड़े ने एसपी के पीडीए नारे पर तंज कसा कहा एसपी के पीडीए का मतलब है पराया धन अपना। शुद्धिकरण विवाद पर कांग्रेस ने सोमवार को दलित सांसदों की बैठक बुलाई सीएम आवास तक विरोध मार्च निकालेंगे। मंडी जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में बीजेपी सांसद कंगना रनौत का कड़ा रुख काम है देरी पर उन्होंने ऑफिसर्स को कड़ी फटकार लगाई। सांसद निधि के पैसे खर्च नहीं होने पर पैसों के हेरफेर पर अधिकारियों को जमकर सुनाया कहा उन्हें सिर्फ मैज एक एक्ट्रेस नहीं समझा जाए वो लापरवाही पर एक्शन भी लेना जानती हैं। बीजेपी प्रमुख नितिन नवीन ने 9 सितंबर को 2 दिन के लिए हल्द्वानी का दौरा करने की बात कही बैठकों का भी दौर जारी रहेगा। गृहमंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के गोवा के दौरे पर रहेंगे वेस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे। भवानी करौली पर बनी फिल्म हनुमान अंश ने इतिहास रच दिया है 30 दिन में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 100 करोड़ के पार। सिर्फ 2 करोड़ के बजट में बनी हनुमान अंश फिल्म ने अपने बजट से 50 गुना कमाई की थिएटर्स में उमड़ रही है भीड़। उत्तराखंड में हनुमान अंश टैक्स फ्री हुई सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री हनुमान अंश की टीम को भी बधाई दी है। मिर्जापुर द मूवी का बॉक्स ऑफिस पर तहलका फिल्म ने 2 ही दिन में 50 करोड़ से ज्यादा के क्लब में एंट्री मारी है ग्रॉस कलेक्शन 68 करोड़ के पार। मिर्जापुर द मूवी ने बनाया रिकॉर्ड 2026 की चौथी सबसे बड़ी ओपनर बनी है मिर्जा द मूवी धुरंधर 2 टॉक्सिक और बॉर्डर 2 है टॉप 3 फिल्में। तेलुगु रोमांटिक ड्रामा चक्कोरा लूना वुला बर्ड का टीजर आउट हुआ है रावण कुमार मलाइका वसुपाल अनुष्का लोहार मुख्य भूमिका में फिल्म 8 अक्टूबर को रिलीज होगी। आनंद देवकोंडा वैष्णवी चैतन्य की एपिक का धमाकेदार ट्रेलर आउट हुआ ट्रेलर में देखी काजोल लाइफ कॉलेज लाइफ नजर आई दोस्ती और रोमांस की झलक भी 11 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। एआई के दौर में भारतीय सिनेमा की नई छलांग ट्रिनिटा एआई प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह तैयार किया गया द्वारिका प्रोजेक्ट समुद्र के भीतर मौजूद रहस्यमय द्वारिका नगरी बनेगी कहानी का अहम हिस्सा। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की थर्मन की शूटिंग का शेड्यूल पूरा हुआ डॉक्टर के किरदार में नजर आएंगे रजनीकांत। शिकागो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बांग्ला फिल्म ओनेक दिन पोर की एंट्री हुई है 17 सितंबर को दिखाई जाएगी फिल्म। केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विन ने नॉर्थ ईस्ट में रेलवे नेटवर्क की शानदार तस्वीर साझा की है बैरवी सेरांग के रेल लाइन का भव्य ड्रोन नजारा नजर आया। कुतुब मीनार से ऊंचा बनाया रेल पुल करीब 114 मीटर है ऊंचाई पुल और सुरंग से गुजरती ट्रेन की मनमोहक वीडियो सामने आया। पुंछ के मेंढर सेक्टर में आर्मी स्कूल में रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ स्कूली बच्चों ने शानदार प्रस्तुति से बांधा समा। स्कूली बच्चों ने नृत्य का भव्य प्रस्तुति से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया सेना की ओर से छात्रों को ट्रॉफी देकर किया गया था सम्मानित। बीजेपी सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने संबलपुर में ऋषि बिल्डिंग की रखी आधारशिला ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी परिसर में बनेगा स्किल हब युवाओं को मिलेगा इंडस्ट्री आधारित प्रशिक्षण। यूक्रेन की राजधानी की पर 3 दिन तक हमला नहीं करेगा रूस अमेरिकी प्रतिनिधियों की यात्रा के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध विराम का ऐलान किया। अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर रूस के दौरे पर हैं राजधानी मॉस्को में पुतिन के दूत ने गर्मजोशी से स्वागत किया। अस्थायी सीज फायर से पहले यूक्रेन की राजधानी कीव और ओडिशा पर रूस ने किया हवाई हमला कई जिलों में 9 मंजिला आवासीय इमारत के क्षतिग्रस्त होने की खबर 2 लोग घायल हुए। अमेरिका ने ईरानी तेल टैंकर पर किया है हमला खार्ग आइलैंड के पास दागी 4 मिसाइलें हमले के बाद मच गया था हड़कंप।
दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने की जवाबी कार्रवाई, हिजबुल्ला के ठिकानों को बनाया गया निशाना, इजरायली सेना ने जारी किया है वीडियो। अमेरिकी राजदूत माइक हकावी का बड़ा बयान, कहा गजा के लोगों को जबरदस्ती नहीं हटाया जाएगा, जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें जाने की आजादी मिलनी चाहिए। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्वांग ने राजधानी हनोई में वियतनाम के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की, दोनों ही देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और रक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या हो गई 1344, करीब 5000 लोग अभी भी लापता हैं। बाढ़ में 10 दिन के बाद बचाव दलों ने एक चीनी नागरिक और एक महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। अवैध प्रवासियों के खिलाफ इंग्लैंड के डोवर शहर में अनोखा प्रदर्शन, काले कपड़े पहनकर चेहरा ढके हुए नजर आए सैकड़ों प्रदर्शनकारी। यूएस ओपन में सेरेना और वीनस विलियम्स की हार्ड टाई ब्रेक में 5-0 की बढ़त के बावजूद गवाया मैच।

0: और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से तंज कसाया और निशाना साधा है विपक्ष पर। और आपको बता दें कि एसआरसीसी पहुंचे हुए थे, लगभग 48 मिनट तक प्रधानमंत्री यहां छात्रों के साथ संवाद कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने तमाम मुद्दों का जिक्र करते हुए एक बार फिर से निशाने पर लिया विपक्ष को। तो कार्यक्रम के दौरान छात्रों को संबोधित करते करते प्रधानमंत्री ने उन तमाम बातों का जिक्र किया जिसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे, चाहे वो जीडीपी हो या फिर जो दिमागी नक्सल वाला बयान उनकी तरफ से दिया गया था लाल किले की प्राचीर से, उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि होम्योपैथी की तरह ये बहुत गहरा और त्वरित असर इसका नजर आया था। सच की हुंकार के आगे झूठ नहीं टिक पाएगा, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा दिमागी नक्सल के लिए होम्योपैथी की डोज उन्होंने दी थी लाल किले से और उसका असर सही नजर भी आया। अब एक एक करके सारे दिमागी नक्सल बाहर आ रहे हैं।
1: साथियों, आज 2013 के मुकाबले देश आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कहीं अधिक सुरक्षित है, लेकिन ये देखकर कुछ लोगों की छटपटाहट बढ़ रही है, बौखलाहट बढ़ रही है। अभी 15 अगस्त का मेरा भाषण आपने सुना होगा, ऐसे लोगों के लिए मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी का डोज दिया था, होम्योपैथी की गोली, छोटी सी गोली दी थी लाल किले से। और आप जानते हैं होम्योपैथी के कहते हैं कि स्वभाव ऐसा है कि होम्योपैथी की दवाई जब शुरू करते हैं तो शुरू के दौर में बीमारी एकदम से ज्यादा बढ़ जाती है, ये होम्योपैथी का स्वभाव है। तो मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी की गोली दी थी दिमागी नक्सल। ये दिमागी नक्सल होम्योपैथी का इलाज, जैसा मैंने कहा, बीमारी को कुछ समय के लिए और उभार देता है और उसके बाद उसका इलाज शुरू करता है। इसी तरह जैसे ही मैंने दिमागी नक्सल वाली होम्योपैथी की गोली दी, सारे दिमागी नक्सल निकल निकल के बाहर आने लगे और जो इस बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं, अब जनता उनका भी असली रंग देख रही है।
0: और इस पर कांग्रेस की तरफ से जवाब दिया गया है कि राहुल गांधी जिस तरह से छात्रों के साथ संवाद करते हैं उसी को देखते हुए डरकर बीजेपी ने यह कार्यक्रम शुरू किया है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: एक तो एक
5: श्राम

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
3: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
2: असली शहद, असली स्वाद।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: और वही कहाँ गए थे घूमने?
2: JK Maxx.
3: खाना कहाँ से मंगवाया?
2: JK Maxx. Best putty.
4: JK Wall Max.
2: Best primer.
5: JK Maxx.
2: Best paint.
5: JK Maxx.
2: JK Maxx. बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Maxx पेंट्स।
3: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूं?
2: JK Maxx पेंट्स, खुशियों के रंग।
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
2: हम बस कल्पना कर सकते हैं कि यह शहर पहले कैसा रहा होगा।
3: इस मलबे और मिट्टी के नीचे ये पूरा बाजार का हिस्सा जा चुका है। यहाँ पर बिना किसी स्टिक के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
2: ये हब है जहाँ पर सबसे बड़ी तलाश चल रही है। जैसे ही उस बाढ़ को, उस तबाही को, त्रासदी को आते लोगों ने देखा, इसी रास्ते से आगे होकर वो ऊपर की तरफ भागे।
4: कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, बरेली, नेपाल, आज तक।
5: गांधी जी के आंदोलन करने का तरीका क्या आज के समय भी उतना प्रासंगिक है?
6: जो तुम गाली देते हो ना गांधी जी, 70 साल की उम्र में दो लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए, पढ़ लो।
7: जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था जो गांधी जी ने वापस ले लिया था, वो भी तो किसी और की वजह से लिया था। चौरी चौरा में जो हुआ इंसिडेंट, उनसे उनको क्या मतलब था? अगर वो उसको जारी रखते, क्या पता उस समय इंडिपेंडेंस को थोड़ा जल्दी हो जाता।
6: ताली बजाओ इनके लिए, ये ताली डिजर्व करते हैं।

0: सहारनपुर में जिला कलेक्टर के ऑफिस की ये तस्वीरें यूपी में सियासी जंग का नया अखाड़ा बन गई। भारी सुरक्षा बल के बीच परिसर में बनी एक मस्जिद को ढा दिया गया। ये वही मस्जिद है जिसे सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने अवैध घोषित किया था। सहारनपुर कलेक्ट्रेट में 315 वर्ग मीटर जमीन पर बनी ये मस्जिद थी। शिकायत करने वालों ने दावा किया था ये मस्जिद अवैध तरीके से बनाई गई थी। कोर्ट में जब मस्जिद की फाइल खुली तो अदालत ने पाया कि खसरा संख्या 539 सरकारी अभिलेखों में कचहरी कलेक्ट्रेट के नाम दर्ज है। इसी भूमि पर 315 वर्ग मीटर हिस्से पर मस्जिद का निर्माण किया गया था, लिहाजा कोर्ट ने इसे अवैध माना और 30 दिनों के अंदर हटाने का आदेश दिया। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की। अपील खारिज हुई तो प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। उधर पहले मस्जिद तोड़ने की अफवाह उड़ी। तनाव और संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर था। विपक्ष के कई नेता रात को ही सोशल मीडिया लाइव पर आ गए। कार्रवाई के खिलाफ सहारनपुर आ रही कैराना सांसद इकरा हसन को पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया, जिन्हें बाद में हाउस अरेस्ट कर लिया।
1: जब सभी लोग ये चाहते थे कि हम लोग अधिकारियों से बात करें कि इसमें कुछ वक्त दिया जाए, लोग हाईकोर्ट जाना चाहते थे, वो वक्त ना देने की वजह से हम लोगों को यहाँ पर हाउस अरेस्ट किया गया। तमाम जितने भी सहारनपुर जिले के जिम्मेदार लोग हैं सभी को हाउस अरेस्ट किया गया।
0: उधर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इसे संविधान के लिए काला दिन बताया और मामले को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कही।
2: चुनाव की रणनीति से जोड़कर नहीं देखता हूँ, ये हम लोगों के लिए चुनाव का विषय नहीं है, ना हम इसके ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। हमारी मस्जिद शहीद हुई, हमें तकलीफ है और हम अपने दर्द को और अपनी तकलीफ को कोर्ट के सामने बयान करेंगे।
0: विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आखिर मस्जिद को गिराने की इतनी जल्दी क्या थी? क्या ऊंची अदालत के फैसले का इंतजार प्रशासन नहीं कर सकता था? विपक्ष योगी सरकार पर जानबूझकर मस्जिदों को टारगेट करने का आरोप लगा रहा है।
3: क्यों हो रहा है ये सब? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम के धन में ये चोरी करते हुए पकड़े गए, इसलिए क्रिमिनल एंगल दे रहे हैं जानबूझकर। क्या हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिल सकता था? क्या सुप्रीम कोर्ट में वो नहीं जा सकते थे अपील के लिए? वो अधिकारियों ने मिलकर के सरकार के सारे पर ये काम किया कि जिससे अगले कोर्ट में उन्हें न्याय न मिल जाए।
4: बीजेपी को, देश के प्रधानमंत्री को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लफ्ज मस्जिद से नफरत है, इसीलिए मस्जिद को देखते ही इनके दिलो दिमाग में दर्द शुरू हो जाता है। अरे आपके दिलो दिमाग में दर्द शुरू होगा, हो सकता है वो आपका प्रॉब्लम है। आप मस्जिद को की तरफ देखना नहीं चाहते, उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहते, वो आपका प्रॉब्लम है। मगर आपको देखना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमको दिया गया है।
0: उधर बीजेपी का कहना है कि कोर्ट के फैसले पर एक्शन हुआ है जिसे धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए।
5: जहां तक सहारनपुर की घटना के संदर्भ में है, वो एजेंसीज और सरकार की जो भी डिपार्टमेंट है वो विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर किसी प्रकार का राजनीतिक नजरिया से देखने की जरूरत है या किसी भी बिल्डिंग को उसकी धार्मिक पहचान से देखने की जरूरत है। किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर हो उसे सिर्फ इस दृष्टि से देखना चाहिए कि वो कानूनी है अथवा गैर कानूनी है।
0: तनाव और सियासत को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। सहारनपुर से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
6: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach in association with
7: Bharat ki apni electric sawari Sokudo

0: 12 बजे वाली ट्रेन 3 बजे चलेगी। यही है संगीत, बाकी लोग एडजस्ट करें।
1: मेरा संगीत माय वे।
2: गन्ना बड़े सियासत में फंसा हुआ इस समय नहीं,
3: गन्ने की वैल्यू बढ़ गई है, सड़क से उठा के स्टार बना दिया।
4: यही है था, कभी हमने अन्ना को बनाया, कभी गन्ने को बनाया।
1: गन्ने को हल्के में लेते थे, आज गन्ना ज़्यादा बताओ, सबको जूस निकाल दिया भाई।
2: कल को मैंने बोला कि तुम आर्मी वगैरह ज्वाइन करो, उसकी माँ ने कल बोला कि तो ऑफिसर वगैरह बन जाओ, तो उसने कहा क्यों बन जाए, उसने कहा अच्छा लगेगा हमको, मेरा शौक है, अरमान है। उसने मेरा भी अरमान था कि मेरे माता पिता मतलब पिताजी और मम्मी जो है वो ऑफिसर होते हैं, बने कि आप लोग, हम कह रहे तेरे पैदा होने से पहले अपन पैदा हुए थे। तो मैंने कहा तू आर्मी कमांडो वगैरह बन, मैंने ब्लैक कैट कमांडो सब बनते हैं, तो ब्लैक डॉग कमांडो बन जा।

उफान पर गंगा, 11 जिलों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। राजधानी पटना से लेकर भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय तक पानी ही पानी। 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। दिल्ली यूनिवर्सिटी के SRCC के शताब्दी समारोह में विपक्ष पर प्रधानमंत्री का ताबड़तोड़ हमला। का सच की ओंकार के आगे नहीं टिकेगी झूठ की गूंज। माए बाप कल्चर से लेकर दिमागी नक्सल तक का किया जिक्र। अंदरूनी कलह के बीच पंजाब कांग्रेस में बदलाव। भूपेश बघेल की जगह सचिन पायलट को बनाया गया प्रभारी। सुरजेवाला को मिली गुजरात की जिम्मेदारी। सहारनपुर में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन से बढ़ गया सियासी बवाल। अखिलेश मायावती, ओवैसी ने उठाए सवाल। बीजेपी ने दिया कानूनी आदेश का हवाला। और महिला एशिया कप में भारत की शानदार जीत। पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। टीम इंडिया को मिला था सिर्फ 56 रनों का लक्ष्य।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं बड़ी और अहम खबर के साथ, क्योंकि बिहार में यूपी की बात से दोनों ही राज्यों में बारिश और नदियों के उफान ने मुश्किलों को बढ़ा दिया है। कई इलाकों में पानी का जबरदस्त संकट है, तो राहत और बचाव का काम भी लगातार जारी है। ये हम आपको 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। उत्तराखंड की हम जहां बात करें, पहाड़ों पर बारिश और भूस्खलन ने इस कदर कहर बरपाया है कि रास्ते बंद हैं, जनजीवन प्रभावित है, प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। इसके बाद खबर है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की, जिसमें प्रधानमंत्री ने छात्रों को संबोधित किया। युवाओं के साथ संवाद में प्रधानमंत्री ने क्या संदेश दिया, ये भी हम आपको दिखाएंगे। यूपी की एक और बड़ी और अहम खबर, मस्जिद से जुड़े मामले में इलाके में चर्चाएं तेज हो गई हैं। आखिर पूरा विवाद क्या है और प्रशासन का रुख क्या है, ये भी दिखाएंगे। इसके अलावा एक बड़ा दावा, 3,300 करोड़ रुपए के डोनेशन और एक गुमनाम पार्टी के नाम तालाबंद पार्टी पाई गई है, दफ्तर पाया गया, ये पूरी खबर दिखाएंगे। साथ ही कंगना रनौत नाराज क्यों हुई है, क्योंकि कंगना की फटकार को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सियासत तक बड़ी जबरदस्त चर्चाएं हैं। और आखिर में पंजाब की खबर होगी, जहां विरोध प्रदर्शनों ने माहौल को गर्मा दिया है, क्योंकि विधानसभा के इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है। तो एक एक करके तमाम बड़ी और अहम खबरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस बुलेटिन में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की, जहां बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। बिहार के 11 जिले हैं जहां करीब 11 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। गंगा और गंडक के उफान के बाद कई जिलों में हालात और ज्यादा बिगड़े हैं। पटना के दियारा से लेकर बेगूसराय तक, हाजीपुर तक घरों और सड़कों पर पानी ही पानी है। मनेर में गांव का संपर्क टूटा है। कटिहार में बच्चे नाव से स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। आपको यहां सब कुछ पानी से लबालब नजर आएगा। 5 तस्वीरें देखिए, तो चाहे नदी नाले हो या सड़कें, सब कुछ आपको नदियों में तब्दील नजर आएगा। बच्चे नाव से स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। अलग अलग जगहों पर तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो। सबसे ज्यादा बुरे हालात होते हैं जब संपर्क कट जाए।
1: पानी ही पानी डूबे, घर डूबी सड़कें और बाढ़ के बीच जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। बिहार में नदियों का बढ़ता जलस्तर अब गांवों से लेकर शहरों तक मुसीबत बन चुका है। पटना के दानापुर का दियारा गंगा के आगोश में है। छतों से दिख रहा है बाढ़ का ये मंजर, जहां कई पंचायतों में पानी फैल चुका है और सड़कों पर भी गंगा का कब्जा है। बेगूसराय के मट्टीहानी में भी गंगा का पानी घरों में घुस चुका है। बलहपुर और खोरमपुर में करीब 3 फीट पानी है। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह प्रभावित है। और मनेर का रत्न टोला, जिसे फौजियों का गांव कहा जाता है, आज यही गांव बाढ़ में घिरा है। गंगा का पानी घरों में पहुंच गया है और जिला मुख्यालय से गांव का संपर्क टूट चुका है। लोग रोजमर्रा का सामान लेने पानी में चलकर शहर पहुंच रहे हैं, जबकि पशुओं के लिए चारा और किसानों की फसलें पानी में डूब चुकी हैं। बाढ़ के हालात के बीच सीएम सम्राट चौधरी ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।
2: कोसी, गंडक, सब जगह से पानी, गंगा में स्वयं इतना पानी है, लेकिन हम लोगों ने तय किया है कोसी को भी बैकवर्ड को ठीक करेंगे, गंडक को भी ठीक करेंगे और गंगा मैया को भी पूरी तरह फिक्स करेंगे।
1: कटिहार में बाढ़ के बीच बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित है। कई इलाकों में बच्चे रोज नाव से स्कूल पहुंच रहे हैं। कहीं शिक्षक अपनी जेब से नाविक का किराया दे रहे हैं, तो कहीं बच्चे खुद नाव खेते नजर आ रहे हैं। बगहा में गंडक नदी का कटाव भी आफत बना हुआ है। चिउरही और सिसई पंचायत के गांव बाढ़ और कटाव की दोहरी मार झेल रहे हैं। हाजीपुर और राघोपुर में भी बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। गंगा और गंडक के बढ़ते जलस्तर से कई इलाके जलमग्न हैं। राघोपुर में बड़ी आबादी प्रभावित है, जबकि हाजीपुर के करीब 8 वार्डों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण जुड़ गए। शशि, सबसे पहले समझना चाहेंगे ताजा स्थिति क्या है, प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो भयावह हैं।
3: बिल्कुल, और परेशानी संकट इतना बड़ा है शशि कि मुख्यमंत्री लगातार हर दिन एरियल सर्वे कर रहे हैं, अलग अलग बांधों का निरीक्षण भी उन्होंने किया है और हम आपको तस्वीरों के जरिए ही समझाते हैं और अपडेट भी देते हैं। देखिए इस वक्त हम पटना का जो जेपी गंगा पथ है वहां पे हैं और ये पटना यूनिवर्सिटी घाट है। पटना यूनिवर्सिटी जो पटना विश्वविद्यालय, बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, प्राचीन विश्वविद्यालय, उसके ठीक सामने की तस्वीर क्या है, पूरा गंगा का पानी जो है वो कैंपस से सट चुका है। बमुश्किल अगर 6 इंच पानी और बढ़ता है तो कैंपस के अंदर पानी चला जाएगा। जो घाट है पटना यूनिवर्सिटी के सामने कह लीजिए या फिर आगे पीएमसीएच दिखता है दूर तक, जहां तक हमारे सहयोगी नदीम कैमरे की नजर में दिखा सके, वो सारा जो मंडप बना हुआ है गंगा आरती जहां होती रही सामान्य दिनों में, वो सब कुछ डूब चुका है। और ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि गंगा ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। कल जो आंकड़े सरकार की तरफ से जारी किए गए और केंद्रीय जल आयोग और जल संसाधन विभाग की तरफ से, उसमें यह जानकारी दी गई कि पटना का जो गांधी घाट है उसमें 2016 के अंदर जो रिकॉर्ड था शशि वो टूट चुका है। तो अपने आप में समझिए,
0: पटना दो दफे हर साल बाढ़ में डूबता है बिहार, ये कोई नई बात नहीं है। मैं और आप हमेशा इस पर सवाल पूछते हैं, आखिर इसके लिए पहले से सरकार इंतजाम क्यों नहीं करती? ये प्राकृतिक आपदा से ज्यादा सरकार की लापरवाही, सिस्टम की नाकामी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शशि भूषण, लेकिन तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि मुंगेर में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और नदी खतरे के निशान से 36 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बाढ़ का असर जिले के 6 प्रखंडों की 38 पंचायतों पर पड़ा है, जहां करीब 3,75,000 लोग प्रभावित हैं। कई गांव पूरी तरह से पानी से घिर चुके हैं। जमालपुर के बोचाही में घरों में पानी घुसने के बाद लोग मध्य विद्यालय में शरण लेने के लिए मजबूर हैं। जरूरी सामान और मवेशियों के साथ परिवार यहां स्कूल में रह रहे हैं। तस्वीरें देखिए।
4: इस वक्त हम मुंगेर जिले के जमालपुर प्रखंड में बोचाही गांव पर मौजूद हैं और मैं जहां पर खड़ा हूं, दरअसल ये स्कूल है यहां का, मध्य विद्यालय बोचाही, और स्कूल जो है वो पूरी तरीके से टापू में तब्दील हो गया है। आप देखिए चारों तरफ, स्कूल के चारों तरफ आप देखिए केवल और केवल आपको पानी नज़र आएगा, और क्योंकि ये स्कूल कुछ ऊंचाई पर बना हुआ है इसीलिए अभी फ़िलहाल गंगा का पानी जो है वो स्कूल के कुछ हिस्सों में तो प्रवेश कर चुका है, सामने आप देख सकते हैं, लेकिन जो ऊंचाई वाले इलाके हैं यानी स्कूल में, वहाँ पर अभी पानी नहीं प्रवेश किया है। और इसी वजह से जो आसपास के लोग जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं उन्होंने स्कूल को ही अब अपना अस्थाई ठिकाना बनाया हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूल में ही लोग अपना ज़रूरी सामान, चूल्हा जो है, खाने पीने की चीज़ें और मवेशियों का चारा, वो सब कुछ लेकर जो है वो स्कूल में ही पहुँचे हुए हैं। ज़ाहिर सी बात है मुंगेर में बाढ़ के हालात क्या हैं वो ये तस्वीरें ही अपने आप में सब कुछ बयान करता है कि सब पूरा इलाका जो है, ये स्कूल जो है वो टापू में तब्दील हो चुका है और लोगों के पास कोई विकल्प नहीं बचा है तो जान बचाने के लिए और स्कूल में इनको शरण लेना पड़ा है। सहयोगी गोविंद कुमार के साथ रोहित सिंह, गाँव बोचाही, मुंगेर, आज तक।
0: और उधर बेगूसराय के मटिहानी में गंगा का कहर जारी है। आपको बता दें कि बहलपुर और खोरमपुर इलाके में करीब 3 फीट तक पानी भर चुका है। बाढ़ का पानी अब लोगों के घरों में घुस चुका है जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लगातार बढ़ते जलस्तर ने ग्रामीणों की चिंताओं को बढ़ाया है और लोगों को सुरक्षित ठिकानों की ओर जाने के लिए मजबूर कर दिया है।
4: गंगा नदी में जो पिछले 3-4 दिनों में जबरदस्त जलस्तर वृद्धि हुई है, पानी बढ़ा है, उसके बाद चारों तरफ जो है गंगा का पानी इस गांव में प्रवेश कर चुका है और इस गांव के साथ साथ अन्य अगल बगल के गांव भी जो हैं वो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और लोगों को किसी तरीके से यहां अपना जान माल बचाने की कोशिश करते हुए लगातार नज़र आ रहे हैं। और हम जिस जगह पर खड़े हैं, दरअसल इस गांव की ग्रामीण सड़क है, लेकिन आप स्थिति देखिए सड़क की क्या है। जहां पर मैं खड़ा हूं तकरीबन 1 से 1.5 फीट जो है वो गंगा का पानी सड़क पे से होते हुए गुजर रहा है। आप देखिए इस सड़क पे से ये गंगा का पानी जो है वो गुजरते हुए दूसरी तरफ जो है वो जा रहा है और पीछे आप देखिए किस तरीके से लोग जान माल मवेशी जो कुछ है जो बाढ़ में फंसे हुए हैं उसको बचाते हुए उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और घर भी जो है वो छोड़ के सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है बाढ़ ने इस बार खासकर जो गंगा के साथ साथ वाले जो ज़िले हैं वहाँ पर ज़बरदस्त तबाही जो है और मुश्किल पैदा की हुई है और फिलहाल लोगों को इस मुश्किल से निजात मिलता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि गंगा का पानी लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। सहयोगी सौरभ कुमार के साथ रोहित सिंह, गांव वल्लभपुर, बेगूसराय, आज तक।
0: तो आपने बिहार के हालात देखे, अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे क्योंकि बारिश, बाढ़ और बद इंतजामी, उत्तर प्रदेश में कुदरत के कहर के साथ सिस्टम की लापरवाही ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। कहीं पानी में डूबकर मासूमों की मौत हो रही है, कहीं बाढ़ घरों में घुस चुकी है तो कहीं घाट तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। देखिए यूपी में बारिश और बाढ़ की ये तस्वीरें।
1: कहीं पानी में जिंदगी बह गई, कहीं बाढ़ घरों के अंदर पहुंच गई, कहीं सड़कें डूब गईं और कहीं मौत का खुला नाला बारिश के पानी में छिप गया। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश की, जहां बारिश और बद इंतजामी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लखनऊ में घर के पास पानी से भरे गड्ढे में डूबकर 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। वहीं बिजनौर में भी बारिश का पानी एक परिवार के लिए काल बन गया। बारिश में चप्पल बह गई, 12 साल का बच्चा उसे पकड़ने दौड़ा लेकिन पानी में छिपा खुला नाला दिखाई नहीं दिया। बच्चा बहते हुए करीब 500 मीटर दूर पाइप में जा फंसा। उन्नाव में लून नदी का पानी गांवों में घुस चुका है। बीघापुर के 3 से 4 गांव बाढ़ की चपेट में हैं और पोरई गांव में हालात सबसे ज्यादा खराब है।
5: जो पानी की स्थिति है देख लीजिए, ये मंदिर है जय माँ फूलमती मंदिर धाम पोरई गांव का, और मंदिर देखिए अभी तक पानी थोड़ा सा कम हुआ है इस वजह से, ये पानी यहाँ पर थोड़ा कम है लेकिन लोग बता रहे हैं कि आधे आधे गेट तक पानी था। मंदिर जो है आधे ज्यादा डूबा हुआ था लेकिन अब पानी कम होने की वजह से ये मंदिर थोड़ा सा अब दिखाई दे रहा है, आधे से कम पानी है यहाँ पर। आप देख सकते हैं मेरे घुटनों के ऊपर तक पानी आपको दिख रहा होगा, कैमरा मैन से कहेंगे दिखाएं आपको। और यहाँ के लोगों का कहना है कि 1970 के बाद उन्होंने इस बार इस तरीके की बाढ़ जो है लोन नदी उफान पर आई है।
1: वाराणसी में गंगा का पानी घाटों से निकलकर गलियों में पहुंच गया है। जिन गलियों से लोग पूजा पाठ और अंतिम संस्कार के लिए घाट तक पहुंचते थे वहां अब पानी ही पानी है। हालात ऐसे कि शव को घाट तक ले जाना भी मुश्किल हो गया है।
6: ये वाराणसी की ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाट की गली है, यहां से होते हुए लोग अंतिम संस्कार के लिए अपने परिजनों के शव को लेकर जाते हैं लेकिन गंगा के बढ़ते हुए जल स्तर ने हालात ऐसे कर दिए हैं कि अब लोग गलियों में ही यहाँ पर शव को रख करके अंतिम क्रिया करने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी तरफ छतों पर भी जो मणिकर्णिका घाट के आसपास जो छत हैं वहां पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है।
1: 80 घाट पर लोग अपने घरों और दुकानों के बाहर ईंट सीमेंट की दीवारें खड़ी कर पानी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बिजनौर में गंगा के उफान का असर सड़कों पर भी है। चांदपुर मेरठ स्टेट हाईवे पर 3 से 4 फीट पानी भरने से रास्ता बंद हो गया है। उत्तर प्रदेश में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही और उसके साथ बढ़ती जा रही है लोगों की मुश्किलें। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
0: उधर वाराणसी में बाढ़ के डर की तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। 80 घाट के किनारे दुकानदार और स्थानीय लोग अपने घरों और दुकानों के दरवाजों पर ईंट सीमेंट और बालू से दीवार खड़ी करवा रहे हैं ताकि पानी भीतर ना घुस पाए। राहत की बात यह है कि गंगा का जलस्तर तेजी के साथ घट रहा है और करीब 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी कम हो रहा है। हालांकि गंगा अभी भी चेतावनी बिंदु के ऊपर बह रही है और खतरा पूरी तरह से अभी नहीं टला।
7: वाराणसी के इस 80 घाट को जाने वाले रास्ते पर हमारी मौजूदगी है। कभी यहाँ घुटने के ऊपर तक पानी था लेकिन देख सकते हैं कि धीरे धीरे गंगा का जो बढ़ा हुआ जलस्तर है वे नीचे की ओर सरकना शुरू हो गया है। लेकिन बावजूद इसके जो यहाँ की दुश्वारियाँ हैं वे कम होने का नाम नहीं ले रही हैं क्योंकि बढ़ते जलस्तर के डर की वजह से जिस तरह से लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए, अपने साजो सामान, अपने प्रतिष्ठान की सुरक्षा के लिए अपनी दीवारों को चुनवाना शुरू कर दिया था वे दिख सकता है। यहाँ एक प्रतिष्ठान, एक दुकान के ठीक बाहर हम मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि काफ़ी ऊपर तक जो जल का स्तर आ गया था लेकिन उससे बचाव के लिए लोगों ने जुगाड़ लगाया और यहां दीवारों को चुनवाना शुरू कर दिया। अभी भी जिस तरह से बताया जा रहा है, रिपोर्ट आ रही है कि बाढ़ की का खतरा टला नहीं है, इसकी वजह से अभी ये दीवार हटेगी नहीं जब तक पूरा बाढ़ का मौसम और बारिश का मौसम खत्म नहीं हो जाता। इसी डर के साए में यहाँ 80 के दुकानदार और यहाँ के रहने वाले लोकल लोग रहते रहेंगे डर के साए में। बाढ़ के दौरान इनका जीवन इसी तरह बीतेगा। रोशन जायसवाल, वाराणसी आज तक।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एक श्राम

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
7: देखे जन्म पहला पहला कदम।
8: हैवान की कहानी में हर किरदार का अपना रिश्ता है, उसमें जुड़े होते हैं आपके सपने, आपकी पसंद और आपकी कहानी। इसलिए घर के लिए चुनिए सिर्फ E3, the E3 Group. India's leading manufacturer of interior and exterior products. E3 Group celebrates the release of Hevan on the 11th of September.

0: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
1: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
0: असली शहद, असली स्वाद।
2: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
3: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बाय एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: आज तक इस वक्त पहुंचा है नेपाल के रूपंदेही जिले के भुटवल इलाके में। अभी तक 700 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और तकरीबन 2500 से भी ज्यादा जो लोग हैं अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। आई है इस बार नेपाल में, उसने पूरे नेपाल को हिला कर रख दिया है। सहयोगी अभिषेक पांडे के साथ रोहित सिंह, नेपाल आज तक।
4: गांधी जी के आंदोलन करने का तरीका क्या आज के समय भी उतना प्रासंगिक है?
5: जो तुम गाली देते हो ना गांधी जी, 70 साल की उम्र में 2 लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए, पढ़ लो।
6: जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था जो गांधी जी ने वापस ले लिया था, वो भी तो किसी और की वजह से लिया था। चौरी चौरा में जो हुआ इंसिडेंट, उनसे उनको क्या मतलब था? अगर वो उसको जाए रखते, क्या पता उस समय इंडिपेंडेंस थोड़ा जल्दी हो जाता।
5: ताली बजाओ इनके लिए, ये ताली डिजर्व करते हैं।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: दो दिन पहले ही लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और सीजेपी नेता आशुतोष रांका की मुलाकात हुई। दोनों ओर से दावा हुआ कि मुलाकात में किसी सियासी एजेंडे पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन इस मुलाकात के ठीक बाद समाजवादी पार्टी ने जिस नए चुनावी एजेंडे की ओर कदम बढ़ाया वो कुछ अलग ही इशारा कर रहा है। दरअसल यूपी के चुनावी माहौल के बीच अब समाजवादी पार्टी ने शिक्षा को बड़ा मुद्दा बनाकर योगी सरकार को घेरने का प्लान तैयार किया, जिसके तहत समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारी आज से 11 सितंबर तक प्रदेश में पाठशाला पुकारे अभियान चला रहे हैं। इस दौरान यूपी में बंद हुए प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों का सम्मान कार्यक्रम किया जा रहा है। ये कार्यक्रम बंद स्कूलों के आसपास ही आयोजित किए जा रहे हैं।
2: ये सभी वो बच्चे हैं जो कि आसपास रहते हैं गोमती नगर के एरिया में। इनका दावा है अपना कि ये चाहते हैं कि स्कूल्स खुले जिससे कि ये स्कूल जा सके। आज समाजवादी पार्टी यहाँ पर पहुंचकर इनको बुक कॉपी पेंसिल बैग पीडीए की पाठशाला चला रही है और मौके पर इन सभी बच्चों को वो हर शिक्षा का जो कागज है वो उपलब्ध करा रही है, जो दावा किया जा रहा है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: दो दिन पहले ही लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और सीजेपी नेता आशुतोष रांका की मुलाकात हुई। दोनों ओर से दावा हुआ कि मुलाकात में किसी सियासी एजेंडे पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन इस मुलाकात के ठीक बाद समाजवादी पार्टी ने जिस नए चुनावी एजेंडे की ओर कदम बढ़ाया वो कुछ अलग ही इशारा कर रहा है। दरअसल यूपी के चुनावी माहौल के बीच अब समाजवादी पार्टी ने शिक्षा को बड़ा मुद्दा बनाकर योगी सरकार को घेरने का प्लान तैयार किया, जिसके तहत समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारी आज से 11 सितंबर तक प्रदेश में पाठशाला पुकारे अभियान चला रहे हैं। इस दौरान यूपी में बंद हुए प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों का सम्मान कार्यक्रम किया जा रहा है। ये कार्यक्रम बंद स्कूलों के आसपास ही आयोजित किए जा रहे हैं।
2: ये सभी वो बच्चे हैं जो कि आसपास रहते हैं गोमती नगर के एरिया में। इनका दावा है अपना कि ये चाहते हैं कि स्कूल्स खुले जिससे कि ये स्कूल जा सके। आज समाजवादी पार्टी यहाँ पर पहुंचकर इनको बुक कॉपी पेंसिल बैग पीडीए की पाठशाला चला रही है और मौके पर इन सभी बच्चों को वो हर शिक्षा का जो कागज है वो उपलब्ध करा रही है। जो दावा किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि सरकार ने उसको उपलब्ध नहीं कराया है, वह समाजवादी पार्टी उपलब्ध कराकर ये पीडीए पाठशाला 5 सितंबर से कैंपेन के तौर पर पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में चला रही है।
1: यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, कई मुद्दों पर विपक्ष और सरकार आमने सामने हैं। अब समाजवादी पार्टी ने शिक्षा व्यवस्था पर यूपी सरकार की घेराबंदी की तैयारी की है।
3: प्रदेश में तमाम प्राइमरी और मिडिल स्कूल बंद कर दिए गए, जिससे ग्रामीण अंचल में गरीबों के, किसानों के बच्चों के लिए पाठशालाएं थी, बंद करके इन्होंने न्याय किया।
1: उधर इस अभियान ने सीजेपी नेताओं से अखिलेश की मुलाकात के मुद्दे को और गर्म कर दिया, बीजेपी से लेकर हमलावर हो गई। यूपी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, कानून व्यवस्था पर पहले ही तल्खी बड़ी हुई है। अब समाजवादी पार्टी के अभियान से सूबे की सियासत में नई जंग छिड़ती दिख रही है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।

भारत की सड़कों से लेकर बड़े शहरों के शोर शराबे तक हर तरफ तरक्की की एक नई चमक दिखाई दे रही है। लोगों की मेहनत और बिजनेस वर्ल्ड के बढ़ते कदमों ने देश के मार्केट को नई ऊर्जा से भर दिया है। देश की इस आर्थिक उड़ान के बीच जेब की ताकत को लेकर बेहद दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। SBI रिसर्च की ताजा रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि देश में भारी भरकम कमाई करने वालों का दायरा जबरदस्त स्पीड से फैल रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2026 में 100 करोड़ से ज्यादा आय वाले टैक्स पेयर्स 39% बढ़कर 576 हो गए, जबकि एक साल पहले यानी 2025 में ये आंकड़ा 415 दर्ज किया गया था। वहीं 2022 में 100 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाले केवल 142 टैक्स पेयर्स थे। सुपर रिच कैटेगरी में आए इस उछाल के साथ साथ हाई इनकम ग्रुप का दायरा भी काफी तेजी से बढ़ा है। मध्यम से उच्च वर्ग के बिजनेस और सैलरीड क्लास की ग्रोथ ने ओवरऑल टैक्स बेस को काफी मजबूत बना दिया है। 1 करोड़ से ज्यादा सालाना आय वाले टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़कर 535,672 पहुँच गयी है। वहीं 2025 में 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वालों की संख्या 4,71,419 थी, यानी सालाना आधार पर इस कैटेगरी में 14% की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है और 2022 के मुकाबले 1 करोड़ से

0: ज्यादा कमाई वाले टैक्स पेयर्स की संख्या दोगुने से ज्यादा हो गई है। टैक्स पेयर्स की बढ़ती संख्या के साथ साथ देश की ओवरऑल इकोनॉमी को लेकर भी पॉजिटिव संकेत सामने आ रहे हैं। आने वाले वक्त में देश की ग्रोथ रेट और रिजर्व दोनों ही मोर्चों पर बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद जताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2026-27 की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 8% रहने का अनुमान है। वहीं क्रेडिट ग्रोथ में 19.3% की मजबूती दर्ज होने की संभावना भी जताई गई है और विदेशी मुद्रा भंडार 707 अरब डॉलर के रिकॉर्ड लेवल तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि आर्थिक बढ़त के बीच कुछ सेक्टर्स के लिए चुनौतियां बनी हुई हैं। हेल्थ केयर, सीमेंट और एंटरटेनमेंट जैसे सेक्टर्स के प्रॉफिट पर थोड़ा दबाव देखा गया है। इसके बावजूद ओवरऑल मार्केट में दिख रही ये तेजी भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को साफ दिखाती है। आदित्य के राणा आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: बिहार में उफान पर गंगा, 11 जिलों पर मंडराया बाढ़ का खतरा, राजधानी पटना से लेकर भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय तक पानी पानी, 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसआरसीसी के शताब्दी समारोह में विपक्ष पर प्रधानमंत्री का ताबड़तोड़ हमला, कहा सच की हुंकार के आगे नहीं टिकेगी झूठ की गूंज, माए बाप कल्चर से लेकर दिमागी नक्सल तक का किया जिक्र। अंदरूनी कलह के बीच पंजाब कांग्रेस में बदलाव, भूपेश बघेल की जगह सचिन पायलट को बनाया गया प्रभारी, सुरजेवाला को मिली गुजरात की जिम्मेदारी। सहारनपुर में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन से बढ़ा सियासी टेंशन, अखिलेश, मायावती, ओवैसी ने उठाए सवाल, बीजेपी ने दिया कानूनी आदेश का हवाला। और अमेरिका ने ईरान के 3 ऑयल टैंकर्स को बनाया निशाना, खार्ग आइलैंड के पास भी टैंकर पर हमला, ईरान बोला अमेरिकी हरकतें जारी रहीं तो मिलेगा करारा जवाब।

में लगातार गहराता जा रहा है बाढ़ का संकट। गंगा और गंडक के उफान से कई जिलों में हालात बिगड़े। बिहार के 11 जिलों में 16 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। भारी बारिश के बीच पटना के गांधी घाट पर गंगा नदी का जलस्तर अपने उच्चतम बाढ़ के स्तर को पार कर चुका है। गंगा और पुनपुन नदी के बढ़ते जलस्तर से पटना के ग्रामीण इलाकों में कई स्थानों पर पानी भरा। बाढ़ के कारण सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित। मुंगेर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और जिले के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर। गंगा के बढ़ते हुए जलस्तर का असर मुंगेर की 38 पंचायतों पर भी पड़ा। करीब 3,75,000 लोग बाढ़ से प्रभावित। पटना के आसपास बाढ़ पीड़ितों से पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने मुलाकात की। उन्होंने हजारों प्रभावित लोगों को 500-500 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी। बिहार के खगड़िया में गंगा का रौद्र रूप। एक दर्जन से ज्यादा पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। लोग ऊंची जगहों पर जाने के लिए मजबूर। बेगूसराय में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ प्रभावित इलाकों में रिहायशी इलाकों में भी पानी भरा है। लोग कमर तक पानी भरे होने के बावजूद आने जाने को मजबूर। सीएम सम्राट चौधरी ने बेगूसराय में बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण किया। बोले स्थायी समाधान के लिए बनेंगे रिंग बांध और नए स्ट्रेच। गंडक नदी के लगातार कटाव ने बहाव। बगहा के दियारा इलाके में ग्रामीणों की मुश्किलों को बढ़ाया। कई परिवार अपने घर खाली करने के लिए मजबूर। नेपाल में भारी बारिश के बाद उफान पर है गंडक। हाजीपुर शहर के 8 वार्ड में घुस गया पानी। बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। हाजीपुर में गंडक नदी के तेज बहाव से निचले इलाकों में तबाही। पलायन करने के लिए मजबूर हुए लोग। स्थिति और भी ज्यादा बदतर होने की संभावना। राजस्थान के बारा में पिछले 2 दिनों से हो रही झमाझम बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। सिरसा नदी सहित दर्जनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर। बराकी जीवनदायिनी कही जाने वाली रैपी नदी भी पूरे उफान पर है। लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर बाइक या पैदल पुलिया पार करने के लिए मजबूर। राजस्थान के धौलपुर में भी लगातार बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव। आवाजाही में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के सतारा में कोयना डैम 100% भरा। 6 गेट्स को खोला गया। 4,232 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया। ललितपुर में लगातार हो रही बारिश के चलते जिले में सभी स्थित बांध लबालब हुए हैं। 12 बांधों के गेटों को खोलकर निकाला जा रहा है पानी। पठानकोट में बारिश से सड़कों पर भर गया पानी। सरकारी हॉस्पिटल्स के मेन गेट में आया पानी। नालों की सफाई न होने के कारण मरीजों को आ रही हैं दिक्कतें। मुर्शिदाबाद में भारी बारिश के बीच मिट्टी धसी। न्यू फरक्का के पास रेल सेवा प्रभावित। रेल ट्रैक धसने से कई ट्रेनें रद्द हुई। फरक्का में 30 घंटे से युद्ध स्तर पर मरम्मत जारी।

वैशाली के राघोपुर में बाढ़ का संकट गहराया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से दियारा इलाके में बढ़ी गई है परेशानी। राघोपुर में गांव तक पहुंच गया गंगा का पानी, ग्रामीण सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन को मजबूर। चमोली में भारी बारिश का असर, गोपेश्वर चोपता मार्ग बैरागना के पास भारी मलबा आने से बंद। 3 दिनों से लगातार भूस्खलन और मलबे से प्रभावित इमार सड़क पर आवाजाही पूरी तरह से ठप हुई। बागेश्वर में भारी बारिश से पहाड़ दरके, लाहौर मिखिला खलपट्टा सड़क पर मलबा और बोल्डर भी गिरे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के SRCC में शताब्दी समारोह में विपक्ष पर प्रधानमंत्री का ताबड़तोड़ हमला, कहा सच की हुंकार के आगे नहीं झुकेगी सरकार और ना ही टिकेगा झूठ। अलग अंदाज में निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं कुछ लोग फूफा बनकर सवाल उठाने लगते हैं, लेकिन भारत के लोगों ने ऐसे लोगों को जवाब दे दिया है। 15 अगस्त के भाषण का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा लाल किले से होम्योपैथी की दवा दे दी थी, जिसके बाद से सभी दिमागी नक्सल निकलकर बाहर आ गए। देश की विकास दर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि आज 2013 के मुकाबले देश आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। 7.8% GDP ग्रोथ पर प्रधानमंत्री मोदी ने आलोचकों पर निशाना साधा, फ्रेजाइल फाइव वाले आंकड़े पचा नहीं पा रहे। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद कांग्रेस का आरोप, छात्रों की गूंज से घबराए हैं प्रधानमंत्री मोदी, SRCC में भाषण सिर्फ एक PR कवायद थी। प्रधानमंत्री मोदी की कांग्रेस पर निशाना, कहा गिलास आधा भरा होने का मतलब है कि बाकी आधा गिलास PR से भरा है। अंदरूनी कलह के बीच पंजाब कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है, भूपेश बघेल की जगह सचिन पायलट को बनाया गया है प्रभारी। 2027 की यूपी चुनावों से पहले बीजेपी के विनोद तांबड़े ने SP के PDA नारे पर तंज कसा, कहा SP के PDA का मतलब है पराया धन अपना। शुद्धिकरण विवाद पर कांग्रेस ने सोमवार को दलित सांसदों की बैठक बुलाई, सीएम आवास तक विरोध मार्च निकालेगी। मंडी जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में बीजेपी सांसद कंगना रनौत का कड़ा रुख, काम में देरी पर उन्होंने ऑफिसर्स की क्लास लगाई। सांसद निधि के पैसे खर्च नहीं होने और पैसों के हेरफेर के लेकर अधिकारियों को जमकर सुनाया, कहा उन्हें सिर्फ महज एक एक्ट्रेस न समझा जाए, लापरवाही पर कड़ा एक्शन भी लेंगी। बीजेपी प्रमुख नितिन नवीन 9 सितंबर को 2 दिन के लिए हल्द्वानी का दौरा करेंगे और बैठकें करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह से 3 दिन के गोवा के दौरे पर रहेंगे, वेस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली के धौलाकुआ फ्लाईओवर पर कार में लग गई थी भीषण आग, धुधुकर जली कार। फिलहाल आग लगने की वजह नहीं पता, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लखनऊ के शहीद पथ पर गोरखपुर से सूरत जा रही डबल डेकर बस में अचानक से भीषण आग लगी, बस में सवार सभी 32 यात्री सुरक्षित, कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। मुंबई में एक भवन में लगी थी भीषण आग, मोबाइल फोन का गोदाम पूरी तरह से जलकर खाक हुआ। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर शराब तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ, दिल्ली से शराब लेकर पहुंची युवती के साथ एक और तस्कर भी गिरफ्तार। कौशाम्बी में अवैध पटाखा फैक्ट्री में पुलिस का एक्शन, 2 गिरफ्तार, 44 बोरी कार्टन पटाखे और 19 किलो बारूद बरामद किया गया। मथुरा में मामूली से कहासुनी के बाद कार चालक ने जूनियर इंजीनियर को रौंदा, हादसे के बाद आरोपी चालक फरार, इंजीनियर को कई मीटर तक घसीटते हुए मौके से फरार हुआ। उत्तराखंड के श्रीनगर में हैरान करने वाली और गंभीर खबरें सामने आई हैं। मृत बकरी का मांस खाने से 25 से ज्यादा लोग बीमार हुए, बीमार होने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल हैं। मुरादाबाद में 3 मंजिला जर्जर इमारत भरभराकर गिरी, नगर निगम की सतर्कता से बड़ा हादसा टला। यूपी के कौशाम्बी में यमुना नदी में नहाने गए दौरान हादसा हुआ, एक दूसरे को बचाने के चक्कर में डूब गए थे 2 सगे भाई, 3 की मौत हुई घर में मातम। सूरत में ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली लेडी गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने वारदात में शामिल 3 ही महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर के डोडा से बेहद ही दर्दनाक घटना सामने आई, एक युवती ने अपने पिता को फोन पर अंतिम बार कॉल कर चिनाब नदी में छलांग लगा दी, सुइसाइड किया। कैमूर में उत्पाद हिरासत में शराब तस्करी का आरोपी फरार हुआ, सुरक्षा में लापरवाही बरतने के आरोप में होमगार्ड जवान हटाए गए।
गुजरात के भावनगर में बाबा नीम करौली पर बनी फिल्म हनुमान अंश ने इतिहास रच दिया है। 30 दिन में फिल्म का कलेक्शन 100 करोड़ के पार। सिर्फ 2 करोड़ रुपए में बनी हनुमान अंश फिल्म ने अपने बजट से 50 गुना ज्यादा कमाई की। थिएटर्स में उमड़ रही है भीड़। उत्तराखंड में हनुमान अंश टैक्स फ्री है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने हनुमान अंश की टीम को बधाई भी दी। मिर्जापुर द मूवी का बॉक्स ऑफिस पर तहलका, फिल्म ने 2 ही दिन में कमा डाले 50 करोड़ से ज्यादा। मिर्जापुर द मूवी ने बनाया रिकॉर्ड, 2026 की चौथी सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बनी है। धुरंधर 2, टॉक्सिक और बॉर्डर 2 है टॉप 3 में। तेलुगु रोमांटिक ड्रामा चकोरा लूनर लव बर्ड का टीजर आउट हुआ। रावण कुमार, मलाइका वसुपाल, अनुष्का लोहार मुख्य भूमिका में। आनंद देवकोंडा वैष्णवी चैतन्य की एपिक का धमाकेदार ट्रेलर आउट हुआ। ट्रेलर में दिखी कॉलेज लाइफ। एआई के दौर में भारतीय सिनेमा की नई छलांग त्रिनेत्रा। एआई प्लेटफॉर्म पूरी तरह से तैयार की गई। द्वारिका प्रोजेक्ट समुद्र के भीतर मौजूद रहस्यमयी द्वारिका नगरी बनेगी कहानी का अहम हिस्सा। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की धर्मन की शूटिंग का दूसरा शेड्यूल पूरा हुआ। डॉक्टर के किरदार में नजर आएंगे रजनीकांत। स्टाइलिश डॉक्टर के लुक ने बढ़ा दिया है फिल्म का बज। शिकागो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बांग्ला फिल्म ऑनेक दिलपोर की एंट्री। 17 सितंबर को दिखाई जाएगी फिल्म। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नॉर्थ ईस्ट में रेलवे नेटवर्क की शानदार तस्वीर साझा की। बैरवी सेरांग रेल लाइन का भव्य नजारा नजर आया। कुतुब मीनार से ऊंचाई रेल पुल करीब 114 मीटर है ऊंचाई। पुल और सुरंग से गुजरती ट्रेन की मनमोहक वीडियो सामने आई। पुंछ के मैंडर में सेक्टर में आर्मी स्कूल में रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। स्कूली बच्चों ने शानदार प्रस्तुति से समा बांधा। स्कूली बच्चों ने नृत्य का भव्य प्रस्तुति से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। सेना की ओर से छात्रों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। बीजेपी सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने संबलपुर में ऋषि बिल्डिंग की रखी आधारशिला। ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी परिसर में बनेगा स्किल हब। क्रिकेट के मैदान में भारत के लिए गुड न्यूज है। महिला एशिया कप में भारत की शानदार जीत, पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। पाकिस्तान की पूरी टीम मैच 55 रन पर सिमटी। टीम इंडिया ने 8.4 ओवर में 3 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल किया। महिला एशिया कप में भारत की जीत की हैट्रिक। टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा भारत। 6 पॉइंट्स के साथ अंक तालिका में टॉप पर। भारतीय स्पिनर्स की फिरकी में फंस गई थी पाकिस्तान की टीम। श्री चन्नी और प्रेमा रावत ने 3-3 विकेट लिए। दीप्ति शर्मा को 2 सफलता। हरमनप्रीत कौर T20 में 150 मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली कप्तान बन गई। 10 सितंबर को भारत का सेमीफाइनल मैच। यूक्रेन की राजधानी की पर 3 दिन तक हमला नहीं करेगा रूस। अमेरिकी प्रतिनिधियों की यात्रा के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान किया। अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर रूस के दौरे पर हैं। राजधानी मॉस्को में पुतिन के दूत ने गर्मजोशी से स्वागत किया। अस्थायी सीज फायर से पहले यूक्रेन की राजधानी की व ओडिशा पर रूस ने हवाई हमले किए। 9 मंजिला आवासीय इमारत क्षतिग्रस्त हुई, 2 घायल हुए। अमेरिका ने ईरानी तेल टैंकर को निशाना बनाया। खार आइलैंड के पास दागी थी 4 मिसाइलें। हमले के बाद मच गया था हड़कंप, सुनी गई कई धमाके की आवाजें। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने की जवाबी कार्रवाई। हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया गया निशाना। इजरायली सेना ने की वीडियो जारी किया। अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी का बड़ा बयान, कहा गजा के लोगों को जबरदस्ती नहीं हटाया जाएगा। जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें जाने की आजादी मिलनी चाहिए। म्यांमार के राष्ट्रपति मिंग आन ह्वांग ने राजधानी हनोई में वियतनाम के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। दोनों ही देशों के बीच आर्थिक संबंधों मजबूत करने पर साथ ही रक्षा के अहम मुद्दों पर चर्चा। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या हो गई 1344। करीब 5000 लोग अभी भी लापता हैं। बाढ़ के 10 दिन के बाद बचाव दलों ने एक चीनी नागरिक और एक महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। अवैध प्रवासियों के खिलाफ इंग्लैंड के डोवर शहर में अनोखा प्रदर्शन। काले कपड़े पहनकर और चेहरा ढके हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। यूएस ओपन में सेरेना और वीनस विलियम्स की हार। टाई ब्रेक में 5-0 की बढ़त के बावजूद गंवाया मैच।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे कि जीवन में किन ग्रहों से, किन वजहों से आपको माता पिता का सुख मिलता है और माता पिता का सुख पाने के उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। हम आज बात कर रहे हैं माता पिता के सुख के बारे में। जीवन में कब माता पिता का सुख मिलता है, कब नहीं मिलता, और माता पिता का सुख पाने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि माता पिता के सुख का ग्रहों से क्या संबंध है। किसी भी कुंडली में सूर्य पिता के बारे में बताता है। इसके अलावा कुंडली का नवम भाव और दशम भाव भी पिता से संबंध रखता है। कुंडली में चंद्रमा से माता की स्थिति देखी जाती है और चतुर्थ भाव से भी माता की स्थिति पता चलती है, स्पष्ट होती है। इन ग्रहों या स्थानों के मजबूत होने पर माता पिता का सुख जीवन में मिल जाता है। सूर्य नवम भाव और नवम भाव का स्वामी, ये पिता के सुख के बारे में बताएंगे। चंद्रमा चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी, ये माता के सुख के बारे में जानकारी देंगे। तो इनको देख करके माता पिता के सुख के बारे में पूरा पूरा अनुमान लगाया जा सकता है। माता पिता के सुख पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर के नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, परिवार में खुशहाली आएगी। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।
मिथुन राशि, रोजगार में सफलता मिलेगी, नया काम शुरू होगा, खान पान का ध्यान बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। बहुत लोगों के जीवन में ऐसा होता है या ऐसा देखा गया है कि उनके संबंध पिता के साथ खराब होते हैं, इसलिए पिता का सुख जीवन में नहीं मिलता। तो पिता के साथ संबंध कब खराब होते हैं? कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति कमजोर है, सूर्य की स्थिति ताकतवर नहीं है, तो पिता के साथ संबंध खराब होंगे। सूर्य का संबंध अगर शनि के साथ बने तो संतान और पिता के आपसी संबंध खराब होंगे। कुंडली के नवम भाव का स्वामी अगर गड़बड़ हो, गड़बड़ स्थिति में हो, तो पिता के साथ संबंध खराब होंगे। सूर्य भी कुंडली में गड़बड़ हो और नवम भाव भी अगर गड़बड़

जीवन में बनी रहती हैं। अगर आपके संबंध पिता से ठीक नहीं हैं, पिता का सुख जीवन में नहीं मिल रहा है, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिए, सादा पानी, प्लेन वाटर। इसके बाद सूर्य मंत्र का जप करिएगा 108 बार, ओम आदित्याय नमः। कुंडली का जो नवम भाव है और जो नवम भाव का स्वामी है, इसको मजबूत करने का प्रयास करिए। और घर का मुख्य द्वार सूर्य होता है, इसीलिए घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखिए। अगर कुंडली में ज्यादा खराबी है, सूर्य भी गड़बड़, नवम भाव भी गड़बड़, उसका स्वामी भी गड़बड़, तो रविवार को गुड़ का दान करिएगा। अगर ऐसा निरंतर करें और सूर्य भगवान की उपासना करें, तो पिता के साथ तालमेल बेहतर होगा, पिता का सुख आपको जीवन में प्राप्त होगा। आगे माता के सुख पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।

करें, धन खर्च पर ध्यान दें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी, करियर में सफलता मिलेगी। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न विकास जी ने हमें लिखा है और विकास जी हमें जम्मू से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 जनवरी सन 2000, जन्म का समय शाम के 4 बजे, जन्म का स्थान है जम्मू। विकास जी कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना बनती है? विकास जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप बैंक की तैयारी करें, फाइनेंशियल सेक्टर की तैयारी करें या प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें तो इन क्षेत्रों में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। साल 2027 आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, अगर आप परिश्रम करेंगे तो आपको लाभ होगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और सुबह के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। अब जानते हैं कि माता के साथ रिश्तों में कब गड़बड़ी होती है, कब जीवन में माता का सुख नहीं मिल पाता। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा की स्थिति कमजोरी वाली है तो माता के साथ संबंध गड़बड़ हो सकते हैं। अगर चंद्रमा पाप ग्रहों से पीड़ित है तो माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता और माता के साथ संबंध भी अच्छे नहीं रहते। अगर कुंडली का चौथा भाव खराब हो तो माता के साथ अटैचमेंट नहीं होता और माता के साथ संबंध गड़बड़ होते हैं। चौथा भाव भी गड़बड़ हो, चौथे भाव का स्वामी भी गड़बड़ हो तो माता के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे। कभी कभी रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। चंद्रमा भी खराब हो, चतुर्थ भाव भी खराब हो तो माता का सुख नहीं मिलता। माता की आयु या तो लंबी नहीं होती
या जीवन में माता के आशीर्वाद की कमी बनी रहती है। तो कुल मिलाकर चंद्रमा चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी ये बड़ा महत्वपूर्ण है माता के साथ संबंधों के लिए और माता का सुख पाने के लिए। क्या उपाय करें कि माता के साथ संबंध बेहतर हो? शुक्ल पक्ष की रात के समय में जो 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं उसमें रात में चंद्रमा को जल अर्पित करिएगा। रोज रात में 9 बजे के बाद कम से कम चंद्रमा के मंत्र का जप करें, ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जप करें। सोमवार को शिव जी के मंदिर जाएं, उनको सफेद फूल और जल अर्पित करें। कुंडली का चतुर्थ भाव कैसा है, उसका स्वामी कैसा है, इसको देख करके मजबूत करने का प्रयास करें। अगर माता के साथ संबंध बहुत ज्यादा गड़बड़ हैं या माता का सुख बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है तो सोमवार को सफेद चीज का जैसे चावल चीनी या दूध का दान करना अच्छा होगा। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, सेहत अच्छी बनी रहेगी, धन की प्राप्ति होगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज

वृश्चिक राशि, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, वाहन सावधानी से चलाएं, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी, करियर में सफलता मिलेगी। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। देखिए, सामान्यतः हम सब चाहते हैं कि हमारे माता पिता की आयु लंबी हो और हमारे माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी माता हमेशा स्वस्थ रहें, उनको स्वास्थ्य की दिक्कतें ना हो, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करिए और जल अर्पित करने के बाद 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिए और जप करने के बाद प्रार्थना करिए कि मेरे माता की आयु की रक्षा हो और उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे। सोमवार को ही जब आप मंत्र जप कर लें सुबह के समय, इसके बाद सफेद वस्तुओं का दान करिएगा किसी निर्धन व्यक्ति को और ये प्रार्थना करिएगा कि इस दान का फल मेरी माता को मिले। दान केवल सप्ताह में एक दिन करना है, जल रोज चढ़ाना है, मंत्र का जप रोज करना है। अगर आप ऐसा करें तो आपके माता का स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। अब बात करते हैं पिता की। पिता का स्वास्थ्य कैसे बेहतर रखा जाए? रोज सुबह स्नान करके जितना जल्दी संभव हो सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। जल अर्पित करने के बाद ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा, प्रार्थना करिएगा कि मेरे पिता की आयु की रक्षा हो और मेरे पिता का स्वास्थ्य बेहतर हो। इसके अलावा हर रविवार को गुड़ का, गेहूं का या गेहूं के आटे का दान करिएगा। अगर ऐसा नियमित रूप से करें और अपने पिता के लिए प्रार्थना करें तो आपके पिता के स्वास्थ्य में और जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज के दिन की विशेषता क्या है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके
दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, उपहार सम्मान की प्राप्ति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाब।

के रुक सकते हैं, नौकरी में लापरवाही ना करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, क्या ऐसा है? देखिए, आप अपने घर में शिवलिंग रख सकते हैं लेकिन उसके कुछ नियम हैं। शिवलिंग 12 अंगुल यानी 6 इंच से बड़ा नहीं होगा। घर में पारद शिवलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग रखना बेहतर है और जब घर में शिवलिंग रखें तो आप नियमित रूप से उसके ऊपर जल अर्पित करते रहें, ये आपके लिए आवश्यक है। और अगर घर से कहीं बाहर जाएं तो शिवलिंग को जल में डुबा करके जाइएगा, बिना जल के आप शिवलिंग घर में नहीं रख सकते। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 2, मानसिक स्थिति बेहतर होगी। नंबर 3, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 6, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 7, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 8, करियर में कुछ बदलाव होगा। नंबर 9, धन की प्राप्ति होगी। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में एक बार सुंदर कांड का पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपके करियर की बाधाएं दूर होंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न प्रेरणा ने हमें लिखा है और प्रेरणा हमें बेंगलोर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 जुलाई 1985। जन्म का समय सुबह के 6 बजे। जन्म का स्थान है लखनऊ। प्रेरणा कह रही हैं कि मैंने अभी अभी नौकरी बदली है लेकिन मुझे नौकरी में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या मुझे दोबारा नौकरी बदलनी चाहिए? करियर में मुझे कैसा निर्णय लेना चाहिए? प्रेरणा, अभी बार बार नौकरी बदलने का उचित समय नहीं है। ज्योतिष के हिसाब से मैं कहूंगा कि आप लगभग 20 सितंबर तक शांति से एडजस्ट करके रहिए, उसके बाद इसी नौकरी की स्थितियां आपके लिए बेहतर हो जाएंगी और आने वाले समय में इसी नौकरी में आप तरक्की करेंगी। नौकरी बदलने का विचार फिलहाल ना करें। एडजस्टमेंट में आपको प्रॉब्लम ना आए
एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, पान का पत्ता खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए जाना है, तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, कोई बड़ी खरीदारी करनी है, तो लाल रुमाल साथ में रखिएगा, लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान।

कुंभ राशि वालों के लिए कार्यों में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा। वृषभ राशि वालों के लिए रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। और आज सावधान रहना होगा वृश्चिक राशि के लोगों को, बेवजह की चिंताएं और तनाव बढ़ सकते हैं। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सो।
3: और ये खबर है ईस्ट दिल्ली से, जहां मयूर विहार के फेज 3 में सुबह सुबह एक शख्स की पीट पीट कर हत्या करने से सनसनी फैल गई। घटनाएं सुबह करीब 5 बजे की। आरोप यह है कि दो लोगों ने एक शख्स को डंडों से बेरहमी से पीटा है। मौके पर मौजूद एक गार्ड ने जब दोनों को रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने उसे भी जान से मारने की धमकी दे डाली। इस पूरे मामले में जानकारी यह है कि शख्स की जान जा चुकी है। गार्ड के मुताबिक उसने दो लोगों को एक शख्स की पिटाई करते हुए देखा था, लेकिन धमकी मिलने के बाद वो पीछे हट गया। इस पूरी वारदात के बाद दिल्ली पुलिस ने इलाके में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लिए हैं। जांच शुरू कर दी गई है। आरोपियों की पहचान की कोशिश की जा रही है। तो मयूर विहार की घटना है, जहां दो लोगों ने एक शख्स को पीट पीट कर मार डाला है। सुबह 5 बजे की घटना बताई जा रही है। पास में ही सिक्योरिटी गार्ड ने जानकारी दी है पुलिस को कि इस पूरे मामले में जब उसने उस शख्स को पिटते हुए देखा, बेरहमी के साथ उसे बचाने की जब कोशिश की तो उसे भी जान से मारने की धमकी दी गई और इसीलिए वो पीछे हट गया। इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने इस पूरे घटना की जाँच शुरू कर दी है। बयान दर्ज कर लिया गया है उस सिक्योरिटी गार्ड का इस पूरे मामले में। हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से साफ नहीं किया गया है कि इस हत्या की वजह क्या रही है, लेकिन सुबह 5 बजे तड़के की यह घटना बताई जा रही है, जब पीट पीट कर बेरहमी से एक शख्स की हत्या कर दी गई है दिल्ली के मयूर विहार में।
4: दिल्ली के अशोक नगर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक 40 वर्षीय युवक की लकड़ियों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। दरअसल ये मामला सुबह 5 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। और अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो यहीं पर वो सारी लकड़ियां पड़ी हुई हैं, जिससे बताया जा रहा है कि ये जो पूरा हादसा है वो हुआ है। जो मृतक है उसकी आइडेंटिटी अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है। आसपास के इलाके से सीसीटीवी फुटेज ले लिया गया है, लेकिन बता रहे हैं कि कुछ लोग यहां आए थे और किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया है। हमारे साथ यहां के गार्ड हैं, जो एक आई विटनेस भी है इस पूरे मामले में। भाई साहब, यहां पर ये क्या हुआ पूरा मामला, अगर आप बता पाए, और कितने बजे हुआ?
5: मैं वहां तक आया डंडा पीटते थे, मेरे को दिखाया तू भी मार खाएगा, फिर मैंने उधर चला गया, फोन करने लगा।
4: उधर कितने लोग थे?
5: दो आदमी थे।
4: दो आदमी। आपने जब उन्हें भगाया तो वो तुरंत भाग गए या आपसे भी?
5: नहीं, मेरे नहीं भागे, मेरे को डंडा दिखाया कि तुझे वो करूंगा।
4: अच्छा, आपको डंडा दिखाया?
5: हाँ,
4: आपको भी मारूंगा।
5: हाँ, फिर मैं अंदर चला गया, फिर मैं फोन किया था।
4: किसको? पुलिस को फोन किया।
5: हाँ जी।
4: पुलिस कितने देर में आई?
5: मैं अंदर चला गया था।
4: कितने बजे की घटना होगी?
5: ये 4 बजे का।
4: 4 बजे?
5: दो लोग थे।
4: तो जैसा आपने सुना कि कुल दो लोग मौजूद थे जिनके सामने ये पूरा हादसा हुआ। और अगर मैं आपको यहाँ पे लोकेशन की तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर पुलिस ने जो है अलग अलग तरह की मार्किंग कर रखी है, जिससे खून के जो धब्बे हैं वो यहाँ पर अभी भी पड़े हुए हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर वो क्या वजह थी जिसके वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका ये कहना है कि दो लोग इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे। आसपास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज ले लिया गया है, पुलिस ने सीसीटीवी जब्त कर लिया है। और अब जो दोनों अक्यूज्ड हैं, जो दोनों आरोपी हैं, उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ ही साथ जो मृतक है उसकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। तो अब ये देखना होगा कि दिल्ली पुलिस कितनी जल्दी ये सुनिश्चित कर सकती है कि यहाँ पर जो दोनों अभियुक्त हैं उन्हें जल्दी से जल्दी हिरासत में लिया जाए, ताकि जो लोगों में कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है या संशय है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से शांत हो पाए।
3: और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंशुल जुड़ गए। अंशुल, क्या इस पूरे मामले में साफ हो पाया है कि इस वारदात के पीछे कारण क्या रहा?
6: जी, अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। दिल्ली पुलिस अभी भी यही कोशिश कर रही है कि जो दोनों अभियुक्त हैं उन्हें जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई किया जाए। हमने ये सीसीटीवी देखा कि किस तरीके से दो लोग जो हैं ताबड़तोड़ जो लकड़ी के फट्टे हैं उनसे हमला करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अभी तक जो अक्यूज हैं और जो विक्टिम हैं दोनों को ही दिल्ली पुलिस आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है। बताया ये जा रहा है कि जो मृतक है उनकी उम्र करीब 40 साल के आसपास है, और आसपास के इलाके से जो सीसीटीवी डंप है वो इस वक्त ले लिया गया है और उससे अभी तफ्तीश की जा रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये दोनों अभियुक्त आए किस तरफ से थे और निकले किस तरफ से, ताकि ये पता लग पाए कि आखिर वो है कहाँ और उन्हें जल्दी जल्दी हिरासत में लिया जाए और इस पूरे मामले में जो राज पते हैं उन राज से पर्दा उठ पाए।
3: बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात करेंगे नेपाल में कुदरत ने ऐसी तबाही मचाई है जहां मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें कि 1369 तक पहुंच चुका है यह आंकड़ा और करीब 8000 लोग हैं जो अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। हिमालयी ग्लेशियर टूटने से आई विनाशकारी बाढ़ ने घरों सड़कों और पुलों को मलबे में तब्दील कर दिया। सबसे बड़ी चिंता उन करीब 100 हाइड्रो पावर कर्मचारियों को लेकर है जो मलबे से भरी सुरंगों में फंसे हुए बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और आपको बता दें कि इसमें भारत की तरफ से भेजी गई एक्सपर्ट्स की टीम भी लगातार लगी हुई है, लेकिन लगातार मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और लापता लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के 100वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया था। मेट्रो से कॉलेज पहुंचे थे प्रधानमंत्री, छात्रों के बीच करीब 48 मिनट तक उन्होंने संवाद किया। इसी दौरान उन्होंने युवाओं, देश के विकास और साथ ही बदलते भारत पर भी बात की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने विपक्ष और विरोधियों पर भी तीखे तंज कसे।
1: SRCC की शताब्दी, PM की मेट्रो से एंट्री, जीएनजी के बीच भाषण और मंच से सीधा सियासी वार। SRCC के 100वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों से संवाद किया, लेकिन बात सिर्फ कॉलेज और करियर तक सीमित नहीं रही। पीएम ने उन विरोधियों पर निशाना साधा जो हर नई पहल पर सवाल खड़े करते हैं। पीएम ने हर बात में कमी ढूंढने वालों को नाराज फूफा तक कह डाला।
7: इनका एक ही डायलॉग होता है, इसकी क्या जरूरत है,

0: पीएम ने कहा। उन्होंने ऐसी होम्योपैथी की गोली दी कि विरोधी बौखलाने लगे।
1: जैसे ही मैंने दिमागी नक्सल वाली होम्योपैथी की गोली दी, सारे दिमागी नक्सल निकल निकल के बाहर आने लगे, और जो इस बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं, अब जनता उनका भी असली रंग देख रही है।
0: एसआरसीसी की शताब्दी के मंच से पीएम मोदी ने युवाओं को सिर्फ आगे बढ़ने का मंत्र नहीं दिया, बल्कि विरोधियों को भी अपने अंदाज में जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
2: तो आज तक में नॉनस्टॉप खबरें लगातार जारी हैं, आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे हेडलाइंस।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो।
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: बिहार में उफान पर गंगा, 11 जिलों में मंडराया बाढ़ का खतरा। राजधानी पटना से लेकर भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय तक पानी पानी, करीब 17 लाख लोग प्रभावित। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसआरसीसी के शताब्दी समारोह में विपक्ष पर प्रधानमंत्री का ताबड़तोड़ हमला, कहा सच की हुंकार के आगे नहीं टिकेगी झूठ की गूंज। माए बाप कल्चर से लेकर दिमागी नक्सल तक का किया जिक्र। महाराष्ट्र में छात्र आंदोलन के समर्थन में आए हैं राहुल गांधी, सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा पेपर लीक से एमपीएससी पर भरोसा खत्म, छात्रों की अरमांग को बताया जाए फडणवीस सरकार से एक्शन की मांग। अंदरूनी कलह के बीच पंजाब कांग्रेस में बदलाव, भूपेश बघेल की जगह सचिन पायलट को बनाया गया प्रभारी, सुरजेवाला को मिली गुजरात की जिम्मेदारी। और अमेरिका ने ईरान के 3 ऑयल टैंकर्स को बनाया निशाना, खार्ग आइलैंड के पास भी टैंकर पर हमला, ईरान बोला अमेरिकी हरकतें जारी रहीं तो मिलेगा करारा जवाब।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर।
2: दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में युवक की पीट पीट कर हत्या, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जांच शुरू। मिली जानकारी के मुताबिक हत्याकांड सुबह 5 बजे के करीब हुआ है, युवक को लाठी डंडों से पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया, फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो पाई। कांगो में शादी की खुशियां मातम में बदल गई, आग की लपटों में गिरकर 22 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, कई घायल हुए। लपटें इतनी ज्यादा तेजी के साथ फैली कि किसी को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल पाया, जान बचाने की होड़ में लोग दरवाजों पर ही फंस गए जिससे कि बाहर निकलने में और मुश्किलें हुई। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में गुरेज घाटी के ऊंचे इलाकों में काबुल गली में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है, इस पहली बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट। नेपाल में हाल ही में आए विनाशकारी हिमस्खलन और अचानक से आई बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 1400 के पार पहुंच गई है। नेपाल में 26 अगस्त को ग्लेशियर ढहने के बाद आई अचानक बाढ़ के मलबे में दबे हुए लोगों की आशंका और तलाश अभी भी जारी है, आपदा के 11वें दिन भी एक चीनी नागरिक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक नेपाल के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली बाजार इलाके में 3 और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, इनमें 5 साल का एक बच्चा भी शामिल है। नेपाल त्रासदी में अभी 8000 से ज्यादा लोग लापता है, सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। बिहार में लगातार गहराता जा रहा है बाढ़ का संकट, गंगा और गंडक के उफान से कई इलाके जलमग्न। बिहार के 11 जिलों में 16 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं भारी बारिश के चलते, पटना के गांधी घाट पर गंगा नदी का जलस्तर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचा। गंगा और पुनपुन नदी के बढ़ते हुए जलस्तर से पटना के ग्रामीण इलाकों में कई स्थानों पर पानी भरा, बाढ़ के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित। मुंगेर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, लगातार गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और जिले के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति। गंगा के बढ़ते जलस्तर का असर मुंगेर की 38 पंचायतों पर पड़ा है, करीब 3,75,000 लोग बाढ़ से प्रभावित। पटना के आसपास बाढ़ पीड़ितों से पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने मुलाकात की, उन्होंने हजारों प्रभावित लोगों को 500-500 रुपए की आर्थिक मदद भी दी। बिहार के खगड़िया में घटना गंगा का रौद्र रूप, एक दर्जन से ज्यादा पंचायत बाढ़ में प्रभावित, लोग ऊंची जगहों पर जाने के लिए मजबूर। बेगूसराय में गंगा का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण इलाकों के साथ ही रिहायशी इलाकों में घुस गया पानी, लोग कमर तक पानी में जाने के लिए मजबूर हैं। सीएम सम्राट चौधरी ने बेगूसराय में बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण किया, बोले स्थायी समाधान के लिए बनेंगे रिंग।

बांध और नए स्ट्रेच। गंडक नदी के लगातार कटाव ने बगहा के दियारा इलाके में ग्रामीणों की मुश्किलों को बढ़ाया। कई परिवार अपने खाली घर करके सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर। नेपाल में भारी बारिश के बाद उफान पर है गंडक। हाजीपुर शहर के 8 वार्ड में घुसा पानी, बाढ़ का खतरा बरकरार। हाजीपुर में गंडक नदी में तेज बहाव के निचले इलाकों में तबाही का दौर शुरू हुआ। पलायन करने को मजबूर हुए लोग, स्थिति और भी ज्यादा बदतर। राजस्थान के बरा में पिछले 2 दिनों से हो रही झमाझम बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। सिरसा नदी सहित दर्जनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर। बारा की जीवनदायिनी कही जाने वाली रैपी नदी भी पूरे उफान पर है। लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर बाइक और पैदल ही पुलिया पार करने के लिए मजबूर। राजस्थान के धौलपुर में भी लगातार बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव है। आवाजाही में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वैशाली के राघोपुर में बाढ़ का संकट गहराया। गंगा का जलस्तर बढ़ने से दियारा इलाके में बढ़ गई है परेशानी। राघोपुर में गांव तक पहुंच गया गंगा का पानी। ग्रामीण सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर। चमोली में भारी बारिश का असर जारी। गोपेश्वर चोपता मार्ग बैरगना के पास भारी मलबा गिरा। 3 दिनों से लगातार भूस्खलन और मलबे से प्रभावित है पूरा मार्ग। सड़क पर आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। बागेश्वर में भारी बारिश से पहाड़ दरके हैं। लाहौर मिकिला खलपट्टा सड़क पर मलबा और बोल्डर्स गिरे। महाराष्ट्र के सतारा में कोयना डैम 100% भर गया है। 6 गेट खोले गए। 4,232 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया। ललितपुर में लगातार हो रही बारिश के चलते जिले में सभी 14 बांध हुए हैं लबालब। 12 बांधों के गेटों को खोलकर निकाला जा रहा है पानी। पठानकोट में बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। सरकारी हॉस्पिटल्स के मेन गेट पर आया है पानी। नालों की सफाई न होने के कारण मरीजों को आ रही हैं दिक्कतें। मुर्शिदाबाद में भारी बारिश से मिट्टी धंस गई है। न्यू फरक्का के पास रेल सेवा प्रभावित। रेल ट्रैक धंसने से कई ट्रेनें रद्द हो गई हैं। फरक्का में 30 घंटे से युद्ध स्तर पर मरम्मत का काम जारी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के SRCC के शताब्दी समारोह में विपक्ष पर प्रधानमंत्री ने ताबड़तोड़ हमला बोला। कहा, सच की हुंकार के आगे नहीं टिकेगी झूठ की गूंज। अलग अंदाज में निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं कुछ लोग फूफा बनकर सवाल करने लगते हैं, लेकिन भारत ने ऐसे लोगों को जवाब दिया है। 15 अगस्त को भारत का भाषण का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, लाल किला से होम्योपैथी की दवा दे दी थी, जिसके बाद से सभी दिमागी नक्सल निकलकर सामने आ गए। देश के विकास का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, 2013 के मुकाबले देश आर्थिक रूप से सामाजिक और रूप से कहीं ज्यादा सुरक्षित। 7.8 GDP ग्रोथ पर प्रधानमंत्री मोदी ने आलोचकों पर निशाना साधा। कहा, फ्रेजाइल 5 वाले आंकड़े बचा नहीं पा रहे। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद कांग्रेस का आरोप, छात्रों की गूंज से प्रधानमंत्री घबराए। SRCC में भाषण सिर्फ एक PR कवायद थी। प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस का निशाना। कहा, ग्लास आधा भरा होने का मतलब है बाकी का आधा ग्लास खाली और PR से भरा। अंदरूनी कलह के बीच पंजाब कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है। भूपेश बघेल की जगह अब सचिन पायलट को बनाया गया है पंजाब का प्रभारी। 2027 की यूपी चुनावों से पहले बीजेपी के विनोद तांबड़े ने SPK PDA नारे पर तंज कसा। SPK PDA का मतलब है पराया धन अपना। शुद्धिकरण विवाद पर कांग्रेस ने सोमवार को दलित सांसदों की बैठक बुलाई है। सीएम आवास तक विरोध मार्च निकालेगी। मंडी जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में बीजेपी सांसद कंगना रनौत का कड़ा रुख। काम में देरी होने पर उन्होंने ऑफिसर्स को फटकार लगाई। सांसद निधि के पैसे खर्च नहीं होने पर पैसों के हेरफेर पर अधिकारियों को जमकर सुनाया। कहा, उन्हें सिर्फ एक महज एक्ट्रेस न समझा जाए, वो लापरवाही पर एक्शन भी लेना जानती हैं। बीजेपी प्रमुख नितिन नवीन 9 सितंबर को 2 दिन के लिए हल्द्वानी का दौरा करेंगे और बैठकें करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह से 3 दिन के गोवा दौरे पर रहेंगे। वेस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली के धौलाकुआ फ्लाईओवर पर कार में लग गई थी भीषण आग। धू कर जली का कार, समय रहते काबू पाया गया। लखनऊ के शहीद पथ पर गोरखपुर से सूरत जा रही डबल डेकर बस में अचानक से भीषण आग लगी। बस में सवार सभी 32 यात्री सुरक्षित कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। मुंबई में एक भवन में भीषण आग लगी। मोबाइल फोन का गोदाम पूरी तरह से जलकर खाक हुआ। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर शराब तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली के शराब लेकर पहुंची थी युवती के साथ एक और तस्कर को गिरफ्तार किया गया। कौशाम्बी में अवैध पटाखा फैक्ट्री पर पुलिस का एक्शन। 2 की गिरफ्तारी। 44 बोरी कार्टन पटाखे और 19 किलो बारूद बरामद। मथुरा में मामूली सी कहासुनी के बाद कार चालक ने जूनियर इंजीनियर को रौंद डाला। हादसे के बाद आरोपी चालक फरार हुआ। इंजीनियर बुरी तरह से घायल। उत्तराखंड के श्रीनगर में हैरान करने वाली और गंभीर खबर सामने आई। मृतक बकरी का मांस खाने से 25 से ज्यादा लोग बीमार हुए। बीमार होने वाली बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।
मुरादाबाद में 3 मंजिला जर्जर इमारत भरभराकर गिरी, नगर निगम की सतर्कता से बड़ा हादसा टला। यूपी के कौशाम्बी में यमुना नदी में नहाने गए थे बच्चे, हादसा हुआ, एक दूसरे को बचाने के चक्कर में डूब गए 2 सगे भाई, 3 लोगों की मौत हुई, घर में मातम। सूरत में ज्वेलरी शॉप पर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली लेडीज गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने वारदात में शामिल 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के डोडा से बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई, एक युवती ने अपने पिता को फोन करके अंतिम बार कॉल करके चिनाब नदी में छलांग लगाई, सुसाइड किया। कैमूर में उत्पाद हिरासत से शराब तस्करी का आरोपी फरार हुआ, सुरक्षा में लापरवाही बरतने के मामले में होमगार्ड्स हटाए गए। गुजरात में भावनगर में लिव इन पार्टनर की बस स्टैंड पर निर्ममता से हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने सबक सिखाया, क्राइम सीन रिक्रिएट करने के दौरान जमकर पिटाई। मोगा में बिजली कटौती से हाहाकार, सड़क पर उतरे 10 गांवों के किसान, लुधियाना फिरोजपुर हाईवे पर 4 घंटे तक जाम किया, 8 घंटे बिजली देने के आश्वासन के बाद किसानों ने धरना समाप्त किया। संगरूर एसएसपी दफ्तर के बाहर किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की धक्का मुक्की हुई, मांगों को लेकर संघर्ष लगातार जारी रहेगा। बाबा नीम करौली पर बनी हुई फिल्म हनुमान अंश ने इतिहास रच दिया है, 30 दिन में ग्रॉस कलेक्शन 100 करोड़ के पार। 2 करोड़ के बजट में बनी हनुमान अंश फिल्म ने अपने बजट से 50 गुना ज्यादा कमाई की, थिएटर्स में लोगों की भीड़। उत्तराखंड में हनुमान अंश टैक्स फ्री है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया, मुख्यमंत्री ने हनुमान अंश की टीम को बधाई भी दी। मिर्जापुर द मूवी का बॉक्स ऑफिस पर तहलका, फिल्म ने 2 ही दिन में 50 करोड़ के क्लब एंट्री मारी है, ग्रॉस कलेक्शन 68 करोड़ के पार। मिर्जापुर द मूवी ने बनाया रिकॉर्ड, 2026 की चौथी सबसे बड़ी ओपनर फिल्म मिर्जापुर द मूवी बनी है, धुरंधर 2, टॉक्सिक और बॉर्डर 2 है टॉप 3 में। तेलुगु रोमांटिक ड्रामा चक्कोरा लूनर लवबर्ड का टीजर आउट हुआ, रावण कुमार, मलाइका वसुपाल, अनुष्का लोहार मुख्य भूमिका में। आना देवकोंडा वैष्णवी चैतन्य की एपिक का धमाकेदार ट्रेलर आउट हुआ, ट्रेलर में दिखी कॉलेज लाइफ। एआई के दौर में भारतीय सिनेमा की नई छलांग, त्रिनेत्रा एआई प्लेटफॉर्म पूरी तरह से तैयार किया गया, द्वारिका प्रोजेक्ट। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की थर्मन की शूटिंग का दूसरा शेड्यूल पूरा हुआ है, डॉक्टर के किरदार में नजर आएंगे रजनीकांत। शिकागो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बांग्ला फिल्म अनेकों दिन पूर्व की एंट्री, 17 सितंबर को दिखाई जाएगी फिल्म। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नॉर्थ ईस्ट में रेलवे नेटवर्क की शानदार तस्वीर को साझा किया, बैरवी सेरांग रेल लाइन का भव्य ड्रोन नजारा देखा गया। कुतुब मीनार से ऊंचा बनाया रेल पुल, करीब 114 मीटर ऊंचा है पुल और सुरंग से गुजरती ट्रेन की मनमोहक तस्वीरें सामने आई। पुंछ के मेंढर सेक्टर में आर्मी स्कूल में रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, स्कूली बच्चों ने शानदार प्रस्तुति से समा बांधा। स्कूली बच्चों ने नृत्य का भव्य प्रस्तुति से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया, सेना की ओर से छात्रों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। बीजेपी सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने संबलपुर में ऋषि बिल्डिंग की रखी आधारशिला, ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी परिसर में बनेगा स्किल हब, युवाओं को मिलेगा इंडस्ट्री आधारित प्रशिक्षण। क्रिकेट के मैदान के लिए भारत के लिए गुड न्यूज है, वहां से एशिया कप में भारत की शानदार जीत, पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। पाकिस्तान की पूरी टीम महज 55 रन पर सिमट गई, टीम इंडिया ने 8.4 ओवर में 3 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल किया। महिला एशिया कप में भारत की जीत का हैट्रिक, टूर्नामेंट के एक भी मैच नहीं आ रहा है भारत, 6 पॉइंट्स के साथ अंक तालिका में टॉप पर। भारतीय स्पिनर्स में फिरकी में फंसी पाकिस्तानी टीम, श्री चरणी और प्रेमा रावत ने 3-3 विकेट झटके, दीप्ति शर्मा को 2 सफलता। हरमनप्रीत कौर T20 में 150 मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली कप्तान बन गई है, 10 सितंबर को भारत का सेमीफाइनल मैच। यूक्रेन की राजधानी कीव पर 3 दिन तक हमला नहीं करेगा रूस, अमेरिकी प्रतिनिधियों की यात्रा के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने किया युद्ध विराम का ऐलान। अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर रूस के दौरे पर है, राजधानी मॉस्को में पुतिन के दूत ने गर्मजोशी से स्वागत किया। अस्थायी सीज फायर में पहले यूक्रेन की राजधानी कीव और ओडिशा पर रूस ने हवाई हमले किए, एक 9 मंजिला इमारत क्षतिग्रस्त हुई, 2 के घायल होने की खबर। अमेरिका ने ईरानी तेल टैंकर्स पर हमला बोला, खार्ग आइलैंड के पास 4 मिसाइलें दागी, हमले के बाद हड़कंप मचा, सुनी गई धमाके की आवाजें। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने की जवाबी कार्रवाई, हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया गया निशाना, इजरायली सेना ने जारी किया है वीडियो। अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी का बड़ा बयान, कहा गजा के लोगों को जबरदस्ती नहीं हटाया जाएगा, जो लोग वहां से जाना चाहते हैं जाने की आजादी है। म्यांमार के राष्ट्रपति मिंग आन हुइंग ने राजधानी हनोई में वियतनाम के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की, दोनों ही देशों के बीच आर्थिक संबंधों को लेकर चर्चा।
नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या हुई है 1344 के पार। 5000 लोग अभी भी लापता हैं। बाढ़ में 10 दिन के बाद बचाव दलों ने एक चीनी नागरिक को और एक महिला को सुरक्षित बाहर निकाला था। अवैध प्रवासियों के खिलाफ इंग्लैंड के डोवर शहर में अनोखा प्रदर्शन। काले कपड़े पहनकर और चेहरा ढके सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। यूएस ओपन में सेरेना और वीनस विलियम्स की हार। टाई ब्रेक के 5-0 की बढ़त के बावजूद गंवाया मैच।

0: और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता देगी कि कांग्रेस में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल हुआ है। पंजाब कांग्रेस में जारी अंदरूनी खींचतान के बीच भूपेश बघेल को पंजाब प्रभारी के पद से हटा दिया गया है और असम की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। उनकी जगह आप सचिन पायलट पंजाब कांग्रेस के नए प्रभारी बना दिए गए हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि रणदीप सुरजेवाला को गुजरात का प्रभारी बनाया गया है और उनके पास कर्नाटक की मौजूदा जिम्मेदारी भी बनी रहेगी। कांग्रेस का ये फेरबदल ऐसे वक्त में हुआ है जब पंजाब में पार्टी की अंदरूनी कलह खुलकर लगातार सबके सामने आ रही थी। उधर पंजाब में किसानों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। संगरूर में किसानों ने बैरिकेड्स तोड़े और एसएसपी कार्यालय का घेराव किया। तो आपको बता दें कि मोगा में बिजली कटौती से परेशान 10 गांव के किसानों ने लुधियाना फिरोजपुर हाईवे को जाम कर दिया था। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए।
1: संगरूर में किसान आंदोलन का आज 7वां दिन और प्रदर्शन हुआ उग्र। अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में किसान एसएसपी कार्यालय पहुंचे। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए और मुख्य गेट तक पहुंच गए। पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। किसान नेताओं ने साफ किया है कि मांगे पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा। उधर मोगा में बिजली कटौती से परेशान 10 गांवों के किसान सड़क पर उतर आए। पावर ग्रिड के सामने किसानों ने लुधियाना फिरोजपुर हाईवे जाम कर दिया। किसानों का आरोप है कि 8 घंटे बिजली देने का सरकारी दावा जमीन पर पूरा नहीं हो रहा। धान की फसल को सिंचाई के लिए पानी चाहिए, लेकिन लगातार बिजली कटौती और नहरी पानी की कमी से किसान परेशान है। करीब 4 घंटे चले प्रदर्शन के बाद बिजली विभाग के अधिकारी पहुंचे और 8 घंटे बिजली देने का भरोसा दिया। आश्वासन के बाद मोगा में धरना खत्म हुआ, लेकिन किसानों ने चेतावनी दी है कि बिजली आपूर्ति नहीं सुधरी तो आंदोलन और बड़ा होगा। संगरूर में घेराव, मोगा में हाईवे जाम, पंजाब में किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। संगरूर से सिंह कुलवीर, मोगा से तन्मय सामंता, आज तक ब्यूरो।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
2: एक तो एक
3: ए श्राम

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
2: नोवा कोटा से ऊपर मैं त्रिशूली में आया हूँ, देख लीजिए सैलाब का ये सितम।
3: ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया।
2: पीछे जो आपको इमारतें दिख रही है ना, वो सारी बिल्कुल खंडहर हो चुकी है।
3: जो निचले इलाके हैं उन सबसे ऊंचाई की तरफ लोगों को जाने के लिए कहा गया है।
4: चितवन में आज तक की टीम मौजूद है और आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं।
2: मैं आशुतोष मिश्रा,
4: रोहित सिंह,
3: श्वेता सिंह, नेपाल आज तक।
5: गांधी जी के आंदोलन करने का तरीका क्या आज के समय भी उतना प्रासंगिक है?
6: जो तुम गाली देते हो ना गांधी जी, 70 साल की उम्र में दो लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए, पढ़ लो।
7: जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जो गांधी जी ने वापस ले लिया था, वो भी तो किसी और की वजह से लिया था। चौरी चौरा में जो हुआ इंसिडेंट, उनसे उनको क्या मतलब था? अगर वो उसको जारी रखते, क्या पता उस समय इंडिपेंडेंस को थोड़ा जल्दी हो जाता।
6: ताली बजाओ इनके लिए, ये ताली डिजर्व करते हैं।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: ओह सॉरी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: सहारनपुर में जिला कलेक्टर के ऑफिस की ये तस्वीरें यूपी में सियासी जंग का नया अखाड़ा बन गई। भारी सुरक्षा बल के बीच परिसर में बनी एक मस्जिद को ढा दिया गया। ये वही मस्जिद है जिसे सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने अवैध घोषित किया था। सहारनपुर कलेक्ट्रेट में 315 वर्ग मीटर जमीन पर बनी ये मस्जिद थी। शिकायत करने वालों ने दावा किया था ये मस्जिद अवैध तरीके से बनाई गई थी। कोर्ट में जब मस्जिद की फाइल खुली तो अदालत ने पाया कि खसरा संख्या 539 सरकारी अभिलेखों में कचहरी कलेक्ट्रेट के नाम दर्ज है। इसी भूमि पर 315 वर्ग मीटर हिस्से पर मस्जिद का निर्माण किया गया था, लिहाजा कोर्ट ने इसे अवैध माना और 30 दिनों के अंदर हटाने का आदेश दिया। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की। अपील खारिज हुई तो प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। उधर पहले मस्जिद तोड़ने की अफवाह उड़ी, तनाव और संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर था। विपक्ष के कई नेता रात को ही सोशल मीडिया लाइव पर आ गए। कार्रवाई के खिलाफ सहारनपुर आ रही कैराना सांसद इकरा हसन को पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया, जिन्हें बाद में हाउस अरेस्ट कर लिया।
1: जब सभी लोग ये चाहते थे कि हम लोग अधिकारियों से बात करें कि इसमें कुछ वक्त दिया जाए, लोग हाईकोर्ट जाना चाहते थे, वो वक्त ना देने की वजह से हम लोगों को यहाँ पर हाउस अरेस्ट किया गया। तमाम जितने भी सहारनपुर जिले के जिम्मेदार लोग हैं सभी को हाउस अरेस्ट किया गया।
0: उधर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इसे संविधान के लिए काला दिन बताया और मामले को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कही।
2: चुनाव की रणनीति से जोड़कर नहीं देखता हूँ, ये हम लोगों के लिए चुनाव का विषय नहीं है, ना हम इसके ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। हमारी मस्जिद शहीद हुई है, हमें तकलीफ है और हम अपने दर्द को और अपनी तकलीफ को कोर्ट के सामने बयान करेंगे।
0: विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आखिर मस्जिद को गिराने की इतनी जल्दी क्या थी? क्या ऊंची अदालत के फैसले का इंतजार प्रशासन नहीं कर सकता था? विपक्ष योगी सरकार पर जानबूझकर मस्जिदों को टारगेट करने का आरोप लगा रहा है।
3: क्यों हो रहा है ये सब? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम के धन में ये चोरी करते हुए पकड़े गए, इसलिए क्रिमिनल एंगल दे रहे हैं जानबूझकर। क्या हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिल सकता था? क्या सुप्रीम कोर्ट में वो नहीं जा सकते थे अपील के लिए? वो अधिकारियों ने मिलकर के सरकार के सारे पर ये काम किया कि जिससे अगले कोर्ट में उन्हें न्याय न मिल जाए।
4: बीजेपी को, देश के प्रधानमंत्री को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लफ्ज मस्जिद से नफरत है, इसीलिए मस्जिद को देखते ही इनके दिलो दिमाग में दर्द शुरू हो जाता है। अरे आपके दिलो दिमाग में दर्द शुरू होगा, हो सकता है वो आपका प्रॉब्लम है। आप मस्जिद को की तरफ देखना नहीं चाहते, उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहते, वो आपका प्रॉब्लम है। मगर आपको देखना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमको दिया गया है।
0: उधर बीजेपी का कहना है कि कोर्ट के फैसले पर एक्शन हुआ है जिसे धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए।
5: जहां तक सहारनपुर की घटना के संदर्भ में है, वो एजेंसीज और सरकार की जो भी डिपार्टमेंट है वो विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर किसी प्रकार का राजनीतिक नजरिया से देखने की जरूरत है या किसी भी बिल्डिंग को उसकी धार्मिक पहचान से देखने की जरूरत है। किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर हो उसे सिर्फ इस दृष्टि से देखना चाहिए कि वो कानूनी है अथवा गैर कानूनी है।
0: तनाव और सियासत को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। सहारनपुर से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
6: बारह बजे वाली ट्रेन 3 बजे चलेगी। तो यही है संगीत, बाकी लोग एडजस्ट करें।
7: मेरा संगीत माय वे।
8: गन्ना बड़े सियासत में फंसा हुआ इस समय, नहीं
9: गन्ना की वैल्यू बढ़ गई है।
8: हाँ, सड़क से उठा के स्टार बना दिया गन्ना। हाँ,
10: यही है था, कभी हमने अन्ना को बनाया कभी गन्ने को बनाया।
7: गन्ने को हल्के में लेते थे, आज गन्ना ज्यादा बताओ, सबको जूस निकाल दिया भाई।
8: पलक ने बोला कि तुम आर्मी वगैरह ज्वाइन करो। उसकी माँ ने कल बोला कि ऑफिसर वगैरह बन जाओ, तो उसने कहा क्यों बन जाए? उसने कहा अच्छा लगेगा हमको, मेरा शौक है, अरमान है। उसने मेरा भी अरमान था कि मेरे माता पिता मतलब पिताजी और मम्मी जो है वो ऑफिसर होते हैं। बने कि आप लोग, हम कह रहे तेरे पैदा होने से पहले अपन पैदा हुए थे। तो मैंने कहा तू आर्मी कमांडो वगैरह बन, मैंने ब्लैक कैट कमांडो सब बनते हैं, तो ब्लैक डॉग कमांडो बन जाए।
11: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
13: इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: बिहार में उफान पर गंगा, 11 जिलों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। राजधानी पटना से लेकर भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय तक पानी पानी, करीब 17 लाख लोग प्रभावित। दिल्ली यूनिवर्सिटी के SRCC के शताब्दी समारोह में विपक्ष पर प्रधानमंत्री का ताबड़तोड़ हमला। कहा, सच की हुंकार के आगे नहीं टिकेगी झूठ की गूंज। माए बाप कल्चर से लेकर दिमागी नक्सल तक का किया जिक्र। महाराष्ट्र में छात्र आंदोलन के समर्थन में आए राहुल गांधी। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, पेपर लीक से MPSC पर भरोसा खत्म। छात्रों की हर मांग को बताया जायज। फडणवीस सरकार से एक्शन की मांग। अंदरूनी कलह के बीच पंजाब कांग्रेस में बदला। भूपेश बघेल की जगह सचिन पायलट को बनाया गया प्रभारी। सुरजेवाला को मिली गुजरात की जिम्मेदारी। और अमेरिका ने ईरान के 3 ऑयल टैंकर्स को बनाया निशाना। खार्ग आइलैंड के पास भी टैंकर पर हमला। ईरान बोला, अमेरिकी हरकतें जारी रही तो मिलेगा करारा जवाब।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: लड़ाई वो ही जीतेगा जिसके हथियार अपने खुद के हैं।
1: Nobody can twist our arms and say, हम जो बोले वो करना चाहिए। जब तक मेक इन इंडिया नहीं होता है, जब तक हम अपने आप नहीं बना पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
2: आत्मनिर्भर भारत खासकर सिक्योरिटी के मामले में बहुत बहुत जरूरी है।
3: आप जो यहाँ जो हमारी गैलरी देख रहे हैं, ये बेसिकली सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग बनाते हैं।
4: लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट कैटेगरी में हमने पूरा मेक इन इंडिया बना दिया है।
3: इसकी जो पूरी डिजाइन है वो कम्प्लीटली हमारे ही इंडियन पायलट्स के द्वारा बनाई गई है।
5: ये जो मार्क टू है, दे आर जस्ट गोइंग टू इंक्रीज आवर कैपेबिलिटी।
3: जो कंपोनेंट्स हैं एयरक्राफ्ट के, मटेरियल जो लगता है एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए, वो पूरी तरह से अब हमारे देश में बनने लगे हैं।
6: मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में से है जिनके पास पूरी तरह से आत्मनिर्भरता है।
0: ब्रह्मोस अकेली वो मिसाइल है जो आज पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है।
5: हमें हमेशा डेवलप करते रहना, आगे बढ़ते रहना है।
2: बहुत जरूरी है आत्मनिर्भर होना।
7: नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं श्वेता सिंह। वंदे मातरम के एक दशक से ज्यादा लंबे सफर में हमने हरदम आपके सामने आकर कहा जय जवान, लेकिन आज बारी है जय विज्ञान कहने की, क्योंकि आज भारत दुनिया के उन देशों में है जो अपने फाइटर जेट्स भी खुद बनाते हैं, अपनी मिसाइलें भी खुद बनाते हैं, अपनी सुरक्षा प्रणाली भी खुद बनाते हैं। और आज हम आपको मेक इन इंडिया का वही गर्व भरा सफर दिखाएंगे।
8: मेक इन इंडिया केवल नारा नहीं, भारत की मुहिम।
9: दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों और मेक इन इंडिया की ताकत भी देखी है। हमारे भारतीय हथियारों ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई।
8: ये सिर्फ हथियार नहीं बनाते, बनाते हैं विश्वास।
10: देश है कि भारत केवल विदेशों से इंपोर्ट किए गए हथियारों और प्लेटफॉर्म पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि भारत में बने अस्त्र और शस्त्र भी हमारी सैन्य शक्ति का अब हिस्सा बन चुके हैं। अब भारत में बने और भारतीय हथियारों से बने हथियार भी अचूक और अभेद्य।
8: ये सिर्फ टैंक नहीं बनाते, बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत।
3: पूरी तरह से हमको ये कॉन्फिडेंस है, हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं।
8: ये सिर्फ तकनीक नहीं, ताकत है भारत की।
4: अबाउट 350 इंडस्ट्रीज इन द कंट्री टुडे आर इन्वॉल्व्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलसीए।
8: ये है मेक इन इंडिया, वो तैयारी जिसमें हर स्क्रू, हर सिस्टम, हर सॉफ्टवेयर भारत का है, भारत के लिए है।
3: तो इसकी जो पूरी डिजाइन है वो कम्प्लीटली हमारे ही इंडियन पायलट्स के द्वारा बनाई गई है। अच्छा। उनके कंफर्ट के हिसाब से, उनके लिए जो चीज यूजफुल है, जिस तरह से वो ज्यादा एफिशिएंटली ऑपरेट कर सकते हैं, उस तरह से इस कॉकपिट को बनाया जाता है।
8: भारत अब रक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं, वो अपने ड्रोन, अपनी मिसाइल, अपने फाइटर जेट खुद बना रहा है। मेक इन इंडिया कोई नारा नहीं, ये भारत की आत्मनिर्भरता की हुंकार है। मेक इन इंडिया कदम दर कदम की उपलब्धि है। इंजन के एक एक पुर्जे का स्वदेशीकरण है, चाहे एयर कंडीशनिंग हो, चाहे ऑक्सीजन संचार हो, चाहे ढांचे का मटेरियल हो। मेक इन इंडिया मतलब धीरे धीरे 100% इंडियन।
11: जो अभी दिखा रहा है इधर, ये एयर कंडीशन सिस्टम का कंपोनेंट्स है। सो पहले टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 614 डिग्रीज होता है। सो LCA मार्क वन में 600 डिग्रीज है, अभी जो मार्क टू का है 614 डिग्रीज है। ये सारे जो LRUs इधर डिस्प्ले हुआ है वो सब मार्क टू का भी क्वालिफाइंग किया हुआ है।
12: This is a tire.
13: ये एक टायर है जिसे हमने MRF के माध्यम से विकसित किया है। हमने इसका 101 बार परीक्षण किया है।
14: All the sensors, basically rate sensors.
15: सभी सेंसर्स और सिस्टम तैयार है। ये तकनीक एकीकृत करने और परीक्षण के लिए पूरी तरह से योग्य और तैयार है।
16: ये जो एक्चुएटर्स है जो कि मार्क टू में इस्तेमाल होने वाले हैं, ये एक्चुएटर्स डायरेक्ट ड्राइव वॉल टेक्नोलॉजी पे आधारित है। इस तरह की टेक्नोलॉजी सबसे पहले अमेरिका ने विकसित करी थी अपने प्रोग्राम्स के लिए, उसके बाद में हमारा देश दूसरा देश है जिसने इस तकनीक को विकसित किया है।
15: वी हैव डेवलप्ड इस कंपोनेंट को हमने सबसे पहले LCA में विकसित किया था, जिसमें 70% कंपोनेंट स्वदेशी थे और 30% इम्पोर्टेड। अब हमने इसे घटाकर 13% कर दिया है।
7: एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA की तरफ से जो सबसे नया तोहफा देश के लिए तैयार किया जा रहा है वो है AMCA। AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो सिंगल सीटर ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये एक स्टेल्थ फाइटर है। अब यहाँ पर देखिए, स्टेल्थ यानी कि एक ऐसा लड़ाका जो कि अदृश्य हो जाता है अपने दुश्मनों के लिए, और उसमें इसकी भूमिका, इसके पेट के अंदर देखिए, बेली के अंदर ये सारे वो हथियार हैं। बाहर भी कैरी कर सकता है लेकिन भीतर छुपाकर भी ये कैरी कर सकता है। ये एक ऐसा फिफ्थ जेनरेशन फाइटर होगा भारत में ही विकसित, जो हमारी ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुश्मन अच्छी तरह समझ चुका है अगर भारत की तरफ आंख उठाई तो सीधा जवाब मिलेगा, और वो भी बिना किसी चेतावनी। AMCA, तेजस, ब्रह्मोस, पिनाका, आकाश, रुस्तम जैसे स्वदेशी हथियार इसकी ताकत है। यही है असली मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर, शक्तिशाली और विजयी भारत।
17: आजकल के जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें कोई परमानेंट दोस्त, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं हो सकता है। तो किसी और पे डिपेंड करना अपनी देश की सुरक्षा के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो कंसिडरिंग दैट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी है, आत्मनिर्भरता को और इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि इसी के बलबूते पे हम अपने देश की रक्षा कर सकते हैं।
7: जब कोई देश अपने आसमान की सुरक्षा खुद के बनाए जहाज से करना सीख जाता है तो वो सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं बनाता, वो इतिहास रचता है। भारत के लिए AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट केवल एक परियोजना नहीं, आत्मनिर्भरता की उड़ान है।
15: AMCA एक बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म है। ये भारत द्वारा डिजाइन किया जा रहा एक पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है, और ये देश के लिए गर्व की बात है कि इसका डिजाइन और विकास पूरी तरह से स्वदेशी रूप से हो रहा है, जो LCA की सफल यात्रा की गवाही देता है।
7: मेक इन इंडिया के तहत इस जेट के दो वेरिएंट्स बनाए जा रहे हैं। मार्क वन में विदेशी इंजन, मार्क टू में स्वदेशी इंजन होगा। दुनिया में केवल 3 ही देशों के पास इतने उन्नत जेट हैं। स्टेल्थ तकनीक वाला ये विमान दुश्मन के रेडार से बच निकलता है, क्योंकि इनका डिजाइन रेडार सिग्नल को कम करता है। AMCA भारत का पहला फिफ्थ जेनरेशन स्टेल्थ फाइटर होगा, यानी ऐसा फाइटर जेट जो दुश्मन के रेडार को चकमा देकर बिना दिखाई दिए उसका एयर डिफेंस सिस्टम तोड़ सके।
15: स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी आंतरिक हथियार प्रणाली है, जहां आप देख सकते हैं कि एयरक्राफ्ट के निचले हिस्से में हथियार अंदर की ओर लगाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि जब ये स्टेल्थ मोड में उड़ान भरता है तो कोई भी हथियार बाहर से दिखाई नहीं देता।
7: किसी भी ऑपरेशन में कामयाबी के लिए ऐसी तकनीक ही तो जरूरी मानी जाती है, जहां दुश्मन की सीमा में घुसने से पहले उसकी सुरक्षा की परतों को चकमा दिया जा सके। ऐसे मिशन के लिए AMCA जैसे स्टेल्थ जेट वरदान साबित होंगे। AMCA में इंटरनल वेपन्स भी हैं। इसका मतलब है कि हथियार छिपे हुए हैं, जब तक कोई जेट अपने हथियारों को छिपा नहीं सकता, तब तक वो वास्तव में पूरी तरीके से स्टेल्थ फाइटर नहीं माना जाता।
4: एक्सटर्नल अगर लगा दिया तो वो स्टेल्थ नहीं होता है, जब वे इंटरनल रहता है तब स्टेल्थ रहता है। एक्सटर्नल इज नॉन स्टेल्थ कॉन्फिगरेशन।
12: पर इसमें दोनों कैपेबिलिटीज,
4: इसमें दोनों कैपेबिलिटीज है।
7: लेकिन ये कहानी केवल टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये कहानी है उन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की जिन्होंने 1984 में LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से शुरुआत की और आज एमका तक भारत को ले आए।
12: सर, जब मेक इन इंडिया की बात आप करते हैं, आप एक इकोसिस्टम की बात करते हैं, और हमने देखा कि जो जो उपकरण बन रहे हैं यहाँ पे, न केवल जो फाइनल असेंबल्ड एयरक्राफ्ट है हमारा, बल्कि उसकी हर छोटी चीज, प्राइवेट से लेकर सरकारी तक, हर जगह, यही मकसद था आप लोगों का?
18: तो इसका जब हम लोगों ने बनाना शुरू किया तो उसका जो बेसिक इंटेंट ये था कि हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएं हर दिशा में। तो एयरक्राफ्ट बनाया, केवल एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी ही नहीं, उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स लगते हैं वो सब हम लोगों ने अपने इंडिया में डेवलप करके यहाँ पे हम लोगों ने उनको इंस्टॉल किया। तो आप जो यहाँ जो हमारी गैलरी देख रहे हैं, ये बेसिकली सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग बनाते हैं।
7: LCA तेजस की पहली उड़ान 2001 में थी। 2013 में इसे इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया और 2018 तक दो स्क्वाड्रन तैयार। भारत का तेजस दुनिया के सबसे हल्के और घातक फाइटर जेट्स में से एक है। सुपरसोनिक रफ्तार से लैस ये हवा में दुश्मन के विमानों का पीछा कर उन्हें खत्म कर सकता है। सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर हवा से हवा और हवा से जमीन में सटीक हमला करने में सक्षम।
18: ये जो है इनको हैवी स्टैंड ऑफ वेपन्स कहते हैं, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पे अटैक कर सकते हैं। इस तरह की मिसाइल्स हैं, इस तरह के बॉम्ब्स हैं जो बहुत दूर तक ग्लाइड करके जाते हैं और जो स्पेसिफिक टारगेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर अटैक करते हैं।
7: LCA तेजस के वेरिएंट्स पर भी मेक इन इंडिया के तहत काम काफी आगे बढ़ा है। तेजस मार्क 2 4.5 जेनरेशन का फाइटर जेट है जो तेजस मार्क 1 और पांचवी पीढ़ी के एमका की कड़ी साबित होगा।
19: LCA मार्क 1 ये
15: आप देखेंगे कि मार्क 1 पहले से ही स्क्वाड्रन में शामिल है, यानी इसे विकसित किया जा चुका है। पायलटों को मार्क 1 उड़ाने की अनुमति है। मार्क 1 और मार्क 2 अगली पीढ़ी के विमान है। मार्क 1 एक फोर्थ जनरेशन का विमान है, जबकि मार्क 2 एक 4.5 जनरेशन का विमान है। मार्क 2 में हमने मार्क 1 की तुलना में कई सुधार किए हैं। इसका पूरा ढांचा ही अलग है। इसकी डिजाइनिंग में एरोडायनामिक्स का ख्याल रखा गया है। मार्क 2 एक हथियार युक्त विमान है।
7: ये सिम्युलेटर भी देखिए, इसका भी स्वदेशी पहलू आपको गर्व से भर देगा।
20: ये LCA Mark 2 कॉकपिट का सिम्युलेटर है। यहाँ पर हम LCA कॉकपिट में जो पायलट को दिखाया जाता है, जिस तरह के कंट्रोल्स वो इस्तेमाल करता है, उनको डिजाइन करते हैं और उनको इवैल्यूएट करते हैं। तो ये फैसिलिटी हमको उन सब चीजों को सिमुलेट करने में हेल्प करती है।
15: ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें हमने XR को पारंपरिक सिमुलेटर्स के साथ जोड़ा है। जब पायलट बैठता है और यह डिवाइस मौजूद होता है तो उसे पूरा 360 डिग्री का दृश्य मिलता है। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली 180 डिग्री का पूरा अनुभव मिलता है।
7: ये फाइटर जेट्स अधिकतम 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकते हैं। करीब 2500 किलोमीटर की रेंज और 56,000 फीट ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम होंगे। इनमें 30 मिलीमीटर की गन लगी होगी जो एक मिनट में 1500 से लेकर 1800 गोलियां दाग सकती है। इनकी रेंज 200 से 1800 मीटर। जेट में 13 हार्ड पॉइंट्स होंगे जिन पर अलग अलग तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं। इसमें हवा से हवा में मार करने वाली 5 मिसाइलें और हवा से सतह पर मार करने वाली 4 मिसाइलें लगाई जाएंगी। इसके अलावा रुद्रम 1-2-3 एंटी रेडिएशन मिसाइलें, 4 प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब, 1 लेजर गाइडेड बॉम्ब, क्लस्टर म्यूनिशन,
1: लॉयट्रिंग म्यूनिशन और अनगाइडेड बॉम्ब भी शामिल होंगे। भारत अब आत्मविश्वास से कह सकता है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कैटेगरी में वो अग्रणी है।
12: क्या पिछले कुछ सालों में आपने कैसा परिवर्तन देखा है? क्या मेक इन इंडिया वाकई एक मुहिम बन चुका है देश के?
3: हम लोगों ने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया है कि सब चीजें देश में बन सकें, तो अब वो धीरे धीरे ये इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है जहाँ पे जो भी हम चाहें वो पूरे जो कंपोनेंट्स हैं एयरक्राफ्ट के, जो मटेरियल जो लगता है एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए, जो भी उसके अंदर LRUs लगते हैं, वो पूरी तरह से अब हमारे देश में बनने लगे हैं और हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं उस क्षेत्र में। तो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम पूरा हमारा है, एवियोनिक सिस्टम पूरा हमारा है, सब कुछ हमने अब अपने आप देश में तैयार कर लिया है।
1: एमका और तेजस की कहानी अगर आज यहाँ तक पहुँची है तो उसके पीछे कई वैज्ञानिक और टेक्नीशियंस की मेहनत है, क्योंकि आसमान में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती।
12: What is this place? यहाँ पर exactly क्या हो रहा है?
13: इसे एवियोनिक्स इंटीग्रेशन फैसिलिटी कहा जाता है। यह एक वास्तविक परीक्षण सुविधा है जहां पूरे भारत में विकसित किए गए एवियोनिक्स सब सिस्टम को जमा किया जाता है। जब किसी सब सिस्टम का यूनिट लेवल परीक्षण पूरा हो जाता है तो उसे यहां लाया जाता है और फिर हम इसका परीक्षण करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकली, मैकेनिकली और टाइमिंग के लिहाज से एक दूसरे से संवाद कर रही हैं। यहाँ यह जांचा जाता है कि क्या यह सिस्टम उन सभी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है।
21: क्लियर टू गो फॉर द एयरक्राफ्ट।
12: तो इसको एक कॉकपिट कहा जा सकता है। जो चीजें अलग अलग हमने वहाँ पर देखी हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर हैं। एवरीथिंग इज
22: एक्चुअली व्हाट आई शोड। दरअसल मैंने जो आपको वहाँ दिखाया वो एक सिस्टम डेवलपमेंट और डिजाइन फैसिलिटी थी। यहाँ LRU उसी नेटवर्क के साथ जुड़े होते हैं जैसे कि विमान में होते हैं। ये कोई सिमुलेशन नहीं है, पायलट यहाँ से उड़ान का अनुभव ले सकता है।
1: भारत आज उस दौर में जहां मेक इन इंडिया केवल लेबल नहीं बल्कि भारत की पहचान बन गया है। एमका और तेजस इसका सबसे चमकता प्रतीक है।
12: मेक इन इंडिया कितनी बड़ी जरूरत है आज देश की और कितनी बड़ी शक्ति भी है, आप क्या कहेंगे देशवासियों?
23: मैडम ऐसा है, जब तक चीज़ हम नहीं बनाते हैं, किसी और के भरोसे रहते हैं, तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। हमें हमेशा आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसमें दो फायदे हैं, एक जो है जो इक्विपमेंट बनाया जाता है, जो पैसा भारत में रहता है, लोगों को काम मिलता है। उसके अलावा इन केस ऑफ वॉर नोबडी कैन डिक्टेट दैट आई विल नॉट गिव यू वेपन्स। We can make our own choices. The way India is going ahead, we will not be dependent on anybody. Nobody can twist our arms and say, "हम जो बोलें वो करना चाहिए." ये बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक मेक इन इंडिया नहीं होता है, जब तक हम अपने आप नहीं बना पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक हम किसी और पे भरोसे रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बहुत जरूरी है।
12: भारत ने आत्मनिर्भरता के संकल्प से वो हासिल किया है जिसे देखकर दुनिया चौंक रही है, और इसके पीछे ताकत है DRDO की, जिन्होंने भारत के लिए ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक यूनिवर्सल क्रूज मिसाइल को तैयार किया है जो ध्वनि की गति से 3 गुना तेज यानी Mach 3 की गति से उड़ती है। यह जमीन, समुद्र, हवा हर जगह से लॉन्च की जा सकती है। रेंज 290 से 450 किलोमीटर और इसमें 200 से 300 किलोग्राम विस्फोटक होता है जो इसे बड़े सैन्य ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम बनाता है। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत है कि इसे फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर विकसित किया गया है, यानी एक बार इसका टारगेट सेट करो और भूल जाओ, फिर टारगेट ध्वस्त होने की खबर ही आती है।
1: भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्क्वा नदी को मिलाकर इस मिसाइल को नाम दिया गया ब्रह्मोस। ऑपरेशन सिंदूर में इस मिसाइल ने जिस तरह पाकिस्तान के 11 एयरबेस को निस्तनाबूद किया, उसके बाद ये पूरी दुनिया में अपनी मारक क्षमता को लेकर चर्चा में है।
24: आप उसको एक पहले से पूर्व निर्धारित स्थान से आप लॉन्च करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ प्रहार करेगी, तो उसकी स्पीड, उसकी जो गोपनीयता है, स्टेल्थ है, वो और भी कई गुना बढ़ जाएगी। तो यही चीज हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखी।
0: यह है पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस, रावलपिंडी के बेहद करीब स्थित एक हाई सिक्योरिटी मिलिट्री जोन। 9 मई की तारीख जिसने इतिहास को एक नया मोड़ दिया। मेड इन इंडिया हथियारों की ताकत ने वो करिश्मा दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ था।
2: We have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media.
0: इस ऑपरेशन में भारत में बनी सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इस एयरबेस पर हुए सटीक और साहसिक हमले ने एक स्पष्ट संदेश दे दिया, अगर भारत की सुरक्षा पर सवाल आता है तो पलटवार घातक होता है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस को जमीन, समुद्र और हवा से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलग अलग संस्करण हैं, जैसे सतह से सतह और हवा से हवा पर मार करने वाले। इसे जहाजों और पनडुब्बियों से दागा जा सकता है, जो इसे बेहद लचीला और ताकतवर बनाते हैं।
5: ये एक ऐसा मिसाल है जॉइंट वेंचर का बिटवीन भारत और रूस। इसलिए नाम भी है ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा नदी, तो दोनों नदियों को मिलाकर के ये नाम दिया है। एक बहुत ही मैं कहूँगा वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड।
6: क्रूज मिसाइल की कैटेगरी में फास्टेस्ट मिसाइल है पूरी दुनिया के अंदर। एक वो स्पीड लेती है 3 मैक की, 3 मैक का मतलब समझ लीजिए 3,700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लेती है। एक्यूरेसी देखिए उसकी, 1 मीटर CEP, 1 मीटर तक जाकर वो करेक्ट लगेगी सेंटर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर। एक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
0: ब्रह्मोस की ताकत को अब सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया मान चुकी है। इसकी स्पीड, इसकी सटीकता और मारक क्षमता ने इसे वैश्विक बाजार में एक पसंदीदा हथियार प्रणाली बना दिया है। दुनिया भर में इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। साल 2022 में फिलीपींस ने भारत के साथ $375 मिलियन की बड़ी डील साइन की। ये भारत की पहली ब्रह्मोस एक्सपोर्ट डील थी। वहीं वियतनाम के साथ $700 मिलियन की डील पर बातचीत जारी है। इंडोनेशिया भी इस मिसाइल को खरीदने में रुचि दिखा चुका है और करीब 200 से $350 मिलियन की डील पर चर्चा चल रही है। इसके अलावा ब्राजील ने भी खास तौर पर अपनी नेवी के लिए ब्रह्मोस प्रणाली में रुचि दिखाई है और बातचीत का दौर जारी है। भारत के पास मिसाइलों का ऐसा भंडार है जो दुश्मन के दिल में खौफ भर देता है। भारत के पास अग्नि सीरीज की मिसाइलें हैं जो लंबी और मध्यम दूरी तक मार करने में सक्षम है। ये मिसाइलें परमाणु हथियारों से लैस होती हैं और सतह से सतह पर हमला करने की ताकत रखती हैं। इसके अलावा भारतीय सेना के पास पृथ्वी मिसाइल प्रणाली के 3 वेरिएंट हैं, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। ये सभी सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो परमाणु हथियार ले जा सकती हैं। ये कम दूरी तक की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और पूरी तरह से स्वदेशी तरीके से विकसित की गई हैं। ये भारत में निर्मित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसे DRDO ने विकसित किया है। ये मिसाइल भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी सामान्य शब्दों में कहें तो आंखों से दूर लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है।
24: उस टारगेट को जो पायलट को नजर नहीं आ रहा है उसको टारगेट करना है तो कम से कम 40 किलोमीटर की रेंज की आपके पास में कोई मिसाइल होनी चाहिए। तो बेसिकली मोटा मोटी 40 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाली एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को बियॉन्ड विजुअल रेंज कहेंगे, उसके रडार और सीकर्स को मिलाकर, क्योंकि ये क्षमता तो रडार्स और सीकर्स की होगी कि वो जो चीज नहीं दिख रही है वो रडार पकड़ेगा और फिर जाके उसको हमला करेगा। तो एक एक मिसाइल की रेंज और प्लस उसका जो रडार और जो सीकर है उसकी क्षमता, इन दोनों चीजों को जोड़ के
8: आप बियॉन्ड द विजुअल रेंज की मिसाइल तैयार करते हैं।
1: नाग मिसाइल एक फायर एंड फॉरगेट प्रणाली है, यानी इसे लॉन्च करने के बाद मिसाइल खुद ही लक्ष्य का पीछा करती है और उसे नष्ट कर देती है। ये टैंकों पर सटीक हमले करने के लिए डिजाइन की गई है।
9: नाग जो है वो एक एंटी टैंक मिसाइल है जो फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पे काम करती है, यानी कि एक बार आप उसको टारगेट के ऊपर लॉक करके फायर कर दें तो आप भूल जाइए, उसको गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप टारगेट को ढूंढती है और तबाह करती है।
1: भारत अपनी रक्षा प्रणाली को लगातार सशक्त बना रहा है। ब्रह्मोस एनजी हल्की और फुर्तीली मिसाइल जो दुश्मन को पल भर में नष्ट करने में सक्षम है। इसे फाइटर जेट से फायर किया जा सकता है। रुद्रम 2-3-4 मिसाइलें दुश्मन के रेडार सिस्टम को तबाह करने में सक्षम है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल आवाज से 5 गुना तेज है, जिसके आगे दुश्मन टिक ही नहीं सकता। पिनाका की सटीकता, उसकी खामोशी और उसका स्केल, युद्ध के मैदान में ये गेम चेंजर है।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हैवान की कहानी में हर किरदार का अपना रिश्ता है, उसमें जुड़े होते हैं आपके सपने, आपकी पसंद और आपकी कहानी। इसलिए घर के लिए चुनिए सिर्फ E3, the E3 Group. India's leading manufacturer of interior and exterior products. E3 Group celebrates the release of Hevan on the 11th of September.
1: Shabam! Ek to ek. Ishram.

0: हैवान की कहानी में हर किरदार का अपना रिश्ता है, उसमें जुड़े होते हैं आपके सपने, आपकी पसंद और आपकी कहानी। इसलिए घर के लिए चुनिए सिर्फ E3, the E3 Group, India's leading manufacturer of interior and exterior products. E3 Group celebrates the release of Hevan on the 11th of September.
1: Shabam! Ek to ek. Ishram.

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सुपर।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: खाना कहाँ से मंगवाया?
3: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
5: जीके वॉल मैक्स।
3: बेस्ट प्राइमर
6: जीके मैक्स।
3: बेस्ट पेंट
6: जीके मैक्स।
3: जीके मैक्स। बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
7: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूं?
3: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
3: In association with
4: Anmol Biscuits, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
5: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: हम बस कल्पना कर सकते हैं कि ये शहर पहले कैसा रहा होगा।
7: इस मलबे और मिट्टी के नीचे ये पूरा बाजार का हिस्सा जा चुका है। यहाँ पर बिना किसी स्टिक के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
8: ये हब है जहाँ पर सबसे बड़ी तलाश चल रही है।
7: जैसे ही उस बाढ़ को, उस तबाही को, त्रासदी को आते लोगों ने देखा, इसी रास्ते से आगे होकर वो ऊपर की तरफ भागे।
9: कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, बरेली, नेपाल, आज तक।

भारत अब एक रक्षा निर्यातक शक्ति के रूप में उभर रहा है। ब्रह्मोस की मांग अलग अलग देशों में बढ़ी है तो भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को भी दुनिया एक बेहद ताकतवर हथियार के रूप में देख रही है। हर पिनाका रेजिमेंट में 6 पिनाका लॉन्चर यानी कुल मिलाकर 18 लॉन्चर की 3 बैटरियां होती हैं, जिनमें से हर लॉन्चर 44 सेकंड के अंतराल में 12 रॉकेट लॉन्च करता है। इसमें 1 वर्ग किलोमीटर तक का इलाका

0: वाह करने की क्षमता होती है। आज इसका मार्क 3 वर्जन 120 किलोमीटर तक मार कर सकता है। गाइडेड रॉकेट्स, जीपीएस आधारित सिस्टम और शूट एंड स्कूट तकनीक इसे दुनिया की सबसे घातक सिस्टम्स में शामिल कराते हैं। '86 में डीआरडीओ ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को रूस के BM-21 ग्रैड सिस्टम के विकल्प के रूप में तैयार किया था। आज ये केवल भारतीय सेना की रीढ़ नहीं बल्कि दुनिया में भारत की तकनीक का दम है। इतना ही नहीं, भारत अब इसका निर्यात भी कर रहा है। '23 में आर्मेनिया ने भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम लिया था और अब फ्रांस भी इसे खरीदने की तैयारी में। फ्रांस की एक टीम भारत आकर इसका टेस्ट भी देख चुकी है। ये मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम आप देख रहे हैं, जिसे ग्रैड सिस्टम के तौर पर भी जाना जाता है। 20 सेकंड के अंतराल में 40 रॉकेट फायर किए जा सकते हैं। अब समझिए कि किस तरीके से जो हमारी विध्वंसक क्षमता है वो बढ़ जाती है। 600 से 800 मीटर के दायरे का पूरा इलाका ये ध्वस्त कर सकते हैं।
1: यहाँ देखिए कि दुश्मन का फैलाव, जैसे हमारे टैक्टिकल कमांडर ने देखा कि वो किन इलाकों में दुश्मन फैला हुआ है, उन सभी इलाकों में दुश्मन के ऊपर भारी तादाद में फायर आ रहा है। और आप इमेजिन कीजिए कि ये ट्रेनिंग चल रही है और इस ट्रेनिंग के दौरान जो हम फायर कर रहे हैं केवल 1/10 फायर पावर है, और जब एक्चुअल लड़ाई होगी तो इसमें कम से कम 10 गुना फायर पावर उसके ऊपर आएगा। और विभिन्न प्रकार के जो हमारे फायर पावर यूनिट्स हैं, मीडियम्स, 105, सभी प्रकार के और रॉकेट्स इसके ऊपर फायर होते हैं। और आप देखेंगे कि इसके बाद दुश्मन के लिए वहाँ पे कोई चारा नहीं रह जाता है। और इस प्रकार से हमारी आर्टिलरी की तस्वीर जो है वो दुश्मन को पूरी तरह से बर्बाद करती है।
0: पिनाका के कई संस्करण तैयार हो चुके हैं, मार्क 1 से लेकर मार्क 3 तक। मार्क 3 की मारक क्षमता 120 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। गाइडेड और अनगाइडेड दोनों तरह के रॉकेट, शूट एंड स्कूट क्षमता और अब आधुनिक नेविगेशन सिस्टम से ये और भी सटीक बन चुका है। पिनाका की तैनाती भारत के दोनों ही अति संवेदनशील बॉर्डर यानी पाकिस्तान और चीन से लगने वाली सीमाओं पर है।
2: वेरी वेरी इफेक्टिव, मतलब दुश्मन कहीं पर भी हो। शुरुआत में इसका रेंज तकरीबन 40 किलोमीटर था, अब इसको बढ़ा करके हम लोगों ने 80 से 120 किलोमीटर तक ले गया। इसमें कई देशों ने इंटरेस्ट दिखाया है पिनाका में, और पिनाका को देख कर खासकर फ्रांस इंटरेस्ट दिखा रहा है कि ये बहुत ही बढ़िया है। यूक्रेन की लड़ाई में जिस प्रकार से मिसाइल्स, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया गया, तो उसके मद्देनजर जो पिनाका अगेन एन इंडिजिनस मिसाइल प्लेटफॉर्म।
3: सोचिए एक टारगेट के ऊपर 40 सेकंड के अंदर अंदर इतने सारे रॉकेट आकर इकट्ठे गिर जाएं, दुश्मन को तो जब पता चलेगा जब वो उसके ऊपर फायर होंगी, और तब तक इट इज़ टू लेट। और अपने आप में पिनाकाज ने इस बार सिंदूर के टाइम में भी पूरी डिप्लॉयमेंट में वो काम किए थे जो कि शायद मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ने कभी सोचा होगा। एक छोटे से समय में इतनी बड़ी एचई कंटेंट, टीएनटी कंटेंट एक टारगेट पर डालना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
0: पिनाका की सटीकता, उसकी खामोशी और उसका स्केल, युद्ध के मैदान में ये गेम चेंजर है। भारत का देसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम आकाश ये 45 किलोमीटर तक वार कर सकता है और 18,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ते टारगेट्स को मार गिराने में सक्षम माना जाता है। इसकी रफ्तार 2,500 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्मार्ट गाइडेंस सिस्टम आखिरी पल में भी टारगेट को लोकेट करने में इसे सक्षम बनाते हैं। एक साथ 12 मिसाइलें ये दाग सकता है। सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह मोबाइल है, यानी इसे ट्रक या टैंक पर लादकर सीधा जहां पर युद्ध है वहां तक आप ले जा सकते हैं। ये वायुसेना और थल सेना दोनों के पास है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान ने फतेह 2 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया तो आशंका थी कि निशाना दिल्ली थी, लेकिन हरियाणा के सिरसा में ही भारतीय सिस्टम ने उसे नष्ट कर दिया। डीआरडीओ का विकसित पराक 8। इस सिस्टम ने हवा में ही मिसाइल को नष्ट कर दिया। इसी तरह आकाश मिसाइल ने पाकिस्तान के ड्रोन और एलओसी से आने वाले खतरों को जमींदोज कर दिया।
4: इनकी भी खासियत हमने देखी ऑपरेशन सिंदूर में, देखी कि कितने काबिल ये वेपन सिस्टम रहा, और इसके अंदर भी मिसाइल की अपनी काबिलियत है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो टारगेट डेजिग्नेशन और ट्रैकर जो रडार हैं इनकी है, कि कौन ये रडार कितने सक्षम है, किस तरीके से वो टारगेट को ट्रैक कर रहे हैं और कैसे वो मिसाइल को उसके ऊपर निर्धारित कर रहे हैं। तो ये क्षमता इस पूरे सिस्टम के अंदर है जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर बहुत ही सफलतापूर्वक देखी है।
0: आकाश मिसाइल सिस्टम भारत की इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम का अभिन्न हिस्सा है। ये अब AI पावर्ड आकाश तीर सिस्टम और इंटीग्रेटेड एंटी ड्रोन नेटवर्क ISCCS से भी जुड़ी हुई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से भेजे गए ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को आकाश ने 100% एक्यूरेसी के साथ इंटरसेप्ट और तबाह किया।
2: मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से पाकिस्तान ने मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, उसको देखते हुए जिस प्रकार से हमने उसको इंटरसेप्ट किया और बर्बाद किया, उसमें आकाश और आकाश तीर ये दोनों ने बहुत महत्व का रोल अदा किया।
0: इसके वॉरहेड में 60 किलो प्री फ्रेगमेंटेड हाई एक्सप्लोसिव भरा होता है और इसका प्रोपल्शन सिस्टम सॉलिड बूस्टर और रामजेट सस्टेनर मोटर से लैस है। कमांड गाइडेंस से लेकर एक्टिव रेडार होमिंग तक आकाश हर स्टेज पर टारगेट को ट्रैक करता है। आकाश का नया संस्करण है आकाश NG, यानी नेक्स्ट जेनरेशन। इससे 70 से 80 किलोमीटर भीतर तक दुश्मन की सीमा को भेदा जा सकता है। आज जब भारत मल्टीलेयर एयर डिफेंस नेटवर्क की ओर बढ़ रहा है, तब आकाश जैसी मिसाइलें न केवल भारतीय ताकत का प्रदर्शन करती हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की बुलंदी दिखाती हैं। मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स का रोल दुनिया देख रही है, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो या ईरान इजराइल। मोटे तौर पर देखें तो ड्रोन्स दो तरह के होते हैं, टोही ड्रोन्स जिन्हें UAV कहते हैं, दूसरे अटैक ड्रोन्स यानी UCAV। अब UCAV घातक के बारे में हम आपको बताते हैं। घातक नाम होने की एक वजह है और वो ये कि ये UCAV न सिर्फ बम बरसाने की क्षमता रखता है, बल्कि दुश्मन के ठिकानों पर मिसाइलें भी दाग सकता है। ये भारत में बन रहे हैं। इसी तरह भारत में ही रुस्तम 2 UCAV तैयार हुए हैं, जो भारत की सैन्य क्षमता को और भी मजबूत बनाते हैं। आज की जंग केवल ताकत से नहीं, तकनीक से जीती जाती है। भारत के पास वो तकनीकी ताकत है जो दुश्मन की हर चाल को नाकाम कर देती है। DRDO द्वारा विकसित किए गए ड्रोन भारत की शक्ति को और भी बढ़ाते हैं। रुस्तम 2 ड्रोन जो दिन रात उड़ान भरने में सक्षम है, भारत ड्रोन जो AI और नाइट विजन से लैस है, और त्रिनेत्र UAV जो बर्फीले मोर्चों से लेकर रेगिस्तानी इलाकों में काम आता है, भारत को हर मोर्चे पर अपराजेय बनाता है। साथ ही निशान, नेत्रा और लक्ष्य जैसी ड्रोन प्रणाली सीमाओं की निगरानी में तैनात है, जो हमेशा दुश्मन पर नजर रखती है। भारत की सैन्य ताकतें केवल निगरानी तक सीमित नहीं है, बल्कि युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑपरेशन सिंदूर में नागास्त्र ड्रोन का इस्तेमाल आत्मघाती हमलावर के रूप में दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया गया। स्काई स्ट्राइकर एक VTOL UAV है जो कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है। VTOL यानी वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन। ये ऊंचाई से सटीक हमला करने में सक्षम है, जिससे इसे ऑपरेशन के दौरान सटीक और प्रभावी हमलों के लिए तैनात किया गया। इसके अलावा D4 एंटी ड्रोन सिस्टम ने दुश्मन के ड्रोन को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता का प्रदर्शन किया।
2: जब हम एंटी ड्रोन सिस्टम की बात करते हैं, तो एंटी ड्रोन सिस्टम में से 3 किलोमीटर से लेकर के 1 किलोमीटर से लेकर के 3 किलोमीटर से 20 किलोमीटर, मतलब जैसे जैसे हम दुश्मन के ड्रोन्स को देखते हैं, उनको इंटरसेप्ट करके उनको बर्बाद करने की जो काबिलियत और क्षमता हम लोग हासिल कर रहे हैं, और खास कर रहे थे कि जो D4 एंटी ड्रोन सिस्टम जो है ये जो भारत के अंदर बन रहा है, तो ये और उसके साथ साथ रेडार, उसके साथ साथ किस प्रकार से उनको ट्रैक करना, डिटेक्ट करना और उसको एंगेज करके उसको बर्बाद करना. सो सारा का सारा जो सिस्टम हिंदुस्तान के अंदर बन रहा है, आई थिंक इट्स ऑल मेक इन इंडिया.
5: मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स आर हेयर टू स्टे, यानी कि आने वाले समय की जितनी भी लड़ाइयां होंगी उसमें ड्रोन्स जो है बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जो है उनका रहेगा और बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे. ये बात जो है हमने अभी ऑप सिंदूर के टाइम भी देखी, जहां पे भारत के जो ड्रोन्स हैं कामिकाजी ड्रोन्स, उन्होंने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को जैसे बर्बाद किया. जो हैरप ड्रोन्स हैं जो इसराइल की मदद से भारत ने बनाए हैं, उन्होंने पाकिस्तान में काफी बर्बादी की, काफी उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को जो है उनको नेस्तनाबूद किया.
0: भविष्य के युद्ध के लिए लेजर आधारित हथियार भी तैयार किए जा रहे हैं, जो नई दिशा और तकनीकी श्रेष्ठता का संकेत देते हैं. ऑपरेशन सिंदूर में इन ड्रोन्स ने दुश्मन का चप्पा चप्पा एक्सपोज किया. लाइव लोकेशन, रियल टाइम वीडियो और टारगेट मार्किंग, सब कुछ इन उड़ते हुए योद्धाओं ने संभाला और नतीजा पाकिस्तान 4 दिनों में घुटनों पर आ गया.
5: तो एक तरह से ड्रोन्स जो है वे गुरिल्ला वॉरफेयर का भी हिस्सा बनते जा रहे हैं कि जहां पे छुपा के दुश्मन की टेरिटरी में ड्रोन्स को ले जाए और वहां से उड़ाकर उनके दुश्मन के ऊपर उसके ऊपर उनके बर्बादी की जाए, उनको नुकसान पहुंचाया जा सके. तो मॉडर्न वॉरफेयर में इनका आने वाले टाइम में और इस्तेमाल बढ़ेगा. गवर्नमेंट ने इस चीज का कॉग्निजेंस लिया है और वो चाहते हैं कि सारा का सारा कंपोनेंट या ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट जो है भारत में बने.
0: ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं ने सिर्फ दुश्मन के अड्डे नहीं उड़ाए बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत जब वार करता है तो दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलता. अगर हम महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहे हैं तो वजह है रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में मेहनत, हमारे वैज्ञानिकों की तपस्या और सेना की निडरता. सपने को लेकर चले थे, वो लक्ष्य की तरफ आप लोग पहुंच भी चुके हैं और आगे भी नया लक्ष्य भी बना लिया है.
6: मैडम लक्ष्य तो भी और आगे बहुत सारी चीज करना है मैडम, ये तो एक स्टेप है हमारे हिसाब से. द वे इंडिया इज गोइंग दिस जस्ट वन स्टेप. Today, the way things are there, you can look forward 10 years down the line, India may be the country which will have the best of the weapons, best of the missiles, best of the aircraft, and people will be queuing in line to buy it from India.
0: इतिहास में कई युद्ध ऐसे रहे जब असलहे के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर रहे और मुश्किल समय में उन देशों ने साथ नहीं दिया. इतिहास से सबक लेते हुए भारत ने खुद को सक्षम बनाया, इतना सक्षम कि हम अपनी सैन्य आवश्यकताओं के अनुसार तकनीक विकसित करते हैं और दुनिया के बाकी दोस्त देशों की मदद भी करते हैं. भारत के सैनिकों की हर बदलती जरूरत का पूरा ख्याल रखते हुए आत्मनिर्भरता का ये सफर जारी है. अभी के लिए इतना ही. अभिषेक सिंह और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और योगेंद्र सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत. वंदे मातरम.
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.

0: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
1: जीके मैक्स।
2: खाना कहाँ से मंगवाया?
1: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
3: जीके वॉल मैक्स।
1: बेस्ट प्राइमर
4: जीके मैक्स।
1: बेस्ट पेंट
4: जीके मैक्स।
1: जीके मैक्स। बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
2: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूं?
1: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: गांधी जी के आंदोलन करने का तरीका क्या आज के समय भी उतना प्रासंगिक है?
2: जो तुम गाली देते हो ना गांधी जी, 70 साल की उम्र में दो लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए, पढ़ लो।
3: जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जो गांधी जी ने वापस ले लिया था, वो भी तो किसी और की वजह से लिया था। चौरी चौरा में जो हुआ इंसिडेंट, उनसे उनको क्या मतलब था? अगर वो उसको जाए रखते, क्या पता उस समय इंडिपेंडेंस को थोड़ा जल्दी हो जाता।
2: ताली बजाओ इनके लिए, ये ताली डिजर्व करते हैं।
4: वो सनातनी कभी नहीं हो सकते जो दूसरे धर्म के सम्मान न करते हों। वो सनातनी कभी नहीं हो सकते जो दूसरे की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हों। वो सनातनी कभी नहीं हो सकते, और एक सच्चा हिंदू कभी दूसरे का अपमान नहीं कर सकता है। हमने तो यही सीखा है सनातन धर्म में, और जो वासुदेव कुटुंबकम की परिभाषा है वो यही बताती है कि हमारा पूरा समाज, पूरा धरती एक परिवार है। और अगर वासुदेव कुटुंबकम है और वही हमारी सनातन की शिक्षा है, तो कोई भी सच्चा सनातनी, सच्चा हिंदू दूसरे धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। क्या मुझे कोई बता सकता है कि एक और ये क्यों हो रहा है? ये सब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम के धन में ये चोरी करते हुए पकड़े गए। राम धन चोरी में पकड़े गए लोग। इन्होंने आस्था से, हमारे गरीब आस्थावान लोगों ने जो चढ़ावा किया, उस चढ़ावा की चोरी में पकड़े गए। कौन नहीं जानता कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़े गए उसमें। SIT बनाकर के जेल भेजने वाली बात जो सामने आई है, उससे इनके सब कुछ छिन गया। जनता जान गई है कि किस तरह के ये लोग हैं, इसलिए क्रिमिनल एंगल दे रहे हैं जानबूझ कर। क्या हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिल सकता था? क्या सुप्रीम कोर्ट में वो नहीं जा सकते थे अपील के लिए? वो अधिकारियों ने मिलकर के सरकार के सारे पर ये काम किया कि जिससे अगले कोर्ट में उन्हें न्याय न मिल जाए।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: सो सॉरी।

0: ये सहारनपुर जिला कलेक्टर का ऑफिस है। शनिवार की सुबह अचानक कलेक्ट्रेट के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर बुलडोजर गरजने लगे। ये बुलडोजर एक्शन डीएम ऑफिस परिसर में बनी अवैध मस्जिद पर हो रहा था। ये वही मस्जिद है जिसे सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने अवैध घोषित किया था। सहारनपुर कलेक्ट्रेट में 315 वर्ग मीटर भूमि पर यह मस्जिद बनी थी। शिकायत करने वालों ने दावा किया था कि अवैध तरीके से बनाई गई थी। कोर्ट में जब मस्जिद की फाइल खुली तो अदालत ने पाया कि खसरा संख्या 539 सरकारी अभिलेखों में कचहरी कलेक्ट्रेट के नाम पर दर्ज है। इसी भूमि पर 315 वर्ग मीटर हिस्से पर मस्जिद का निर्माण किया गया था, लिहाजा कोर्ट ने इसे अवैध माना और 30 दिनों के अंदर हटाने का आदेश दिया। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की। अपील खारिज हुई तो प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। शनिवार की अलसुबह जब लोग ठीक से जगे भी नहीं थे, सहारनपुर पुलिस कई बुलडोजर लेकर कलेक्ट्रेट में दाखिल होती है और मस्जिद को मिट्टी में मिला देती है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद करीब 70 साल पुरानी थी, लेकिन पुलिस ने उसे तोड़ दिया, जबकि पुलिस का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन हुआ।
1: डीएम परिसर में जो मस्जिद बनी हुई थी, इसको अब यहाँ पर ध्वस्तीकरण किया जा रहा है।
2: देखिए, यहाँ जनपद सहारनपुर के कलेक्ट्रेट में एक मस्जिद थी जिसको सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा अवैध पाया गया था। उस आदेश के विरुद्ध जो मस्जिद कमेटी थी वो फर्स्ट अपील में गई थी, उनकी अपील खारिज हो गई है। इसमें सिटी मजिस्ट्रेट का जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसको पुष्ट किया गया है। इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ जारी है।
1: लगातार रात से ही इस तरह की अफवाहें जो हैं वो उड़ाई जा रही थी कि मस्जिद को सील किया जाएगा, ध्वस्तीकरण किया जाएगा। अब सहारनपुर के चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस फोर्स तैनात किया गया है।
2: देखिए, हमारे पास त्यौहार भी चल रहे हैं, एलो मेंटेनेंस के लिए हमारे पास 5 कंपनी एक्स्ट्रा पीएससी आरआरएफ है जिनको हॉटस्पॉट से डिप्लॉय किया है। कंटिन्यूसली एयर डोमिनेशन किया जा रहा है। यदि सोशल मीडिया पर कोई अफवाह फैलाता है या कोई भी फेक न्यूज चलाता है तो उसके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।
0: सहारनपुर पुलिस ने दावा किया कि मुस्लिम पक्ष को पर्याप्त समय दिया गया था। अपील के बाद भी जब उन्हें राहत नहीं मिली तो कानून ने अपना काम किया। भले ही मस्जिद सहारनपुर में टूटी, लेकिन इसकी गूंज यूपी की राजनीतिक गलियारों में लंबे समय तक सुनाई देगी। राहुल कुमार सिंह, सहारनपुर आज तक।

0: 11 जिलों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। राजधानी पटना से लेकर भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय तक पानी पानी। करीब 17 लाख लोग प्रभावित। सहारनपुर में मस्जिद के मलबे के नीचे मिला 20 फीट गहरा कुआं। देखने के लिए जुटने लगी भीड़। कुएं की जांच कराएगा प्रशासन। बुलडोजर एक्शन पर जारी सियासी उबाल। जेनजी से संवाद में प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमला। कहा, सच की हुंकार के आगे नहीं टिकेगी झूठ की गूंज। दिमागी नक्सल का फिर से जिक्र। कांग्रेस बोली, पीआर कर रहे थे, छात्रों से कोई लेना देना नहीं। महाराष्ट्र में छात्र आंदोलन के समर्थन में आए राहुल गांधी। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, पेपर लीक में एमपीएससी पर भरोसा खत्म हो चुका है। मायावती ने जेनजी के लिए कार्यकर्ताओं को लिखी चिट्ठी। और दिल्ली में दो हमलावरों ने एक शख्स को पीट पीट कर मार डाला। विरोध करने पर गार्ड को भी धमकाया। सीसीटीवी खंगाल कर मृतक और आरोपियों की पहचान में जुटी है पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली मेट्रो का सफर किया था और इसी दौरान उन्होंने यात्रियों से बातचीत की, लेकिन बच्चों के साथ उनकी बातचीत ने खास ध्यान खींचा है।
1: कहाँ जा रही हो? अच्छा, जन्माष्टमी मनाई कि नहीं?
2: तो मैं आपसे चीज कहना चाहता हूँ कि आज 5 सितंबर को टीचर्स डे हम मनाते हैं। हमारे साथ सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं है, जिन्होंने अपने जमाने में ढेर सारे स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया था, लेकिन आज हमारे पास आप हैं जो आज पूरे भारत को इंस्पायर करते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद चाहता
1: हूँ। तो 1 साल का हो जाएगा। चलिए, एडवांस में तुम्हें बर्थडे भाई।
3: सर, आप बहुत इंस्पायरिंग
1: है। सचमुच में देश में क्या प्रगति हो रही है उसकी बातें करते हैं। किताब पढ़ते हैं कभी?
2: हाँ, किताब।
1: बाहर की कोई किताब पढ़ते हैं?
2: नहीं, मैं
1: सिलेबस के सिवाय नॉवेल पढ़ते हैं। देखिए, जाओ कोशिश करनी चाहिए, ऑटोबायोग्राफी पढ़नी चाहिए या बायोग्राफी पढ़नी चाहिए, किसी की भी पढ़ो। खिलाड़ी की पढ़ सकते हो, सिने कलाकार की पढ़ सकते हो, साइंटिस्ट की पढ़ सकते हो, किसी के भी पढ़ सकते हो। सचमुच में रोमेश,
4: मैं वैसे तो चंदौली की हूँ।
1: मैं भी बगल में काशी का हूँ।
4: सर, मेरा मैटरनल होम काशी ही है।
1: अच्छा,
4: आपका साइंस डे एरिया हमने बहुत बार आपको वहाँ पे देखा है और अपने सामने मैंने देखा है कि आप
1: अभी लोग काशी कैसा लगता है लोगों को?
4: सर, हमने मैं तो खुद विटनेस हूँ कि काशी कैसे चेंज हुआ है।
1: अच्छा,
4: मेरा घर जो है वो
1: आपकी पढ़ाई काशी में हुई?
4: PHU से मैंने ग्रेजुएशन किया है और देन यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ।
1: काशी के लोग खुश हैं?
4: यस सर, बहुत
1: अच्छा काम हो रहा है।
4: बिल्कुल सर।

0: और अब हम बात करेंगे बिहार के बारे में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें दिखाएंगे फटाफट अंदाज में नॉनस्टॉप 100 में।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: बिहार में लगातार गहराता जा रहा है बाढ़ का संकट। गंगा और गंडक के उफान से कई जिलों में हालात बिगड़े। बिहार के 11 जिलों में 16 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। भारी बारिश के बीच पटना में गांधी घाट पर गंगा नदी का जलस्तर अपने उच्चतम स्तर को पार कर चुका है। गंगा और पुनपुन नदी के बढ़ते हुए जलस्तर से पटना के ग्रामीण इलाकों में कई स्थानों पर भर गया है पानी। बाढ़ के कारण सड़क और रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। मुंगेर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा के खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और जिले के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति। गंगा के बढ़ते जलस्तर का असर मुंगेर की 38 पंचायतों पर भी पड़ा है। करीब 3,75,000 लोग बाढ़ से प्रभावित। पटना के आसपास बाढ़ पीड़ितों से पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने मुलाकात की। उन्होंने हजारों प्रभावित लोगों को 500-500 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी। बिहार के खगड़िया में गंगा का रौद्र रूप नजर आया। एक दर्जन से ज्यादा पंचायत और बाढ़ से प्रभावित हुई हैं। लोग ऊंची जगहों पर जाने के लिए मजबूर। बेगूसराय में गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद ग्रामीण इलाकों के साथ ही रिहायशी इलाकों में घुस गया पानी। लोग कमर तक पानी में जाने के लिए मजबूर। सीएम सम्राट चौधरी ने बेगूसराय में बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण किया। बोले स्थानीय समाधान के लिए बनेंगे रिंग बांध और नए स्ट्रेच। गंडक नदी के लगातार कटाव ने बगहा के दियारा इलाके में ग्रामीणों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। कई परिवार अपने घर खाली करने के लिए मजबूर। नेपाल में भारी बारिश के बाद उफान पर है गंडक। हाजीपुर शहर के 8 वार्ड्स में घुस गया पानी। बाढ़ बन गई है बड़ा खतरा। हाजीपुर में गंडक नदी के तेज बहाव से निचले इलाकों में तबाही मची। पलायन करने के लिए मजबूर हुए लोग। स्थिति और भी ज्यादा बदतर होने की संभावना। राजस्थान के बारा में पिछले 2 दिनों में हो रही झमाझम बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। सिरसा नदी सहित दर्जनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर। बारा की जीवनदायिनी कही जाने वाली रेपी नदी पूरे उफान पर है। लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर बाइक और पैदल ही पुलिया पार करने के लिए मजबूर। राजस्थान के धौलपुर में भी लगातार बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव। आवाजाही में लोगों को खासी दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। वैशाली के राघोपुर में बाढ़ का संकट गहराया। गंगा का जलस्तर बढ़ने से दियारा इलाकों में भर गया है पानी। राघोपुर में गांव तक पहुंच गया गंगा का पानी। ग्रामीण सुरक्षित ठिकानों के लिए पलायन करने के लिए मजबूर हुए। चमोली में भारी बारिश का असर। गोपेश्वर चोपता मार्ग बैरागना के पास भारी मलबा आने से सब कुछ बंद। 3 दिनों से लगातार भूस्खलन और मलबे से प्रभावित है मार्ग। सड़क पर आवाजाही पूरी तरह से ठप हुई। बागेश्वर में भारी बारिश के बाद पहाड़ धरके हैं। लाहौर मिखिला खलपट्टा सड़क पर मलबा और बोल्डर्स गिरे। महाराष्ट्र के सतारा में कोयना डैम 100% भर गया है। 6 गेट्स को खोला गया। 4,232 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया। ललितपुर में लगातार हो रही बारिश के चलते जिले में स्थिति अभी भी सामान्य है। 14 बांध लबालब हो चुके हैं। 12 बांधों के गेट्स को खोला गया है। लगातार निकाला जा रहा है पानी। पठानकोट में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया है। सरकारी हॉस्पिटल के मेन गेट्स में आया पानी। नालों की सफाई न होने से मरीजों को आ रही हैं दिक्कतें। मुर्शिदाबाद में भारी बारिश से मिट्टी धसी। न्यू फरखा के पास रेल सेवा प्रभावित हुई। रेल ट्रैक धसने से कई ट्रेनें रद्द हुई। फरखा में 30 घंटे से युद्ध स्तर पर मरम्मत जारी। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में युवक की पीट पीट कर हत्या। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जांच शुरू। मिली जानकारी के मुताबिक हत्याकांड सुबह 5 बजे के करीब हुआ। युवक को लाठी और डंडों से पीट पीट कर मारा गया। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो पाई है। कांगो में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। आग की लपटों में घिरकर 22 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। कई घायल हुए। लपटें इतनी ज्यादा तेज थी और इतनी तेजी से फैली कि बाहर निकलने का किसी को मौका ही नहीं मिल पाया। जान बचाने की होड़ में लोग दरवाजों पर ही फंस गए थे, जिससे बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया था। मानीपुरा में गुरेज घाटी के ऊंचे इलाकों में काबुल गली में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। इस पहली बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट। नेपाल में हाल ही में आए विनाशकारी हिमस्खलन और अचानक से बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 1400 से पार निकली। नेपाल में 26 अगस्त को ग्लेशियर ढहने के बाद अचानक से आई बाढ़ के मलबे में दबे लोगों की तलाश अभी भी जारी है। आपदा के 11वें दिन एक चीनी नागरिक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक नेपाल के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली बाजार इलाके से 3 और भारतीय नागरिकों को बाहर निकाला गया है। इनमें 5 साल का एक बच्चा भी शामिल है। नेपाल त्रासदी में अभी 8,000 से ज्यादा लोग लापता हैं। सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसआरसीसी के शताब्दी समारोह में विपक्ष पर प्रधानमंत्री ने ताबड़तोड़ हमला, बोला सच की हुंकार के आगे नहीं टिकेगी झूठ की गूंज। अलग अंदाज में निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वो भी कोई नया काम शुरू करते हैं, कुछ लोग फूफा बनकर सवाल उठाने लगते हैं, लेकिन भारत ने ऐसे लोगों को जवाब दे दिया है। 15 अगस्त के भाषण का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा लाल किले से होम्योपैथी की दवा दे दी थी, जिसके बाद सभी दिमागी नक्सल निकलकर बाहर आ गए। देश के विकास के जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि आज 2013 के मुकाबले देश आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से कहीं ज्यादा सुरक्षित। 7.8 GDP ग्रोथ पर प्रधानमंत्री मोदी ने आलोचकों पर निशाना साधा, कहा फ्रेजाइल 5 वाले आंकड़े नहीं पचा पा रहे। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद कांग्रेस का आरोप है कि छात्रों की गूंज से पीएम घबराए, एसआरसीसी में भाषण सिर्फ एक पीआर कवायद थी। प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस का निशाना, कहा गिलास आधा भरा होने का मतलब है बाकी आधा गिलास पीआर से भरा। अंदरूनी कलह के बीच पंजाब कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है, भूपेश बघेल की जगह सचिन पायलट को बनाया गया है प्रभारी। 2027 की यूपी चुनावों से पहले बीजेपी के विनोद तावड़े ने एसपी के पीडीए नारे पर तंज कसा, एसपी के पीडीए का मतलब है पराया धन अपना। शुद्धिकरण विवाद पर कांग्रेस ने सोमवार को दलित सांसदों की बैठक बुलाई, सीएम आवास तक विरोध मार्च निकाला गया। मंडी जिला विकास समन्वय की निगरानी समिति की बैठक में बीजेपी सांसद कंगना रनौत का कड़ा रुख, काम में देरी पर उन्होंने ऑफिसर्स को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने सांसद निधि के पैसे खर्च नहीं होने पर और पैसों में हेरफेर के अधिकारियों को जमकर सुनाया गया, कहा उन्हें सिर्फ एक महज एक्ट्रेस न समझा जाए, वो इस लापरवाही पर एक्शन लेना भी जानती हैं। बीजेपी प्रमुख नितिन नवीन 9 सितंबर को 2 दिन के लिए हल्द्वानी का दौरा करेंगे और बैठकों में हिस्सा लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के गोवा के दौरे पर हैं, वेस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे। बेंगलुरु में भी सड़क पर युवक युवती में झड़प हुई, दोनों ही डेटिंग ऐप के जरिए मिले थे और एक पार्टी के लिए आए थे। ड्राइवर के मुताबिक गाड़ी में बैठते ही दोनों के बीच बहस शुरू हो गई थी, जब हालात बिगड़ने लगे तो ड्राइवर ने पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल कर दिया। गुजरात के राजकोट में दर्दनाक हादसा, डैम में डूबने से 4 बच्चों की मौत की खबर। बागपत में श्रद्धालुओं से भरी हुई बस पलटने से ट्रक से टकरा गई और 9 श्रद्धालु घायल हुए। ईंटों से भरा हुआ ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलट गया, पुलिस जांच में जुटी है। सूरत में गणेश आगमन की अनोखी यात्रा, महादेव पार्वती के साथ भूत पिशाच और नरमुंड बने आकर्षण का केंद्र, दिल्ली और अलीगढ़ के कलाकारों ने किया भूतिया प्रदर्शन। दिल्ली के धौलाकुआ फ्लाईओवर पर कार में लगी थी भीषण आग, धू धू कर जली। फिलहाल आग लगने की वजह किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लखनऊ के शहीद पथ पर गोरखपुर से सूरत जा रही डबल डेकर बस अचानक से आग की चपेट में आई, आग में सवार सभी 32 यात्री सुरक्षित, कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। मुंबई के एक भवन में भीषण आग लगी थी, मोबाइल फोन का गोदाम पूरी तरह से जलकर खाक हुआ। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर शराब तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ, दिल्ली से शराब लेकर पहुंची युवती के साथ एक और की गिरफ्तारी हुई। कौशाम्बी में अवैध पटाखा फैक्ट्री पर पुलिस का एक्शन, 2 की गिरफ्तारी, 44 बोरी कार्टन पटाखे और 19 किलो बारूद बरामद किया गया। मथुरा में मामूली सी कहासुनी के बाद कार चालक ने जूनियर इंजीनियर को रौंद डाला, हादसे के बाद आरोपी चालक फरार हुआ, बुरी तरह से घायल हुआ इंजीनियर। उत्तराखंड के श्रीनगर हादसे के हैरान कर देने वाली और गंभीर खामियां सामने आई हैं, मृत बकरी का मांस खाने से 25 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं, बीमार होने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं हैं और छोटे बच्चे भी। मुरादाबाद में 3 मंजिला जर्जर इमारत भरभराकर गिरी, नगर निगम की सतर्कता से बड़ा हादसा टला। यूपी के कौशाम्बी में यमुना नदी में नहाने के दौरान एक हादसा, एक दूसरे को बचाने के चक्कर में डूब गए थे 2 सगे भाई, 3 की मौत हुई, घर में मातम। सूरत में ज्वेलरी शॉप पर चोरी करने की वारदात को अंजाम देने वाली लेडीज को बेनकाब किया गया, पुलिस ने वारदात में शामिल 3 को ही गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के डोडा में बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया, एक युवती ने अपने पिता को फोन करके अंतिम बार कॉल करके चिनाब नदी में छलांग लगा दी, सुसाइड किया। कैमूर में उत्पाद हिरासत में शराब तस्करी के आरोपों में आरोपी फरार हुआ, सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले 3 होमगार्ड्स को हटाया गया। गुजरात के भावनगर में लिव इन पार्टनर की बस स्टैंड पर निर्ममता से हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने सबक सिखाया, क्राइम सीन रिक्रिएट करने के दौरान जमकर पीटा। मोगा में बिजली कटौती से हाहाकार, सड़क पर उतरे 10 गांव के किसान, लुधियाना फिरोजपुर हाईवे पर 4 घंटे तक जाम, 8 घंटे बिजली देने के आश्वासन के बाद किसान उठे। संगरूर एसएसपी दफ्तर के बाहर किसानों और पुलिस में झड़प हुई, बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने पर धक्का मुक्की हुई, कहा मांगों को लेकर संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। बाबा नीम करौली पर बनी फिल्म हनुमान अंश ने दिया इतिहास, 30 दिन में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 100 करोड़ के पार। सिर्फ 2 करोड़ के बजट में बनी हनुमान अंश फिल्म ने अपने बजट से 50 गुना ज्यादा कमाई की, थिएटर्स में उमड़ रही है भीड़। उत्तराखंड में हनुमान अंश टैक्स फ्री है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया, मुख्यमंत्री ने हनुमान अंश की टीम को बधाई भी दी। मिर्जापुर द मूवी का बॉक्स ऑफिस पर तहलका, फिल्म ने 2 ही दिन में 50 करोड़ कमाए, ग्रॉस कलेक्शन 68 करोड़ के पार। मिर्जापुर द मूवी ने बनाया रिकॉर्ड, 2026 की चौथी सबसे बड़ी ओपनर बन गई है मिर्जापुर द मूवी। दुरंधर 2 टॉक्सिक और बॉर्डर 2 है टॉप 3 में। तेलुगु रोमांटिक ड्रामा चकोरा लूनर लव बर्ड का टीजर आउट हुआ, रावण कुमार मलाइका और अनुष्का लोहार मुख्य भूमिकाएं में हैं, 8 अक्टूबर को रिलीज होगी। आनंद देवाकोंडा वैष्णवी चैतन्य की एपिक का धमाकेदार ट्रेलर आउट हुआ, ट्रेलर में दिखी कॉलेज लाइफ, दोस्ती और रोमांस की झलक, 11 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। एआई के दौर में भारतीय सिनेमा की नई छलांग, त्रिनेत्रा एआई प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह तैयार की गई द्वारिका प्रोजेक्ट। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की थर्मन की शूटिंग का दूसरा शेड्यूल पूरा हुआ, डॉक्टर के किरदार में नजर आएंगे रजनीकांत। शिकागो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बांग्ला फिल्म ओनेक दिन का एंट्री, 17 सितंबर को दिखाई जाएगी ये फिल्म। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नॉर्थ ईस्ट रेलवे में नेटवर्क की शानदार तस्वीरें साझा की हैं, बैरवी सेरांग रेल लाइन का दिखा भव्य ड्रोन नजारा। कुतुब मीनार से ऊंचा बना है रेल पुल, करीब 114 मीटर है ऊंचाई पुल और सुरंग से गुजरती ट्रेन की मनमोहक वीडियोज और तस्वीरें सामने आई। पुंछ के मैंडर सेक्टर में आर्मी स्कूल में रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, स्कूली बच्चों ने शानदार प्रस्तुति से समा बांधा। स्कूली बच्चों ने नृत्य का भव्य प्रस्तुति से सबको मंत्रमुग्ध कर डाला, सेना की ओर से छात्रों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। बीजेपी सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने संबलपुर में ऋषि बिल्डिंग की रखी आधारशिला, ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी परिसर में बनेगा स्किल हब, युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री आधारित प्रशिक्षण। क्रिकेट के मैदान से भारत के लिए अच्छी खबर, महिला एशिया कप में भारत की शानदार जीत, पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। पाकिस्तान की पूरी टीम मैच 55 रन पर आउट हो गई थी, टीम इंडिया ने 8.4 ओवर में 3 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया था। महिला एशिया कप में भारत की जीत की हैट्रिक, टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा भारत, 6 पॉइंट्स के साथ अंक तालिका में टॉप पर। भारतीय स्पिनर्स की फिरकी में फंसी पाकिस्तानी टीम, श्री चन्नी और प्रेमा रावत ने 3-3 विकेट लिए, दीप्ति शर्मा को 2 सफलता। हरमनप्रीत कौर T20 में 150 मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली कप्तान बन गई, 10 सितंबर को भारत का सेमीफाइनल मैच। यूक्रेन की राजधानी की पर 3 दिन तक हमला नहीं करेगा रूस, अमेरिकी प्रतिनिधि की यात्रा के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध विराम का ऐलान किया। अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर रूस के दौरे पर हैं, राजधानी मॉस्को में पुतिन के दूत ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अस्थायी सीज फायर से पहले यूक्रेन की राजधानी कीव और ओडेसा पर रूस ने किए ताबड़तोड़ हमले, 9 मंजिला इमारत क्षतिग्रस्त हुई, कई लोग घायल हुए। अमेरिका ने ईरानी तेल टैंकर पर जबरदस्त हमला बोला, खार्क आइलैंड के पास 4 मिसाइलों को दागा, हमले के बाद हड़कंप मचा, सुनी गई धमाके की आवाजें। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई की, हिजबुल्ला के ठिकानों को बनाया गया निशाना, इजरायली सेना ने जारी किया है वीडियो। अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी का बड़ा बयान, कहा गजा के लोगों को जबरदस्ती नहीं हटाया जाएगा, जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें जाने की पूरी आजादी। म्यांमार के राष्ट्रपति मिंग आन हुआंग ने राजधानी हनोई में वियतनाम के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात की, दोनों ही देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या हुई है 1344 के पार, 5000 लोग लापता हैं, बाढ़ के 10वें दिन बचाव दलों ने एक चीनी नागरिक को सुरक्षित बाहर निकाला। अवैध प्रवासियों के खिलाफ इंग्लैंड के उडोगो शहर में अनोखा प्रदर्शन किया गया, काले कपड़े पहनकर चेहरा ढके हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। यूएस ओपन में सेरेना और वीनस विलियम्स की हार हुई, टाई ब्रेक में 5-0 की बढ़त के बावजूद गवाया मैच।

0: और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश से आई एक बड़ी और अहम खबर के बारे में। सागर में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई है। सागर के बड़ा इलाके में जहरीली शराब पीने से मच गया हड़कंप। जहरीली शराब पीकर मरने वाले अलग अलग गांव के बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शनिवार की रात को बंडा के घूघर, नौराज, बराज और आसपास के क्षेत्रों में लोगों ने शराब पी और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसके बाद उन्हें तुरंत ही परिवार वाले अस्पताल लेकर पहुंचे जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। कुछ लोग बीमार भी बताए जा रहे हैं जिनकी हालत गंभीर है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, जांच में जुटी है कि कहां से ये शराब मिली थी, क्योंकि अलग अलग इलाकों से बताया जा रहा है कि कई लोगों की हालत बिगड़ी। तुरंत ही अस्पताल में भर्ती भी कराया गया लेकिन 9 लोगों की जान शराब पीने से अभी तक जा चुकी है।
1: तक 9 से 10 मौतें का आंकड़ा सामने आया हुआ है और रेफर तो चल ही रहा है हमारे लगातार। और हमारी 3 टीमें जो कि हमारे हॉटस्पॉट हैं, एक 3 गांव है यहाँ पे, वहाँ जो हॉटस्पॉट वहाँ जहाँ से केस निकल के आ रहे थे वहाँ से टीमें लगातार, डॉक्टर्स नर्सेस की टीमें लगी हुई हैं और वहाँ से केस भी रेफर डायरेक्ट कर रही है। और पहले तो ये था कि एक दिन दो दो केस आ रहे थे, उन लोग वहां से और केस निकाल रहे हैं घर घर जाके, जो भी बीमार हैं वो डॉक्टर निकाल रहे हैं उनके बाद।
0: और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश जुड़ गए। रवीश, इस पूरे मामले में अभी क्या समझ में आया है, क्योंकि अलग अलग जगहों पे शराब खरीद कर पी गई है तो एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोगों का बीमार पड़ना और 9 लोगों की मृत्यु।
2: जी बिल्कुल, गंभीर मामला है और गंभीर इसलिए भी है क्योंकि ये जो 9 मृतक हैं ये किसी एक इलाके से तक सीमित नहीं है, यानी ये किसी एक गांव का मामला नहीं है। 3-4 अलग अलग गांव हैं जहां पे ये शराब बिकी और उसको पी करके 9 लोग मरे। जो हमें अभी जानकारी मिली है आज तक ने जो वरिष्ठ अधिकारियों से बात की है, मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है।
0: बिल्कुल,
2: ये गंभीर खबर है, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अवैध शराब जो बिक रही थी ये कितनी बड़ी संख्या में और कितने बड़े इलाके में बिक रही थी, इसका अंदाजा लगाइए कि ये किसी एक गांव के नहीं बल्कि 4 अलग अलग गांवों के लोग हैं जो बीमार हुए हैं इस अवैध शराब को पी करके और बाद में उनकी मौत हुई है। यानी डॉक्टरों के मुताबिक शराब पीने के महज कुछ ही घंटों के भीतर इनकी मौत हुई है। ऐसा नहीं कि ये बहुत समय तक अस्पताल में भर्ती रहे हो, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो शराब अब इन्होंने पी है, जिसका सेवन किया है, वो कितनी ज्यादा जहरीली रही होगी, कितनी उसमें गड़बड़ी रही होगी, जिसके बाद इनकी तबीयत जो है चंद घंटों के भीतर ही बीमार होने से लेकर के ये मौत के मुंह तक चले गए। तो इसीलिए प्रशासन अभी 5 दुकानें इन्होंने चिन्हित कर ली है स्थानीय प्रशासन ने और उन्हें सील करके वहां से जो सैंपल है वो कलेक्ट कर लिए गए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि अवैध शराब किसी इलाके में, सागर जो कि बुंदेलखंड की राजनीति का ना केवल एक अहम केंद्र है बल्कि संभागीय मुख्यालय भी है, वहां पर इस तरीके से अवैध शराब पी करके 9 लोगों का मर जाना और वो भी अलग अलग गांवों का, यानी बात ये समझा जा सकता है कि ये जो अवैध शराब बिक रही थी ये बड़े पैमाने पे बिक रही थी और एक बड़े इलाके में बिक रही थी, जिसकी वजह से ये
0: बिल्कुल अलग अलग जगहों से शराब खरीदने के बावजूद भी लोगों की मृत्यु। ये बताती है कि कैसे बड़े पैमाने पर अलग अलग जगहों पर इस शराब को बेचा जा रहा था, जहरीली शराब थी। आप बने रहे हमारे साथ। अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि सागर जहरीली शराब कांड को लेकर सीएम मोहन यादव ने कहा है कि मैंने संबंधित मंत्री और अधिकारियों को तुरंत ही घटनास्थल पर जाने का निर्देश दे दिया है। हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, जांच कराएंगे। हमारी सरकार ऐसी घटनाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी।
3: मैंने अपने प्रभारी मंत्री से कहा है, अधिकारियों से भी कहा है कि वो वहाँ तुरंतगति से, एक तो हम कठोर से कठोर कार्रवाई भी करेंगे, जांच भी निकालेंगे और इस तरह की घटनाओं को हमारी सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी।
0: आगे बढ़ेंगे। अब यह खबर है दिल्ली से, जहां मयूर विहार के फेज 3 में सुबह सुबह एक शख्स को पीट पीट कर मार डाला गया और उसके बाद सनसनीयां फैल गई। घटना सुबह करीब 5 बजे की बताई जा रही है और आरोप यह है कि 2 लोगों ने एक शख्स को डंडों से बेरहमी से पीटा था। मौके पर मौजूद एक गार्ड ने जब दोनों को रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने उसे भी जान से मारने की धमकी दी और इसीलिए गार्ड ने वहां से हटना सही समझा। गार्ड ने यह भी बताया कि 2 लोगों को एक शख्स को पीटता हुआ उसने देखा लेकिन धमकी मिलने के बाद वो डर से पीछे हट गया। इसके बाद पूरी घटना की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। आरोपियों की पहचान करने की कोशिश लगातार जारी है। तो ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सुबह 5 बजे तड़के डंडों से पीट पीट कर एक शख्स की हत्या की गई है देश की राजधानी में।
4: दिल्ली के अशोक नगर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक 40 वर्षीय युवक की लकड़ियों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। दरअसल ये मामला सुबह 5 बजे के आसपास का बताया जा रहा है, और अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो यहीं पर वो सारी लकड़ियां पड़ी हुई हैं, जिससे बताया जा रहा है कि ये जो पूरा हादसा है वो हुआ है। जो मृतक है उसकी आइडेंटिटी अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है। आसपास के इलाके से सीसीटीवी फुटेज ले लिया गया है, लेकिन बता रहे हैं कि कुछ लोग यहां आए थे और किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया है। हमारे साथ यहां के गार्ड हैं जो एक आई विटनेस भी है इस पूरे मामले में। भाई साहब, यहां पर ये क्या हुआ पूरा मामला अगर आप बता पाए, और कितने बजे हुआ?
5: मैं वहां तक आया डंडा पीटते थे, मेरे को दिखाया तू भी मार खाएगा, फिर मैंने उधर चला गया फोन करने लगा।
4: उधर कितने लोग थे?
5: दो आदमी थे।
4: दो आदमी। आपने जब उन्हें भगाया तो वो तुरंत भाग गए या आपसे भी?
5: नहीं, मेरे नहीं भागे, मेरे को डंडा दिखाया कि तुझे भी करूंगा।
4: अच्छा, आपको डंडा दिखाया?
5: हाँ,
4: आपको भी
5: मारूंगा। हाँ, फिर मैं वो अंदर चला गया, फिर मैं फोन किया था।
4: किसको? पुलिस को फोन किया।
5: हाँ जी।
4: पुलिस कितने देर में आई?
5: मैं अंदर चला गया था।
4: कितने बजे की घटना होगी?
5: 4 बजे का।
4: दो लोग थे। तो जैसा आपने सुना कि कुल दो लोग मौजूद थे जिनके सामने ये पूरा हादसा हुआ। और अगर मैं आपको यहाँ पे लोकेशन की तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर पुलिस ने जो है अलग अलग तरह की मार्किंग कर रखी है, जिससे खून के जो धब्बे हैं वो यहाँ पर अभी भी पड़े हुए हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर वो क्या वजह थी जिसके वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका ये कहना है कि दो लोग इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे। आसपास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज ले लिया गया है, पुलिस ने सीसीटीवी जब्त कर लिया है, और अब जो दोनों अक्यूज्ड हैं, जो दोनों आरोपी हैं, उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है, और उसके साथ ही साथ जो मृतक है उसकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। तो अब ये देखना होगा कि दिल्ली पुलिस कितनी जल्दी ये सुनिश्चित कर सकती है कि यहाँ पर जो दोनों अभियुक्त हैं उन्हें जल्दी से जल्दी हिरासत में लिया जाए, ताकि जो लोगों में कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है या संशय है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से शांत हो पाए।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
11: जेके वॉल मैक्स।
12: बेस्ट पेंट
13: जेके मैक्स।
14: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
2: भारत की रक्षा नीति से लेकर भविष्य की युद्ध रणनीति तक देश की सुरक्षा पर सीधी बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ देश के सबसे बड़े रणनीतिकारों और सुरक्षा विशेषज्ञों का महामंच आज तक सुरक्षा सभा सिर्फ आज तक पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
2: गांधी जी के आंदोलन करने का तरीका क्या आज के समय भी उतना प्रासंगिक है?
3: जो तुम गाली देते हो ना गांधी जी, 70 साल की उम्र में दो लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए, पढ़ लो।
4: जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जो गांधी जी ने वापस ले लिया था, वो भी तो किसी और के वजह से लिया था। चौरी चौरा में जो हुआ इंसिडेंट, उनसे उनको क्या मतलब था? अगर वो उसको जाए रखते, क्या पता उस समय इंडिपेंडेंस को थोड़ा जल्दी हो जाता।
3: ताली बजाओ इनके लिए, ये ताली डिजर्व करते हैं।
5: बिहार में बाढ़ का कहर, नदियां उफान पर, गांव पानी में, कहीं घरों में पानी घुस रहा है, कहीं सड़कें डूब रही हैं, और कहीं बच्चे नाव को स्कूल बस बनाकर पढ़ने जा रहे हैं। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। गंगा और हरिहर का पानी लगातार बढ़ रहा है, पानी गांवों के अंदर घुस रहा है, घरों में पानी भर रहा है, किसान खेतों के बीच फंस रहे हैं, मवेशियों के लिए चारा जुटाना मुश्किल हो रहा है, पानी बढ़ रहा है और ग्रामीण घर छोड़ रहे हैं। कैमूर में दुर्गावती नदी उफान पर है, बिहार यूपी का मुख्य रास्ता पानी में डूब रहा है, करीब 3 फीट पानी सड़क के ऊपर बह रहा है, तेज धारा के बीच लोग रास्ता पार कर रहे हैं, जरा सी चूक और जान पर बन सकती है। नवचिया में कोसी का पानी मद्रोणी गांव में तबाही मचा रहा है, 1500 से ज्यादा लोग बाढ़ में फंसे हैं, परिवार घरों की छतों पर शरण ले रहे हैं, कई लोग रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए हैं, नीचे सैलाब ऊपर आसरा। मुंगेर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, पानी लगातार गांवों की तरफ बढ़ रहा है, लोग घर खाली कर रहे हैं, जरूरी सामान समेटकर सुरक्षित जगहों की ओर निकल रहे हैं, बाढ़ लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर रही है। राघोपुर में बाढ़ ने हजारों परिवारों की मुश्किल बढ़ा दी है, 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं, NDRF और SDRF की टीमें नाव लेकर रेस्क्यू में जुटी हैं, पानी के बीच लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। गंगा का पानी दानापुर दियारा में लगातार बढ़ रहा है, कई पंचायतों में पानी भर चुका है, सड़कें डूब गई हैं, रास्ते बंद हैं, लोग राशन के इंतजार में बैठे हैं, बाढ़ ने गांव की रफ्तार रोक दी है। बगहा में गंडक लगातार जमीन काट रही है, हर दिन 5 से 6 एकड़ जमीन नदी में समा रही है, रेवाहिया गांव में पानी घरों तक पहुंच रहा है, कटाव बढ़ रहा है, ग्रामीण घर खाली कर रहे हैं, नदी जमीन निगल रही है और लोग अपना घर बचाने के लिए जूझ रहे हैं। कटिहार में बाढ़ ने बच्चों की पढ़ाई का रास्ता भी रोक दिया है, छात्र नाव पर बैठकर स्कूल जा रहे हैं, नाव किनारे लगती है, बच्चे उतरते हैं, फिर पानी भरे रास्तों से स्कूल की तरफ बढ़ते हैं और कहीं बच्चे खुद नाव की पतवार थाम रहे हैं, कंधे

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: बिहार में उफान पर गंगा, 11 जिलों पर मडराया बाढ़ का खतरा। राजधानी पटना से लेकर भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय तक पानी पानी, करीब 17 लाख लोग प्रभावित। एमपी के सागर में जहरीली शराब का कहर, 9 लोगों की मौत, अलग अलग गांव के रहने वाले थे मृतक। मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले दोषियों को मिलेगी सख्त सजा। सहारनपुर में मस्जिद के मलबे के नीचे मिला 20 फीट गहरा कुआं, देखने के लिए जुटने लगी भीड़। कुएं की जांच कराएगा प्रशासन, बुलडोजर एक्शन पर जारी सियासी उबाल। जेंजी पर सियासी आर पार, प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के बीच कहा सच की हुंकार के आगे नहीं टिकेगी झूठ की गूंज। महाराष्ट्र में छात्र आंदोलन के समर्थन में आए राहुल गांधी, बीजेपी को घेरा। और दिल्ली में दो हमलावरों ने एक शख्स को पीट पीट कर मार डाला, विशेष विरोध करने पर गार्ड को भी धमकाया। सीसीटीवी खंगाल कर मृतक और आरोपियों की पहचान में जुटी है पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। सुबह के 11:30 बज गए हैं, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। हम आज बात करेंगे सहारनपुर मस्जिद पॉलिटिक्स के बारे में। मस्जिद टूट गई लेकिन सियासत अभी बाकी और जबरदस्त हंगामा, जबरदस्त सवाल। प्रधानमंत्री मोदी ने दिमागी नक्सलियों को कौन सी गोली दी है ये भी बताएंगे। श्रीराम कॉमर्स कॉलेज में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद मचे सियासी घमासान की भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ शुद्धिकरण की सियासत की भी बात होगी, क्योंकि उत्तराखंड में अब सियासी शुद्धिकरण बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बड़ी और अहम खबर के बारे में। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं सहारनपुर कलेक्ट्रेट मस्जिद के नीचे एक कुआं भी मिला है, करीब 20 फीट गहरा कुआं मस्जिद के नीचे मिला है। कल सहारनपुर प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर में अवैध मस्जिद को तोड़ा था, जिसके बाद अब वहां से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। मलबा हटाने के बाद वहां से एक कुआं पाया गया है, और ये कुआं कितना पुराना है, कब का है, इसका क्या इतिहास है, इसके बारे में अभी कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। लेकिन मस्जिद हटने के बाद अब ये कुआं चर्चाओं में जरूर बना हुआ है। बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं इस कुएं को देखने के लिए। तो मस्जिद के नीचे 20 फीट गहरा कुआं मिला है, और आपको बता दें कि इसी कुएं को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला यहां जारी है। कल इस मस्जिद को हटाने के बाद जबरदस्त हंगामा और सवाल पूछे जा रहे थे।
4: सहारनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद प्रशासन के द्वारा बुलडोजर की मदद से ढा दी गई है। आप मेरे पीछे विजुअल्स में देखेंगे, ये जो खाली ग्राउंड है जो अब बिल्कुल प्लेन कर दिया गया है, यहाँ पर लगभग 2 मंजिल की मस्जिद हुआ करती थी। जब इस मस्जिद को बुलडोजर की मदद से ढाया गया और अब जब इसका मलबा यहाँ से हटाया गया है, तो अब मलबा हटने के बाद इस मस्जिद के नीचे एक कुआं नजर आने लगा है। आप मेरे साथ पीछे विजुअल्स में देखेंगे कि ये कुआं जो है लगभग 15 से 20 फीट गहरा ये कुआं है, और इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 1.5 से 2 फुट की है। अब इस कुएं को देखेंगे कि ये कितना पुराना एक कुआं है, और इसमें कुछ अंदर फिलहाल तो मिट्टी भरी हुई है, और इस कुएं के ऊपर बताया जा रहा है कि लगभग 1.5 से 2 फीट मोटा एक स्लेब वो रखा गया था, उसके बाद इसके ऊपर मस्जिद बनाई गई थी। अब उस स्लेब को यहां से कोकलेन की मदद से तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन वो नहीं टूटा, जिसके बाद कटर मंगाया गया। उस कटर से काटने के बाद उस स्लेब को यहां से हटाया गया, और उसके नीचे ये लगभग 20 फीट गहरा कुआं निकला है। हालांकि अब सहारनपुर का जो प्रशासन है, अब वो इस कुएं की जांच कराने के लिए टीमों की प्रयास कर रहा है कि कब यहां पर टीम पहुंचेगी और अब इस कुएं की जांच करेगी, ताकि पता लग सके इस कुएं के अंदर और क्या क्या मिल सकता है।
3: सहारनपुर मस्जिद को लेकर अब कई दावेदार सामने आने लगे हैं। जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तब मस्जिद के पक्ष में कोई प्रमाण नहीं होने की वजह से

0: को खारिज कर दिया गया था, लेकिन अब एक परिवार ने सामने आकर तमाम दावे किए हैं। उनका दावा यह है कि यह मस्जिद उनकी थी, जमीन उनके पूर्वजों ने रेंट पर अंग्रेज सरकार को दी थी, मस्जिद तब भी वहां मौजूद थी, कलेक्ट्रेट बाद में बना, लेकिन सरकार ने मस्जिद को अवैध कह के ढहा दिया है। तमाम पेपर्स देने की भी बात इस परिवार की तरफ से कही जा रही है और उन्होंने कहा है कि इनके पूर्वजों ने इस जगह को रेंट पर दिया था।
1: हमारा जो है मेन जो हमें पता चला है कि मस्जिद शहीद कर दी गई और इस तरह ये जो है खसरा नंबर 539 है जिसमें तकसीम में भी बाकायदा हमारे नाम खुले हुए हैं। खसरा नंबर 539 सबके हिस्से खुले हुए हैं रकबे और ये 1867 की रिकॉर्ड है ये जिसमें मिस्टर कलेक्टर साहब थे और मिस्टर रॉबर्ट पॉल साहब उन्होंने लिए 2 रुपए 5 पैसे बिघा ली प्रॉपर्टी और जिसमें जो है ना साल किराया 517 बीघे जिसका किराया हुआ तो मुकर्रर 800 रुपए सालाना मुकर्रर हुआ किराया, मगर हमने कभी शो नहीं किया ना हम गए भाई ठीक है बड़ों ने दे दी सब कुछ है सरकार का भी है बैठी रहे सरकार कभी भी नहीं करी, मगर आज बड़ी दिल को ठेस पहुंची कि भाई इसी तरह करके सुबह ही 5 बजे मस्जिद शहीद कर दी गई।
0: तो सहारनपुर पर सियासत भी जबरदस्त भारी है, लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर बीजेपी को घेरा है तो वहीं ओवैसी ने दावा यह किया है कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, उन्हें बिना सुनवाई का अवसर दिए ही मस्जिद को ढहा दिया गया।
2: वो सनातनी कभी नहीं हो सकते जो दूसरे धर्म के सम्मान न करते हों।
3: कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या मुसलमानों के लिए नहीं है?
4: किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर हो उसे सिर्फ इस दृष्टि से देखना चाहिए वो कानूनी है अथवा गैर कानूनी।
5: अवैध मस्जिद सहारनपुर में टूटी लेकिन उसकी गूंज लखनऊ से हैदराबाद तक सुनाई दे रही है। अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, इमरान मसूद और मायावती जैसे नेता इसको लेकर बीजेपी पर हमलावर है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आखिर मस्जिद को गिराने की इतनी जल्दी क्या थी, क्या ऊंची अदालत के फैसले का इंतजार प्रशासन नहीं कर सकता था। विपक्ष योगी सरकार पर जानबूझकर मस्जिदों को टारगेट करने का आरोप लगा रहा है।
2: वो सनातनी कभी नहीं हो सकते जो दूसरे धर्म के सम्मान न करते हों। वो सनातनी कभी नहीं हो सकते जो दूसरे की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हों। वो सनातनी कभी नहीं हो सकते और एक सच्चा हिंदू कभी दूसरे का अपमान नहीं कर सकता है। हमने तो यही सीखा है सनातन धर्म में।
3: बीजेपी से हम पूछना चाहते हैं और खास तौर से मुख्यमंत्री से योगी आदित्यनाथ से और बीजेपी के जितने जिम्मेदार हैं और देश के प्रधानमंत्री से, हमको ये बता दीजिए आप कि जो भारत के संविधान में जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने मनाया कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या मुसलमानों के लिए नहीं है? बता दीजिए मुसलमानों के नहीं है क्या? हमारी इबादत गाहों को आप तोड़ रहे हैं, माने कोर्ट कानून सबको बालाए ताक रखकर बाजू रखकर आप तोड़ रहे हैं। क्या पैगाम दे रहे हैं आप पूरे देश को और विश्व को कि भारत के 18 करोड़ मुसलमान जो भारत के हैं, जो यूपी में एक बड़ी तादाद रहती है 19%, 20%, उनके लिए कोई संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी फ्रीडम जो खत्म हो गया क्या? वहां पर क्या वहां पर रूल ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस, नेचुरल जस्टिस पूरा खत्म हो गया क्या उत्तर प्रदेश में? बता दीजिए हमको। अगर खत्म हो गया तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ करना चाहिए वहां पर।
5: सहारनपुर में जो मस्जिद तोड़ी गई वो जिला कलेक्टर के ऑफिस परिसर में थी। 314 वर्ग मीटर के एरिया में मस्जिद बनाई गई थी। जिला न्यायालय के आदेश पर उसे ध्वस्त किया गया, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि मस्जिद तो पहले थी, कलेक्ट्रेट बाद में बना, सुनवाई का पूरा अवसर नहीं दिया तो फिर तोड़ा क्यों?
6: अभी मैं दिखवा रहा हूँ सारी चीजों को, अभी हम लोग कर रहे हैं क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी लड़ी जाएगी और ये हम नजीर बनेगी है, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, इसमें हम बिल्कुल तैयारी किए हुए हैं, हाई कोर्ट के अंदर भी जाएंगे, हाई कोर्ट नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम लड़ाई आखिर तक लड़ेंगे, हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है।
5: उधर बीजेपी का कहना है कि कोर्ट के फैसले पर एक्शन हुआ है जिसे धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए।
4: तक सहारनपुर की घटना के संदर्भ में है वो एजेंसीज और सरकार की जो भी डिपार्टमेंट है वो विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर किसी प्रकार का राजनीतिक नजरिया से देखने की जरूरत है या किसी भी बिल्डिंग को उसकी धार्मिक पहचान से देखने की जरूरत है। किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर हो उसे सिर्फ इस दृष्टि से देखना चाहिए वो कानूनी है अथवा गैर कानूनी है।

0: 2 सितंबर को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज हुई। 3 सितंबर की अलसुबह प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। यूपी में चुनाव है, ऐसे में मस्जिद भले ही सहारनपुर में टूटी, लेकिन इसकी गूंज यूपी की राजनीतिक गलियारों में लंबे समय तक सुनाई देगी। हिमांशु मिश्रा के साथ राहुल कुमार सिंह, सहारनपुर आज तक।
1: और अब बात करेंगे बीजेपी की यूपी पॉलिटिक्स के बारे में, क्योंकि बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनावों के लिए कमर कसी है। और इसी बीच यूपी बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े लखनऊ पहुंचे हुए हैं। विनोद तावड़े ने समाजवादी पार्टी के पीडीए की नई परिभाषा गढ़ डाली। विनोद तावड़े ने कहा कि पीडीए का मतलब है पराया धन अपना, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं होने देगी। उन्होंने दावा यह किया कि 2027 में फिर से बीजेपी चुनाव जीतेगी।
2: समाजवादी पार्टी का पीडीए का जो स्लोगन है वो हम एनडीए वाले नाकामयाब करेंगे, क्योंकि पीडीए का सपा का मतलब है पराया धन अपना। ये एनडीए कदापि करने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम को पहुंचे थे दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉमर्स कॉलेज के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। और इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों पर हमले भी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं कोई भी नया काम करता हूं तो फूफा की तरह विरोधी मुंह फुला लेते हैं, अड़ंगा लगाने लगते हैं।
3: आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, एक वो लोग जो पॉजिटिव तरीके से समाज की शक्ति को राष्ट्र की शक्ति में बदलते हैं, दूसरी प्रजाति उन लोगों की है जो कोई भी काम शुरू होने पर नाराज फूफा बन जाते हैं। उनका फेवरेट काम होता है हर काम का विरोध करना। इनका एक ही डायलॉग होता है, इसकी क्या जरूरत है। इसकी क्या जरूरत है, ये हर फूफा का परमानेंट डायलॉग होता है। जब हम दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू बना रहे थे तो फूफा जी ने कमर कस ली, कहा इसकी जरूरत ही क्या है। हमने हाई स्पीड ट्रेन पर काम शुरू किया तो फूफा जी फिर बोले इसकी जरूरत ही क्या है। हम यूपीआई लेकर आए तो यही फूफा लोगों को कहते थे वाह यूपीआई, यूपीआई की जरूरत ही क्या है। हमने चिप बनाने की बात की तो फिर कहा गया कि जरूरत ही क्या है। हमने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई तो ये फिर बोले इसकी जरूरत ही क्या है। हमने देश के लिए मरने मिटने वाले सर्वश्रेष्ठ बलिदान देने वाले हमारे वीर सेना नायकों का मेमोरियल बनाया, फूफा फिर मैदान में आ गए, इसकी क्या जरूरत थी। लेकिन भारत ने ऐसे सारे फूफाओं को जवाब दिया। जो देश के लिए जरूरी है वो भारत को करने से कोई रोक नहीं सकता।
1: तो प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। इसके बाद कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। छात्र नौजवान उनसे परेशान हैं, नाराज हैं, छात्र गूंज से बीजेपी परेशान है, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी इस तरह की बातें कर रही हैं।
4: SRCC जो हमारे श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो है, जहाँ के मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी रहा हूँ, वो कोई राजनीतिक मंच नहीं है। उस जगह पे स्टूडेंट्स को हमारे लेक्चर नहीं चाहिए थे, उनको फ्यूचर के बारे में बातें आनी चाहिए, GDP के बारे में बातें आनी चाहिए, जॉब अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बातें आनी चाहिए, तो उस पर बारे बातें नहीं हुई। और अपने मियां मुंह मिट्ठू वाली बातें अपनी बातें वो कह रहे थे। 2013 में जो चुनौतियां थी आज भी हमारे सामने चुनौतियां हैं, और जिस जीडीपी की वो बात कर रहे हैं वो खुद कंट्रोवर्सी में कैसे आंकड़ों की बाजी करी हुई। तो मुझे बहुत दुख होता है कि चाहे सदन हो, चाहे वो एक मंच हो, चाहे विश्वविद्यालय का मंच हो, प्रधानमंत्री जी वो हमेशा लगता है कि वो राजनीतिक मंच है, और ये उनकी सबसे बड़ी आत्मुग्ध होकर जो कहने की जो बातें वो बहुत दुर्भाग्य है।
5: जो नई पीढ़ी है वो बहुत व्यथित है, और लगातार जो पेपर लीक हुए, पेपर लीक के बाद जो आंदोलन हुआ, शिक्षा मंत्री को अपना इस्तीफा देना पड़ा, एक छवि बन गई भाजपा सरकार की, ये छात्र विरोधी, युवा विरोधी और रोजगार विरोधी हैं, और चंद उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। 12-13 साल में ये एक परसेप्शन निर्मित हो चुका है, शायद उसको ठीक करने की कोशिश सरकार कर रही हो, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अब कितना भी आप मीडिया मैनेजमेंट कर लें या भाषण दे दें, तथ्य, हकीकत और आंकड़े बताते हैं कि सरकार ने, भाजपा सरकार ने युवाओं को, छात्रों को, नौजवान लोगों को हमेशा धोखा ही दिया है। और
1: तो छात्रों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से दिमागी नक्सल का भी जिक्र किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त को दिमागी नक्सलियों को गोली दी थी, अब उसका असर नजर आने लगा है। प्रधानमंत्री ने भारत की आर्थिक तरक्की का भी जिक्र किया।
3: ऐसे लोगों के लिए मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी का डोज दिया था, होम्योपैथी की गोली, छोटी सी गोली दी थी लाल किले से। और आप जानते हैं होम्योपैथी के कहते हैं कि स्वभाव ऐसा है कि होम्योपैथी की दवाई जब शुरू करते हैं तो शुरू के दौर में बीमारी एकदम से ज्यादा बढ़ जाती है, ये होम्योपैथी का स्वभाव है। तो मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी की गोली दी थी दिमागी नक्सल। ये दिमागी नक्सल होम्योपैथी का इलाज, जैसा मैंने कहा, बीमारी को कुछ समय के लिए और उभार देता है, और उसके बाद उसका इलाज शुरू करता है। इसी तरह जैसे ही मैंने दिमागी नक्सल वाली होम्योपैथी की गोली दी, सारे दिमागी नक्सल निकल निकल के बाहर आने लगे, और जो इस बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं, अब जनता उनका भी असली रंग देख रही है।
1: और अब बात करेंगे कांग्रेस के शुद्धिकरण पॉलिटिक्स के बारे में, क्योंकि उत्तराखंड के हल्द्वानी ने शुद्धिकरण को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने के लिए प्लान तैयार कर लिया है, और कांग्रेस के दलित सांसदों की एक बैठक भी होने वाली है। कल यानी कि सोमवार को देहरादून में सीएम आवास तक कांग्रेस मार्च भी निकालेगी। इसी बीच बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी बुधवार को उत्तराखंड पहुंच रहे हैं।
6: भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी।
7: नड्डा जी ने कहा था कि इसकी तहकीकात जरूर होगी।
6: इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है।
7: वो लोग कोई एक्शन नहीं लिए, वहां की सरकार भी कोई एक्शन नहीं लिए।
8: यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले हल्द्वानी शुद्धिकरण का मुद्दा गर्मा गया है। दलितों के अपमान का आरोप लगाकर कांग्रेस मैदान में है। कांग्रेस नेताओं ने हल्द्वानी में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन अब मामला विरोध प्रदर्शन से आगे निकल चुका है, अब मामला चुनावी है। बुधवार यानी 9 सितंबर को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन हल्द्वानी जाएंगे, लेकिन उससे ठीक पहले कांग्रेस ने अपने दलित सांसदों की बैठक बुला ली। सोमवार को देहरादून में शुद्धिकरण के खिलाफ कांग्रेस मार्च निकालेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास तक कांग्रेस नेता मार्च करेंगे। कांग्रेस का एजेंडा साफ है कि उत्तराखंड में दलित अपमान के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा जाए, लेकिन 13 अगस्त को जब खड़गे ने हल्द्वानी शुद्धिकरण का मुद्दा राज्यसभा में उठाया तो जेपी नड्डा ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई।
9: हमारी धरती में कुछ ऐसे लोग हैं आज के दिन जिन लोगों ने वहाँ रामलीला ग्राउंड में, अरे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के स्टेचर का आदमी आकर के संबोधित कर रहा है तो स्वाभाविक ही बात है। लेकिन उन्होंने वहां शुद्धिकरण किया। ये शुद्धिकरण क्या है? इसका अर्थ है तुम

0: संविधान का उल्लंघन कर रहे हो, SC ST एक्ट का उल्लंघन कर रहे हो। बल्कि राहुल जी ने जब कहा कि इनके खिलाफ FIR दर्ज करो, तो FIR राहुल जी के खिलाफ दर्ज कर दी गई। तो देश का जो जागृत जनमंच जनमत है, वो आज ये समझ रहा है कि जो कुछ हल्द्वानी में ये तथाकथित शुद्धिकरण के नाम पर हुआ है, वो ब्लॉट है देश के ऊपर।
1: शुद्धिकरण का मामला है, राहुल जी के ऊपर भी FIR का मामला है, तरह तरह की ये बातें हैं। लोगों तक हमने जाना है और उजागर करना है, लेकिन आप ये देख ही सकते हैं कि राहुल जी के ऊपर तो कितनी जल्दी से FIR हुई, लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट जो LOP हैं राज्यसभा में, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है, उसके बावजूद कोई हरकत, कोई कार्य नहीं, इसकी ओर ये बढ़ना नहीं चाहते। इनके लिए मैं तो, मुझे लगता है कि इनकी सोच क्या है। उत्तराखंड के लोग महसूस कर रहे हैं कि उनके ऊपर ये इस सरकार ने ऐसा काम करके उत्तराखंड के लोगों को ऐसा करने का प्रयास किया।
2: जब उत्तराखंड में FIR दर्ज नहीं हुई तो कांग्रेस ने बेंगलुरु में 0 FIR करवाई, लेकिन बदले में राहुल गांधी के खिलाफ उत्तराखंड में SC ST एक्ट में FIR लिखवा दी गई। अब कांग्रेस इस मुद्दे पर आर पार के मूड में है, क्योंकि मामला सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष का नहीं, पूरे दलित समाज से जुड़ा है और कांग्रेस की नजर दलित वोट बैंक पर है। आज तक ब्यूरो।
3: और चलिए इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

बिहार में उफान पर गंगा, 11 जिलों पर मंडरा है बाढ़ का खतरा। राजधानी पटना से लेकर भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय तक पानी पानी, करीब 17 लाख लोग प्रभावित। एमपी के सागर में जहरीली शराब का कहर, 9 लोगों की मौत, अलग अलग गांव के रहने वाले थे मृतक। मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले दोषियों को मिलेगी सख्त सजा। सहारनपुर में मस्जिद के मलबे के नीचे मिला 20 फीट गहरा कुआं, देखने के लिए जुटने लगी भीड़। कुएं की जांच कराएगा प्रशासन, बुलडोजर एक्शन पर जारी है सियासी बवाल। जेंजी पर सियासी आर पार, प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के बीच कहा सच की हुंकार के आगे नहीं टिकेगी झूठ की गूंज। महाराष्ट्र में छात्र आंदोलन के समर्थन में आए राहुल गांधी, बीजेपी को घेरा। और दिल्ली में 2 हमलावरों ने एक शख्स को पीट पीट कर मार डाला, विरोध करने पर गार्ड को भी धमकाया। सीसीटीवी खंगाल कर मृतक और आरोपियों की पहचान में जुटी है पुलिस।

नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। दुनिया की सबसे युवा, सबसे नई और सबसे नाजुक, सबसे इकोलॉजिकली सेंसिटिव पर्वत श्रृंखला जो है वो हिमालय। पिछले कुछ समय में जिस तरह की त्रासदियां उत्पन्न हो रही हैं हिमालय के इस क्षेत्र में, वो पूरी दुनिया को संकेत दे रही है, चेतावनी दे रही है।

0: कह रहे हैं कि दो पुल था पर पुल का नामो निशान नहीं है। सोचिए इतनी शक्ति से उतने आवेग से पूरा मलबा आया होगा।
1: यहाँ पे हाइड्रो पावर यहाँ था और फिर यहाँ से नहर निकाल कर आपको देवीघाट हाइड्रो पावर
0: दे। नहीं तो कुछ दिख नहीं रहा है, उसका ढांचा सब बह गया
1: पूरा नीचे।
0: अच्छा नीचे है,
1: नीचे है दाग गया।
2: अगर मैं इधर से आई होगी तो मुझे भी लेके जाएगा था पार्क में, पर वे उधर चले गए।
0: ऊंचा दिख रहा था ऐसे, कैसा होता वो दिख रहा था?
2: नहीं ऐसे जैसे होते ना जो इसने क्या आते ना ऐसे ऐसे करके। अच्छा। थोड़ा थोड़ा ऊपर हाई हाई हाई हाई करके।
0: अच्छा, अच्छा।
2: तो ऐसा सब क्या आ गया ना, तो कुछ सोचने समझने के टाइम भी नहीं हुआ उस टाइम कि क्या करना चाहिए। कितने लोग को तो हमने देखा कि उसको बाढ़ ने भगा के लेके गए। जो लोग ना अपना सामान बचाने के लिए लेने गए ना तो वो लोग चले गए, और जो लोग अपने जान बचा के भाग गए वो बच गए।
3: नेपाल में 26 अगस्त को जो भागा सिर्फ वही बचा, बाकी सब सैलाब में बह गए। नेपाल में जो कुछ हुआ क्या उस प्राकृतिक आपदा को ईश्वर की इच्छा, उनकी मर्जी कहने वालों की कमी नहीं। लेकिन जिस बात पर सबको मंथन करना चाहिए वो है हिमालय की चेतावनी, जो हर प्राकृतिक आपदा के बाद गहरी और गंभीर हो रही है। नेपाल की त्रासदी का हर वायरल वीडियो ये चीख कर बताता है कि ये कोई आम बाढ़ नहीं है। इस वीडियो में दिख रहे लोग भले ही तकदीर वाले हों, जिन्हें अपनों को बचाने का वक्त मिल गया हो, जो उनका हाथ पकड़कर समय पर भाग निकले हों, लेकिन नेपाल की ये तस्वीर पूछती है कि आपदा क्यों आई, तिब्बत में ग्लेशियर क्यों टूटा, क्यों हिमालय के ग्लेशियर दरक रहे हैं, गर्म होते जा रहे हैं। नेपाल की त्रासदी कई दिनों बाद जिंदा बचे लोगों के चमत्कार की भले ही लगने लगी हो, लेकिन हमें याद दिला रही है कि जैसे दिल का दौरा अचानक नहीं आता, वो दशकों से इंसान के भीतर पनप रहा होता है, उसी तरह हिमालय पर्वत श्रृंखला में ग्लेशियर का उम्मीद से पहले पिघलकर नदी में गिरना, पानी का रुकना, उसका इकट्ठा होना और फिर अपनी ही दीवार को तोड़कर एक साथ नेपाल के रसुआ जिले में आ गिरना, उस बीमारी की तरफ इशारा कर रहा है। जिस पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर नेपाल की तरह भारत भी उसकी चपेट में आ सकता है।
0: जैसे ही उस बाढ़ को, उस तबाही को, त्रासदी को आते लोगों ने देखा, इसी रास्ते से आगे होकर वो ऊपर की तरफ भागे। जब आगे वो त्रासदी आई, तबाही आई, बाढ़ मलबे के साथ पानी आया, तो ईश्वर को इस बात का शुक्र तो अदा किया कि अपनी जान बची, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को तिनका तिनका होते भी देखा।
3: नेपाल में 26 अगस्त की सुबह आई बाढ़ के बाद अलर्ट जारी करने के समय को लेकर सवाल उठ रहे हैं। चीन के तिब्बत में 26 तारीख को जिस ग्लेशियर के टूटने से ये सब कुछ हुआ, उसे लेकर नेपाल सरकार की तरफ से लोगों को दावा है समय रहते अलर्ट भेज दिया गया था, खासकर नदी के दोनों किनारों पर रहने वाले 6 लाख लोगों को। लेकिन अब इसे प्रकृति को लेकर लापरवाही कहिए या फिर कुछ और, नेपाल तिब्बत सीमा पर भोटे कोशी नदी में जहां पानी के साथ मलबा और चट्टानों का सैलाब नेपाल में बढ़ रहा था, तब लोग इस चेतावनी को लेकर उदासीन थे। इसका नतीजा ये हुआ कि जब सैलाब के रूप में तबाही सामने थी, तब भी लोग भागने के बजाय उसका वीडियो बना रहे थे, उससे जुड़े खतरे को देख कर भी अनजान बने हुए थे। इसी का नतीजा ये निकला कि इतने सारे लोग बेमौत मारे गए, क्योंकि उन्हें हिमालय के गुस्से का अंदाजा नहीं था।
2: दरअसल क्या हुआ था, ऑलमोस्ट 9:15 का टाइम हुआ था ना, तो वो लोग आए जो आर्मी है ना, आर्मी लोग आके बाइक पे आके वो लोग अनाउंस किया कि बाढ़ आ रहा है।
0: अच्छा।
2: पर इतना नहीं बोला कि कितना आ रहा है। ठीक है, तो सब लोग पहली दफा पे आ चुका था ना, तो सब लोग समझ गए मैं भी पहले जैसा
0: उस टाइम धीरे धीरे से नॉर्मल बाढ़ की तरह
2: नॉर्मल था। तो किसी की भी ये नहीं सोच हुआ कि हमारा जितना भी जिनसी सामान है तो हम निकालना चाहे, जो हमारा कीमत है जैसा पैसा वगैरह ना, तो सोचा कि हाँ मैं भी थोड़ा थोड़ा आया होगा, मैं भी नॉर्मल, तो ये सोच के सब लोग नॉर्मल जैसे रहे। तो 9:15 के बाद ऑलमोस्ट जो सबने देखा ना था उधर से आ गए।
3: नेपाल में इस प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए लोगों के पास ठीक ठाक समय था, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित स्थानों पर नहीं भागे। लगा कि पानी उनके घर के पास से गुजर जाए, उन्हें लगा कि उन्हें कुछ नहीं होगा, सब कुछ पहले की तरह चलता रहेगा, लेकिन इसी सोच ने उनका सब कुछ छीन लिया।
1: नदी तो बहुत परिवर्तन हुआ है पहले।
0: क्या परिवर्तन हुआ है?
1: इसका चौड़ाई बढ़ गया है पहले से।
0: हाँ।
1: ये पूरा खेत था इसके पछाड़ी, पूरे खेत
0: में ये खेत था
1: इसके पछाड़ी।
0: अच्छा।
1: इस साइड में पूरे घर था, यहाँ पे हर आदमी अपना बिजनेस व्यवसाय करता था लोग। यहाँ तक रोड था पहले,
0: यहाँ तक रोड था। अच्छा, इसीलिए ये हम रोड का जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाला वो चीजें आप देख रहे हैं।
1: हाँ,
0: और इसीलिए यहाँ पर खड़ा होना भी थोड़ी देर के लिए संभव हो पा रहा है।
1: यहाँ बाउंड्री था, यहाँ तक रोड था पहले।
0: आपकी कौन मिसिंग है?
4: मेरी दीदी मिसिंग है और भांजी भी, तीन भांजी, एक हाँ। दीदी और एक नतनी मिसिंग है।
0: कहाँ रह रहे थे
4: वो लोग? रसुआ और नुआकोट के बॉर्डर पे रहते थे।
0: रसुआ नुआकोट के बॉर्डर पे। तो आप हर उस जगह आके ढूंढ रहे हैं कि
4: हर जगह जाने के वहाँ कोई साधन ही नहीं है।
0: हाँ।
4: और वहाँ तक मिसिंग ही है और जा नहीं पा रहे हैं।
0: फोटो एक बार दिखा दीजिए कैमरे पे।
4: ये भांजी हुई, ये भांजी की लड़की हुई।
0: कितने साल की है
4: ये बच्ची? 2 साल की है।
0: 2 साल की
4: जी। ये दीदी हुई।
0: हाँ।
4: ये भांजी है, ये भी भांजी है।
0: तो ये मिल नहीं पा रहे हैं?
4: नहीं मिल पा रहे हैं।
0: आप हर जगह जाके
4: ढूंढ रहे हैं।
3: 26 अगस्त को ग्लेशियर टूटने से अचानक आई बाढ़ से तबाह होने वाली बस्तियों में नुआकोट जिले का त्रिशूली सबसे प्रमुख है, जिसके बाजारों में तबाही को दौड़ कर आते सब कुछ तबाह करते हुए सारी दुनिया ने देखा है। उसी 30,000 की आबादी वाले कस्बे में कभी बाजार था, लेकिन अब वहां पर सिर्फ पत्थर और कीचड़ है। सड़कें गायब है, घर, दुकानें, स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक सब मलबे में दबा है। पूरा शहर उजड़ गया है। इस तबाही के बाद घर लौटे लोग सब कुछ खोने से टूटते दिख रहे हैं। सैलाब के बाद अपने घरों में वापसी करते ये लोग भले जिंदा हो, लेकिन अब इनके लिए एक एक पल पहाड़ बन गया है। नेपाल की ये चेहरे भले ही अलग अलग हों, लेकिन सबका दर्द एक जैसा है। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ ने हिमालय की गोद में रहने वाले 5 करोड़ लोगों को याद दिलाया है कि जलवायु परिवर्तन खतरनाक स्तर तक जा पहुंचा है, जिसने नेपाल जैसी आपदा का जोखिम पहले से कई गुना ज्यादा कर दिया है। ग्लेशियरों के तेजी से बदलते आकार, अचानक आने वाली बाढ़ और कमजोर चेतावनी तंत्र का ही असर है कि हिमालय अब साफ साफ बता रहा है कि मेरी सुनो, वरना इससे भी बड़ी तबाही आएगी। इंसानी बस्तियां तिनके की तरह उड़ जाएंगी। नुआकोट की तरह शहर के शहर वीरान हो जाएंगे। अगर कुछ बचेगा तो सिर्फ तबाही के निशान।
0: ये ऋषिका है। ऋषिका, पूरा नाम क्या हुआ आपका?
5: मेरा नाम पुराने में ऋषिका कुमारी कलवार। मैं
0: किस क्लास में पढ़ती हूँ?
5: मैं अभी 12 में पढ़ती हूँ, काठमांडू।
0: अच्छा, तो यहाँ पर तुम्हारा घर था जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ है। ये क्या क्या है, पूरा एरिया हमको समझाओ कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये क्या था?
5: ये कृषि विकास बैंक है यहाँ पे, मतलब यहाँ के नजदीक बैंक पे यही था,
0: ये बैंक था। और ये ट्रक तो कैसे गिर गया?
5: ये ट्रक यहाँ पे जस्ट लगे पार्किंग की तरह था ना यहाँ पे।
0: हाँ।
5: तो ये पूरा धस गया। हम लोग का भी ट्रक धस गया उधर ही है। हाँ। हम लोग का भी वैसे ही हो गया। यहाँ पे एक और ट्रक था, वो भी किसी का अंदर दबा हुआ है। उधर वहाँ पे भी ट्रक है।
0: हाँ,
5: वो भी
0: हाँ। अच्छा, ये पार्किंग था तो सबका, जिसका भी ट्रक था वो यहाँ पे धस गया है
5: जी
0: सबका।
5: मेरे पेरेंट्स को देर पहले इन्फॉर्म नहीं हुआ कि पानी आया है, बस वो लोग बस गए। वही मेरे लिए बहुत काफी है, बहुत मैं खुशी हूँ कि भले सब
0: चीज़। कौन सा वाला है?
5: मेरा घर उधर वाला है।
0: कौन सा?
5: पिंक कलर का हल्का दिखाई दे रहा है।
0: अच्छा, जो पूरी तरीके से नीचे है, सिर्फ एक मंजिल दिख रहा है जिसका ऊपर।
5: जी जी, जो दस्ता है ना ऊपर का, उस और साइड में है ना, वही मेरा घर है।
0: कितनी देर पहले मम्मी पापा निकल पाए थे?
5: मम्मी पापा बोल रहे थे अगर हम लोग ऐसे मुड़ के पीछे देखते लोग तो शायद पता नहीं क्या होता।
0: मतलब मुड़ के पीछे देखने का भी टाइम नहीं था।
3: नेपाल की आपदा ने साबित कर दिया है कि हिमालय अब और अधिक मानवीय दबाव सहन करने को तैयार नहीं। कश्मीर से हिमाचल, उत्तराखंड तक में हमारे ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। उनके ऊपर अनगिनत खतरनाक झीलें आकार ले रही हैं। इस तरह हिमालय की गोद में बसा भारतीय उपमहाद्वीप अब प्रकृति के ऐसे गुस्से का सामना कर रहा है जो उसने आज से पहले कभी नहीं किया। नेपाल तिब्बत की तबाही इसका ताजा उदाहरण है। सवाल है कि क्या हिमालय की तरफ से ये भारत के लिए सबसे गंभीर और अंतिम चेतावनी? नेपाल जैसी तबाही लाने वाली भारत में कितनी झीलें हैं? क्या नेपाल की बाढ़ सिर्फ शुरुआत है? इससे भी बड़ी तबाही हिमालय के किसी हिस्से में क्या पनप रही है? हिमालय की तरफ से बढ़ते इस जोखिम को कैसे रोका जा सकता है?
0: ये वो जिला है जो सबसे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ नेपाल में आई उस त्रासदी से। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, मलबा हट रहा है तो त्रासदी का पैमाना दिख रहा है। इस ऊंचाई से आप वो पूरी तस्वीर देखिए, त्रिशूली नदी अपने तटों को तोड़कर दोनों तरफ ज्यादा चौड़ाई में बह रही है। वो तस्वीरें जहां पर आपको लोग खड़े हुए दिख रहे हैं वहां तक सड़क जाती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे शायद एक पगडंडी रही हो और बाकी केवल मलबा, पर ऐसा नहीं है। यहां पर एक बड़ी सी पार्किंग हुआ करती थी, ये बैंक, एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स और आगे आप होटल्स देख सकते हैं क्योंकि यहां पर पर्यटक बड़ी संख्या में आया करते थे। अब जो इकलौता पर्यटन यहां पर है वो उन लोगों का है जो आकर देखना चाहते हैं कि कैसी विनाश लीला रही होगी। इस तरह की त्रासदी को सिर्फ एक कारण से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, बल्कि उस पूरी सिस्टम को, पूरी प्रणाली को समझना होगा जो गलत हो रहा है। परमाफ्रॉस्ट पिघलने का जो समय काल है, उसकी जो अवधि है, उसकी जो रफ्तार है, वो दुनिया में सबसे तेजी से हिमालय की पर्वत श्रृंखला में ही देखा जा रहा है। परमाफ्रॉस्ट को इस हिसाब से समझिए कि जो बर्फ के पहाड़ हैं उनको एक बर्फीले सीमेंट के रूप में अंदर से जो जोड़े रखता है वो चीज होती है, और अगर उसके पिघलने की रफ्तार तेज हो जाए तो क्या होगा पूरे क्षेत्र के लिए, आप समझ सकते हैं।
3: नेपाल की तबाही का ये वो वीडियो है जो भारत को याद दिला रहा है कि हिमालय कितना खतरनाक हो रहा है। नेपाल में राहत और बचाव के दौरान सेना के हेलीकॉप्टर का ध्यान खींचने के लिए नेपाल का ये नौजवान हाथ में टी शर्ट लहराता दिखा ताकि बचाव दल को उसकी लोकेशन का पता चल सके। आखिरकार नेपाल आर्मी का एक हेलीकॉप्टर घर के पास पहुंचा और छत के ऊपर मंडराने लगा, और फिर बाढ़ की तबाही में फंसे नेपाल के इस नौजवान को हेलीकॉप्टर की लैंडिंग स्किड पकड़कर जिंदगी के उस सुरक्षा चक्र में पहुंचाया गया जिसकी उम्मीद इसको भी नहीं रही होगी। नेपाल की ऐसी ही एक कहानी मौत की लहरों के सामने खड़ी जिंदगी की भी, जिससे सबक मिला कि सैलाब जैसे हालात हों तो इरादे इस घर जैसे अटल होने चाहिए, तभी टिक पाओगे, सांस चलेगी। नुआकोट जिले के त्रिशूली नदी के पास हरे रंग का एक घर सारी दुनिया देख चुकी है, क्योंकि जो सैलाब आसपास की सारी इमारतों को वहां ले गया वो इस हरे रंग के घर का कुछ नहीं कर पाए। इस घर की मजबूती दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई। लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि कैसे एक छोटा सा घर इतने भयानक सैलाब को झेल गया। कुछ के लिए ये आपदा में चमत्कार की कहानी जिसमें रहने वाले लोग सुरक्षित बचा लिए गए, लेकिन नेपाल की त्रासदी तस्वीरों और उनकी कहानियों से कहीं बड़ी है, क्योंकि मामला हिमालय का है जिसमें ऐसा कुछ हो रहा है जो पहले कभी नहीं देखा गया। हर त्रासदी में मानवीयता के साथ इंसानी मूल्यों का पाताल दिखता है, तभी तो इस त्रासदी में भी लोगों ने बैंक के लॉकर को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, औजारों से इसे तोड़ा और इससे निकले नोटों को आपस में बांट लिया। ये बैंक लॉकर रसुआ से बहकर धडिंग पहुंचा था, लेकिन नेपाल की त्रासदी को अगर आप इतना भर सीमित मान रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि नुआकोट में मची ये तबाही, खत्म हुए आशियाने, रेंगती जिंदगी, ये बात याद दिलाती है कि हिमालय गर्म हो रहा है, उसके ग्लेशियर खतरनाक हो रहे हैं। नेपाल की तबाही हमें याद दिला रही है कि एक ग्लेशियर अगर इतनी बड़ी और भयानक तबाही मचा सकता है तो फिर सोचिए हिमालय में मौजूद हजारों ग्लेशियर इसी तरह खतरनाक हुए तो फिर क्या होगा। नेपाल में तबाही की शुरुआत तिब्बत में बर्फ का पहाड़ टूटकर नदी में गिरने से हुई, नदी का रास्ता रुकने से झील बनी और ज्यादा पानी भरने से मलबा हटा और पानी किसी बम की तरह नेपाल पर फूट पड़ा। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान ने हिमालय के इलाके ग्लेशियर झीलों को टाइम बम बना दिया है। ऊंचाई वाले संवेदनशील इलाकों में बर्फबारी की जगह बारिश बढ़ रही है, इससे ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और झीलों में पानी की मात्रा बढ़ रही है। कमजोर प्राकृतिक बांधों पर बढ़ते पानी के दबाव के साथ भारी बारिश, बादल फटना, भूस्खलन, हिमस्खलन, रॉक फॉल, भूकंप और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का खतरा बढ़ाती जा रही है। नेपाल में जो हुआ उसका खतरा भारत को लेकर भी कम नहीं है, क्योंकि भारत में 189 ग्लेशियर झील फटने की हालात में है। इसरो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़े डराने वाले हैं। जो बताते हैं कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 7,500 से ज्यादा ग्लेशियर झीलें हैं। इनमें से 189 रेड जोन में हैं और किसी भी वक्त टूट सकती हैं। ये झीलें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की चोटियों पर छोटी बड़ी झील के रूप में मौजूद हैं। पहाड़ों पर झील बनने की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ लद्दाख में ही 3,219 ऐसी झीलों की पहचान की गई। सबसे खबरदार करने वाली बात ये कि इन झीलों की प्राकृतिक दीवारें बहुत कमजोर होती हैं। इसीलिए हिमालयी क्षेत्र में आने वाला भूकंप, भारी बारिश या फिर एवलांच इन दीवारों को तोड़ सकता है। सिक्किम की लोनक झील और उत्तराखंड की चमोली में आए जल प्रलय इसका जीता जागता उदाहरण है।
6: कि ग्लेशियर जो हैं वो वीक पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसकी वजह से, और तीसरा हमारे जो नेचुरल डिजास्टर जैसे कि अर्थक्वेक आते हैं तो वो उनको वीकन करते हैं। तो उस वजह से क्या हो गया है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि हम इनको कैसे मॉनिटर करें।
3: एक्सपर्ट कहते हैं कि ये खतरा उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा है क्योंकि हिमालय में टूटे ग्लेशियर लगातार बढ़ रहे हैं। इसीलिए तबाही कभी साल 2013 में केदारनाथ तो कभी चमोली और सिक्किम के रूप में सामने आती है क्योंकि हिमालय में ज्यादातर ग्लेशियर फ्रैक्चर्ड हो रहे हैं, यानी उनमें ठोस बर्फ की कमी हो रही है। कुछ ऐसे ग्लेशियर हैं जिनमें बीच बीच में बर्फ का घनत्व कम हो गया है। ऐसी स्थिति में लाखों टन वजनी बर्फ के पहाड़ अपना सपोर्ट खो रहे हैं और हैंगिंग यानी लटके ग्लेशियर की तरह खड़े हैं, जो कभी भी हल्के भूकंप, भारी बारिश और एवलांच से गिरकर बड़ी तबाही ला सकते हैं।
6: उस मॉनिटरिंग में फ्रैक्चर जो ग्लेशियर हैं बेसिकली वो टूटे हुए हिस्से होते हैं, जैसे कि आप एक पूरा फिक्स है अपने मोरिन पे, लेकिन वो अगर हिल जाता है तो एक पर्टिकुलर जो पार्ट है वो फ्रैक्चर हो जाता है। ये जो मूव कर रहे होते हैं तो उसमें फ्रैक्चर हो जाते हैं और फ्रैक्चर होने की वजह से उनके टूट के गिरने की या लेक पे या रिवराइन सिस्टम को ब्लॉक करने की संभावना बढ़ जाती है और जिसकी वजह से संभावित खतरे होते हैं। तो जो फ्रैक्चर आप कह सकते हैं ग्लेशियर है, वो इन सिंपल टर्म जो ग्लेशियर के वीकन पार्ट हैं, टूटे हुए क्रैक्स को दिखाने वाले संरचना हैं।
3: नेपाल में भी तबाही की शुरुआत ग्लेशियर का हिस्सा टूटकर नदी में गिरना रहा, जिससे ऐसी भयानक तबाही मची कि लोगों को बचने का मौका नहीं मिला। तिब्बत में बनी जिस पोस्ट से भारतीय कैलाश मानसरोवर जाते थे, जिसे चारों तरफ से सैलाब ने घेर कर दुनिया को डराया, वो 26 तारीख के बाद साफ हो गया। आप देख सकते हैं कि बॉर्डर पोस्ट तबाही से पहले देखी जा सकती है, लेकिन तबाही के बाद उसका नामो निशान नहीं दिखता है। चीन की सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों में नेपाल चीन का बॉर्डर पूरी तरह तबाह दिखता है। इंसानी बस्तियां और रास्ते गायब हो गए। नेपाल का यह हादसा बताता है कि हिमालयी क्षेत्र में आपदा का जोखिम बढ़ रहा है, ग्लेशियर अस्थिर हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय हिमालयी इलाके की कुल 7,500 से ज्यादा झीलों में से 189 का रेड जोन में होना बहुत चिंताजनक है।
7: पड़ेगा ग्लेशियर रिट्रीट हो रहे हैं, उनसे क्या हो रहा है उसके रिट्रीट होने से, उसमें यानी बड़े ग्लेशियर लेक्स बन रहे हैं और उसमें नेचुरल मोरेन डैम पर प्रेशर बढ़ा रहा है और उसमें आइस या रॉक का एवलेंच होने का खतरा और ग्लोफ होने की संभावना ये बढ़ जाती है।
3: चीन की तरफ से जारी अब सैटेलाइट तस्वीरों को देखिए, जो बताती है कि झील ओवरफ्लो हो रही है। इसके बाद नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया क्योंकि 26 तारीख जैसी तबाही का खतरा नेपाल में बढ़ रहा है। अब सवाल है कि इससे बचने का तरीका क्या है, भारत ऐसी आपदा से बचने के लिए क्या कुछ कर सकता है।
6: दो तरह के रिस्क होते हैं, पहले मैं वो बताना चाहूंगा एक्चुअली। पहला गोल्फ ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड, और दूसरा क्या है कि जैसे हम देख रहे हैं कि जो ग्लेशियर फ्रैक्चर होता है और फिर वो रिवर के फ्लो को ब्लॉक कर देता है, जो हमने सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन नेपाल में देखी, तो ये पॉसिबिलिटी रहती है। अब इसको लेकर भारत सरकार विभिन्न प्रयास कर रही है। सबसे पहला अगर आपको ध्यान हो तो मिशन मौसम लॉन्च हुआ लगभग 2 साल पहले, जिसमें वेदर रिलेटेड मॉनिटरिंग फोरकास्ट को बढ़ावा देना ताकि अर्ली वार्निंग सिस्टम को स्थगन किया जा सके। दूसरा अगर आप देखेंगे कि इसमें हमने सैटेलाइट और मशीन लर्निंग या एआई का यूज बढ़ाया ताकि जो हमारी फोरकास्टिंग यानी कि जो टाइम लैग है उसे कम किया जाए।
3: इस तरह हिमालय में लगातार ग्लेशियर, उससे बनने वाली झीलों की निगरानी करके ही इस तरह की आपदा के खतरे को कम किया जा सकता है, ताकि समय रहते लोगों को बचाया जा सके। लेकिन विशेषज्ञ भी मानते हैं कि टूटते ग्लेशियर तबाही की टिक टिक से

0: भारत का उत्तराखंड, पहाड़ों का दरकना, अचानक बाढ़ आना, बादल फटना अब आम बात हो चुकी है। इसमें सुरंग हादसे भी शामिल हैं, जो विकास के मॉडल पर गंभीर सवालिया निशान लगा दिया है। बता दिया कि हिमालय की अनदेखी चारों तरफ हो रही है, वो चाहे नेपाल हो या फिर भारत, इसलिए तबाही चारों तरफ तेजी से बढ़ी है। सवाल यह है कि हिमालय की पीठ पर विकास के बढ़ते इस बोझ के नतीजे क्या होंगे, क्योंकि भारत का हिमाचल हो या फिर उत्तराखंड, हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। IIT रोपड़ और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त अध्ययन में हिमाचल प्रदेश की 0.02 वर्ग किलोमीटर या इससे अधिक क्षेत्र वाली 94 ग्लेशियर झीलों का आकलन किया गया। इनमें 88 झीलें बाढ़ के लिहाज से अत्यंत संवेदनशील पाई गई हैं। अध्ययन के अनुसार हिमाचल में ग्लेशियर झीलों की संख्या 1990 में 107 थी, जो 2024 में बढ़कर 669 हो गई, यानी 34 वर्षों में 525% की वृद्धि हुई। इन झीलों का कुल क्षेत्रफल भी 5.54 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 11.20 वर्ग किलोमीटर हो गया, जो करीब 102% की वृद्धि है। बड़ी चिंता छोटी यानी 0.01 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्र वाली झीलों को लेकर है। इनकी संख्या 1990 में केवल 9 थी, जो 2024 में बढ़कर 487 हो गई। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि अचानक तेज बारिश, बादल फटने, भूस्खलन या हिमस्खलन से अचानक बड़ी मात्रा में पानी झील में पहुंचने का खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया है, जिससे ग्लेशियर के प्राकृतिक बांध को भेदने का खतरा पहले से कहीं ज्यादा हो गया है। नेपाल में भी यही हुआ, इसलिए भारत में भी निचले इलाकों की सड़कों, पुलों, जल विद्युत परियोजनाओं और दूसरे अहम ढांचे कई गुना ज्यादा खतरे की जद में हैं। एक चिंता 58 झीलों के सक्रिय भूकंपीय गतिविधियों और टेक्टोनिक फॉल्ट के खतरे वाले क्षेत्र में होने से भी है। 52 झीलों में आइस कोर यानी बर्फ की आंतरिक परत के पिघलने से रिसाव और बांध टूटने का जोखिम है। वहीं 44 झीलों की ढलानों पर रॉक फॉल का खतरा दर्ज किया गया है।
1: ग्लेशियर जो हैं वो वीक पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसकी वजह से, और तीसरा हमारे जो नेचुरल डिजास्टर जैसे कि अर्थक्वेक आते हैं तो वो उनको वीकन करते हैं। तो उस वजह से क्या हो गया है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि हम इनको कैसे मॉनिटर करें। अब उस मॉनिटरिंग में फ्रैक्चर जो ग्लेशियर हैं बेसिकली वो टूटे हुए हिस्से होते हैं, जैसे कि आप एक पूरा फिक्स है अपने मोरिन पे, लेकिन वो अगर हिल जाता है तो एक पर्टिकुलर जो पार्ट है वो फ्रैक्चर हो जाता है। ये जो मूव कर रहे होते हैं तो उसमें फ्रैक्चर हो जाते हैं, और फ्रैक्चर होने की वजह से उनके टूट के गिरने की या लेक पे या रिवराइन सिस्टम को ब्लॉक करने की संभावना बढ़ जाती है।
0: इस तरह जो ग्लेशियर झीलें दशकों तक सिर्फ हमारे लिए जीवन देने वाली रही, उन्हें हमने विकास की अंतिम दौड़ में खतरनाक बना दिया है। नेपाल से लगे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में ग्लेशियरों के पिघलने से उच्च हिमालयी क्षेत्र में 77 से अधिक नई झीलें बन गई हैं, जो मलबे से भरी हैं और किसी भी भू गतिविधि या भारी वर्षा में फट सकती है। यह हिम नदीय झील विस्फोट बाढ़ ला सकता है, इससे नीचे के बसे गांवों, खेती और पनबिजली परियोजनाओं को भारी नुकसान हो सकता है। वहीं गोरी गंगा क्षेत्र बेसिन का जो 30.9% हिस्सा बर्फ से ढका था, वो 2022 में घटकर ये केवल 10.99% रह गया, यानी 32 साल में लगभग 20% बर्फ खत्म हो गई। अगर यही दर रही तो 2040 से पहले ये बेसिन पूरी तरह बर्फ विहीन हो सकता है।
2: जैसे मवांग लेक है आपका, इधर धौलीगंगा बेसिन में माचरताल है, धौलीगंगा बेसिन में मवांग आपका गौरी गंगा में हो गया, आपका ये देवताल हो गया आपका नीति वैली में, तो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा। जैसे हमने इसकी स्टडी की तो इसमें कम से कम जो है करीब 1.4 से 5 0.5 स्क्वायर किलोमीटर से जो है 1.4 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हो गया उसका आज की डेट में ये वसुधरा ताल का। तो चेंजेस बहुत ज़्यादा है इन सब चीज़ों में, और आगे जो फ्रंट में इसका बिल्कुल लूज अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है और डेंजर है डाउनस्ट्रीम में।
0: हिमालय का तापमान बढ़ने से विकास के नाम पर अंधाधुंध निर्माण से खतरा बढ़ता ही जा रहा है। सवाल यह है कि क्या नेपाल की भयानक तबाही के बाद इस पर दोबारा विचार होगा? आज तक ब्यूरो।
3: बात केवल नेपाल की नहीं है, बात पूरे हिमालय के क्षेत्र की है, बात उत्तराखंड की भी है, जहां पर चमोली त्रासदी देख लीजिए, केदारनाथ की त्रासदी देख लीजिए, या फिर जोशीमठ में जमीन जिस तरीके से नीचे सिंक कर रही है उस चीज को देख लीजिए, ये पूरे संकेत बहुत बड़ा अलार्म है मानवता के लिए।
0: नेपाल की तबाही ने एक बार

0: केपाल की तबाही ने एक बार फिर हिमालय को चर्चा के केंद्र मिला दिया है। सबसे बड़ा सवाल उसके ग्लेशियर को लेकर है, जिन्हें एशिया के वाटर टावर भी कहा जाता है। हिमालय के जो ग्लेशियर हजारों सालों में जमे हुए थे, वो पिछले कुछ दशकों में तेजी से पिघले हैं। इस वजह से हिमालय पर निर्भर 2 अरब से ज्यादा लोगों पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि दुनिया की इतनी बड़ी आबादी अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए हिमालयी ग्लेशियरों से पिघल कर आने वाली पानी पर निर्भर है। अब आप सोचिए, हिमालय में अगर ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार इसी तरह बरकरार रही तो फिर कितनी बड़ी आबादी प्रभावित होगी, जिसमें भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान और म्यांमार शामिल हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने इस साल की शुरुआत में बताया कि हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों की बर्फ 2000 के बाद से दोगुनी तेजी से पिघल रही है। जलवायु परिवर्तन ने चेतावनी दी है कि बर्फ पिघलने की रफ्तार, पानी की कमी और जलवायु से जुड़े खतरों के बढ़ने का तत्काल जोखिम पैदा करती है। ऐसी तमाम रिपोर्ट हिमालय को लेकर समय समय पर आती रही है, लेकिन इस रिपोर्ट का आंकड़ा जमीनी स्तर पर जुटाया गया, जिस पर नेपाल की तबाही ने मोहर लगा दी। 26 अगस्त को नेपाल में जो हुआ उसने एक बार फिर याद दिलाया है कि हिमालय के ग्लेशियर बड़े और महाविनाशकारी खतरे का अलार्म बजा रहे हैं, जिनकी अनदेखी भविष्य में भारत समेत इस पर निर्भर देशों को भारी पड़ सकती है, क्योंकि हिमालय देशों की सीमाओं से परे है। साल 2013 की केदारनाथ महाप्रलय के बाद से हिमालय के इलाकों में प्राकृतिक आपदाओं, फ्लैश फ्लड, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं में इजाफा हुआ है। केदारनाथ के बाद उत्तराखंड के चमोली में ऋषि गंगा, धौली गंगा और अलकनंदा नदी घाटियों में अचानक तेज बाढ़ आई थी, जिसमें 200 लोगों की जान चली गई थी। इस तरह नेपाल और चमोली में हुए हादसे, ऊंचाई वाले हिमालय इलाके में अचानक हुई प्राकृतिक घटना के बाद पानी और मलबे का प्रवाह नदी घाटी की ओर पहुंचा, जिससे तबाही मची। चमोली के हादसे के 2 साल बाद 2023 में सिक्किम की साउथ लोनक ग्लेशियर झील का प्राकृतिक बांध टूटने से सुनामी जैसी लहरें उठी और सैलाब से मची तबाही। तब भी सवाल उठ रहा था कि क्या हिमालय में ग्लेशियर टाइम बम बनते जा रहे हैं।
1: इट इज अ वार्निंग कॉल फॉर इंडिया बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस द सिमिलर थिंग्स इन उत्तराखंड एंड इन सिक्किम आल्सो इन रिसेंट पास्ट।
0: चिंता की बात यह है कि हिमालय क्षेत्र में 221 ग्लेशियर झीलों के फटने पर बाढ़ आने की आशंका वैज्ञानिक जता रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और सिक्किम की नदी घाटियां भी संवेदनशील जोन में हैं। इनमें अगर बाढ़ आई तो 6 राज्यों के 39 जिलों में असर हो सकता है। चिंता की बात यह है कि चाहे उत्तराखंड, हिमाचल हो या फिर सिक्किम, हिमालय क्षेत्र में हर जगह पर्यावरण का शोषण करने के आरोप लगते हैं। ऐसे में ग्लेशियर की बर्फ पिघलने की रफ्तार फिलहाल तो कम होती नहीं दिखती। अगर सिलसिला नहीं थमा तो फिर बर्फ पिघलने से हिमस्खलन होगा और झीलें बनेंगी, नेपाल जैसी त्रासदी दोहराई जाएगी। चिंता की बात यह है कि भारत में नेपाल से अधिक घनी आबादी नदियों के किनारे रहती है, जहां नदियों के किनारे होटल रिसोर्ट बनते जा रहे हैं।
2: हिमालय की बात करें तो हिमालय में ऑलमोस्ट जो है सभी रीजन जो है वल्नरेबल है और खतरनाक है। ग्लेशियर रिट्रीट होने की वजह से जो है आगे जो वैकेट एरिया है, उस वैकेट एरिया में लूज एंड कंसोलिडेटेड मटेरियल है जो हाईली या तो हाईली सैचुरेटेड है या फिर ड्राई है। उसके जो है हल्के से भी रेनफॉल या रेनफॉल होने से उस रीजन में एक बड़ा डिजास्टर का खतरा हो सकता है, जिसका एग्जाम्पल हमने जो है 2013 में केदारनाथ, थराली और तमोक में भी देखे।
3: अर्ली वार्निंग सिस्टम करके CBRI ने एक अवलांच अर्ली वार्निंग मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया है, जो उत्तराखंड में 2 जगह पे इंस्टॉल किए हैं, डूंडी और एक वसुंधरा ताल में। तो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक वो आज टेस्ट कर रहे हैं। अगले 6 से 1 साल के बाद में वी आर प्लानिंग टू हैंड इट ओवर टू स्टेट गवर्नमेंट, जो SDMA उसको ऑपरेट कर सकता है। ये जो जो रेनफॉल होता है ना, रेनफॉल से जो ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, जो बर्फ का स्ट्रक्चर है, ये सब देर आर सो मेनी पैरामीटर्स। तो वो सब देखने के बाद उसका जो कॉम्बिनेशन होता है, कौन से टाइम पे ट्रिगर हो रहा है, उससे पता चलेगा।
0: हिमालय में हर साल कहीं ना कहीं तबाही मचती है। इसके बाद कुछ दिन तक पर्यावरण को लेकर चिंता होती है, सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जल्द ही सब कुछ भुला दिया।

0: जाता है। इस बार हिमालय को लेकर नींद से उठाने का काम नेपाल ने किया है।
1: सिक्किम की त्रासदी जो हम हर वर्ष एक नए रूप में देखते हैं, वहां से भी संकेत बड़े हो जाते हैं। सिक्किम का पूरा इलाका किस तरीके से कुदरत के सामने इस समय लाचार नजर आता है, उसके कारण क्या हैं? वैज्ञानिक कितनी गंभीरता से इन सभी घटनाओं को ले रहे हैं?
0: नेपाल की तरह ही सिक्किम में भी हिमनदी झील अचानक फटी और तीस्ता नदी में अचानक सैलाब आ गया और चारों तरफ तबाही मच गई। सिक्किम हो या फिर नेपाल, सवाल ये है कि क्या वह तबाही की एक बड़ी वजह तिब्बत के हिमालयी क्षेत्र में चीन का अंधाधुंध विकास है, जिसने पहाड़ों को खोखला कर दिया है। ग्लेशियर के नीचे बनाई जा रही सुरंगों ने हिमालय में हजारों साल पुराने संतुलन को बिगाड़ दिया है, क्योंकि नेपाल ने ऐसा पहली बार देखा कि चीन से आई तबाही पहाड़ भी अपने साथ बहा लाई हो। नेपाल में ही सवाल उठे कि क्या उसका यह हाल चीन की वजह से हुआ, क्योंकि जब तिब्बत में तबाही मचाने के बाद यह सैलाब नेपाल की तरफ बढ़ रहा था, तब चीन ने नेपाल को सतर्क क्यों नहीं किया? नेपाल की लोगों की तरफ से बनाए गए ये वीडियो बताते हैं कि अगर समय रहते चीन ने नेपाल को अलर्ट कर दिया होता तो शायद इतने लोग नहीं मरते। अब नेपाल के लोग पूछ रहे हैं कि आखिर चीन ने पड़ोसी होने का धर्म क्यों नहीं निभाया। 26 तारीख को नेपाल के रसुआ जिले के लोग, जो तिब्बत की सीमा के बेहद करीब है, वो सुबह 9 बजे तक इस आपदा से बेखबर थे। तभी तिब्बत की तरफ से आई भोटेकोशी नदी में पानी का ऐसा प्रचंड सैलाब था जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। नेपाल में ही से लेकर सवाल किए जा रहे हैं कि जो चीन खुद को दोस्त बताता है, जिसका नेपाल में बड़ा प्रभाव है, जिसके पास एक से बढ़कर एक तकनीक है, वो चुप क्यों रहा? ये सवाल पूछने वालों में राज राय शामिल है, जो नेपाल की श्रम संस्कृति पार्टी के चेयरमैन और प्रमुख नेता है।
2: चीनसे प्रविधिले एकदम सुसज्जित भनेर हामीले त बुझेका छौँ। अब त्यहाँबाट त्यो आयो भन्ने कुरा चाहिँ सरकारलाई जानकारी भयो कि भएन कि होइन, त्यो चिज हो। अब त्यो त त्यहाँ माथिबाट सुरु भएको रहेछ, जानकारी हुनु पर्थ्यो। त्यो यदि त्यसो भएको भए त्यहाँनिर भनौँ न जति क्षति भयो, अब त्यो भौतिक क्षति त अब बोके घर बोकेर लाने कुरो भएन, तर मानवीय क्षति हुन चाहिँ त्यहाँबाट बस्थ्यो होइन। पूर्व सूचना प्रणाली चाहिँ त्यसको लागि हो खासमा।
0: नेपाल करस्पोन्डेन्स नाम के एक ट्विटर हैंडल से चीन की तरफ से तिब्बत में 26 तारीख को आई तबाही से बचने की ड्रिल करने का वीडियो पोस्ट किया, जिसमें चीनी रेस्क्यू वर्कर 5 तारीख को ड्रिल करते हुए दिखाए जाते हैं। नेपाल की तरफ से जताई जा रही शंका की वजह, चीन का समय पर नेपाल को अलर्ट न किया जाना है। चीन के केरुंग क्षेत्र में चीनी समय अनुसार सुबह 10:30 बजे ही बाढ़ आ चुकी थी। नेपाल और चीन के समय में 2 घंटे 15 मिनट का अंतर है, इस लिहाज से नेपाली समय के अनुसार ये आपदा सुबह 8:15 पर ही आ गई। अगर चीन तुरंत इसकी जानकारी नेपाल को दे देता तो सीमावर्ती इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सकता था, लेकिन चीन की ओर से आधिकारिक जानकारी लगभग 45 मिनट छोड़िए दावा है 1:30 बजे साझा की गई, जिससे नेपाल को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अब नेपाल के लोगों को लग रहा है कि चीन ने उन्हें पहले खबरदार न करके धोखा दिया है, जबकि नेपाल की सरकारें चीन का ध्यान रखती रही हैं, लेकिन चीन ने नेपाल का ध्यान नहीं रखा। नेपाल की इस शिकायत को आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता। इसे आप महाविनाश की टाइमलाइन से समझिए। तिब्बत में लेहंदे नदी में ग्लेशियर टूटकर गिरने से मलबे से नदी का बहाव रुक गया, नदी का रास्ता रुकने से कृत्रिम झील बन गई, लेकिन जब इस झील में ज्यादा पानी भरा तो मलबा हट गया और भोटेकोशी नदी में बाढ़ आ गई। इसी समय तिब्बत में सुबह 8:37 पर भूकंप आया और 9 बजे के आसपास भोटेकोशी नदी अप्रत्याशित तूफान के साथ तिब्बत से नेपाल में घुस गई। उसने रसुआ, नुवाकोट और धाडिंग इलाकों में तबाही मचा दी। अब नेपाल के लोगों की शिकायत है कि जो हेलीकॉप्टर तिब्बत के जिस ग्लेशियर के ऊपर घूम रहा है, जिसके टूटने से सारी तबाही आई, उसके बारे में समय रहते उसे क्यों नहीं चेताया गया? क्योंकि नेपाल से ही ऐसे दर्जनों वीडियो आए जिसमें लोगों के अलर्ट करने पर कई लोग अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। नेपाल में चीन को लेकर गुस्से की दूसरी वजह तिब्बत में होता अंधाधुंध निर्माण है। नेपाल के पत्रकारों के एक समूह नेपाल कॉरेस्पोंडेंस ने एक बड़ा दावा किया है। इस समूह का आरोप है कि रसुवा जिले में आई ये तबाही दरअसल तिब्बत सीमा पर चीन के अंधाधुंध निर्माण कार्य और उसके कारण आए हिमस्खलन का नतीजा है। इस तबाही के लिए शिनजियांग तिब्बत इलाकों में उसके बेलगाम निर्माण कार्यों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। चीन नेपाल सीमा पर ऊंचाई वाले ग्लेशियर वाले इलाकों में चीन ने गांव और बस्तियां बसा दी हैं, पहाड़ों को काटकर नदी का रास्ता बदल दिया है, जिसने पहले से संवेदनशील हिमालयी इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाया है। इस वजह से चीन नेपाल सीमा पर हर साल हिमस्खलन और फ्लैश फ्लड से तबाही मच रही है। हालांकि इन आरोपों को चीन की तरफ से खारिज किया गया, उसकी तरफ से नेपाल को मदद भी दी गई। नेपाल में जहां चीन को लेकर शक और शंका है, वहीं वहां के मंत्री और नेता भारत की मदद के लिए दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं।
3: I have expressed our deepest gratitude to government of India for all the support they have provided to us, and we are in active collaboration with government of India to share our emerging need. As we understand from the ground perspective, we are communicating our needs.
0: नेपाल की तरफ भारत भी चीन को लेकर भरोसे से भरा नहीं है। उसकी वजह हिमालय में उसकी तरफ से बनाए जा रहा सबसे बड़ा बांध है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जो असम ब्रह्मपुत्र की वजह से हर साल भयानक बाढ़ आती है, जिससे बड़ी तबाही मचती है, उसमें चीन के सबसे बड़े बांध के बन जाने के बाद बेतहाशा इजाफा हो सकता है। ये चीन का थ्री गार्जेस डैम है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा डैम माना जाता है, लेकिन चीन हिमालय में इससे भी बड़ा डैम बना रहा है, जो भारत के बेहद नजदीक होने के साथ साथ भूकंप के खतरे वाले इलाके में है। अब आप ही सोचिए कि अगर तिब्बत में ग्लेशियर टूटने या भूकंप ने नेपाल का ये हाल कर दिया, तो फिर दुनिया का सबसे बड़ा बांध टूटा तो फिर भारत में कितनी बड़ी तबाही होगी। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर जो दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है, उसे मेडोक और यारलुंग सांगपो हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट कहा जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को ही यारलुंग सांगपो कहते हैं। बांध को ग्रेट बैंड क्षेत्र में बनाया जा रहा है, जहां पर नदी मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेती है। चिंता की बात यह है कि चीन का बांध के लिए हिमालय के पहाड़ों में लंबी सुरंगें खोदे जाने का प्लान है, ताकि बिजली उत्पादन के लिए नदी का रुख बदल जाए। कुदरत के साथ ये खिलवाड़ कभी आपदा बनी तो नदी का पानी ऐसा प्रलय लाएगा जो सपने में भी नहीं सोची जा सकती। इसलिए भारत ने इस बांध को बनाने का विरोध किया है। भारत हो या फिर बांग्लादेश, दोनों देश ब्रह्मपुत्र नदी के निचले हिस्से में हैं। सबसे बड़ा बांध बनने पर चीन मानसून और भारी बारिश के समय मन मर्जी से पानी छोड़ सकता है, जो भयानक बाढ़ का कारण बन सकती है। वहीं सूखे के हालात में पानी रोक भी सकता है, जिससे भारत में सूखे की समस्या पैदा हो सकती है। चीन हिमालय में सुरंग समेत कई बड़े प्रोजेक्ट के जरिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। दावा है कि ग्लेशियर के नीचे की जमीन खोखली हो चुकी है। इस बीच अगर वो उत्तर पूर्व के नजदीक दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाता है, तो एक्सपर्ट को लगता है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि अगर तराई का हिस्सा ही पानी से भरा हो और हिमालय पर कोई गहरा प्रभाव पड़े, तो फिर भूकंप के खतरे का अंदेशा लगातार बना रहता है। इस जगह डैम बनाने से भूकंप और प्राकृतिक आपदा का खतरा हमेशा मंडराता रहेगा।
1: अभी के लिए हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

हैवान की कहानी में हर किरदार का अपना रिश्ता है, उसमें जुड़े होते हैं आपके सपने, आपकी पसंद और आपकी कहानी। इसलिए घर के लिए चुनिए सिर्फ E3, the E3 Group, India's leading manufacturer of interior and exterior products. E3 Group celebrates the release of Hevan on the 11th of September.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: खाना कहाँ से मंगवाया?
3: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
5: जेके वॉल मैक्स।
3: बेस्ट प्राइमर
6: जेके मैक्स।
3: बेस्ट पेंट
6: जेके मैक्स।
3: जेके मैक्स। बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
4: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूं?
3: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।
3: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।

0: और वही कहाँ गए थे घूमने?
1: जीके मैक्स।
2: खाना कहाँ से मंगवाया?
1: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
3: जेके वॉल मैक्स।
1: बेस्ट प्राइमर
4: जेके मैक्स।
1: बेस्ट पेंट
4: जेके मैक्स।
1: जेके मैक्स। बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
2: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूं?
1: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
5: In association with
6: Anmol Biscuits, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
7: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: आज तक इस वक्त पहुंचा है नेपाल के रूपनदेही जिले के भुटवल इलाके में।
9: अभी तक 700 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और तकरीबन 2500 से भी ज्यादा जो लोग हैं अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। आई है इस बार नेपाल में, उसने पूरे नेपाल को हिला कर रख दिया है। सहयोगी अभिषेक पांडे के साथ रोहित सिंह, नेपाल आज तक।
10: गांधी जी के आंदोलन करने का तरीका क्या आज के समय भी उतना प्रासंगिक है?
11: जो तुम गाली देते हो ना गांधी जी, 70 साल की उम्र में दो लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए, पढ़ लो।
12: जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था जो गांधी जी ने वापस ले लिया था, वो भी तो किसी और की वजह से लिया था। चौरी चौरा में जो हुआ इंसिडेंट, उनसे उनको क्या मतलब था? अगर वो उसको जाए रखते, क्या पता उससे हमारी इंडिपेंडेंस को थोड़ा जल्दी हो जाता।
11: ताली बजाओ इनके लिए, ये ताली डिजर्व करते हैं।

वो सनातनी कभी नहीं हो सकते जो दूसरे धर्म के सम्मान न करते हों, वो सनातनी कभी नहीं हो सकते जो दूसरे की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हों, वो सनातनी कभी नहीं हो सकते, और एक सच्चा हिंदू कभी दूसरे का अपमान नहीं कर सकता है। हमने तो यही सीखा है सनातन धर्म में, और जो वासुदेव कुटुंबकम की परिभाषा है वो यही बताती है कि हमारा पूरा समाज, पूरा धरती एक परिवार है, और अगर वासुदेव कुटुंबकम है और वही हमारी सनातन की शिक्षा है, तो कोई भी सच्चा सनातनी, सच्चा हिंदू दूसरे धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। क्या मुझे कोई बता सकता है कि एक और ये क्यों हो रहा है? ये सब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम के धन में ये चोरी करते हुए पकड़े गए, राम धन चोरी में पकड़े गए लोग। इन्होंने आस्था से, हमारे गरीब आस्थावान लोगों ने जो चढ़ावा किया, उस चढ़ावा की चोरी में पकड़े गए। कौन नहीं जानता कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़े गए उसमें, SIT बनाकर के जेल भेजने वाली बात जो सामने आई है उससे इनके सब कुछ छिन गया। जनता जान गई है कि किस तरह के ये लोग हैं, इसलिए क्रिमिनल एंगल दे रहे हैं जानबूझ कर। क्या हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिल सकता था? क्या सुप्रीम कोर्ट में वो नहीं जा सकते थे अपील के लिए? वो अधिकारियों ने मिलकर के सरकार के सारे पर ये काम किया कि जिससे अगले कोर्ट में उन्हें न्याय ना मिल जाए।

0: ये सहारनपुर जिला कलेक्टर का ऑफिस है। शनिवार की सुबह अचानक कलेक्ट्रेट के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर बुलडोजर गरजने लगे। ये बुलडोजर एक्शन डीएम ऑफिस परिसर में बनी अवैध मस्जिद पर हो रहा था। ये वही मस्जिद है जिसे सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने अवैध घोषित किया था। सहारनपुर कलेक्ट्रेट में 315 वर्ग मीटर भूमि पर यह मस्जिद बनी थी। शिकायत करने वालों ने दावा किया था कि अवैध तरीके से बनाई गई थी। कोर्ट में जब मस्जिद की फाइल खुली तो अदालत ने पाया कि खसरा संख्या 539 सरकारी अभिलेखों में कचहरी कलेक्ट्रेट के नाम पर दर्ज है। इसी भूमि पर 315 वर्ग मीटर हिस्से पर मस्जिद का निर्माण किया गया था, लिहाजा कोर्ट ने इसे अवैध माना और 30 दिनों के अंदर हटाने का आदेश दिया। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की। अपील खारिज हुई तो प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। शनिवार की अलसुबह जब लोग ठीक से जगह भी नहीं थे, सहारनपुर पुलिस कई बुलडोजर लेकर कलेक्ट्रेट में दाखिल होती है और मस्जिद को मिट्टी में मिला देती है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद करीब 70 साल पुरानी थी, लेकिन पुलिस ने उसे तोड़ दिया, जबकि पुलिस का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन हुआ।
1: डीएम परिसर में जो मस्जिद बनी हुई थी, इसको अब यहाँ पर ध्वस्तीकरण किया जा रहा है।
2: देखिए, यहाँ जनपद सहारनपुर के कलेक्ट्रेट में एक मस्जिद थी जिसको सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा अवैध पाया गया था। उस आदेश के विरुद्ध जो मस्जिद कमेटी थी वो फर्स्ट अपील में गई थी, उनकी अपील खारिज हो गई है। इसमें सिटी मजिस्ट्रेट का जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसको पुष्ट किया गया है। इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ जारी है।
1: लगातार रात से ही इस तरह की अफवाहें जो हैं वो उड़ाई जा रही थी कि मस्जिद को सील किया जाएगा, ध्वस्तीकरण किया जाएगा। अब सहारनपुर के चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस फोर्स तैनात किया गया है।
2: देखिए, हमारे पास त्यौहार भी चल रहे हैं, एलो मेंटेनेंस के लिए हमारे पास 5 कंपनी एक्स्ट्रा पीएससी आरआरएफ है जिनको हॉटस्पॉट से डिप्लॉय किया है। कंटिन्यूसली एयर डोमिनेशन किया जा रहा है। यदि सोशल मीडिया पर कोई अफवाह फैलाता है या कोई भी फेक न्यूज चलाता है तो उसके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।
0: सहारनपुर पुलिस ने दावा किया कि मुस्लिम पक्ष को पर्याप्त समय दिया गया था। अपील के बाद भी जब उन्हें राहत नहीं मिली तो कानून ने अपना काम किया। भले ही मस्जिद सहारनपुर में टूटी, लेकिन इसकी गूंज यूपी की राजनीतिक गलियारों में लंबे समय तक सुनाई देगी। राहुल कुमार सिंह, सहारनपुर आज तक।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: आप अपना टाइटल साबित नहीं कर सके कि आपका टाइटल आपका कैसे हो गया? खसरे के आधार पे आपने लिख दिया खसरा, तो आपकी मौजूदा स्थिति बताता है खसरा, इसके अलावा कुछ नहीं बताता। और ये रातों रात पूरी चारों तरफ से घेरा हुआ है। वहां मेरे एमएलसी हैं, वो भी सब लोग हमारी पार्टी के साथी हैं, सब लोग घूम रहे थे पूरी रात चारों तरफ से घेर करके, घरों में बंद करके लोगों को, और मस्जिद को डिमोलिश कर दिया। तो मस्जिद डिमोलिश नहीं हो रही है, ये देश के संविधान के ऊपर हथौड़ा चल रहा है।
3: मैं समझता हूं कि सहारनपुर पुरमन और भाईचारे का शहर के माथे पर एक एक काला बदनुमा दाग लग गया है। आज तक सहारनपुर के अंदर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई जिससे जाहिर हो कि भाई यहाँ पर कोई इख्तलाफात किसी तरीके के मजहबी तौर पर हैं, लेकिन ये पहला वाक़ा है। इससे हमारे सहारनपुर के पुरअमन लोग परेशान हैं और ज़हनी तौर पर दुखी हैं।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

बिहार में उफान पर गंगा, 11 जिलों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। राजधानी पटना से लेकर भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय तक पानी ही पानी। करीब 17 लाख लोग प्रभावित। एमपी के सागर में जहरीली शराब का कहर, 9 लोगों की मौत। अलग अलग गांवों के रहने वाले थे मृतक। मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले, दोषियों को मिलेगी सख्त सजा। सहारनपुर में मस्जिद के मलबे के नीचे मिला 20 फीट गहरा कुआं, देखने के लिए जुटने लगी है भीड़। कुएं की जांच कराएगा प्रशासन, बुलडोजर एक्शन पर जारी सियासी उबाल। जेंजी पर सियासी आर पार, प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के बीच कहा, सच की हुंकार के आगे नहीं टिकेगी झूठ की गूंज। महाराष्ट्र में छात्र आंदोलन के समर्थन में आए राहुल, बीजेपी को। और दिल्ली में 2 हमलावरों ने एक शख्स को पीट पीट कर मार डाला, विरोध करने पर गार्ड को भी धमकाया। सीसीटीवी खंगाल कर मृतक और आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है पुलिस।

0: नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं कहानी 2.0। एक ऐसा नाम जिसने सिनेमा के पर्दे पर अपनी पहचान बनाई, फैंस के दिलों में जगह बनाई और फिर उसी लोकप्रियता को सियासत की ताकत में तब्दील कर दिया। नाम है विजय, वो विजय जिसे उसके चाहने वाले थलापति कहते हैं। लोगों ने पहले उन्हें सुपरस्टार बनाया, फिर नेता चुना और आज वही विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर विजय के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। आज कहानी उस जोसेफ विजय चंद्रशेखर की, जो सिनेमा के सुपरस्टार से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए हैं।
1: इनकी फिल्म्स में वही जो युवाओं के अंदर जो भी हर पीढ़ी पर जो हो रहा है उसको ही इन्होंने दिखा के एक हीरो बन गए।
2: मई 2026 में जो तमिलनाडु में डीवीके की जीत हुई उसका श्रेय ज्यादातर विजय को ही जाता है।
3: विजय पॉलिटिक्स के अंदर आ गए, महिलाओं को लगा कि जयललिता जी के बाद शायद विजय होगा जो हमारा साथ देगा।

0: सौ दिनों में जहां पर आम लोगों की जिंदगी पर किसी ना किसी तरह का एक पॉजिटिव असर देखने को मिला है।
1: कानून को मतलब जो सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए और भ्रष्टाचार की स्कोप को कम करने के लिए उन्होंने काफी कदम लिया है, इससे इनकी और पॉपुलैरिटी बढ़ रही है।
2: विजय की कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार के मुख्यमंत्री बनने की कहानी नहीं है, इस मकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें एक लंबा सफर तय किया है। सिनेमा में पहचान बनाने से लेकर राजनीति में कदम रखने तक विजय लगातार सुर्खियों में बने रहे। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनकी लोकप्रियता और उनके फैसले चर्चा में बने हुए हैं। कई मौकों पर विवादों ने भी उनका पीछा किया। आज विजय से जुड़ी हर उस कहानी को समझेंगे जिसने उन्हें एक अभिनेता से नेता और फिर मुख्यमंत्री बनाया।
3: जोसेफ विजय नमनार। வாங்க எல்லாருமா சேர்ந்து ஒரு ஃப்ரெஷ் கவர்னன்ஸ், ஒரு நியூ கவர்னன்ஸ் ஒன்று கொடுப்போம். திஸ் இஸ் எ நியூ பிகினிங், நியூ எரா. பெண்கள் பாதுகாப்பு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா வச்சிருப்பேன். போதை பொருள் கலாச்சாரம், நம்ம பசங்களை அதிலிருந்து காப்பாற்ற வேண்டியது நம்ம அரசனுடைய பொறுப்பு. கல்வி, ரேஷன், மருத்துவம், குடிநீர், பஸ் வசதி, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல தான் என்னுடைய முழு முதல் கவனம். இது உங்களுடைய ஆட்சி, உங்களுக்கு அதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் வேணும். இந்த நேரத்தில் இதை நான் சொல்லணும், அரசியலுக்கு வந்த உங்க விஜயம் விஜய் தம்பி, விஜய் தம்பி
4: जिस शख्स को कभी पर्दे पर हीरो के तौर पर देखा गया, आज वही शख्स तमिलनाडु की सत्ता के सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठा है।

0: is a new beginning, a new era of a real secular social justice starts now.
1: कभी लाखों लोग उसकी एक झलक पाने के लिए सिनेमा घरों के बाहर लाइन लगाते थे।

0: आज वही लाखों लोग अपनी तकदीर की चाबी उसके हाथों में सौंप चुके हैं।
1: सी जोसेफ विजयनुमनान, தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில்
0: मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद अब थलपति विजय के 100 दिन भी पूरे हो चुके हैं। 100 दिन यानी जनता के सामने काम का पहला हिसाब। इन 100 दिनों में विजय ने क्या किया, क्या बनाया, क्या बदला, कौन से बड़े फैसले लिए और चुनाव के दौरान किए गए कितने वादे पूरे किए।
2: पिछले 100 दिनों में सबसे बड़ी उपलब्धि मैं ये कहूंगा कि लोगों को एक तरह का एक बदलाव नजर आया है। मैं पिछले महीने कोयम्बतूर में था, जो कि तमिलनाडु के पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है, सबसे दूसरा बड़ा शहर है चेन्नई के बाद। तो वहां पर जब मैंने आम लोगों से बात की तो उनका कहना था कि भ्रष्टाचार काफी हद तक कम हुआ है। और ये आम लोगों की भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूं, मैं बड़े GDP डेटा वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं। जब लोगों को लगता है कि किसी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए या किसी डेथ सर्टिफिकेट के लिए या किसी परमिट के रिन्यूअल के लिए उनको रिश्वत नहीं देनी पड़े, तो उनको लगता है कि चलो इतने पैसे बच गए, चाहे वो 100 रुपए हो, 500 रुपए हो, 1000 रुपए हो या 2000 रुपए हो, अगर उन पैसों की बचत होती है तो उनको लगता है कि इस सरकार के कामकाज से हमारी जिंदगी पर काफी असर पड़ा है। तो मेरा मानना यह है कि ये एक बड़ा बदलाव नजर आया है पिछले 100 दिनों में, जहां पर आम लोगों की जिंदगी पर किसी ना किसी तरह का एक पॉजिटिव असर देखने को मिला है।
0: लेकिन विजय के 100 दिन के कामकाज के बीच सियासत में उनके करीबी एक और बड़ा दावा कर रहे हैं कि थलपति की मंजिल सिर्फ चेन्नई की सत्ता नहीं, दिल्ली भी हो सकती है। यानी क्या 2029 के लोकसभा चुनाव में विजय प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने की तैयारी कर रहे हैं? सवाल बड़ा है, लेकिन इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें विजय की कहानी की शुरुआत तक जाना होगा। तारीख 27 अक्टूबर 2024। विक्रवंडी मैदान, लाल पीले झंडे, भीड़, विजय की एंट्री। समर्थकों का हुजूम, तमिलनाडु के विल्लुपुरम के इस मैदान में लाखों की संख्या में लोगों का जनसैलाब उमड़ा था। कई दशकों बाद तमिलनाडु की राजनीति में ऐसी विशाल जनसभा देखी जा रही थी। पार्टी के ऐलान के बाद सुपरस्टार विजय की ये पहली रैली थी, अनुमान से भी ज्यादा लोग। लाल और पीली धारियों वाले झंडों से पूरा मैदान भरा हुआ था। सूरज आसमान से आग उगल रहा था, लेकिन इस तपती गर्मी का भीड़ पर कोई असर नहीं था। इन सब के बीच सफेद शर्ट पहना एक शख्स हल्की दौड़ लगाते हुए सभा में दाखिल होता है। और अचानक लाखों लोग जोश से उबल पड़ते हैं। नारों से आसमान गूंज उठता है। ये कोई आम शख्स नहीं है, जोसेफ विजय चंद्रशेखर। ये तमिलनाडु के सिनेमा का सुपरस्टार है, जिसे तमिलनाडु की जनता थलपति विजय के नाम से जानती है। थलपति एक तमिल शब्द जिसका मतलब होता है कमांडर या लीडर। ये सुपरस्टार विजय की भले ही पहली बड़ी राजनीतिक रैली थी, लेकिन इसके बाद थलपति विजय की रैलियों में भीड़ ने ये साबित कर दिया था कि तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन तय है। और यहीं से शुरू हुआ विजय के सिनेमा से सत्ता तक पहुंचने का सफर।
1: Yes, a lion is always a lion. There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion. And even if it is single, It will be the king of jungle.
3: तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहाँ पे सिनेमा पहले से एक पॉलिटिकल सिनेमा के तौर पे, यानी हर फिल्म एंटरटेनमेंट था, मनोरंजन के लिए था, लेकिन साथ में एक पॉलिटिकल मैसेज देते गए और उनकी फिल्म्स में यही मैसेज थी, सोशल मैसेज थी, महिलाओं को लेकर थी, युवाओं को लेकर थी, पीड़ित को लेकर थी और क्रिमिनल्स के खिलाफ था। 2021 से लेकर 26 तक जो कार्यकाल स्टालिन के नेतृत्व में और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन जो उप मुख्यमंत्री थे उनके नेतृत्व कार्यकाल में जो डीएमके में जो करप्शन एक इश्यू बन गया था उसको इन्होंने हाईलाइट करना शुरू किया। यही बड़ा कारण है पॉपुलैरिटी और इश्यूज और स्वयं का इमेज।
0: एक फिल्म स्टार ने ऐलान कर दिया था कि अब वो सिर्फ फिल्मों में नहीं तमिलनाडु की राजनीति में हीरो बनेगा। लेकिन सवाल है आखिर जोसेफ विजय कैसे बन गए फैंस के लिए थलपति? क्या विजय की लोकप्रियता सिर्फ सिनेमा की देन थी या फिर उनके फैंस की वो ताकत थी जिसने धीरे धीरे उन्हें राजनीति के मैदान तक पहुंचा दिया? MGR से लेकर जयललिता तक तमिलनाडु ने फिल्मी सितारों को नेता बनते देखा, लेकिन विजय की कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि उन्होंने पहले स्टारडम बनाया, फिर फैन क्लब को संगठन में बदला और फिर उसी संगठन को राजनीतिक पार्टी में बदल दिया।
3: एक्टिंग के दौरान उनके सारे रोल्स देखेंगे एक जेंसी के तौर पे था, यानी उस जनरेशन की जो भी युवा है उनकी जो इच्छाएं, उनकी आशंकाएं, उनकी जो आइडियल्स जो कहिए उस हिसाब से उनका फिल्म बनता गया। जैसे एमजी रामचंद्रन MGR अपने आप का एक रॉबिन हुड के तौर पे उनके हमेशा उनकी 100 से ज्यादा फिल्म बने उसी रोल था उनका, इनका भी इसी तरह बना। उसके बाद एक वैक्यूम था जो सिनेमा की दुनिया से कौन उभर के आएगा, तो जो वैक्यूम था जो स्पेस था उसको विजय ने कैच कर लिया।
0: आज कहानी में जानेंगे उस बच्चे की कहानी जो पहले सिनेमा के संसार का सुपरस्टार बना, फिर फैंस के लिए थलपति और फिर सियासत के संसार का शहंशाह। ये कहानी है जोसेफ विजय चंद्रशेखर की। ये कहानी है सिनेमा के थलपति से सत्ता के थलपति बनने की।
4: तमिलनाडु की सत्ता संभालने वाले विजय के मुख्यमंत्री के तौर पर 100 दिन पूरे हो गए हैं। इन 100 दिनों के बाद अब उनके चाहने वालों की आवाज है कि थलपति को सिर्फ तमिलनाडु तक नहीं दिल्ली तक पहुंचना चाहिए, यानी अब बात मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की हो रही है। लेकिन क्या विजय ने 100 दिनों में ऐसा काम किया है जिससे उनके चाहने वालों का ये भरोसा साबित हो? क्या उनकी सरकार उम्मीदों पर खरी उतरी है? आइए देखते हैं विजय सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड।
5: इसमें एक नया लीडर नेतृत्व करने वाला है तुम्हारा। 68 successful international operations. Hostage negotiator, field agent, spy. In short, he's the goat of Sachs.
0: फिल्मों में अपने विजय को गरीबों के लिए लड़ते हुए देखा।
6: उम्र हो गई है। स्क्वाड से इतने साल बाहर था। अब क्या ही कर लूंगा,
7: चाहे कितनी भी उम्र हो जाए, a lion is always a lion.
0: आम आदमी की आवाज बनते हुए देखा।
8: Do you think you can stop me? Do you think you can stop me? No one can stop me.
0: जरूरतमंदों के साथ खड़े होते हुए देखा। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद भी विजय की राजनीति में वही आम आदमी नजर आ रहा है? जिस विजय को कभी मंच पर सुपरस्टार के तौर पर देखा गया, आज वही विजय तमिलनाडु की सत्ता की कुर्सी पर बैठकर फैसले ले रहे हैं। सत्ता संभालने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी, क्या एक सुपरस्टार एक कामयाब मुख्यमंत्री भी बन सकता है? और अब मुख्यमंत्री के तौर पर विजय के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। यानी अब वक्त है ये देखने का कि इन 100 दिनों में विजय ने क्या किया, कौन से बड़े फैसले लिए, किस वर्ग को क्या मिला और चुनाव के दौरान जनता से जो वादे किए थे उनमें कितने जमीन पर उतर पाए।
2: लोगों को लगता है कि किसी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए या किसी डेथ सर्टिफिकेट के लिए या किसी परमिट के रिन्यूअल के लिए उनको रिश्वत नहीं देनी पड़े, तो उनको लगता है कि चलो इतने पैसे बच गए, चाहे वो 100 रुपए हो, 500 रुपए हो, 1000 रुपए हो या 2000 रुपए हो, अगर उन पैसों की बचत होती है तो उनको लगता है कि इस सरकार के कामकाज से हमारी जिंदगी पर काफी असर पड़ा है। तो मेरा मानना यह है कि ये एक बड़ा बदलाव नजर आया है पिछले 100 दिनों में, जहां पर आम लोगों की जिंदगी पर किसी ना किसी तरह का एक पॉजिटिव असर देखने को मिला है।
0: मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय सरकार की शुरुआती प्राथमिकताओं में बिजली भी रही। सरकार के मुताबिक घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली की सीमा 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट कर दी गई। यानी जिस फैसले का सीधा असर आम परिवार की जेब पर पड़ना था उसे सरकार के शुरुआती फैसलों में शामिल किया गया।
9: துணை மின் நிலையங்கள் அமைத்தல், புதிய மின் பகிர்மான மின் மாற்றிகளை நிறுவுதல், சேதமடைந்த மற்றும் பயன்பாட்டு காலம் நிறைவடைந்த கேபிள்கள், மின் கடத்திகள், பில்லர் பாக்ஸ், சர்க்கியூட் பிரேக்கர்ஸ் உள்ளிட்ட உபகரணங்களை மாற்றுதல் போன்ற பணிகள் 1762 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ளப்படும்.
0: लेकिन सरकार के सामने सिर्फ बिजली का बिल कम करने की चुनौती नहीं थी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना एक बड़ा मुद्दा था।
10: सी जोसेफ विजय चीफ मिनिस्टर होने के साथ उन्होंने 200 यूनिट्स ईबी यूनिट्स फ्री कर दिया अरविंद केजरीवाल जैसा, और इसका फोकस एक घर का, एक हाउस होल्ड का इलेक्ट्रिसिटी बिल में उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था, और उसके साथ एक हेल्पलाइन करप्शन फ्री उसका प्रॉमिस था चीफ मिनिस्टर का, और इसीलिए एक हेल्पलाइन भी अनाउंस करा था सीएम विजय ने। उसमें कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई रिश्वत पूछ रहा है तो इमीडिएटली एक कॉमन मैन उस हेल्पलाइन में कंप्लेन कर सकता है।
0: विजय सरकार ने सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी की शिकायत के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की। अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत मांगता है तो आम लोग उसकी शिकायत इस हेल्पलाइन पर कर सकते हैं। सरकार का दावा है कि शिकायत की जांच गोपनीय तरीके से की जाएगी। यानी संदेश साफ था, सरकारी काम के बदले रिश्वत मांगने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव की ओर से विभागाध्यक्षों और जिला कलेक्टरों को सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक जगहों पर भ्रष्टाचार विरोधी बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए गए, उस मुद्दे की जिस पर विजय खुद लंबे समय से बोलते रहे हैं। सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए विजय सरकार ने कई योजनाओं पर जोर दिया। ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए कामराज स्पेशल स्कूल खोलने की योजना बनाई गई। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को मुफ्त शिक्षा के साथ हॉस्टल, खाना, यूनिफॉर्म, किताबें और स्वास्थ्य सुविधाएं देने का प्रावधान रखा गया। स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 44,527 करोड़ रुपए और उच्च शिक्षा विभाग के लिए 8,393 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। यानी कोशिश यही है कि पैसे की कमी किसी बच्चे की पढ़ाई के रास्ते में रुकावट न बने।
9: பள்ளிகளில் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு, நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகளின் பள்ளிகளில் தரமான கல்வி மற்றும் பாதுகாப்பான சூழலை வழங்கும் வகையில் புதிய வகுப்பறைகள் கட்டுதல் மற்றும் நவீன வசதிகளை ஏற்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு உள்கட்டமைப்பு பணிகள் மொத்தம் 335 கோடி ரூபாய் செலவில் மேற்கொள்ளப்படும்.
0: विजय सरकार के शुरुआती 100 दिनों में शिक्षा एक बड़ा एजेंडा बनकर सामने आई, लेकिन पढ़ाई के साथ सवाल सेहत का भी है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर विजय सरकार ने मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवरेज बढ़ाने का ऐलान किया है। हर लाभार्थी परिवार का कवरेज 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की बात कही गई।
10: की बात चीफ मिनिस्टर विजय ने चीफ मिनिस्टर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर का अमाउंट पांच लाख से 25 लाख बना दिया और सरकार ने वेरी क्लियर ने बोल दिया कि ये हेल्थ केयर, क्वालिटी हेल्थ केयर सब लोगों को अच्छी तरह से मिलना है और इसीलिए ये डिसीजन सरकार ने लिया है।
11: सरकार का फोकस ये बताने पर रहा कि बेहतर इलाज सिर्फ पैसे वाले परिवारों तक सीमित न रहे, हर परिवार को इलाज की आर्थिक सुरक्षा मिले।
9: விரிவான மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தின் இலவச மருத்துவ சிகிச்சைக்கான மருத்துவ காப்பீட்டு தொகை ஆண்டொன்றுக்கு தற்போதுள்ள 5 லட்சத்திலிருந்து ரூபாய் 25 லட்சமாக உயர்த்தப்படும்.
11: அப் பாரி ஆதி ஹே மஹிலாவோ கி சுரக்ஷா கி. மஹிலா சுரக்ஷா கி லியே சர்க்கார் நே 354 கரோட் ரூபே கா விசேஷ் பட்ஜெட் ரக்கா ஹே. சம்வேதன்ஷீல் இலாக்கோ, சௌராஹோ ஔர் பஸ் ஸ்டேண்டோ பர் புலிஸ் கி மௌஜூத்கி படானே கி பாத் கஹி கயி. சாத் ஹி ட்ரோன் ஔர் நிகரானி கே தூஸ்ரே மாத்யமோ கே இஸ்தேமால் பர் பி ஜோர் தியா கயா ஔர் सुरक्षा सिर्फ थाने तक नहीं सड़क और सार्वजनिक जगहों तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। अब बात उस फैसले की जिसका सीधा संबंध विजय के चुनावी वादे से है। विजय सरकार ने राज्य संचालित TASMAC की 717 शराब दुकानों को बंद करने का फैसला किया है। शराब बंदी का मुद्दा चुनाव के दौरान भी चर्चा में रहा था। अब सत्ता में आने के बाद सरकार ने इस दिशा में कदम उठाने का दावा किया, लेकिन विजय सरकार का एजेंडा यहीं खत्म नहीं होता। किसानों और दूध उत्पादकों के लिए भी सरकार ने खरीद मूल्य बढ़ाने का फैसला लिया है, लेकिन जनता के बीच सवाल ये भी है कि सरकार की प्राथमिकता सबसे पहले किस पर होनी चाहिए। और इसी बीच मुख्यमंत्री विजय का एक ऐसा अंदाज भी सामने आया जिसने लोगों का ध्यान खींचा। सलेम दौरे के दौरान विजय एक बुजुर्ग महिला से मिलने उनके घर पहुंचे। बातचीत के दौरान विजय ने अपना सनग्लास उतारा और महिला को दे दिया। एक मुख्यमंत्री और एक बुजुर्ग महिला के बीच का ये छोटा सा पल सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहा।
12: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने एक एक्सपेंसिव ग्लासेस एक एल्डरली वुमेन को गिफ्ट किया है। जब वो मेटूर गए थे, वो मेटूर डैम ओपन करने के लिए, तब उन्होंने इस एल्डरली लेडी को उस प्लेस पर मीट करके बहुत खुश होकर उनको उनका जो ग्लासेस वेयर कर रहे थे वो बहुत महंगा ग्लासेस है, 46,000 रुपीज वर्थ का क्रिस्टियन डियोर ब्रांड का जो ग्लासेस यूज कर रहे थे उनको उस लेडी को गिफ्ट किया है। तो ये बहुत वायरल विजुअल से बहुत दिनों से वायरल चल रहा है। उस एल्डरली वुमेन बहुत फैन है विजय का, उनका सारे फिल्मों देखी है, तो तब जब उन्होंने मुख्यमंत्री विजय को सामने देखा तो बहुत खुश होके मुख्यमंत्री को गले लगाया और फिर उनका बातों पर बहुत खुश होके मुख्यमंत्री ने जो ग्लासेस वेयर कर रहे थे क्रिस्टियन डियोर जो लग्जरी ब्रांड है वो ग्लासेस फ्री में गिफ्ट में दे चुके थे।
11: इन 100 दिनों में विजय सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं, लेकिन किसी भी सरकार की असली परीक्षा सिर्फ फैसले लेने से नहीं होती। असली परीक्षा होती है उन फैसलों का असर जमीन पर कितना दिखाई देता है। एक तरफ वो विजय हैं, जिन्हें पर्दे पर गरीब और आम आदमी के लिए लड़ते देखा गया, दूसरी तरफ अब वो विजय हैं जिनके हाथ में पूरे तमिलनाडु की सत्ता है और आने वाले वक्त में यही तय करेगा क्या सिनेमा का हीरो सचमुच सत्ता का कामयाब हीरो बन पाता है।
4: वक्त एक ब्रेक का उजला है, ब्रेक के बाद देखिए सिनेमा से सत्ता तक पहुंचने की विजय की कहानी। टिकते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं,
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना,
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: और वही कहां गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
7: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट,
8: जेके मैक्स।
5: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Maxx Paints. JK Maxx, JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
2: भारत की रक्षा नीति से लेकर भविष्य की युद्ध रणनीति तक देश की सुरक्षा पर सीधी बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ देश के सबसे बड़े रणनीतिकारों और सुरक्षा विशेषज्ञों का महामंच आज तक सुरक्षा सभा सिर्फ आज तक पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: ये मार्केट को पता कैसे लग जाता है सर, कुछ बड़ा होने वाला है?
3: देखिए, तेजी में सबको सब चीज पे भरोसा होता है, मंदी में सब सवाल उठते हैं कि भाई ये कैसे हो गया। तो बफेट साहब ने भी बोला ना, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। क्या होता है कि जब भी जैसे अभी हम लोग वी आर लिविंग थ्रू दिस ना, कि रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है, तेल का दाम बढ़ रहा है, वॉर चल रहा है, यू नो, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे होएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होएगा, ये सब चिंता हो रही है लोगों को।
2: डोनाल्ड ट्रंप
3: साहब है, जियोपॉलिटिक्स है, वॉर है, ये चिंता हो रही है। वह पिछले 27 साल से मैं वो मार्केट में 6 बार हो चुका है। तो मैंने क्या देखा है कि जितना नंबर चेंज नहीं होता ना, उतना लोगों का मूड चेंज हो जाता है। तो आज के ज़माने में वैल्यू की डेफिनेशन ही ये है, मिसप्राइज्ड ग्रोथ।
4: गांधी जी के आंदोलन करने का तरीका क्या आज के समय में भी उतना प्रासंगिक है?
5: जो तुम गाली देते हो ना गांधी जी, 70 साल की उम्र में दो लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए, पढ़ लो।
6: जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, जो गांधी जी ने वापस ले लिया था, वो भी तो किसी और की वजह से लिया था। चौरी चौरा में जो हुआ इंसिडेंट, उनसे उनको क्या मतलब था? अगर वो उसको जारी रखते, क्या पता उस समय इंडिपेंडेंस को थोड़ा जल्दी हो जाता।
5: ताली बजाओ इनके लिए, ये ताली डिजर्व करते हैं।
7: तो आप देखिए ना, पानी पीने का भी कठिनाई है, आना जाना सब कुछ जो है ठप हो चुका है, लोगों को जो है जान माल का नुकसान है। तो राहत जल्द से जल्द सरकार को दिलाना चाहिए, नाव की व्यवस्था करानी चाहिए ताकि लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, इसका भी जो है लोगों को ध्यान देना चाहिए। तरह तरह की बीमारियाँ भी जो है, इसका भी जो है डर जो है पैदा होता है। तो हम लोगों को लगता है कि सरकार थोड़ा गंभीर होकर के जो है अगर काम करे तो ज़्यादा अच्छा। लेकिन मुख्यमंत्री तो केवल पता नहीं किस बात की समीक्षा कर रहे हैं, जब तक राहत जो पहुँच ही नहीं रहा। आप देख रहे हैं लोगों को जो है समस्या है।
8: जितने भी प्रभावित हैं और उनमें से जो विस्थापित भी हैं, कैसे उनको सुविधाएं मुहैया कराई जा सके, ऑल्टरनेट व्यवस्था कैसे मुहैया कराई जा सके, जो लोग कटाव की

0: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: ये मार्केट को पता कैसे लग जाता है सर, कुछ बड़ा होने वाला है?
3: देखिए, तेजी में सबको सब चीज पे भरोसा होता है, मंदी में सब सवाल उठते हैं कि भाई ये कैसे हो गया। तो बफेट साहब ने भी बोला ना, बी ग्रीडी में अदर्स आर फियरफुल। क्या होता है कि जब भी जैसे अभी हम लोग वी आर लिविंग थ्रू दिस ना, कि रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है, तेल का दाम बढ़ रहा है, वॉर चल रहा है, यू नो, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे होएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होएगा, ये सब चिंता हो रही है लोगों को।
2: डोनाल्ड ट्रंप,
3: ट्रंप साहब है, जियो पॉलिटिक्स है, वॉर है, ये चिंता हो रही है। तो पिछले 27 साल से मैं हूँ मार्केट में, 6 बार हो चुका है। तो मैंने क्या देखा है कि जितना नंबर चेंज नहीं होता ना, उतना लोगों का मूड चेंज हो जाता है। तो आज के ज़माने में वैल्यू की डेफिनेशन ही ये है, मिसप्राइज्ड ग्रोथ।
4: गांधी जी के आंदोलन करने का तरीका क्या आज के समय भी उतना प्रासंगिक है?
5: जो तुम गाली देते हो ना गांधी जी, 70 साल की उम्र में 2 लड़कियों में कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए, पढ़ लो।
6: जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था जो गांधी जी ने वापस ले लिया था, वो भी तो किसी और की वजह से लिया था, चौरी चौरा में जो हुआ इंसिडेंट, उनसे उनको क्या मतलब था? अगर वो उसको जाए रखते, क्या पता उस समय इंडिपेंडेंस को थोड़ा जल्दी हो जाता।
5: ये ताली डिजर्व करते हैं।
7: तो आप देखिए ना, पानी पीने का भी कठिनाई है, आना जाना सब कुछ जो है ठप हो चुका है, लोगों को जो है जान माल का नुकसान है। तो राहत जल्द से जल्द सरकार को दिलाना चाहिए, नाव की व्यवस्था करानी चाहिए ताकि लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, इसका भी जो है लोगों को ध्यान देना चाहिए। तरह तरह की बीमारियाँ भी जो है, इसका भी जो है डर जो है पैदा होता है। तो हम लोगों को लगता है कि सरकार थोड़ा गंभीर होकर के जो है अगर काम करे तो ज़्यादा अच्छा। लेकिन मुख्यमंत्री तो केवल पता नहीं किस बात की समीक्षा कर रहे हैं, जब तक राहत जो पहुँच ही नहीं रहा है। आप देख रहे हैं लोगों को जो है समस्या है।
8: जितने भी प्रभावित हैं और उनमें से जो विस्थापित भी हैं, कैसे उनको सुविधाएं मुहैया कराई जा सके, ऑल्टरनेट व्यवस्था कैसे मुहैया कराई जा सके। जो लोग कटाव की वजह से अभी भी अपने ही गांव में हैं, पर वहां पर पानी कटाव जारी है, वहां पर सूखा राशन हो, त्रिपाल हो, पन्नी हो, ये सारी व्यवस्था, उसमें कहीं कोई दिक्कत कोई कमी ना रहे, उस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं।

0: तमिलनाडु की सियासत में फिल्मी सितारों का राजनीति में आना कोई नई बात नहीं है। एमजीआर और जयललिता इसकी सबसे बड़ी मिसाल रहे हैं। लेकिन विजय की कहानी में एक बड़ा फर्क है। उन्होंने पहले अपनी लोकप्रियता बनाई, फिर लाखों फैंस को एक संगठन में जोड़ा और धीरे धीरे यही संगठन उनकी राजनीतिक ताकत बन गया और इसी ताकत के दम पर सिनेमा से सत्ता तक का सफर उन्होंने तय किया।
1: ये तस्वीर देखिए, हजारों लाखों लोगों का हुजूम और भीड़ के बीच खड़ा एक चेहरा जो सिर्फ विजय चंद्रशेखर। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये सफर शुरू कहां से हुआ था? कैसे एक बच्चा जिसके पिता उसे डॉक्टर बनाना चाहते

0: popular director Chandrasekhar aur playback singer Shobha ko bond hua ek boy ka naam tha C. Joseph Vijay aur the same boy aaj mukhyamantri bana hai Tamil Nadu mein. To unhone jab bahut chota tha, jab wo 10 saal ka tha, ek bahut tragic incident hua tha. Unka own sister Vidya ne unfortunately passed away kyunki ek bahut prolonged illness se suffer kar rahe the. To isiliye us din Chandrasekhar unka father decide kiya tha ki Vijay doctor hi banega, par Vijay ko kuch aur sapna tha.
1: विजय को डॉक्टर नहीं एक्टर बनना था। एक दिन विजय घर से निकले सुबह के करीब 10 बजे, शाम तक वापस नहीं लौटे। माता पिता ने उन्हें हर जगह तलाशा और आखिरकार वो एक थिएटर में मिले। यहीं शायद परिवार को भी समझ आ गया कि इस लड़के की मंजिल कुछ और है।
0: 1984 में विजय एक चाइल्ड आर्टिस्ट बना हुआ था और जब वो 18 ईयर्स हुए थे तब उन्होंने एक लीड एक्टर की रोल पर एक्ट किया था। उस वक्त उनका अपीयरेंस और उनका स्क्रीन प्रेजेंस को देख के बहुत नेगेटिव रिव्यूज आया था और उन्होंने बोला है कि ये सब उनको बहुत इमोशनली मेंटली शैटर हुआ था। तो उस पेन की वजह से ही हम जो जानते हैं मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, उनका क्वालिटीज जो हम आज देख रहे हैं, ये सब पेन की वजह है ये आज एक मुख्यमंत्री बना है।
1: साल 1984 में विजय ने बतौर चाइल्ड एक्टर फिल्मों में कदम रखा। इस फिल्म को उनके पिता एस ए चंद्रशेखर डायरेक्ट कर रहे थे। इसके बाद 18 साल की उम्र में विजय को पहली बार बतौर हीरो फिल्म नालैया थिरुप्पु में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म के डायरेक्टर भी उनके पिता ही थे, लेकिन विजय की पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली और बुरी तरह फ्लॉप हो गई। यानी एक्टर के तौर पर विजय का सफर शुरुआत में बिल्कुल आसान नहीं था। 1990 के दशक में धीरे धीरे विजय ने अपनी जगह बनानी शुरू की, पहले रोमांटिक हीरो, फिर फैमिली स्टार और इसके बाद मास हीरो।

0: इसके बाद विजय ने कई छोटी बजट की रोमांटिक फिल्में की। इनमें से ज्यादातर फिल्मों को ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला, लेकिन साल 1996 में आई पूवे उनक्कागा विजय के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म ने उन्हें फैमिली ऑडियंस के बीच पहचान दिलाई और उनकी इमेज एक रोमांटिक हीरो की बन गई। इसके बाद 2000 के दशक में विजय ने अपनी इमेज बदली। उन्होंने रोमांटिक फिल्मों से आगे बढ़कर एक्शन फिल्मों में काम करना शुरू किया और एंग्री यंग मैन के तौर पर अपनी पहचान बनाई। फिर साल 2004 में आई गिल्ली ने विजय को बड़ा ब्रेक दिया और ये फिल्म उस दौर की बड़ी तमिल हिट फिल्मों में शामिल हो गई।
1: आज के बाद रेप चुराना, गैर कानूनी शराब बनाना, भ्रष्टाचार, रिश्वत, जात पात अब सब खत्म होगा। आज के बाद मेरी जुबान नहीं, मेरा चाकू चलेगा, एक एक को काट के नदी में बहा दूंगा, याद रखना।
0: अब विजय की पहचान सिर्फ एक अभिनेता की नहीं रही, उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। लेकिन विजय की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनकी स्टारडम नहीं थी, उनकी फिल्मों में आम आदमी के मुद्दे भी दिखाई देते थे। किसान, भ्रष्टाचार, महिलाओं के अधिकार, शिक्षा, पानी और आम लोगों की समस्याएं। पर्दे पर विजय अक्सर उस किरदार में दिखाई देते जो ताकतवर लोगों के सामने खड़ा होता और आम आदमी की आवाज बनता। यहीं से स्क्रीन का विजय और जनता का विजय एक दूसरे के करीब आने लगा। तो

जी आर, जयललिता और विजय तीनों को देखते हैं, उन दो इन तीनों के जो सिमिलैरिटी है, एक है कि वो फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, तीनों हीरो हीरोइन बने थे, उसकी वजह से उनका फेमिलियरिटी बहुत था, पहचान बहुत बहुत ज़्यादा था तमिलनाडु के वोटर के बीच। वो एक सिमिलैरिटी है। दूसरा सिमिलैरिटी ये है कि महिला वोटर जो हैं वो इनके ऊपर बहुत ही एक अलग रिश्ता या एक बंधन ऐसा उनके साथ था। तमिलनाडु के महिला वोटर्स को कोई और नहीं था जिनके साथ एक ऐसा रिश्ता या ऐसा बंधन बनाए। तो जब विजय पॉलिटिक्स के अंदर आ गए तो महिलाओं को लगा कि जयललिता जी के बाद शायद विजय होगा जो हमारा साथ देगा। तो इसलिए महिला वोटर्स आप देखेंगे तो ज्यादातर वो विजय के लिए ही वोट किए हैं।

0: आया द ईयर 2009 जब विजय ने उनका फैन क्लब सबको कंसोलिडेट करके एक विजय मक्कल इयक्कम शुरू किए थे। इस इयक्कम का मेन इंटेंशन ये था कि ये बहुत गुड डीड करे, क्योंकि ये डिजास्टर रिलीफ में मदद करना, ब्लड डोनेट करना, फूड देना, और फिर जो स्टूडेंट्स ने अच्छे मार्क्स ले रहे थे उनको ऑनर करना, तो ये सब गुड क्रिया चैरिटी वर्क्स कर रहे थे। तो तब शुरू हुआ विजय का पॉलिटिकल एम्बिशंस। उनको तब से पता था कि उनको एक फाइनल दिन एक पॉलिटिशियन बनना है, विन करना है, तो इसीलिए उन्होंने उनका सारा फैन क्लब्स को एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मूवमेंट जैसा कन्वर्ट करके विजय मक्कल इयक्कम था उनका नाम, उस इयक्कम का नाम के विजय बहुत चैरिटी वर्क किया है, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत पब्लिक वर्क किया है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, तो इसीलिए इस इयक्कम का बहुत पॉपुलैरिटी था। तो ये सब पीपल को बहुत खुश होकर, बहुत पसंद होकर आज हम जानते हैं जो मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, उनका पार्टी टीवी के विन किया है।
1: फिर आया वो वक्त जब विजय ने खुद राजनीति में उतरने का फैसला किया। 2 फरवरी 2024 विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया। नाम तमिलगा वित्री कझगम। और इस ऐलान के साथ ही साफ कर दिया कि 2024 नहीं, सीधा निशाना 2026 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सत्ताईस अक्टूबर 2024 को इस विशाल मैदान पर लाल पीले झंडों का समंदर नजर आ रहा था। ये विजय की पहली बड़ी राजनीतिक रैली थी और इस रैली ने एक बात साफ कर दी, विजय अब सिर्फ स्टार नहीं रहे थे, वो राजनीति के मैदान में उतर चुके थे।
2: छब्बीस में जो तमिलनाडु में टीवी के की जीत हुई उसका श्रेय ज्यादातर विजय को ही जाता है। विजय की जो फिनोमिना है, विजय ने जो पिछले 30 साल में तमिल सिनेमा में लीडिंग मैन की भूमिका निभाई है, नंबर वन सुपरस्टार रहे हैं, और जिस तरह के सब्जेक्ट्स को उन्होंने पेश किया है, चाहे वो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हो, स्पोर्ट्स की बात हो, टैक्सेस की बात हो, तो उससे एक तरह से जो युवा जनता है तमिलनाडु में उन पर काफी प्रभाव पड़ा है। और इसी वजह से हमने देखा कि इन द रन अप टू द इलेक्शंस काफी सारा उनको समर्थन मिला महिलाओं से और जेंजी वोटर से। जहां तक टीवीके की राजनीतिक रणनीति का सवाल है और उनकी संगठन की बात है, मुझे लगता है कि उनका इतना बड़ा योगदान नहीं रहा। सबसे बड़ी बात जो उभर कर ये आई कि इंडिविजुअल तौर पर किसी भी उम्मीदवार को ज्यादा समर्थन प्राप्त नहीं था, लेकिन चूंकि वो विजय के प्रतिनिधि के रूप में चुनाव मैदान में उतरे थे, उसी वजह से उनको जीत मिली। और इसी वजह से ये पता चलता है कि जो टीवी के है वो एक वन फिनोमिना वन मेजर पर्सन पार्टी है, और इसी तरह का स्ट्रक्चर हमें टीवी के में देखने को मिलता है।
3: पॉलिटिक्स मतलब मारा कूड़ा डेवलप आवकूड़ा मारनो।
1: यही से एक सवाल पैदा हुआ, क्या तमिलनाडु में सिनेमा से राजनीति तक पहुंचने की पुरानी परंपरा एक बार फिर दोहराई जा रही है, पहले एमजीआर, फिर जयललिता और अब विजय। लेकिन विजय की कहानी में एक चीज अलग है, उन्होंने पहले स्टारडम बनाया, फिर फैन क्लब को संगठन बनाया और फिर उसी संगठन को राजनीतिक ताकत में बदल दिया।

तमिलनाडु की राजनीति में सिनेमा का असर सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रहा। यहाँ कई फिल्मी सितारों ने अपनी लोकप्रियता को राजनीतिक ताकत में बदला। MGR ने अभिनेता से मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। जयललिता ने अम्मा बनकर लंबी राजनीतिक पारी खेली। विजयकांत, कमल हासन और अब विजय इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे। यानी तमिलनाडु में स्टारडम कई बार राजनीति की जमीन तैयार करता है।

0: तमिलनाडु में सिनेमा सिर्फ पर्दे पर कहानी सुनाने का जरिया नहीं रहा, यहाँ सिनेमा ने कई बार सत्ता की कहानी भी लिखी है। तमिलनाडु की राजनीति को समझना हो तो वहाँ के सिनेमा को समझना भी जरूरी है, और इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1940 और 50 के दशक से। तमिल सिनेमा तेजी से लोकप्रिय हो रहा था, और इसी दौर में फिल्मों का इस्तेमाल सामाजिक और राजनीतिक विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए भी होने लगा। द्रविड़ आंदोलन से जुड़े नेताओं ने सिनेमा की ताकत को समझा। एम करुणानिधि जैसे नेताओं ने पटकथा और संवादों के जरिए सामाजिक न्याय, जातीय समानता और द्रविड़ विचारधारा को आम लोगों तक पहुंचाया। यानी राजनीति ने सिनेमा को अपना माध्यम बनाया, और सिनेमा ने राजनीति को लाखों लोगों तक पहुंचाने का रास्ता।
1: तमिलनाडु पे सिनेमा सिर्फ एक एंटरटेनमेंट मीडियम नहीं है, पर किसी लोग के लिए ये तो सिनेमा पर नहीं पर सिर्फ पॉलिटिक्स का भी एक स्टेपिंग स्टोन है। शुरू तो एमजीआर के साथ हुआ था, करुणानिधि के साथ हुआ था, उसके बाद जयललिता, और अब तक कमल हासन भी इसके दौरान एक एमपी भी बना चुका है। स्टिल ये तमिलनाडु, अगर आपको तमिलनाडु में समझ आना पड़ेगा तो तमिलनाडु का सिनेमा पहले समझ करना पड़ेगा, और उसके साथ किसी लोग के लिए ये एक आइडेंटिटी बना चुका है।
0: फिर आया वो दौर जब फिल्मी चेहरा खुद राजनीति का चेहरा बनने लगा। साल 1972, तमिल सिनेमा के सुपरस्टार एमजी रामचंद्रन यानी एमजीआर ने डीएमके से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई। नाम था एआईएडीएमके। एमजीआर के पास पहले से ही एक ऐसी फिल्मी छवि थी जिसे वो गरीबों और आम लोगों के लिए लड़ने वाले नायक के तौर पर नजर आते थे। पर्दे पर जिस किरदार को जनता ने पसंद किया, एमजीआर ने उसी लोकप्रियता को राजनीतिक ताकत में बदल दिया। और फिर आया साल 1977, एमजीआर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। भारत की राजनीति में ये एक ऐसा बड़ा उदाहरण था जब एक सुपरस्टार ने सिनेमा घर की तालियों को वोट में बदल दिया। एमजीआर ने 1987 में अपने निधन तक तमिलनाडु की राजनीति पर मजबूत पकड़ बनाए रखी।
1: तमिलनाडु का बहुत बड़ा स्टालवर्ट पावर था एमजी रामचंद्रन। उन्होंने 1970s पे डीएमके से बाहर आकर एक सेपरेट पार्टी ऑल इंडिया अन्ना द्राविड मुनेत्र कड़गम उन्होंने शुरू कर 5 साल में वो एक चीफ मिनिस्टर बना दिया, और सिनेमा फील्ड पे वो एक रॉबिन हुड था, गरीबों के साथ था वो, और ऐसा एक इमेज बिल्ड कर वहां से वो चीफ मिनिस्टर भी हो गया।
0: लेकिन एमजीआर की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक और फिल्मी चेहरा सामने आया, जयललिता। एमजीआर की फिल्मों में उनकी को स्टार रह चुकी थी, लेकिन राजनीति में आने के बाद उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। एमजीआर के निधन के बाद एआईएडीएमके के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी पार्टी को एकजुट रखना, और जयललिता ने धीरे धीरे पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत की, और फिर तमिलनाडु की राजनीति में वो ताकत बन गई जिसे पूरा राज्य अम्मा के नाम से जानने लगा।
1: अगर तमिलनाडु में एमजीआर के बाद किसी ने वो लेगेसी को हैंडल कर सकते थे वो है जयललिता। जयललिता ने तमिलनाडु में एआईएडीएमके को बहुत डिफिकल्ट टाइम ने उन्होंने टेक ओवर किया थी, और उसके साथ तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर भी उन्होंने बन गया, और उसमें एक लेगेसी ने उन्होंने बिल्ड किया, इसीलिए उनको यहाँ पे तमिलनाडु में बहुत फेवरेटली अम्मा बोलकर बुलाते हैं।
0: जयललिता कई बार मुख्यमंत्री बनी और लंबे वक्त तक तमिलनाडु की राजनीति के सबसे प्रभावशाली चेहरों में शामिल रही। यानी एमजीआर ने जो रास्ता बनाया था, जयललिता ने उसी रास्ते को आगे बढ़ाया। लेकिन हर फिल्मी सितारे की कहानी एमजीआर और जयललिता जैसी नहीं रही।
2: महिला वोटर जो है तमिलनाडु के, एमजीआर के लिए, जयललिता के लिए, दोनों के लिए, जो एमजीआर के लिए आके एकदम उनको देखते थे कि वो हमारे सेवियर है, वो हमें बचाएंगे, सब कठिनाइयों से बचाएंगे, ऐसे देखते थे एमजीआर जी को। और एमजीआर के जो उनके साथ जो रिश्ता था वो महिला वोटर्स को, वो जब वो गुजर गए तो जयललिता जी को वो ट्रांसफ़र हो गया, तो उनको लगा कि ये हमारी अम्मा है तो हमें बचाएगी, हमारा ख्याल रखेगी। तो एक बहुत ही अजीब सा, अलग सा रिश्ता बना हुआ था।
0: तमिल सिनेमा के अभिनेता शिवाजी गणेशन ने भी अपनी पार्टी बनाई, लेकिन चुनावी राजनीति में उन्हें वो सफलता नहीं मिली जो एमजीआर को मिली थी। साल 2005 में अभिनेता विजय कांत ने डीएमडीके यानी देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम बनाई। विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन फिर उनकी राजनीतिक ताकत कमजोर होती गई। साल 2018 में कमल हसन ने मक्कल निधि मैयम यानी एमएनएम बनाई, लेकिन अब तक पार्टी चुनावी सफलता हासिल नहीं कर पाई है। फिल्म निर्देशक और अभिनेता से नेता बने सिमन ने नाम तमिलर काची यानी एनटीके के जरिए तमिल राष्ट्रवाद की राजनीति को आगे बढ़ाया, लेकिन समय के साथ उनकी पार्टी भी कमाल नहीं कर पाई। दरअसल तमिलनाडु में दशकों से एक सिलसिला चलता रहा है, पहले स्टारडम, फिर लोकप्रियता, फिर संगठन और उसके बाद राजनीति, और अब इसी लंबी कहानी के बीच खड़े हैं थलपति विजय। विजय की राजनीति का बीज भी अचानक नहीं पड़ा, 2000 के दशक की शुरुआत से ही उनकी फिल्मों में सरकार, व्यवस्था और आम आदमी से जुड़े मुद्दे नजर आने लगे थे। लेकिन विजय एक ऐसे अकेले अभिनेता थे जिनकी फिल्म और स्क्रिप्ट पर सरकार की भी नजर होती थी।
1: अगर जयललिता और एमजीआर के बाद कोई उस लेगेसी को मेंटेन कर सकते थे वो है चीफ मिनिस्टर विजय। अभी वो चीफ मिनिस्टर बना दिया, उसकी एक तरफ है एक स्टॉलवर्ट जैसा एमजीआर और जयललिता जो एक स्टार्स हैं और उनके साथ पॉलिटिकल हीरोज भी हैं, और दूसरी तरफ है स्टॉलवर्ट्स करुणानिधि एमके स्टालिन जैसा। अभी विजय ने सक्सेसफुली उनका फैन क्लब को एक पॉलिटिकल मूवमेंट बना दिया, तो इसके साथ क्या वो एमजीआर का लेगेसी को अभी बीट कर सकता है, यह है बहुत बड़ा सवाल।
0: उस वक्त ये सिर्फ एक फिल्म की रिलीज का मामला नहीं था, क्योंकि विजय के आसपास राजनीतिक चर्चाएं पहले से ही तेज थी, और इसके बाद धीरे धीरे वो वक्त आया जब विजय ने खुद राजनीति में उतरने का फैसला किया। विजय के सामने अब चुनौती सरकार चलाने की नहीं है, बल्कि अपनी लोकप्रियता को स्थायी राजनीतिक ताकत में बदलने की है, क्योंकि तमिलनाडु में सिनेमा और राजनीति का रिश्ता पुराना जरूर है, लेकिन हर फिल्मी सितारा एमजीआर नहीं बन पाया। और अब सवाल यही है, क्या थलपति विजय तमिलनाडु के सिनेमाई सियासत में अपनी एक नई कहानी लिख पाएंगे?
3: फिलहाल कहानी मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
1: गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
6: सोना केवल निवेश नहीं, परंपरा, भरोसे और भावनाओं का भी हिस्सा है। शादी ब्याह से लेकर त्योहारों तक सोने की खरीदारी का अपना खास महत्व रहा है, लेकिन रिकॉर्ड ऊंची कीमतों ने अब खरीदारों की पसंद और खरीदारी का तरीका बदलना शुरू कर दिया है। लोग सोना खरीद तो रहे हैं, लेकिन वजन पहले के मुकाबले कम हो गया है। इस तरकीब के बावजूद ज्वेलरी पर खर्च लगातार बढ़ रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताजा रिपोर्ट इसी बदलाव की कहानी बयां करती है, जिसके मुताबिक 2026 की पहली छमाही में देश में सोने के जेवरों की मांग वजन के हिसाब से 17.1% घट गई है, लेकिन कुल खरीदारी की वैल्यू 40% बढ़कर 2,13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। अप्रैल जून तिमाही में ज्वेलरी मांग 15.4% घटकर 75.1 टन रह गई, जबकि इसी अवधि में खरीदारी की कुल वैल्यू 34.4% बढ़कर 1,13,000 करोड़ रुपए पहुंच गई। यानी ग्राहक बजट तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन वजन कम कर रहे हैं। इसी बदलते ट्रेंड को देखते हुए ज्वेलर्स हल्के वजन की ज्वेलरी, कम कैरेट वाले उत्पादों और स्टडेड डायमंड ज्वेलरी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सोने की बढ़ती कीमतों के बीच एक और बड़ा ट्रेंड तेजी से उभरा है। ग्राहक नया कैश लगाने के बजाय पुराने गहनों की अदला बदली को प्राथमिकता दे रहे हैं। यही वजह है कि एक्सचेंज और रिसाइकिलिंग का कारोबार तेजी से बढ़ा है। इस ट्रेंड का फायदा बड़े ब्रांड्स को भी मिला है। कंपनियों की कुल बिक्री में आधे से ज्यादा हिस्सा पुराने सोने की अदला बदली से आ रहा है। इस बीच बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने में GST, अनिवार्य हॉलमार्किंग और पैन कार्ड नियमों का रोल बढ़ा है। KRH के मुताबिक ग्राहक शुद्धता, पारदर्शी बिलिंग और आसान बायबैक जैसी सुविधाओं को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। वहीं संगठित ज्वेलरी ब्रांड्स Tier 2 और Tier 3 शहरों में भी तेजी से अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। रिटेल मार्केट में भी ज्वेलरी कारोबार की तस्वीर तेजी से बदल रही है। CBRE के आंकड़ों के मुताबिक संगठित रिटेल लीजिंग में ज्वेलरी सेक्टर की हिस्सेदारी 2019 से 2% से बढ़कर 2025-26 में 8% हो गई है। इसका मतलब है कि बड़े और संगठित ज्वेलरी ब्रांड्स की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। साफ है कि सोने की कीमतें भले ही रिकॉर्ड ऊंचाई पर हो, लेकिन भारतीयों का गोल्ड से लगाव कम नहीं हुआ है। अंतर बस इतना है कि खरीदार वजन नहीं, बजट और वैल्यू को ध्यान में रखकर फैसला ले रहे हैं। आदित्य के राणा आज तक।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: एमपी के सागर में जहरीली शराब का कहर, मौत का आंकड़ा बढ़कर 11 हुआ। अलग अलग गांव के रहने वाले मृतक, मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले दोषियों को मिलेगी सख्त सजा। जेनजी पर सियासी आर पार, प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के बीच कहा सच की हुंकार के आगे नहीं टिकेगी झूठ की गूंज। राहुल गांधी ने वीडियो जारी करके पूछा बिहार में छात्रों पर क्यों हुआ था एक्शन। सहारनपुर में मस्जिद के मसले मलबे के नीचे मिला 20 फीट गहरा कुआं, देखने के लिए जुटने लगी भीड़। कुएं की जांच कराएगा प्रशासन, बुलडोजर एक्शन पर जारी सियासी उबाल। और दिल्ली में दो हमलावरों ने एक शख्स को पीट पीट कर मार डाला, विरोध करने पर गार्ड को भी धमकाया। सीसीटीवी खंगाल का मृतक और आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है पुलिस। और बिहार में उफान पर है गंगा, 11 जिलों पर मडराया बाढ़ का खतरा। राजधानी पटना से लेकर भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय तक पानी ही पानी, करीब 17 लाख लोग प्रभावित। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। दोपहर 2 बजे में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं इस घंटे की बड़ी और अहम खबरों के बारे में। पहले बता दें आपको, बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के सागर में जो जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है उसके बारे में। आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है और क्या इस पूरे मामले के पीछे निकलकर सामने अभी तक आया है, पूरी खबर विस्तार से हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ जंतर मंतर हिंसाकांड में स्वतंत्र भारद्वाज को जेल भेज दिया गया है, ये पूरी खबर भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ और भी कई बड़ी और अहम खबरों के बारे में हम बात करेंगे इस बुलेटिन में। लेकिन शुरुआत हम करेंगे मध्य प्रदेश से, क्योंकि बड़ी और अहम खबर यहां से आई है। जानकारी है कि सागर में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हो चुकी है और पूरे इलाके में जहरीली शराब पीने से हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि कई की हालत जबरदस्त तरीके से गंभीर है और ये संख्या बढ़ सकती है। जहरीली शराब पीकर मरने वाले अलग अलग गांव के बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शनिवार रात को बंडा के घूघर, नौराज, बराज और आसपास के क्षेत्रों में लोगों ने घरों में शराब पी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। तुरंत ही उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया परिवार वालों की तरफ से, लेकिन अस्पताल ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और कुछ लोग अभी भी बुरी तरह से बीमार बताए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट चुकी है।
1: अभी तक 9 से 10 मौतें का आंकड़ा सामने आया हुआ है और रेफर तो चल ही रहा है हमारा लगातार, और हमारी 3 टीमें जो कि हमारे हॉटस्पॉट हैं, एक 3 गांव है यहाँ पे, वहाँ जो हॉटस्पॉट वहाँ जहाँ से केस निकल के आ रहे थे वहाँ से टीमें लगातार, डॉक्टर्स नर्सेस की टीमें लगी हुई हैं और वहाँ से केस भी रेफर डायरेक्ट कर रही है। और पहले तो ये था कि एक एक दो दो केस आ रहे थे, उन लोग वहाँ से और केस निकाल रहे हैं घर घर जाके, जो भी बीमार हैं वो डॉक्टर निकाल रहे हैं उनके बाद।
0: बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि सागर शराब कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी के ललितपुर से मध्य प्रदेश में अवैध तरीके से शराब सप्लाई होती थी, यूपी पुलिस ने इसी साल तस्कर गैंग को पकड़ा भी था और अब इसी गैंग पर शक है कि इस नेटवर्क के जरिए शराब सागर पहुंचाई गई थी। अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है, कई और लोग हैं जो बुरी हालत में अस्पताल में भर्ती है, ये आंकड़ा बढ़ सकता है। सबसे ज्यादा सवाल इस बात पर कि एक ही जगह से खरीदी हुई शराब नहीं है, अलग अलग जगहों से अलग अलग गांव के लोगों ने शराब को पिया है, जिसमें 11 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग बुरी अवस्था में हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है, हालत उनकी भी गंभीर बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह जुड़ गए। रवीश, इस पूरे मामले में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? साथ ही साथ जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं कि अलग अलग जगहों से शराब खरीदी गई है, पुलिस, आबकारी विभाग, आखिर ये सब लोग प्रशासन से जुड़े हुए लोग रहते कहाँ हैं कि इतनी आसानी के साथ इतना बड़ा नेक्सस बनाकर जहरीली शराब बहुत आसानी से परोस दी जाती है?
2: बिल्कुल, और देखिए जो जानकारी आज तक को मिली है शशि, उसके मुताबिक ये गंभीर लापरवाही है ना केवल पुलिस की बल्कि आबकारी विभाग की। देखिए हमारे पास 2026 मई, इसी साल मई में ललितपुर पुलिस ने एक गिरोह को पकड़ा था। ये एफआईआर की कॉपी है जो एक्सक्लूसिव हम आज तक पे दिखा रहे हैं। इस एफआईआर की कॉपी के मुताबिक ये जो लोग थे, पकड़े गए थे, इन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया था कि ये लोग उत्तर प्रदेश के ललितपुर में जो शराब बनती है उसे मध्य प्रदेश में बेचने आ रहे थे, और ये जो शराब थी ये अवैध शराब थी। इन लोगों ने पूछताछ में ये स्वीकार किया था कि हम मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पर, खासतौर से सागर जिले की अलग अलग जगहों पर इस शराब को सप्लाई करते हैं। और 2 महीने बाद ही आप देखिए, ये जो शराब कांड हुआ है जिसमें अब तक 11 लोगों की मौत सामने आ चुकी है, उसमें शक इसी गिरोह पे जताया जा रहा है कि ये लोग यूपी से शराब ला करके मध्य प्रदेश में बेचते थे और उसी का सेवन करके ये लोग मरे। अब सवाल है कि यूपी पुलिस ने जिस गिरोह को पकड़ लिया था 2 महीने पहले ही, और मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस को या फिर आबकारी को इस बात की भनक थी, तो फिर कोई एक्शन या फिर कोई चेक क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये सीमावर्ती जिला है सागर जो है, इसके बाद आगे ललितपुर जिला लग जाता है, तो फिर जांच क्यों नहीं की गई, नजर क्यों नहीं रखी गई? और जब इतना बड़ा इनपुट था तो फिर उस वक्त समय पर अगर कार्रवाई हो जाती तो शायद ये लोग बच जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए सवाल पूरे आबकारी विभाग पे खड़े हो रहे हैं, पुलिस पे खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार यूपी पुलिस ने जब पकड़ लिया था तो उसके बाद समय
0: उसके बावजूद भी समय रहते कार्रवाई बड़ी तरीके से क्यों नहीं हुई, और कैसे आसानी के साथ इतनी जहरीली शराब को सप्लाई करने में ये कामयाब रहे? आप बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। हम आगे बढ़ेंगे और अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि सागर जहरीली शराब कांड को लेकर सीएम मोहन यादव ने भी साफ शब्दों में कहा है कि संबंधित मंत्री और अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और जांच भी कराएंगे। हमारी सरकार ऐसी घटनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी।
3: मैंने अपने प्रभारी मंत्री से कहा है, अधिकारियों से भी कहा है कि वो वहाँ तुरद्वजी से एक तो हम कठोर से कठोर कार्रवाई भी करेंगे, जांच भी निकालेंगे, और इस तरह की घटनाओं को हमारी सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी।
0: आगे बढ़ेंगे और ये खबर है महाराष्ट्र के पालघर से, जहां दही हांडी उत्सव के बाद घायलों के इलाज को लेकर अस्पताल में जमकर जबरदस्त हंगामा हुआ है। और अब इस पूरे मामले में शिवसेना शिंदे गुट के जिला अध्यक्ष समेत 17 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। आरोप अब यह है कि पालघर के रिलीफ हॉस्पिटल में डॉक्टर से गाली गलौज की गई, अस्पताल कर्मचारियों को थप्पड़ मारे गए, धमकियां दी गई, आईसीयू में घुसकर मरीजों को डिस्चार्ज करने का दबाव बनाया गया और उसके बाद जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी है। एफआईआर में शिवसेना शिंदे गुट के जिला अध्यक्ष कुंदन संखे, विधायक हैं राजेंद्र गावित और उनके बेटे रोहित गावित, पालघर शहर प्रमुख राहुल घरत और नगर सेवक नीलम संखे समेत कुल 17 लोगों के नाम हैं इसमें, जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी मुस्तफा शेख जुड़ गए हैं। मुस्तफा, ये गुंडागर्दी हॉस्पिटल्स में लगातार जारी है, इससे पहले भी हम कई केसेस अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं कि कैसे सरेआम अस्पताल में डॉक्टर्स पर, मरीजों पर ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं। इस पूरे मामले में अब प्रशासन की तरफ से क्या एक्शन लेने की बात हो रही है?
4: शिवसेना के खुद पालघर के जिला अध्यक्ष कुंदन सांखे इसमें है, वहाँ के शिवसेना के जो एमएलए है राजेंद्र गावित, उनके बेटे रोहित गावित इस मामले में है। तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये आप पूरा जो है एक बड़े पैमाने पर ये जो हमला हुआ है, पैसे को लेकर के बात हुई थी, कुछ गोविंदा पथक जो आए थे जो जख्मी थे उनका सीटी स्कैन क्यों किया गया, 10,000 रुपया बिल होना चाहिए था, 20,000 रुपया बिल क्यों हुआ, इस पूरे मामले को लेकर के आप कह सकते हैं कि मारपीट हुई है, जो उधर हॉस्पिटल स्टाफ है उनको थप्पड़ मारा जा रहा है, लोग इधर घुसे हुए हॉस्पिटल में, पूरे जो आप कह सकते हैं कि जो स्थिति है वो सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने 17 लोगों को इस केस में आरोपी बनाया है, आगे की तफ्तीश शुरू है। लेकिन जिस तरह से इससे पहले भी डॉक्टर के ऊपर हमला हुआ था, शिवसेना के ही पार्षद उस समय भी थे और आज भी शिवसेना के लोग ही है जो ये हमला कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्टेट के ऊपर एक सवाल उठता है कि जब जो सत्ता में लोग हैं वही कानून का पालन नहीं करेंगे तो बाकी लोगों से क्या अपेक्षा रखी जा सकती है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो तमाम जो फुटेज है वो सामने आई है कि किस तरीके से जबरदस्त तरीके से मारपीट हॉस्पिटल के भीतर की जा रही है और इसी मामले में 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आगे बढ़ेंगे और ये खबर है बड़ी और महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से, जहां पर सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने मंदाकिनी नदी का सर्वेक्षण भी किया है, उसके बाद उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी और इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा है कि यूपी सरकार बाढ़ प्रभावितों के साथ खड़ी हुई है। तो मंदाकिनी में जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है, निचले इलाके पूरी तरह से डूबे हुए हैं। चित्रकूट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हैं, पहले पूरे के पूरे इलाके का उन्होंने जायजा लिया और फिर यहां पर जो राहत शिविर बने हुए हैं वहां उन्होंने राहत सामग्री बांटी।
5: आपदा की इस घड़ी में आप अकेले नहीं हैं, चाहे वह सामान्य परिवार हो व्यापारी हो, मठ मंदिर हो, घाट हो, इन सब को नुकसान जो भी हुआ होगा उन सब को हम लोग सरकार की ओर से सहयोग करने की व्यवस्था करेंगे और उन सब को हम लोग सहयोग भी करेंगे। दूसरा, मैंने पहले ही कह रखा है कि अगर बाढ़ की चपेट में या अग्निकांड की चपेट में किसी गरीब का घर आता है, किसी का घर आता है, पूरा घर जल जाता है, बाढ़ की चपेट में आके पूरा घर बह गया है, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता रखता तो प्रधानमंत्री आवास और नहीं तो मुख्यमंत्री आवास योजना में एक नया आवास और जमीन का पट्टा तत्काल दे दो।
0: तो योगी आदित्यनाथ की घोषणा आपने देखी और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ बाढ़ से बिहार में भी हाहाकार है। खास पेशकश 3:30 बजे आप जरूर देखिए। आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे जंतर मंतर पर दलित शख्स पर हमला करने के मामले में आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को जेल भेज दिया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसे पेश किया गया था जिसके बाद कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। कल एक बार फिर से इस मामले में सुनवाई होनी है। तो पटियाला हाउस कोर्ट में स्वतंत्र को जेल भेजा गया है, सुनवाई के बाद ये फैसला लिया गया है कोर्ट की तरफ से। और आपको ये भी बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सुनवाई हुई और उसके बाद कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। इस पूरे मामले पर एक बार फिर से कल सुनवाई होनी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, सबकी नजरें टिकी हुई थी जबरदस्त तरीके से जिस तरीके से जंतर मंतर पर दलित शख्स के साथ मारपीट हुई थी और हमला किया गया था, उसके आरोप में स्वतंत्र भारद्वाज को जेल भेजा गया है। पटियाला हाउस कोर्ट में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसे पेश किया गया और उसे जेल भेज दिया गया। और इस वक्त एक और बड़ी और अहम खबर आ रही है, बड़ी और अहम खबर, दिल्ली के सत्यानिकेतन में बड़ा हादसा हुआ है। जी हां, बड़ी और अहम खबर आ रही है जहां दिल्ली के सत्यानिकेतन में बड़े हादसे की तस्वीर है। ये जो बिल्डिंग है पूरी तरह से कोलैप्स हो गई है और आपको ये भी बता दें कि राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। जो आसपास के लोग हैं वो तुरंत ही यहां से घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश में है, लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के सत्यानिकेतन की तस्वीरें। सुबह से लगातार बारिश हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी अंशुल जुड़ गए। अंशुल, कितनी देर पहले की यह घटना है, क्या जानकारी मिल रही है, कितने लोगों के यहाँ फंसे होने की जानकारी है?
6: जी बिल्कुल, ये घटना जो हुई है करीब 1:51 की जो कॉल है वो फायर डिपार्टमेंट के पास गई और बताया ये गया कि एक बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स हो गई है। अभी इसके अंदर कितने लोग फंसे हैं इस पर अभी तक जो साफ जानकारी है वो सामने नहीं आ पाई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि कई लोग यहाँ पे फंसे हो सकते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जो सत्यानिकेतन है वो साउथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में आता है, तो वहाँ पर जिस लोकेशन पर ये हुआ हादसा हुआ है उसके आसपास एक हॉस्टल भी है, तो हॉस्टल में भी कुछ बच्चे थे, हो सकता है वो भी अभी तक मलबे के नीचे दबे हों। हालांकि जो दिल्ली पुलिस की लोकल टीम है और फायर डिपार्टमेंट की टीम है वो मौके पर पहुंच गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन को जोर शोर से चलाने का काम किया है। अब ये देखना होगा कितनी जल्दी ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होता है और जल्दी से जल्दी जो लोग अभी भी जिनकी आशंका है कि हो सकता है मलबे में दबे हों उन्हें जल्दी से जल्दी निकाला जाए।
0: तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं पुलिस की टीमें यहां पर मौजूद हैं, रेस्क्यू लगातार जारी है, कुछ कार्स यहां पर नजर आ रही हैं। अंशुल, हमें यह भी बताइए कि क्या साफ हो पाया है कि कितने लोगों की आशंका है, आसपास के लोगों ने कुछ बताया हो, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा मलबा नजर आ रहा है, इसे पूरी तरह से हटाने में काफी घंटे का समय लगेगा।
6: जी बिल्कुल, ये काफी बड़ा ऑपरेशन होने वाला है और हो सकता है अगर पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को ये लगा कि ऑपरेशन में ज्यादा समय लग रहा है तो एनडीआरएफ को भी यहाँ पे बुलाया जा सकता है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करने के लिए। जैसा मैंने बताया कि बगल में एक हॉस्टल भी था जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ छात्र मौजूद भी थे, तो हो सकता है वो छात्र भी इस मलबे के नीचे दबे हों, लेकिन एग्जैक्ट क्या नंबर है,
0: इमारत है, कितनी बड़ी इमारत थी और क्या यहाँ तक पहुंचने में जो तमाम बड़ी गाड़ियां होती हैं उनको अब मुश्किल तो नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किलें आती हैं दिल्ली की सकरी गलियों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में।
6: जी बिल्कुल, ये करीब 3 मंजिल ऊंची इमारत थी जो अचानक से कोलैप्स हुई है। हालांकि लोकेशन उतनी सक्रिय गलियों में नहीं है, लोकेशन ऐसी है कि वहाँ पे फायर की गाड़ियां पहुंच पाए और इसकी वजह से ही जो फायर की गाड़ियां हैं वो समय रहते वहां पर पहुंच गई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। करीब 6 गाड़ियां जो है फायर डिपार्टमेंट की वो लगातार अब काम कर रही हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हैं, बड़ी मशीनों से भी कटर्स लेकर के भी ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही
0: हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू करके यहाँ से ले जाया जा रहा है और ये बिल्कुल कुछ देर पहले की क्योंकि घटना है, बड़ी संख्या में देखिए किस तरीके से यहाँ से मलबे को हटाने का काम जारी है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, आसपास के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तुरंत ही कोशिश ये हो रही है कि अगर कोई दबा हुआ है तो जल्द से जल्द उसे निकाल करके अस्पताल पहुंचाया जा सके। और अभी आपने देखा होगा स्ट्रेचर पर एक शख्स को मलबे से निकालकर हॉस्पिटल ले जाते हुए कुछ लोग आपको नजर आए थे। अंशुल, एक और चीज यहाँ हम समझना चाहेंगे, क्या इस इमारत के बारे में जानकारी मिल पाई है, क्योंकि बारिश का मौसम है, जर्जर ये इमारत थी या कोई काम आसपास कंस्ट्रक्शन का चल रहा था जो इस हादसे की वजह बना?
6: जी, अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया है, ना ही ये अभी तक सामने आया है कि पुरानी कितनी पुरानी इमारत थी और क्या एमसीडी ने इसे पहले फ्लैग ऑफ किया था, क्योंकि एमसीडी का हर मॉनसून से पहले एक ड्राइव चलता है जिसमें एमसीडी ये सुनिश्चित करती है कि जो भी ऐसी इमारतें हैं जिनमें लगता है कि उनकी हालत जर्जर हो गई है और गिर सकती है उन्हें नोटिफाई करते हैं और उन्हें खाली कराने का भी काम करते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा अभी व्यतीत नहीं हो रहा कि पहले से एमसीडी ने इस इमारत को फ्लैग ऑफ किया था और अभी तक आसपास भी किस तरीके का काम चल रहा था इस पर भी कोई ज्यादा क्लैरिटी नहीं आई है। अभी जो सूत्र दावा कर रहे हैं कि अभी पूरा फोकस जो है ये सुनिश्चित करने में है कि जो लोग भी जो बच्चे अगर नीचे फंसे हैं उन्हें जल्दी से जल्दी निकाला जा सके ताकि उनकी जान बचाई जा सके और बाकी आगे की कार्रवाई बाद में देखी जा सकती है। लेकिन अभी जो पूरा फोकस है सुरक्षा एजेंसियों का फोकस है वो यही सुनिश्चित करने में है कि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें जल्दी जिंदा बाहर निकाला जा सके।
0: अंशुल, एक और चीज हमें बताइए, क्या ये साफ हो पाया है कि जो ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई है ये हॉस्टल की ही बिल्डिंग है, यहाँ पर हॉस्टल वाले स्टूडेंट्स थे या रिहायशी इमारत थी?
6: जी, बताया जा रहा है कि यहाँ हॉस्टल पीजी टाइप हॉस्टल जो है वो यहाँ पर चलाया जाता था तो हॉस्टल के काफी सारे बच्चे जो हैं वो हॉस्टल में मौजूद थे। लेकिन जैसा अभी लॉन्ग वीकेंड चल रहा था तो इसलिए अभी तक क्लैरिटी नहीं मिल पाई है कि कितने बच्चे अभी हॉस्टल में मौजूद थे, कितने बच्चे घर चले गए थे और इसी के चलते दिल्ली पुलिस और प्रशासन को ये सुनिश्चित करने में काफी दिक्कत हो रही है कि आखिरकार कितने लोग मौजूद थे और कितने लोगों की सर्च अभी वो कर रहे हैं। अभी एक ब्लाइंड सर्च ऑपरेशन हम कह सकते हैं चल रहा है जिसमें ये ढूंढने की जगह जगह टेक्नोलॉजी यूज करके ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स और ये बाकी तरह की तमाम चीजें भी मंगाई गई हैं स्पॉट पर जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि अगर मलबे के नीचे कोई भी दबा है, किसी भी तरह की जान है तो उसे जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई करके वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्कुल फोकस तरीके से शुरू किया जा सके।
0: नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से मलबे को हटाने का काम लगातार यहाँ पर जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद ओझा जुड़ गए। अरविंद, प्रशासन की तरफ से कौन कौन सी टीमें यहाँ पर मौजूद है, क्या तस्वीर साफ हो पाई है कि आखिर कितने लोगों के या कितने स्टूडेंट्स के यहाँ दबे होने की आशंका है?
7: देखिए, अभी कोई एग्जैक्ट फिगर सामने नहीं आया शशि, क्योंकि 1:35 पर फायर डिपार्टमेंट को ये कॉल मिली है कि जो दक्षिणी दिल्ली का सत्य निकेतन इलाका है यहाँ पर एक बिल्डिंग गिर गई है। उसके बाद अगर आप तस्वीरों में देखें तो सबसे पहले जो राहत और बचाव का काम जैसा होता है लोकल लोगों ने रेस्क्यू किया और कुछ लोगों को निकालने का काम भी किया और फायर डिपार्टमेंट की टीम तकरीबन 8 गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची है तमाम संसाधनों के साथ। वहीं दिल्ली पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची है। एग्जैक्ट कितने लोग दबे हैं इसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन जो लोकल लोग हैं, जो बिल्डिंग ये गिरी है उसके मुताबिक कई लोग इसमें दबे हो सकते हैं। कुछ लोगों को बाहर भी निकाला गया है। जब बिल्डिंग गिरी है तो उसका कुछ मलबा कुछ गाड़ियों को भी अपने चपेट में लिया जिससे गाड़ियों को नुकसान हुआ है। कि कुछ कितनी इंसानी जान है बिल्डिंग में उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और साथ ही साथ जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी चलाया जा रहा है।
0: देखिए, सबसे पहले तो प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू को खत्म किया जा सके। और अरविंद, हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से स्ट्रेचर पर यहां से लोगों को निकालकर ले जाया जा रहा है और लगातार मलबे को हटाने का काम जारी है, लेकिन काफी बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है, मलबों का ढेर यहां पर नजर आ रहा है। सवाल अभी है कि प्रशासन की तरफ से कौन कौन सी टीमें यहाँ राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं?
7: अभी देखिए, फिलहाल जो दिल्ली पुलिस की टीम है, फायर डिपार्टमेंट की टीम है, ये दो टीमें हैं और राइट सी बात है एनडीआरएफ की टीम को भी दिल्ली पुलिस ने कॉल किया होगा तो एनडीआरएफ की टीमें भी मूव करेंगी। लेकिन फिलहाल लोकल लोग, दिल्ली पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की टीम, ये तीन टीमें मिलकर लोकल लोगों के सहयोग से ये लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं और कुछ लोगों को रेस्क्यू भी किया गया स्ट्रेचर में लेकर, जैसा आपने बताया भी और तस्वीरों में दिख भी रहा है जो हमारे पास भी तस्वीरें आई हैं। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस फायर डिपार्टमेंट की टीम ये दो टीमें हैं और साथ ही साथ लोकल लोग जो है उनका भी सहयोग रहा है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब भी बिल्डिंग गिरती है तो आसपास के लोग दिल्ली वाले वो एक दूसरे को सहयोग करने लगते हैं। तो फिलहाल दो टीमें इस राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। अब ये बिल्डिंग कैसे गिरी ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन
0: आसपास के लोगों ने कोई जानकारी दी अरविंद के आखिर बिल्डिंग के गिरने की वजह क्या रही? जर्जर थी इमारत या फिर कोई आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, आखिर वजह क्या रही? और हालांकि जैसा कि आप कह रहे हैं कि आसपास के लोग यहां पर मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मलबे में जिंदगी है या नहीं ये काम करने के लिए बहुत जरूरी है। पहले साफ हो पाए कि कितने लोग इस बिल्डिंग में थे, कहां कहां लोग फंसे हो सकते हैं, ये भी तस्वीर थोड़ी साफ हो।
7: वजह के बारे में तो भी जानकारी जुटाई जाएगी, लेकिन अमूमन ये देखा गया है और बीते दिनों साउथ दिल्ली में भी देखा गया है कि जरूरत से ज्यादा जो निर्माण काम है वो किया जाता है और साथ ही साथ बीते दो दिनों से दिल्ली में भारी बारिश भी हो रही है, तो ऐसे में जो पुराने और जर्जर मकान है वो भी गिरते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए दबे होने की, तो कुछ लोगों के दबे होने की कॉल वो 1:35 पर फायर डिपार्टमेंट की टीम को मिली और जब तस्वीरों में देखा भी गया कि कुछ लोग दबे भी गए, दबे थे जिनको रेस्क्यू भी किया गया। अब कितने लोग एग्जैक्टली दबे हैं ये जब पुलिस की टीम छानबीन करेगी तभी पता चल पाएगा, लेकिन मलबा हटाने का काम तो शुरू किया ही गया है और उसका नतीजा ये निकला कि कुछ लोगों को जो बिल्डिंग में दबे थे उनको निकाला ही गया।
0: आप बने रहे हमारे साथ, तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कुछ देर पहले की ये घटना है, दिल्ली के सत्या निकेतन इलाके में ये हादसा हुआ है जहाँ बिल्डिंग भरभरा कर गिरी है। बिल्डिंग किस वजह से गिरी ये साफ नहीं हो पाया, कितने लोग इसमें मौजूद थे ये भी अभी तस्वीर साफ नहीं है। पहली प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द इस मलबे को हटाकर यहाँ से लोगों को निकाला जाए, जिंदगियों को बचाया जाए और कई लोगों को यहाँ से निकालकर अस्पताल भी पहुंचाया गया है। तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे थे, आसपास के लोग यहाँ लगातार मदद के लिए आगे आए हैं और आपको ये भी बता दें कि पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड यहाँ पर मौजूद है। जल्द से जल्द कोशिश हो रही है कि मलबे को हटाकर यहाँ अगर कोई जिंदगी फंसी है तो उसे निकाल लिया जाए। हॉस्टल यानी कि एक पीजी की तरह इस बिल्डिंग को इस्तेमाल किया जा रहा था ये जानकारी अभी सामने आई है। हालांकि पुख्ता तौर पर कितने लोग उसमें मौजूद थे, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड रहा है, लोग वापस आए थे या नहीं आए थे, बिल्डिंग के गिरने की वजह क्या रही है ये अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं आपको अरविंद, यहाँ बहुत सारे सवाल छूटते हैं और बहुत सारे जैसे आपने कहा ना कि लगातार जो कंस्ट्रक्शन है पैरामीटर्स को फॉलो ना करना, बहुत सारी अलग अलग वजह इस बिल्डिंग के गिरने की हो सकती है, लेकिन मलबा इतना ज्यादा है इसे हटाने में बड़ा समय लगेगा और आसपास के लोगों को हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एकजुटता के साथ वो इस रेस्क्यू में लगे हुए हैं। सवाल फिर से वही, क्या आसपास के लोगों ने कोई जानकारी दी है कि लगभग कितने लोग इस बिल्डिंग में रहे होंगे उस समय?
7: देखिए एग्जैक्ट फिगर तो जाहिर सी बात है अभी नहीं है, क्योंकि जो बिल्डिंग का ऑनर है उससे दिल्ली पुलिस की टीम संपर्क कर रही है, जिसके बाद ये पूरा पूरी जानकारी को सामने आएगी।
0: पर कई लोग फंसे हुए ये साफ हो गया है, अभी भी फंसे हुए हैं इस मलबे में लोग।
7: 1:35 पर जब कॉल मिली है तो कॉल ही यही मिली है फायर डिपार्टमेंट को कि एक बिल्डिंग गिरी है और उसमें कुछ लोग दबे हुए हैं, और लोकल लोगों ने जो शुरुआती जानकारी दी है उसमें भी यही बताया गया कि कुछ लोग दबे हैं। और जो तस्वीरें सामने आई उससे इस बात की पुष्टि भी हुई, तस्दीक भी हुई, कुछ लोगों को निकाला भी गया, अभी कुछ लोग इस मलबे में दबे भी है ये भी जानकारी है। एग्जैक्ट नंबर अभी नहीं पता चला है, इसके लिए जो जो मालिक है उससे कॉन्टेक्ट किया है दिल्ली पुलिस की टीम ने और साथ ही साथ राहत और बचाव का काम वो शुरू किया गया है। फायर डिपार्टमेंट के पास इस तरह के संसाधन होते हैं शुरुआत में कि वो उन संसाधनों के जरिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाए, लेकिन उसके बाद फिर जो एनडीआरएफ की टीम है उनको भी कॉल दिल्ली पुलिस करती है जिस तरह का नीड टू नो बेसिस पर, तो वो बिल्कुल है, लेकिन दिल्ली पुलिस की टीम, फायर डिपार्टमेंट की टीम और शुरुआत में लोकल लोगों ने जितना बन पड़ा उस हिसाब से रेस्क्यू भी किया और लोगों को बाहर निकाला।
0: और क्या ये साफ हो पाया है कि कितने लोगों को इस मलबे से निकाला जा चुका है, निकाला जा सका है? कुछ तस्वीरें तुम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं स्ट्रेचर से ले जाते हुए कुछ लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल की तरफ।
7: बिल्कुल, 2 से 3 लोगों को निकाला जा चुका है अभी इसमें से, और एग्जैक्ट नंबर चूंकि कुछ देर पहले की घटना है, एग्जैक्ट नंबर दिल्ली पुलिस साझा करेगी, लेकिन प्राथमिकता यही है कि अगर कोई इसमें फंसा है तो उसे जल्द से जल्द निकाला जाए और उसे बचाया जा सके। अब अगर जो आपने बोला भी शशि, देखिए बीते दिनों जिस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिली है अमूमन, उसमें यही हुआ है कि जो नियमों को अनदेखी करके अगर 3 मंजिले की इजाजत थी तो 4 मंजिले बनाया गया, उसके अलावा या तो जर्जर इमारत होती है, तो ये तमाम वजहें होती हैं। इस बिल्डिंग के गिरने की क्या वजह है ये इन्वेस्टिगेशन के बाद साफ हो पाएगा, लेकिन जो तस्वीरें हैं जाहिर सी बात है वो भयावह, उसमें पूरी तरह से दिख रहा है कि जो बिल्डिंग है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, उसका मलबा बिखरा पड़ा हुआ और मलबे में कुछ लोग दबे थे, उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है।
0: एक और मुश्किल बहुत ज्यादा पेश आती है दिल्ली NCR में, बहुत सकरी गलियां होने की वजह से एक्सकवेटर या फिर बाकी के जो वाहन जो इतने बड़े मलबे को हटाने में कामयाब हो वो यहां तक नहीं पहुंच पाते, क्या ये साफ हो पाया है कि एरिया कैसा है और यहां तक इस तरह के व्हीकल्स को पहुंचने में मुश्किलें ना पेश आए?
7: शक्ति निकेतन जो है वो कंजेस्टेड एरिया है, कई इमारतें हैं, लेकिन इन इलाकों में ये पहुंचने में जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें उनको बहुत दिक्कतें वो सामने पेश नहीं आ रही है, लेकिन जो हमने बताया शक्ति निकेतन ये जो साउथ दिल्ली का इलाका दक्षिणी दिल्ली का इलाका है ये कंजेस्टेड और भीड़ भाड़ वाला इलाका, यहाँ कई इमारतें हैं और ये भी जानकारी पुलिस को मिलती है कि इसमें से कई ऐसी बिल्डिंगें हैं जो नियमों को ताक पर रखकर बनाई भी जाती हैं, उनकी शिकायतें भी मिलती हैं, वक्त वक्त पर कार्रवाई होती भी है, कई बार इस तरह का होता है कि कार्रवाई नहीं होती है, तो अब ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन का विषय है शशि, लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर और लोग दबे हैं तो उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके।
0: आप बने रहे हमारे साथ, एक बार फिर से आज तक के दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं और खबर एक बार फिर से बता दें, दिल्ली के सत्य निकेतन में बड़ा हादसा हुआ है, एक बिल्डिंग भरभराकर गिरी है, 3 मंजिला इमारतें बताई जा रही है, गिरने की वजह क्या रही है साफ नहीं हो पाया, लेकिन तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं मलबे का ढेर है यहां पर, और कहा जा रहा है कि यहां पर पीजी चलाई जा रही थी, तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के इसमें फंसे होने की आशंका है, हालांकि नंबर अभी साफ नहीं हो पाया है, लॉन्ग वीकेंड होने की वजह से हो सकता है कि यहां पर कम लोग हो क्योंकि ज्यादातर लोग छुट्टियों पर चले गए थे, और आपको ये भी बता दें कि बिल्डिंग के गिरने की वजह क्या रही है, कितने लोग इसमें फंसे हुए हैं और कितने लोगों को अभी बचाया जा सका है, इसके बारे में पुख्ता तौर पर कुछ साफ नहीं किया गया है, लेकिन आज तक लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, साथ ही यहां से स्ट्रेचर पर ले जाते हुए लोगों को भी हमने दिखाया कि किस तरीके से रेस्क्यू लगातार जारी है, आसपास के लोगों ने तुरंत ही पुलिस को इत्तला दी और उसके बाद यहां मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया। आपको यह भी बता दें कि पुलिस टीम यहां पर मौजूद है, साथ ही साथ आसपास के तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड यहां पर मौजूद है और सबसे पहले कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द इस मलबे को हटाकर अगर कोई जिंदगी इस मलबे के भीतर फंसी हुई है तो उसे बचाया जा सके, उसकी जिंदगी को निकाला जा सके। हालांकि भी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, लगभग आधे घंटे का समय हुआ है जब ये बिल्डिंग भरभराकर गिरी है, वजह क्या रही है ये साफ नहीं हो पाया है बिल्डिंग के गिरने की, लेकिन लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है और ऐसे में खासतौर से तमाम नियमों की अनदेखी करना, नियमों की धज्जियां उड़ाना, तमाम पैरामीटर्स को फॉलो न करना और या फिर आसपास बहुत कंस्ट्रक्शन होना, कई या जर्जर बहुत ज्यादा इमारत हो जाना, कई अलग अलग कारण होते हैं इस तरह जब बिल्डिंग धराशायी होती है उसके। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं आज तक पर, तस्वीरें दिल्ली के सत्य निकेतन इमारत में, 3 मंजिला इमारत धराशायी हुई है, अब से कुछ देर पहले की घटना है, मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है, आसपास के लोग लगातार इस मलबे को हटा रहे हैं और आपको बता दें कि कई लोगों के फंसे होने की इसमें आशंका जताई जा रही है, 3 मंजिला इमारत बताई जा रही है, कितने लोग उस वक्त घर में मौजूद थे ये साफ नहीं हो पाया है, ये जरूर पता चला है कि यहाँ एक PG चलाया जा रहा था, कहा यह भी जा रहा है कि लॉन्ग वीकेंड की वजह से हो सकता है कि लोग यहाँ कम हो, मतलब पीजी में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कम हो, लॉन्ग वीकेंड से लौट कर ना आए हों, लेकिन कई लोगों को बचाकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो मलबे का ढेर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये इमारत धराशायी हुई है, जिसमें से जिंदगी को बचाने का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है, टीम यहाँ पर पुलिस की भी मौजूद है, फायर ब्रिगेड की भी मौजूद है, आसपास के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, हथौड़े चलाकर यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े जो मलबे के ढेर है उन्हें हटाया जा रहा है। अरविंद, अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो इस मैकेनिज्म के साथ तो बहुत समय लगेगा, बहुत मुश्किल होगी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म करने

0: कि आखिरकार इसमें क्या कोई लोग भी जो है वो दबे हो सकते हैं, बच्चे जो खासतौर पर साउथ दिल्ली के जो कैंपस में पढ़ते हैं वो भी हो सकता है कि इस पूरे हादसे का शिकार ना हो। फिलहाल पुलिस और जो फायर की टीमें हैं वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। आसपास के तमाम जो स्टूडेंट्स एरिया हैं वो भी आईसा और तमाम जो जेएनयू के अंदर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, साउथ कैंपस में पढ़ते हैं, वो भी वक्त मौके पर पहुंचे जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ जो हेल्प जो है वो कर रहे हैं।
1: तस्वीरें लगातार हम सुशांत दिखा रहे हैं, साथ ही एक और चीज हम समझना चाहेंगे, क्या ये थोड़ा सा भी साफ हो पाया कि आखिर कितने लोगों के यहाँ दबे होने की आशंका है? हालांकि उम्मीद की जा रही है कि लॉन्ग वीकेंड होने की वजह से हो सकता है स्टूडेंट्स वापस ना लौटे हों, वो छुट्टियों पर रहे हों, कम ही स्टूडेंट्स इस बिल्डिंग में मौजूद हों उस समय जिस समय ये भरभरा कर गिरी है।
0: देखिए फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी रहेगा, लेकिन फिलहाल कई सारे हो सकता है कि स्टूडेंट्स जो जिस तरीके की बात सामने आई, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था, राखी था, जन्माष्टमी थी, तो कई सारे स्टूडेंट्स जो है वो अपने घर भी गए थे फेस्टिवल के लिए। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो अगर यहाँ पर होंगे तो उनकी जो है दबे होने की आशंका जो है वो बनी हुई है, लेकिन फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है।
1: तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, फायर टेंडर्स की कई गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस यहां पर मौजूद है, आसपास के लोग यहां मौजूद हैं, और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है। स्ट्रेचर पर हम उस शख्स को दौड़कर ले जाते हुए लोगों को भी दिखा रहे हैं जिसे मलबे से निकाला गया, और इसी तरह कहा जा रहा है कि कई और लोग यहां फंसे हो सकते हैं और उसी जिंदगी को तलाशने के लिए इस मलबे को लगातार हटाने का काम जारी है। आपको ये भी बता दें कि अब से कुछ ही देर पहले की घटना है, भरभराकर ये इमारत गिरी है, साफ नहीं हो पाया कि इमारत के गिरने की वजह क्या रही है, लेकिन ये भी साफ नहीं है अभी तक कि कितने और लोग इसमें दबे हो सकते हैं। देश की राजधानी में बहुमंजिला इमारत गिरी है और इस हादसे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में हुआ है ये हादसा, जहां बहुमंजिला इमारत के गिरने के बाद अफरा तफरी मच गई और उसके बाद तुरंत ही पुलिस को इत्तला दी गई, आसपास के लोगों ने तुरंत ही मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया था। सुशांत, अगर आप हमारे साथ हैं, आसपास के लोगों से कोई और जानकारी मिल पाई है इस घटना के बारे में? सुशांत के साथ भी संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और आपको बता दें कि लगातार हमारी तरफ से भी कोशिश हो रही है कि तमाम जानकारी जुटाई जाए। हालांकि पुलिस और प्रशासन की पहली प्राथमिकता ये है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू को खत्म किया जा सके, क्योंकि मलबे का ढेर आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ पर लगातार काम करते हुए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एकजुट होकर पहली और आखिरी जो प्राथमिकता है वो ये कि जल्द से जल्द इस मलबे को हटाया जाए, और अगर कोई जिंदगी इसमें फंसी हुई है, कोई अगर इंसान इसमें फंसा हुआ है, तो उसे रेस्क्यू करके तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया जाए। बड़े बड़े गर्डर, बड़े बड़े जो कंक्रीट के स्लैब्स हैं वो आप देख सकते हैं, और इसीलिए घबराहट आसपास के लोगों की भी बढ़ गई है। आप अंदाजा लगाइए उन परिवारों का, जिनको ये अंदाजा होगा कि उनके बच्चे सत्य निकेतन इलाके में रहते हैं और वहां बिल्डिंग भरभरा कर गिरी है। हालांकि उम्मीद ये भी की जा रही है कि लॉन्ग वीकेंड की वजह से हो सकता है कि इस बिल्डिंग में उस समय कम लोग रहे हों, कम स्टूडेंट्स रहे हों, लेकिन फिर भी कई छात्रों के फंसे होने की आशंका है। इस इमारत के धराशायी होने की वजह क्या है ये साफ नहीं हो पाया, हालांकि आसपास कंस्ट्रक्शन का काम होता हुआ नजर तो नहीं आ रहा, कम से कम इन वीडियोज और पिक्चर्स में। दो दिन से लगातार हो रही बारिश और तमाम जो पैरामीटर्स हैं कंस्ट्रक्शन के, उन्हें धता बताते हुए जो तमाम निर्माण कार्य होता है वो सबसे बड़ी वजह बनता है इस तरह बिल्डिंग कोलैप्स का। ज्यादा जानकारी के साथ अंशुल मौके पर मौजूद है। अंशुल, फिलहाल ताजा जानकारी क्या है, क्या साफ हो पाया है कि अभी कितना समय लगेगा और कितने लोग इसमें फंसे हो सकते हैं?
2: जी, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरीके से यहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप कितने लोग यहां फंसे हैं?
3: है? कौन है? हम यहीं के लोकल है।
2: हाँ, तो ठीक है, आप अपना काम कीजिए। आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं। पहले ये देखिए, यहाँ पे अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि कई सारे बच्चे जो हैं, बॉयज हॉस्टल था यहाँ पे, उसमें अभी भी दबे हुए हो सकते हैं। और अगर आप तस्वीरें देखें, कितनी मंजिल की थी बिल्डिंग?
3: ये 5 मंजिल की दिख नहीं
2: रही। 5 मंजिल की बिल्डिंग थी। कितने बच्चे हो सकते?
3: अभी पता नहीं। अभी
2: बॉयज हॉस्टल था।
3: हाँ,
2: तो एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लोकल्स की मदद से जो है यहाँ ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ को भी इस वक्त बुला लिया गया है। एनडीआरएफ की भी एक बटालियन जो है, एक टीम जो है, वो इस वक्त यहाँ पहुंच गई है और अभी धीरे धीरे वो यहाँ पे स्पॉट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि कितनी भारी

0: संख्या में जो यहाँ लोकल्स हैं वो लोकल्स लोकल जो हैं यहाँ मदद कर रहे हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं। अभी ये बड़ी मशीन, अभी जो मशीनें हैं, जो कटर्स हैं, हैवी कटर्स हैं, बोल्डर कटर्स हैं, उन्हें भी अभी लेकर के यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो इस वक्त यहाँ आई है। और ये 5 मंजिला इमारत बताई जा रही है। अगर आप तस्वीरों में थोड़ा और क्लैरिटी से देखें यहाँ पर, तो ये देखें आप, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग थी और ये काफी बड़े इलाके में जो है ये पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर एक बॉयज हॉस्टल था और उसे बॉयज हॉस्टल में जो है इस ये पूरा हादसा हुआ है। तो आप और थोड़ा हम आगे जाके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो विजुअल्स हैं यहाँ पे, जो आपको अभी लाइव यहाँ ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, भारी संख्या में जो है यहाँ पे लोकल जो है स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कराने में मदद कर रहे हैं। चारों तरफ से रास्ते जो हैं यहाँ बंद कर दिए गए हैं। और मलबा देखें, ये मलबा कितनी भारी संख्या में जो है यहाँ मलबा इकट्ठा हो गया है। फायर के कुछ जवान यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन उनसे ज्यादा यहाँ लोकल्स इस वक्त दिख रहे हैं जो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को करा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे लगता है कि किसी तरीके की जानकारी मिली है। और अब जो लोग हैं यहाँ पर, वो जो एम्बुलेंस है वो जा रही है, जो रेस्क्यू ऑपरेटर्स हैं हॉस्पिटल के जो लोग हैं वो अब जा रहे हैं निकालने के लिए। उसके अलावा आप देखें यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, और इस गाड़ी की हालत अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि यह हादसा जो था ये कितना अचानक और कितना भयानक तरीके से हुआ। ये ब्रीजा गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, और ये ब्रीजा गाड़ी पूरी तरीके से जो है मलबे के नीचे इस वक्त दबी हुई है, जो कि बिल्डिंग के बिल्कुल सामने थी। तो यहाँ के जो लोकल MLA हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर पहुंच गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत डरावना है। अभी तक ये क्लैरिटी नहीं मिल पाई है कि कितने लोग हो सकते हैं जो इसमें दबे हो। तो एक तरीके से जो ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है, ये ब्लाइंड रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है, और ये सुनिश्चित करने की कोशिश, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इतने बड़े इलाके में वो कौन कौन सी जगह है जहां पर लोग दबे हुए हो सकते हैं, और उन्हीं जगह पर स्पेसिफिकली ध्यान देकर के जो खुदाई का काम है, मलबा हटाने का काम है, वो किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हादसा एक बार फिर से दिल्ली में हुआ है। कितने लोग अभी इस मलबे में दबे हुए हैं, इस पे अभी तक किसी भी तरह की जो क्लैरिटी है वो हमें नहीं मिल पाई है। प्रशासन ये अभी जो प्रशासन बता रही है हमें, जो फोकस है उनका ये सुनिश्चित करने में है कि जो ये जो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन है ये जल्दी से जल्दी किया जा सके, और ताकि जो लोग इस मलबे में दबे हैं, जिनको हो सकता है अभी काफी गंभीर चोटें भी आई हों, उन्हें सावधानी से निकाला जा सके, उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन काफी ज्यादा जो है यहाँ पर माहौल जो है अफरा तफरी का इस वक्त दिखाई दे रहा है। NDRF की मैं आपको दिखाऊं तो अब NDRF के जवान भी जो हैं वो यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए हैं, और मौके का जायजा लेकर के अपने ऑपरेशन कैसे करना है इसको अब प्लान करना शुरू करेंगे। तो काफी जो सेंट्रल सपोर्ट है वो भी यहाँ पर आ गया है, लोकल पुलिस भी यहाँ मौजूद है, फायर डिपार्टमेंट मौजूद है, एम्बुलेंस भी मौजूद है, और जैसे ही लोग निकल रहे हैं पैरामेडिक की टीम उन्हें तुरंत निकाल करके यहाँ से एम्बुलेंस में ले जाकर के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कर रही है। लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कितने लोग इस मलबे में दबे हैं, और क्या पहले से इसकी जानकारी थी कि जो बिल्डिंग की हालत है वो झरझर हालत में है, और अगर ये जानकारी थी तो कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया, किसकी लापरवाही की वजह से ये जो बिल्डिंग है कोलैप्स हुआ है, ये कुछ बड़े सवाल हैं जिन पे बाद में जांच होगी। लेकिन इस वक्त जो प्रशासन का फोकस है, जो पुलिस का फोकस है, जो फायर डिपार्टमेंट का फोकस है, वो ये सुनिश्चित करना है कि जो भी लोग इसमें दबे हुए हैं, मलबे के नीचे दबे हुए हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी निकाला जा सके, और जल्दी से जल्दी उन्हें मेडिकल सहायता दिलाई जा सके, ताकि कम से कम जो जान और माल का नुकसान है।
1: अंशुल, आप बने रहे हमारे साथ। प्रवेश वाही जो कि मेयर हैं, हम वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवेश जी, क्या जानकारी इस घटना के बारे में मिल पाई है? बहुत ही भयानक और दिल को झकझोरने वाली तस्वीरें, क्योंकि तमाम PG के स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं, और 5 मंजिला इमारत है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ रह रहे होंगे बच्चे।
2: मैडम, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और दुखी मन से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी मुझे पूरी जानकारी प्राप्त नहीं है, अभी कमिश्नर से बात हो रही थी, अभी हमारे उपायुक्त जो है वो वहां पर पहुंच रहे हैं कुछ देर में, अभी पूरी वस्तुस्थिति की जानकारी मिलने पर ही मैं बता पाऊंगा। लेकिन जो रेस्क्यू टीम है और जो MCD के और जो दूसरे डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पे चले गए हैं, और हम भी वहाँ पे जो भी बेहतर व्यवस्था होगी वो करने की कोशिश कर रहे हैं।
1: सर, ये साफ हो पाया कि कितने स्टूडेंट्स थे, और एक और चीज की क्या इस इलाके की इस बिल्डिंग के बारे में कोई जानकारी थी कि जर्जर है ये बिल्डिंग या कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, आपके पास क्या खबर है?
2: अभी मैडम बिल्कुल अभी नहीं, अभी मैं जानकारी ले रहा हूँ। अभी उपाय
3: पढ़ने आते हैं जो यहाँ पर पीजी में रह रहे थे, एक बिल्डिंग वो कोलैप्स कर गई है और एग्जैक्ट फिगर बताना मुश्किल है कि 10 बच्चे हैं, 20 हैं, 5 हैं, परंतु बच्चे उसके अंदर हैं, इसमें कहीं वो नहीं है। अभी दो बच्चों को निकालकर NTTRF और MCD और सभी पुलिस के डिपार्टमेंट ने उनको लेके गए हैं, उनको अभी अस्पताल भेजा है और बच्चे अंदर से, बल्कि कुछ बच्चे कॉल भी कर रहे हैं अंदर से, और अभी बच्चे काफ़ी, ऐसा लगता है कि बच्चे अंदर भी हैं, तो लगातार प्रयास कर रहे हैं, भगवान से भी प्रे कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पूरी टीम भेज दी है, माननीय सांसद जी, माननीय हर्ष मल्होत्रा जी लगातार फोन पे टच में हैं, वो पूरी सरकार इसकी स्थिति संवेदनशील है, इसको देख रही है कि कैसे भी करके बच्चे बचाए जाएं, पहला हमारा टारगेट ये है। अभी ये पूरी जांच का विषय है, पूरी जांच की जाएगी कि क्या विषय है, पर अभी ये है कि बिल्डिंग गिरी है और बच्चे उसमें, वो बहुत दुखदाई है कि बच्चे उसके अंदर दबे हुए हैं, अभी की लेटेस्ट ये इन्फॉर्मेशन है।
1: लगाइए, देश भर से बच्चे दिल्ली पहुंचते हैं पढ़ाई करने के लिए, तमाम ये पीजी के वही स्टूडेंट्स हैं जो यहां रहकर पीजी में पढ़ाई करते हैं, और ये 5 मंजिला इमारत बताई जा रही है जो धराशायी हुई है, बच्चे इसमें फंसे हुए हैं, लगातार इन्हें निकालने का काम जारी है। मौके पर फायर टेंडर्स मौजूद हैं, पुलिस की टीम मौजूद है, आसपास के लोगों ने पहले ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। अंशुल, सबसे बड़ा सवाल ये जो लगातार बातें कही जाती हैं कि प्रशासन पूरी मदद कर रहा है, एक तो ये जो तस्वीर है ना, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में यहां स्लैब्स के ऊपर भी लोग चढ़े हुए नजर आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो लोगों को हटाने की जरूरत है जिससे कि रेस्क्यू ठीक से शुरू किया जा सके, और क्या NDRF की टीम यहां पहुंच चुकी है?
0: जी हाँ, अभी तुरंत NDRF की टीमें पहुंची हैं और अब जो यहाँ पर लोकल्स हैं उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। पूरे इलाके को जो है, अब ये जो एक्सीडेंट साइट है उसे अब NDRF ने टेक ओवर कर लिया है, और यहाँ पर जो अन्य एजेंसी हैं, जो दिल्ली पुलिस और फायर डिपार्टमेंट है, ये तीनों मिलकर के अब ये लोकल्स को यहाँ से हटा करके पूरे जो क्राइम जो स्पॉट है उसे अब अपने कब्जे में ले लिया है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। आप देखें, ये दूसरी तरफ जो यहाँ अब छात्र हैं और जो बाकी अन्य लोकल लोग हैं यहाँ पे, उन्हें देखिए वो किस तरीके से पुलिस से कहीं ना कहीं थोड़ी धक्का मुक्की और ये करने की कोशिश कर रहे हैं, वो यहाँ से जाना नहीं चाहते। लेकिन अभी देखें, यहाँ जनरेटर लाया गया है और ये मेटल कटिंग मशीन्स लेकर आई गई हैं, जिससे अब जो मलवा है, जो बड़े बड़े पत्थर के पीसेस हैं, बोल्डर्स हैं, लोहा है, उन्हें काट करके जल्दी से नीचे तक पहुंचा जाए और ये पता लगा जा सके कि आखिर कहां कहां जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं। तो दूसरी तरफ आप देखें कि ये सारी गाड़ियां जो बाहर खड़ी थी, ये गाड़ियां भी पूरी तरीके से जो है मलबे के नीचे आ गई हैं। अब भारी मशीनों से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी जो जितना भी मलबा है, जितना भी लोहा यहाँ पे पड़ा है, उस लोहे को हटाया जाए और जल्दी से जल्दी निकाला जाए जो भी फंसे। आप देखें, एक और तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि ये NDRF के जो अधिकारी हैं, ये नीचे झुक करके सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर नीचे से किसी तरीके की आवाज आ रही है तो उसे जल्दी से जल्दी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए और जल्दी से जल्दी हटाया जाए। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जो है तनावपूर्ण अभी यहाँ पे माहौल बना,
4: लेकिन अभी तक जैसे भी नहीं आई है, बाकी सारी टीम आ गई है,
5: सारे पीछे के लड़के जितने सारे स्टूडेंट,
4: सारे स्टूडेंट आधे
5: तीन लोगों से चार लोग,
4: 35 सबसे मैं यहीं पर हूँ,
5: 35
4: इन लोगों ने जेसीबी अभी तक क्यों नहीं मंगा पाई है, पूछो पुलिस वाले से, पूछो अभी तक यहाँ पे लगभग मेरे हिसाब से 20 से 30 लोग आराम से फंसे हुए, बच्चे हाँ मेरे सामने गिरी हुई है बिल्डिंग, 50 से अधिक लोग हैं भैया, 50 से अधिक।
1: तो आप अंदाजा लगाइए, जो आसपास के स्थानीय लोग हैं ना, वो जानकारी दे रहे हैं कि 20 लोग हो सकते हैं, कोई कह रहा है 50 लोग हो सकते हैं, क्योंकि 5 मंजिला इमारत है और स्टूडेंट्स यहाँ रह रहे थे।
6: 1:30 बजे हम अंदर इतनी नहीं आई, जो बाहर बच्चे खड़े थे उनके पास आवाज आई, हम फटाफट भाग के आए, यहाँ पे बहुत ज्यादा धुआं वगैरह था, सारी बिल्डिंग गिरी हुई थी, और अभी इन्होंने यहाँ से मजदूर वगैरह निकाल लिए हैं, उनकी डेड बॉडी मिली है, और 4 बच्चे निकाले हैं जिनकी सांसें चल रही थी, वो अभी उनको एम्बुलेंस ले गई है, बट वो मतलब अधमरे की हालत में थे, तो उनके चांस मुश्किल है, बट उनकी सांसें चल रही हैं और अभी भी इस मलबे।
1: तो तो सुना आपने चश्मदीद जो तमाम बातें तमाम भयाब है जो घटना हुई है उसका जिक्र कर रहे हैं, उसके चश्मदीद जो वहां पर हैं आंखों देखी बता रहे हैं कि किस तरीके से लोगों से को यहां से निकाला गया है, रेस्क्यू करके सांसें जरूर चल रही हैं। तो चार स्टूडेंट्स के बारे में भी जानकारी मिल रही है, कई और स्टूडेंट्स के इसमें फंसे होने की आशंका है। और आप अंदाजा लगाइए कि 5 मंजिला इमारत है और इसमें अगर पीजी पूरे में चलाया जा रहा है तो कितनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स के यहां होने की संभावना है। अच्छी बात यह है, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद लॉन्ग वीकेंड की वजह से ज्यादा स्टूडेंट त्योहार होने की वजह से ना हो और उनकी जिंदगियां बच गई हो। और आप उन मां बाप के हालात के बारे में अंदाजा लगाइए जिनके बच्चे पढ़ने के लिए देश की राजधानी में हैं और इस तरह के पीजीज में रहकर जो पढ़ाई कर रहे हैं। और आपको यह भी बता दें कि लगभग 1:30 बजे घटना घटी है, 5 मंजिला इमारत बताई जा रही है, रेस्क्यू का काम लगातार जारी है और अब क्योंकि एनडीआरएफ की टीम भी यहां पहुंच गई है तो तमाम जो लोग यहां पहुंचे हुए उन्हें हटाने का काम जारी है जिससे कि बड़े स्तर पर युद्ध स्तर पर यह काम खत्म किया जा सके। बड़े बड़े जो गर्डर्स हैं जो कंक्रीट के स्लैब्स हैं वो साफ साफ नजर आ रहे हैं चारों तरफ पड़े हुए। और उन परिवारों के बारे में आप सोचकर देखिए जो लोग फंसे हुए हैं जिनके परिवार के लोग बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो। सत्यनिकेतन इलाके में ये घटना घटी है और 1:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है, वजह क्या ये साफ नहीं हो पाया है। सबसे पहले आसपास के लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था पुलिस को जानकारी देने के बाद। फायर टेंडर की 10 गाड़ियां यहां पहले से ही पहुंची हुई हैं, पुलिस यहां मौके पर मौजूद है। पहले हथौड़े से गर्डर्स और बाकी के स्लैब्स को तोड़ते हुए आपने देखा होगा और अब कहा जा रहा है कि तमाम मसाले के साथ जो तमाम इक्विपमेंट्स हैं एनडीआरएफ के पास उसके साथ जिससे कि आराम से रॉड्स को काटा जा सके स्लैब्स को काटा जा सके। और यहां पर अब देखिए क्रेन्स भी नजर आ रही है जिसका जिक्र अभी कुछ ही देर पहले एक चश्मदीद ने नाराज होते हुए कहा था जेसीबी मशीन यहां अभी तक क्यों नहीं बुलाई गई क्योंकि इतने बड़े बड़े हैवी स्लैब्स को हटाने के लिए कंक्रीट के जरूरी है कि इस तरह की मशीनें यहां पर हों। अंशुल तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुल, वाकई में दिल को दहलाने वाली तस्वीर खासतौर से ये सोचने के बाद कि इसमें अभी कई और स्टूडेंट्स के फंसे होने की आशंका है।
0: जी जी बिल्कुल, और जेसीबी की अगर बात करें तो यहाँ पे जेसीबी चलाना वो खतरे से खाली नहीं हो सकता क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि आखिर कितने लोग फंसे हैं और कौन कौन सी जगह फंसे हैं। अगर जेसीबी से मलबा हटाने के चक्कर में कुछ और लोग जो फंसे हुए हैं जो शायद इंजर्ड हो बस उनकी भी जान पर बना सकती है और इसीलिए जेसीबी का अगर हम देखें तो ज्यादा इस्तेमाल ऐसे सिचुएशंस में नहीं किया जाता। और जो प्रिसाइस हैवी टूल्स होते हैं जैसे बड़े ड्रिलर्स होते हैं स्टील कटिंग मशीन्स होती है उनका इस्तेमाल किया जाता है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये पता लग पाए कि कहां कहां लोग फंसे हैं। अभी इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे ये समझ आ गया है कि यहां पर लोग नहीं फंसे हैं जो बिल्डिंग के बाहर की लोकेशंस हैं वहां पर अब जेसीबी की कार्रवाई जो है वो शुरू होती हुई दिख रही है और बिल्डिंग के बाहर जहां गाड़ियों पर जो मलबा गिरा था उनसे अब मलबा हटाना शुरू किया जा रहा है। लेकिन बिल्डिंग जहां पर थी जहां लोग फंसे हुए हैं वहां पर अभी जेसीबी नहीं चलेगी, वहां पर अभी मेटल कटर्स चलेंगे, वहां पर अभी जीपीआर लगाया जाएगा, ये पता लगाया जाएगा कि कहां कहां लोग फंसे हैं और उसके बाद वहां से मैन्युअली डिग करके ही लोगों को निकालना होगा या फिर हैंड यूजेबल मशीन से ही लोगों को निकालना होगा। अगर आप देखें यहां पे अभी भी प्रशासन को बहुत मुश्किलें हो रही हैं लोगों को समझाने में कि ये जगह खाली कर दे क्योंकि ये जगह अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है, कहीं से भी मलबा और भी थोड़ा घिसा।
1: दूसरी बात है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी जगह खाली होना बहुत जरूरी है तभी इतने बड़े बड़े स्लैब्स एंड गर्डर्स को हटाया जा सकेगा। अंशुल एक और चीज बताइए, कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं ना जिनसे पता चल सके कि कहां जिंदगी हो सकती है जिससे कि पता चल पाता है कि यहां कोई फंसा हुआ है।
0: जी बिल्कुल, जनरली 2 टेक्निक्स होती हैं जो इमीडिएटली यूज की जाती हैं जिसमें पहला होता है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, जो जमीन के ऊपर से ही रडार होते हैं वो ये बता देते हैं कि कितनी गहरी और एग्जैक्ट किस लोकेशन पर है जहां पे जिंदगी फंसी हो सकती है। इसके अलावा जो लोकल पुलिस का केनाइन स्क्वाड होता है डॉग स्क्वाड होता है वो भी यहां पर काम आता है, वो भी सुन करके ये पता लगा सकता है कि आखिर कहां कहां एग्जैक्टली जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं। तो इन दोनों की मदद से ये एग्जैक्टली पता लगाया जाता है कि कहां पे फंसे हैं, फिर उस जगह प्रिसाइसली उसी जगह पे डिगिंग की जाती है और फिर वहां से लोगों को निकाला जा सकता है। लेकिन अभी एनडीआरएफ की टीम यहां पे पहुंच गई है और ये पता लगाने की खुद ही कोशिश कर रही है कि अभी भी कहीं लोगों की आवाज भी सुनाई दे रही है तो वो भी नीचे झुक झुक करके ये आवाज सुनने की कोशिश कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आवाज किस डायरेक्शन से आ रही है और फिर उस डायरेक्शन में जो है खुदाई का काम किया जा रहा है, रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। लेकिन ये बहुत अब लंबा और बहुत मुश्किल काम होने वाला है रेस्क्यू के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ये हजारों टन मलबा जो यहाँ पर जमा हो गया है, इस मलबे में से वो चुनिंदा जाने निकालना और उसके बाद इस मलबे को भी साफ करना और ये भी सुनिश्चित करना कि कोई भी अन्य आदमी या बॉडी कुछ भी अंदर ना फंसा हो, ये एक बहुत ही मुश्किल कार्य जो है ये होने वाला है रेस्क्यूअर्स के लिए। और ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे जो लोकल्स हैं, जो यहाँ आसपास रहने वाले छात्र भी हैं, वो भी बहुत गुस्से में हैं, उनका भी खून उबल रहा है कि किस तरीके से ये हादसा उनके दोस्तों के साथ हो गया है। तो वो ये जगह खाली नहीं करना चाह रहे, जिसके वजह से जो रेस्क्यूअर्स है उनका आधे से ज्यादा टाइम इनको कंट्रोल करने में और इनको साइड करने में ही साइड निकालने में ही लग जा रहा है। अभी और बैकअप फोर्स भी मंगाई गई है, जो बैकअप फोर्स एक आउटर पेरीमीटर बनाएगी और ये सुनिश्चित करेगी कि हर आदमी जो यहाँ पे फंसा है, जो हर आदमी जो यहाँ मदद के इंटेंशन से भी आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंटेंशन सिर्फ साबित नहीं हो पा रहा, क्योंकि अभी रेस्क्यू में जो फोकस है वो आइडेंटिफाई करना लोकेशन और रेस्क्यू करना लोकेशन है। अभी देखिए एक बॉडी निकाली गई है, एक बॉडी यहाँ से निकाली गई है। अगर आप तस्वीरों में देखें यहाँ पे, अगर आपको ये तस्वीरें मिल रही हैं, तो एक बॉडी इस वक्त यहाँ से निकाली गई है और ये बॉडी को लाकर के सीधा यहाँ एम्बुलेंस में लोड किया जा रहा है। बहुत बुरी हालत में जो बॉडी है वो है, हम शायद अपने दर्शकों को दिखा भी नहीं पाएंगे। लेकिन एक और आदमी को अभी यहाँ से रेस्क्यू किया है, लेकिन ये किस हालत में है, ये जिंदा है या इनकी मौत हो गई है, इस पे अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। अभी अस्पताल जाएंगे, फिर अस्पताल में डॉक्टर जांच करके बताएंगे।
1: अक्सर अंदाजा लगाइए कि पूरे देश से राजधानी पहुंचते हैं तमाम स्टूडेंट्स और इसी तरह के इलाकों में रहकर वो पढ़ाई करते हैं, पैसा भी एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट रहता है, और उस हालत में इस तरह की तस्वीरें, माँ बाप का क्या हाल होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि 5 मंजिला इमारत, तो सोचिए पीजी में कितने स्टूडेंट्स रहते होंगे। क्या अभी तक साफ हो पाई है तस्वीर कि लगभग कितने लोग थे इस बिल्डिंग में उस समय मौजूद?
0: जी बिल्कुल, इस पे अभी तक किसी भी तरह की कोई भी क्लैरिटी नहीं आ पाई है कि आखिरकार कितने लोग इस बिल्डिंग में मौजूद थे जिस वक्त ये हादसा हुआ, क्योंकि एक ही लॉन्ग वीकेंड था, लॉन्ग वीकेंड में कई छात्र ऐसे होते
1: हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि लॉन्ग वीकेंड में बड़ा त्योहार था, तो उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि यहाँ कम से कम स्टूडेंट्स हों। अब शायद कोई फंसा हुआ ही ना निकले, लेकिन फिर भी क्योंकि 5 मंजिला इमारत है, इसीलिए लगातार कुछ जो स्टूडेंट्स आप बता रहे थे कि बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, और उनका कहना यह है कि उनके फ्रेंड्स यहाँ फंसे हुए हैं।
0: जी बिल्कुल, सिचुएशन काफी ज्यादा तनावपूर्ण है। जो बाकी छात्र भी हैं यहाँ पर, उन्हें भी देख करके ये काफी घबराहट हो रही है कि किस तरीके से हादसा हुआ, और लाजमी सी बात है कि ऐसे सिचुएशन में जो आम जनता का गुस्सा होता है, वो गुस्सा जो इमोशन होते हैं वो काफी हाई चल रहे होते हैं, गुस्सा काफी ज्यादा होता है। खुद काम करके ये चाहते हैं कि लोगों को निकाला जाए, लोगों को निकाल सके, इनकी मदद कर सके, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी मदद होगी यहाँ पर जो NDRF की या रेस्क्यूअर्स की यहाँ के आम जनता कर पाएगी, वो ये है कि इस जगह को खाली छोड़ दिया जाए ताकि आराम से ये काम किया जाए। लेकिन बेचैनी है लोगों में, ये जानने की जिज्ञासा है कि आखिर उनके दोस्त किस हालत में है, क्या उन्हें निकाला भी गया है अभी तक यहाँ से या नहीं निकाला गया है, कहाँ फंसे हैं, कितने लोग फंसे हैं, कितने बच्चे थे, वार्डन था और अन्य कितने लोग थे, तो ये काफी बड़ा नंबर भी हो सकता है। लेकिन अभी भी कोई किसी भी तरह की जो ऑफिशियल कन्फर्मेशन है वो नहीं मिली है। आपको मैं दोबारा तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा यहाँ पे कि आप देखिए, अब जो ड्रिलिंग मशीन से हाथ से ड्रिल करके जो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं उन्हें हटाया जा रहा है, जो मेटल के पीसेस हैं उन्हें काटा जा रहा है, हथौड़े के मदद से भी उन्हें तोड़ा जा रहा है। तो काफी तेजी से जो है अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलता हुआ दिख रहा है। लेकिन लोकल्स का ये कहना है कि यहाँ पर पुलिस को आने में काफी समय लगा, फायर डिपार्टमेंट को भी आने में काफी समय लगा, और अब JCB भी अभी पहुंची है जिसने थोड़ा बहुत आगे से मलबा हटाया है। लेकिन अब ये देखना होगा कि कितनी जल्दी यहाँ पे ये जो कार्रवाई है ये करके ये सुनिश्चित कर पाए कि अगर कोई इस मलबे में अभी फंसा है तो उसे सुरक्षित और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालकर अस्पताल में एडमिट किया जाए।
1: तो मलबे से 3 लोगों को निकाला गया है, तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, भयानक तस्वीरें, बहुमंजिला इमारत बताई जा रही है, PG इसमें चलाया जा रहा था, साफ नहीं हो पाया कितने स्टूडेंट्स इसमें थे, लेकिन आपको बता दें कि 12 से ज्यादा फायर टेंडर यहां पर मौजूद हैं, JCB मशीन यहां पर मौजूद है, NDRF ने पूरा का पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि जगह को छोड़ दें, क्योंकि मलबा बहुत भारी है, गर्डर साथ ही साथ बड़े बड़े स्लैब्स, इन्हें हटाने में समय लगेगा। सबसे पहले कोशिश है कि जल्द से जल्द इस मलबे को हटाकर अगर कोई जिंदगी इसमें फंसी हुई है तो उसे तुरंत ही अस्पताल भर्ती करवाया जाए। एम्बुलेंसेस यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको ये भी बता दें कि सबसे पहले लोगों ने यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था, उन्होंने ही जानकारी पुलिस को दी। उन्हीं की नाराजगी है कि यहाँ पर जेसीबी देर से पहुंची और पुलिस भी देर से पहुंची। हालांकि राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। बहुत सारे सवाल हैं, कितने स्टूडेंट से ये साफ नहीं हो पाया, पीजी किसका है ये साफ नहीं हो पाया, कितने
7: ये हॉस्टल डेज नाम की बिल्डिंग है, इसके साथ एक और बिल्डिंग पीजी गिरी है। हॉस्टल डेज तो है, वो बॉयज पीजी है प्रॉपर, 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी ये, एंड इसके साथ बगल वाली बिल्डिंग भी गिरी है, एंड जो ये येलो वाली बिल्डिंग है ये दोनों हिल रही थी जब वो गिरी है। तो इन दोनों में भी पीजीज ही है और इनके एंट्रेंस एक उधर से एक पीछे की साइड से, दो साइड से एंट्रेंस है। और मलबे के चक्कर में इनका एंट्रेंस भी जहाँ तक है ब्लॉक हो चुका है। और 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी, जितने बच्चे रूम में थे वो तो सारे दब गए हैं, और जो बाहर थे बच्चे उनका पता नहीं है। और जितना भी रजिस्टर में एंट्रीज होंगे उसके हिसाब से ही पता चलेगा आप कितने बच्चे दबे हैं इसमें। ये ऑलमोस्ट 15-20 मिनट हो गया है बिल्डिंग गिरे हुए, और ये 15-20 मिनट से ही लगे हुए हैं, और ये सारा अपना जितना भी निकाल सकते हैं अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। कई बच्चे हैं जिनके पैर कटे हुए हैं, अलग कटा हुआ है, दब रखे हैं, खींच खींच के निकाल रहे हैं जैसे तैसे करके।
1: तो सुना आपने चश्मदीदों को, उनका कहना है कि दो बिल्डिंगें हैं जो धराशायी हुई हैं। जो बड़ा मलबा, टनो मलबा आप देख पा रहे हैं, ये दो बिल्डिंग्स का मलबा है जिसे हटाने का काम लगातार जारी है, जो बहुत बड़ा चैलेंज है। और यहां से लोगों को हटाने का अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो लोग रूम में थे, जो बच्चे रूम में थे क्योंकि पीजी चलाया जा रहा था, वो पूरी तरह से दबे हुए हैं, उन्हीं को निकालने के लिए लगातार कोशिशें मशक्कतें की जा रही हैं। पुलिस की टीम मौजूद है। सवाल फिर से वही, कितने स्टूडेंट्स से साफ नहीं हो पाया दो बिल्डिंग्स में, ये दोनों जो बिल्डिंगें हैं इसके गिरने की वजह क्या रही है ये साफ नहीं हो पाया है। लेकिन स्ट्रेचर पर ले जाते हुए लोगों को हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तुरंत ही मलबे से निकालकर लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 4 लोगों के निकाले जाने की जानकारी मिल रही है। हालांकि पुख्ता तौर पर कोई भी तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई है प्रशासन की तरफ से। बाहर है, फायर टेंडर यहां पर मौजूद है, पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम यहां पर मौजूद है, और कोशिश यही है, प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म किया जाए। जल्द से जल्द अगर कोई जिंदगी फंसी हुई है तो उसे निकाला जाए। और यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जहां जेसीबी का इस्तेमाल किया जाना है कि किसी भी तरह घायल या किसी को और ज्यादा चोटिल न करते हुए इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए। अंशुल, तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए अंशुल, अभी और क्या यहां पर चल रहा है, क्या लोगों को हटाने में कामयाब रही है पुलिस की टीम, क्योंकि कम लोग नजर आ रहे हैं। अभी एक और शायद शख्स को निकाला गया है अभी।
0: जी हाँ, एक और शख्स को अभी निकाला जा रहा है, ड्रिलिंग की जा रही है यहाँ पे। लेकिन अब ये मामला जो है थोड़ा राजनीतिक होता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि अब जो कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है NSUI, अब वो भी यहाँ पर पहुंच गई है और कह रही है कि हम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करेंगे, जिसके वजह से एक बार फिर से यहाँ पे जो भीड़ है वो इकट्ठा होते हुए दिख रही है। पुलिस से धक्का मुक्की करती हुई दिख रही है, बाहर जाने को तैयार नहीं है ये लोग। यहाँ पे कुछ चश्मदीद है, इनसे बात करेंगे। भाई साहब, आप लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स थे यहाँ पे, आपके सामने हुआ, कितने लोग होंगे इसमें फंसे?
8: 40 के आसपास।
0: और यहाँ पे पुलिस को आने में कितना टाइम लगा भाई? हाँ? पुलिस को आने में कितना टाइम लगा?
9: यहाँ ना पुलिस आई थी ना कोई आया, एनडीआरएफ एसडीआरएफ को बहुत टाइम लगा, स्टूडेंट थे जो सबसे आगे आए हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, पुलिस से कहो पहले इन्हें खाली कराए।
0: जैसा आपने सुना, यहाँ देखिए, यहाँ करीब करीब झड़प की जो हालात है वो यहाँ पर बन गए हैं। एनएसयूआई के कुछ लोग हैं। आप लोग खाली क्यों नहीं कर रहे अभी? सरकार काम तो बंद कीजिए।
10: जब है ना, कोई भी नहीं आए थे ना, जब है ना,
0: अरे अभी तो खाली कीजिए, इनको काम करने दीजिए।
10: सबसे पहले यहाँ पे आए थे और सबसे पहले
0: अब ठीक है, आप लोग आए, आपने रेस्क्यू किया।
11: देश की राजधानी दिल्ली में एक बिल्डिंग भर भरा कर गिर गए। प्रशासन अभी कारण ढूंढेगा कि बिल्डिंग गिरी कैसे, क्या बारिश की वजह से बिल्डिंग गिरी। बिल्डिंग गिरने का कारण एक तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, वो है उसका कमजोर होना। अब उसके कमजोर होने के पीछे के कारण क्या थी, वो प्रशासनिक लापरवाही स्वाभाविक, वो भी कम से कम है। लेकिन अभी प्राथमिकता यह है कि जो भीतर दबी हुई जिंदगियां हैं, जो भीतर दबे हुए स्टूडेंट्स हैं, उनको किसी तरह से बचाया जाए। वो अपने भविष्य को बनाने के लिए यहां पर पीजी में रह रहे थे, उन्हें भी यकीन नहीं था कि ये हालत हो जाएगी कि बरसात में वो भर भरा कर गिर जाएगा और उनको बचने तक का मौका नहीं मिलेगा। इस समय प्रशासन की टीम वहां पर है, बहुत सारे लोग उसमें दबे हुए, तो कुछ को तो निकाला गया है। कुछ की तस्वीर सामने आए थे जिनके ऊपर पूरा का पूरा वो सीमेंट का स्लैब उनके सर के ऊपर दिखाई दिया। और अभी भी कई लोग भीतर दबे हुए हो सकते हैं, अभी कोई आंकड़ा भी एग्जैक्ट नहीं पता कि कितने भीतर लोग दबे हुए हैं। ये समय आप तस्वीरें देख रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय चलाया जा रहा है, प्रशासन की टीम इस समय मौके पर है, राजनीति भी शुरू हो गई है, NSUI सीधा सरकार को घेर रहे हैं, DU के छात्र वो कह रहे हैं कि उन्हें दबे होने की सूचना मिली और उसके बाद वो खुद इसे कह रहे हैं कि ये स्वीकार्य नहीं है, बड़ी लापरवाही हुई है, घोर लापरवाही हुई है, छात्रों की जान के साथ खिलवाड़ हुआ है। ये दो तस्वीरें हमारे संवाददाता अंशुल इस समय जुड़ गए। अंशुल, अभी एग्जैक्ट जानकारी क्या है, कितने लोग भीतर दबे हुए हो सकते हैं, कितने निकाल लिए गए हैं?
0: जी, अभी तक 4 से 5 लोगों को यहां से निकाल लिया गया है, लेकिन वो किस हालत में निकाले गए हैं इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है। इसके अलावा ये बताया गया, हाँ, इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि करीब यहाँ जो लोकल्स है वो कह रहे हैं करीब 30 से 40 बच्चे हो सकते हैं यहाँ अंदर हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है इस वक्त एक हल्की सी झड़प की सिचुएशन होते हुए दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे जो NSUI के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। इनका ये कहना है कि इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और अब पुलिस इन्हें यहाँ से हटा रही है, लेकिन ये समझने की जरूरत होगी कि जो सबसे पहली प्रायोरिटी है पुलिस प्रशासन की वो ये सुनिश्चित करना है कि जो एरिया है जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है वो एरिया ठीक ढंग से सैनिटाइज हो जाए, लोग वहां से निकल जाए, ताकि अन्य कोई और आदमी इस मलबे की वजह से किसी को चोट ना लगे। लेकिन अब ये थोड़ा राजनीतिक होता हुआ अभी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और लगातार यहाँ पे एक के बाद एक जो नेता आ रहे हैं पॉलिटिकल बाइट्स देने के लिए आ रहे हैं, उससे सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो रेस्क्यूअर्स को हो रही है, क्योंकि जो एरिया है जहां से एक ग्रीन कॉरिडोर बनना चाहिए था, जहां से जो भी इंजर्ड है उन्हें निकाला जाए, उन्हें स्ट्रेचर में डाला जाए और फिर एम्बुलेंस में डाला जाए और फिर एम्बुलेंस निकल जाए, वो पूरा ग्रीन कॉरिडोर जो है वो पूरी तरीके से जाम हो गया है यहाँ पर, क्योंकि इतनी भारी संख्या में यहाँ पर जो छात्र हैं और छात्र नेता जो हैं खुद को NSUI से बता रहे हैं और अन्य अन्य दलों से बता रहे हैं और पुलिस और प्रशासन पे सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन उनके इस प्रदर्शन की वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें दिक्कतें आती हुई दिख रही है। हालांकि अब इस वक्त जो सिचुएशन है वो कम से
11: बहुत ही गंभीर और बहुत शर्मनाक है कि आपको राजनीति करने का पूरा समय मिलेगा, अभी प्रशासन को कम से कम रेस्क्यू ऑपरेशन तो चलाने दिया, आप वहां भीड़ लेकर पहुंच गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तो आप कहीं ना कहीं एक तरीके से बाधा डाल रहे हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में।
0: जी बिल्कुल, और बहुत बड़ी बाधा पड़ रही है रेस्क्यूअर्स के लिए, क्योंकि उन्हें यह भी सुनिश्चित करना है कि बाहर से कोई और आदमी कहीं गलत जगह ना फंस जाए, कहीं और किसी को इंजरी ना हो जाए। लेकिन यहाँ जो NSUI के जो छात्र हैं और जो लोग आए हैं वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे लोकेशन पर पहुंचे थे, 2 लोगों की जान हमने बचाई है, लेकिन उसके बाद भी इन्हें यहाँ से पुलिस हटा रही है।
11: ये तो बिल्कुल अजीब से तर्क है, आप पहुंच गए थे ये अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद जो उसके लिए एक्सपर्ट टीम है ऑब्वियस है वही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगे, आप ही को रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाने दिया जाएगा, आप उसमें एक्सपर्ट नहीं है, आप विशेषज्ञ नहीं है, आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, ये कैसी दलीलें दी जा रही है? और उस दलीलों इनके इस अड़ियल रवैये की वजह से भी बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही है। NSUI को भी इसका जवाब देना चाहिए, वो ट्वीट वगैरह भी कर ही रहे हैं, वो केंद्र सरकार को भी इसमें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आपको राजनीति करने का समय मिलेगा, लेकिन हम 6 तस्वीरें भी आज समय आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस समय बताया जा रहा है कि बड़ी चुनौती यह बन गई है कि जो मार्ग खुला हुआ होना चाहिए था कि जिसको निकालेंगे उसको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया जाए, वो उस कॉरिडोर में इतनी भीड़ पहुंच गई है, इतने लोग आ गए हैं, NSUI के भी इतने कार्यकर्ता पहुंच गए हैं कि एक तरीके से मार्ग ब्लॉक किया हुआ है, तो ये बड़ी चिंता की बात है। वहां एक एक जिंदगी ढूंढने की जद्दोजहद चल रही है कि बस जितना जल्दी हो सके उन तक पहुंचा जा सके और उनको बचाया जा सके, क्योंकि एक एक मिनट एक एक सेकंड बड़ा कीमती होता है। अंशुल, मेरी आवाज आप तक पहुंचे हो तो ये बताएं, 3 फ्लोर बताए जा रहे हैं, हर एक फ्लोर में क्या सब में PG था, क्या चल रहा था, कितने लोग अनुमानित भीतर अभी दबे हुए हो सकते हैं, कोई डेटा है?
0: जी, अभी तक जो यहाँ के लोकल्स और आई विटनेसेस हैं उनका ये कहना है कि 40 के करीब हो सकता है जो बच्चे हैं वो क्या कह रहे हैं,
9: 25 बेड्स का तो ये PG था, बिल्डिंग को जर्जर घोषित थी, नया PG रंग पोत के बना दिया गया सिंगल बीम पे,
0: बिल्डिंग जर्जर घोषित हो गई
9: पूरी तरीके से, 2 साल से बंद थी, आज नया PG खोल के 15,000 रेंट को दे दिया, मेरा खुद का दोस्त इसके अंदर फंसा है।
0: कब से ये खुला है दोबारा?
9: अभी अगस्त से चालू हुआ, सारे फर्स्ट ईयर के बच्चे
0: पहले खुला, तो आप देखिए ये मतलब कितनी चौंकाने वाली बात है। जो यहाँ के लोकल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो PG है ये जर्जर हालत में था, इसको बंद करवा दिया गया था, लेकिन फिर मिलीभगत करके इस पीजी को खोला गया और अभी अगस्त में ही जो यहाँ के लोकल के अनुसार कि अगस्त में ही ये पीजी दोबारा शुरू हुआ था। 15,000 के करीब यहाँ पे रेंट लिया जा रहा था बच्चों से और करीब जो लोकल्स बता रहे हैं 60 से 70 बच्चे थे इस पीजी के अंदर। लेकिन अभी लॉन्ग वीकेंड भी था तो लॉन्ग वीकेंड के चलते कुछ बच्चे हो सकता है घर भी गए हों, तो एग्जैक्ट संख्या क्या है ये एग्जैक्ट संख्या नहीं समझ में आ रही। अभी मैं आपको तस्वीरें एक बार फिर से दिखाऊंगा। बांसुरी स्वराज बीजेपी की जो एमपी है वो अब यहाँ पर आ गई है अपने लोगों के साथ यहाँ पहुंच गई है, अपने फॉलोअर्स के साथ पहुंच गई है। हालांकि उनके फॉलोअर्स को पहले रोक लिया गया है और बांसुरी स्वराज जो है अब ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेते हुए दिख रही है। लेकिन जिस तरीके से ये कहना होगा कि एक के बाद एक जो नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, स्टूडेंट लीडर्स हैं, अपने कार्यकर्ताओं अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ये एक बड़ी परेशानी का सबक बन रहा है दिल्ली पुलिस के लिए। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट सचिन जी से बोलना चाहूंगा कि एक बार दूसरी तरफ कैमरा पैन करके दिखाएं कि यहाँ बिल्डिंग का रेस्क्यू चल रहा है, यहाँ स्ट्रेचर है और बगल में एम्बुलेंस लगा है, लेकिन आप देखें रेस्क्यू साइट और एम्बुलेंस के बीच में ये कितने सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे और कितनी मुश्किल होगी अगर कोई रेस्क्यू हो तो उसे जल्द से जल्दी एम्बुलेंस पहुंचाने में काफी ज्यादा दिक्कतें आएंगी। लेकिन यहाँ पे कोई समझने को तैयार नहीं लग रहा, कोई सुनने को तैयार नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है सबको अपनी राजनीति चमकानी है और एक के बाद एक जो है पुलिस से प्रशासन से बहस करने की कोशिश की जा रही है, वॉलंटियर्स से बहस करने की कोशिश की जा रही है। अब ये NSUI वाले हैं, इनका डिमांड अब ये डिमांड कर रहे हैं कि बांसुरी स्वराज को भी वहां से हटाओ अगर हमें हटाया जा रहा है तो आप देखें किस तरीके से अब यहाँ राजनीति शुरू हो गई है और इस राजनीति की वजह से कहीं ना कहीं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अब बाधा बनती हुई दिख रही है क्योंकि यहाँ से लोग हटने को तैयार नहीं है और जो ग्रीन कॉरिडोर यहाँ पे बना होना चाहिए था, हैवी मशीनरी के लिए ग्रीन कॉरिडोर बना होना चाहिए था, वो ग्रीन कॉरिडोर किसी भी तरीके से बिल्कुल भी तैयार होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है।
11: बिल्कुल अंशुल, अगर आप NSUI के किसी नेता को जानते भी हो प्लीज उनका नाम भी आप बताएं, एक्सपोज करिए उनको भी और कि ये समय है क्या आपका राजनीति करने का, सवाल पूछिए, अभी सोशल मीडिया पर ही पूछ लें, हम भी सवाल पूछ ही रहे हैं, कल से आप सवाल पूछ लीजिएगा, एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाए आप सवाल ही सवाल पूछते रहें, तब जितना प्रदर्शन करना हो, जितना गुस्सा दिखाना हो, जितना आक्रोश भीतर आपका हो सब दिखा दीजिएगा, लेकिन ये सही समय नहीं है। अगर आपको अपनी राजनीति चमकानी है तो राजनीति दूसरी तरीके से चमकाएं, आप यहां पर आपकी राजनीति चमकेगी बिल्कुल भी नहीं, आप एक्सपोज होंगे कि आपको राजनीति की समझ नहीं है, इंसानियत सबसे ऊपर है, जिंदगी बचानी सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर। लेकिन अनिल शर्मा भी दिखाई दे रहे हैं जो कि आरकेपुरम विधायक हैं, बांसुरी स्वराज भी पहुंचे हुए, विधायकों सांसदों का इस समय क्या काम है, एक सवाल यह भी क्योंकि उनके साथ भी भीड़ पहुंच रही है।
0: जी बिल्कुल, उनके साथ भीड़ आ रही है, उनके समर्थक भी आ रहे हैं, कुछ लोग NSUI से। भाई साहब आप NSUI से हैं?
8: सर हम NSUI से हैं, लेकिन ये एक मानवता के नाते हम लोग यहाँ आए हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं ये लोग जिन्होंने इस स्थिति में इस दिल्ली को लाके खड़ा कर दिया है, आज इनको पता नहीं था हमें ये स्थिति।
0: आप ये समझिए कि ये राजनीति जो भी है ये बाद में हो सकती है, लेकिन अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, आप लोग अगर हटेंगे नहीं तो रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे हो पाएगा।
8: हम सुबह इनसे पहले यहाँ आ गए थे,
0: अब तो ये आ गए हैं, आप ट्रेंड नहीं है ना,
8: साइड में खड़े हैं हम,
0: आप देखिए आपके कितने कार्यकर्ता है, किस तरीके से यहाँ पे, ये साइड नहीं है, ये कॉरिडोर है, यहाँ पर बिल्कुल भी
8: आपको दिख रहा है, इसमें
0: सारे NSUI के कार्यकर्ता लगातार यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, सामने लड़ाई कर रहे थे,
8: कहाँ दिख रहे हैं
0: लगातार यहाँ पे पुलिस प्रशासन से बहस कर रहे हैं,
8: ये सब विद्यार्थी परिषद के, आपको ये नहीं
0: देखिए, देखिए वही है, किसी के पास कोई क्लियर जवाब नहीं है, सबको अपनी राजनीति चमकानी है कि पहले NSUI पहुंचा, पहले ABB पहुंचा, पहले मंत्री पहुंचे, पहले नेता पहुंचे, लेकिन इनको फैसिलिटेट करते करते जो आम जनता है जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो रेस्क्यू ऑपरेशन पर ध्यान होना चाहिए था पुलिस प्रशासन का, वो ध्यान रेस्क्यू ऑपरेशन से हट करके इनको संभालने में और इनको खाली करने में जा रहा है, जिसके वजह से कई जाने जो बचाई जा सकती थी शायद वो इस वक्त खतरे में हो। तो अब देखिए अब और ज्यादा फोर्स यहाँ पे बुला ली गई है और अब एक के बाद एक लोगों को यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है, तो अब दिल्ली पुलिस जो है अब लोगों को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि इस पूरे इलाके में एक जो ग्रीन कॉरिडोर है वो ग्रीन कॉरिडोर जल्द से जल्दी बनाया जा सके ताकि जैसे ही लोग निकले उन्हें जल्द से जल्दी एम्बुलेंस में भर करके यहाँ से निकाला जा सके और अस्पतालों में एडमिट किया जा सके। अब इस वक्त की मैं आपको बता दूं तो अब जो NSUI के कार्यकर्ता थे अब वो कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे होते हुए हमें दिख रहे हैं, पुलिस प्रशासन यहाँ पर चेन बनाकर आ गई है और पूरे इलाके को एक ग्रीन कॉरिडोर में बदलने की कोशिश कर रही है। आस पास भी जो दर्शक बन के लोग देख रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है, उन्हें भी अब यहाँ से पीछे होने को कहा जा रहा है। करीब डेढ़ से दो घंटे बाद, हादसा होने के डेढ़ से दो घंटे के बाद अब जाकर के यहाँ पर एक ग्रीन कॉरिडोर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ी जोर शोर से चलता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि ऑटोमेटिक कटर्स जो है वो अब यहाँ पर आ गए हैं। अब देखिये यहाँ जेसीबी, अब यहाँ जेसीबी का भी प्रयोग किया जा रहा है ताकि जो मलबा जो बिल्डिंग के बाहर की तरफ है जो सड़क पर आ गया है कम से कम उस मलबे को हटाया जा सके और आगे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो आगे बढ़ाया जा सके, जो बड़े पीसेस है कम से कम उन्हें ऊपर की सतह से हटाया जा सके। तो अब पूरी ताकत से जो है जोर शोर से जो है अब काम चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ नेता एमएलए एमपी छात्र नेता एबीवीपी एनएसयूआई जो ये लोग यहाँ पर आकर के इन्होंने पहले मदद करने की कोशिश की लेकिन अब जब पूरी पुलिस प्रशासन यहाँ पे पहुंच गई है तो अभी भी ये अंदर जाना चाह रहे हैं और जिसकी वजह से अब प्रशासन का जो ध्यान है वो रेस्क्यू में थोड़ा कम और इन्हें हटाने में ज्यादा लग रहा है। हालांकि इस वक्त की जो ताजी सिचुएशन है अब थोड़ा इन्हें साइड में दबा दिया गया है ताकि एक ग्रीन कॉरिडोर कम से कम जो कोलाब साइड है वहां से एम्बुलेंस तक कम से कम एक ग्रीन कॉरिडोर जो है वो बनाई जा सके।
11: चलिए ये तो कम से कम राहत की बात है कि भाई अब राजनीति बाद में करें, लेकिन अंशुल अब आप ये बताएं कि क्या इसका स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ था और उसमें इसको जर्जर पाया गया था और इसको सील किया गया था, बंद किया गया था, लेकिन इसको अगस्त में फिर खोला कैसे गया, ये किसके आदेश पर खुला?
0: जी बिल्कुल, यहाँ के जो लोकल्स हैं उनका ये कहना है कि ये बिल्डिंग जर्जर हालत में थी, एमसीडी ने इसे फ्लैग ऑफ भी कर दिया था और उसके बाद यहाँ से इन्हें ये जो पूरी बिल्डिंग है इसको बंद भी कर दिया गया था। लेकिन जरूर प्रशासन में पुलिस में प्रशासन में एमसीडी में कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने रिश्वत खोरी के चक्कर में या करप्शन के चलते इस बिल्डिंग को दोबारा चलने की परमिशन दे दी और जर्जर हालत में बिल्डिंग में पिछले एक महीने पहले ही लोग शिफ्ट हुए, बारिश हुई पिछले दो दिनों से दिल्ली में और ये बिल्डिंग पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। बताया जा रहा है कम से कम 4 से 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी, 50 से 70 बच्चे हो सकता है इसके अंदर हो, लेकिन कुछ बच्चे हो सकता है घर भी गए हो, तो एग्जैक्ट नंबर हमें अभी भी नहीं पता है कि कितने बच्चे इसके नीचे दबे हुए हो सकते हैं। हॉस्टल का स्टाफ भी होगा, कुक होंगे, वार्डन होंगे, मेस के लोग होंगे, भांति भांति प्रकार का स्टाफ होगा इसमें जो इसके नीचे दबा हुआ है। जो मेरे सामने जो लोग निकाले गए हैं उनकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब थी और अभी कुछ देर में शायद ये भी क्लैरिफिकेशन आ जाए या एक डिटेल आ जाए कि आखिरकार कितने लोग इसमें फंसे हुए हैं, क्या पुलिस प्रशासन को पता लगा है और कितने लोगों को निकाल के अस्पताल में एडमिट किया गया है और अस्पताल में एडमिट किया भी गया है तो क्या वो सुरक्षित निकाले गए हैं या उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होगी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने अपनी आंखों से लोगों को निकलते हुए देखा है ये कहना बहुत मुश्किल है कि उनकी हालत ठीक होगी या नहीं। अभी एक और जेसीबी यहाँ बुला ली गई है और साइड के इलाकों को भी अब खाली करके वहां से मलबा हटाया जा रहा है और कहीं ना कहीं अब काम में तेजी आती हुई दिख रही है और ग्रीन कॉरिडोर भी दूसरी तरफ बना दिया। अब रैपिड एक्शन फोर्स को भी आप देखें, रैपिड एक्शन फोर्स को भी अब यहाँ पे बुला दिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स अब जो आउटर पेरीमीटर है इस पूरे इलाके का, इस आउटर पेरीमीटर को सील करेगी और ग्रीन कॉरिडोर बनाने में दिल्ली पुलिस और प्रशासन की मदद करेगी। तो कहीं ना कहीं चुनौतियां काफी सारी हैं। गनीमत की बात यह है कि अभी पिछले कुछ देर से बारिश रुक गई है तो कम से कम पानी का रिसाव अब नहीं हो रहा है, लेकिन अगर बारिश भी दोबारा होगी, क्योंकि जैसा मौसम है बारिश कभी भी शुरू हो सकती है, अगर बारिश दोबारा हो गई तो एक बार फिर से कई नई चुनौतियां ये
11: बिल्कुल अंशुल आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास बिल्कुल लौट रहा हूं। इस बीच में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है, उन्होंने जिस पर डीपली कंसर्न कि ये जो इमारत गिरी है इस पर और हमारी लगातार नजर बनाए हुए, उन्होंने बताया कि डीडीएमए की टीम, एनडीआरएफ की टीम, दिल्ली फायर सर्विसेज की टीम, दिल्ली पुलिस है, एमसीडी है, कैट्स है, सिविल डिफेंस लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चला रहे हैं, हमारी लगातार इस पर नजर बने हुए, तमाम एजेंसीज लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और जो लोग वहां पर फंसे हुए उनको निकालना यही हमारी प्राथमिकता है और दिल्ली सरकार के दूसरे मंत्रियों की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आए हैं।
12: और ये फिर कितने बजे गिरी बिल्डिंग, कितने बजे गिरी?
13: 1 बजे के आसपास कह तो रहा हूँ, 1 बजे के आसपास गिरी है। जी,
12: और कितने लोग अभी तक निकाले गए?
13: मतलब निकाले तो 3-4 आदमी निकाले हैं मगर जीवित कोई भी नहीं है। मैं उस टाइम खाना खा रहा था घर में और एकदम से भड़बड़ा के जब पता आवाज़ लगा तो भगा।
11: ये जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका बयान हमने आपको सुनाया, जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बताया कि भड़बड़ा कर गिरी। अभी प्रशासन जो लोग भीतर फंसे हुए हैं उनमें जिंदगी तलाशने की उनको बचाने का प्रयास लगातार कर रहा है।
12: आपको पता चला तो यहाँ पे
11: और ये जो छात्र संगठन है वो दावा कर रहे हैं कि हम पहले पहुंचे। ये बड़ी अच्छी बात है कि वो जल्दी से वहां पर पहुंच गए थे, कुछ लोगों को निकाला गया, लेकिन अभी कितने भीतर फंसे इसका एग्जैक्ट नंबर है नहीं किसी के पास। ये जो पीजी बताया जा रहा है ये 75 बेड का पीजी बताया जा रहा है, अभी शुरुआती जानकारी है सारी, इसमें कुछ ऊपर नीचे भी अभी हो सकता है, लेकिन अभी शुरुआती रूप में बताया जा रहा है कि 75 बेड का ये पीजी था और उसमें कितने लोग रह रहे थे। हर कमरे का लगभग 15,000 रुपए किराया लिया जा रहा था। अगस्त में इसको दोबारा शुरू कर दिया गया था, उससे पहले इसको बंद कर दिया गया था जर्जर मानकर। अब एमसीडी को बताना होगा कि जो जर्जर था वो एकाएक बढ़िया कैसे हो गया, उसको संचालित करने की इजाजत किस अधिकारी ने दी, किसके पेन से हस्ताक्षर हुए, उस अधिकारी से जवाबदेही ली जानी चाहिए और क्या उस अधिकारी पर मुकदमा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये सुनिश्चित किया जाए कि उस अधिकारी को कम से कम जेल तो होनी ही चाहिए, वो शख्स बाहर डिजर्व नहीं करता है क्योंकि उसके वजह से कई जिंदगियां खत्म हो सकती हैं, आज कई घरों का चिराग बुझ सकता है, कई घरों में मातम, कई घरों के लोग इस समय डरे हुए हैं कि उनके जो घरों के बच्चे हैं जो यहां पर पढ़ रहे थे क्या वो जिंदा हैं भी या नहीं, उन्हें भी अभी नहीं पता। ये देश की राजधानी दिल्ली का पॉश एरिया, साउथ कैंपस, बहुत सारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की यहां पर कॉलेजेस हैं, यहां पर बच्चे पढ़ते हैं, देश के और देश के बाहर से भी कई लोग यहां पर आते हैं पढ़ने के लिए, वो यहां पर रहते हैं। ये 4 मंजिला इमारत बताई जा रही है जो कि गिर गई। हमारे संवाददाता अंशुल भी समय ग्राउंड जीरो पर लगातार हैं। अंशुल, क्या कोई ग्राउंड जीरो पर तस्वीर बदली, क्या कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया या नहीं?
0: जी, अभी पिछले 15 से 20 मिनट में तो कोई नया शख्स रेस्क्यू नहीं हुआ है, लेकिन आप देखें एक और जेसीबी जो है यहाँ पर बुला ली गई है और अब हम देख रहे हैं कि आरएफ के आने के बाद, रैपिड एक्शन फोर्स के यहाँ पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं भीड़ को थोड़ा कंट्रोल में लिया गया है और भीड़ को साइड किया गया है, जिसकी वजह से ये जो हैवी मशीनरी यहाँ जरूरत है जिसकी काम करने की, वो अब फाइनली यहाँ पर पहुंच पा रही है और काम कर पा रही है। लेकिन अभी तक पिछले 15 से 20 मिनट में तो किसी और को ही नहीं निकाला गया है। हालांकि लगातार कुछ ऐसे लोकेशंस आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं अथॉरिटीज द्वारा जहां पर यह आशंका है कि उसके नीचे लोग फंसे हो सकते हैं और वहां हाथों से ही खुदाई का काम इस वक्त जो है चल रहा है। ड्रिलिंग जो हैंड ड्रिल मशीन्स हैं उनका इस्तेमाल करके वहां पे ड्रिलिंग की जा रही है और उसके साथ अब जेसीबी से जो बड़े बड़े पीसेस हैं, जो ऊपरी सतह पे पीसेस हैं, उन्हें हटाने की भी कोशिश जो है इस वक्त की जा रही है। तो जाहिर है काफी सारा और काफी तेजी से इस वक्त काम चल रहा है और अब जो माहौल है वो थोड़ा यहाँ पे सेटल होता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को साइड कर दिया गया है और शांति यहाँ पे मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी जो चैलेंज है यही है कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ से सुरक्षित निकाला जाए, वही फोकस है प्रशासन का। और कौन जिम्मेवार है, कौन सा अधिकारी था जिसने साइन किया, लोकल पुलिस को क्या ये नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसी इलीगल बिल्डिंग चल रही है जिसको पहले सीज कर दिया गया था और उसके बाद फिर उसे उसमें इलीगल तरीके से बच्चों को ठहराया जा रहा था। तो जाहिर सी बात है लोकल पुलिस को भी पता होगा, तो अब इसमें देखना होगा कि जवाबदेही किस तरीके से तय होती है, क्योंकि अमूमन हमने ऐसे केसेस में देखा है कि ज्यादातर अफसरों की जो जवाबदेही है वो तय नहीं होती, लेकिन उसके अलावा अगर ज्यादा प्रेशर सरकार पे बनता है तो कोई जूनियर लेवल के कुछ ऑफिसर होते हैं, अधिकारी होते हैं, अंशुल सस्पेंड कर दिया जाता है।
11: ठीक, बिल्कुल। इसमें अंशुल बहुत सारे सवाल हैं और छुपते सवाल हैं और आज तक ये सवाल लगातार पूछता रहेगा। अधिकारियों को, नेताओं को इसके बारे में जवाब देना पड़ेगा कि बिल्डिंग गिरी कैसे, बिल्डिंग कमजोर थी ये तो अब क्लियर हो गया है, वो बिल्डिंग खाली क्यों नहीं थी, उस बिल्डिंग में कैसे पीजी संचालित हो रहा था, इसका जवाब देना होगा। अभी मौके पर विधायक भी पहुंचे थे, अनिल शर्मा इस समय मौके पर ही मौजूद हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरी घटना के बाद आपको सुना भी देते हैं।
3: बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही दुखद, इससे दुखद घटना नहीं हो सकती। हमारे जो बच्चे यहाँ पर अलग अलग जगह से पढ़ने आते हैं, जो यहाँ पर पीजी में रह रहे थे, एक बिल्डिंग वो कलेप्स कर गई है और एग्जैक्ट फिगर बताना मुश्किल है कि 10 बच्चे हैं, 20 हैं, 5 हैं, परंतु बच्चे उसके अंदर हैं, इसमें कहीं वो नहीं है। अभी 2 बच्चों को निकालकर NDTRF और MCD और सभी पुलिस के डिपार्टमेंट हैं उनको लेके गए हैं, उनको अभी अस्पताल भेजा है और बच्चे अंदर से, बल्कि कुछ बच्चे कॉल भी कर रहे हैं अंदर से, और अभी बच्चे काफ़ी ऐसा लगता है कि बच्चे अंदर भी हैं, तो लगातार प्रयास कर रहे हैं।
11: तो दिल्ली के आरकेपुरम के विधायक अनिल शर्मा को आप सुन रहे थे। लेकिन दिल्ली में बहुत सारी अवैध कॉलोनियों को बाद में वैध कर दिया गया, नियमितीकरण उनका कर दिया गया। किस आधार पर, जहां है जैसा है के आधार पर, तो क्या उसका खामियाजा देश की राजधानी दिल्ली अब भुगत रही है, बड़ा सवाल है। दिल्ली में बहुत सारी अवैध कॉलोनियां हैं जहां पर कोई भी नियमों के मुताबिक कंस्ट्रक्शन हुआ ही नहीं है। कोई अवैध तरीके से बन गया, कोई जिसका कहीं अच्छे से कंस्ट्रक्शन ही नहीं हुआ, मजबूत बुनियाद ही नहीं है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा संकट देश की राजधानी दिल्ली में ये है, तो क्या उसकी शुरुआत अब हम देख रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। ये सत्य निकेतन जो कि पॉश इलाकों में से एक माना जाता है, आरकेपुरम, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों का की रिहाइश है, और आरकेपुरम में कुछ एम्बेसीज भी हैं बिल्कुल उसके नजदीक है सत्य निकेतन, वहां पर ये एक इमारत गिर गई। अभी चार मंजिला बताई जा रही कि ये इमारत थी जहां 75 बेड का एक पीजी चल रहा था। और पीजी क्या होता है, जहां पर छात्र आकर रहते हैं, उनके खाने पीने और रहने की वहां पर व्यवस्था होती है। बड़ा कम जगह में बहुत सारे बच्चों को रखा जाता है, एडजस्ट किया जाता है, और वो बिल्डिंग गिर गई है। वो बिल्डिंग गिर गई क्योंकि वो बिल्डिंग कमजोर थी, लेकिन उस बिल्डिंग को पहले खाली ही नहीं करवाया गया। चश्मदीद जो उस समय वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने अपनी आंखों से इस बिल्डिंग को गिरते हुए देखा, उन्होंने क्या देखा सुना, आपको सुनाते हैं उनकी मुंहजुबानी।
14: हमारी यहाँ पे दुकान है, हम दुकान के अंदर बैठे थे, हम एकदम आवाज आई जैसे भूकंप टाइप होता है, 1:30 बजे। हम अंदर इतनी नहीं आई, जो बाहर बच्चे खड़े थे उनके पास आवाज आई, हम फटाफट भाग के आए। यहाँ पे बहुत ज्यादा धुआं वगैरह था, सारी बिल्डिंग गिरी हुई थी। और अभी इन्होंने यहाँ से मजदूर वगैरह निकाले हैं, उनकी डेड बॉडी मिली, और चार बच्चे निकाले हैं जिनकी सांसें चल रही थी, वो अभी उनको एम्बुलेंस ले गई है, बट वो मतलब अधमरे की हालत में थे।
7: तो ये हॉस्टल डेज नाम की बिल्डिंग है, इसके साथ एक और बिल्डिंग पीजी गिरी है। हॉस्टल डेज तो है, वो बॉयज पीजी है प्रॉपर, 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी ये, एंड इसके साथ बगल वाली बिल्डिंग भी गिरी है, एंड जो ये येलो वाली बिल्डिंग है, ये दोनों हिल रही थी जब वो गिरी है। तो इन दोनों में भी पीजीज ही है, और इनके एंट्रेंस एक उधर से, एक पीछे की साइड से, दो साइड से एंट्रेंस है, और मलबे के चक्कर में इनका एंट्रेंस भी जहाँ तक है ब्लॉक हो चुका है। और 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी, जितने बच्चे रूम में थे वो तो सारे दब गए हैं, और जो बाहर थे बच्चे उनका पता नहीं है, और जितना भी रजिस्टर में एंट्रीज होंगी उसके हिसाब से ही पता चलेगा अब कितने बच्चे दबे हैं इसमें।
11: ये स्टूडेंट्स थे जिनकी हमने आपको बात सुनाई, वो बता रहे हैं कि अभी 5 मंजिला इमारत है, इमारत तो गिर गई है, और लोग बता रहे हैं जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो बता रहे हैं कि ये 5 मंजिला इमारत है, और यहाँ ये जो हॉस्टल था वो बॉयज हॉस्टल था, यानी कि लड़के ही, दो इमारतें गिरी, उसमें से एक इमारत बॉयज हॉस्टल है, जिसका नाम हॉस्टल डेज बताया जा रहा है, हॉस्टल डेज इसका नाम, और ये बॉयज पीजी था, यानी कि सिर्फ लड़कों का पीजी था, वो गिर गया है। अंशुल हमारे संवाददाता ग्राउंड पर है, अंशुल क्या कुछ पॉजिटिव इस समय जानकारी मिल रही है, और एक तो बॉयज पीजी था बता रहे हैं स्टूडेंट्स, दूसरा क्या था जो गिरा है इमारत?
15: जी, दूसरी साथ में ही लगी हुई बिल्डिंग थी, उसमें भी बता रहे हैं कि पीजी ही था जिसमें छात्र ही रहते थे। और अगर आप देखें यहाँ पे, तो पॉजिटिव तो पिछले आधे घंटे में कम से कम कुछ ऐसा नहीं दिखा है, कोई नया आदमी यहाँ से निकालता हुआ नहीं देखा गया है इस वक्त। हालांकि अब जो पुलिस प्रशासन है उनका, वो यही सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो एक पेरीमीटर है इसके चारों ओर, उस पेरीमीटर को पहले सिक्योर किया जाए, ताकि बाकी जो आसपास की भी जो बिल्डिंग जिनकी हालत बहुत ठीक नहीं लग रही, कि क्योंकि अभी जैसे ड्रिलिंग हो रही है तो उसमें ड्रिलिंग की वजह से वाइब्रेशंस होती हैं, तो वाइब्रेशन से कहीं
16: बच्चों को, काफी बच्चों को ले जाया गया।
17: हाँ, मेरे सामने तो 3 से 4 ले गए हैं मेरे सामने जी, उसके बाद ये मुझे आइडिया नहीं है, कुछ लोग कह रहे कि हो गई है, कुछ कह रहे कि नहीं हुई है।
16: बिल्डिंग आप लोगों ने देखा था पहले से जर्जर की थी या क्या बारिश की वजह से गिर गई है, क्या कुछ और कारण?
17: अब देखो, आप खुद आइडिया लगा सकते हो, भूकंप तो आया नहीं है, बाकी कोई चीज हुई नहीं है, तो अब तो ये देख सकते हो क्या है, और हमें देखने भी तो नहीं दे रहे, भगा रहे।
16: अच्छा, बट आपको जानकारी मिल रही है कितने बच्चे, क्योंकि 50 बच्चे कह रहे हैं कि शायद।
17: हाँ, ऐसे मुझे भी देखने को मिला है, क्योंकि आज संडे का भी दिन है, तो सारे तो हॉलीडे मनाएंगे, और बारिश का भी टाइम है, तो रुकेंगे नहीं।
18: दो तीन बच्चे एक रूम में, 2-3 होते हैं बच्चे
17: जी। आइडिया लगा
16: कितने रूम हो सकते हैं, कुछ आइडिया है आपको?
17: आइडिया तो नहीं है, बट हाँ 3-4-5-6 रूम तो होते हैं। हाँ,
16: और ये दो बिल्डिंग सी कनेक्टेड या एक ही बिल्डिंग थी, ऐसा कुछ आइडिया?
17: एक बिल्डिंग आई थिंक, एक या दो,
18: एक बिल्डिंग है, दूसरी साइड वाली बिल्डिंग एक थी, बट उसके जो साइड वाली बिल्डिंग्स थी।
16: आपका नाम?
19: सर, ये बिल्डिंग अब से तकरीबन 2.5 घंटे पहले ये बिल्डिंग गिरी है, और इसमें कम से कम 40 बच्चों के हताहत होने की खबर है। और ये सत्य निकेतन में आप जो भी बिल्डिंगें देख रहे हैं, सब बिल्डिंगें जर्जर, इनकी कोई, ये कभी भी गिर सकती है, इसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार इन बिल्डिंगों की स्थिति देखकर इन्हें सील करे, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार को बच्चों से शिक्षा से कोई मतलब नहीं है।
20: हमारे सामने बिल्डिंग गिरी थी तो काफी नीचे मतलब लेबर भी काम कर रही थी, इसमें 7 से 8 लेबर थी जो काम करे जा रही थी। अब उनका भी नहीं पता कि वो निकल पाए थे या नहीं निकल पाए थे, मगर मुझे इतना पता कि बहुत बच्चे हैं इसके नीचे, कम से कम 8-10 भी हो सकते, 15 भी हो सकते, 30 भी हो सकते, मगर बाकी जितने भी यहाँ के मोहल्ले क्षेत्र के हैं सबने अपने हाथों से मलबा हटा के 4 लोगों को निकाल लिया गया
18: है। एम्बुलेंस अप्रॉक्स 45 मिनट्स के बाद आई है, सब यहाँ कॉल कर करके परेशान थे, कोई कॉल पिकअप नहीं कर रहा था एम्बुलेंस के लिए, ना पुलिस आई थी ना एम्बुलेंस आई थी, ये सब आधे घंटे के बाद आए और तब तक सब बच्चे दबे हुए थे वहाँ पर।
16: निकाल दीजिए इसको फिर वहाँ से भेजिए।
11: प्रत्यक्षदर्शियों के सवाल भी हैं, स्टूडेंट्स के सवाल भी हैं, जिस पर दिल्ली की सरकार को जवाब देना होगा। वो कह रहे हैं कि 45 मिनट के बाद एम्बुलेंस आई है, 45 मिनट के बाद पुलिस आई है, एम्बुलेंस क्यों नहीं समय पर आई, क्यों नहीं पुलिस समय पर पहुंची, फायर ब्रिगेड क्यों नहीं समय पर पहुंची, 45 मिनट में कितनी जिंदगियां बचाई जा सकती थी। 4 से 5 लोगों के ही निकाले जाने की जानकारी जितने भी लोग हैं वो दे रहे हैं, जो अब तक जो बयान आए हैं वो यही जानकारियां दे रहे हैं। इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल रहा है लेकिन पिछले लगभग आधे घंटे से कोई बहुत पॉजिटिव खबर मिली नहीं है। ये एक इमारत थी, 2 इमारत थी, उसको लेकर कंफ्यूजन अभी भी लगातार बना हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक ही बड़ी इमारत थी लेकिन उसके 2 हिस्से थे, एक में तो दोनों में चल पीजी ही रहा था लेकिन एक हिस्सा हॉस्टल डेज के नाम से चल रहा था, बॉयज पीजी था, दूसरा भी पीजी था, उसमें एग्जैक्ट नंबर कितना था किसी को अभी कोई आइडिया नहीं है। सब एक रफ आइडिया दे रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं कि संडे का दिन था, हो सकता कई लोग बाहर भी गए हों, हो सकता मौसम अच्छा तो बाहर भी गए हो, अभी एग्जैक्ट नंबर बताना बड़ा मुश्किल है। एक रजिस्टर्ड मेंटेन होता है आमतौर पर पीजीज में, तो अब यहाँ जिस हिसाब से चीजें चल रही थी तो क्या वो उसका पालन हो रहा होगा रजिस्टर का, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन वहां अनाउंसमेंट लगातार हो रही है। पुलिस के अधिकारी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, चूंकि वहां पे इससे पहले पॉलिटिकल छात्र राज्य नेता है वो पहुंच गए थे, लोगों से दूर जाने के लिए कहा जा रहा था। अंशुल हमारे संवाददाता इस समय लगातार ग्राउंड जीरो पर है। अंशुल ये बताइए क्या जानकारी अभी मिल रही है इस बिल्डिंग के बारे में, इस बिल्डिंग के मालिक के बारे में, कौन है इसका मालिक?
15: जी अभी जो प्रशासन का ये कहना है, जिनसे भी बात हो पा रही है उनका यही कहना है कि अभी हमारा जो प्राइम फोकस है वो फोकस यही सुनिश्चित करने में है कि जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इस वक्त अगर मैं आपको थोड़ी और तस्वीरें दिखाऊं तो ये जो बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं अब ये इन्हें भी अंदर लेके जाया जा रहा है। अब इन ऑक्सीजन का जो ये बड़े सिलेंडर होता है इनका एक ही काम होता है कि जो हैवी मेटल कटिंग मशीनरी है उसमें ऑक्सीजन के मदद से जो है कंबशन होता है, तो उससे यहाँ पे जो कटाई है वो की जाएगी। इसके अलावा छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर भी हैं वो भी अंदर लेके जाया गया है। आशंका ये है कि जहाँ लोग फंसे हुए हैं उन तक ऑक्सीजन भी जल्दी से जल्दी पहुंचाई जाए, अगर उन्हें ज्यादा घबराहट हो रही है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उन्हें वहां से कम जल्दी से जल्दी जो ऑक्सीजन है वो दी जाए ताकि उनकी जान जो है वो ज्यादा लंबे समय तक बची रहे, क्योंकि काफी भारी मलबा जो है यहाँ पे गिरा हुआ है, गाड़ियां पूरी तरीके से जो है ध्वस्त हो रखी हैं।
11: बिल्कुल एक के बाद एक यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये इमारत बहुत बड़ी बताई जा रही है, जो स्टूडेंट्स है वो तो 5 मंजिला बता रहे हैं, तो इसका मलबा ही कम से कम 1 से 2 मंजिल तक होना चाहिए या इसका बेसमेंट भी था और ये 5 से 6 लेबर्स बताया जा रहा है वो काम कर रहे थे, तो क्या कंस्ट्रक्शन क्या काम चल रहा था वहां जो लेबर्स थे वहां?
15: ये बिल्कुल अगर देखें यहाँ पे तो ये मलबा जो है कम से कम 15 फीट के आसपास या उससे ज्यादा ही 20 फीट के आसपास तो कम से कम यहाँ पे मलबा जो है जमा है। अभी जो प्राथमिक दृष्टि जो हमारे पास खबर आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो लेबर्स बताए जा रहे हैं वो पीजी का स्टाफ ही था, पीजी में ही साफ सफाई, खाना बनाना और अन्य जो काम होते हैं मेंटेनेंस के काम होते हैं उनमें लगे हुए थे, तो वो लोग भी इसके नीचे ही थे, वार्डन थे पीजी के वो भी इसमें ही मौजूद थे, इसके अलावा बच्चे और अन्य स्टाफ भी था, रेगुलर स्टाफ भी था वो भी इसमें मौजूद था, जिसके बाद ये पूरा हादसा हुआ है। अभी मुझे पता नहीं मैं आपको कितनी यहाँ पे तस्वीरें दिखा पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे पुलिस प्रशासन थोड़ा ज्यादा बड़ा जो है ग्रीन कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप देखें यहाँ धुआं निकल रहा है, ये धुआं ये मेटल कटिंग मशीन से जो है उससे निकल रहा है भारी।
21: मैं आर्यन मान दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट यही मौजूद हूँ जब से घटना हुई है और बहुत ही दुखद घटना है। तकरीबन 10 से 15 बच्चों को निकाला गया है और अभी कुछ बच्चे फंसे हुए हैं, उनसे बात भी हो रही है और अभी पूरी NTRF की टीम सारी टीम आ चुकी है, मेरी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है और तमाम और टीम भी आ रही है यहाँ पे स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए। कैजुअलिटी की अभी कोई खबरें नहीं, हमें यहीं पे ही मौजूद है। तमाम स्टूडेंट्सों को हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है। लगभग 15 से 20 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 10 स्टूडेंट्स को निकाल लिया गया है। अभी तक कोई उनकी नॉलेज नहीं है, वो अभी हॉस्पिटल गए हैं। बिल्कुल, मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, कमिश्नर सर से भी बात हुई है, तमाम सभी से बात चल रही है इस घटना को लेकर, और सारी टीम आ भी चुकी है, जेसीबी भी आ गई और तमाम जितनी फायर ब्रिगेड जितनी भी टीम है यहाँ मौजूद है। डीयू के ही स्टूडेंट्स थे, क्योंकि सामने कॉलेजेस थे, यहाँ पे सिर्फ डीयू के स्टूडेंट्स रहते थे पीजीज में।
11: तो एबीवीपी इसके साथ साथ एनएसयूआई उनके ही छात्रों ने जाकर सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन में बताया चला कि हाथ बढ़ा, क्योंकि पुलिस दूसरी जो तमाम टीमें थी, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड सब तो बताया जा रहा 45 मिनट के बाद आए। अंशुल इस समय ग्राउंड जीरो पर, अंशुल क्या बता रहे लोग, कितनी देर बाद आए, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि लगभग 45 मिनट के बाद एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और तमाम पुलिस सब टीमें आई, क्या ये सच है?
0: जी, अगर आप फायर डिपार्टमेंट की बात माने तो उन्होंने जो ऑफिशियल जानकारी दी है कि उन्हें जो ये बिल्डिंग कोलैप्स की कॉल जो है 1:31 पे आई थी, और जो उनकी पहली गाड़ी यहाँ पर पहुंची वो करीब 1:52 के आसपास उनकी पहली गाड़ी यहाँ पर पहुंच गई थी। तो ये फायर डिपार्टमेंट का क्लेम है।
11: अंशुल, मैं माफी के साथ रोक रहा हूँ, मैं लौट रहा हूँ तुरंत आपके पास, एक बड़ी खबर इस समय दर्शकों को दे देते हैं। ये जो बिल्डिंग हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल है, उन्हें एम्स ट्रॉमा सेंटर में भी जानकारी मिल रही है कि भर्ती कराया गया है, एम्स ट्रॉमा सेंटर इन्हें ले जाया गया है। इस बिल्डिंग कोलैप्स में कई घायल हैं, उनको अस्पताल में ले जाया गया है। जो निकाले गए हैं उनमें तो बताया जा रहा है कि जो छात्र संगठन है उसका

0: को निकाला। अब कुछ उनमें से तीन बताया जा रहा है कि एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाए गए। लगभग 40 लोग, ये अभी अनुमानित आंकड़ा ही है, लगभग 40 अभी फंसे हुए भीतर हो सकते हैं, उनको ढूंढा जा रहा है। ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है। अंशुल अपनी बात अब कंटिन्यू करें आप, तो कॉरिडोर बड़ा करा जा रहा है ताकि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन और तेजी से किया जाए।
1: जी बिल्कुल, कॉरिडोर जो है अब आप देखें तो काफी ज्यादा खाली करा दिया गया है। जो नेता भी वहां पहुंचे थे उन्हें भी हटा दिया गया है। अगर मैं आपको यहां तस्वीरों में दिखाऊं तो जो एनएसए के नेता है या आरएमएन जो डीयू के हैं, इन सबको बातरी स्वराज है, इन्हें भी अब साइड में कर दिया गया है। यहां हम बात भी करने की कोशिश करेंगे। मैम, व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन दैट यू आर पिकिंग अप राइट नाउ? तो जैसा आपने सुना कि जो प्रायोरिटी है वो यही कह रहे हैं कि प्रायोरिटी हमारी यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जाए। बासुरी स्वराज खुद यहाँ पे खड़ी है, लेकिन उनके साथ साथ जो उनके समर्थक हैं वो अब डेंजर जोन में भी घुसते हुए दिख रहे हैं। अगर आप यहाँ देखें तस्वीरों में तो उनके साथ जो समर्थक हैं उनके वो भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां जा रहे हैं जहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक बार फिर से दिक्कतें जो है वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि और ज्यादा जाने खतरे में आ जाती हैं जितना आप करीब जाते हैं इतने बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के। काफी तरह की मशीनरी चल रही होती है, डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इस्तेमाल होता है, तो अनहोनी कहीं भी कभी भी हो सकती है। और इसलिए जो प्रायोरिटी रहती है कि आउटर पेरीमीटर जो है उसको बड़ा से बड़ा फैला करके रखा जाए। लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले आधे घंटे से ज्यादा हो गया है, कोई भी नया रेस्क्यू नहीं हुआ है। आखिरी रेस्क्यू जो हुआ था वो करीब 25 मिनट पहले एक शख्स को निकाला गया था जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, और उसे एम्स और सफदरजंग में जहां पे भी जगह मिल रही है वहां अब लोगों को एक के बाद एक एडमिट किया जा रहा है। आप देखिए मेरे पीछे
0: संभव
1: थोड़ी सी जगह जो है वो खाली हुई है।
0: अंशुल, अगर पॉसिबल हो तो लोगों से भी, स्थानीय लोगों से जो वहां पर मौजूद है उनसे बात करके क्या हुआ था उसको समझने का प्रयास करें।
1: जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करूँ। भाई साहब, आप इसी इलाके में रहते हैं?
2: हाँ जी।
1: क्या हुआ था, आपने देखा ये किस तरीके से ये बुरा हाल था?
2: सर, बगल वाली बिल्डिंग में थे हम,
1: बगल वाली
2: बिल्डिंग में थे, जब हम ऐसे ही बैठे थे वहाँ पर तो एकदम से वाइब्रेट हुई थी पूरी बिल्डिंग। बाद में बाहर आके मेरे को लगा कि भूकंप का झटका आया होगा, अब मैं फटाफट नीचे उतर के आया, बाद में आके देखा तो पूरी बिल्डिंग नीचे ढाई हुई थी। हाँ जी।
1: ये बिल्डिंग की हालत कैसी थी? ये पहले सील भी हुई थी, बंद भी किया था बिल्डिंग को,
2: मतलब
1: पहले इस बिल्डिंग खराब हालत की वजह से बिल्डिंग पे ताला भी लगा था?
2: सर, इसका तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है।
1: नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ लोग बता रहे हैं कि ये बिल्डिंग बंद थी और अभी पिछले महीने से ये दोबारा इसमें लोगों को बुला करके रखा है।
2: हाँ, ऐसा कुछ है इसमें थोड़ा।
1: आप बगल वाली बिल्डिंग में रहे?
2: बगल वाली बिल्डिंग में, 9 नंबर बिल्डिंग है।
1: अच्छा, आपकी बिल्डिंग में सब सुरक्षित है? सब सुरक्षित,
2: हमारी में सब ठीक है, मैंने पूरी खाली करवा के ताला लगा दिया।
1: यहाँ पुलिस प्रशासन को पहुंचने में कितना समय लगा?
2: ये पुलिस प्रशासन जल्दी आ गई थी, जब तक यहाँ के जो लोकल बंदे हैं उन्होंने मोर्चा संभाला था रेस्क्यू का, पर पुलिस ये है कि पुलिस आ गई थी, टाइम से आ गई थी।
1: आपके अंदाजे से कितने लोग होंगे जो इस मलबे में होंगे या कितने लोग इस पीजी में रहते थे?
2: देखिए, मेरे आइडिया अगर मैं देखूँ तो कम से कम 25 से 30 लड़के इसमें रहते
1: थे। तो जैसा आपने सुना कि एक के बाद एक जो है लोगों को निकाला गया है यहाँ से, और उसके बाद अभी जो हादसा हुआ है इसमें भी कई लोगों को
0: दिल्ली पुलिस की अब इतनी सक्रियता कि मीडिया कर्मियों को वहां काम करने से भी थोड़ा परेशान ही किया जा रहा है कि आप साइड हो जाइए। अगर दिल्ली पुलिस इतनी ही सतर्क रहती तो पहले ही यह हादसा नहीं होता, पहले ही बिल्डिंग खाली करवा देते। लेकिन अब जितनी सतर्कता दिखाने का ये आप देख रहे हैं कि प्रयास किया जा रहा है कि हम तो बहुत तेज हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी नाकामी है साहब। आप सिस्टम के रूप में पूरी तरह से फेल हुए हैं, इसलिए इतना बड़ा हादसा हुआ है। अब मीडिया वहां पर आज तक वहां पर रिपोर्टिंग कर रहा है, उसमें भी इनको परेशानियां हो रही हैं। हम तस्वीरें नहीं दिखाएंगे, पिछले लगभग 30 मिनट से कोई पॉजिटिव खबर अब तक नहीं आई है। सारा फोकस ऐसा लगता है कि बस मीडिया और को ही पीछे करने में रह गया है। प्राथमिकता होनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके इसको निकाला जाना चाहिए था। इतने घंटे हो गए, देश की राजधानी दिल्ली में एक इमारत से लोगों को रेस्क्यू नहीं किया जा सका अभी तक इतने, वो भी अच्छे से। पिछले आधे घंटे से एक पॉजिटिव खबर नहीं आई है। जेसीबी मौके पर जा रहे हैं, वहां पर ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर गए हैं,

0: सारा फोकस दिल्ली पुलिस की सतर्कता, बहुत तैयारियां वो दिखा रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन फेल पूरा का पूरा सिस्टम के रूप में सरकार से लेकर एमसीडी से लेकर पुलिस हर महकमा हुआ है दिल्ली में।
1: जी बिल्कुल, बहुत शर्मनाक घटना है ये, और अभी भी फोकस मीडिया को साइड करने में, जबकि देखिए हम काफी दूर खड़े घटनास्थल से, लेकिन जो नेता आ रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए उन्हें खुला एक्सेस दिया जा रहा है अंदर तक, आराम से वो अंदर में समर्थकों के साथ जाकर के देख रहे हैं, फोटो ऑप्स करवा रहे हैं, लेकिन मीडिया को ज्यादा से ज्यादा दूर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मीडिया ये तस्वीरें ना दिखा पाए कि किस तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें अभी भी कई अड़चनें आ रही हैं, अभी भी कई दिक्कतें ऐसी हैं जो पुलिस प्रशासन को फेस करनी पड़ रही हैं, लेकिन अभी भी जिस तरीके से, जिस गति से ये ऑपरेशन चलना चाहिए था उस गति से ऑपरेशन चलता हुआ नहीं दिख रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है आधे घंटे से एक भी आदमी नया रेस्क्यू नहीं किया गया है। हाँ, काम चल रहा है, मशीनें लगी हुई हैं, ढूंढने की कोशिश की जा रही है, काफी मुश्किल काम भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी तक जो अच्छी खबर आनी चाहिए थी, जो होपफुल थे, वो होपफुल नहीं, बाहर नहीं होंगे। आप नेताओं को बाहर निकालिए,
2: अरे भाई आप बाहर निकलिए प्लीज,
1: नेताओं को क्यों नहीं बाहर निकाल रहे आप,
2: प्लीज
1: आप नेताओं को क्यों नहीं बाहर निकाल रहे हैं,
2: कोई नेता नहीं अंदर,
1: बाहर निकाल रहे हैं, मीडिया से क्या छुपा रहे हैं आप, हम दूर रह के काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए सर, आप प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। तो मैं आपको एक बार दोबारा तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊंगा कि एक तरफ जहाँ यहाँ नेताओं को आने दिया जा रहा है, राजनीति चमकाने दी जा रही है, मीडिया से बहुत दिक्कत हो रही है, जबकि मीडिया साइड में रह करके अपना काम कर रहा है, अपनी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो आप देखें यहाँ पे अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, ये बड़े बड़े कटर्स जो हैं, अब इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, और इन कटर्स के जरिए जो है यहाँ से अब केनाइन स्क्वाड, जो डॉग स्क्वाड भी है, वो डॉग स्क्वाड भी अब यहाँ पर ले आया गया है। अब ये डॉग स्क्वाड ये सूंघ करके पता लगाएगा कि आखिर कहाँ ऐसी लोकेशन है जहां पर लोग अभी दबे हुए हैं। तो आप देखिए धीरे धीरे जो है ज्यादा इक्विपमेंट्स यहाँ पर लाए जा रहे हैं, धीरे धीरे जो है डॉग स्क्वाड्स को भी बुलाया गया है, एनडीआरएफ को भी बुलाया गया है, और अब जो है अब ये एग्जैक्ट लोकेशन वो चिन्हित किए जा रहे हैं जहां पर लोग फंसे हो सकते हैं, लेकिन अभी भी काफी बड़ा और काफी भारी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी भी करना बचा है, क्योंकि अभी भी किसी भी तरीके की क्लैरिटी जो है वो क्लैरिटी अभी मिलती भी नहीं दिख रही है कि आखिरकार कितने लोग ऐसे हो सकते हैं, जो कितने लोग इसमें फंसे हो सकते हैं, और कितने लोग हैं जिन्हें सुरक्षित निकाला जा सकेगा। तो अभी भी काफी बड़ी चुनौती है, पूरा ये 20 फीट मलबे में ढूंढना है लोगों को कि कहां लोग फंसे हैं, कहां लोग दबे हैं, और उसके बाद वहां से जो है उन्हें सुरक्षित निकालना है। तो चुनौतियां अभी, कई सारी चुनौतियां अभी भी जो है वो अभी तक पुलिस प्रशासन के सामने है, लेकिन अभी तक जो है जो लोग निकलने चाहिए थे जिस गति से वो निकलते हुए नहीं दिख रहे, हालांकि काम बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा लेकिन
0: अंशुल ये भी लग रहा है कि काम बड़ी सुस्त रफ्तार से चल रहा है, क्योंकि ये जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है ये 1:33 पर अगर हादसा हुआ है, मैक्सिमम 2 बजे तक कॉरिडोर बन जाना चाहिए था, सारी चीजें खाली हो जानी चाहिए थी, वहां पर आपका कॉरिडोर बनकर जो है तमाम काम हो जाना चाहिए था, लेकिन 3:30 बजे के बाद कॉरिडोर खाली करवाया जा रहा है, ये दिख रहा है कि कितनी सुस्त रफ्तार से चल रहा है। इस बीच में बड़ी खबर भी देते हैं, 4 लोगों के रेस्क्यू की जानकारी मिल रही है अभी तक कि 4 लोगों को राहत टीम ने बचाया है, अस्पताल पहुंचाया गया है, 3 ट्रॉमा सेंटर भी भेजे गए हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, उनका उपचार चल रहा है, बिल्डिंग कोलैप्स की है, और जो स्थानीय लोग हैं 5 मंजिला बता रहे हैं कि ये लगभग 5 मंजिला थी, अभी 4 लोगों का ही रेस्क्यू हुआ है ये जानकारी मिल रही है। और एक नाराजगी हमें देखने को मिली थी क्योंकि राजनेता वहां पर उनका जमावड़ा पहले लग गया था, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, अगर विधायक सांसद इतने सक्रिय पहले रहते तो शायद इतना बड़ा हादसा ही नहीं होता, अधिकारी सक्रिय रहते तो बड़ा हादसा नहीं होता।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
0: तो हम आज आपको हादसे की लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, हालांकि अब मीडिया को भी इससे जगह दूर किया जा रहा है, जबकि आज तक बहुत जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग कर रहा है, और हम कभी भी बाधा नहीं जो है बनते हैं प्रशासन के काम में। हमने तो बकायदा NSUI और दूसरे वहां छात्र संगठनों से भी अपील की कि आप काम को रोकने ना दें, राहत अभियान में कहीं ना कहीं अड़चन पैदा ना करें, और उसके बावजूद भी इसमें दिक्कतें पैदा की जा रही हैं। अब हम आपको लगातार तस्वीरें भी दिख रहे हैं, अंशुल भी लगातार हमारे साथ है। अंशुल, मेरा सवाल ये है कि ऐसा लगता है कि बहुत लेट लती, बहुत सुस्ती से काम चल रहा है, जो काम 2 बजे तक हो जाना चाहिए था कॉरिडोर खाली करने का, वो 3:30 बजे के बाद आप कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, और अभी तक कॉरिडोर नहीं बन पाया। अगर आप देखें मेरे पीछे ही यहाँ एम्बुलेंस है और एम्बुलेंस ये लगातार और पीछे किए जा रहे हैं। ये पता नहीं किस तरीके का कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें एम्बुलेंस जो है घटनास्थल से ज्यादा दूर कर दी जा रही है। और वहां पर जो लोग वहां पे लोकल थे अब फाइनली उन्हें हटाया गया है, सबको साइड किया गया है और अभी भी जो कॉरिडोर के बाहर है एम्बुलेंस अभी तक कॉरिडोर के बाहर ही है पूरी तरीके से। तो कहीं ना कहीं जो जिस फुर्ती से आपने कहा जिस फुर्ती से काम होना चाहिए था उस फुर्ती से काम होता हुआ नहीं दिखाई दिया है और यही एक वजह है कि स्थानीय जो लोग हैं और उनमें कहीं ना कहीं काफी ज्यादा गुस्सा और आक्रोश है। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस का यहाँ पे रिस्पॉन्स होना चाहिए था वो पुलिस का रिस्पॉन्स जो है वो उस तरीके से नहीं हो पाया था। लेकिन अभी भी इस वक्त भी अगर आप देखें तो और भी जो नेता है जो स्टूडेंट लीडर्स हैं वो अभी यहाँ पे दोबारा पहुंच रहे हैं, मीडिया को वाइट भी दे रहे हैं। लेकिन आप कहाँ जाए भाई साहब?
4: मैं हेल्प करने के लिए जा रहा
2: हूँ।
1: आप कौन है
2: सर? मैं कार्यकर्ता हूँ।
1: आप
2: उधर आओ ना। नहीं, मैं किसी का भी कार्यकर्ता हूँ। नहीं, मैं किसी का भी मैं काम का कार्यकर्ता हूँ। मैं लोगों की जान बचाने के लिए
1: बहुत दूर हूँ। आप नहीं बताइए
2: घर से लोग आ रहे हैं ना?
1: यहाँ कौन?
2: यहाँ से तो लोग आ रहे हैं।
1: आप अपना काम कीजिए प्लीज। मुझे अपना काम करने दीजिए प्लीज। क्या कर रहे हैं आप? आप धक्का मत दीजिए। आप लोग परेशान कर रहे हैं। आप लोग नेताओं को अंदर ले जा रहे हैं।
0: ये समय फिलहाल दिल्ली की स्थिति है कि दिल्ली में इतना बड़ा हादसा हो गया है, न जाने कितनी जिंदगियां भीतर फंसी हुई हैं, लेकिन जो सारा का सारा फोकस मीडिया पर दिखाई दे रहा है। आज तक चूंकि लगातार सवाल पूछ रहा है, जिम्मेदारों से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आज तक संवाददाता को कहा जा रहा है कि आप लगातार पीछे हटते चले जाइए ताकि देख ही ना सके कि क्या भीतर चल रहा है, सवाल ही ना पूछ सके। क्या यही प्रयास इस समय दिल्ली सरकार का है? ये सवाल है। क्या दिल्ली पुलिस का एकमात्र फोकस है कि आज तक क्या रिपोर्टिंग कर रहा है? आज तक संवाददाता लोगों से वहां बात उन्होंने की, लोग बता रहे हैं कि जर्जर बिल्डिंग थी, सारी चीजें चल रही थी, अगस्त के महीने में दोबारा शुरू कर दिया गया था एक सील बिल्डिंग को, कैसे? ये बड़ा सवाल है। और इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन चल तो रहा है लेकिन किस गति से चल रहा है वो आप देख सकते हैं, धीमी रफ्तार से चल रहा है। 3:30 बजे से ज्यादा का समय हो गया, लगभग 2 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है और अभी तक कोई पॉजिटिव खास खबर नहीं मिल रही है, क्योंकि जो एक अनुमानित आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा है। अनुमानित आंकड़ा 40 से ज्यादा बताया जा रहा है। यह आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ये अनुमानित आंकड़ा है जो बताया जा रहा है। जिंदगी बचाने के लिए जितनी तेजी दिखनी चाहिए थी अभी तक उतनी तेजी नहीं दिखी है। ये दिल्ली में बड़ा हादसा हुआ है सत्य निकेतन जैसी जगह पर, जो कि साउथ कैंपस का एक इम्पॉर्टेंट हब है, इम्पॉर्टेंट जगह है। वहां पर एक बिल्डिंग गिर गई जहां पर स्टूडेंट्स रह रहे थे, वो यहीं पर रहते थे, पीजीस में रहते थे, हॉस्टल डेज नाम का एक पीजी था, जो पीजी था गिर गया। एक जर्जर इमारत कैसे चल रही थी, कैसे संचालित हो रही थी, तमाम सवाल हैं। तमाम सवाल अपनी जगह बने रहेंगे और उन तमाम सवाल लगातार पूछे जाएंगे। अभी प्रशासन कह रहे हैं कि हम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं और तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। अभी 4 लोगों के रेस्क्यू की जानकारी मिल रही है। 3 लोगों को बताया जा रहा है कि ट्रॉमा सेंटर में भी भर्ती करवाया गया है। डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचाया गया है और वो भी प्रयास करेगा सूंघकर, चूंकि 15 से 20 फीट के आसपास तो कम से कम बताया जा रहा है कि मलबे का ढेर लग गया है। उस ढेर को हटाने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता लगती है, उसको क्योंकि उसके नीचे लोग दबे हुए सकते हैं, तो आप जेसीबी भी सीधा नहीं चलाते हैं ऐसे में, तो बहुत सेंसिटिव अब ये जगह बन चुकी है। तो
5: इसमें कोई बात मैं कहना चाहता हूँ, जो भी गवर्नमेंट है उसको आंसर करना पड़ेगा, अथॉरिटीज को आंसर करना पड़ेगा। और हर बार 2 दिन के बाद मीडिया मैनेजमेंट से खबर चली जाती है, फिर हम आवाज उठाते हैं। हमने पार्लियामेंट में मैंने आवाज उठाई है लेकिन उसका कोई जवाब ही नहीं मिलता हमें। ये मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है। मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, आज मैं उस हैसियत से यहाँ हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट के हैसियत से यहाँ पे हूँ, एक मैं इंसान के नाते यहाँ हूँ, मगर जवाब तो हम मांगेंगे।
6: दूसरी बिल्डिंग गिरी है
5: और सुनो, यहाँ पे
0: देवेंद्र हुड्डा भी मौके पर पहुंच गए, उनका भी बयान आप सुन रहे थे, वो भी कह रहे हैं कि जवाब तो हम मांगेंगे। ऑपोजिशन के पास एक बड़ा मौका, वो सवाल लगातार पूछ रहे हैं। NSUI के कार्यकर्ता पहले सवाल पूछ रहे थे, वो तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कोई आया नहीं, हमने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, हमने कोशिश की कि लोगों को, जितने लोगों को हम बचा सकते थे हमने अपनी तरह से उनको बचाने का प्रयास किया, प्रशासन की टीमें तो बहुत लेट आई। ABBP भी यही दावा कर रहा, और अब दीपेंद्र हुड्डा मौके पर, और वो जवाब मांग रहे हैं सरकार से कि जो जिम्मेदार हैं इसमें वो उस पर जवाब दें। आपको कुछ और तस्वीर भी हम इस समय दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, ये प्रशासन के अधिकारी नहीं है, ये जो स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो वहां से मलबा हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं, सड़क को खाली साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या पहली तस्वीर में आपको प्रशासन का कोई अधिकारी, कोई प्रशासनिक टीम दिखाई दे रही? नहीं, आपको सिर्फ स्थानीय लोग और स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं, जो चूंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी आज संडे के दिन है छुट्टी थी, तो वो स्टूडेंट्स खुद ही मेहनत करके अपने संगी साथियों को बचाने का प्रयास करें। और बहुत सारे स्टूडेंट्स बता रहे थे कि मेरे ही दोस्त भीतर फंसे हुए, क्योंकि एक बॉयज हॉस्टल है, जो हॉस्टल डेज है वो बॉयज पीजी था, वहां पर सिर्फ जो लड़के थे वो रह रहे थे, वो इस समय भीतर दबे हुए हैं और उनको बचाने के लिए रेस्क्यू चल रहा है। हम आपको एक तीसरी जो तस्वीर देख रहे हैं, उस तीसरी तस्वीर में भी आपको एनडीआरएफ, आपको कोई भी एक्सपर्ट विशेषज्ञ नहीं दिखाई देगा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने वाला, आपको सिर्फ इसमें भी स्टूडेंट्स ही दिखाई देंगे, या अलग अलग छात्र संगठनों से हो सकते हैं, लेकिन आपको इनकी भी सराहना करनी चाहिए क्योंकि इन्होंने अपने स्तर पर लोगों को बचाने का प्रयास शुरू किया। फिर उसके बाद लगभग 12 गाड़ियां दमकल के मौके पर पहुंची जो अभी तक वहां पर है और रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय चलाया जा रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कितना समय लगेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तो कॉरिडोर बनाने का काम लगभग शुरू हुआ है, 3:30 बजे के आसपास कॉरिडोर बनाया जा रहा है ताकि चौड़ा किया जाए उस मार्ग को और वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन तेज से, क्योंकि मलबा भी निकालना है। अब मलबा भी लगभग 15 से 20 फीट मलबा है वहां पर, क्योंकि लगभग 4 से 5 मंजिला ये इमारत बताई जा रही है। अंशुल, अभी मौजूदा स्थिति बताएं, क्या इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट है?
4: जी, स्थिति अभी भी वैसी ही बनी हुई है, मैं आपको तस्वीरें एक बार फिर से दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखें तो अब ऐसे कुछ लोकेशंस जो हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं जहां पर लोग फंसे हो सकते हैं, और वहां पे अब स्ट्रैटेजिक तरीके से उन्हीं लोकेशंस पर जो है अब खुदाई और रेस्क्यू का काम चल रहा है। बाकी जगह जो भारी मलबा है उसे जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा है, लेकिन जहां ऐसी आशंका है कि वहां पर लोग फंसे हो सकते हैं, वहां से हाथों से ही और हैंड यूज मशीनरी से ही जो है, चाहे वो मेटल कटर्स हो और अन्य मशीनें हो, उनसे ही जो है, ड्रिलर हो, उनसे ही उन प्रिसाइज लोकेशंस पर जो है खुदाई की जा रही है और लोगों को वहां से एक के बाद एक वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी देखिए, अभी यहां पे थोड़ी मूवमेंट होती हुई दिख रही है, लेकिन अभी जेसीबी जो है, जेसीबी को और थोड़ा मूव किया है, तो आप देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रुप्स में लोग अब दिख रहे हैं जहां पे काम चल रहा है। तो ये वो लोकेशन है जहां पर इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है कि यहाँ पर लोग फंसे हो सकते हैं, और वहां पे प्रिसिशन से वहां पे काम किया जा रहा है ताकि कम से कम मलबा जो है वो गिरे, छटके, और जो लोग नीचे दबे हुए हैं उनकी जान पर कहीं मलबा हटाने में उनकी जान पर ना बनाए, तो इसका भी बहुत ज्यादा ध्यान रख करके जो है काम किया जा रहा है, क्योंकि वहां जो पूरी मिट्टी है, पूरी सतह है, वो अब लूज सॉयल है, लूज मिट्टी है, उसमें बड़े बड़े पत्थर हो सकते हैं, उसमें लोहे हो सकते हैं और उसमें अन्य चीजें भी हो सकती हैं, और इसलिए ये जो प्रिसाइज ऑपरेशन है, ये प्रिसाइज ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। एक बार आइडेंटिफाई या पता लग जाए कि इस लोकेशन पर अगर लोग फंसे हैं तो उस लोकेशन पर बिल्कुल प्रिसाइजली जो है वहां पर खुदाई करनी जरूरी है, और ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि उस खुदाई में भी ज्यादा मिट्टी ना हिल जाए और मिट्टी नीचे ना गिर जाए, क्योंकि नीचे दबे हुए लोगों पर अगर वो मिट्टी गिर गई तो दोबारा काफी ज्यादा मुश्किलें जो है बढ़ सकती है। तो काफी प्रिसाइज ऑपरेशन जो है वो इस वक्त करना है।
0: आप अंशुल, इस ऑपरेशन में कितना समय लग सकता है?
4: आ गए हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, अब इनसे
0: कोशिश उनसे बात कर रहे हैं।
4: अभी की हालत देख के लगता है कि काफी लंबा समय जो है वो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये जो है पूरा हादसा हुआ है। अब एक के बाद एक जो लोग हैं यहाँ पर आ भी रहे। सर काफी बड़ा हादसा हो गया, कई छात्र हो सकते हैं, सर कुछ आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली
6: अभी? देखो, अभी हमें रेस्क्यू में मदद करनी है, तो यहाँ पे आप लोग की जो एक बार वापसी में आके मैं बात करता हूँ, एक बार रेस्क्यू अभी रहे।
4: तो देखिए, अब एक के बाद एक जो नेता हैं वो यहाँ आ रहे हैं, उन्हें फ्रीली उनके सपोर्टर्स के साथ, समर्थकों के साथ देखिए, कम से कम इनके साथ साथ 8 से 9 लोग जो है इनके साथ अब अंदर घुस गए हैं, कॉरिडोर के अंदर घुस गए हैं। पुलिस ने पूरी जो है इनको परमिशन दे दी है अंदर अंदर घुसने की, और अंदर जाके अपनी जो भी है फोटो
0: फिर तो यही सवाल, इसीलिए मेरे सवाल पूछ रहा हूँ कि ये पॉलिटिशियंस कैसे मदद करेंगे रेस्क्यू ऑपरेशन में? उनको फ्रीली मूव करने दिया जा रहा है, उनको भीतर जाने दिया जा रहा है, वो तो समर्थकों के साथ जाते दिख रहे हैं, तो ये नेता कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन में सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे या हेल्प करेंगे? अभी
4: Thank you. जी बिल्कुल, कोई तरीका ही नहीं है ना ही, क्योंकि ये वीवीआईपी लोग हैं तो इनके हाथ में मिट्टी भी नहीं लगने दी जाएगी, और जो समर्थक हैं वो जाकर के इनके साथ वहां पे फोटो ऑफ करेंगे और फिर वो फोटो ट्विटर पे वायरल की जाएंगे कि हमारे नेता यहां पे पहुंच गए थे और रेस्क्यू में मदद की। लेकिन इन नेताओं के यहां पहुंचने से सबसे बड़ी दिक्कत यह हो रही है कि जो एरिया खाली होना चाहिए था, जिस एरिया पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलना चाहिए था, उस रेस्क्यू ऑपरेशन पे जो प्रशासन का ध्यान होना चाहिए था उनसे ध्यान हटके अब इन वीवीआईपी नेताओं की जो है आवभगत में भी और इन्हें आसपास लोकेशन कंडीशन बताने में भी अब इनका जो दिमाग है, जो समय है वो व्यर्थ होगा। तो अब क्यों आने दिया जा रहा है, क्यों अंदर आ रहे हैं, ये प्रशासन क्यों अलाउ कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि एक तरफ जहां आप जगह खाली करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां आप नेताओं के साथ पार्टी वर्कर्स को लगातार अंदर भेज रहे हैं। कम से कम 10 लोग तो अभी मेरे सामने दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ अंदर गए हैं, उससे पहले जो बीजेपी की एमपी है बासुरी स्वराज वो भी अंदर है, उनके साथ भी कई जो उनके समर्थक हैं वो भी अंदर ही मौजूद हैं। तो ये पता नहीं ऐसा क्यों कराया जा रहा है और इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके बारे में बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है।
7: बच्चे बोलो हॉस्टल बनवाए,
4: आप अपना काम कीजिए।
7: अपना काम क्यों कीजिए, गलत पूछ
0: रहा हूं। आपके पास हम लौटते हैं, देखिए हालत आप देख सकते हैं कि क्या है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल ही रहा है लेकिन राजनेताओं को पहुंचने का सिलसिला नहीं थम रहा है। कोई कांग्रेस से आ रहा है, कोई बीजेपी से आ रहा है, विधायक सांसद पहुंच रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कह रहे हैं कि हम रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करेंगे। वो क्या मदद करेंगे, वो क्या विशेषज्ञता इसमें रखते हैं, ये तो बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन अब प्रत्यक्ष दर्शियों ने क्या कहा है वो भी आपको एक बार सुनाते हैं।
8: बगल वाली बिल्डिंग में थे हम, बगल वाली बिल्डिंग में थे जब हम ऐसे बैठे थे वहां पर, तो एकदम से वाइब्रेट हुई थी पूरी बिल्डिंग। बाद में बाहर आके मेरे को लगा कि भूकंप का झटका आया होगा, हमें फटाफट नीचे उतर के आया, बाद में आके देखा तो पूरी बिल्डिंग नीचे ढाई हुई थी। हाँ जी,
1: और ये बिल्डिंग की हालत कैसी थी? ये पहले सील भी हुई थी, बंद भी किया था बिल्डिंग को,
8: मतलब
1: पहले इस बिल्डिंग खराब हालत की वजह से बिल्डिंग पे ताला भी लगा था।
8: सर इसका तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है।
1: नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ लोग बता रहे हैं कि ये बिल्डिंग बंद थी और अभी पिछले महीने से ये दोबारा इसमें लोगों को बुला करके रखा।
8: हाँ ऐसा कुछ है इसमें थोड़ा।
1: आप बगल वाली बिल्डिंग में रहे?
8: बगल वाली बिल्डिंग में, 9 नंबर बिल्डिंग है।
1: अच्छा, आपकी बिल्डिंग में सब सुरक्षित है? सब सुरक्षित,
8: हमारी में सब ठीक है, मैंने पूरी खाली करवा के ताला लगा दिया।
1: यहाँ पुलिस प्रशासन को पहुंचने में कितना समय लगा?
8: ये पुलिस प्रशासन जल्दी आ गई थी, जब तक यहाँ के जो लोकल बंदे हैं उन्होंने मोर्चा संभाला था रेस्क्यू का, पर पुलिस ये है कि पुलिस आ गई थी, टाइम से आ गई थी।
9: एक्चुअली ये आज का तो है नहीं, इतने टाइम से मैं 4 साल से सत्ता में रह रहा हूँ, नो रेगुलेशन इज गेटिंग फॉलोड बाय एनी ऑफ द पीजी। बट आप लोग पता नहीं क्यों इसको रिपोर्ट पहले करते नहीं हो। अभी कोई मर गया, अभी आप ना घूम के एक बार पूरे सत्या में देख लो, देर विल बी 20-25 सच बिल्डिंग्स जो आज गिरे, एक महीने बाद गिरे, एक साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी। विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई आधा दलाली करता है यहाँ पे, तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन।
10: जितनी भी पीजीज है सब में सिडन लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है और बच्चों का फायदा उठाया जाता है, साउथ कैंपस के सभी बच्चों का, उनको खाना खराब दिया जाता है और उनकी मजबूरी है पीजीज की।
9: आधे बच्चे गंदे खाने से मर जाते हैं, जो बच रहे हैं वो बिल्डिंग गिरने से मर रहे हैं।
11: कितनी बिल्डिंग कलैप्स हुई है?
12: एक बिल्डिंग हुई है पूरी, इतनी 5 फ्लोर
11: बिल्डिंग के बारे में बताइए।
12: 5 फ्लोर था, ठीक है, पीजी थी, जो बच्चे हैं यहाँ पे साउथ कैंपस में जो 5 कॉलेज है उसमें उसके सारे बच्चे यहीं पे थे, ठीक है, बच्चे वहाँ पे दबे थे, कोई भी नहीं थे यहाँ के, जो लोकल स्टूडेंट्स है वो वहाँ पे आके सब जाके चार लगाए, हमारे सामने 2 बच्चों की ना मौत हो गई,
1: और कोई हमारे जूनियर्स भी पढ़ रहे थे।
11: कौन से कॉलेज?
1: हमारा वेंकी कॉलेज, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज,
12: वेंकी, आर्यभट्ट, साउथ
13: कैंपस, जितने भी कॉलेज। सर आधे घंटे तक कोई टीम नहीं आई सर,
11: पुलिस को कहा गया कि 1:45 पर बुलाया, पर पुलिस बहुत,
12: मैं बता रहा हूँ, जो यहाँ पे बूथ पे रहते हैं ना, केवल वो थे 3 से 4 लोग जो हमारे साथ वो लोग थे, आधे 1 घंटे बाद पुलिस आई, उसके बाद एनडीआरएफ टीम आई, कहाँ है यहाँ पे कोई नहीं है।
14: सर एक सवा एक के आसपास ये वारदात हुई थी, उसके बाद अगर पुलिस वालों को 1:45 पे बुलाया गया है, सर अंदर आप देखेंगे सारे जो पॉलिटिशियंस है और जो साथ के जो छात्र संघ लीडर्स है सारे, सर सारे वहाँ रील बना के वहाँ पे, सर एक तरीके से उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है कि वो रेस्क्यू होने ही नहीं दे रहे। सर
11: कांग्रेस के लोग आए, बीजेपी के लोग आए,
12: एक मिनट रुकी है, बीजेपी यहाँ पे है, एमपी भी बीजेपी की, एमएलए भी बीजेपी का, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, तो आएंगे ही अपोजिशन, तो आएगा ही सवाल उठाने यहाँ पे ना, कोई
1: एक मिनट करने आएगा ना रेस्क्यू, अपोजिशन का काम ये है कि आओ रेस्क्यू करना, यहाँ पे सवाल उठाए, सवाल उठाने के लिए भी समय मिलेगा,
12: बिल्कुल
1: ना, यहाँ पे
12: आप सवाल पीजी के लिए आप बताइए, सेंसिटिव एरिया है,
11: एक ही बिल्डिंग है जो
12: एक बिल्डिंग है।
15: ये पॉलिटिकल ब्लेम गेम का समय नहीं है, ये रेस्क्यू का समय है, हम सब लगे हुए, हमारी टीम लगी हुई है, इससे ज्यादा दर्दनाक बात हो नहीं सकती, आज कोई शब्द नहीं है इन बात, इसके अपना दर्द जो दिल में है उसको बयान करने को शब्द नहीं है, और ये जो है जब से हमारी टीम लगी हुई है जो है बच्चों की, सारे स्टूडेंट्स की, तीन बच्चों को निकाला भी गया है। उसके बाद अब बहुत लेट है सर, पुलिस आई, आपने खुद देखा बहुत लेट, एम्बुलेंस आई, अभी 25-26 बच्चे अभी भी जो एस्टिमेट किया जा रहा है, एग्जैक्ट नंबर अभी अथॉरिटीज ने हमें बताया नहीं है। और उसके साथ ये पहला कोई वाकया नहीं है, फर्स्ट इंसिडेंस नहीं है। 31 मई को भी आपको याद होगा साकेत में 5 बच्चे अपने 5 स्टूडेंट्स लॉस्ट देयर लाइफ, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल स्टूडेंट्स, और ये तो मैं इसी साल की बता रहा हूँ। पिछले साल भी ये हुआ था, उससे पिछले साल भी ये हुआ था, सत्यनिकेतन में भी पहले हो चुका है। और ये जो पीजी चल रहे हैं ये बिल्कुल कोई इनकी कोई वो कोई किसी तरह का मापदंड नहीं है। एमसीडी क्या कर रही है, एनडीएमसी क्या कर रही है, यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, अथॉरिटीज क्या, कब तक जवाब नहीं देंगी? सारी अभी भी आप चेक कर लो, ये आसपास पीजी हैं सारी, आप चेक कर लो। उस टाइम भी हमने मैं भी गया था वहां आप लोगों के सामने, हमने सबने कहा था कि इनको चेक कराओ, इनको कहीं ना कहीं इनकी कोई नॉर्म्स तो हो, स्टूडेंट कब तक बर्दाश्त करेंगे। और
16: किसी की लापरवाही जैसी जानकारी मिल रही है, शायद खड़ी बिल्डिंग में कुछ बेसमेंट खोल रहे थे, बहुत दुखद घटना है। बच्चे भी जानकारी मिल रही है, शायद कुछ बच्चों को भी चोटें हैं, कुछ उससे आगे भी होगा। मेरी वहाँ के स्थानीय विधायक अनिल शर्मा इससे बात हुई, वो मौके पर हैं, पूरी एमसीडी की टीम भी बचाव कार्य में लगी हुई है, बाकी तमाम जो मदद है दिल्ली सरकार और एमसीडी उसकी कर रही है। और हम ये प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग जो उसमें दबे हैं वो कुशल से कुशल रहे, और जो भी दोषी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो सरकार सुनिश्चित करेगी।
17: तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, सत्यनिकेतन की ये तस्वीर है जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं एनडीआरएफ के साथ साथ जो एसडीआरएफ की टीम है, इसके अलावा जो लोकल वहां पर आप कह सकते हैं सपोर्ट है लोगों का, वो भी मुहैया हो रहा है। जब ये इमारत गिरी तो सबसे पहले जो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स थे वो वहां के मौजूद छात्र थे या वहां पर मौजूद उनके रिहायशी इलाकों में मौजूद वहां के निवासी थे जो सबसे पहले वहां पर पहुंचे, और धीरे धीरे उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम्स वहां पर पहुंची, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी वहां पहुंच चुके हैं, दिल्ली पुलिस और जो वॉलंटियर्स है वो भी इस समय मौके पर मौजूद है। और देखिए एक दुखद खबर खासतौर पे दिल्ली से, जहां पर एक इमारत सत्यनिकेतन में एक इमारत गिरने के बाद से एक बड़ा हादसा हो गया, कई स्टूडेंट्स के कई छात्रों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर खासतौर पे ये आ रही है कि दिल्ली बिल्डिंग हादसे में बड़ा अपडेट मिल रहा है जिसमें एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती 3 लोगों की हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि जब घायलों को निकाला गया तो उनमें से कुछ घायलों को एम्स के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया जिसमें से 3 की हालत गंभीर है। 4 मंजिला बिल्डिंग हादसे में कई लोग अब भी फंसे हुए हैं और एम्स के ट्रॉमा सेंटर में कई घायलों को भर्ती भी कराया गया है जिसमें से 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और एक और बड़ा अपडेट, हादसे वाली बिल्डिंग के मालिक का नाम आनंद बंसल बताया जा रहा है। देखिए आपको बता रहे हैं कि कैसे इस बिल्डिंग को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जब ये बिल्डिंग की इमारत या फिर उसका ढांचा इतना कमजोर हो गया था तो फिर आखिरकार इसमें स्टूडेंट्स को क्यों रखा गया, और मौके पर राहत और बचाव कार्य अब भी तेजी से जारी है। लेकिन इसी बीच बिल्डिंग यानी जिसका ये हॉस्टल था उसके बारे में भी जानकारी, उसके मालिक के बारे में जानकारी सामने आ रही है। अभी तक 4 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, कई लोगों के अब भी दबे होने की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली बिल्डिंग हादसे में एक बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंशुल सिंह भी मौके से मौजूद हैं। अंशुल, क्या कुछ ताजा अपडेट है? हमने देखा करीबन 2 घंटे से ज्यादा हो चुका है लगातार और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, स्टेट एनडीआरएफ हो या फिर एनडीआरएफ की टीमें हो, फायर ब्रिगेड की टीमें हो, सभी मौके पर मौजूद है, यहां तक कि जो स्टूडेंट छात्र थे वो भी यहां पर मदद के लिए मौजूद है। अभी क्या ताजा हालात है? 4 लोगों को निकालने की बात की जा रही है, कुछ और लोगों को इस रेस्क्यू में निकाला जा चुका है या फिर अभी लोग दबे हुए हैं?
4: जी, अभी भी कई लोग दबे हुए हैं ऐसी आशंका है। और मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरें अगर अपने पीछे की दिखाऊं तो अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। इसमें सबसे बड़ा अपडेट जो इस वक्त हमारे सामने आया है वो ये है कि वो कुछ ऐसे एग्जैक्ट लोकेशन है जो आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि जहां पर लोग दबे हो सकते हैं और उसी के चलते वहां पर अब स्पेसिफिकली जो है अब उनपे हाथों से खुदाई करके वहां पे काम चल रहा है। आप देखें यहां पे और स्ट्रेचर्स, एक और करीब एक घंटा 40 मिनट बाद एक और आदमी को अब यहां से रेस्क्यू करके जो है निकाला जा रहा है। किस हालत में है, इनकी कंडीशन कैसी है, ये अभी तक सुनिश्चित नहीं है, लेकिन जैसा मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं, शायद वो कैमरे पर ना दिखा पाऊं, हालत जो है यहां से जो लोग निकाले जा रहे हैं उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। अब यहां से अगले 10 से 15 मिनट में ये सफदरजंग हॉस्पिटल या एम्स हॉस्पिटल पहुंचेंगे, जहां आगे की जो है इनकी जो मेडिकल जो सुविधाएं चाहिए वो इन्हें दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से यहां से लोग निकाले जा रहे हैं, ये पांचवा शख्स है जो इससे निकाला गया है, और पिछले करीब एक घंटे में ये दूसरा शख्स है जिसे यहां निकाला गया है। तो अब जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है ये एक फोकस तरीके से चल रहा है। फोकस इस पे है कि पहले ये आइडेंटिफाई किया जाए कि जो 20 फीट के आसपास जो मलबा पड़ा है, उस 20 फीट मलबे में आखिरकार कहां कहां लोकेशन से जहां लोग दबे हुए हैं। अब ये पता लगाने के लिए दो तरीके यूज किए जा रहे हैं, एक तो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार है और दूसरा जो केनाइन स्क्वाड है उससे ये पता लगाया गया है, और अब फिर सर्जिकल तरीके से उन्हीं पॉइंट्स पर हाथ से मलबा हटाकर और छोटे मशीनों से मलबा हटाकर के जो है वहां से अभी रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है।
17: बिल्कुल, जैसा अंशुल हमें बता रहे थे, देखिए अक्सर ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन पे बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि अक्सर जब आप मलबा हटाते हैं तो अक्सर जो बड़ा मलबा होता है एक बार फिर से गिर जाता है और फिर उस पूरे इलाके को बंद कर देता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा एहतियात के तौर पर हाथों से, जिस तरीके से हमारे सहयोगी अंशुल भी बता रहे थे कि एक एक करके वहां से उन घायलों को निकाला जा रहा है, पांचों घायल, एक और शख्स को वहां से निकाला गया है करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद। और अंशुल हम तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय के ताजा हालात क्या है। देखिए पांच आप तस्वीरें देख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ, वहां पर इस समय एम्बुलेंस की मौजूदगी है, लगातार एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है, दिल्ली पुलिस मौजूद है, और इसी वजह से वहां पर ज्यादा आप कह सकते हैं कि लोगों को निकालने का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है। लेकिन अंशुल आप उस इलाके में पहुंचे, आपने वहां से रिपोर्ट कर लोगों से बात की, आपने चश्मदीदों से बात की, क्या कुछ अब तक ये पता लग पाया कि आखिरकार कितने लोग उस बिल्डिंग में मौजूद थे उस समय, कितने छात्र उस बिल्डिंग में रह रहे थे उस समय जब यह हादसा हुआ?
4: जी देखिए, अभी कोई क्लैरिटी से हम नहीं बता सकते कि आखिर कितने लोग उसमें रह रहे थे। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो यहाँ के लोकल्स हैं, उन्होंने दो तीन नंबर्स जो हैं वो हमें दिए हैं, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि आखिर कितने बच्चे उसमें रह रहे थे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 50 से 70 लोग हो सकते हैं, कुछ बोल रहे हैं 20 से 25 लोग हो सकते हैं, और ऊपर से लॉन्ग वीकेंड था, जन्माष्टमी की छुट्टी थी फ्राइडे को, सैटरडे संडे, तो कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो वहां से घर को चले गए हो। तो एग्जैक्ट नंबर कितना है, कितने बच्चे उसमें दबे हैं, कितना स्टाफ जो हॉस्टल का है वो दबा है, वार्डन होगा, अन्य खाना बनाने वाला स्टाफ होगा, सफाई कर्मचारी होंगे, सफाई के स्टाफ होंगे, तो जो संख्या है ये कितनी एग्जैक्ट है इस पे अभी तक किसी भी तरह की जो साफ नंबर है या साफ आंकड़ा है वो अभी तक सामने नहीं आ पाया।
17: बिल्कुल अंशुल, एक बात बताइए, क्योंकि आप इस इलाके में मौजूद हैं, मैं भी इस इलाके में 2-3 बार जा चुका हूं, इसको यहां पर जो बिल्डिंग है यहां पर ज्यादातर पीजी बहुत ज्यादा मौजूद है, खासतौर पर स्टूडेंट बहुत ज्यादा मौजूदगी रहती है, क्योंकि साउथ कैंपस का इलाका भी बेहद करीब है। अभी जो बिल्डिंग्स है, क्या उसके आसपास जो और दूसरे पीजी है उनको भी खाली करा दिया गया, क्योंकि यहां की इमारतें एक के साथ एक बहुत ज्यादा क्लोज उसमें बनी हुई है, इमारतों का निर्माण जो है एक के साथ एक हुआ है।
4: जी बिल्कुल, जहां यह हादसा हुआ उसके साथ जो लगी हुई बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है, और उसके आसपास की एक दो और बिल्डिंग्स जो यहां पे अगर कोई और हादसा हो या रेस्क्यू ऑपरेशन में मलबा थोड़ा और फिसल जाए और वहां तक खतरा पहुंच जाए, तो उन बिल्डिंग्स को भी सुरक्षा कारणों की वजह से खाली करा दिया गया है। लेकिन यहां के जो लोकल्स हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है, वो ये कह रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग है ये पिछले कुछ महीनों से बंद पड़ी थी, एमसीडी ने पहले ही इस बिल्डिंग को बंद कर दिया था, क्योंकि ये बिल्डिंग खुद ही बहुत जर्जर हालत में, लेकिन पिछले महीने से, अगस्त के महीने से ही अचानक से इस बिल्डिंग को दोबारा सुचारू कराया जाता है, बच्चों का एडमिशन लिया जाता है, और कुल एक महीने के अंदर अंदर ये बिल्डिंग में इतना बड़ा हादसा होता है और ये पूरी बिल्डिंग गिर जाती है, और अभी कितने बच्चे फंसे हैं, कितने बच्चों की जान पर बनाई है, उनके माँ बाप का क्या हाल होगा, इस पे अभी तक कुछ भी सोचना या बोलना भी बहुत मुश्किल है।
17: बिल्कुल, इस बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जब ये बिल्डिंग इस तरीके से जर्जर हालत में थी तो आखिरकार इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और अगर कार्रवाई की गई तो फिर से क्यों खोला गया। हमारे साथ कई ऐसे चश्मदीद भी, हम उनकी बातें आपको सुनाते हैं, जब यह हादसा हुआ उसके बाद वो वहां पर मौजूद थे, उनका क्या कहना है आइए आपको सुनाते हैं।
9: एक्चुअली ये आज का तो है नहीं, इतने टाइम से मैं 4 साल से सत्ता में रह रहा हूं, नो रेगुलेशन इज गेटिंग फॉलोड बाय एनी ऑफ द पीजी, बट आप लोग पता नहीं क्यों इसको रिपोर्ट पहले करते नहीं हो, अभी कोई मर गया, अभी आप ना घूम के एक बार पूरे सत्या में देख लो, दे विल बी 20 to 25 सच बिल्डिंग्स जो आज गिरे, एक महीने बाद गिरे, एक साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी। विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई आधा दलाली करता है यहाँ पे, तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन।
10: जितनी भी पीजीज हैं सब में सीढ़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है और बच्चों का फायदा उठाया जाता है, साउथ कैंपस के सभी बच्चों का, उनको खाना खराब दिया जाता है और उनकी मजबूरी है पीजीज की।
9: आधे बच्चे गंदे खाने से मर जाते हैं, जो बच रहे हैं वो बिल्डिंग गिरने से मर रहे हैं।
11: कितनी बिल्डिंग कलैप्स हुई है?
12: एक बिल्डिंग हुई है पूरी,
11: इतनी मर्जी।
12: पांच फ्लोर
11: बिल्डिंग के बारे में बताइए।
12: पांच फ्लोर था, ठीक है, पीजी थी। जो बच्चे हैं यहाँ पे साउथ कैंपस में, जो पांच कॉलेज है उसमें उसके सारे बच्चे यहीं पे थे, ठीक है। बच्चे वहाँ पे दबे थे, कोई भी नहीं थे यहाँ के, जो लोकल स्टूडेंट्स थे वो वहाँ पे आके सब जाके चार लगाए। हमारे सामने दो बच्चों की ना मौत हो गई, और कोई
10: हमारे जूनियर्स भी पढ़ रहे थे।
11: कौन से कॉलेज?
10: हमारा वेंकी कॉलेज, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज,
12: वेंकी, आर्यभट्ट, साउथ कैंपस,
13: जितने भी कॉलेज। सर आधे घंटे तक कोई टीम नहीं आई सर।
11: पुलिस को कहा गया कि 1:45 पर बुलाया, पर पुलिस बहुत,
12: मैं बता रहा हूँ, जो यहाँ पे बूथ पे रहते हैं ना, केवल वो थे 3 से 4 लोग जो हमारे साथ, वो लोग थे। आधे एक घंटे बाद पुलिस आई, उसके बाद एनडीआरएफ टीम आई। कहाँ है यहाँ पे? कोई नहीं है
14: सर। एक सवा एक के आसपास ये वारदात हुई थी, उसके बाद अगर पुलिस वालों को 1:45 पे बुलाया गया है सर, अंदर आप देखेंगे सारे जो पॉलिटिशियंस है और जो साथ के जो छात्र संघ लीडर्स है सारे वहाँ रील बना के वहाँ पे सर, एक तरीके से उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है कि वो रेस्क्यू होने ही नहीं दे रहे सर।
11: कांग्रेस के लोग आए, बीजेपी के लोग आए,
12: मेरे को एक मिनट रुकिए, बीजेपी यहाँ पे है, एमपी भी बीजेपी की, एमएलए भी बीजेपी का, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, तो आएंगे ही, अपोजिशन तो आएगा ही सवाल उठाने यहाँ पे, ना कोई
10: एक मिनट करने आएगा ना रेस्क्यू। अपोजिशन का काम ये है कि आओके रेस्क्यू करना, यहाँ पे सवाल उठाए, सवाल उठाने के लिए भी समय मिलेगा।
12: बिल्कुल ना, यहाँ पे आप सवाल पीजी के लिए आप बताइए, सेंसिटिव एरिया है,
11: एक ही बिल्डिंग है, जो
12: एक बिल्डिंग है।
18: हमारे यहाँ पे दुकान है, हम दुकान के अंदर बैठे थे, हम एकदम आवाज आई जैसे भूकंप टाइप होता है 1:30 बजे, हम अंदर इतनी नहीं आई, जो बाहर बच्चे खड़े थे उनके पास आवाज आई, हम फटाफट भाग के आए। यहाँ पे बहुत ज्यादा धुआं वगैरह था, सारी बिल्डिंग गिरी हुई थी, और अभी इन्होंने यहाँ से मजदूर वगैरह निकाल लिए हैं, उनकी डेड बॉडी मिली है, और चार बच्चे निकाले हैं जिनकी सांसें चल रही थी, वो अभी उनको एम्बुलेंस ले गई है, बट वो मतलब अधमरे की हालत में थे।
10: तो ये हॉस्टल डेज नाम की बिल्डिंग है, इसके साथ एक और बिल्डिंग पीजी गिरी है। हॉस्टल डेज तो है वो बॉयज पीजी है प्रॉपर, पांच फ्लोर की बिल्डिंग थी, एंड इसके साथ बगल वाली बिल्डिंग भी गिरी है, एंड जो ये येलो वाली बिल्डिंग है ये दोनों हिल रही थी जब वो गिरी है, तो इन दोनों में भी पीजीज ही है, और इनके एंट्रेंस एक उधर से एक पीछे की साइड से।
19: दिल्ली के सत्य निकेतन में 5 मंजिला इमारत गिरी है, और अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि उसके सामने हम यहाँ पे खड़े हैं, देखिए यही वो बिल्डिंग है जो गिरी है, और देखिए 5 मंजिला बिल्डिंग है और ये भरभरा कर गिरी है। बीते 2 दिनों से जिस तरह से दिल्ली में लगातार बारिश हो रही थी, उसके बाद ये बिल्डिंग गिरी है, और एनडीआरएफ और जो भी सिविक एजेंसियां हैं, रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है, क्योंकि इसमें कई लोग रह रहे थे। बिल्डिंग गिरने के बाद अभी तक अगर बात करें तो 4-5 लोगों को निकाल के हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, लेकिन अभी भी एनडीआरएफ के द्वारा जो है अंदर बिल्डिंग में जो फंसे हैं उनको निकालने का काम किया जा रहा है। ये घटना आज रविवार की है, जब सुबह में सबको पता लगा कि ये बिल्डिंग जो है सत्य निकेतन का एरिया है, देखिए यहाँ चारों तरफ जो है ये बिल्डिंग है, चारों तरफ से बिल्डिंग है, और सभी बिल्डिंगों में यहाँ पर ज्यादातर जो है वो पीजी चलता है, जो साउथ कैंपस में यहाँ स्टूडेंट होते हैं वो इस पीजी में रहते हैं और यहाँ रह के पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में इस बिल्डिंग में भी पूरी संभावना है कि काफी ज्यादा स्टूडेंट हो सकते हैं जो कि यहाँ पे रेंट पे रह रहे थे, और देखिए इस रेस्क्यू का जो कार्यक्रम है इसमें स्थानीय लोग भी बढ़ चढ़ के मदद कर रहे हैं, क्योंकि जब ये घटना हुई थी तो घटना के तुरंत बाद से जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर मदद के लिए आगे आ गए थे, जितना हो सके वो लोग काम कर रहे थे। और देखिए ये जो घटना हुई है ये पड़ोस में आप लोग रहती है, कब घटना हुई थी? कब
20: 1:30 बजे हुआ था, 1:30 बजे ऐसा लगा जैसे भूकंप आया, पूरी बिल्डिंग 3 मंजिल नहीं है, 5 मंजिल थी, झूठ बोल रहे हैं 3 मंजिल थी, 5 मंजिल बिल्डिंग थी, एक फ्लोर पे 10 बच्चे रहते हैं, 10 बच्चे रहते हैं एक फ्लोर पर।
19: अच्छा, किराए पे रहते हैं
20: इसमें।
19: और कब से, कितनी पुरानी बिल्डिंग है?
20: बिल्डिंग तो देखो बहुत पुरानी थी, ये लगा लो 40 साल पुरानी तो होगी, हमारी शादी को 22 साल हो गए, जहाँ पे आंटियां रहती हैं उनकी शादी को कम से कम 40 साल पुरानी बोल रही थी बिल्डिंग की। देखो आप देखो ना लोहा कितना गला हुआ है, और उसके ऊपर से आप बेसमेंट खोद रहे हैं।
19: अच्छा, बेसमेंट का काम चल रहा है?
20: बेसमेंट में कुछ काम चल रहा है, लेबर मरी है इसमें।
19: अच्छा, लेबर
20: मरी है ज्यादा, नीचे लेबर बैठती है, और उसके बाद जो फ्लोर पे लड़के हैं पूरा लड़कों का पीजी था, ये कुछ नहीं बचा होगा, बहुत बुरा होगा। साथ वाली बिल्डिंग में कितना पिलर है, उसमें कोई पिलर है वो भी ऐसे गिरेगी, दो बारिश होगी वो भी ऐसे गिरेगी, कोई वो नहीं है।
3: तो क्या लगता है सिर्फ किराया कमाने के लिए लापरवाही से बिल्डिंग यहाँ पर बनाई थी? देखिए ये यहाँ के निवासी है, इस बिल्डिंग के ठीक बगल में यहाँ पे ये मंदिर है, यहाँ पे ये लोग दशकों से रहते हैं और इनका आरोप ये है कि इस तरह की जर्जर बिल्डिंग जो है वो यहाँ पे बनाई गई है और जिसके कारण ये हादसा हुआ है। और ये बता रही है कि यहाँ पे इस बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट का काम चल रहा था और मजदूर भी थे क्योंकि ये ठीक सामने इनका घर है, चश्मदीद है ये यहाँ की।
17: और देखिए हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है, कई चश्मदीद अलग अलग तरीके की बातें भी कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंशुल, अंशुल देखिए कुछ चश्मदीदों ने बताया कि एक नहीं दो इमारतें थी, दो हॉस्टल थे, साथ साथ जुड़े हुए थे दोनों के। दूसरे एक और चश्मदीद की हम बात सुना रहे थे, वो कह रही है कि देखिए जब ये बिल्डिंग जर्जर थी तब भी इसमें बेसमेंट खुदाई का काम चल रहा था। क्या कुछ और कहा जा रहा है वहां के आसपास के लोगों द्वारा, खासतौर पर जर्जर इमारत को लेकर?
21: जी मेरे साथ कुछ छात्र यहाँ पे मौजूद हैं, ये इनका कहना है कि इनके जो मित्र हैं वो उस बिल्डिंग में ही थे और अब लगातार जो छात्र अभी अंदर फंसे हुए हैं उनके पेरेंट्स का लगातार इनके पास फोन आ रहा है, तो इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर उस बिल्डिंग में चल क्या रहा था। आपके कुछ दोस्त वहां फंसे हुए हैं, किस हालत में बिल्डिंग थी और कितने लोग आपके जानने वाले फंसे हैं?
22: अंकल मेरे जानने वाले सर दो तीन बच्चे थे, इवन मेरे कॉलेज के थे दोस्त थे और हम मेरा तो कल ही उनसे बात हुआ था, मैं तो वहीं पे था। इवन बिल्डिंग हम मैं अभी खुद शिफ्ट होने वाला था वहां पे और बिल्डिंग का रेनोवेशन से लेकर सब चीज इतना बेकार था और मेरे दोस्त इवन मतलब उनसे सुबह से कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा जब से कोलैप्स हुआ है बिल्डिंग। मैं कॉन्टिन्यूसली कॉल कर रहा हूँ बट इतनी बड़ी कैजुअलिटी हो गई और बिल्डिंग इतना बेकार, इतने इसी नाम का हॉस्टल नाम का इतनी बिल्डिंग यहाँ पे है। और सर वो लोग जैसे ही इंसिडेंट हुआ वो लोग अपना बैनर हर जगह से हटाना स्टार्ट कर दिए, इवन मेरे फ्रेंड से मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, उनके पेरेंट्स का मेरे पास कॉल आ रहा है।
21: फर्स्ट ईयर के ही बच्चे थे और ये हॉस्टल अभी दोबारा रीस्टार्ट हुआ था?
22: हाँ ये इसमें पहले कोई नहीं रहता था बट इन्होंने बिना रेनोवेशन के स्टार्ट कर दिया और मेरे इतने फ्रेंड है वहाँ पे उनसे किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है मेरा।
21: अंशुल काम भी चल रहा था
22: बिल्डिंग, बेसमेंट में काम चल रहा था उनका, बेसमेंट बनाने का वो लोग कर रहे थे, इवन वो भी बिल्डिंग इतने बेकार अंदर आप कर रहे हो और आज तो संडे था, मतलब समझ लीजिए सब बच्चे आधे सो रहे होंगे, कुछ ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे और ऐसा इंसिडेंट हो गया। सर
17: अंशुल अगर आप इस छात्र से पूछ सके, क्योंकि ये छात्र बता रहे हैं कि देखिए इसी नाम के हॉस्टल कई जगहों पर मौजूद थे, वो हॉस्टल कौन कौन से थे और कहां कहां पर इनकी बिल्डिंग है, क्योंकि इन्होंने ये भी बताया कि अब उसका नाम हटाने की कोशिश की जा रही है उन हॉस्टल्स की।
21: जी बिल्कुल, मैं ये सवाल इनसे पूछूंगा, यहाँ पे कितने हॉस्टल डेज के नाम से हॉस्टल और चल रहे हैं?
23: मैं खड़ा था, मेरे सामने दो लड़के जो बैनर है हॉस्टल डेज का सर पे उठा के भगे। अच्छा। यहाँ पे एक गर्ल्स है और तीन बॉयज है, एक ये वाला था, एक लास्ट लेन में, इस तरीके से चार है,
21: चार हैं यहाँ पे और उनसे उन्होंने अपने बैनर्स हटा दिए।
23: बिल्कुल सबसे पहला काम उन्होंने वो।
21: और ओनर्स कहाँ रहते हैं इनके, इसी इलाके में रहते हैं?
23: ओनर्स तो उसका आइडिया नहीं, हॉस्टल डेज बहुत बड़ी ब्रांच है तो शायद वो मेन उनके जो हेड हो गए बस वही होंगे।
21: तो अब देखिए अपनी जो कमियां हैं वो छुपाने के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं, एक तरफ जहां बच्चे अभी दबे हुए हैं, जो हॉस्टल ओनर्स हैं उनका फोकस ये होना चाहिए था कि बच्चों के रेस्क्यू पे अपना ध्यान लगाएं, अपने रिसोर्स लगाएं, लेकिन उनका ध्यान क्या है जो बाकी उनके हॉस्टल चल रहे हैं उनसे हटा लिया जाए ताकि और सवाल ना खड़े हों और उन बिल्डिंग की जाकर के जांच पड़ताल ना हो पाए। तो आप देखिए कि इंसानियत किस तरीके से जो है इंसानियत किस तरीके से मरती है ऐसे सिचुएशन में जहां पैसों की लालच की वजह से एक तो आपने बंद बिल्डिंग में लोगों को रुकवाया, फर्स्ट ईयर के बच्चे थे, पिछले कई दिनों से ये बिल्डिंग बंद थी, अगस्त में आपने महीना शुरू करवाया, नए बच्चे जो सेशन ज्वाइन करने आए यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनको आपने वहां रुकवाया, बेसमेंट में काम शुरू किया, झरझर बिल्डिंग के बेसमेंट में काम शुरू किया, जाहिर सी बात है वाइब्रेशन हुई होंगी और एक के बाद एक जो पूरी पांच मंजिला बिल्डिंग थी लगातार कोलैप्स हुई और अब 20 फीट मलबे में से जाने ढूंढी जा रही
17: है। बिल्कुल अंशुल मैं एक अगर आपसे लगातार अब हम हमारे साथ बने हुए अंशुल हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली बिल्डिंग हादसे पर एक बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है, हमारे सहयोगी अंशुल भी हमारे साथ और स्पॉट से जुड़े हुए हैं, लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन चश्मदीदों के मुताबिक बेसमेंट में काम चल रहा था। देखिए यही बात है जो सबसे बड़ा कंसर्न है कि अगर इमारत इतनी ज्यादा जर्जर थी, लगातार उसकी हालत खराब थी, वहां उसको खोला गया, दोबारा से वहां पर स्टूडेंट्स को शिफ्ट किया गया, हॉस्टल को चलाया गया, लेकिन इसी दौरान बेसमेंट में काम भी किया जाता रहा। और देखिए एक चश्मदीद ने कहा कि मेरे कई दोस्तों में से संपर्क नहीं हो पा रहा है, हादसे के बाद बिल्डिंग के बेसमेंट में काम जारी था। ये बड़ा अपडेट कि जब वेल्डिंग जर्जर थी, इतनी बुरी हालत में थी, तब आखिरकार उसकी रिपेयर का काम कैसे वहां पर मौजूद लोगों के रहने के बावजूद वहां पर उसी समय जारी था। और चश्मदीदों के मुताबिक बेसमेंट में काम चल रहा था। अंशुल एक बार फिर से अगर आप वहां पर मौजूद हैं, एक बार वहां की पिक्चर हमें दिखाइए, क्लियर पिक्चर कि आखिरकार वो इलाका कैसा है, उस इलाके में कैसे हॉस्टल्स वहां पर मौजूद हैं। और इस समय क्योंकि कई छात्र वहां पर मौजूद हैं जिनके अपने यार दोस्त अपने रिश्तेदार खोए हुए हैं, लगातार उनकी तलाश में भी मौजूद हैं। ये बड़ी पिक्चर आप वहां से अगर दिखा सके हमें तो।
21: जी मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से बताना चाहूंगा, आप देखिए यहाँ पे कितनी सारी इलीगल बिल्डिंग्स चल रही हैं। अगर कैमरा पैन अप करके दिखाऊं तो ये इसमें देखिए यहाँ भी 5 फ्लोर बने हुए हैं, 3 फ्लोर की इजाजत होती है, 5-5 फ्लोर की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और इनमें बच्चे रह रहे हैं, छात्र रह रहे हैं, किस कंडीशन में रह रहे हैं, इन बिल्डिंग्स की क्या हालत है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि एमसीडी को यह ना पता हो कि यहाँ पे ये बिल्डिंग्स इलीगल कंस्ट्रक्शन है। 1, 2, 3, 4 प्लस रूफ, 5-5 फ्लोर्स की जो बिल्डिंग है यहाँ बनाई गई है, जबकि जो बिल्डिंग प्लान है इस इलाके का उसके अनुसार 3 फ्लोर से ज्यादा की बिल्डिंग जो है वो यहाँ नहीं बन सकती। और एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अब यहाँ पे लगता है यहाँ मूवमेंट दोबारा शुरू हुई है और एक और आदमी को जो है यहाँ रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन अभी तक इस बात की कोई क्लैरिटी नहीं है कि आखिरकार कितने ऐसे लोग हैं जो इसमें फंसे हो सकते हैं। लेकिन अब आप आसपास देखिए कि किन हालतों में यहाँ पर बिल्डिंग है। ये सामने बिल्डिंग देखिए, ये एक और 5 मंजिला बिल्डिंग है, किस हालत में ये बिल्डिंग है। ये सारी 5-5 मंजिला बिल्डिंग यहाँ पे बनवा रखी है जबकि अलाउड है बस 3 मंजिल बनाने का। एमसीडी को पता है, लोकल पुलिस को पता है, प्रशासन को पता है कि यहाँ पर ये बिल्डिंग नहीं बन सकती, यहाँ पे इस तरीके से लोग रेंट पे नहीं रह सकते, इनके हो सकता है रेंट अग्रीमेंट्स हो और भी कई लीगल डॉक्यूमेंट्स भी हो, बिजली का कनेक्शन हो, तो ये सब कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है। और वो जो बिल्डिंग चल रही थी जो जर्जर हालत में बंद करा दी गई थी, उस बिल्डिंग में दोबारा बच्चों को रहने किसने दिया, क्यों लोकल पुलिस ने नहीं रोका, क्यों एमसीडी ने ध्यान नहीं दिया, ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद देते देते पुलिस प्रशासन के पसीने।
17: और अंशुल सबसे कमाल की बात कि जब आप बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में आप उसके लगातार उसके रिपेयर का काम करा रहे हो और इतना स्ट्रक्चर में बदलाव कर रहे हो, तब आखिरकार उसमें स्टूडेंट कैसे रह रहे थे। अगर स्ट्रक्चर का काम कराना था, रिपेयर कराना था, तो स्टूडेंट्स को वहां से बाहर होना चाहिए था। और अगर इस बिल्डिंग पर पहले भी सवाल खड़े हुए थे तो आखिरकार आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसके काम को दोबारा से कैसे चालू किया गया, ये एक बड़े सवाल हैं जो अब भी लगातार अधिकारियों के साथ साथ उस हॉस्टल के लोगों को देने हैं जो ये हॉस्टल चला रहे थे। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है अंशुल, क्योंकि आप वहां पे देख रहे हैं कि वहां पर पुलिस प्रशासन दोनों मौजूद है, एक मेजर कंसर्न वहां के लोगों के अंदर क्या कुछ उनका कहना है कि अभी क्या लोगों में दहशत है, क्योंकि देखिए अगर एक बिल्डिंग इस तरीके से खराब हालत में थी तो आसपास कई आपने जैसे दिखाया कि कई और हॉस्टल मौजूद है, वहां पर छात्रों का क्या रिएक्शन है वहां पर इस समय।
21: जी बिल्कुल, ये सवाल आपका मैं सीधा छात्रों पर ही लेके चलता हूँ। देखिए आज इतना बड़ा हादसा हुआ, आपके दोस्त रह रहे थे, बिल्डिंग को लैप्स हो गई, तो आप लोग को अपनी सुरक्षा के लिए भी डर लगता है कि आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं वो सेफ है या नहीं।
23: हमारी सुरक्षा तो बाद में आएगी, हम दोनों भाई अंदर ही थे, बीच में जहाँ पे हो रहा था, कोई अंदर मदद करने के लिए नहीं आ रहा था, लेकिन हॉस्टल डेज वाले अपने आदमी भेजते हैं कि तुम बैनर हटाओ, अगर वही बैनर जो आदमी हटाए थे उन्हीं को अगर तुम अंदर भी भेज देते ना तो 2-4 लोग जल्दी अगर
21: काम। बगल वाली बिल्डिंग में रहते हैं?
23: नहीं, हम लोग, मैं यहाँ पे फ्लैट में रहता हूँ, उसी लाइन पे फ्लैट पे रहता हूँ
21: जी।
23: और तो वहाँ पे ये फ्लैट पे रहने जाने वाला था, जो बिल्डिंग गिरी है उसमें रहने जाने वाला था। अब कहाँ से, कौन सी बिल्डिंग सेफ है हमें पता ही नहीं है, और हम स्टूडेंट्स हैं, हमें क्या सेफ्टी मेजर्स।
21: घर पे बात हुई, माता पिता से बात हो गई?
23: नेटवर्क ही नहीं आ रहा है किसी का, कोई
21: तो आप देखिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तनाव है। अभी इन बच्चों की भी माता पिता से बात नहीं हो पाई है, तो कहीं ना कहीं माता पिता भी काफी ज्यादा हो सकता है कि परेशान हो अपने बच्चों को जान को लेकर के, हालत को लेकर के। अभी देखिए एक और रेस्क्यू अब जो है ये हो गया है और ये 6ठे आदमी को जो है अब ये एम्बुलेंस में डाला जा रहा है। और अब ये 6 लोगों को कुल अब ये कंफर्म कर सकते हैं आज तक पे कि 6 लोगों को जो है अब यहाँ से रेस्क्यू करा लिया गया है। आप देखिए एक और ये तस्वीरें हैं, कितनी बुरी हालत में ये आदमी है, लेकिन देख करके ये लग रहा है कि ये अभी भी
2: जिंदा है, रिस्पांस कर रहे, अभी भी रिस्पांस कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, खुद ही ऑक्सीजन मास्क इन्होंने खुद ही अपने हाथ से पकड़ रखा है। लेकिन आप देखें कि ये जो छठा रेस्क्यू है, छठा और सातवां रेस्क्यू है, ये अब कहीं ना कहीं हो गया है। अभी भी और कितने लोग हैं, कितना लंबा ऑपरेशन है, इसकी कोई अभी तक क्लैरिटी नहीं है। अब देखिए यहाँ कितना ज्यादा कंफ्यूजन है, यहाँ पर जहाँ एक तरफ लोगों को अंदर डाला जा रहा है, अब यही ढूंढा जा रहा है कि इस एम्बुलेंस का ड्राइवर कहाँ गया। तो आप देखें कि यहाँ इतनी हबड़ दबड़ में यहाँ पे काम हो रहा है, दो घंटे से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी भी जिस तरीके से ये ऑपरेशन एक सुनियोजित प्लान्ड तरीके से चलना चाहिए था, एसओपी के साथ चलना चाहिए था, वो एसओपी कहीं ना कहीं अब थोड़े ढीले पड़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे पुलिस को काफी दिक्कत हो रही है, लोकल स्टूडेंट्स को और लोकल्स को यहाँ से खाली करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है सब में एंजाइटी है, सभी जानना चाहते हैं कि हुआ क्या है, क्या उनका दोस्त जो अगला आदमी निकल रहा है क्या वो उनका दोस्त है, क्या वो उनका जानने वाला है, और इसलिए सब यहाँ आके लगातार देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी कोशिश में, इसी चेष्टा में जो प्रशासन का काम है उस पर कहीं ना कहीं अब असर पड़ता हुआ भी दिख रहा है। तो अभी ये देखिए ये एम्बुलेंस अब यहाँ से निकल गई है, छठा रेस्क्यू जो है वो अब यहाँ से करा दिया गया है, लेकिन अभी भी कई और लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं, इसकी आशंका है, नंबर करीब 50 से ऊपर भी हो सकता है या 20 के आसपास भी हो सकता है, नंबर पे क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि हर आदमी जो यहाँ प्रत्यक्षदर्शी था, हर आदमी अपना वर्जन बता रहा है, हर आदमी अपने हिसाब से बता रहा है कि उसे क्या लगता है कितने लोग थे, लेकिन अभी तक ऑफिशियली कितने लोग थे, रजिस्टर में कितनी एंट्री थी, एडमिशन में कितने लोग थे और क्या पुलिस को जानकारी थी कि ये यहाँ पे पीजी चल रहा है और पीजी में बच्चे रह रहे हैं, बच्चों का एड्रेस लोकेशन ये सब क्या पुलिस के पास था या नहीं, तो ये कई सारे अभी ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढना अभी इस पूरे मामले में बाकी है।
17: बिल्कुल। और अंशुल देखिए, ना सिर्फ जो हॉस्टल मैनेजमेंट था, जो ये हॉस्टल चला रहा था, उसके मैनेजमेंट पर सवाल तो खड़े होते हैं कि देखिए लोगों को बचाने से ज्यादा उनको अपने बोर्ड उतारने और अब वहां से अपने लोगों को हटाने में ज्यादा उन्होंने परवाह की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपने भी ठीक कहा कि पुलिस प्रशासन को क्या इसकी जानकारी नहीं थी, कैसे ये हॉस्टल चल रहे हैं, कितने बच्चे उसमें रहते हैं। और देखिए इसी बीच दिल्ली बिल्डिंग हादसे पर एक और बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को बता दें कि अब तक 6 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है, उनको रेस्क्यू कराने के लिए अब भी यहां पर जो हमारी रेस्क्यू टीम से एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें, फायर ब्रिगेड की टीमें वहां पर मौजूद है। चश्मदीदों के मुताबिक जब ये पूरा हादसा हुआ, यानी हादसे से पहले भी यहां पर बेसमेंट का काम चल रहा था, हादसे के वक्त बिल्डिंग में बेसमेंट का काम चलाया जा रहा था, उसके कंस्ट्रक्शन, उसके रिपेयर का काम, और कई चश्मदीदों ने तो ये भी बताया कि मेरे कई दोस्तों से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। देखिए कई चश्मदीद, कई छात्र जो आसपास ही हॉस्टल्स में रहते थे वो इस इलाके में पहुंचे अपने दोस्तों की के जानने के बारे में, उनके परिवार के लोग भी उनके दोस्तों को फोन कर रहे हैं, लेकिन अब भी कई लोग हैं जिनके दबे होने की आशंका इस बिल्डिंग के मलबे में जताई जा रही है। और चश्मदीदों के मुताबिक बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन का काम, रिपेयर का काम उस समय जारी था जब यह हादसा हुआ।
5: सर बगल वाली बिल्डिंग में थे हम, बगल वाली बिल्डिंग में थे, जब हम ऐसे बैठे थे वहां पर तो एकदम से वाइब्रेट हुई थी पूरी बिल्डिंग, बाद में बाहर आके मेरे को लगा कि भूकंप का झटका आया होगा, अब मैं बड़ा बड़ा नीचे उतर के आया, बाद में आके देखा तो पूरी बिल्डिंग नीचे ढाई हुई थी। हाँ जी।
2: और ये बिल्डिंग की हालत कैसी थी, ये पहले सील भी हुई थी, बंद भी किया था बिल्डिंग को,
5: मतलब
2: पहले इस बिल्डिंग खराब हालत की वजह से बिल्डिंग पे ताला भी लगा था।
5: सर इसका तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है,
2: नहीं क्योंकि यहाँ कुछ लोग बता रहे हैं कि ये बिल्डिंग बंद थी और अभी पिछले महीने से ये दोबारा इसमें लोगों को बुला करके रखा।
5: हाँ ऐसा कुछ है इसमें थोड़ा।
2: आप बगल वाली बिल्डिंग में रहते?
5: बगल वाली बिल्डिंग में, 9 नंबर बिल्डिंग है।
2: अच्छा, आपकी बिल्डिंग में सब सुरक्षित है? सब सुरक्षित,
5: हमारी में सब ठीक है, मैंने पूरी खाली करवा के ताला लगा दिया।
2: यहाँ पुलिस प्रशासन को पहुंचने में कितना समय लगा?
5: ये पुलिस प्रशासन जल्दी आ गई थी, जब तक यहाँ के जो लोकल बंदे हैं उन्होंने मोर्चा संभाला था।
6: समय क्यों लग रहा है, थोड़ा सा बताएं सर,
7: थोड़ा समय।
6: क्या नाम है?
7: जिंदा
6: बनाओ बनाओ बनाओ।
17: तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि हादसे वाली जगह की लाइव तस्वीरें दिल्ली, और यह ऑपरेशन जारी है यहां पर जिंदगियों को बचाने का, और किस तरीके से बिल्डिंग के बाद वहां पर कई जो लोग हैं जो उसमें इंजर्ड हुए हैं, जो जख्मी हैं, उनको एम्स के ट्रॉमा सेंटर और आसपास के अस्पतालों में ले जाने का काम जारी है। ये तीनों तो
24: नोडल ऑफिसर कैट्स।
6: अच्छा, सर ये क्या दिल्ली सरकार की तरफ?
24: हाँ, दिल्ली सरकार की तरफ से। अभी तक जो हमें कॉल मिली है उससे अब तक हम 5 लोगों को शिफ्ट कर चुके हैं एम्स ट्रॉमा सेंटर में। हाँ जी कैजुअल्टी, अभी ये नहीं बता सकते कि हम उसमें क्या पोजीशन है, वो हॉस्पिटल में जाके बता पाएंगे। अंदर 25 से 30 लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि 25 से 30 कैजुअल्टी हो सकती है। एम्स ट्रॉमा सेंटर, हाँ जी। नहीं अभी पेरेंट्स से हमें किसी से कॉन्टेक्ट नहीं हुआ, हमारा काम है हम पेशेंट को शिफ्ट करना, तो हमारी जो एम्बुलेंस 17 एम्बुलेंस हमारी लगी हुई है साइड पे है और हमारी एम्बुलेंस जो भी कैजुअल्टी निकल रही है उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर रही है।
0: ठीक है, बहुत शुक्रिया।
24: ठीक है
0: सर, एक बार आपका नाम बताइए।
24: बलराज सिंह, नोडल ऑफिसर कैप्स।
17: और देखिए ये एम्बुलेंस सेवा के अधिकारी थे जो हमको बता रहे थे कि किस तरीके से वहां पर मौजूद एम्बुलेंस, करीबन 17 एम्बुलेंस वहां पर मौजूद है, 5 लोगों को वहां से रेस्क्यू कराकर एम्स के ट्रॉमा सेंटर भेजाया गया है। और हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी अरविंद ओझा भी जुड़ गए। अरविंद देखिए ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, निश्चित तौर पर अभी कई इंक्वायरीज होंगी, कई जांच परख होगी, ये दिखा जाएगा कि किसकी लापरवाही थी। लेकिन जिस तरीके से हमारे सहयोगी और चश्मदीद वहां बता रहे थे, चश्मदीद वहां मौजूद है कि हॉस्टल के लोग वहां से हॉस्टल के बोर्ड हटा रहे हैं, उनके कई हॉस्टल मौजूद हैं और इस तरीके की लापरवाही दूसरे हॉस्टल्स में भी हो सकती है।
1: बिल्कुल, और सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लाइव आपको, कोशिश करेंगे कि जो हमारा फ्रेम है वो जरूर आप रिकॉर्ड करें और देखें कि अभी भी सीधे मैं वो तस्वीर दिखा रहा हूं जहां बिल्डिंग की रही है, वहां पर जेसीबी मशीन लगी हुई है, वहां एनडीआरएफ के जवान खड़े हैं, दिल्ली पुलिस के जवान खड़े हैं और ये सीधे लाइव तस्वीरें हम आपको एकदम घटनास्थल से दिखा रहे हैं। आसपास पीजी बनी थी और अभी अभी मैंने जो एक चश्मदीद से बात की है, चश्मदीद ने बताया कि बेसमेंट में काम चल रहा था, बेसमेंट में काम चल रहा था, लेबर लगी हुई थी और बहुत बड़ी बात नहीं है कि यही वजह भी रही हो बिल्डिंग के गिरने की। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज तक पर और कोशिश करते हैं, तो देखिए ये अगर मैं पैन करता हूँ तो इस तरह से कई बिल्डिंगें आसपास हैं।
17: बिल्कुल,
1: तो ये यहाँ पर अगर आप देखें तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, चूंकि आसपास काफी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा भी हो गई है। और ये जो जहाँ ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मलबा है जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है। अगर आपको मैं और करीब से दिखाऊं तो ये देखिए ये सीधे तस्वीर जो ये जेसीबी मशीन है यहाँ पर काम चल रहा है और आसपास चूंकि कॉलेज का इलाका है, आसपास कॉलेज है, इस वजह से यहाँ पर कई पीजी चलाए जा रहे हैं जिसमें ज्यादातर अवैध है। भाई पीजी चलाने के लिए एनओसी और तमाम चीजें लेनी पड़ती है।
17: बिल्कुल,
1: तो ये जेसीबी देखिए अगर आप मैं आपको दिखाऊं तो ये जो मलबा है वो यहाँ से उठाया जाता है और उसके बाद फिर ये जेसीबी जो है वो लेकर आ रही है। और ये जो जगह है यहाँ आपको दिखाना चाहूंगा और जब हादसा हुआ तो ये मलबा यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है, चूंकि काफी कंजस्टेड इलाका है ये, इस वजह से अगर मलबा वहां से उठाया जाता है तो उसको रखा कहाँ जाए ये चुनौती है। इस वजह से मलबा उठाकर ये देखिए ये जेसीबी मशीन है, ये मलबा उठाया और यहाँ पर रखा, चूंकि 4 मंजिला इमारत थी, इस वजह से जो जब बिल्डिंग गिरी तो भरभरा कर पूरी तरह से गिर गई जिसके बाद मलबा इकट्ठा हो गया। तो भारी मलबा है, उस मलबा को हटाया जाना है, उसके पीछे जो इंसानी जान अगर फंसी है तो उसको निकाला जाना है। हम ये कोशिश भी करेंगे कि कोई आई विटनेस हो, उस आई विटनेस से हम बात कराने की आपको कोशिश भी करेंगे। ये रेस्क्यू में लगे हुए हैं, ये देखिए एक सज्जन जो कि खुद आई विटनेस भी है, तो ये तस्वीर हम आपको सीधे यहाँ पर दिखा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि यहाँ पर जो आई विटनेस है वो ये बताते हैं कि यहाँ पर बेसमेंट में खुदाई का काम चल रहा है। सर आप लाइव हैं यहाँ पर, आप क्या बता सकते हैं कि क्या बेसमेंट का काम चल रहा था इसके नीचे?
7: बेसमेंट का काम चल रहा था, 2-3 दिन से पानी भर रहा था, इन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम किया हुआ था।
1: अच्छा,
7: मैक्सिमम ये पीजी था और इस पीजी में 3 और 4 स्टूडेंट
1: रहते थे। पीजी था ये और नीचे क्या आपने बताया बेसमेंट में पानी भरा हुआ?
7: पानी भर रहा
1: है। यहाँ और भी बेसमेंट इसी तरह से चल रहे हैं सर?
7: सर आपको वो चेक करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा।
1: वेरिफिकेशन देखिए ये एक जेसीबी आई, तो ये हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
17: अरविंद अगर आप इनसे ये भी पूछ सके कि आखिरकार जिस हॉस्टल कंपनी का नाम आ रहा, मैनेजमेंट का नाम आ रहा, क्या वहां पर और भी उनके ऐसे ही हॉस्टल चलते हैं और इस तरीके की लापरवाही क्यों की गई? क्योंकि बायलॉज तो ये कहते हैं जब आपको कंस्ट्रक्शन करनी हो, रिपेयर करनी हो, तब आपको वहां पर कोई भी रिहायशी आदमी उस हॉस्टल में नहीं रुकना चाहिए।
1: देखिए ये आपको मैं सीधे में ही बता देता हूँ। देखिए अगर पीजी चलाने के लिए अलग से एनओसी लेनी पड़ती है या कोई हॉस्टल चलता है, होटल चलता है, उसके लिए एनओसी लेनी पड़ती है। लेकिन आई विटनेस जो साफ साफ बता रहे हैं, मैं उनसे एक बार कोशिश करता हूँ। सर आप ये देखिए ये चूंकि रेस्क्यू में भी लगे हुए हैं और ये जेसीबी है, ये मलबा वहां से उठाती है, उसके बाद ये जो सामने की तरफ है वहां पर मलबा को रखा जाता है। और हादसे के बाद क्या हालत हुई होगी लोगों की, आप
4: इस बात से
17: जी जी अरविंद, आपके आपके आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं चाहूंगा आप उसे अगर ठीक कर ले तो आपका एक बार फिर से रुक करेंगे। लेकिन हमारे दूसरे सहयोगी अंशुल भी हमारे साथ जुड़े। अंशुल देखिए, अरविंद ओझा लगातार वहां से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो इलाका दिखा रहे हैं जहां पर ये पूरा हादसा हुआ अभी, क्योंकि आप उस जगह मौजूद है जहां से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां से लगातार उन घायलों को निकाला जा रहा है, अभी वहां के ताजा हालात कैसे हैं?
21: जी, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि मैं हॉस्टल डेज के बाहर ही खड़ा हूँ। ये दूसरी प्रॉपर्टी है इनकी जो इसी इलाके में मौजूद है। ये देखिए एक और, ये कम्प्लीटली इलीगल कह सकते हैं इस बिल्डिंग को, एक दो तीन चार चार फ्लोर की बिल्डिंग एक बार फिर से यहाँ पे बना दी गई है। और जैसे ही मीडिया यहाँ पहुंची है, यहाँ पे इन्होंने हॉस्टल का गेट जो है अंदर से बंद कर दिया है। कुछ बच्चे बाहर आना चाह रहे थे, अपने परिवार वालों के साथ जाना चाह रहे थे, उन्हें काफी देर तक इन्होंने बंद करके रखा। जब मीडिया यहाँ पहुंची तब दो तीन बच्चों को इन्होंने यहाँ से इस वक्त निकाला है। ऊपर देखिए अभी भी ऊपर जो है बच्चे, जो लड़कियां हैं, ये गर्ल्स हॉस्टल है और ये यहाँ पे मौजूद है। और ये हॉस्टल डेज की कंपनी का ही ये हॉस्टल है और जहाँ हादसा हुआ है उससे करीब 200 से 300 मीटर ही दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन ये भी देखिए एक बार फिर से, ये कितने इलीगल तरीके से ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन है ये कराया गया है और इसमें दोबारा बच्चों को रखा गया है। और अगर आप देखें तो पूरी तरीके से अंदर जाने की जो महिलाएं कोशिश कर रही हैं, जो जर्नलिस्ट कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। ये यहाँ की जो हाउस कैप्टन है वो बताया जा रहा है कि यहाँ की हाउस कैप्टन है और वो इनकी जिम्मेवारी है यहाँ पर ये सारा मैनेज करना। चलिए हम कोशिश करेंगे इसके अंदर जाकर के भी आपको एक बार दिखाएं कि आखिर किस हालत में ये और कितनी इलीगल तरीके से जो ये पूरी बिल्डिंग है ये बनाई गई है। आप देखिए

0: निकेतन की ये स्थिति है। और इस समय हमारे साथ नवीन भटनागर जी भी हैं, जो कि डीआईजी, फॉर्मर डीआईजी एनडीआरएफ के। सर, आप चूंकि इस समय तमाम अधिकारी मंत्रीगण देख रहे हैं, आप बताएं कि कितना मुश्किल है इस जगह से रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करना। आपके अनुमान के मुताबिक कितना समय लग सकता है?
1: जी बिल्कुल, अभी इसमें समय की तो गारंटी हम नहीं दे सकते, लेकिन जो कार्रवाई चल रही है वो उसी हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि ये मलबा गिरा है और ये मलबा इतना सेंसिटिव है, इसके अंदर हम जेसीबी या दूसरी हैवी मशीनरीज यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जरा भी अगर कहीं डिसबैलेंस हो गया तो जो हमारे सर्वाइवल हैं, अगर कोई मलबे में दबे हुए हैं या एक सेफ ट्रायंगल बनता है इस टाइप की बिल्डिंग में, पिलर्स के बीच में कोई आ गया है तो वहां सेफ ट्रायंगल मिल जाता है और वहां पर लोगों के बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसलिए हम लोग मैनुअली उसको कोशिश करते हैं, मैनुअली या स्निफर डॉग्स और हमारे पास लाइफ लोकेटर होता है उसकी मदद से उसको चिन्हित करके और उस हिसाब से हम अंदर पेनिट्रेट करते हैं और जो हमारा मलबा होता है उसको हम बड़ा सेफली वहां से हटाते हैं, क्योंकि अगर हमने जरा गलती करी तो जो रेस्ट ऑफ द हमारे पिलर्स हैं
0: जी
1: या मलबे का कहीं अटका हुआ है तो वो सारा सर्वाइवल के ऊपर गिर जाएगा।
0: शायद सर
1: और
0: यही वजह है
1: बचाना
0: कि इतना समय इसमें लग रहा, अब तक सिर्फ 6 का रेस्क्यू हो सका है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक विजुअल है, एक वीडियो है, हम इस समय दिखाते हैं। मलबे में फंसे छात्र ने ही ये वीडियो भेजा है, ये आप तस्वीर देखिए, मलबे में फंसे छात्र ने ये वीडियो भेजा है और देखिए ये विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, ये विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। इसमें एक दबे हुए शख्स भी दिखाई दे रहे हैं, उसमें जो है उस तस्वीर को ब्लर किया जाना चाहिए था, वो तस्वीर दिखी है, उसमें दबे हुए छात्र दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए इन तस्वीरों को देखकर आंखों से आंसू आते हैं, गुस्सा भी आता है कि इनकी कोई गलती नहीं थी, उसमें रह रहे थे, उन्हें नहीं मालूम था, लेकिन जिन्हें मालूम था उन्होंने नजरअंदाज किया। एमसीडी सरकार सब आंखें मूंदे रहे, उनको लगा कि सब ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। और एक हकीकत तो अभी एमसीडी के पूर्व चेयरमैन ने भी हमारे सामने रखी, और वो हकीकत क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का 2006 का सीबीआई इंक्वायरी की बात है, लेकिन वो सीबीआई इंक्वायरी बता रहे हैं कि आज तक नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हर बार सरकारें बदल जाती हैं कि बदलाव करते हैं, लेकिन बदलाव हो नहीं पाता। फिर सुशांत के पास चलते हैं, ग्राउंड जीरो पर। सुशांत, क्या इस समय हो रहा है? मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रीगण, हमें देखा कि वो घटनास्थल पर ना करे घर की छत से देख रहे हैं।
2: देखिए क्योंकि ये जो पूरा इलाका है काफी संकरी ये गलियां हैं और चारों तरफ काफी ज्यादा लोग, इलाके के लोग काफी ज्यादा मौजूद है, और यही वजह है कि जब मुख्यमंत्री पहुंची तो वो घटना के स्थल के पास ही काफी ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहती किसी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई परेशानी है। तो यही वजह है कि मुख्यमंत्री जो है वो अपने साथ सहयोगी मंत्री कपिल मिश्रा के साथ, स्थानीय विधायक और सांसद के साथ एक छत पर पहुंची है। उसकी तस्वीर सामने आ रही है कि छत से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रही है कि किस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। अब मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि देखिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन में आखिरकार मुश्किलें कैसे आती है, क्योंकि 5 मंजिला इमारत, उसका मलबा, उस मलबे को निकालना और इस भीड़ में निकालना उस पूरे मलबे को, आप ये समझिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो प्रशासन है उसके लिए मुश्किलें बढ़ती है। कैसे वो जेसीबी को इन संकरी गलियों के अंदर लेकर के आए और उसके बाद इस पूरे मलबे को बाहर निकाल करके ट्रकों में लोड करें और बाहर लेकर के जाए, और यहाँ पर ये पूरी स्थिति जो है वो बनती है। यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो डीयू के जो प्रेसिडेंट है वो भी यहाँ पर इस वक्त जो है वो पहुंचे हैं मौके का स्थिति को देखने के लिए, क्योंकि ये पूरा स्टूडेंट एरिया है और यहीं पर अगर बात की जाए तो काफी बड़ी संख्या में पीजीज के अंदर स्टूडेंट्स जो है वो रहते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पहुंची है, उसके बाद अगर बात की जाए स्थानीय विधायक, और लगातार ये संपर्क और ये अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट भी तलब की जा रही है कि आखिरकार इस पूरे हादसे की वजह क्या थी, कैसे ये पूरा हादसा हुआ, जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए, लोगों की जान जो है वो बचाई जाए।
0: सुशांत, आप तस्वीर लगातार दिखाते रहे, लगातार तस्वीर दिखाते रहे, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। हमारे साथ टाउन प्लानर आर्किटेक्ट दीक्षु कुकरेजा भी हैं। दीक्षु, क्या दिल्ली आज भुगत रही है कि जहां है जैसा है के आधार पर दिल्ली में जो अनऑथराइज कॉलोनीज थी उनको ऑथराइज कर दिया गया, उनका नियमितीकरण हो गया, क्या वही भुगत रहा है कि जो जहां था जैसा था वो रहने दिया और आज वही इमारतें गिर रही हैं?

0: शायद उनको ऑथराइज इसलिए कर दिया गया क्योंकि वोट चाहिए थे।
1: नहीं, ये अति दुखद हादसा है और ये चीज दिखला भी रहा है कि इतनी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन अगर हम होने देंगे देश के कैपिटल में तो ओवर टाइम इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तो हमें ये सोल्यूशन ढूंढना है कि अगर जैसे बात हो रही है 75 लाख निवास इस शहर में हैं और उनमें से चंद ऐसी इमारतें होंगी जिनकी ऑथराइज प्लान्स हैं, अप्रूव्ड हैं, तो बाकियों के लिए भी एक तरीके का अभियान चलाना पड़ेगा जिसमें एब्सोल्युटली करप्शन फ्री ये देखा जाए कि उसमें किस तरीके से डेवलपमेंट को, जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उनमें फर्दर सेफ्टी और सेफगार्ड्स डालने की क्या जरूरत है। क्योंकि अगर इमारतें 40-50 साल पुरानी हो जाती हैं तो जैसे एक इंसान का शरीर को रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए होती है, उसी तरीके से इमारत को भी चाहिए। अगर हम वो भूल जाएंगे तो इस तरीके के हादसे हमें बार बार वही चीज याद लाएंगे, तो ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है, अब जो मैं सुन रहा हूं कि इसी इमारत में बनी हुई इमारत जिसमें लोग रह रहे हैं उसी के अंदर नीचे बेसमेंट में कॉलम्स को अल्टर किया जा रहा है, अब इस तरीके की चीज किसकी सुपरविजन में हो रही है? आज की डेट में आप और हम भी अगर कोई काम करते हैं हम सिर्फ सीधे ठेकेदार को बुला के उसको काम करने को कह देते हैं, तो कहां पे ऐसी इंजीनियरिंग, कहां पे ऐसी कैलकुलेशंस डिजाइन की, कहां पे ऐसे स्ट्रक्चरल सेफ्टी को देखा जा रहा है कि भाई हम उसी बिल्डिंग के जो कॉलम्स जिन्होंने वो 5 मंजिल पे को खड़ा किया हुआ है उसी को हम अल्टर कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें जस्ट शो करती हैं कि कितनी ह्यूमन एपथी है। हमें कोई कोई इस चीज का ध्यान ही नहीं देते कि ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन सेफ्टी को कैसे रखना है। और इसके लिए सिर्फ सरकार को नहीं हम कह सकते, हमें खुद भी देखना है। जो इस बिल्डिंग का ओनर था क्या उसको एक दिन के लिए भी, एक मिनट के लिए भी ये सोच नहीं आई कि वहां पे लोग निवासी अभी भी हैं? एटलीस्ट बिल्डिंग को खाली किया जाता। और जो हम बात करते हैं कि जेई आके इंस्पेक्ट कर ले, हमारे जेई बाय द वे कितने एजुकेटेड है इस मामले में कि वो आके को ढंग का इंस्पेक्ट भी करते, वो तो किसी और वजह से वहां पे आते और अपनी वो वजह पूरी करके निकल जाते वहां से। तो ये सारा सिस्टमिक चेंज जो हमें चाहिए विकसित भारत बनाने के लिए, एक सिस्टमिक चेंज की जरूरत है और वो आज हमारी राजधानी की ये दुखद हादसा और दुखद तस्वीरें बता रही हैं कि अगर हम इसको सिर्फ कभी कभी उसकी दौर से ही देखेंगे तो नहीं होगा। हमें ये सिस्टमिक चेंज लाना जरूरी है जिसमें सरकार एक तरफ और सिटीजंस एक तरफ दोनों
0: सर, ये तो हम कब से कह रहे हैं कि सिस्टमैटिक चेंज होना चाहिए और यही तो हमसे वादा भी किया जाता है कि हम ऐसे ही बदलाव लेकर आएंगे, लेकिन समस्या ये है कि सिस्टम का हिस्सा बन जाने के बाद कुछ भी बदलाव नहीं होता है। जो पहले से एक सिस्टम बना हुआ है उसी सिस्टम के तहत ये चीजें चल रही होती है। अरविंद दोषा लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद, क्या फ्रेश तस्वीर हमने देखा कि पिचकी हुई गाड़ियां हैं, और सवाल ये है कि सिस्टम बदलने की बात करने वाले सिस्टम आखिर बदलते क्यों नहीं है?
2: देखिए, मैं आपको सीधे तस्वीर दिखा जा रहा, इस गाड़ी को देखिए, लग्जरी गाड़ी है लेकिन इस पर मलबा गिरा तो इसकी हालत क्या हो चुकी है, ये तस्वीर। और इसमें से बकायदा तलाशी भी ली गई अभी कि क्या इसमें कोई फंसा तो नहीं था, ये एक लग्जरी गाड़ी थी और जब बिल्डिंग गिरी तो न सिर्फ स्टूडेंट उसमें दबे बल्कि एक एक करके अब मलबे से गाड़ियां निकाली जा रही हैं। तो ये गाड़ी जिसकी हालत ऐसी होगी ये पूरी चपट कर, तो अब ऐसे में ये देखिए एक और ऐसे धीरे धीरे करके अब जो मलबा है काफी हद तक निकाला गया है और जो कुछ उसमें से निकल रहा है उसको लेकर लोग यहाँ पर भाग रहे हैं। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है जबकि जो ये जो मलबा गिरा है इसके ऊपरी हिस्से पर देखेंगे तो दिल्ली सरकार के जो तमाम मंत्री और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद है। कपिल मिश्रा आपको यहाँ पर दिखाई देंगे आप बाकायदा जायजा लेते हुए। और दूसरी तरफ नीचे की तरफ अगर आप देखें तो जो राहत और बचाव का काम है वो लगातार जारी है, कोशिश यही की जा रही है कि मशीनों के जरिए और जो ह्यूमन लोग हैं, जो आदमी हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं, उनके जरिए जो मलबा है उसको जल्द से जल्द निकाला जाए। एक तस्वीर भी आई है जो स्टूडेंट ने भेजी है कि किस तरीके से वो मलबे में दबा हुआ, उसने कोशिश की वीडियो बनाकर भेजने की। तो इससे बात तो साफ है कि कुछ और लोग इसमें दबे हो सकते हैं जिनको निकालने की कोशिश लगातार यहाँ पर की जा रही है। तो ये सीधी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, कोशिश करते हैं थोड़ा हम और करीब ले जाने की कि देखिए एक नहीं बल्कि कई जो जेसीबी मशीन है वो यहाँ पर लगी हुई है और कोशिश की जा रही है कि धीरे धीरे करके काम में काफी तेजी लाई गई है। है और धीरे धीरे करके जो मलबा है उसको निकाला जा रहा है, काफी यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और मैं आपको सीधे अब वो तस्वीर दिखाता हूँ कि देखिए दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है वो रेखा गुप्ता, वो सामने की तरफ आपको यहाँ पर दिखाई भी देंगी कि यहाँ से, और कपिल मिश्रा वो जो अधिकारी है उनको ग्राउंड जीरो से ही बाकायदा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि किस तरीके से काम यहाँ पर किया जाना है। तो सीधे जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वो यहाँ पर मौजूद है। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर चल रहा है, बांसुरी स्वराज भी आपको दिखाई देंगी। और ये ठीक सामने ये जो दिल्ली सीएम खड़ी है उसके ठीक नीचे की तरफ ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है, चूंकि छात्रों से जुड़ा मामला है, पीजी ये था। और सबसे बड़ी बात कि 40 साल 50 साल पुरानी ये बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में पीजी चल रहा था, जो सीधे तौर पर हम कहें तो ये जो पूरा काम है, जो पूरा गोरख धंधा है वो अवैध तरीके से चलाया जा रहा था और जिसमें छात्रों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था चंद पैसे कमाने के लिए। एक जो बिल्डिंग होती है 5 मंजिला बिल्डिंग, उसमें छोटे छोटे कमरे वो बना दिए जाते हैं और नतीजा ये होता है कि उसमें पैसे कमाने के लिए भारी संख्या में जो स्टूडेंट है उनको यहाँ पर रखा जाता है और चंद पैसों कमाने के चक्कर में 40 साल 50 साल पुरानी बिल्डिंग में पीजी बना दिया जाता है। और ये उसी का नतीजा है, हम आपको तस्वीरें यहाँ से दिखा रहे हैं। तो फिलहाल फायर डिपार्टमेंट की टीम और जो एनडीआरएफ की टीम है तमाम, और मलबा काफी हद तक निकाला जा चुका है, दूसरी की तरफ का हिस्से का जो मलबा है वो निकाला यहाँ पर जा रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। और कुछ लोगों ने ये भी बताया कि आसपास कई जो पीजी हैं वो चलाए जा रहे हैं और जब ये हादसा हुआ तब वो यहाँ से फरार हो गए और जो पीजी का बोर्ड है वो भी हटा दिया है। लेकिन अब यहाँ पर दिल्ली के सीएम और अनिल जायसवाल जरा आपको यहाँ से लॉन्ग तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन का काम है वो अब रफ्तार पकड़ चुका है।
0: कि ये जो लालची है पैसों के लिए ये राक्षस बन जाते हैं, इनको इंसानों से कोई फर्क नहीं, इनको सिर्फ पैसा चाहिए होता है। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में बिल्डिंग का गिर जाना और उसके बाद से सवालों का लगातार बड़ा हो जाना, इस समय मुख्यमंत्री घटनास्थल पर है, मंत्रीगण घटनास्थल पर है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, एक एक तस्वीर आज तक पर और एक एक सवाल लगातार आज तक पर उठाया जाता रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला, आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
4: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
4: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
5: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
2: आज तक इस वक्त पहुंचा है नेपाल के रूपनदेही जिले के भुटवल इलाके में।
3: अभी तक 700 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और तकरीबन 2500 से भी ज्यादा जो लोग हैं अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। आई है इस बार नेपाल में, उसने पूरे नेपाल को हिला कर रख दिया है। सहयोगी अभिषेक पांडे के साथ रोहित सिंह, नेपाल आज तक।
4: गांधी जी के आंदोलन करने का तरीका क्या आज के समय भी उतना प्रासंगिक है?
5: जो तुम गाली देते हो ना गांधी जी, 70 साल की उम्र में दो लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए, पढ़ लो।
6: जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जो गांधी जी ने वापस ले लिया था, वो भी तो किसी और की वजह से लिया था। चौरी चौरा में जो हुआ इंसिडेंट, उनसे उनको क्या मतलब था? अगर वो उसको जाए रखते, क्या पता उस समय इंडिपेंडेंस को थोड़ा जल्दी हो जाता।
5: ताली बजाओ इनके लिए, ये ताली डिजर्व करते हैं।
7: और विशेष तौर पे बिहार सरकार से भी आग्रह है कि भाई हेलीकॉप्टर केवल अपने घूमने के लिए, मुआयना करने के लिए नहीं, बल्कि एयरफोर्स से भी मदद जो है मांगी जाए, ताकि जो भी बाढ़ के, दियर के, दूर के इलाके, पूरे बिहार में जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हेलीकॉप्टर से कम वितरण जो है कराया जाए। आजकल देखने को ही नहीं मिल रहा कोई, मतलब गंभीरता जो है बिहार सरकार द्वारा दिखाई नहीं दे रही है। क्या पैकेज जो नुकसान हुआ है वो तो बाढ़ पहले चला जाए, उसके बाद उसका भी आकलन करने की जरूरत है। और एक विशेष पैकेज केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि बिहार को देखते हुए एक विशेष पैकेज जो है केंद्र सरकार दे।
8: और जो प्रशासन से उम्मीद थी कि प्रशासन जब बारिश का सीजन स्टार्ट होता है तो जो कटाव, जो जहां कटाव हो रहा है उसका रोकथाम के लिए कुछ काम करेगी, लेकिन इस बार ऐसे कहीं भी देखने को नहीं मिला। कोई तैयारी इनकी नहीं थी बाढ़ को लेकर के।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: कहीं पानी में जिंदगी बह गई, कहीं बाढ़ घरों के अंदर पहुंच गई, कहीं सड़कें डूब गईं और कहीं मौत का खुला नाला बारिश के पानी में छिप गया। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश की, जहां बारिश और बदइंतजामी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लखनऊ में घर के पास पानी से भरे गड्ढे में डूबकर 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। वहीं बिजनौर में भी बारिश का पानी एक परिवार के लिए काल बन गया। बारिश में चप्पल बह गई, 12 साल का बच्चा उसे पकड़ने दौड़ा, लेकिन पानी में छिपा खुला नाला दिखाई नहीं दिया। बच्चा बहते हुए करीब 500 मीटर दूर पाइप में जा फंसा। उन्नाव में लून नदी का पानी गांवों में घुस चुका है। बीघापुर के 3 से 4 गांव बाढ़ की चपेट में हैं और पोरई गांव में हालात सबसे ज्यादा खराब है।
1: जो पानी की स्थिति है देख लीजिए, ये मंदिर है जय माँ फूलमती मंदिर धाम पोरई गांव का, और मंदिर देखिए अभी तक पानी थोड़ा सा कम हुआ है, इस वजह से ये पानी यहाँ पर थोड़ा कम है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि आधे आधे गेट तक पानी था। मंदिर जो है आधे ज्यादा डूबा हुआ था, लेकिन अब पानी कम होने की वजह से ये मंदिर थोड़ा सा अब दिखाई दे रहा है, आधे से कम पानी है यहाँ पर। आप देख सकते हैं मेरे घुटनों के ऊपर तक पानी आपको दिख रहा होगा, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं आपको। और यहाँ के लोगों का कहना है कि 1970 के बाद उन्होंने इस बार इस तरीके की बाढ़ जो है लोन नदी उफान पर आई है।
0: वाराणसी में गंगा का पानी घाटों से निकलकर गलियों में पहुंच गया है। जिन गलियों से लोग पूजा पाठ और अंतिम संस्कार के लिए घाट तक पहुंचते थे, वहां अब पानी ही पानी है। हालात ऐसे कि शव को घाट तक ले जाना भी मुश्किल हो गया है।
2: ये वाराणसी की ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाट की गली है, यहां से होते हुए लोग अंतिम संस्कार के लिए अपने परिजनों के शव को लेकर जाते हैं, लेकिन गंगा के बढ़ते हुए जल स्तर ने हालात ऐसे कर दिए हैं कि अब लोग गलियों में ही यहाँ पर शव को रख करके अंतिम क्रिया करने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी तरफ छतों पर भी, जो मणिकर्णिका घाट के आसपास जो छत हैं, वहां पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है।
0: 80 घाट पर लोग अपने घरों और दुकानों के बाहर ईंट सीमेंट की दीवारें खड़ी कर पानी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बिजनौर में गंगा के उफान का असर सड़कों पर भी है। चांदपुर मेरठ स्टेट हाईवे पर 3 से 4 फीट पानी भरने से रास्ता बंद हो गया है। उत्तर प्रदेश में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही और उसके साथ बढ़ती जा रही है लोगों की मुश्किलें। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
3: आपदा की इस घड़ी में आप अकेले नहीं हैं, चाहे वह सामान्य परिवार हो, व्यापारी हो, मठ मंदिर हो, घाट हो, इन सब को नुकसान जो भी हुआ होगा उन सबको हम लोग सरकार की ओर से सहयोग करने की व्यवस्था करेंगे और उन सबको हम लोग सहयोग भी करेंगे। दूसरा, मैंने पहले ही कह रखा है कि अगर बाढ़ की चपेट में या अग्निकांड की चपेट में किसी गरीब का घर आता है, किसी का घर आता है, पूरा घर चल जाता है, बाढ़ की चपेट में आके पूरा घर बह गया है, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता रखता है तो प्रधानमंत्री आवास, और नहीं तो मुख्यमंत्री आवास योजना में एक नया आवास और जमीन का पट्टा तत्काल दे दो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए हादसे में 6 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। लगातार इस हादसे पर नजर बने हुए हैं। अब रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहे आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

बिल्डिंग में चल रहा था पीजी हॉस्टल, दिल्ली हादसे पर अमित शाह की नजर, गोवा में अपने कार्यक्रम बीच में रोका गृह मंत्री अमित शाह ने, हादसे की जगह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पहुंचे। एमपी के सागर में जहरीली शराब का कैद, मौत का आंकड़ा बढ़कर 11, मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले दोषियों को मिलेगी सख्त सजा।

0: दिल्ली के सत्य निकेतन में एक बहुमंजिला इमारत गिर गए हैं और लगभग डेढ़ बजे के आसपास ये हादसा हुआ। उसके बाद से अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय चलाया जा रहा है। कुछ बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, बहुत सारे लोगों के दबे होने की आशंका है, उनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय युद्ध स्तर पर चल रहा है। एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है, चश्मदीद बता रहे हैं कि कई लोग भीतर दबे हुए हैं। ये कई साल पुरानी इमारत बताई जा रही है, 40 से 50 साल पुरानी इमारत बताई जा रही है। इस इमारत का जो मालिक है वो इस समय तो गायब है, आनंद बंसल बताया जा रहा है। सीएम रेखा गुप्ता वो खुद घटनास्थल पर पहुंचे हैं, स्थानीय विधायक मंत्री कई वो मौके पर हैं और बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया, एफआईआर दर्ज हो गई। लेकिन इस हादसे ने फिर से बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए। इस समय अनुमानित 30 से 40 लोग भीतर दबे हुए हो सकते हैं। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस समय ग्राउंड जीरो पर। अरविंद, इस समय का अपडेट दीजिए, कितने लोगों को रेस्क्यू कर पाई है टीम अभी तक?
1: देखिए, अब तक 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और अब से कुछ देर पहले एक स्टूडेंट को और मलबे से निकाला गया है। और सीधे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, फिर ये भी दिखाऊं। देखिए, ये अभी धीरे धीरे करके मलबा निकाला गया है, जेसीबी मशीन यहाँ पर लगी हुई है। और बड़ी बात यह है कि जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, अब खुद जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है मंत्री के साथ। ऊपर ये जो बिल्डिंग दिख रही है, ये मंदिर है, मंदिर के ऊपर रेखा गुप्ता मौजूद है। और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो अनिल जायसवाल आपको दिखाएंगे, नीचे की तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 6 लोगों को निकाला गया था और अभी अभी जो जानकारी आई है उसके मुताबिक एक और जो शख्स फंसा हुआ था बिल्डिंग के नीचे, उसको निकाला गया है। और अब एक के बाद एक 3 से 4 जेसीबी मशीनें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गई हैं। और जो मालिक है, आनंद बंसल उसका नाम बताया जा रहा है, जो इस बिल्डिंग का ऑनर है, उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस मुकदमा दर्ज कर रही है। और साथ ही साथ ये भी जानकारी आई कि 40-50 साल पुरानी ये बिल्डिंग थी, 5 मंजिला इमारत थी, बेसमेंट नीचे चल रहा था, बेसमेंट में काम चल रहा था और छात्रों की दांव पर रखकर चंद पैसे कमाने के लिए यहां पर पीजी बनाया गया था। और अचानक से, चूंकि अब जाहिर सी बात है 40 साल 50 साल पुरानी बिल्डिंग, नीचे बेसमेंट खोदा जा रहा था, तो ऐसे में जो बिल्डिंग है वो तकरीबन 1:30 बजे भरभराकर गिर गई और जिसमें कई लोग फंस गए। पहले लोकल लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, उसके बाद दिल्ली पुलिस फायर डिपार्टमेंट की टीम एनडीआरएफ की टीम को यहां पर बुलाया गया है। और अब जरा मैं आपको कोशिश करूंगा अनिल जायसवाल यहां से आपको दिखाएं कि किस तरीके से ये जो पूरा लंबा रास्ता है, इसी लंबे रास्ते में रेस्क्यू ऑपरेशन वो लगातार चलाया जा रहा है यहां पर। और साथ ही साथ तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है, सीधे रेस्क्यू ऑपरेशन को वो उसको डायरेक्ट कर रहे हैं ताकि कोई हिला हवाली ना हो सके, किसी तरीके से जो भी फंसा हो उसको बचाया जा सके। और सीधे मैं आपको दिखाऊं, देखिए जेसीबी हट जाएंगे यहाँ पर, और जो गाड़ियां यहाँ फंसी थी उसकी हालत देखी नहीं जा सकती थी। अब सोचिए अगर कोई स्टूडेंट फंसा होगा, अभी अभी जो एक और तस्वीर आई कि एक स्टूडेंट जो बिल्डिंग में फंसा हुआ है उसने मोबाइल से वीडियो बनाकर अंदर से भेजा है, गुहार लगाई है, बहुत मुमकिन है कि उसको उसी को रेस्क्यू कराया गया होगा। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर सत्य निकेतन से, साउथ कैंपस का ये इलाका है और इसी वजह से बड़ी संख्या में यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो रहते हैं और बिल्डिंग मालिक उसका फायदा उठाते हैं। जर्जर इमारतों में पीजी बनाई गई है चंद पैसे कमाने के लिए, छात्रों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया है इस इलाके में। और यही पीजी था, 5 मंजिला इमारत, नीचे बेसमेंट। और आई विटनेस से हमने जो बात की है, पानी भरा हुआ था उसमें और 1:30 बजे के लगभग जर्जर इमारत 40-50 साल पुरानी वो भरभरा कर गिर गई, जिसमें कई स्टूडेंट फंसे हुए थे। अब इस तरीके से अगर आप देखें तो अनिल जायसवाल आपको दिखाएं, चारों तरफ जेसीबी मशीन आपको घूमती हुई दिखाई देगी। और उसकी वजह यह है, एक खास वजह यह भी है कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है वो खुद सीधे जो पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको लीड कर रही है, लेकिन जवाबदेही इसमें एमसीडी की भी होती है, दिल्ली सरकार की भी होती है। एमसीडी घूम घूम कर ये तो देखती है कि कहाँ लेंटर डल रहा है, कहाँ इमारत बन रही है, वहाँ कट मनी लेने के लिए पहुँच जाती है। लेकिन अगर कोई इस तरह की जर्जर इमारत है, अवैध तरीके से पीजी चलाया जा रहा है, तो एमसीडी के अधिकारियों की नजर क्यों नहीं पड़ती है? क्या नजर चंद नोटों के लिए क्या बंद हो जाती है? ये अपने
0: ये बहुत बड़ा, बहुत बड़ा और गंभीर सवाल है और ये रियलिटी है। जो अरविंद जो आपने बताया है वो रियलिटी है। इसके साथ साथ आप जिस वीडियो की बात कर रहे थे, जो छात्र भीतर फंसा हुआ है और उसने जो वीडियो भेजा है वो भी एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं। तो छात्र भीतर फंसा हुआ है, यानी कि भीतर वो किसी तरह से वीडियो एक बना पाया है, वो वीडियो हम इस समय आपको दिखा भी रहे हैं। ब्लर करके इसलिए हम आपको दिखाने पड़ रहे हैं क्योंकि उसमें एक छात्र फंसा हुआ दिखाई दे रहा है और वो पूरी तरह से मलबे में दबा हुआ है, इसीलिए हम इस तस्वीर को आपको ब्लर करके दिखा रहे हैं। फंसे हुए छात्र का वीडियो है। एक शख्स जो भीतर किसी तरह बच पाया है, वो अपने आप को सुरक्षित रख पाया, उसने अंदर से ही वीडियो भेजा। अंदर फंसा हुआ था, ऊपर पूरी बिल्डिंग गिर गई थी, लेकिन वो नीचे बचा हुआ था। अब वो कैसे बचा हुआ था, ये अपने आप में करिश्मा ही है। वो नीचे उसने वीडियो बनाया और दबे हुए छात्र की तस्वीर दिखाई, उसके साथ ही स्टूडेंट की तस्वीर दिखाई और उसको वीडियो बनाकर फिर अपने दोस्त को बाहर भेजा और उसके बाद ये वीडियो आप तक पहुंचाई। इस समय ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये फंसे हुए छात्र ने ही भीतर से वीडियो बनाकर भेजा जो आप इस समय देख रहे हैं। उसमें एक छात्र बिल्कुल दबा हुआ दिखाई दे रहा है। क्या वो शख्स जिंदा होगा, उसकी संभावना बहुत कम लग रही है। उसने ये वीडियो बनाकर भेजा है जो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, इसीलिए ब्लर करके इसको हम आपको तस्वीर को दिखा रहे हैं। तो नोट कमाने के लिए आनंद बंसल नाम के शख्स ने इस पीजी को खोला, जर्जर इमारत में पीजी को चलने दिया और ये बेकसूर इसमें मारे गए। हमारे एक और संवाददाता ग्राउंड जीरो पर हैं, सुशांत मेहरा हमारे साथ हैं। सुशांत, जो अधिकारी हैं जो मौके पर हैं, वो क्या बता रहे हैं, कितना समय लग सकता है इसके ऑपरेशन को पूरा करने में और चुनौतियां क्या है उनके सामने इस समय?
2: देखिए, चुनौतियां बहुत सारी है, लेकिन मैं आपको तस्वीरों के साथ समझाता हूं कि किस तरीके से एमसीडी जो कि नगर निगम है उसकी एक बड़ी लापरवाही है इस पूरे हादसे में, और ऐसे कई हादसे आगे भी ना हो उसको लिए भी समझना होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बिल्डिंग दिखा दूं, मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से महज चंद कदम की दूरी पर ये जो पूरी बिल्डिंग थी जो कोलैप्स हुई है वो आपको नजर आएगी, और ठीक बिल्डिंग के ठीक सामने आपको मंदिर नजर आएगा। मंदिर पर आपको मंजिल पर अगर आप देखेंगे टॉप मंजिल पर कपिल मिश्रा, दिल्ली के मुख्यमंत्री, स्थानीय विधायक, एमसीडी के कमिश्नर, एमसीडी के तमाम अधिकारी आपको नजर आएंगे जो कि इस वक्त खुद घटना स्थल पर मौजूद है। लेकिन अब दूसरी तस्वीर भी हम दिखाएंगे कि अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आसपास की तमाम जो बिल्डिंग्स हैं उन पर अगर नजर माने तो दिल्ली के अंदर चार मंजिला इमारत ही ज्यादातर हर इलाके के अंदर एमसीडी की तरफ से जो है वो अलाउ होती है, जो बिल्डिंग बायलॉज है एमसीडी का। लेकिन अगर आप एक एक करके बिल्डिंग पर नजर डालेंगे तो इस पूरे इलाके के अंदर पांच पांच मंजिला इमारत, छह छह मंजिला इमारत जो है वो बनी हुई आपको नजर आएगी, जहां पर अगर देखा जाए तो एक बड़ी लापरवाही है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये जो बिल्डिंग अगर आप देख रहे हैं जहां पर आपको कई सारे मीडिया कर्मी आपको नजर आएंगे, दरअसल ये पूरी बिल्डिंग पांच से छह मंजिला इमारत पे जो खड़ी हुई आपको यहाँ पर नजर आएगी। इसके ठीक सामने अगर आप ये व्हाइट कलर की बिल्डिंग देखेंगे, ये पांच मंजिला है, नीचे दुकान है, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, यानी पांच पांच मंजिला इमारत जो है वो यहाँ पर खड़ी कर दी गई। उसके अलावा आसपास के तमाम कई बिल्डिंग अगर आपको यहाँ पर नजर आएंगी तो जर्जर हालत में आपको यहाँ पर नजर आएंगी, यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एमसीडी की जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से अनदेखा करता है इन पूरी घटनाओं को। अगर आप देखेंगे तो पिछले आधे पौन घंटे से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो इस पूरे हादसे के बाद यहाँ मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो साफ तस्वीरें दिखाए, क्योंकि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में अब जो है वो दिक्कतें और ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि अब जैसे जैसे अंधेरा होगा वैसे वैसे मलबे को निकालना, रेस्क्यू ऑपरेशन करना और ज्यादा चुनौती भरा हो जाएगा। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे 6 से 7 जेसीबी मशीन जो है वो लगी हुई है, एमसीडी के कर्मचारी, एनडीआरएफ के कर्मचारी मलबे को निकाल रहे हैं, क्योंकि मलबे को निकालने में परेशानी ये आती है क्योंकि जो सरिये हैं उसके अंदर मलबा कहीं ना कहीं उलझ जाता है, उसको वहां से निकालना उसके नीचे, अभी क्योंकि मैज 5 से 7 मिनट पहले एक स्टूडेंट को जो है वो यहाँ से रेस्क्यू किया गया, और उसके बाद अभी और भी कई सारे स्टूडेंट जो है वो इसमें दबे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी लंबे वक्त से जो स्टूडेंट्स हैं वो रह रहे थे। अब रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई दिक्कत ना है इसको देख करके खुद मुख्यमंत्री ग्राउंड पर हैं, पिछले आधे पौन घंटे से लगातार अधिकारियों से संपर्क में, एमसीडी कमिश्नर आपको यहां पर नजर आएंगे, उनसे यहां पर बातचीत करती हुई नजर आ रही है। आप देखेंगे पीछे की तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री आपको यहां पर नजर आएंगे, यानी मोर्चा एक तरीके से मुख्यमंत्री ने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में अब संभाल लिया है। गृह मंत्री ने भी अपने कार्यक्रम रद्द किए थे, आप देखिए बार बार वो बिल्डिंग के कोने पर आती है, अधिकारियों को पीछे जाकर के निर्देश देती है किस तरीके से जेसीबी को यहाँ से निकालिए, मलबे को निकालिए, वहां पर भी लोग जो है वो फंसे हो सकते हैं। ये पूरी स्ट्रेटेजी अब खुद मुख्यमंत्री जो है वो लोगों को समझाती हुई, अधिकारियों को कपिल मिश्रा से बातचीत करते हुए देती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको नजर दिखाऊंगा कि यहाँ पर पूरी रोड पर अगर आप देखेंगे तो भारी भीड़ आपको यहाँ पर नजर आएगी कि किस तरीके से पुलिस को प्रशासन को रेस्क्यू करने में जो है वो काफी परेशानी का सामना भी जो है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के भी कई सारे नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, सौरभ भारद्वाज, इनके साथ साथ अमानतुल्लाह खान भी यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन सवाल ये है, जब इस तरीके की बिल्डिंग बनती है उस वक्त यहाँ पर इलाके के जो एमसीडी के कर्मचारी हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी एमसीडी की होती है, जिसका ये काम होता है कि जब इस तरीके की बिल्डिंग बनती है या बिल्डिंग में किसी प्रकार का निर्माण कार्य हो रहा होता है बनी हुई बिल्डिंग के अंदर, जो कि 30 से 40 साल पुरानी बिल्डिंग हो, तो उसकी जिम्मेदारी इलाके के जेई की होती है। और ऐसे में जेई पर कार्रवाई क्यों ना हो, ये एक बड़ा सवाल है। इलाके के एई असिस्टेंट इंजीनियर पर क्यों सवाल ना हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एमसीडी के, उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है, एमसीडी के कमिश्नर की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके से जो है अगर कोई बिल्डिंग बन रही है तो उस पर कार्रवाई जो है वो क्यों नहीं हुई, क्यों एमसीडी के अधिकारी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अगर आप देखेंगे अब इस पूरे इलाके के अंदर जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई है उसके आसपास की तमाम बिल्डिंगों पे जो बिजली के तार हैं उनको यहां से हटाया जा रहा है, बिजली के जो तमाम कर्मचारी हैं वो आपको बिजली विभाग के कर्मचारी यहां पर नजर आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा होगा रेस्क्यू ऑपरेशन में और ज्यादा दिक्कतें आएंगी, और इसी दिक्कतों को मद्देनजर रखते हुए तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द करें, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये मलबा 5 मंजिला है, अभी देर रात और हो सकता है कल सुबह तक ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जाए, पूरी रात भर ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहाँ चलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो मलबा है, जेसीबी है और टीमें हैं वो लगी हुई हैं, और ये मालवीय नगर के बाद अगर कहा जाए तो दिल्ली के अंदर ये दूसरा बड़ा हादसा है जिसमें कई सारे लोग जो है वो दबे हुए हैं, कई सारे लोगों को, लगभग 7 लोगों को अब तक रेस्क्यू कराया जा चुका है, एक कैजुअल्टी जो है वो सामने आई है, और अभी जो लोग ट्रॉमा सेंटर के अंदर जिनको एडमिट किया गया उनकी हालत भी जो है वो काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, और आगे देखिए कि मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो यहाँ से थोड़ी सी तस्वीरें दिखाएं कि कितना बड़ा बड़े जो सरिये हैं, मलबे हैं, उसको हटाना यहाँ पर एक बड़ा चुनौती भरा हो जाता है कि जब इस तरीके के मलबे होते हैं उनको क्रश किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है, कई हिस्सों में बांटा जाता है, उनको जेसीबी की मदद से ट्रकों पर लोड किया जाता है, और ये पूरा इलाका काफी संकरा है, और इस पूरे इलाके में आसानी से गाड़ियां, एम्बुलेंस लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ऐसे में यहाँ पर ये जो परेशानी है ये एक बहुत बड़ी परेशानी जो है वो जो प्रशासन है उनके लिए होती है कि किस तरीके से उनको यहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कराया जाए, लोगों को बचाया जाए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सत्य निकेतन है वहां पर आपको नजर आएंगी तस्वीरें कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो इस वक्त चल रहा है, और टीमें लगातार जो है वो यहाँ पर लोगों को बचाने में, जो अंदर फंसे हुए हैं उनको यहाँ पर बचाने में लगे हुए हैं। अगर आप देखेंगे एनडीआरएफ की जो टीमें हैं बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए जो मलबा है उसको कटर के जरिए काट रहे हैं ताकि मलबे को अलग किया जाए, मलबे को बाहर निकाला जाए। सड़कों पर भी अगर आप किनारों पर देखेंगे तो आपको मलबा इस वक्त जो है वो नजर आएगा, आसपास की कई बिल्डिंग को जो है वो खाली करा लिया गया है। अब जैसे जैसे अंधेरा होगा तो चुनौती और ज्यादा बढ़ेगी, तो ऐसे में लाइट की व्यवस्था भी जो है वो की जाए ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई दिक्कत ना आए, इसकी भी पूरी तैयारी जो है वो फिलहाल यहाँ पर की जा रही है।
0: बिल्कुल सुशांत, नियमों की तो अनदेखी हुई है, और अगर मैं गलत ना हूं तो सत्य निकेतन तो उन कॉलोनीज में भी शामिल नहीं है जिनको हाल के समय में जब केंद्र सरकार ने नियमित किया हो ऑथराइज, जो ये मतलब ये अनऑथराइज तो था ही नहीं, ये तो शुरुआत से ही ऑथराइज ही था, तो यानी कि सीधी सीधी लापरवाही अधिकारियों की रही है और पूर्व की सरकारों की भी रही है और मौजूदा सरकार की भी रही है।
2: लेकिन निश्चित तौर पर पूर्व की जितनी सरकारें हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, मौजूदा सरकार है उनकी भी जिम्मेदारी, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी नगर निगम की। जब आप ये सोचिए ये हादसा कैसे हुआ, इसको समझना जरूरी है कि बिल्डिंग जो है वो 30-40 साल पुरानी बिल्डिंग है, आनंद बंसल उनके मालिक हैं, बेसमेंट ऑलरेडी बना हुआ है, बेसमेंट के अंदर काफी टाइम पहले काम किया गया, लेकिन बिल्डिंग के अंदर जो पिलर से उनको काटा जा रहा था ताकि बिल्डिंग का जो बेसमेंट है उसको बड़ा किया जा सके। और वही हादसे की सबसे बड़ी वजह बनी। मजदूर अंदर थे, खाना खाने के लिए मजदूर गए थे, उनमें से हो सकता है कि कुछ मजदूर भी जो है वो अंदर दबे हुए हो। एक वीडियो भी जो है वो सामने आया कि
0: बिल्कुल वो सुशांत आपके पास लौट रहा हूं, अरविंद भी समय हमारे साथ में। अरविंद आपके पास क्या तस्वीरें, प्लीज दो तस्वीरें दिखाएं।
1: बिल्कुल सीधे मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो एक एक करके अब मलबा है वो निकाला जा रहा है, आधा मलबा निकाला जा चुका है। अनिल जसवाल जरा आपको ये दिखाएं, आधा मलबा निकाला जा चुका है। पहले जेसीबी मशीनों की संख्या कम थी कुछ, उसके बाद वो बढ़ा दी गई, और उसकी वजह कि खुद जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन होता क्या इस तरह के हादसों के बाद, जो राजीव मेरी आपसे पहले बात हुई थी, इस तरह के कई हादसे मैंने दिल्ली में कवर किए, कमोबेश होता ही है कि कुछ देर बाद ये खबर आएगी कि जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया और कुछ इस तरह से खाना पूर्ति हो पाएगी। आपको ये समझना होगा कि देश की राजधानी आपका ये राजधानी दिल्ली है और यहाँ पर इस तरह की कई इमारतें हैं, उसमें कई ऐसी इमारतें हैं जिसमें लोग पीजी चला देते हैं, ब्रेड टू बटर चला देते हैं, जिसमें मालवीय नगर में हादसा हुआ था, होटल चलने लगता है। क्या ये जानकारी लोकल पुलिस एमसीडी के लोगों को नहीं होती है दिल्ली में इस तरह से चलते हैं? होता यह है कि आप ये जान लीजिए और किसी भी दिल्ली के दिल्ली वासी से पूछ लीजिए, अगर कोई बिल्डिंग बनने शुरू हुई तुरंत वहां एमसीडी का कर्मचारी आ जाएगा कुछ न कुछ लेने के लिए, लेंटर डलेगा एमसीडी का कर्मचारी जाएगा कुछ न कुछ लेने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर कुछ अवैध चल रहा है कि एमसीडी के अधिकारियों को नहीं पता चलता है, लेकिन उनकी उनका जो मुंह है उनका जो नजर है वो नोटों से बंद कर दिया जाता और इस वजह से फिर अवैध तरीके से तमाम ये गतिविधियां संचालित हो जाती है, उसके बाद फिर कोई हादसा हो जाता है तो इस तरह की तस्वीरें दिखाई देती है। यहाँ बात छात्रों से जुड़ी हुई है क्योंकि ये साउथ कैंपस का इलाका है, अगर यहाँ पर 40-50 साल की बिल्डिंग में पीजी चल रही है तो क्या लोकल एमसीडी के जो अधिकारी हैं उनको इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए, या उनकी नजर में या उनकी जानकारी में ये सब कुछ नहीं था? ये तो कहा नहीं जा सकता। और इस तरह के कई पीजी हैं जो यहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ पर ये पीजी है,
3: है? हाँ, ये पीजी है,
1: ये पीजी है यहाँ पर। तो देखिए ये जो बिल्डिंग गिरी है उसके ठीक बगल में पीजी है, गर्ल्स पीजी है, बॉयज पीजी है,
3: दोनों का ही होगा,
4: यूनिसेक्स पीजी है,
1: यूनिसेक्स पीजी है। क्या कितनी कितनी मंजिला बिल्डिंग
4: होगी? चार मंजिला,
1: चार मंजिला। कितने छात्र रहते हैं इसमें?
4: लगभग 30 से 40।
1: कितना किराया होता होगा?
4: 8,000-9,000 पर बेड।
1: पर बेड, तो देखिए ये आपको बताऊं, 8,000-9,000 पर बेड, और जो एक कमरा होगा उसमें कितने बेड होंगे?
4: दो बेड भी हैं, तीन बेड भी हैं।
1: दो बेड भी हैं, तीन बेड।
4: जी हाँ।
1: ये जो इमारत गिरी है इसमें कितने कमरे रहेंगे एक फ्लोर?
4: इस पे एक फ्लोर पे लगभग चार कमरे होंगे मेरे हिसाब से। और ये पांच फ्लोर
0: जो छात्र जानकारी दे रहे हैं ये तो रोंगटे खड़े करने वाले हैं कि सिस्टम के रूप में हम कितने नाकाम हो गए हैं। सुशांत आपके पास कुछ अपडेट है?
2: आई देखिए मैं आपको एक तस्वीर एक जानकारी और दे दूं कि अभी एक व्यक्ति को जो फंसा हुआ था उसको और रेस्क्यू यहां पर किया गया है, एम्बुलेंस में उसको ले जाया गया है। अब यहां से थोड़ी देर में एम्बुलेंस जो है बाहर निकलेगी, यानी अब लगभग कुल 8 लोगों को जो है वो यहां से रेस्क्यू किया गया है। ये तस्वीरें आप सीधे देख सकते हैं कि एक और शख्स को जो मलबे में दबा हुआ था उसको यहां से रेस्क्यू जो है वो टीम की तरफ से किया गया है। लगभग 8 लोगों को यहां से रेस्क्यू जो है वो किया जा चुका है। ये तस्वीरें सीधे शांति निकेतन के पास की, और उसके बाद अभी एक बार फिर से एम्बुलेंस जो है वो पीछे की तरफ जाती हुई आपको यहाँ पर नजर आएगी। यानी अभी और लोग इस पूरे हादसे में दबे हो सकते हैं, उस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरी मदद जो है वो यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरें दूसरी तरफ भी हम आपको दिखाएं कि इस तरीके से ये टॉप एंगल की तस्वीरें हैं जहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से ये पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हुई, हादसा कितना बड़ा है, और एक के बाद एक जो लोग जो यहाँ पे दबे हुए हैं उनको यहाँ से निकाला जा रहा है। और लगभग अगर कहा जाए तो लगभग 45 मिनट यहाँ पर आपको यहाँ पर नजर आएगा कि मुख्यमंत्री इस वक्त उसी लोकेशन पर उसी टेरिस पर यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे मामले को बारीकी से पूरी समझ के साथ देख रही है कि किस तरीके से लोगों को जल्द से जल्द बचाया जा सके। क्योंकि जब इस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है तो निश्चित तौर पर अधिकारियों के ऊपर एक दबाव होता है काम को सही तरीके से जल्द करने का, और वही प्रेशर जो है वो यहाँ पर इस वक्त नजर आ रहा है कि जब से मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंची है उसके बाद से ही मलबे को बहुत तेजी के साथ यहाँ पर हटाया जा रहा है। और अब तक 2 लोगों को मुख्यमंत्री के आने के बाद यहाँ से रेस्क्यू जो है वो किया जा चुका है, और अभी एक बार फिर से आपको एम्बुलेंस जाती हुई नजर आएगी। यानी अभी और लोग इस पूरे मलबे के अंदर दबे हो सकते हैं, उनको निकालने की पूरी कवायद जो है वो यहाँ पर फिलहाल जो है वो की जा रही है। ये तस्वीरें सीधे तौर पर शांति निकेतन की तरफ की, जहां से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मलबा जो है वो हटाने की कोई कोशिश है। और अब से थोड़ी देर बाद जैसे दिन छटेगा उसके बाद अंधेरा होगा तो और मुश्किलें जो है वो बढ़ेंगी, और ऐसे में जल्द से जल्द अंधेरा होने से पहले रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी के साथ किया जाए। ये पूरी कवायद जो है वो इस वक्त पूरे प्रशासन की तरफ से, एनडीआरएफ की टीमों की तरफ से जो है वो यहाँ पर की जा रही है। अभी देखिए ये दो जेसीबी आपको यहाँ पर नजर आएंगी और इसके साथ साथ क्रेन यहाँ पर नजर आएगी, क्योंकि बड़े बड़े जो जो सरिये हैं उनको यहाँ से हटाने के लिए, जो पिलर्स हैं उनको हटाने के लिए क्रेन की भी मदद जो है वो यहाँ पर ली जा रही है। कई सारी गाड़ियां जो आसपास यहाँ पर खड़ी थी, मलबे में दबी हुई थी, वो भी यहाँ से निकाली गई। अभी आपको तस्वीरें और हम आपको दिखा दें कि किस तरीके से अभी भी यहाँ पर आपको छत पर दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगी। छत पर जो लोग हैं उनको यहाँ से हटाया जा रहा है और खुद एमसीडी कमिश्नर के साथ वो लगातार संपर्क में हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है वो किया। निश्चित तौर पर मैं आपको ये भी बता दूं कि इस हादसे के बाद कई अधिकारियों पर गाज जो है वो गिरना तय है, क्योंकि इससे पहले भी जब मालवीय नगर के अंदर हादसा हुआ था कई अधिकारियों पर गाज जो है वो गिरी थी। मुख्यमंत्री ने पूरे संज्ञान लिया था और कई सारी रिपोर्ट भी जो है वो तलब की गई थी, और इस हादसे के बाद भी रिपोर्ट जो है वो तलब की जाएगी और जो अधिकारी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई भी जो है वो निश्चित तौर पर होगी, चाहे वो एमसीडी के हो चाहे वो दिल्ली सरकार के हो, इन सभी अधिकारियों पर कार्रवाई भी जो है वो
0: कार्रवाई क्या होती है सुशांत, उस पर निगाह रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि ये तो अब एक फॉर्मेलिटी सा बन गया, हमेशा का सा बन गया है कि कोई हादसा होता है उसके बाद कुछ कार्रवाई हो जाती है, लेकिन वो कार्रवाई होना एक तरफ, सिस्टम में बदलाव नहीं हो पाता ना, ये बड़ा सवाल है। हम सुशांत आपके पास लौट रहे हैं, अरविंद के पास एक बार फिर से चलते हैं। अरविंद आपके कैमरे से क्या दिख रहा है, लेकिन साथ साथ में आप फिर कार्रवाई कर देंगे लेकिन वो कार्रवाई सिस्टम को तो नहीं बदल पा रहे ना, आप तो सिस्टम को बदलने के लिए आए थे, अगर आप सिस्टम को बदलने ही नहीं पा रहे हैं तो फिर पुरानी की सरकार और नई सरकार में अंतर क्या है, क्या बदला है?
1: देखिए मैं आपको बताऊं, अब से 2 से 3 महीने पहले हुए हैं, सत्य निकेतन में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां से चंद किलोमीटर दूरी पर मालवीय नगर में होटल में हादसा हुआ था और कई लोग, दर्जन लोग मारे गए थे, और वहां से सत्य निकेतन यहां जो हादसा है बहुत दूरी पर नहीं है। और जैसा सुशांत ने कहा, मैं पहले ही बता चुका हूं, देखिए अब एक्शन के नाम पर कुछ एमसीडी के जो अधिकारी हैं उनको सस्पेंड या लाइन हाजिर किया जाएगा, बाद में वो फिर नौकरी ज्वाइन कर ही लेते हैं। जरूरत ये है कि इस तरह की जो तमाम अवैध इमारतें, अवैध गतिविधियां, अवैध पीजी, अवैध होटल, अवैध ब्रेड एंड बटर जो होटल चल रहे हैं उन पर शिकंजा कसा जाए। वो एमसीडी के अधिकारी जो ले देकर इस तरह की अवैध गतिविधियां चलाते हैं उन पर शिकंजा कसा जाए, ये बहुत जरूरी अब हो चुका है, क्योंकि इस तरह के लगातार हम हादसे होते हुए देख रहे हैं, कवरेज होते हुए देख रहे हैं, लेकिन सिस्टम में कोई बहुत सुधार नहीं। और ये कोई 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल की बात नहीं है, एक लंबे वक्त से ये सिलसिला चलता हुआ चला आ रहा है। आप किसी भी दिल्ली के लोगों से पूछ लीजिए, जब भी वो कोई बिल्डिंग गिराएंगे तुरंत वहां पर दिल्ली पुलिस का कर्मचारी, एमसीडी का कर्मचारी वहां पर आ जाएगा, और उसके बाद फिर सेटिंग करके जरिए, लोकल पार्षद के जरिए सेटिंग करके आप 3 मंजिल की जहां इमारत बननी वहां 5 मंजिल बना लीजिए, और उसके बाद फिर हादसा होता है तो फिर सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगते हैं। तो जरूरी है सिस्टम में बड़े स्तर पर सुधार की। ओल्ड राजेंद्र नगर का हादसा आपको याद होगा, वहां पर किस तरीके से कोचिंग में यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र मर गए, उसके बाद आज तक की टीम ने वहां खुद जाकर बाकायदा रियलिटी चेक किया, खुद मुझ पर अटैक हुआ लेकिन वहां कोई बदलाव नहीं आया। तो जरूरी यह है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद है, तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा वक्त का हो चुका है, बड़ी बात यह है कि वो खुद भी यहां पर जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको संचालित होते हुए देख रही है, एक बड़ी बात है, तारीफ की बात है, लेकिन यहां खड़े होकर वो ये भी देखें कि आसपास कितने अवैध पीजी चल रहे हैं। मैंने कई छात्रों से कुछ देर पहले बात की है, उन पर शिकंजा कसा जाए, अधिकारियों को सख्त ऑर्डर दिया जाए कि खास तौर से जो अवैध पीजी चल रहे हैं, कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, वहां पर क्या एनओसी है क्या या नहीं है, किस तरह से सुरक्षा के मानकों का वहां अनदेखी की जा रही है, वो तमाम चीजें देखने की जरूरत है, वरना इस तरह के हादसों को रोका जाना काफी मुश्किल होगा।
0: बिल्कुल अरविंद, मैं आपके पास लौट रहा हूं, ये हादसे दिल्ली में क्यों हो रहे हैं एक बार एक्सपर्ट से सुन लेते हैं। दीक्षु कुकरेजा जो कि आर्किटेक्ट हैं, टाउन प्लानर हैं, उन्होंने क्या कहा है इसको लेकर, इस हादसे को लेकर और इस तरह के हादसों की आशंका उन्होंने कैसे जाहिर की, आपको सुनाते हैं।
5: ये अति दुखद हादसा है और ये चीज दिखला भी रहा है कि इतनी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन अगर हम होने देंगे देश के कैपिटल में तो ओवर टाइम इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तो हमें ये सलूशन ढूंढना है कि अगर जैसे बात हो रही है 75 लाख निवास इस शहर में हैं और उनमें से चंद ऐसी इमारतें होंगी जिनकी ऑथराइज प्लान्स हैं, अप्रूव्ड हैं, तो बाकियों के लिए भी एक तरीके का अभियान चलाना पड़ेगा जिसमें एब्सोल्युटली करप्शन फ्री ये देखा जाए कि उसमें किस तरीके से डेवलपमेंट को, जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उनमें फर्दर सेफ्टी और सेफगार्ड्स डालने की क्या जरूरत है। क्योंकि अगर इमारतें 40-50 साल पुरानी हो जाती हैं तो जैसे एक इंसान का शरीर को रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए होती है, उसी तरीके से इमारत को भी चाहिए। अगर हम वो भूल जाएंगे तो इस तरीके के हादसे हमें बार बार वही चीज याद दिला आएंगे, तो ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है, अब जो मैं सुन रहा हूं कि इसी इमारत में बनी हुई इमारत जिसमें लोग रह रहे हैं उसी के अंदर नीचे बेसमेंट में कॉलम्स को ऑल्टर किया जा रहा है, अब इस तरीके की चीज किसकी सुपरविजन में हो रही है? आज की डेट में आप और हम भी अगर कोई काम करते हैं हम सिर्फ सीधे ठेकेदार को बुला के उसको काम करने को कह देते हैं, तो कहां पे ऐसी इंजीनियरिंग, कहां पे ऐसी कैलकुलेशंस डिजाइन की, कहां पे ऐसे स्ट्रक्चरल सेफ्टी को देखा जा रहा है कि भाई हम उसी बिल्डिंग के जो कॉलम्स जिन्होंने वो 5 मंजिल पे को खड़ा किया हुआ है उसी को हम ऑल्टर कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें जस्ट शो करती हैं कि कितनी ह्यूमन एपथी है। हमें कोई कोई इस चीज का ध्यान ही नहीं देते कि ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन सेफ्टी को कैसे रखना है, और इसके लिए सिर्फ सरकार को नहीं हम कह सकते, हमें खुद भी देखना है। जो इस बिल्डिंग का ओनर था, क्या उसको एक दिन के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी ये सोच नहीं आई कि वहां पे लोग निवासी अभी भी हैं? एटलीस्ट बिल्डिंग को खाली किया जाता। और जो हम बात करते हैं कि जेई आके इंस्पेक्ट कर ले, हमारे जेई बाय द वे कितने एजुकेटेड है इस मामले में कि वो आके को ढंग का इंस्पेक्ट भी करते, वो तो किसी और वजह से वहां पे आते और अपनी वो वजह पूरी करके निकल जाते वहां से। तो ये सारा सिस्टमिक चेंज जो हमें चाहिए, विकसित भारत बनाने के लिए एक सिस्टमिक चेंज की जरूरत है, और वो आज हमारी राजधानी की ये दुखद हादसा और दुखद तस्वीरें बता रही हैं कि अगर हम इसको सिर्फ कभी कभी न्यूज़ के दौरे से ही देखेंगे तो नहीं होगा। हमें ये सिस्टमिक चेंज लाना जरूरी है जिसमें सरकार एक तरफ और सिटीजन्स एक तरफ, दोनों को इन्वॉल्व होना जरूरी है।
0: दिल्ली का बच्चा बच्चा शायद अब जानता है कि एमसीडी काम कैसे करते हैं। सब जानते हैं कि एमसीडी करप्ट है और वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करती है। आप एक्सपर्ट्स को सुन ले वो भी यही कहते हैं, आम लोग कहते हैं वो भी कहते हैं, और दिल्ली की तो घटना ही बोल देती है ना कि करप्शन कितना ज्यादा है। क्यों एमसीडी के कर्मचारी सही से काम नहीं कर सकते, ये बड़ा सवाल है। एमसीडी को लेकर लगातार शिकायतें मिलती रहती हैं, हर बार हादसे होते हैं, हर बार प्रश्न खड़े होते हैं। हम फिर से आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है लगातार चल रहा है। पूरी दिल्ली भुक्तभोगी है एमसीडी की, जो खासतौर जो एमसीडी का एरिया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा लगातार जुड़े हुए। अरविंद, पहले ही अनऑथराइज कॉलोनियां बहुत सारी दिल्ली में थी, उन अच्छा इस बीच में बड़ी खबर मिल रही है, पहले बड़ी खबर करूं कर रहे थे फिर मैं आपके पास लौटता हूं। बड़ी खबर दिल्ली बिल्डिंग हादसे से जुड़ी हुई, इसमें बड़ी खबर मिल रही है। बिल्डिंग के नीचे एक दवा की दुकान भी थी, ये भी जानकारी मिल रही है, तो सिर्फ पीजी नहीं चल रहा था, वहां दवा की दुकान भी थी, एक केमिस्ट की शॉप भी थी, और बिल्डिंग में 10 कमरों का पीजी चल रहा था। अब ये अपडेट सामने आ गया है कि कितने कमरे चल रहे थे, 10 कमरों का ये पीजी चल रहा था और एक कमरे में कई कई बेड्स होते हैं, ये भी आपको बता दें, किसी में 3 किसी में 2। तो बिल्डिंग के नीचे दवा की दुकान थी, 10 कमरों का ये पीजी चल रहा था। अरविंद हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अरविंद, अब क्या नया नया अपडेट इसमें मिल रहा है? केमिस्ट की शॉप थी यहाँ बकायदा बताई जा रही है।
1: नहीं देखिए, जो केमिस्ट की शॉप थी वो बगल में थी, क्योंकि ठीक बिल्डिंग के बगल में जो पीजी चल रहा है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और ये समझिए कि ये पीजी चल कैसे रहा था। केमिस्ट की शॉप थी क्या नीचे,
6: मतलब कि साइबर के पता लग रहा है?
7: पहले थी, वो बंद हो चुकी है।
1: अच्छा, बंद हो चुकी है। और ये जो पीजी है इसमें कितने कमरे रहे होंगे?
6: इसमें कमरे लमसम मतलब कि
7: 5-7-8 कमरे थे।
6: 7-8 कमरे हैं।
1: और 7-8 कमरों में एक कमरे में 2 से 3 बेड।
6: हाँ, 2 से 3 बेड है।
1: तो देखिए ये सब कुछ, और आपको बताऊं जो जिस एमसीडी की बात चल रही थी राजीव, भ्रष्ट इतना सिस्टम है कि एक वक्त एमसीडी का जो फुल फॉर्म था वो मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट भी कहा जाने लगा, और ये हालत है। ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर तमाम छात्रों से बात करेंगे और किसी भी दिल्ली वाले से बात करेंगे तो आपको हालत बयान कर देगा कि किस तरह से आप बिल्डिंग बनाने के लिए कितनी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, कितनी कटमनी और कहां कहां देनी पड़ती है। उसके बाद फिर अवैध गतिविधि अगर चलानी, उसमें पीजी चलाना हो, उसमें हॉस्टल चलाना हो, तो उसके लिए कटमनी अलग देनी पड़ती है। ये बात किसी से दबी छिपी नहीं है, कोई खुलकर नहीं बोलता है, लेकिन हम खुलकर बता रहे हैं।
0: बात छिपी नहीं। अरविंद, एक बार फिर से तस्वीरें भी लाइव दिखाएं। मैं आप देख पा रहा हूं कि आपके ठीक पीछे जेसीबी दिखाई दे रहे हैं। इस समय लाइव अपडेट भी आप दें।
1: बिल्कुल, देखिए, और ये तस्वीर भी हम आपको साथ साथ दिखाते हैं कि देखिए ये जो जेसीबी मशीन है, जो मलबा निकाल करके ला रही है धीरे धीरे करके, वो मलबा फिर इस जगह पर एक दो और पीछे की तरफ देखेंगे तीन चार, ये चार जेसीबी मशीनें हैं। और जरा एक बार आपको अनिल जसवाल इधर आप सामने की तरफ दिखाएं, ये ठीक बगल में, चूंकि हम छात्रों से बात करा रहे थे तो हम आपको दिखाते हैं कि इस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पर। मलबा तकरीबन आधा निकाला जा चुका है, आधा मलबा निकालना अभी बाकी है। देर रात तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सकता है। सामने की तरफ देखें, इस तरीके से जो मलबा है, चूंकि सड़क पर भी बिखर गया है और जेसीबी चलना काफी मुश्किल हो गया, बहुत चौड़ी गली ये नहीं है, और एनडीआरएफ की टीमें जो ग्राउंड जीरो है वहां पर लगी हुई है, जबकि जो एमसीडी के कर्मचारी हैं और दिल्ली सरकार के सिविल डिफेंस के, दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के लोग यहां मौजूद हैं। 8 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, खुद जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता।
0: अरविंद, जो आप तस्वीर से हमें दिखा रहे हैं, देख रहे हैं कि मलबे की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये मलबा कम मात्रा में क्यों लाया जा रहा है? क्या हाथों से ही वहां पर धीरे धीरे कट किया जा रहा है? जेसीबी का प्रयोग नहीं हो रहा क्योंकि नीचे लोग दबे हुए हो सकते हैं, इसलिए?
1: देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत आप कहें तो सफाई से चलाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि इसके नीचे लोग दबे भी हो सकते हैं। सीधे जैसे ये जो मशीन है, सीधे मलबा नहीं खोद सकती है, वहां पर एनडीआरएफ के लोग हैं, क्योंकि फिर नीचे लोग दबे हैं, उनको भी नुकसान हो सकता है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का जो तरीका है वो एनडीआरएफ की टीम को इसीलिए बहुत बेहतर तरीके से पता है, इसलिए जो सबसे पहले वहां पर टीम मौजूद है वो एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। जो एक कटर है, उस कटर से जो उनके पास होता है उससे जो जो जो बड़े बड़े पत्थर है उनको काटा जा रहा है, और उसके बाद फिर जब एनडीआरएफ की टीम ग्रीन सिग्नल देती है तब इस बड़ी बड़ी जेसीबी मशीन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो मलबा है और जिस तरह से इंटेल मिला है लोकल लोगों से बातचीत के बाद कि कितने छात्र वहां पर रह रहे थे, कितने नहीं रह रहे थे, जब उनकी तादाद पता चली है तब उसके बाद उनको अंदर से निकालना भी है। अब अगर ये जेसीबी मशीन जो अभी हमारे सामने यहाँ मौजूद है, अभी चलती भी जा रही है, अगर ये सीधे वहां पर मलबे को निकालने की कोशिश करेगी तो जो वहां पर इंसानी जान फंसी होगी उसको नुकसान हो सकता है, इसलिए बहुत एहतियात बरतते हुए जो एनडीआरएफ की टीम है वो लोगों को रेस्क्यू करवा रही है। और इसी वजह से देखिए अब से कुछ देर पहले एक और शख्स को बचाया गया है। जरा तस्वीर अनिल जसवाल ये दिखाइए आप।
0: बिल्कुल,
1: आप कोशिश करेंगे।
0: कुल ये संख्या भी 8 हो गई। लेकिन अभी एक बात बताएं कि हमने ऑक्सीजन सिलेंडर भी जाते हुए देखे थे, उसके बारे में क्या अपडेट मिल रहे हैं? क्या कुछ मतलब किसी से बातचीत हो पा रहे हैं? नीचे से कुछ आवाजें आ रही, कोई कुछ अपडेट उसके बारे में है? कितने लोग फंसे हुए हैं नीचे?
1: देखिये एग्जैक्ट जो नंबर है वो किसी को नहीं है। शुरुआत में 15 लोगों के फंसे होने की जानकारी मिली, उसके बाद फिर जाहिर सी बात है अब तक 8 लोगों को रेस्क्यू किया भी जा चुका है, कुछ और लोगों के फंसे होने की जानकारी भी यहां पर सामने आ रही है। तो एग्जैक्ट नंबर अभी किसी को पता नहीं, क्योंकि जो लोग अंदर थे वो अंदर फंसे ही रह गए, जो मकान मालिक है वो यहाँ रहता नहीं है, वो गुरुग्राम में रहता है, ये जानकारी मिली। आनंद बंसल जो सबसे बड़ा कसूरवार है, जो 40 साल 50 साल की बिल्डिंग में पीजी चला रहा था, नीचे बेसमेंट था उसमें पानी भर गया था, उसमें काम चल रहा था, तो वो जिम्मेदार है, लेकिन वो यहाँ रहता नहीं है। यहाँ पर जो जो जो जो लड़के वहां पर मौजूद थे वो बता सकते थे एग्जैक्ट नंबर, आसपास के लोगों से पूछताछ हुआ वो अंदाजा हुआ, लेकिन अंदर जो छात्र फंसे हुए एक एक करके उनको निकाला जा रहा, 8 लोगों को अभी निकाला। ये देखिए अभी इतना बड़ा मलबा, इस तरह के बड़े बड़े पत्थर, और जब ये पूरा हादसा हुआ तो कई गाड़ियां थी उनके परखच्चे उड़ गए, बुरी तरह से वो चकनाचूर हो गए, लेकिन जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनके नीचे कुछ छात्र दबे हो सकते हैं, इसलिए एहतियात के तौर पर जो ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। पहले जो एनडीआरएफ के पास कटर होता है पत्थर काटने का, उससे काटा जा रहा है, और उसके बाद एनडीआरएफ के अधिकारी आपस में बातचीत करते हैं कि अगर कोई नीचे दबा हो और ये जो बड़ी मशीन है वो अचानक से जाकर अगर वहां पर खुदाई करती है तो उससे नीचे अगर कोई दबा है उसको नुकसान हो सकता है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाया जाए, एनडीआरएफ को इसमें महारत हासिल है, इस वजह से एनडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंची। और अनिल जायसवाल, मैं कहूंगा कि आपको ये जो कुछ भी यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन और हलचल चली वो भी दिखाते रहे, और साथ ही साथ ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि तकरीबन अब 2.5 घंटे का वक्त हो चुका है, जो कपिल मिश्रा हैं दिल्ली सरकार के मंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री, वो ठीक ये जो इमारत गिरी है उसके सामने मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा, मंदिर की छत पर है और वहां पर कुछ अधिकारी हैं, उनको लगातार इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, अगर कोई हीला हवाली होती है रेस्क्यू ऑपरेशन में तो उसको भी गाइड किया जाता है। और साथ ही साथ अगर आप ये

0: साथ अगर आप ये पूरी सड़क देखें तो ये सड़क की चौड़ाई बहुत नहीं है। अब मलबा हटाने की वजह से यहाँ पत्थर भी जमा हो गए हैं, तो उनको भी हटाने का काम चल रहा है। और साथ ही साथ जहाँ इमारत गिरी है वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम, दिल्ली फायर डिपार्टमेंट की टीम वो लगी है, और अब तक 8 लोगों को निकाला भी जा चुका है। एनडीआरएफ को कामयाबी भी मिली है, 8 लोगों को निकाला जा चुका है, जिनमें सभी की हालत लगभग गंभीर बताई जा रही है। एम्स ट्रोमा सेंटर में उनको भर्ती करवाया गया, जहां पर इलाज उनका चल रहा है, जिसमें एक की मौत की जानकारी भी सामने आई है।
1: लेकिन अरविंद, चूंकि आप इस समय घटनास्थल पर हैं, आप घटनास्थल पर हैं और आप एमसीडी कैसे काम करते वो लगातार बताए रहे कि वो 3-5 करना तो जानते हैं, लेकिन जब परमिशन 3 फ्लोर की ही है तो आपके इर्द गिर्द भी मैं जो देख पा रहा हूं वो 3 से तो ऊपर ही सारे दिखाई दे रहे हैं। चलो एक बिल्डिंग आपको नहीं पता चली हो, 2 आपको पता ना चली हो, ऐसे कैसे हो सकता है कि ज्यादातर इमारतें वहां 3 से ऊपर ही दिख रही हैं?
0: देखिए, तभी तो जो एमसीडी है उसका नाम दिल्ली वालों ने कई बार बदल के मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट रख दिया, क्योंकि आप अगर 3 मंजिल है आप ले दे के 4 क्या 5 मंजिल बना सकते हैं, 5 क्या 6 मंजिल बना सकते हैं। अगर आपको मोटी रकम देनी हो तो आसपास के एरिया के लोगों को सेट करना है, लोकल पुलिस को, जो सिविक बॉडी है उसको सेट करना है, और दिल्ली में कमोबेश इसी तरीके से गोरख धंधा ये चलता है। लेकिन जब हादसा हो जाता है उसके बाद तमाम लोग छाती पीटते हुए दिखाई देते हैं, और खाना पूर्ति के नाम पर असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, बाद में वो बहाल हो जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। लेकिन इस तरह क्या, और मैं बार बार कह रहा हूं, मैं इस जगह यहां सत्य निकेतन खड़ा हूं, यहां से मालवीय नगर बहुत दूरी पर नहीं है, आपको याद होगा राजीव, आप खुद मौके पर गए थे कि किस तरीके से आग लगी थी, सब कुछ अवैध तरीके से चल रहा था, एनओसी नहीं थी, तस्वीरें हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है, और यहां सबसे चिंता वाली बात है कि दिल्ली में, चूंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर तमाम कॉलेजेस हैं, और जो छात्र हैं सभी को तो हॉस्टल मिल नहीं पाता, वो इस तरीके से डेलीगेसी इलाके में रहने को मजबूर होते हैं, और जो मालिक है, जो बिल्डिंग के ऑनर है, उसका फायदा उठाते हैं, 1 कमरे में 3-4 बेड लगा दिया और उसके बाद 1 बेड से 10,000-8,000 वो कमाई करते हैं, लेकिन बिल्डिंग की हालत में सुधार करने की कोशिश
1: इसमें तो कोई तरह नहीं। इस बीच में एक तस्वीर सामने आ रही है, दिल्ली के एलजी इस समय ग्राउंड पर पहुंचे हैं, तस्वीर दिखाई दे रहे हैं, तरनजीत सिंह संधू इस समय तस्वीरें हैं, वो भी पहुंचे हैं, वो भी अधिकारियों के साथ पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी मतलब पूरी दिल्ली सरकार इस समय दिखाई दे रहे हैं, मंत्री हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, 2-3 सांसद तो दिखाई कम से कम दे ही रहे हैं वहां पर, और अब एलजी भी इस समय, वर्तमान उपराज्यपाल भी पहुंच गए हैं, तस्वीरें समय आप देख रहे हैं, तरनजीत सिंह वो भी इस समय सत्य निकेतन पहुंच गए हैं। सत्य निकेतन से क्या कोई सत्य समझेगा, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। एक बिल्डिंग गिर गए है और वो गिरी हुई बिल्डिंग से मलबा निकालने का काम लगातार जारी है, इस समय तक अभी तक 8 लोगों का रेस्क्यू हो गया है, 1 की जान जा चुकी है, बाकी घायल हैं जो कि ट्रॉमा सेंटर में उनका उपचार चल रहा है, और वो उपचार एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ कितने लोग भीतर फंसे हुए इसका सटीक आंकड़ा किसी के पास नहीं, अभी किसी को जानकारी नहीं कि कितने लोग बिल्डिंग के अंदर दबे हुए हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि वहां बेसमेंट की खुदाई का काम भी चल रहा था, वहां कुछ लेबर भी काम कर रही थी, एक छात्र ने नीचे से वीडियो बनाया भी था, एक रेस्क्यू इस बीच में हुआ है, तो लगातार रेस्क्यू का काम चल रहा है देश की राजधानी दिल्ली में। इस समय मुख्यमंत्री भी वहीं पर मौजूद है, आपको बता दें कि घटनास्थल के बिल्कुल पास में एक मंदिर भी बना हुआ है, और ठीक छत पर मुख्यमंत्री और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं, जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, जेसीबी की गतिविधि आप ज्यादा तेज दिख रही है, मलबा लगातार तेजी से बाहर निकाला जा रहा है, और बहुत कम मात्रा में जो कॉन्क्रीट के स्लैब्स हैं वो बाहर निकाले जा रहे हैं या मलबा निकाला जा रहा है, क्योंकि बड़े संवेदनशील तरीके से, बड़े धैर्यपूर्वक और बहुत सेंसिटिव चूंकि मामला है, तो ऐसे में उसको उसी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि नीचे जो लोग मौजूद हों कहीं उनके ऊपर मलबा ना गिर जाए, अगर कोई जीवित है तो वो जो है उसको कोई चोट ना पहुंचाए, इस ऐसे जो है इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 2 तस्वीरें, एक तरफ आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर दिखाई देंगे, इसमें कपिल मिश्रा भी दिख रहे हैं, दूसरी तरफ आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल भी पहुंच गए हैं, तो पूरा का पूरा जो सरकारी तंत्र है वो सब इस समय एलजी से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर सब इस समय सत्य निकेतन में है, और सत्य निकेतन में ही लगातार आज तक की टीम मौजूद है। लगभग 1:30 बजे के आसपास हादसा हुआ और अब 7:45 बजे का समय होने जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अरविंद, जो रफ्तार, चूंकि बहुत सारे हादसे आपने पहले भी कवर किए हैं, कितना समय और लगने का अनुमान है, और लगभग कितना फीट है मलबा कम हुआ है अभी और कितना बाकी है?
0: देखिए, रफ्तार में तेजी हुई है, मैं आपको साफ साफ दिखाऊंगा, अनिल जसवाल आपको दिखा।

0: रफ्तार में तेजी हुई है और एक कोऑर्डिनेशन के तहत, और उसकी खास वजह यही है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री अब तकरीबन पौने तीन घंटे होने वाले हैं, वो खुद मौजूद हो गई है, वो खुद खड़ी हो गई है यहाँ पर। और अब जब दिल्ली का सीएम खड़ा हो, दिल्ली के राज्यपाल उपराज्यपाल अगर आ गए हो, तो फिर ऐसे में अधिकारियों का यहाँ मौजूद रहना जाहिर सी बात है। और रेस्क्यू ऑपरेशन पहले लोकल लोगों की मदद से चलाया गया, उसके बाद फिर फायर डिपार्टमेंट की टीम, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। और तकरीबन आधा मलबा निकाला जा चुका है, आधा मलबा और निकाला जाना बाकी है, और उसकी जो जेसीबी की मशीन है, जो जेसीबी मशीन है, उसकी मदद ली जा रही है। लेकिन चूंकि जो एग्जैक्ट जहां मलबा गिरा हुआ है वहां पर कुछ और लोग दबे हो सकते हैं, इसलिए वहां पर एहतियात बरता जाना बेहद जरूरी है, जो बरता जा रहा है, ताकि अगर उसके अंदर कोई फंसा हो तो उसको नुकसान न हो। इस वजह से थोड़ी लेट लतीफी भी हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ये बड़ी बड़ी मशीनें वहां चली जाएंगी और अचानक से मलबे को निकाला जाएगा, तो फिर जो वहां कोई फंसा होगा उसको नुकसान हो सकता है। वहां पर एनडीआरएफ की टीम है, उनके पास अत्याधुनिक मशीनें हैं जो ग्रिल करती हैं, और उसके बाद फिर वहां से मलबा निकाला जाता है।
1: अब क्योंकि अंधेरा भी धीरे धीरे हो रहा है, तो अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन रुके ना, चलता रहे, क्या उसके इंतजाम दिख रहे हैं, क्या उसके इंतजाम किए जा रहे हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो पहले से ही ये भांप लिया था एजेंसियों ने, और इस वजह से यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था आप हो गई। अगर आप ऊपर देखें तो जो मंदिर है, मंदिर के सामने लाइट लगा दी गई है, और चारों तरफ ये लाइट लगा दी गई थी, क्योंकि ये पहले ही अंदाजा लगा लिया गया था कि चूंकि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो रात तक चलेगा, और इस वजह से लाइटिंग के यहाँ बंदोबस्त किए गए। और मैं बार बार इसलिए भी कह रहा हूँ, इसलिए बार बार रिपीट करना यह जरूरी हो जाता है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, वो खुद यहाँ पर मौजूद है। तीन घंटे हो चुके, अब जाहिर सी बात है अगर दिल्ली का सीएम यहाँ मौजूद हो, उपराज्यपाल मौजूद हो, फिर यहाँ तमाम तरह के बंदोबस्त का हो जाना लाजमी सी बात है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री अगर ये देख रही हो तो आज तक उनसे कहना चाहता है कि बिल्कुल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आप पर खड़ी, आप ये तारीफ की बात है, लेकिन आपने पहले भी कहा था जब ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसा हुआ था जिसमें यूपीएससी के छात्र बारिश के पानी में बह के मर गए थे डूब के, तब आपने कहा था कि तमाम जो कोचिंग है उनका इंस्पेक्शन होगा। जब आज तक ने रियलिटी चेक किया, तब एक महीने पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर यह बयान दिया था, कोई भी जाकर देख सकता है, तब उन्होंने चेतावनी दी थी। ये जरूरी हो जाता है कि कम से कम जो जहां छात्र रहते हो, जो पीजी है, जो गर्ल्स हॉस्टल है, जो बॉयज हॉस्टल है, जो कोचिंग है, कम से कम वहां पर जो कंसर्न अधिकारी हैं, जो एमसीडी के अधिकारी हैं, वो जाएं, जाकर देखें कि वहां पर छात्र किस तरह से पढ़ाई करते हैं, किस तरह से रहते हैं। वहां पर एनओसी नहीं है, फायर की एनओसी नहीं है, कई जगह पर एमसीडी की एनओसी नहीं है, और धड़ल्ले से अवैध तरीके से वहां पर लोग रह रहे हैं, और बारिश होती है, जरा सी बारिश दिल्ली में हो जाती है
1: बिल्कुल, और हालत खराब हो जाते हैं। इस बीच में एक बड़ी खबर दे देते हैं, दिल्ली बिल्डिंग हादसे से जुड़ी बड़ी खबर, एक और शख्स की जान चली गई है। अब तक कुल दो लोगों की मौत हो गई है दिल्ली बिल्डिंग हादसे में। ये बहुत बड़ी खबर आपको दे दें, और ये चिंताजनक खबर है, दिल्ली बिल्डिंग हादसे में एक और शख्स की जान चली गई है। अब तक कुल 8 लोगों का रेस्क्यू हुआ है, उसमें से 6 लोग तो अस्पताल में है, 2 लोगों की जान चली गई है, कुल 2 लोगों की जान चली गई है। ये एक बड़ी खबर इस समय आपको दे दें, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, तमाम टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, तमाम मंत्रियों का अमला मौके पर है, लेकिन शख्स की जान चले गए हैं। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ लगातार। अरविंद, एक की और की जान चले गए। मेरा अरविंद एक और पहलू है, मैं उस पर चाहता हूं कि आप अपनी बात रखें। वो सवाल ये है कि अनऑथराइज कॉलोनी को आपने ऑथराइज किया है, और वो किस आधार पर की, जहां है वो जैसे हैं, और वो जैसे कैसे बने हैं, उनकी गुणवत्ता तो चेक ही नहीं की गई है, तो क्या आने वाले दिनों में हमें ऐसे हादसे और बढ़े हुए दिख सकते हैं, या सरकार को जागना चाहिए और निरीक्षण और तेज कर देना चाहिए, इंस्पेक्शन करना चाहिए कि बिल्डिंग क्वालिटी कैसी है?
0: देखिए, ये सब कुछ वोट बैंक की खातिर होता है राजीव, और ये कोई नई बात नहीं है। दिल्ली में एक लंबे वक्त तक जो सियासत है वो अवैध कॉलोनियों को लेकर होती रही है, बाद में उसको नियमित कॉलोनी भी कर दी गई है, चाहे वो कोई भी पार्टी की सरकार हो, और लंबे वक्त तक दिल्ली में ये मुद्दा बना रहा है, बनता रहेगा। पहले अगर कोई इलाका होता वहां पर जो भू माफिया है, वहां पर वो कॉलोनियां काटना शुरू कर देते हैं, फिर धीरे धीरे वहां पर कॉलोनी बनती है और उसके बाद फिर वहां पर निर्माण शुरू हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे करके फिर उसको एक तय तरीके से उसको नियमित कर दिया जाता है, क्योंकि वहां पर लोग रहने लगते हैं, कुछ नेता वहां पहुंच जाते हैं, वो मुद्दा उठाने लगते हैं, क्योंकि हर कोई वोट बैंक की तरफ नजर रखता है और फिर वोट बैंक की वजह से कई ऐसे डूब क्षेत्र हैं जिन पर हाल फिलहाल में कार्रवाई हुई है। ये भी हम कहना जरूर चाहेंगे कि दिल्ली सरकार ने कई ऐसे डूब क्षेत्र हैं, बुराड़ी इलाका देख लीजिए और कई ऐसी जगह अवैध इमारतें हैं, उस पर एक्शन हुआ है, बीते दिनों हमने वो एक्शन होता हुआ देखा है, लेकिन बहुत सी ऐसी अवैध इमारतें, और देखिए सबसे जरूरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आज तक पर कह रहा हूँ, हमने पहले भी छात्रों का मुद्दा उठाया है, आज तक ने कई बार जब हादसे हुए उसके बाद रियलिटी चेक किया है, कम से कम जो छात्रों का जो छात्र जहां रहते हैं, बड़ा इलाका है, चाहे नॉर्थ कैंपस ले लीजिए आप, दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलाका ले लीजिए, विजयनगर, कमला नगर, वो तमाम इलाके, ओल्ड राजेंद्र नगर, उन इलाकों में हमने एक बार नहीं कई बार जाकर रियलिटी चेक किया है। साउथ कैंपस की बात कर लीजिए, सत्य निकेतन का इलाका है और आसपास के इलाके हैं, वहां पर कम से कम जो सिविक डिपार्टमेंट के लोग हो जाएं, देखें, क्योंकि बड़े तादाद में जो छात्र हैं वो पूरे देश भर के इलाके से दिल्ली में आकर रहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना उनका ख्वाब होता है, वो यहाँ आकर पढ़ते हैं।
1: लेकिन क्या वो जाएंगे, बड़ा सवाल है। आप जिन जिनको आप माफिया कह रहे हैं अरविंद, इलाके जहाँ पर वहाँ पर लोग ये भी बोलते हैं कि सब में तो नेताओं की मिलीभगत होती है, कोचिंग माफिया उनमें नेताओं का पैसा लगा होता है और पीजी माफिया उसमें भी नेताओं का पैसा लगा होता है, क्योंकि उससे बहुत मोटा पैसा मिलता है, मोटा लाभ मिलता है, क्योंकि बच्चों के पास विकल्प नहीं होता तो वो अपनी यूनिवर्सिटी के पास में, अपने कॉलेज के पास में 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए देकर इन्हीं पीजीएस में रहते हैं, तो मोटा पैसा कमाया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, तो नेताओं का भी बहुत पैसा होता है, भले दिखता नहीं, ऑन पेपर नहीं दिखता।
0: साइड से बात है और देखिए ये जो पूरा गोरा धंधा है किसी एक
1: अरविंद एक बिल्कुल लाइव तस्वीर, एक बिल्कुल नई तस्वीर आई है, एक नई तस्वीर समय आई है, ये सीमेंट कंक्रीट का स्लैब हटाया गया, यानी कि एक फ्लोर का पूरा फ्लोर आप समझ सकते हैं, उस फ्लोर को कंक्रीट का जो पूरा फ्लोर बनता है वो उसको खिसकाया गया, देखिए बाहर की तरफ उसको निकाला गया है सावधानी पूर्वक धीरे धीरे, और फिर नीचे की तरफ उसमें आप देखेंगे कि मलबे का ढेर दिखाई दे रहा है उस पूरे के पूरे स्लैब को, अब ऐसे चूंकि 5 मंजिला थी तो एक पूरा का पूरा फ्लोर, तो वैसे 5 के 5 फ्लोर नीचे की तरफ गिरे हैं, तो कंक्रीट का पूरा स्लैब ऐसे हटाया जा रहा है, देखिए बिल्कुल लाइव तस्वीरें से मैं आप देख रहे हैं।
2: डीआरएफ की टीम ने फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और जो भी लोकल कम्युनिटी है वहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रही है, असिस्टेंस दे रही है, सबके कोऑपरेशन से हमने 4 विक्टिम्स को निकाला है, 2 उसमें से अनरिस्पॉन्सिव है, 2 रिस्पॉन्सिव है, इनको तुरंत एम्बुलेंस से, हेल्थ डिपार्टमेंट के एम्बुलेंस से तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया है।
3: सर और इन्वॉल्व है इस पूरे ऑपरेशन में?
2: तो जैसा कोई भी डिजास्टर होता है कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, तुरंत एक्टिवेट हो गई है, फील्ड पे अभी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशल्स हैं, SDM भी वहाँ पर हैं, DM भी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है, दिल्ली गवर्नमेंट के सीनियर लेवल पे ऑफिसर्स इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है, MCD इन्वॉल्व है, दिल्ली पुलिस इसको मॉनिटर कर रही है, ट्रैफिक पुलिस इसको मॉनिटर कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर से ट्रैफिक रूट क्लियर करने के लिए, जैसे ही एम्बुलेंस कोई निकलती है जाने के लिए, जिसकी जितनी भी रेस्क्यू एजेंसीज वहाँ जा रही हैं उनको एक्सेसिबिलिटी देने के लिए भी दिल्ली पुलिस इसमें सपोर्ट कर रही है, तो मिलकर इस ऑपरेशन को अभी हम अंजाम दे रहे हैं।
3: सर बिल्डिंग हैज बीन कोलैप्स्ड इन सत्यनिकेतन एरिया, व्हाट आर द डिप्लॉयमेंट्स ऑफ NDRF करेंटली?
2: सो करेंटली 2 टीम्स आर वर्किंग।
1: NDRF का ये बयान आपने सुना, उन्होंने 4 लोगों के निकाले जाने की जानकारी दी, जिसमें से 2 की बात बारे में उन्होंने बताया कि वो तो रिस्पांस कर रहे हैं लेकिन 2 रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, ये उन्होंने जानकारी दी है। इस बीच में ये तस्वीर भी आप देखिए, जो सांसद हैं वो इसमें दिखाई दे रहे हैं, बांसुरी स्वराज हैं और दूसरे जो सांसद हैं वो इस समय मौके पर लगातार मौजूद हैं। जिम्मेदार कौन है इस प्रश्न पर हम लगातार जो है जोर देते रहेंगे, कौन जिम्मेदार है और जवाबदेही क्या ली जाएगी, हम लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए, एक अपडेट लगातार आज तक पर आपको दिया जाएगा, एक एक सवाल आज तक पर पूछा जाएगा। रुकना है छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहे आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
3: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
2: असली शहद, असली स्वाद।
4: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
5: और वही कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
8: जेके वॉल मैक्स
9: बेस्ट पेंट,
10: जेके मैक्स।
11: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
12: जेके मैक्स पेंट्स।
11: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
13: देखे जन्म पहला पहला कदम।
14: हैवान की कहानी में हर किरदार का अपना रिश्ता है, उसमें जुड़े होते हैं आपके सपने, आपकी पसंद और आपकी कहानी। इसलिए घर के लिए चुनिए सिर्फ E3। E3 ग्रुप, India's leading manufacturer of interior and exterior products. E3 Group celebrates the release of Hevan on the 11th of September.

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच, हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें।
4: भारत की रक्षा नीति से लेकर भविष्य की युद्ध रणनीति तक देश की सुरक्षा पर सीधी बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ देश के सबसे बड़े रणनीतिकारों और सुरक्षा विशेषज्ञों का महामंच आज तक सुरक्षा सभा सिर्फ आज तक पर।
5: गांधी जी के आंदोलन करने का तरीका क्या आज के समय भी उतना प्रासंगिक है?
6: जो तुम गाली देते हो ना गांधी जी, 70 साल की उम्र में दो लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए, पढ़ लो।
7: जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जो गांधी जी ने वापस ले लिया था, वो भी तो किसी और की वजह से लिया था। चौरी चौरा में जो हुआ इंसिडेंट, उनसे उनको क्या मतलब था? अगर वो उसको जारी रखते, क्या पता उससे हमारी इंडिपेंडेंस थोड़ा जल्दी हो जाता।
6: ताली बजाओ इनके लिए, ये ताली डिजर्व करते हैं।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: अयोध्या के राम मंदिर में सीईओ राज का आगाज हो चुका है।
3: एयर मार्शल जितेंद्र मिश्री जी को सेवानिवृत्त हो चुके हैं
2: और इसी के साथ सियासी बयानों की आहुतियों का दौर भी शुरू हो गया है।
4: कल इन्होंने एक सीईओ की नियुक्ति की है।
5: ऑपरेशन संदूर के अंदर कहीं कोई सच तो नहीं छुपा हुआ?
6: अब कल को ये भी बेचारे बदनाम होकर बाहर निकलेंगे।
2: जिस वक्त रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला, ठीक उसी समय विपक्ष ने इस ताजपोशी पर तीखे सवाल खड़े कर दिए। हाल ही में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कांड जैसी घटनाओं के सामने आने के बाद मंदिर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी एक सैन्य अफसर को सौंपी गई है, लेकिन कार्यभार संभालते ही ये नियुक्ति सियासत के केंद्र में आ गई। कांग्रेस नेताओं ने इस नियुक्ति को लेकर सरकार और ट्रस्ट पर ताबड़तोड़ हमले बोल दिए हैं। कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि मंदिर के प्रबंधन में संतों और धर्माचार्यों की भूमिका होनी चाहिए।
7: कि चंदा चोरी पे आप कुछ नहीं बोले हैं, जरा सा उस पे भी बोल दीजिए अध्यक्ष।
4: नहीं, चंदा चोरी देखिए, मैं इसलिए बोल दूं कि अभी कल इन्होंने एक सीईओ की नियुक्ति की है।
7: वो ऑपरेशन सिंदूर में काम कर
4: चुके हैं।
7: आपने तब भी सबूत मांगा था?
4: नहीं नहीं, सबूत हमने नहीं मांगा। सीईओ की बात मैं कर रहा हूँ। राम मंदिर में सीईओ का क्या काम है आप बताइए ना भाई। भगवान का स्थान है, मंदिर है, वहाँ सीईओ क्या करेंगे? वहाँ तो धर्माचार्य की नियुक्ति होनी चाहिए। वहाँ तो परम पूज्य शंकराचार्य के द्वारा नामित होना चाहिए, जो हमारे चारों पीठ के शंकराचार्य हैं।
2: विपक्ष यही नहीं रुका, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने तो इस नियुक्ति को सीधे तौर पर ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ते हुए सवाल खड़े किए।
5: एयर चीफ को आपने राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ बना दिया है, उनका इससे क्या ताल्लुक है? ऑपरेशन संदूर के अंदर कहीं कोई सच तो नहीं छुपा हुआ जिस वजह से उन्हें यहाँ पे सीईओ बनाया गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है।
2: उधर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी सरकार को घेरते हुए सवाल दागा कि क्या देश के साधु संतों में उन्हें कोई योग्य चेहरा नहीं मिला जो ये प्रशासनिक जिम्मा किसी फौजी अफसर को सौंप दिया गया।
6: भाई ये काम साधु संतों का है। अब एयर मार्शल साहब ने हवाई जहाज उड़ाया, हवाई जहाज उड़ा लेते, इनके आरएसएस के जंगल में फंस गए वो। अब कल को ये भी बेचारे बदनाम होकर बाहर निकलेंगे। क्या तमाशा है भाई, मंदिर का काम मंदिर वालों को करने दो।
2: सवाल उठता है कि क्या जानबूझकर ऑपरेशन सिंदूर के हीरो को विवादों में घसीटा जा रहा है? क्या मंदिर की व्यवस्था सुधारने के बहाने सरकार पर सियासी निशाना साधने की कोशिश है? सवाल ये है कि क्या सिंदूर वीर के पास राम ट्रस्ट, कांग्रेस को कष्ट,

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। मैं हूं राजीव ढौंडियाल। आज दिल्ली में एक भयानक हादसा हुआ है। दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक बहुमंजिला इमारत ढह गई है, जिसके मलबे में कई छात्र दब गए हैं। अगले आधे घंटे इस हादसे से जुड़ी हुई सारी रिपोर्ट आपको दिखाई जाएंगी, मगर उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली में बड़ा हादसा। सत्य निकेतन इलाके में 5 मंजिला इमारत गिरी। अब तक 2 लोगों की मौत, कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। दिल्ली की इमारत गिरने के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। 9 लोगों का रेस्क्यू। एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कई घायल। बिल्डिंग में चल रहा था पीजी। दिल्ली हादसे पर अमित शाह की नजर। गोवा में अपना कार्यक्रम रोक, वहां से निकले गृहमंत्री। हादसे की जगह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद। दिल्ली गैस आरसीसी में पीएम मोदी के संबोधन को लेकर विपक्षी सवालों पर नितिन नवीन का तंज। कहा प्रधानमंत्री ने कल नाराज फूफाओं को होम्योपैथी की दवा दी, लेकिन इसका असर एलोपैथी वाली हाई एंटीबायोटिक जैसा हुआ। भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने रचा इतिहास। बैडमिंटन में चाइना मास्टर्स का जीता डबल्स खिताब। फाइनल में चीनी जोड़ी को 3 गेम में हराया। दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे से जुड़ी हुई सबसे पहले बड़ी खबर आपको देते हैं। इसमें 2 लोगों की जिंदगी चली गई है, कई लोग इस समय मलबे में दबे हुए हैं। प्रशासनिक टीम मौके पर मौजूद है। सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, मंत्री, एलजी सब ग्राउंड पर हैं, लेकिन 2 लोगों की जिंदगी चली गई है। क्या इसे हादसा कहा जाएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रशासनिक लापरवाही तो साफ साफ दिखाई दे रही है। अब सिस्टम की गलती, और सिस्टम भी न्याय दिलाएगा, और क्या सही न्याय दिलाएगा, ये बड़ा सवाल है। 2 लोगों की जिंदगी चली गई है, वो परिवार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं। दिल्ली बिल्डिंग हादसे में अब तक 2 लोगों की जान चली गई और इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लाइव तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा भी रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। तो दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत गिरी। इस हादसे में कई छात्र घायल बताए जा रहे हैं। 9 छात्रों को मलबे से निकाला गया, जिसमें से 2 की मौत की खबर है। वहीं अभी भी कई छात्रों के मलबे में दबे होने की आशंका है।

0: ऐसा हादसा जिसने दिल्ली को हिला के रख दिया, ऐसा हादसा जिसने लोगों के दिलों में खौफ भर दिया। देखिए, दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में दोपहर करीब 1:30 बजे एक इमारत ढह गई। इमारत ढहते ही अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें देखिए, सिर्फ धूल का गुब्बार नजर आ रहा है और साथ में नजर आ रहा है कि कैसे मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है।
1: यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लोकल्स की मदद से जो है यहाँ ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ को भी इस वक्त बुला लिया गया है। एनडीआरएफ की भी एक बटालियन जो है, एक टीम जो है, वो इस वक्त यहाँ पहुंच गई है और अभी धीरे धीरे वो यहाँ पे स्पॉट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि कितनी भारी संख्या में जो यहाँ लोकल्स हैं, वो लोकल जो है यहाँ मदद कर रहे हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं। अभी ये बड़ी मशीन, अभी जो मशीनें हैं, जो कटर्स हैं, हैवी कटर्स हैं, बोल्डर कटर्स हैं, उन्हें भी अभी लेकर के यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो इस वक्त यहाँ आई है। और ये 5 मंजिला इमारत बताई जा रही है। अगर आप तस्वीरों में थोड़ा और क्लैरिटी से देखें यहाँ पर, तो ये देखें आप, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग थी और ये काफी बड़े इलाके में जो है ये पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर एक बॉयज हॉस्टल था और उसे बॉयज हॉस्टल में जो है ये पूरा हादसा हुआ है।
0: बताया जा रहा है कि इस इमारत में पीजी हॉस्टल था। सत्य निकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास बसा प्रमुख छात्र इलाका है। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं, इसी वजह से यहाँ दिन भर छात्रों की आवाज आई रहती है। हालांकि सत्य निकेतन में कुल कितने छात्र रहते हैं इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी बचाव काम चल रहा है, वो भी संभाल कर कि कहीं मलबे में दबे किसी शख्स को नुकसान न पहुंचे।
1: तो यहाँ पे जेसीबी चलाना वो खतरे से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि आखिर कितने लोग फंसे हैं और कौन कौन सी जगह फंसे हैं। अगर जेसीबी से मलबा हटाने के चक्कर में कुछ और लोग जो फंसे हुए हैं, जो शायद इंजर्ड हो, बस उनकी भी जान पर बना सकती है। और इसीलिए जेसीबी का अगर हम देखें तो ज्यादा इस्तेमाल ऐसे सिचुएशंस में नहीं किया जाता। और जो प्रिसाइज हैवी टूल्स होते हैं, जैसे बड़े ड्रिलर्स होते हैं, स्टील कटिंग मशीन्स होती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये पता लग पाए कि कहां कहां लोग फंसे हैं। अभी इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे ये समझ आ गया है कि यहां पर लोग नहीं फंसे हैं, जो बिल्डिंग के बाहर की लोकेशंस हैं, वहां पर अब जेसीबी की कार्रवाई जो है वो शुरू होती हुई दिख रही है। और बिल्डिंग के बाहर जहां गाड़ियों पर जो मलबा गिरा था उनसे अब मलबा हटाना शुरू किया जा रहा है। लेकिन बिल्डिंग जहां पर थी, जहां लोग फंसे हुए हैं, वहां पर अभी जेसीबी नहीं चलेगी।

0: वहां पर अभी मेटल कटर्स चलेंगे, वहां पर अभी GPR लगाया जाएगा, ये पता लगाया जाएगा कि कहां कहां लोग फंसे हैं, और उसके बाद वहां से मैन्युअली डिक करके ही लोगों को निकालना होगा या फिर हैंड यूजेबल मशीन से ही लोगों को निकालना होगा। अगर आप देखें यहां पे अभी भी प्रशासन को बहुत मुश्किलें हो रही हैं लोगों को समझाने में कि ये जगह खाली कर दे, क्योंकि ये जगह अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है, कहीं से भी मलबा और भी थोड़ा घिसक सकता है और लोगों को इंजरीज हो सकती है और लोगों को चोट आ सकती है।
1: बताया जा रहा है कि इमारत के बेसमेंट में काम चल रहा था, लेकिन अभी सही तौर पर ये नहीं मालूम चल सका कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। अनमोल बाली, अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
2: ग्राउंड जीरो पर सीधे आपके लिए चलते हमारे दो संवाददाता इस समय हादसा जहां पर हुआ है वहां पर मौजूद है, घटनास्थल पर मौजूद है। सुशांत मेहरा हमारे साथ है, अरविंद ओझा हमारे साथ है। अरविंद, सबसे पहले आपके पास आते हुए, रेस्क्यू ऑपरेशन कितना आगे बढ़ा है अभी तक?
3: देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन अनिल जसवाल, अगर आपको यहां से तस्वीरें दिखाएंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अभी जो जेसीबी मशीन है उसको यहां पर रोक दिया गया है, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम वहां पर जो मशीन है उनके पास वहां से ग्रिलिंग वहां पर की जा रही है, और उसके बाद फिर आगे धीरे आधा लगभग मलबा निकाला जा चुका है, 8 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। चूंकि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है वो लगातार 3 घंटे से यहां पर बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदारी की बात करें तो जो हमें जानकारी है, लोकल पुलिस, लोकल थाना, लोकल SHO और MCD के जो अधिकारी है वो सीधे तौर पर अपने इलाके में कोई अवैध गतिविधि होती है तो उसके लिए जिम्मेदार है। और कम से कम जो हमारे साथ एक छात्रा है यहाँ पर जो यहाँ PG में रहती है राजीव, उसको इनको सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस इलाके में और भी कई PG हैं जो जर्जर हो चुकी हैं, तो कैसे PG चलता है कैमरे पर खुलासा करेंगे। अपना नाम बताइए।
4: पूजा अग्रवाल,
3: आप यहाँ क्या PG में रहती है?
4: हाँ जी।
3: किस तरह की स्थिति है, किस तरह से PG चलता है, कितने बेड होते हैं, कितने मकान मालिक पैसा एक्सपेक्ट करते थे?
4: सर, यहाँ पर जैसे एक PG है, एक बिल्डिंग है, वहाँ पर ऑलमोस्ट 5 फ्लोर्स होते हैं हर PG पे। एक फ्लोर पे 6 या 7 कमरे होते हैं, एक कमरे में 2 बेड होते हैं। एक बेड का रेंट मिनिमम यहाँ पर 12,000 होता है, और उस PG का साइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत से घरों में जो किचन का साइज होता है उतना उस PG के रूम का साइज होता है, और उसमें 2 बेड होते हैं साथ में, और उस एक बेड का रेंट 12,000 रुपए ये लोग लेते हैं। रेंट का टाइम एकदम एग्जैक्ट चाहिए इनको। खाना बहुत सारे PG के
3: मरम्मत कैसी होती है बिल्डिंग की?
4: बहुत बेकार सीलन आई होती है, जो दीवारें होती है उसमें पानी दिख रहा होता है कि बिल्डिंग में सीलन है, रूम्स की कंडीशन उतनी अच्छी।
3: ये जो बिल्डिंग गिरी है आपके बगल में, इसकी भी हालत ऐसी थी?
4: सर, इसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ इसकी हालत कैसी थी, मैंने सिर्फ बाहर से देखा था इस वाली बिल्डिंग को।
3: नीचे बेसमेंट का भी काम चल रहा है?
4: हाँ, नीचे।
3: लेकिन यहाँ जो PG चलते हैं, एक कमरे में 2 से 3 बेड, हाँ, और 12,000-13,000,
4: हाँ, इतना ही किराया होता है। बहुत सारे थोड़ा बड़ा साइज का कमरा होगा तो उसमें 3 बेड लगा देते हैं, 3 अलमीरा लगा देते हैं, उनका किराया थोड़ा सा 1,000 रुपए या 2,000 रुपए कम कर देते हैं।
3: तो राजीव, ये देखिए, ये छात्रा है PG की, जो सत्य निकेतन साउथ कैंपस का इलाका है, सुना आपने, तो ये जो बिल्डिंग
2: इसमें खास बात यह है कि ये बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि अधिकारियों को पता ना हो, और MCD तो सब जानता है, जैसे कि आप भी बता रहे थे, MCD को सब पता होता है कहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहां पर नहीं चल रहा है, कहां पर खराब है, लेकिन जहां पर पैसा होता है वो वहीं पर देखता है, उसको वहीं पर जो है उसको तवज्जो देता है। हमारे साथ सुशांत मेहरा भी है। सुशांत, अभी जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो क्या है, कितने लोगों की डेथ हो गई है, कितने लोगों का रेस्क्यू हो गया, ऑफिशियल आंकड़ा क्या है इस समय?
5: देखिए, मैं आपको जानकारी दे दूं, अब तक 9 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिनमें से 2 कैजुअल्टी की जो क्लियर है वो अब तक हुई है। लेकिन आपको हम तस्वीरें दिखा दें कि यहाँ उपराज्यपाल मौजूद हैं और NDRF का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, मलबे के नीचे फंसे हुए हैं, उसके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं कि ऑक्सीजन के छोटे सिलेंडर जो है वो NDRF की टीम ने अंदर भेजने की कोशिश की है, अंदर भेजे गए हैं ताकि उनको ऑक्सीजन जो है वो एटलीस्ट मिल सके, सांस मिल सके, क्योंकि ये पूरा इलाका काफी ज्यादा संकरा है। बिल्डिंग कोलैप्स हुई, 5 मंजिला जो मलबा है वो फंसा हुआ है, कई सारे स्टूडेंट अंदर फंसे हो सकते हैं, ऐसे में ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो भेजे गए ताकि सांस जो है उन बच्चों को जो है वो मिल सके। ये एक बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं, और अभी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुख्यमंत्री तकरीबन 5:15 के आसपास आई थी और लगभग 2 घंटे से यहां पर अपने मंत्रिमंडल के साथ चीफ सेक्रेटरी यहां पर मौजूद है, क्योंकि एक बड़ा ऑपरेशन है, और खुद BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली के

0: उपराज्यपाल इस पूरे मामले को लेकर के अपनी बात जो है वो रखी है। तस्वीरें मैं दिखा देंगी, देखिए ये यहाँ पर आपको मूवमेंट जो है वो नजर आएगा। इस वक्त यहाँ पर आपको मैं तस्वीर दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु बाहर आते हुए आपको यहाँ पर नजर आएंगे। पूरे स्थिति का उन्होंने जायजा लिया है कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई परेशानी ना हो, टीमों को पूरी तरीके से गाइड किया गया। यहाँ से अब जाते हुए तरनजीत संधु जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और आप ये तस्वीरें देखिए कि ये हादसा कितना बड़ा है, क्योंकि 5 मंजिला इमारत पिछले लंबे वक्त से खड़ी हुई है, स्टूडेंट अंदर मौजूद हैं और बेसमेंट के अंदर काम चल रहा है, मजदूर लगे हुए हैं। उन मजदूरों और उन स्टूडेंट की जिनकी जान इस हादसे के अंदर गई है उसका जिम्मेदारी कौन लेगा, ये एक बड़ा सवाल है। एक बड़ा सवाल एमसीडी पर कि आखिरकार इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन हुई बिल्डिंग के अंदर बेसमेंट में कैसे काम चल सकता है, तो उस पर भी एक बड़ी लापरवाही जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि अब दिन जो है वो ढल चुका है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में और भी ज्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ेगा। तौर पर जो टीमें यहाँ पर एनडीआरएफ की लगी है उनको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन पूरी कोशिश यही है सरकार की तरफ से कि कहीं पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई दिक्कत परेशानी ना आए और रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द किया जाए। 2 लोगों की जान इस पूरे घटना में जो है वो जा चुकी है, इसके अलावा 9 लोगों को रेस्क्यू किया गया और अभी भी कई लोग जो है वो दबे हो सकते हैं।
1: हम तस्वीरें भी सुशांत दिखा रहे हैं, लेकिन जवाबदेही तो लेनी पड़ेगी क्योंकि अब पानी सर से ऊपर चला गया। कब तक आपका करप्शन और ओपन करप्शन, लोगों को सब दिखता है, लोग सब जानते हैं, अधिकारी सब जानते हैं, लेकिन अब समय आ गया कि जब खुलकर बोला जाए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों की जान गई है और जिन लोगों ने इमारत को ढहते हुए देखा वो अब तो खौफजदा है। अब उन लोगों की जुबानी आपको सुनाने जा रहे हैं जिनके सामने यह हादसा हुआ है।
2: तो ये हॉस्टल डेज नाम की बिल्डिंग है, इसके साथ एक और बिल्डिंग पीजी की गिरी है। हॉस्टल डेज तो है वो बॉयज पीजी है प्रॉपर, 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी ये, एंड इसके साथ बगल वाली बिल्डिंग भी गिरी है, एंड जो ये येलो वाली बिल्डिंग है ये दोनों हिल रही थी जब वो गिरी है। तो इन दोनों में भी पीजीज ही है और इनके एंट्रेंस एक उधर से एक पीछे की साइड से, 2 साइड से एंट्रेंस है और मलबे के चक्कर में इनका एंट्रेंस भी जहाँ तक है ब्लॉक हो चुका है। और 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी, जितने बच्चे रूम में थे वो तो सारे दब गए हैं और जो बाहर थे बच्चे उनका पता नहीं है, और जितना भी रजिस्टर में एंट्रीज होंगे उसके हिसाब से ही पता चलेगा अब कितने बच्चे दबे हैं इसमें।
3: कम से कम 40 बच्चों के हताहत होने की खबर है और ये सत्य नहीं कहते। आप जो भी बिल्डिंगें देख रहे हैं सब बिल्डिंगें जर्जर, इनकी कोई ये कभी भी गिर सकती है, इसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार इन बिल्डिंगों की स्थिति देखकर इन्हें सील करे, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार को बच्चों से शिक्षा से कोई मतलब नहीं है।
4: There will be 20 to 25 such buildings जो आज गिरे, एक महीने बाद गिरे, एक साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी। विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई आधा दिल्ली करता है यहाँ पे, तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन।
5: दिल्ली पुलिस पे है, 1:45 पे दिल्ली पुलिस को फोन किया था, दिल्ली पुलिस 3:15 तक कहाँ थी? और दूसरी बात, यहाँ के बिल्डिंग का ओनर कहाँ है?
6: और यहाँ पे जितनी भी पीजीज हैं सब में सीढ़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है और बच्चों का फायदा उठाया जाता है। साउथ कैंपस के सभी बच्चों का, उनको खाना खराब दिया जाता है और उनकी मजबूरी है पीजीज की।
4: आधे बच्चे गंदे खाने से मर जाते हैं, जो बच रहे हैं वो बिल्डिंग गिरने से मर रहे हैं।
7: 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं जब हमारे सामने बिल्डिंग गिरी थी, तो काफी नीचे मतलब लेबर भी काम कर रही थी, इसमें 7 से 8 लेबर थी जो काम करे जा रही थी। अब उनका भी नहीं पता कि वो निकल पाए थे या नहीं निकल पाए थे, मगर मुझे इतना पता कि बहुत बच्चे हैं इसके नीचे, कम से कम 8-10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, मगर बाकी जितने भी यहाँ के मोहल्ले क्षेत्र के हैं सबने अपने हाथों से मलबा हटा के 4 लोगों को निकाल लिया गया है।
8: हम दुकान के अंदर बैठे थे, हमें एकदम आवाज आई जैसे भूकंप टाइप होता है, 1:30 बजे हम अंदर इतनी नहीं आई, जो बाहर बच्चे खड़े थे उनके पास आवाज आई, हम फटाफट भाग के आए। यहाँ पे बहुत ज्यादा धुआं वगैरह था, सारी बिल्डिंग गिरी हुई थी और अभी इन्होंने यहाँ से मजदूर वगैरह निकाल लिए हैं, उनकी डेड बॉडी मिली और 4 बच्चे निकाले हैं जिनकी सांसें चल रही थी, वो अभी उनको एम्बुलेंस ले गई है बट वो मतलब अधमरे की हालत में थे।
1: हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर है, सुशांत के पास चलते हैं। सुशांत, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे स्टूडेंट्स इस समय, उनसे बातचीत करिए और रियलिटी सरकार के सामने रखिए।
0: देखिए रियलिटी दिखानी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि सरकार ये समझे कि जो हमारा देश का जो भविष्य है, जो दूसरे राज्यों से पढ़ाई करने के लिए आते हैं वो किस तरीके से किन हालात के अंदर पढ़ते हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे, हमारे सारे स्टूडेंट हैं और सामने ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी, ये मैं जानना चाहूंगा जब ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी उस वक्त आप सब यहाँ मौजूद थे, क्या आपने देखा था?
9: सर आवाज काफी तेज आई थी तो बाहर निकल के देखा तो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, तो कोई शौक वाली बात नहीं है। आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग सतनिकेतन में अभी गिना सकता हूँ जो गिरने वाली हालत में होंगी। डीयू के पास इतना करोड़ों का बजट रहता है, वो नहीं अगर चाहती तो एक कहीं ना आसपास एरिया बना के कहीं पूरा हॉस्टल एलोकेशन कर देती सारे डीयू के कैंपसेस को, बट पीजी माफिया को कैसे सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट? फिर पीजी माफिया से तो उनको चंदा मिलता है ना।
0: आप रूम का रेंट देते हैं?
9: ये 18,000 रुपए का एक रूम है, ये इतना छोटा रूम है 18,000
0: रुपए
9: जी
0: पर पर्सन
9: नहीं पूरे रूम।
0: जरा दिखाइए कहाँ पर है ये राजीव, ये समझना होगा कि देखिए ये एक रूम है, अब इस रूम की हालत देखिए, ये महज 10x12 का कमरा है, एक लकड़ी का बेड नजर आएगा, पतला सा गद्दा नजर आएगा, और इस कमरे के अंदर दो लोगों के रहने की जो कॉस्ट है वो 18,000 रुपए, यानी 18,000 रुपए में आपको ये कमरा मिलेगा। और जिस तरीके से स्टूडेंट ने बताया कि जो पीजी माफिया है वो इस पूरे इलाके में सक्रिय है, और इस तरीके के कई सैकड़ों अगर कहा जाए तो यहाँ पर पीजी जो है वो चलते हैं, छोटे छोटे कमरे, और उसके अंदर ये वॉशरूम है, ये छोटा सा एक कमरे के अंदर आपको यहाँ पर वॉशरूम भी जो है वो नजर आएगा, जो कि महज अगर कहा जाए तो 5x5 का एक पूरा वॉशरूम है। और भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं, और भी कई सारे स्टूडेंट आप भी यहीं पे रहते हैं, कितने आप पैसे देते हैं?
10: खाली हम आए हैं।
0: कितने पैसे देते हैं?
10: 9,000।
0: 9,000 रुपए। इसके अलावा क्या मिलता है? फैसिलिटीज
10: एसी टीवी फ्रिज वगैरह सब है,
0: बस यही मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए और भी है, आपको और भी देखते हैं, और भी कई सारे जो स्टूडेंट है आप भी यहीं पे रहते हैं? जब बिल्डिंग गिरी थी तो उस वक्त क्या आपने देखा, उस वक्त यहीं पर मौजूद थे?
10: हाँ, लाइक बालकनी के सामने ही गिरा था, तो मैंने देखा ये क्या बोलते हैं, लाइक जब मैं निकला देखा कि पूरा ऐसे डस्ट वगैरह से भरा हुआ था एंड ऑल, एंड फिर देखता हूँ कि लाइक जो पानी की टंकियां रहती है 3-4 टंकियां ये गिरी हुई थी, 3-4 टंकियां, तब आइडिया चला कि लाइक बिल्डिंग पर, क्योंकि डस्ट।
0: अब राजीव आपको एक तस्वीर भी दिखाऊंगा, मैं अपने सहयोगी अमित बदवा से कहूंगा कि वो तस्वीर दिखाए। अमूमन जो बिजली कंपनियां हैं वो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक जो मीटर होते हैं, पावर के जो मीटर्स होते हैं, उनको बिल्डिंग के बाहर लगाना होता है कहीं हादसा ना हो, लेकिन इस कमरे के अंदर मैं तीसरी मंजिल पर मौजूद हूं और इस बिल्डिंग के अंदर आपको यहां पर बिजली का मीटर नजर आएगा। किस तरीके से जो बिजली विभाग है उसकी भी एक बड़ी लापरवाही है, और यहाँ पर किस तरीके से बिजली का इस्तेमाल होता है,
1: ये तो मजॉरिटी मजॉरिटी दिल्ली का हाल है,
0: आपको नजर आएंगे
1: ऐसे एक बार कमरे हैं। ठीक है सुशांत, आपके पास लौटता हूँ, अरविंद के पास भी चलते हैं, कि अरविंद सवाल सिस्टम से है और सिस्टम को ही अपने खिलाफ काम करना है, और ये सिस्टम कितना निष्पक्ष है वो हम जानते ही हैं।
11: देखिए मैं सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाऊं कि देखिए अनाउंसमेंट भी यहां पर हो रहा है, क्योंकि यहां पर भारी तादाद में जो लोग इकट्ठा हो गए थे कुछ लोकल लोग, तो अनाउंसमेंट हो रहा है उनको ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत न हो, इस वजह से उनको हटाने की यहां पर कवायद है। अब जो जेसीबी मशीनें हैं वो यहां पर रोक दी गई हैं, जो जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो मलबा था काफी संख्या में वो मलबा वहां से हटा भी दिया गया है और यहां पर इकट्ठा किया गया है। जो एनडीआरएफ की टीम के जवान थे वो फिलहाल यहां पर लगे हुए हैं। जिस सिस्टम की बात आपने की तो आपको मैं बता दूं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता है उनके सोशल मीडिया पर जाइए, तकरीबन 1.5 महीने पहले की बात है जब उन्होंने चेतावनी दी थी कोचिंग सेंटर को, तमाम लोगों को चेतावनी देते हुए कहा था कि एनओसी और तमाम कागजात पूरी कर लीजिए, और वो तब कहा था जब आज तक ने रियलिटी चेक किया था ओल्ड राजेंद्र नगर का। लेकिन यहां पर कई ऐसे पीजी हैं जिसमें छात्राएं रहती हैं, जिसमें छात्र रहते हैं, और एक फ्लोर पर तकरीबन एक कमरा और 8-10 बेड, यानी कुल मिलाकर एक फ्लोर में 10 छात्र रहते हैं और उनसे मनमाना किराया वसूला जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो सालाना 10,000 है, और यहाँ पर जो बेड है उसकी कीमत 10 रुपए हो जाती है। और बिल्डिंग की हालत कैसी होती है, 40-50 साल पुरानी इमारत, और अगर इलाके में कोई अवैध पीजी चल रहा है, अवैध होटल चल रहा है, तो लोकल एसएचओ को और लोकल एमसीडी के अधिकारी को जानकारी हो, ये हो ही नहीं सकता। तो सब
1: जितनी
11: कुछ अवैध
1: बिल्डिंग पुरानी होगी शायद उससे उतना ज्यादा मोटा पैसा लिया जाता होगा, इसीलिए तो चल रही थी। आप दोनों नजर बनाए रखें, आपके पास हम लौट रहे हैं। लेकिन दिल्ली में हुए हादसे के बाद से अब राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस पर दुख भी जताया, और गोवा में गृहमंत्री अमित शाह का कार्यक्रम था, उन्होंने अपना कार्यक्रम रोका, इधर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी हादसे पर दुख जताया, तो वहीं विपक्ष अब सरकार पर हमलावर है, वो सवाल पूछ रहा है कि इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है।

0: ऐसा भयानक हादसा जिसने दिल्ली को दहला दिया। जैसे ही खबर आई कि सत्यनिकेतन में एक ऐसी इमारत जमींदोज हो गई है जिसमें छात्र रहा करते थे, तो पूरी दिल्ली में हड़कंप मच गया। गृह मंत्री अमित शाह गोवा में थे, वो बीजेपी के नए ऑफिस इनॉग्रेशन सेरेमनी में थे, लेकिन जैसे ही उन्हें हादसे की जानकारी हुई उन्होंने अपना कार्यक्रम रोक दिया। अमित शाह ने हादसे पर दुख जताया है।
1: एक समाचार है, एक दुखद घटना हुई है और उस दुखद घटना का समाचार सुनने के बाद हमारे देश के गृह मंत्री ने तुरंत निर्णय ले लिया कि ये कार्यक्रम यहाँ तक सीमित करके खत्म।
0: घटना बड़ी थी और तकलीफी हादसे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दुख जताया और हादसे वाली जगह पहुंची। एमसीडी के मेयर भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी हालातों का जायजा लिया है।
2: देखिए, हम तो चाहते हैं कि बच्चे उसमें बच जाएं। पहले रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट है। सभी जायजा आपके इस समय सभी जायजा बहुत कमियां हैं, सिस्टम में बहुत कमियां मैं मानता हूं, लेकिन पहले अभी रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।
0: अब इस हादसे पर विपक्ष हमलावर है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दिल्ली में सरकार की लापरवाही के कारण अब तक कई हादसे हो चुके हैं, सरकार को नींद से जागना होगा, बड़े स्तर पर एक्शन लेकर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी के भ्रष्टाचार का नतीजा है।
3: देखिए, मेरे को जो आसपास के रहने वाले लोगों ने बताया है कि पीजी के अंदर करीब 30 से 40 नौजवान बच्चे फंसे हुए हैं इस मलबे में, और आज से कुछ समय पहले की बात है जब साकेत सैजुला जाब में 4 मंजिल की इमारत गिरी तो कहा गया कि हम दिल्ली की सब बिल्डिंगों की ऑडिट कराएंगे, जो पैसा नहीं देता उसकी बिल्डिंग को सील कर देते हैं, पैसे की मांडवाली होती है, एक हफ्ते बाद बिल्डिंग को डी सील कर दिया जाता है। अभी क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। अभी रेखा गुप्ता कहेंगी हम बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं, आशीष सुदलक कहेंगे हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, और क्या करेंगे बता देता हूं। एक जेई को सस्पेंड करेंगे और एक एई को सस्पेंड करेंगे और 15 दिन बाद उनको चुपचाप बहाल भी कर देंगे।
0: कांग्रेस भी सवाल पूछ रही है कि आखिर देश में छात्र सुरक्षित क्यों नहीं है।
4: जी चल रहे ये बिल्कुल कोई इनकी कोई कोई किसी तरह का मापदंड नहीं है। एमसीडी क्या कर रही है, एनडीएमसी क्या कर रही है, यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, अथॉरिटीज क्या, कब तक जवाब नहीं देंगी। सारी अभी भी आप चेक कर लो, ये आसपास पीजी हैं सारी, आप चेक कर लो। उस टाइम भी हमने मैं भी गया था वहां, आप लोगों के सामने हमने सबने कहा था कि इनको चेक कराओ, इनको कहीं ना कहीं इनकी कोई नॉर्म्स तो हो। स्टूडेंट कब तक बर्दाश्त करेंगे और कब तक अथॉरिटीज जवाब नहीं देंगी, ये मैं समझता हूँ कि आज हम सबके लिए बहुत ही दुख का टाइम है।
5: जब यूनिवर्सिटी में हॉस्टल ही नहीं है और इस निकेतन पे आपने रखा है तो और वो वही छत गिर जाती है तो सुरक्षित छात्र किसी तरीके से सुरक्षित नहीं है, और बड़ी दुख की बात है। तो प्रधानमंत्री जी ऐसा करिए, हमें एक दिन आप कुछ अपना वक्त दे दीजिए, हम रिपोर्ट कार्ड लिख के आपको लिखित रूप में दे देंगे।
0: सियासत अपनी जगह है, मगर ये भी सच है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री बदले, सरकार बदली, लेकिन हालात नहीं बदल पाए हैं। इसे हादसा कह देना, लेकिन ये लापरवाही सीधे सीधे मौत को आमंत्रण देने वाली जैसी है। सवाल ये है कि ऐसे हादसे कब तक होते रहेंगे। दिल्ली से अंशुल सिंह, अरविंद होजा और अनमोल बाली के साथ आज तक ब्यूरो।
6: हमारे संवाददाता अरविंद ओझा लगातार हमारे साथ बने हुए। अरविंद, इस समय का क्या अपडेट है, रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या कोई और भी रेस्क्यू किया गया इस बीच में?
7: देखिए, सीधे मैं आपको अनिल जसवाल आपको तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर कुछ देर रुका था, जो लोकल लोग थे उनको हटाया गया यहाँ से, और खासतौर से जहाँ मलबा गिरा है वहां पर प्रॉपर लाइटिंग की गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री, तकरीबन 3.5 घंटे का वक्त हो चुका है, वो यहाँ पर मौजूद है, अपनी कैबिनेट के साथ मौजूद है। आधा मलबा लगभग निकाला जा चुका है, तकरीबन 8 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, दुखद मौतें भी हुई हैं, लेकिन अभी भी तमाम प्रशासनिक अमला वो यहाँ पर मौजूद है और ऐसा लगता है कि लेट नाइट तक ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है और चलेगा, इस वजह से यहाँ पर लाइटिंग की गई है। अब यहाँ पर धीरे धीरे जो पीजी हॉस्टल है उनके उनके ऊपर से वो बैनर हटाया गया है और तस्वीरें हम दिखाते रहते हैं। हमारे साथ दो छात्र हैं, वो उन छात्रों से भी हम बात करेंगे क्योंकि ये समझना जरूरी है। और साथ ही साथ ये हादसा तो हो गया, आगे कोई हादसा न हो, किसी छात्र की जान न जाए, ये समझना, ये बताना और ये खुलासा करना भी राजीव जरूरी है। तो हम इन दो छात्रों से भी बात करेंगे और साथ साथ अनिल जायसवाल आपको ये तस्वीर भी आप दिखाते रहे। आपका नाम बताइए।
8: अभिषेक सिंह मेरा नाम है।
7: अभिषेक सिंह, सबसे पहले ये जो पीजी था उसकी हालत कैसी थी, क्या चल रहा था उसमें, वो बताइए।
8: यहाँ पे ये हॉस्टल डेज पीजी नाम से पीजी चलता था और ये बिल्डिंग
7: क्या नाम से चल रहा था,
8: हॉस्टल डेज।
7: हॉस्टल डेज, तो देखिए जो बिल्डिंग गिरी है उसमें जो पीजी चल रहा था उसका नाम था हॉस्टल डेज, तो ये नाम नोट करने वाली बात है जी, बताइए।
8: और ये बिल्डिंग में तीन तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था, बिल्डिंग हल्की सी बाईं तरफ टिल्टेड थी जो कि खुला एरिया था। और अगर आप देखें जो बालकनी का एरिया है वो भी यूज किया गया था, जो पीछे साइड बालकनी का एरिया होता है वो यूज किया गया था फॉर क्रिएटिंग स्पेस फॉर रूम्स। तो ये भी मतलब मुझे समझ नहीं आता कि यहाँ पे एमसीडी अथॉरिटीज और ये मैप कैसे पास हो जाते हैं और ये बिल्डिंग कैसे कंस्ट्रक्ट हो जाती है, कौन सी अथॉरिटीज इसको अलाउ कर देती हैं, ये इनलीगल कंस्ट्रक्शन क्यों होता है। अभी आपने देखा हादसा होने के बाद मैं देखता हूँ सारी एजेंसीज जो हैं वो बहुत प्रोएक्टिव हो जाती हैं, बट ये सब होने के लिए हादसे का वेट किया जाता है कि हादसा होगा,
7: वेट किया जाता है। देखिए एक छात्र है, आप यहाँ पीजी में रहते हैं,
8: यहाँ
7: आपकी पीजी की हालत कैसी है बताइए।
8: मेरे पीजी की हालत तो ठीक है, वहाँ पे दो इमरजेंसी एग्जिट हैं और वहाँ पे मतलब वो एक तरीके का 2 BHK पूरा फ्लैट हम लोगों ने ले रखा है, तो हम लोग रेंट शेयर करते हैं।
7: जो बिल्डिंग ऑनर है अमूमन कमोबेश वो छात्रों के इन्हीं मजबूरियों का फायदा उठा के वो फिर पीजी में औने पौने दाम में बैठ देते हैं,
9: खूब फायदा उठाते हैं। आज ये हादसा हुआ है तो हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग है जो उनकी हालत इससे भी बदतर है। ये बिल्डिंग इसलिए गिर गई क्योंकि ये तीन तरफ से ये बिल्डिंग नेकेड थी, इसको कोई सपोर्ट नहीं था। आप इसका स्ट्रक्चर देखते तो इसमें आपको बालकनी दिखती, बच्चे आपको खेलते कूदते दिखते, इसमें खाना खाते हुए दिखते बालकनी से, आपको लगता क्या बढ़िया पीजी है ये, यहाँ पे तो मुझे भी लेना चाहिए एडमिशन। 24/7 डॉक्टर फैसिलिटी अवेलेबल, इसका बहुत ही बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था जो कि दो फ्लोर को कवर करता था, वो जो है
7: खुलासा। ये देखिए बड़ा खुलासा, दो छात्र क्या कह रहे हैं, किस तरह से छात्रों को लालच दिया जा रहा था। जो बिल्डिंग गिरी है उसमें क्या लिखा हुआ था कि 24 आवर मेडिकल फैसिलिटी,
9: 24 आवर into 7 मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल, जो कि किसी भी हॉस्टल में ये वाला अभी जुमला अभी तक नहीं आया था। तो इसकी वजह से बच्चे अट्रैक्ट होते थे, पेरेंट्स एक महीने में अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पानी भरा होता घूमते हैं, बच्चे के लिए अपने बेस्ट से बेस्ट पीजी कमरा दिलाने की कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा 3 साल 4 साल रहेगा, यहाँ ग्रेजुएशन करेगा, अच्छी जगह पर है, अपना तनपेट काट करके जमीन बेच करके यहाँ पे पढ़ाते हैं। 15,000-20,000 रुपए किराया है, विद फूड आपको 20,000 रुपए मिनिमम यहाँ पे खर्च करना पड़ेगा गरीब आदमी। जो
8: आप ये देख लीजिए कि आज उसका आउटकम क्या निकला है,
7: आउटकम क्या निकला, ये देखिए कि 20,000, 25,000, 8,000 से शुरू होता अगर बहुत जर्जर इमारत हो, 8,000, 10,000, 20,000, 25,000 में एक बेड, एक कमरे में 3 से 4 बेड, और नतीजा क्या होगा, सुरक्षा के क्या क्या, सुरक्षा के नाम पर आपको क्या मिलेगा, आपकी जान जा सकती है इस तरह के पीजी में आप रहेंगे तो, और जान गई, दो छात्रों की जान गई। और ये बता रहा है कि किस तरीके से, एक बार आप हमको फिर बताइए जो ये पीजी था उसका स्ट्रक्चर कैसा था।
8: स्ट्रक्चर जैसा अगर अभी आप उसके जो एडजेसेंट बिल्डिंग जो उससे सटी हुई बिल्डिंग है अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखें तो वो वैसा ही था। तीन तरफ से ये जो पूरा एरिया है ये सत्या स्क्वायर के नाम से जाना जाता है, यही एक थोड़ा ओपन स्पेस है पूरे सत्या में जहाँ पे थोड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेज हैं, आप ग्रोसरी खरीद सकते हैं, आप कहीं पे एक दो रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं और कई सारे छोटे छोटे से रेस्टोरेंट बने हुए हैं, तो ये एक घूमने फिरने का एरिया था। अब ये बिल्डिंग, ये तो आज संडे है तो संडे की वजह से ज्यादा बच्चे, जिस समय ये हादसा हुआ ज्यादा बच्चे उस समय पीजी में थे, नहीं तो अगर मंडे वगैरह
6: एक बड़ी खबर मिल रही है, मैं आपके पास लौट रहा हूँ, बहुत बड़ी खबर इसमें मिल रही है, एक और शख्स की जान चली गई है। दिल्ली बिल्डिंग हादसे में एक और शख्स की जान चली गई है, मरने वालों का आंकड़ा 3 हो गया है, ये बड़ी खबर। 9 लोगों का रेस्क्यू किया गया अब तक, उसमें से 3 की जान चली गई है, क्योंकि जो बचाए भी गए हैं जिनका रेस्क्यू, उनमें कई की हालत बहुत गंभीर है, दिल्ली ट्रॉमा सेंटर एम्स ट्रॉमा सेंटर में उपचार चल रहा है। लेकिन दिल्ली बिल्डिंग हादसे में एक और शख्स की जान चली गई है, हमारे संवाददाता सुशांत हमारे साथ जुड़ गए। सुशांत, जिनकी जान गई उनके बारे में क्या जानकारी है, और जो घायल हैं भी उनकी सेहत कैसी बनी हुई है इस समय?
7: देखिए राजीव, लगभग 9 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, 3 की डेथ जो है इस पूरे हादसे के अंदर कंफर्म हुई है, और जो अभी फिलहाल जिनका ट्रीटमेंट दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है उनकी हालत भी फिलहाल गंभीर बनी हुई है। ये समझने की भी जरूरत है क्योंकि जिस तरीके से उनको बाहर निकाला गया है, मलबे से बाहर निकाला गया है, काफी बड़ी ये बिल्डिंग थी और उस बिल्डिंग के नीचे, मलबे के नीचे काफी वक्त से ये जो लोग जो है वो दबे हुए थे। हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरी मदद, पूरी कोशिश जो है वो लोगों को बचाने के लिए की जा रही थी, लेकिन 3 लोगों की जान जो है वो जा चुकी है, बाकी 6 जो लोग हैं उनकी भी हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है, लेकिन हादसे में अभी और भी लोग दबे हो सकते हैं और यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी भी लगातार जारी है।
6: बताएं कि हाइडर के जरिए बताएं कि मुख्यमंत्री, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स तो थे, वो एलजी तो चले गए, लेकिन क्या वो अभी वहीं पर हैं या चले गए होंगे?
7: देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, मेरे ठीक सामने अगर आप देखेंगे, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जहां पर ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है उसके ठीक ऊपर की तरफ जो इमारत आपको नजर आएगी, उस इमारत में अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष, ये सब इस वक्त यहां पर मौजूद है। सांसद बांसुरी स्वराज भी मौजूद है, हालांकि लाइट जल रही है, उसके पीछे का हिस्सा लाइट की वजह से शायद जो है वो नजर ना आए, लेकिन लगभग 5:15 बजे के आसपास मुख्यमंत्री यहां पहुंची थी।
10: जान है और कोई भी कल्प्रिट छोड़ा नहीं जाएगा, खास करके ये जिसका मकान है, जो यहाँ पे बिल्डिंग छोड़ के भाग गया, जो कि अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा था, बेसमेंट में खुदाई कर रहा था, और जिसकी वजह से जो पिलर है वो डिसमेंटल हुआ और बिल्डिंग पूरी गिर गई, तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, और जिसके कारण से ये हादसा हुआ है सबको सजा भुगतनी
6: पड़ेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ट्वीट के बाद ये पहला मीडिया रिएक्शन, वो अभी तक घटनास्थल पर ही मौजूद हैं और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पर्टिकुलरली मकान के मालिक का भी जिक्र किया कि जो अभी भागा हुआ है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बेसमेंट में काम करवा रहा था और उस वजह से बड़ा हादसा हुआ, लोगों की जान गई, हादसे के जिम्मेदार को छोड़ा नहीं जाएगा। ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का स्टेटमेंट आ गया है। अरविंद ओझा भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, मुख्यमंत्री कह रहे किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है, कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन सिस्टम बदलेगा कौन?
7: देखिए मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात दिल्ली की मुख्यमंत्री ने यह कही है कि जो बिल्डिंग का मालिक है वो भाग गया है, यानी आनंद बंसल जो 50 साल पुरानी बिल्डिंग से कमाई कर रहा था स्टूडेंट के साथ, उनकी जान के साथ खिलवाड़ करके हादसे के बाद वो फरार है, तो उसको तलाश दिल्ली पुलिस की टीम कर रही है, और साथ ही साथ दिल्ली के सीएम ने यह कहा
10: लगातार मिली इस पे कार्रवाई हो रही है, सभी एजेंसी काम कर रही है, हमारे लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण है उन बच्चों की जान बचाना जो हो सकता है अभी भी अंदर फंसे हो। 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, मैं अस्पताल जा रही हूँ, उनमें से सबकी हालत जैसी है उसको समझने की जरूरत है, और इतना कह सकती हूँ कि जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार है, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का, रेनोवेशन का काम चल रहा था, बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे, और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए, रेस्क्यू प्रोग्राम इसी प्रकार से चलेगा, सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी, परंतु दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ। मैं हॉस्पिटल ही जा रही हूँ।
6: गुप्ता की हमने फुल स्टेटमेंट आपको सुनाई, उनका कहना है, पहले तो उन्होंने एक जानकारी दी कि 11 लोगों का रेस्क्यू हुआ है, 11 लोगों के रेस्क्यू की बात उन्होंने कही है, 3 की जान चली गई हमने जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि पुरानी बिल्डिंग थी, बेसमेंट में खुदाई का काम चल रहा था, बच्चे भीतर थे, लेकिन दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। मकान का मालिक इस समय फरार है, यानी कि आनंद बंसल इस समय फरार है, ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी है। हादसे में जो अब तक घायल है उनका उपचार चल रहा है, और मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि घटनास्थल के बाद अब वो हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं। कोई भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा और कोई भी दोषी छोड़ा नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो सिस्टम का हिस्सा जो हैं अधिकारी, क्या उन पर गाज गिरेगी और वो कैसे कार्रवाई होगी? हमारे

0: मदद अरविंद हमारे साथ। अरविंद, मुख्यमंत्री ने 11 के रेस्क्यू की जानकारी दे दी है और ये भी जानकारी दी कि आनंद बंसल फरार है।
1: देखिए, 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और बहुत दुखद 3 लोगों की मौत हो गई है। जाहिर सी बात है, वो स्टूडेंट थे जिनकी मौत हुई है। दिल्ली की जो सीएम है वो तकरीबन 3 घंटे तक उन्होंने खुद रेस्क्यू ऑपरेशन को देखा, अधिकारियों को

0: अधिकारियों को निर्देश दिया, अब उनका बयान ही आया है और उसके बाद वो अस्पताल की तरफ रवाना हुई हैं। जो 11 लोग घायल हैं, जो रेस्क्यू किया गया है, वो बुरी तरह से घायल हैं। एम्स ट्रॉमा सेंटर और तमाम अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। बड़ी बात दिल्ली के सीएम ने कही कि जो आनंद बंसल जो बिल्डिंग का मालिक है, जो 40 साल 50 साल पुरानी बिल्डिंग में पीजी बनाकर छात्रों को की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा था, वो फरार चल रहा है। दिल्ली पुलिस उस पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में है और बहुत मुमकिन अब तक एफआईआर दर्ज हो चुकी होगी और उसे गिरफ्तार भी किया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि 40 साल 50 साल पुरानी बिल्डिंग में आखिर पीजी किस तरह से चलाया जा रहा है, किस तरह से छात्रों से एक बेड पर 10,000 20,000 25,000 लिया जा रहा है। और आपने सुना होगा कि एक छात्र ने बताया कि कैसे लुभाने के लिए बिल्डिंग के बाहर यहाँ तक लिखा जाता है कि 24/7 हेल्थ सर्विस और तमाम तरह के लुभावने, लेकिन अंदर कुछ नहीं, खोखली इमारत जिसमें रहने से छात्रों की जान चली गई। तो एक बड़ा सवाल है, न सिर्फ अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए बल्कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को ये ध्यान देना चाहिए, एक स्पेशल ड्राइव चलाना चाहिए, जो कि उन्होंने प्रॉमिस किया था अपने सोशल मीडिया पर जब आज तक ने ओल्ड राजेंद्र नगर में एक रियलिटी चेक किया था जिस पर मुझ पर खुद अटैक किया था कोचिंग माफियाओं ने, उन पर एक्शन लेना चाहिए। किस तरह से पीजी चल रहे, क्योंकि पूरे देश भर से जो छात्र है वो आते हैं नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस यहाँ पर रुकते हैं और जो बिल्डिंग के मालिक है वो फायदा उठाते हैं उन छात्रों की मजबूरियों का।
1: अरविंद जो आप बात कर रहे हैं, बड़ा सवाल है कि क्या ऐसा किया जाएगा, क्योंकि आज से पहले भी हादसे हुए, उसके बाद भी तो यही बातें होती है ना कि हम अधिकारियों पर कार्रवाई कर देंगे, जो भी दोषी होगा छोड़ा नहीं जाएगा। इन बयानों को सुन सुन के मतलब हम खुद परेशान हो गए, हम लंबे समय से यही सुनते आ रहे हैं। मैं आपके पास लौटता हूं, इस बीच में इस तस्वीर को आप देखिए कि रात में अब लाइट्स बहुत जो है इर्द गिर्द लगा दिए गए हैं ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन रुके ना, और अब जेसीबी की बहुत ज्यादा मूवमेंट आपको उस जगह पर देखने को मिलेगी जो धीरे धीरे मलबे को हटा रहा है और इर्द गिर्द आपको जवान भी लगातार दिखाई देंगे। ये घटनास्थल की तस्वीरें एक बार फिर से अरविंद के पास जाते हुए, अरविंद ये प्रश्न है कि हर बार तो यही सुनते हैं हम ये कि कार्रवाई हो जाएगी, कार्रवाई हो भी जाती है, इसे जो भ्रष्ट पैटर्न है वो तो नहीं बदल रहा ना। इम्पोर्टेंट है कि व्यवस्था बदले और व्यवस्था पारदर्शी हो।
2: साइड में
0: बिल्कुल देखिए, मैं आपको कोशिश करता हूं राजीव आपको कोशिश करता हूं कि जो एग्जैक्ट रेस्क्यू ऑपरेशन जहां चल रहा है, क्योंकि यहां पर दिल्ली पुलिस के जवान और फायर डिपार्टमेंट के जवान और एनडीआरएफ की टीम, तमाम जो सिस्टम है वो पूरी तरह से लगा हुआ है और जो बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन ये बेहद नजदीक से आज तक आपको दिखा रहा है। और जरा अनिल जायसवाल आपको वो चीज दिखाएं आपको जहां पर ग्राउंड जीरो पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अनिल जायसवाल वो दिखाइए। देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ताकि हम रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा भी नहीं बनना चाहते, इस वजह से हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन, तमाम जो टीमें हैं वो कड़ी मशक्कत कर रही हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। 11 लोगों को निकाला गया है, 3 छात्रों की दुखद तरीके से मौत हो गई है, लेकिन अब चूंकि यहां पर दिल्ली की सीएम थी, कैबिनेट यहां पर पूरी थी, इस वजह से प्रॉपर लाइटिंग की गई है। जो मंदिर है, मंदिर दिखाइए अनिल जायसवाल, किस मंदिर यहां पर लाइटिंग की गई है, तो जो मलबा है उसके चारों तरफ लाइटिंग है और कड़ी मशक्कत की जा रही है। जो तमाम जो यहाँ पर आला अफसर है वो यहाँ पर मौजूद है और आधा मलबा लगभग निकाला भी जा चुका है, आधा मलबा निकाला जाना बाकी है। 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है जिसमें 3 स्टूडेंट की मौत हो गई है। दिल्ली की सीएम वो यहाँ पर आई थी, उन्होंने कहा कि जो आनंद बंसल मालिक है वो भागा हुआ है, वो बिल्डिंग जब गिरी तब वो भाग गया, जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस उसको पकड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन दिल्ली पुलिस रेखा गुप्ता ने एक बड़ा बयान दिया कि जो दोषी होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो क्या एक्शन के नाम पर जो एमसीडी का इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर है, उसको सस्पेंड करके खाना पूर्ति की जाएगी, क्योंकि सस्पेंड होने के कुछ दिनों बाद तो वो फिर से वापस नौकरी पर आ ही जाता है, कोई कड़ा एक्शन लिया जाएगा? क्या कोई ऐसा ड्राइव चलाएगा, दिल्ली सरकार चलाएगी, जहां स्टूडेंट हो, जो अवैध निर्माण हो, जो अवैध पीजी हो, जो अवैध कोचिंग हो, जो अवैध होटल हो, जो एसएचओ रिश्वतखोरी करते हैं, जो एमसीडी के अधिकारी रिश्वतखोरी करते हैं और धड़ल्ले से इस तरह का अवैध निर्माण चलने देते हैं जिसमें जब हादसा हो जाता है तो लोगों की मौत हो जाती है, क्या उन पर एक्शन हो गया, क्या उन पर कार्रवाई होगी? ये एक बड़ा सवाल है राजीव।
1: बिल्कुल, बहुत सारे बड़े सवाल हैं। दिल्ली में लगभग 75 लाख के आसपास निवास हैं और ये तो खुद अधिकारियों ने जानकारी दी है, और उसमें से न जाने कितने ऐसे हैं जो ऐसे ही बन गए हैं, कोई नियमों का पालन नहीं हुआ है, अवैध रूप से इसमें बहुत सारे बने हुए हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को आपने खुद वैध कर दिया, आपने उनको मान्यता दे दी, उसमें से कितनों

0: कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आपने चेक नहीं, ऑब्वियस आपने नहीं चेक किए हैं तो ऐसे में एक बहुत बड़ा खतरा है देश की राजधानी दिल्ली में कि जैसे जैसे वो इमारतें और थोड़ी सी पुरानी होंगी तो संकट बढ़ता चला जाएगा। अब सही समय है ये एक ऐसी ड्राइव चलाने का, जो हमारे संवाददाता भी अरविंद भी कह रहे हैं कि एक ऐसी ड्राइव,
1: हमारे पास PCR कॉल आती है कि एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई है शांति निकेतन के एरिया के अंदर। हमारी इमिडिएटली जो SHO हैं और जो उनके साथ जो स्टाफ था उसने रश किया, यहाँ पे आके पता चला कि ये बच्चों का PG था जिसकी बिल्डिंग एक कोलैप्स कर गई थी। उसको इमिडिएटली देखते हुए सिचुएशन को NDRF को वो बुलाया गया, बाकी जो फायर सर्विसेज की टीम थी, बाकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, कैट्स की एम्बुलेंसेज, सबको एकदम इमिडिएटली इन्फॉर्म किया गया। उसके बाद अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है जिसमें 9 बच्चे जो थे उनको अभी तक रेस्क्यू कर लिया गया था, जिनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया अलग अलग। 3 बच्चे उसमें से अनफॉर्चुनेटली ब्रॉड डेड डिक्लेयर हुए हैं, तो 6 बच्चे अभी उसमें बचे हुए हैं, उनसे स्टेटमेंट ली जा रही है कि क्या इंसिडेंट हुआ था, क्या हुआ था। बाकी जो भी लीगल एक्शन होगा उसमें लिया जाएगा और उस पर आगे कार्रवाई चल रही है।
0: ये बहुत बड़ी खबर लगातार हमारी नजर बने हुए है कि अपडेट लगातार आज तक पर आपको मिलेगा। आप रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
1: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
0: असली शहद, असली स्वाद।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: खाना कहाँ से मंगवाया?
3: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
5: जेके वॉल मैक्स।
3: बेस्ट प्राइमर
6: जेके मैक्स।
3: बेस्ट पेंट
6: जेके मैक्स।
3: जेके मैक्स। बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
4: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूं?
3: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग। जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।

0: हैवान की कहानी में हर किरदार का अपना रिश्ता है, उसमें जुड़े होते हैं आपके सपने, आपकी पसंद और आपकी कहानी। इसलिए घर के लिए चुनिए सिर्फ E3, the E3 Group. India's leading manufacturer of interior and exterior products. E3 Group celebrates the release of Hevan on the 11th of September.
1: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
2: Ye pillar kabhi nahi tootega. Rungta Steel TMT se bana.
3: Rungta nahi, to ghar strong nahi. Rungta Steel TMT bar, ekdam solid.

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
2: भारत की रक्षा नीति से लेकर भविष्य की युद्ध रणनीति तक देश की सुरक्षा पर सीधी बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ देश के सबसे बड़े रणनीतिकारों और सुरक्षा विशेषज्ञों का महामंच आज तक सुरक्षा सभा, सिर्फ आज तक पर।
3: गांधी जी के आंदोलन करने का तरीका क्या आज के समय भी उतना प्रासंगिक है?
4: जो तुम गाली देते हो ना गांधी जी, 70 साल की उम्र में दो लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए, पढ़ लो।
5: जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था जो गांधी जी ने वापस ले लिया था, वो भी तो किसी और के वजह से लिया था। चौरी चौरा में जो हुआ इंसिडेंट, उनसे उनको क्या मतलब था? अगर वो उसको जारी रखते, क्या पता उस समय इंडिपेंडेंस को थोड़ा जल्दी हो जाता।
4: ताली बजाओ इनके लिए, ये ताली डिजर्व करते हैं।

0: एक बड़ी खबर इस समय आपको देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए हादसे पर दुख जताया है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की उन्होंने स्वस्थ होने की कामना भी की है और ये भी बताया है कि अथॉरिटीज लगातार काम कर रहे हैं, लगातार जो इफेक्टेड हैं, जो प्रभावित हैं, उन तक मदद पहुंचाई जा रही है और हर संभव मदद ये चल रही है। मृतकों के परिवार वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है। ये बड़ी खबर इस समय। दिल्ली बिल्डिंग हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है और उन्होंने जिनकी जान गई है उनके जो है संवेदना भी प्रकट की है, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के एसआरसीसी में छात्रों के बीच में अपने संबोधन में विपक्ष को जमकर घेरा और अब आज विपक्ष ने जब प्रधानमंत्री के भाषण पर सवाल उठाए तो बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने पलटवार करते हुए विपक्ष पर जमकर तंज कसा, खासकर जो फूफा वाला बयान था उस पर।
1: हम सभी ने देखा है कुछ ऐसे लोग होते हैं जो परिवार के अंदर, समाज के अंदर असंतुष्ट रहते हैं, जो कभी भी किसी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। उन्हीं को उन्होंने एक नाराज फूफा करकर संबोधित किया। भारत आज विकास कर रहा है, आप नाराज हैं। भारत 370 धारा समाप्त करके कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराता है, आप नाराज हो जाते हैं। आज नक्सलवाद पूरी तरह से जड़ों से समाप्त हो रहा है, आप नाराज हो जाते हैं। आप पूरी तरह से निजी स्वार्थ में ही चिपके रहते हैं और निजी प्रतिष्ठा में ही आपकी पूरी चीजें छिपी रहती है और परिवार के अंदर जो नाराज फूफा की स्थिति रहती है वही आज भारत में आपकी स्थिति हो गई है।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज से दुबई के दौरे पर हैं और वो 3 दिनों तक दुबई के दौरे पर रहेंगे। रवानगी से पहले हमने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की और उनसे जाना कि वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनको लेकर वो खास मुलाकात करने जा रहे हैं।
2: देखिए, हमारा खाद्य प्रसंस्करण है, कृषि निर्यात है, टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल्स है, लॉजिस्टिक है, नवकरणीय ऊर्जा है, ऐसे स्वाभाविक रूप से काफी बड़े सेक्टर में हर एक जगह यूएई के साथ हमारी स्वाभाविक साझेदारी की संभावना है। ऐसे में जब हम अपने राज्य की तरफ से देखते हैं तो मध्य प्रदेश भारत का फूड बास्केट है और खाद्य सुरक्षा को लेकर हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यूएई भी अब इस दिशा में काफी ठोस कदम उठाता है तो स्वाभाविक रूप से हम अपने लक्ष्य में केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं है, मध्य प्रदेश को यूएई और खाड़ी देशों के लिए विश्व स्तरीय सप्लाई चेन के रूप में और वैल्यू एडिशन हब के रूप में स्थापित करना चाहते हैं।
0: विदेशी कई दौरे आपके हाल में हुए हैं, अब किस तरह से आप मध्य प्रदेश में विदेशी इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं और इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव खासकर युवा पीढ़ी पर मध्य प्रदेश के, वो कैसा पड़ेगा, आप क्या समझते हैं?
2: देखिए, मध्य प्रदेश में हमारी सरलीकृत व्यापार व्यवसाय की पद्धति है, 25 से ज्यादा व्यापार की पॉलिसियां हैं हर सेक्टर में और पर्याप्त लैंड बैंक है, बिजली पानी क्राइम लेस हमारा व्यापार व्यवसाय का अनुकूल माहौल है। इसके कारण से बड़े पैमाने पे हमारे साथ कई सारे देशों ने जुड़ना पसंद किया है। बीते समय हमारी सरकार के बनने के बाद 10 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हमारे राज्य में हुआ है। आज की स्थिति में 76,000 करोड़ से ज्यादा का निर्यात हम अपने मध्य प्रदेश से करते हैं तो स्वाभाविक रूप से बहुत बड़े पैमाने पर इसमें संभावना है और मुझे पूरा भरोसा है कि यह हमारा दौरा इसी रूप में रहेगा। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि वास्तव में दुबई आज विश्व के सबसे सफल शहरी विकास मॉडल में माना जाता है और स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में वो संभावना और मध्य प्रदेश इससे सीखेंगे भी और हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे भी।
0: और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश को बहुत इन्वेस्टमेंट मिले जिससे वहां पर रोजगार के और ज्यादा अवसर बढ़े। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
3: और वही कहाँ गए थे घूमने?
4: जिके मैक्स।
5: खाना कहाँ से मंगवाया?
4: जिके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
6: जिके वॉल मैक्स।
4: बेस्ट प्राइमर
7: जिके मैक्स।
4: बेस्ट पेंट
7: जिके मैक्स।
4: जिके मैक्स। बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जिके मैक्स पेंट्स।
5: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूं?
4: जिके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी।
3: नड्डा जी ने कहा था कि इसकी तहकीकात जरूर होगी।
4: यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले हल्द्वानी शुद्धिकरण का मुद्दा गर्मा गया है। दलितों के अपमान का आरोप लगाकर कांग्रेस मैदान में है। कांग्रेस नेताओं ने हल्द्वानी में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन अब मामला विरोध प्रदर्शन से आगे निकल चुका है। अब मामला चुनावी है। बुधवार यानी 9 सितंबर को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन हल्द्वानी जाएंगे, लेकिन उससे ठीक पहले कांग्रेस ने अपने दलित सांसदों की बैठक बुला ली। सोमवार को देहरादून में शुद्धिकरण के खिलाफ कांग्रेस मार्च निकालेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास तक कांग्रेस नेता मार्च करेंगे। कांग्रेस का एजेंडा साफ है कि उत्तराखंड में दलित अपमान के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा जाए। लेकिन 13 अगस्त को जब खड़गे ने हल्द्वानी शुद्धिकरण का मुद्दा राज्यसभा में उठाया तो जेपी नड्डा ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई।
5: हमारी धरती में कुछ ऐसे लोग हैं आज के दिन जिन लोगों ने वहाँ रामलीला ग्राउंड में, अरे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के स्टेचर का आदमी आकर के संबोधित कर रहा है तो सौभाग्य की बात है, लेकिन उन्होंने वहाँ शुद्धिकरण किया। ये शुद्धिकरण क्या है? इसका अर्थ है तुम संविधान का उल्लंघन कर रहे हो, SC ST एक्ट का उल्लंघन कर रहे हो। बल्कि राहुल जी ने जब कहा कि इनके खिलाफ FIR दर्ज करो तो FIR राहुल जी के खिलाफ दर्ज कर दी गई। तो देश का जो जागृत जनमत है वो आज ये समझ रहा है कि जो कुछ हल्द्वानी में ये तथाकथित शुद्धिकरण के नाम पर हुआ है वो ब्लॉट है देश के ऊपर।
6: शुद्धिकरण का मामला है, राहुल जी के ऊपर भी FIR का मामला है, तरह तरह की ये बातें हैं। लोगों तक हमने जाना है और उजागर करना है, लेकिन आप ये देख ही सकते हैं कि राहुल जी के ऊपर तो कितनी जल्दी से FIR हुई, लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट जो LOP हैं राज्यसभा में, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है, उसके बावजूद कोई हरकत कोई कार्य नहीं, इसकी ओर ये बढ़ना नहीं चाहते। इनके लिए मैं तो, मुझे लगता है कि इनकी सोच क्या है। उत्तराखंड के लोग महसूस कर रहे हैं कि उनके ऊपर ये इस सरकार ने ऐसा काम करके उत्तराखंड के लोगों को ऐसा करने का प्रयास किया।
4: जब उत्तराखंड में FIR दर्ज नहीं हुई तो कांग्रेस ने बेंगलुरु में 0 FIR करवाई, लेकिन बदले में राहुल गांधी के खिलाफ उत्तराखंड में SC ST एक्ट में FIR लिखवा दी गई। अब कांग्रेस इस मुद्दे पर आर पार के मूड में है, क्योंकि मामला सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष का नहीं पूरे दलित समाज से जुड़ा है और कांग्रेस की नजर दलित वोट बैंक पर है। आज तक ब्यूरो।
7: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
8: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

हादसा सत्यनिकेतन इलाके में 5 मंजिला इमारत गिरी, अब तक 3 लोगों की मौत, कई लोग मलबे में दबे हुए हो सकते हैं। दिल्ली में इमारत गिरने के बाद से राहत और बचाव का काम जारी, मलबे से निकाले गए 9 लोग, एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती गए घायल, बिल्डिंग में चल रहा था पीजी हॉस्टल। दिल्ली हादसे पर प्रधानमंत्री ने जताई संवेदना, गोवा में मौजूद अमित शाह की भी नजर, मौके पर मौजूद मुख्यमंत्री रेह गुप्ता ने कहा नहीं बचेगा कोई भी गुनहगार। दिल्ली के एसआरसीसी में पीएम मोदी के संबोधन को लेकर विपक्ष के सवालों पर नितिन नवीन का तंज, कहा प्रधानमंत्री ने कल नाराज फूफाओं को होम्योपैथी की दवा दी लेकिन इसका असर आज एलोपैथी वाली हाई एंटीबायोटिक जैसा हुआ।

0: हॉस्टल डेज नाम की बिल्डिंग है, इसके साथ एक और बिल्डिंग पीजी गिरी है। हॉस्टल डेज तो है वो बॉयज पीजी है प्रॉपर, 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी एंड इसके साथ बगल वाली बिल्डिंग भी गिरी है।
1: डेढ़ से दो घंटे हो चुके हैं जब हमारे सामने बिल्डिंग गिरी थी, तो काफ़ी नीचे मतलब लेबर भी काम कर रही थी, इसमें 7 से 8 लेबर थी जो काम करे जा रही थी। अब उनका भी नहीं पता कि वो निकल पाए थे या नहीं निकल पाए थे, मगर मुझे इतना पता कि बहुत बच्चे हैं इसके नीचे।
2: ये सत्यनिकेतन में आप जो भी बिल्डिंगें देख रहे हैं सब बिल्डिंगें जर्जर, इनकी कोई ये कभी भी गिर सकती है, इसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार इन बिल्डिंगों की स्थिति देखकर इन्हें सील करे, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है।
3: हमारे यहाँ पे दुकान है, हम दुकान के अंदर बैठे थे, हम एकदम आवाज आई जैसे भूकंप टाइप होता है 1:30 बजे, हम अंदर इतनी नहीं आई, जो बाहर बच्चे खड़े थे उनके पास आवाज आई, फटाफट भाग के आए। यहाँ पे बहुत ज्यादा धुआं वगैरह था, सारी बिल्डिंग गिरी हुई थी।
4: There will be 20 to 25 such buildings जो आज गिरे, एक महीने बाद गिरे, एक साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी। विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई आधा दिल्ली करता है यहाँ पे, तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन।
0: जितनी भी पीजीज हैं सब में सीढ़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है और बच्चों का फायदा उठाया जाता है। साउथ कैंप तक सभी बच्चों का, उनको खाना खराब दिया जाता है और उनकी मजबूरी है पीजीज की।
4: आगे बच्चे गंदे खाने से मर जाते हैं, जो बच रहे हैं वो बिल्डिंग गिरने से मर रहे हैं।
5: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। दिल्ली के सत्य निकेतन में आज दोपहर इमारत गिरी, बड़ा हादसा हुआ, 11 लोगों को मलबे से अब तक निकाला गया है। अब तक 11 लोगों का रेस्क्यू हुआ, लेकिन इनमें से 3 की जान चले गए, 3 लोगों की मौत हो गई है। 5 मंजिला इमारत ये गिरी और आसपास के लोगों को ऐसा लगा मानो भूकंप आ गया हो, लेकिन इस इमारत के मलबे में अभी फंसे हुए लोग हैं। उनकी चीख पुकार से हादसे की खबर लोगों को लगी। इस इमारत में जब छात्र अपने कमरों में थे तब बेसमेंट में काम चल रहा था, खुदाई का काम चल रहा था, इसी दौरान यह हादसा हुआ। दिल्ली की खतरनाक इमारतों और मौत वाले हॉस्टल से देश को एक बार फिर से खबरदार कर दिया है। दिल्ली बिल्डिंग हादसे में अब तक 3 लोगों की जान चली गई है। सीधा अब आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस समय उसी हादसे वाली जगह पर मौजूद है। अरविंद, इस समय का अपडेट बताइए, क्योंकि 6-7 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया है रेस्क्यू ऑपरेशन में, अभी कुछ घंटों पर क्या क्या कामयाबी मिली, क्या कोई और निकाला गया बाहर?
6: बिल्कुल, देखिए तकरीबन 1:30 बजे यह हादसा हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे करके दिल्ली पुलिस फायर डिपार्टमेंट की टीम और तमाम जो सिविक एजेंसियां हैं वो यहां पर पहुंची थी। और सीधे मैं आपको तस्वीरें यहां पर दिखाता हूं, और युद्ध स्थल पर यहां पर काम जारी है। 6 से 7 घंटे हो चुके हैं, 11 जो लोग हैं उनको रेस्क्यू किया गया, जिनमें से 3 की मौत हो गई है, बाकी जो अस्पताल में भर्ती है वो भी काफी गंभीर रूप से घायल है, क्योंकि जब ये पूरी जो बिल्डिंग गिरी है उस मलबे में कई दब गए हैं, और चूंकि जो मलबा था वो उस तरीके से, और कई अधिकारी यहां पर मौजूद है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन है, 3 घंटे तक खुद दिल्ली की जो CM है रेखा गुप्ता वो यहां पर मौजूद थी, और जो मालिक है बिल्डिंग मालिक उसका नाम आनंद बंसल बताया जा रहा है, और ग्राउंड जीरो से आज तक ने एक एक स्टूडेंट से यहां पर बातचीत की है, और उससे जो समझ में आता है वो समझ में ये आता है कि करप्शन की वजह से ये हादसा हुआ, क्योंकि 40 साल 50 साल पुरानी ये इमारत थी, जर्जर इमारत थी, छात्रों को लालच दिया जाता था पीजी के बाहर बोर्ड टांग कर कि आपको ये सुविधा मिलेगी वो सुविधा मिलेगी, लेकिन सुविधा के नाम पर नतीजा ये हुआ कि 3 छात्रों की जान चली गई। अभी यहाँ पर दिल्ली की CM आई थी, उन्होंने दावा किया कि सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, लेकिन हमें और सभी को मालूम है कि एक्शन के नाम पर क्या होगा, क्या किसी MCD के अधिकारी पर मुकदमा दर्ज होगा? नहीं, सिर्फ एक्शन के नाम पर कुछ को लाइन हाजिर, कुछ को सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्या लोकल SHO के खिलाफ कोई एक्शन होगा, ये देखने वाली बात होगी। 6 से 7 घंटे हो चुके हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें अनिल जायसवाल आपको यहाँ पर दिखाएंगे। बड़ा बड़ा मलबा, जरा ये दिखाइए, अब ये मलबा किसी शख्स के ऊपर गिरे तो उसकी क्या हालत होगी। ये बड़ा सा मलबा उस जो घटना स्थल है वहां से निकाल करके ये JCB मशीन,
5: बिल्कुल यहां बड़े बड़े कंक्रीट के स्लैब्स निकाले जा रहे हैं। अरविंद, आप लगातार नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वो खुद घटनास्थल पर कई घंटों तक रही और उसके बाद वो अस्पताल की तरफ निकले, है, लेकिन इस बीच में उन्होंने ये भरोसा जरूर दिलाया है कि जो इमारत का मालिक है वो गिरफ्तार होगा, जो भी जिम्मेदार होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा।
7: इस्तेमाल हो रहा है, हमारी टीमें जो है वो पूरी तरीके से काम कर रही है, नीचे ऑक्सीजन भी डाली गई है, कैमरा भी
8: काम कर रहे हैं ना,
7: बच्चों की जान है और कोई भी कल्पित छोड़ा नहीं जाएगा, खास करके ये जिसका मकान है, जो यहाँ पे बिल्डिंग छोड़ के भाग गया, जो कि अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा था, बेसमेंट में खुदाई कर रहा था और जिसकी वजह से जो पिलर है वो डिसमेंटल हुआ और बिल्डिंग पूरी गिर गई, तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो और जिसके कारण से ये हादसा हुआ है, सबको सजा भुगतनी पड़ेगी।

0: दिल्ली में कितनी इमारतें इस तरह हादसे के इंतजार में हैं? आखिर कितने बेकसूर छात्रों की जिंदगी ज्यादा किराए के लालच में इस तरह दांव पर लगाई जाती रहेंगी? दिल्ली में लगातार हो रहे इन हादसों की जिम्मेदारी कब और कैसे तय होगी? दिल्ली का सत्य निकेतन इलाका, जहां 5 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया, पहली नजर में ये आपको हादसा लग सकता है, लेकिन ये हादसा नहीं बल्कि लालच और लापरवाही के कॉकटेल का नतीजा है। क्योंकि जब 40 साल पुरानी इमारत को 3 की जगह 5 मंजिल तक अवैध बना दिया जाए, 40 साल पुरानी इमारत की जांच करने वाला कोई न हो, बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भरा होने के बावजूद काम किया जा रहा, जबकि हादसे के वक्त छात्र कमरों में मौजूद थे, तो अब आप ही बताइए क्या इसे हादसा कहना ठीक होगा?
1: यहाँ पर लिमिट ही खाली 2 या 3 फ्लोर्स के, बट इन लोगों ने 5 फ्लोर्स बनवा रखे थे। इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, नीचे बेसमेंट में काम चल रहा था, उसकी वजह से बिल्डिंग गिरी है। मैं उस टाइम पे अपना खाना ही खा रहा था, एकदम से सोफा हिलने लगा, प्रॉपर फील हुआ कि अर्थक्वेक आया, पर बाहर आके देखा तो धुआं वो हो रखा था, फिर पता लगा कि बिल्डिंग गिरी है।
2: लेवर लगी हुई थी सर, नीचे बेसमेंट में काम कर रहे थे सुबह।
3: अच्छा।
2: जब मैं मार्केट में आया तो मैंने देखा तो लेवर काम कर रही थी, और यहाँ पर 2 कारपेंटर काम कर रहे थे।
3: अच्छा।
2: जब मैं मार्केट से होकर फिर मैं सीधा घर चला गया था, उसके बाद पता लगा तो ये बिल्डिंग गिरी है।
0: इस हादसे ने देश की राजधानी को एक बार फिर हिला दिया है। लोग डरे हुए हैं, क्योंकि वो जिन इमारतों में रह रहे हैं उनका भी ऐसा ही अंजाम हो सकता है, जैसा दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में दोपहर करीब 1:30 बजे इस इमारत के साथ हुआ।
4: क्या हालत थी बेसमेंट में, कोई काम चल रहा?
5: बेसमेंट में काम चल रहा था, 2 दिन से पानी भरा हुआ था, और इसका क्या था कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, और आप कह सकते हो कि इलीगली है, क्योंकि यहाँ पे अलाउड है कि आप 3 मंजिल से लेके 4 मंजिल तक कर सकते हो, मगर यहाँ ये बिल्डिंग थी 5वीं मंजिल तक।
4: अच्छा।
5: और मैक्सिमम स्टूडेंट थे, पीजीस थे, और एक पीजीस में 3 और 4 ही बच्चे रहते थे। और संडे की वजह से स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे चाय की दुकान है, ब्रेड बटर लेने आते हैं। ये बिल्डिंग इस वजह से भी, अब हम प्रे करते कि कोई नुकसान ना हो।
4: अभी बिल्डिंग का बेसमेंट में काम चल रहा था
5: पानी।
4: ये जो 40-50 साल, ये दिल्ली पुलिस आधिकारिक बयान दे रही है, 40-50 साल पुरानी बिल्डिंग थी, 5 मंजिला थी, बेसमेंट था उसमें, और बेसमेंट में काम चल रहा था, सीधे सीधे जो छात्र हैं जिसमें रह रहे थे उन सबकी जिंदगी दांव पर लगा दी बिल्डिंग के मालिक ने ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में।
0: इमारत ढहते ही यहाँ अफरा तफरी मच गई, धूल के गुब्बार में पूरे इलाके को घेर लिया।
6: मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लोकल्स की मदद से जो है यहाँ ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ को भी इस वक्त बुला लिया गया है, एनडीआरएफ की भी एक बटालियन जो है, एक टीम जो है वो इस वक्त यहाँ पहुंच गई है, और अभी धीरे धीरे वो यहाँ पे स्पॉट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि कितनी भारी संख्या में जो यहाँ लोकल्स हैं, वो लोकल जो है यहाँ मदद कर रहे हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं। अभी ये बड़ी मशीन, अभी जो मशीनें हैं, जो कटर्स हैं, हैवी कटर्स हैं, बोल्डर कटर्स हैं, उन्हें भी अभी लेकर के यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो इस वक्त यहाँ आई है। और ये 5 मंजिला इमारत बताई जा रही है, अगर आप तस्वीरों में थोड़ा और क्लैरिटी से देखें यहाँ पर, तो ये देखें आप, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, और ये काफी बड़े इलाके में जो है ये पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर एक बॉयज हॉस्टल था, और उसे बॉयज हॉस्टल में जो है ये पूरा हादसा हुआ है।
0: बिल्डिंग गिरने के बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, कुछ हथौड़े से मलबा हटाने लगे।
4: किस तरीके से रेस्क्यू जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है, ये एक गाड़ी है जो कि बिल्डिंग के पास खड़ी थी, जब बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो उसकी हालत देखिए कि किस तरीके से इस पूरी गाड़ी के ऊपर बिल्डिंग का जो मलबा है वो भर भरा करके गिरा, पूरी गाड़ी जो है वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। अब इसको जेसीबी की मदद से जो है वो यहाँ से हटाया जा रहा है। आप ये समझिए कि जब मैं ये समझाने की कोशिश इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि ये तस्वीरें देखने के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो मलबा, सोचिए उस बिल्डिंग के अंदर कई सारे लोग थे, और उनकी हालत क्या रही होगी जब ये बिल्डिंग पूरी तरीके से कोलैप्स हुई, जब गाड़ी की हालत इस तरीके की है।
0: सत्य निकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास बसा प्रमुख छात्र इलाका है, यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं। इलाके में कई छात्र आवास,
6: जेसीबी की अगर बात करें तो यहाँ पे जेसीबी चलाना वो खतरे से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि आखिर कितने लोग फंसे हैं और कौन कौन सी जगह फंसे हैं। अगर जेसीबी से मलबा हटाने के चक्कर में कुछ और लोग जो फंसे हुए हैं, जो शायद इंजर्ड हो बस, उनकी भी जान पर बना सकती है। और इसीलिए जेसीबी का अगर हम देखें तो ज्यादा इस्तेमाल ऐसे सिचुएशंस में नहीं किया जाता। और जो प्रिसाइज हैवी टूल्स होते हैं, जैसे बड़े ड्रिलर्स होते हैं, स्टील कटिंग मशीन्स होती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये पता लग पाए कि कहां कहां लोग फंसे हैं। अभी इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे ये समझ आ गया है कि यहां पर लोग नहीं फंसे हैं, जो बिल्डिंग के बाहर की लोकेशंस हैं वहां पर अब जेसीबी की कार्रवाई जो है वो शुरू होती हुई दिख रही है। और बिल्डिंग के बाहर जहां गाड़ियों पर जो मलबा गिरा था उनसे अब मलबा हटाना शुरू किया जा रहा है, लेकिन बिल्डिंग जहां पर थी जहां लोग फंसे हुए हैं वहां पर अभी जेसीबी नहीं चलेगी। वहां पर अभी मेटल कटर्स चलेंगे, वहां पर अभी जीपीआर लगाया जाएगा, ये पता लगाया जाएगा कि कहां कहां लोग फंसे हैं, और उसके बाद वहां से मैन्युअली डिग करके ही लोगों को निकालना होगा या फिर हैंड यूजेबल मशीन से ही लोगों को निकालना होगा। अगर आप देखें यहां पे अभी भी प्रशासन को बहुत मुश्किलें हो रही हैं लोगों को समझाने में कि ये जगह खाली कर दे, क्योंकि ये जगह अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कहीं से भी मलबा और भी थोड़ा घिसक सकता है और लोगों को इंजरीज हो सकती है और लोगों को चोट आ सकती है।
0: इस इमारत को लेकर सवाल ये है कि क्या इस बिल्डिंग का नक्शा पास था? 5 मंजिला इमारत बनाने की अगर अनुमति नहीं थी तो इसे रोका क्यों नहीं गया? 40 साल पुरानी इमारत में छात्रों को रहते बेसमेंट में काम की इजाजत कैसे दी गई? अनमोल बाली, अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
3: इस इमारत का गिर जाना अपने आप में भ्रष्टाचार का खुलासा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके बाद भी कोई व्यवस्था में बदलाव होगा, ये देखने वाली बात होगी। ग्राउंड जीरो पर एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे। उससे पहले एक तस्वीर आपको इस समय दिखा रहे हैं, अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तस्वीरें हैं, जहां डॉक्टर्स के साथ वो बातचीत कर रहे हैं और डॉक्टर शायद उनको जो घायल है उनके बारे में जानकारी भी दे रहे होंगे। अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, ये बताएं कि इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन जुड़ा हुआ क्या अपडेट है और क्या जो मुख्य आरोपी है आनंद बंसल उसको गिरफ्तार करने के लिए कुछ किया जा रहा है?
7: ये देखिए अनिल, देखिए राजीव, मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये वो मलबा है, एग्जैक्ट ये मलबा है जो आप पूछ रहे थे, और अभी यहाँ पर जो जानकारी मिली है कुछ छात्र यहाँ पर दबे हो सकते हैं, तो ये लाइव और सीधी तस्वीर है। अभी स्नीफर डॉग्स की मदद से बकायदा ये जो मलबा है यहाँ पर स्नीफर डॉग्स को घुमाया गया ताकि ये पता चल सके कि अंदर कोई दबा है या नहीं दबा है, लेकिन जो शुरुआती रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक कोई और दबा हो सकता है। इस वजह से जो एनडीआरएफ की टीम है वो एक ये बड़ा मलबा, देखिए 5 मंजिला इमारत, सीधे हम लाइव एक्सक्लूसिव आज तक पर तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये पूरा मलबा भ्रष्टाचार की देन ये इमारत खड़ी थी जिसमें पीजी का काम चल रहा था। और मैं कहूंगा कि अनिल जायसवाल, अब धीरे धीरे चूंकि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, आपको हमने तस्वीरें दिखाई कि ये वो मलबा है, ये वो 5 मंजिला इमारत थी जो ढढ़ा कर गिर गई, और अभी यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम और तमाम जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं। तो आधा मलबा निकाला जा चुका है, आधा मलबा अभी निकाला जाना बाकी है। कुछ देर के लिए एनडीआरएफ की टीमें रुकी, स्नीफर डॉग की मदद ली गई ताकि ये पता लगाया जा सके कि कोई अभी वहां पर इंसानी जान फंसी है या नहीं फंसी है। लेकिन अब यहां पर धीरे धीरे अगर आप देखें तो जेसीबी मशीन भी है, लेकिन हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई, 1:30 बजे के लगभग ये बिल्डिंग गिरी थी, कुल 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। आज तक की टीम ग्राउंड जीरो से उन छात्रों से बात की जो पीजी में रहते हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से मनमाने तरीके से यहाँ पर पीजी चल रहा है, छात्रों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और इसी वजह से हम पूछ रहे हैं कि क्या लोकल SHO, क्या MCD के अधिकारी, क्या उन तमाम लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है जिस दिल्ली में एक बिल्डिंग पर आप लेंटर डालिए तो पुलिस वाला MCD
3: बिल्कुल वाला अरविंद, ये तो बहुत ही गंभीर प्रश्न है। आज हमें सरकार बहुत काम करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन ये हादसा ही ना होता अगर पहले काम कर लिया होता, पहले भ्रष्टाचार ना हुआ होता। दिल्ली में पीजी के नाम पर किस तरह से छात्रों को लूटा जा रहा है क्या आप जानते हैं? उनकी जान को जोखिम में डाला जा रहा है और उसी से इस इलाके में रहने वाले अब कई छात्र जो है सामने आ रहे हैं वो खबरदार कर रहे हैं, और पीजी चलाने वाले कमाई के लिए कैसे सारे नियमों को ताक पर रख रहे हैं आप खुद देखिए।
7: आप यहाँ क्या पीजी में रहते हैं?
8: हाँ जी।
7: किस तरह की स्थिति है, किस तरह से पीजी चलता है, कितने बेड होते हैं, कितने मकान मालिक पैसा एक्सपेक्ट करते थे?
8: सर यहाँ पर जैसे एक पीजी है, एक बिल्डिंग है, वहाँ पर ऑलमोस्ट 5 फ्लोर्स होते हैं हर पीजी पे। एक फ्लोर पे 6 या 7 कमरे होते हैं, एक कमरे में 2 बेड होते हैं। एक बेड का रेंट मिनिमम यहाँ पर 12,000 होता है और उस पीजी का साइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत से घरों में जो किचन का साइज होता है उतना उस पीजी के रूम का साइज होता है और उसमें 2 बेड होते हैं साथ में, और उस एक बेड का रेंट 12,000 रुपए ये लोग लेते हैं। रेंट का टाइम एकदम एग्जैक्ट चाहिए इनको। खाना बहुत सारे पीजी
9: की मरम्मत कैसी होती है बिल्डिंग की,
8: बहुत बेकार सीलन आई होती है, जो दीवारें होती है उसमें पानी दिख रहा होता है कि बिल्डिंग में सीलन है, रूम्स की कंडीशन उतनी अच्छी।
9: ये जो बिल्डिंग गिरी है आपके बगल में, इसकी भी हालत ऐसी थी?
8: सर इसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ इसकी हालत कैसी थी, मैंने सिर्फ बाहर से देखा था इस वाली बिल्डिंग को।
9: नीचे बेसमेंट का भी काम चल रहा है?
8: हाँ नीचे।
9: लेकिन यहाँ जो पीजी चलते हैं एक कमरे में 2 से 3 बेड और 12,000-13,000?
8: हाँ इतना ही किराया होता है। बहुत सारे थोड़ा बड़ा साइज का कमरा होगा तो उसमें 3 बेड लगा देते हैं, 3 अलमीरा लगा देते हैं, उनका किराया थोड़ा सा 1,000 रुपए या 2,000 रुपए कम कर देते हैं।
10: और ये बिल्डिंग में 3 तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था, बिल्डिंग हल्की सी बाईं तरफ टिल्टेड थी जो कि खुला एरिया था, और अगर आप देखें जो बालकनी का एरिया है वो भी यूज किया गया था, जो पीछे साइड बालकनी का एरिया होता है वो यूज किया गया था फॉर क्रिएटिंग स्पेस फॉर रूम्स। तो ये भी मतलब मुझे समझ नहीं आता कि यहाँ पे एमसीडी अथॉरिटीज और ये मैप कैसे पास हो जाते हैं और ये बिल्डिंग कैसे कंस्ट्रक्ट हो जाती है, कौन सी अथॉरिटीज इसको अलाउ कर देती हैं, ये इनलीगल कंस्ट्रक्शन क्यों होता है। अभी आपने देखा हादसा होने के बाद मैं देखता हूँ सारी एजेंसीज जो हैं वो बहुत प्रोएक्टिव हो जाती हैं, बट ये सब होने के लिए हादसे का वेट किया जाता है कि हादसा होगा
9: वेट किया जाता है। देखिए एक छात्र है, आप यहाँ पीजी में रहते हैं?
10: हाँ।
9: आपकी पीजी की हालत कैसी है बताइए?
10: मेरे पीजी की हालत तो ठीक है, वहाँ पे 2 इमरजेंसी एग्जिट हैं और वहाँ पे मतलब वो एक तरीके का 2 BHK पूरा फ्लैट हम लोगों ने ले रखा है, तो हम लोग रेंट शेयर करते हैं।
9: जो बिल्डिंग ऑनर है कमोबेश वो छात्रों के इन्हीं मजबूरियों का फायदा उठा के वो फिर पीजी में औने पौने दाम में बैठ देते हैं?
11: खूब फायदा उठाते हैं। आज ये हादसा हुआ है तो हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग है जो उनकी हालत इससे भी बदतर है। ये बिल्डिंग इसलिए गिर गई क्योंकि ये 3 तरफ से ये बिल्डिंग नेकेड थी, इसको कोई सपोर्ट नहीं था। आप इसका स्ट्रक्चर देखते तो इसमें आपको बालकनी दिखती, बच्चे आपको खेलते कूदते दिखते, इसमें खाना खाते हुए दिखते बालकनी से, आपको लगता क्या बढ़िया पीजी है ये, यहाँ पे तो मुझे भी लेना चाहिए एडमिशन। 24/7 डॉक्टर फैसिलिटी अवेलेबल, इसका बहुत ही बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था जो कि 2 फ्लोर को कवर करता था वो जो है।
9: खुलासा ये देखिए, बड़ा खुलासा। 2 छात्र क्या कह रहे हैं, किस तरह से छात्रों को लालच दिया जा रहा था। जो बिल्डिंग गिरी है उसमें क्या लिखा हुआ था कि 24 आवर मेडिकल फैसिलिटी
11: मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल, जो कि किसी भी हॉस्टल में ये वाला अभी जुमला अभी तक नहीं आया था। तो इसकी वजह से बच्चे अट्रैक्ट होते थे, पेरेंट्स 1 महीने में अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पानी भरा होता घूमते हैं, बच्चे के लिए अपने बेस्ट से बेस्ट पीजी कमरा दिलाने की कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा 3 साल 4 साल रहेगा यहाँ, ग्रेजुएशन करेगा, अच्छी जगह पर है, अपना तन पेट काट करके जमीन बेच करके यहाँ पे पढ़ाते हैं। 15,000-20,000 रुपए किराया है, विद फूड आपको 20,000 रुपए मिनिमम यहाँ पे खर्च करना पड़ेगा गरीब आदमी। जो
10: आप ये देख लीजिए कि आज उसका आउटकम क्या निकला है।
3: सत्य निकेतन इलाके को DU साउथ कैंपस के आसपास का एक बड़ा स्टूडेंट हब माना जाता है। यह साउथ वेस्ट दिल्ली में पड़ता है और धौला कुआं, मोतीबाग, आरकेपुरम और आनंद निकेतन वाले बेल्ट के बेहद नजदीक है और इसीलिए यहां पर छात्रों से रहने के नाम पर हजार रुपए लूटे जा रहे हैं।
4: देखिए रियलिटी दिखानी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि सरकार ये समझे कि जो हमारा देश का जो भविष्य है, जो दूसरे राज्यों से पढ़ाई करने के लिए आते हैं वो किस तरीके से किन हालात के अंदर पढ़ते हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे, हमारे सारे सही सारे स्टूडेंट हैं और सामने ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी। ये मैं जानना चाहूंगा जब ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी उस वक्त आप सब यहाँ मौजूद थे, क्या आपने देखा था?
12: सर आवाज काफी तेज आई थी तो बाहर निकल के देखा तो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, तो कोई शौक वाली बात नहीं है। आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग सत्यनिकेतन में अभी गिना सकता हूँ जो गिरने वाली हालत में होंगी। DU के पास इतना करोड़ों का बजट रहता है, वो नहीं अगर चाहती तो एक कहीं ना आस पास एरिया बना के कहीं पूरा हॉस्टल एलोकेशन कर देती सारे DU के कैंपसेस को, बट पीजी माफिया को कैसे सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट? फिर पीजी माफिया से तो उनको चंदा मिलता है ना।
4: आप रूम का रेंट देते हैं?
12: ये 18,000 रुपए का एक रूम है, ये इतना छोटा रूम है। 18,000 रुपए जी
4: पर पर्सन?
12: नहीं पूरे रूम।
4: जरा दिखाइए कहाँ पर है ये समझना होगा कि देखिए ये एक रूम है, अब इस रूम की हालत देखिए, ये महज 10x12 का कमरा है, एक लकड़ी का बेड नजर आएगा, पतला सा गद्दा नजर आएगा और इस कमरे के अंदर दो लोगों के रहने की जो कॉस्ट है वो 18,000 रुपए, यानी 18,000 रुपए में आपको ये कमरा मिलेगा। और जिस तरीके से स्टूडेंट ने बताया कि जो पीजी माफिया है वो इस पूरे इलाके में सक्रिय है और इस तरीके के कई सैकड़ों अगर कहा जाए तो यहाँ पर पीजी जो है वो चलते हैं। छोटे छोटे कमरे और उसके अंदर ये वॉशरूम है, ये छोटा सा एक कमरे के अंदर आपको यहाँ पर वॉशरूम भी जो है वो नजर आएगा, जो कि महज अगर कहा जाए तो 5x5 का एक पूरा वॉशरूम है। और भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं, और भी कई सारे स्टूडेंट आप भी यहीं पे रहते हैं, कितने आप पैसे देते हैं?
13: खाली हम आए हैं।
4: कितने पैसे देते हैं?
13: 9,000 रुपए।
4: इसके अलावा क्या मिलता है? फैसिलिटीज,
13: एसी, टीवी, फ्रिज वगैरह सब है,
4: बस यही मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए और भी है, आपको और भी देखते हैं, और भी कई सारे जो स्टूडेंट है आप भी यहीं पे रहते हैं? जब बिल्डिंग गिरी थी तो उस वक्त क्या आपने देखा? उस वक्त यहीं पर मौजूद थे?
13: हाँ, लाइक बालकनी के सामने गिरा था तो मैंने देखा ये क्या बोलते हैं, लाइक जब मैं निकला देखा कि पूरा ऐसे डस्ट वगैरह से भरा हुआ था एंड ऑल, एंड फिर देखता हूँ कि लाइक जो पानी की टंकियां रहती है 3-4 टंकियां ये गिरी हुई थी।
4: अमूमन जो बिजली कंपनियां हैं वो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक जो मीटर होते हैं, पावर के जो मीटर्स होते हैं, उनको बिल्डिंग के बाहर लगाना होता है कहीं हादसा ना हो। लेकिन इस कमरे के अंदर मैं तीसरी मंजिल पर मौजूद हूं और इस बिल्डिंग के अंदर आपको यहां पर बिजली का मीटर नजर आएगा। किस तरीके से जो बिजली विभाग है उसकी भी एक बड़ी लापरवाही है और यहां पर किस तरीके से बिजली का इस्तेमाल होता है, और यहां पर कई सारे कमरे जो है वो यहां पर आपको नजर आएंगे। ऐसे कितने कमरे हैं जो कि यहां पर बने हुए हैं, एक एक फ्लोर पर 3 से 4, 4, 5, 5 कमरे जो है वो यहां पर बने हुए।
3: ये इमारत लगभग 50 साल पुरानी बताई जा रही थी और इसके बेसमेंट में खुदाई का काम चल रहा था। इसका मालिक आनंद बंसल जो कि गुरुग्राम के रहने वाला है, इस इमारत के नीचे मेडिकल शॉप भी चल रही थी और यह भी बताया जा रहा है कि इस इमारत में लगभग 10 कमरे थे और वहां पर स्टूडेंट्स रह रहे थे।
14: दिल्ली में हादसों की वजह बनने वाली गैरकानूनी इमारत पर समय रहते लगाम क्यों नहीं लगाई जाती? आखिर हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जाता? दिल्ली के जिस सत्य निकेतन में यह हादसा हुआ वहां बड़ी संख्या में पीजी, रेंटेड रूम और हॉस्टल चलते हैं। यहां पर कितनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हादसे के बाद इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि रेस्क्यू करना मुश्किल हो गया। जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हादसे की जगह पहुंची तो उन्हें घटनास्थल का जायजा लेने के लिए दूसरी इमारत के ऊपर मंजिल का सहारा लेना पड़ा। अगर इलाके की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यहाँ छोटी छोटी गलियां हैं और घनी आबादी के बीच कई बहुमंजिला मकान मौजूद हैं। ऐसे ही एक इमारत गिरने से छात्र दब गए। मलबे में फंसे छात्र ने ये वीडियो बनाया जिसमें दबे हुए छात्र दिखाई दे रहे हैं। वहीं कई मलबे में दबे छात्रों ने फोन कर मदद मांगी। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब दिल्ली में इस तरह का हादसा हुआ हो। राजधानी दिल्ली में कई जगह ऐसे ही पीजी संचालित हो रहे हैं। कई जगह ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन नियमों की अनदेखी रहती है। दिल्ली में नियमों की अनदेखी और प्रशासन की बेरुखी की वजह से पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं। कुछ महीने पहले दिल्ली के मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग ने भयावह रूप ले लिया था और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बेसमेंट की वजह से छात्रों की जान जाते हुए देश ने साल 2024 में देखा, जब ओल्ड राजेंद्र नगर में राउज आईएएस सर्किल के बेसमेंट में पानी भरने से 3 UPSC छात्रों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया गया। जब इसी साल जून के महीने में आज तक ने वहां जाकर पड़ताल की तो हमें बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लाइब्रेरी मिली।
15: एक लंबे वक्त से ये सिलसिला चलता हुआ चला आ रहा है। आप किसी भी दिल्ली के लोगों से पूछ लीजिए, जब भी वो कोई बिल्डिंग गिराएंगे तुरंत वहां पर दिल्ली पुलिस का कर्मचारी, एमसीडी का कर्मचारी वहां पर आ जाएगा और उसके बाद फिर सेटिंग करके जरिए, लोकल पार्षद के जरिए सेटिंग करके आप तीन मंजिल की जहां इमारत बननी वहां पांच मंजिल बना लीजिए और उसके बाद फिर हादसा होता है तो फिर सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगते हैं। तो जरूरी है सिस्टम में बड़े स्तर पर सुधार की। ओल्ड राजेंद्र नगर का हादसा आपको याद होगा, वहां पर किस तरीके से कोचिंग में यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र मर गए, उसके बाद आज तक की टीम ने वहां खुद जाकर बाकायदा रियलिटी चेक किया, खुद मुझ पर अटैक हुआ लेकिन वहां कोई बदलाव नहीं आया।
3: हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर अरविंद ओझा के पास एक बार फिर से चलते हैं। अरविंद, लाइव तस्वीरें भी दिखाएं और क्या अपडेट है, क्या प्रोग्रेस है, क्या कुछ पॉजिटिव खबर आई है अब तक?
15: देखिए, ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है राजीव, ये चिंता वाली बात है, ये लंबा चलेगा और सीधे तस्वीर में आपको दिखाऊं जेसीबी मशीन की, यहाँ पर लगातार जो तमाम अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं और हमने आपको कुछ देर पहले वो तस्वीर भी दिखाई जो एग्जैक्ट वो तस्वीर जहाँ मलबा गिरा हुआ था। और चूंकि पूरी की पूरी इमारत जो पांच मंजिला है वो गिर गई, रूफ टॉप के साथ, छत के साथ पूरी इमारत जमींदोज हो गई। अब चूंकि 40 साल 50 साल ये पुरानी इमारत है और बड़े बड़े इस तरीके के, ये दिखाइए आप जरा सा, इस तरीके का बड़ा बड़ा मलबा है, तो एक तो निकालने में कड़ी मशक्कत, दूसरा चैलेंज एहतियात भी बरतना है क्योंकि स्निफर डॉग की मदद से ये भी जानकारी जुटाई जा रही है कि उसके अंदर कोई और फंसा तो नहीं है। तो अब लोगों को तलाशने के लिए स्निफर डॉग्स की मदद भी एनडीआरएफ की टीम ले रही है, नंबर एक। नंबर दो, बड़ी मशीनों का इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि जो वहां दबे हैं उनको नुकसान हो सकता है, तो एनडीआरएफ की जो मल्टीपल टीमें हैं वो जो अत्याधुनिक उनके पास मशीनें हैं उनके जरिए ये लगातार कोशिश तो कर रही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जा सके, लेकिन कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। और जो दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो एनडीआरएफ के लोग हैं, उनका कहना है कि अभी लंबा वक्त लग सकता है क्योंकि पांच मंजिला इमारत और पूरी की पूरी इमारत जमी दोज हो गई। 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया, 3 लोगों की उसमें मौत हो गई और जानकारी अभी ये भी मिल रही है कि जो बेसमेंट था उसमें काम चल रहा था तो जाहिर सी बात है वहां भी कुछ लेबर रहे होंगे, लेकिन फिलहाल जो अपडेट मिला है वो ये कि जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है पूरी रात चलेगा, बहुत मुमकिन है कि कल सुबह तक पूरा हो, लेकिन कोशिश यही है। स्निफर डॉग्स की मदद इसलिए ली गई कि किसी तरीके से, देखिए इस तरह से लोकल लोगों के बीच कुछ झड़प भी हो रही है, लोग आक्रोशित भी हो रहे हैं जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन, तो खैर जो दिल्ली फायर डिपार्टमेंट की टीम, जो एमसीडी की टीम है, उसके अलावा तमाम,
3: अरविंद मेरा सवाल स्थानीय लोगों के आक्रोश को लेकर कि वो क्यों नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन तो हर कोई पूरा करना चाहेगा, होने देना चाहेगा।
15: देखिए ये छिटपुट चीजें हैं लेकिन कोशिश यही है, कुछ बाधा डालने की कोशिश भी लोगों के जरिए की जा रही है क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा इकट्ठा हो गई, तो लोकल जो प्रशासन है, जैसे आज तक की टीम जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा थमा तब करीब गई, उसके बाद हमने डिस्टेंस मेंटेन कर रखा हुआ है जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहां से, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में जो टीमें हैं उनको किसी तरह की दिक्कत पेश ना आए। इस वजह से अगर आप देखें तो आज तक की टीम डिस्टेंस मेंटेन की हुई है और जब जरूरत होती है और अधिकारी इजाजत देते हैं तब ही करीब जाते हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और
3: रिपोर्टिंग करना हमारा अधिकार है, लेकिन हम किसी तरह की बाधा भी उत्पन्न नहीं करते हैं और ना करने दी जानी चाहिए। आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौटते हैं। दिल्ली में इमारत के ढहने की ना तो कोई ये पहली घटना है और ना ही आखिरी। ठीक 2 महीने पहले 8 जुलाई को रोहिणी के सेक्टर 16 में एक इमारत गिरी थी और ये 4 मंजिला अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी। इस बिल्डिंग के गिरने से तब भी 3 लोगों की मौत हुई थी। सवाल यह है कि जिम्मेदार अधिकारियों को ये खतरनाक इमारतें आखिर दिखती क्यों नहीं है?
14: दिल्ली के सत्य निकेतन में हादसे के बाद राजधानी में घर बनाने के नियमों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बने हुए घर के नीचे बेसमेंट बनाया जा सकता है? क्या इसके लिए कोई कानूनी अनुमति लेनी होगी? और अगर बिना अनुमति के बेसमेंट बना दिया तो क्या कार्रवाई हो सकती है? ये किसकी जिम्मेदारी थी?
15: दिल्ली के जो मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है, तकरीबन एक घंटे से ज्यादा वक्त का हो चुका है। बड़ी बात यह है कि वो खुद भी यहाँ पर जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको संचालित होते हुए देख रही है। एक बड़ी बात है, तारीफ की बात है, लेकिन यहाँ खड़े होकर वो ये भी देखे कि आसपास कितने अवैध पीजी चल रहे हैं। मैंने कई छात्रों से कुछ देर पहले बात की है, उन पर शिकंजा कसा जाए, अधिकारियों को सख्त ऑर्डर दिया जाए कि खास तौर से जो अवैध पीजी चल रहे हैं, कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, वहां पर क्या एनओसी है क्या या नहीं है, किस तरह से सुरक्षा के मानकों का वहाँ अनदेखी की जा रही है, वो तमाम चीजें देखने की जरूरत है, वरना इस तरह के हादसों को रोका जाना काफी मुश्किल होगा। देखिए, ऑन रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस ये कह चुकी है कि 40 से 50 साल ये पुरानी इमारत थी जिसमें पीजी का काम चल रहा था।
0: दिल्ली में इस तरह के हादसे समय समय पर सामने आते रहते हैं। जब हादसा होता है तो MCD समेत संबंधित एजेंसियों पर सवाल उठता है, लेकिन मामला ठंडा पड़ते ही सब कुछ पहले की तरह होने लगता है, जबकि सिस्टम में कमियों की बात मेयर पद पर बैठे लोग भी कबूलते हैं।
16: चाहते हैं कि बच्चे उसमें बच जाएं। पहले रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट है, सभी जायज आपके इस समय सभी जायज है, बहुत कमियां हैं सिस्टम में, बहुत कमियां मैं मानता हूं, लेकिन पहले अभी रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।
0: दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत इसलिए गिरी क्योंकि उसके बेसमेंट में काम चल रहा था। सवाल यह है कि क्या काम चलने से नींव कमजोर हुई और इमारत गिर गई।
15: यह जरूरी हो जाता है कि कम से कम जो जहां छात्र रहते हो, जो पीजी है, जो गर्ल्स हॉस्टल है, जो बॉयज हॉस्टल है, जो कोचिंग है, कम से कम वहां पर जो कंसर्न अधिकारी हैं, जो MCD के अधिकारी हैं, वो जाएं, जाकर देखें कि वहां पर छात्र किस तरह से पढ़ाई करते हैं, किस तरह से रहते हैं। वहां पर NOC नहीं है, फायर की NOC नहीं है, कई जगह पर MCD की NOC नहीं है, और धड़ल्ले से अवैध तरीके से वहां पर लोग रह रहे हैं, और बारिश होती है, जरा सी बारिश दिल्ली में हो जाती है तो आप सुनते होंगे कि दिल्ली में बिल्डिंग गिर गई। अगर आग लग जाती है तो उस बिल्डिंग में लोग फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। यहां पर
0: दिल्ली में बेसमेंट बनाने के लिए संबंधित अथॉरिटी से संशोधित बिल्डिंग प्लान की मंजूरी की जरूरत होती है, लेकिन अगर घर पहले बना हो तो उसके नीचे बेसमेंट में काम करने की छूट तो बहुत देखरेख के बाद ही दी जाती है, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ होता नहीं दिखता।
2: पीजी का काम चल रहा है, नहीं ये पीजी तो बना हुआ था ऑलरेडी, पुरानी बिल्डिंग थी ये, इसमें पीजी तो था, वो पीजी वाले तो लंच करने बच्चे चले गए, संडे का दिन था ना, तो लंच करने दूसरी मैच में चले गए, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता।
17: अपना घूम के एक बार पूरे सत्या में देख लो, देयर विल बी 20-25 सच बिल्डिंग्स जो आज गिरे, एक महीने बाद गिरे, एक साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी। विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई आधा दलाली करता है यहाँ पे, तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन।
18: जितनी भी पीजीज है सब में सीढ़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है और बच्चों का फायदा उठाया जाता है, साउथ कैंपस के सभी बच्चों का।
0: दिल्ली में ऐसे हादसे तब तक होते रहेंगे जब तक अवैध निर्माण पर लगाम नहीं लगती। दिल्ली में 75 लाख इमारतें बताई जाती है। दुर्भाग्य ये है कि चंद इमारतें ही सभी नियमों को पूरा करे हुए बनी है, इसलिए एक्सपर्ट की मांग है कि सरकार बाकी इमारतों को लेकर अभियान चलाए, क्योंकि 40 से 50 साल पुरानी हो चुकी इमारतों की दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या है।
19: जो इस बिल्डिंग का ओनर था, क्या उसको एक दिन के लिए भी, एक मिनट के लिए भी ये सोच नहीं आई कि वहां पे लोग निवासी अभी भी हैं? एटलीस्ट बिल्डिंग को खाली किया जाता। और जो हम बात करते हैं कि JEE आके इंस्पेक्ट कर ले, हमारे JEE बाय द वे कितने एजुकेटेड है इस मामले में कि वो आके को ढंग का इंस्पेक्ट भी करते, वो तो किसी और वजह से वहां पे आते और अपनी वो वजह पूरी करके निकल जाते वहां से। तो ये सारा सिस्टमिक चेंज जो हमें चाहिए, विकसित भारत बनाने के लिए एक सिस्टमिक चेंज की जरूरत है।
3: ग्राउंड जीरो पर फिर से आपको ले चलते हैं, हमारे दो संवाददाता हमारे साथ अरविंद ओझा तो जुड़े हैं, साथ साथ अनमोल बाले भी इस समय ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ जुड़ गए। अनमोल, आप के दिखाएं इसमें क्या तस्वीरें, रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट दें।
20: राजीव, 7 घंटे से ऊपर का वक्त बीत चुका है पर अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है यहां पर जारी है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि कैसे आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो मैन पावर है, जो NDRF के जो लोग हैं यहां पर काम कर रहे हैं, साथ ही हैवी कटर्स यहां पर मंगाए गए हैं और साथ ही क्रेन्स और JCB के जरिए भी जो देखा जा रहा है यहां पर मलबा साफ करने की कोशिश की जा रही है। एक क्रेन, दो क्रेन और JCB भी यहां पर

0: जो है लग सकते हैं, क्योंकि चार मंजिला इमारत थी, बड़ी रूफ थी और सारी की सारी जो रूफ्स हैं वो एक के ऊपर एक ढहती गई, यानी कि ताश की पत्ती की जो हम देखते हैं एक के ऊपर एक जैसे गिरती है वैसे ही रूफ्स गिरी, यानी कि बड़ी रूफ्स हैं उनको काटने में इस समय जो है एनडीआरएफ और दिल्ली फायर सर्विस को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहां देखा गया कि दोपहर से ही राजनीति का अखाड़ा तो बना हुआ था, वहीं दूसरी तरफ से भारी संख्या में देखा गया एम्बुलेंस और दिल्ली फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी यहां पर मंगाई गई। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद रेखा गुप्ता, एलजी तरनजीत संधू भी यहां पर पहुंचे, वहीं कांग्रेस पार्टी के भी नेता दीपेंद्र हुड्डा यहां पर पहुंचे। पर एक तरफ तो राजनीति का अखाड़ा, वहीं दूसरी तरफ एनडीआरएफ और दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस की जो रेस्क्यू ऑपरेशन की मुहिम वो मेरे पीछे जारी, जहां बताया जा रहा है कि 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है, तकरीबन 9 से 10 जो लोग हैं यहां पर रेस्क्यू किए गए हैं। पर बड़ा सवाल ये सारा पीजी का एरिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी पर भी राजीव यहां पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब आप कॉलेजेस बनाते हैं आप हॉस्टल्स क्यों नहीं बनाते, जो विद्यार्थी देश भर से यहां पर पढ़ने आते हैं, हजारों रुपए की आपको फीस देते हैं, क्या आप उनको अकोमोडेट नहीं करते? और जब अकोमोडेट नहीं करते तो लोग बेड्स जो है वो खरीदते हैं, 10 से 15 हजार रुपए का यहां पर बेड जो विद्यार्थी खरीदते हैं, और अंत में उनको क्या मिलता है? गंदा खाना, गंदी हवा और साथ ऐसे सुरक्षा के प्रबंध।
1: बहुत बहुत बहुत गंभीर सवाल आपने खड़ा किया। अरविंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, जो अनमोल प्रश्न खड़ा कर रहे हैं वो बिल्कुल वाजिब प्रश्न है कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी की भी है। आप देश के अलग अलग हिस्सों से स्टूडेंट्स को बुला तो रहे हैं, लेकिन उनका उनकी देखरेख, वो किन परिस्थितियों में रह रहे हैं, उनसे कितना पैसा लिया जा रहा है, आप किसी तरह की कोई जिम्मेदारी, मतलब कोई नहीं ले रहा है, ना सरकार ले रही है, ना एमसीडी ले रही है, ना यूनिवर्सिटी ले रही है।
2: देखिए बिल्कुल वही, मैंने एक जो यहाँ फीमेल स्टूडेंट थी, जब मैंने उससे बातचीत करने की कोशिश की आज तक ने, तो उन्होंने बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीस साल भर की 10,000 होगी, लेकिन वो सब कुछ वसूल हो जाता है जब वो इस तरह के एरिया में रहने के लिए जाते हैं, फिर उन छात्रों की मजबूरी का फायदा उठा के जैसी बिल्डिंग जैसी सुविधा उस अनुसार जो है वो किराया वसूला जाता है। अब दिखाइए जरा एक बार फिर दिखाइए अनिल जसवाल, अगर कोशिश करके इस तरह की इमारतें, अब एक फ्लोर में आप ये समझ लीजिए 1 से 2 कमरे और 10-10 बेड, अब एक बेड का किराया 8 से 10 हजार, तो मनमाने तरीके से।
1: अरविंद मैं आपको रोक रहा हूँ, इस बीच में बड़ी खबर, मरने वालों में 3 लोगों में एक छात्र भी शामिल बताया जा रहा है, तो 3 लोगों की मौत हुई है, उसमें एक छात्र बताया जा रहा है कि उसमें से एक छात्र है जिसकी मौत हुई है, तो ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर। इस समय उपचार चल रहे हैं, 11 लोगों का रेस्क्यू हुआ है, 3 लोगों की उसमें से जान गई है, और उन 3 लोगों में, माफ कीजिएगा, इसमें अपडेट है कि एक एक एक छात्र है, तो एक मजदूर भी है जिनकी जान गई है। तो ये अपडेट लगातार मिल रहा है। अरविंद हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद आप अपनी बात कंटिन्यू करें।
2: जी बिल्कुल वही मैं बता रहा कि देखिए एक नियम बनाने की जरूरत है, और खास तौर से देखिए आज तक हादसे आपको याद होगा लखनऊ में हादसा हुआ, उसके बाद दिल्ली में हादसा हुआ, बड़े बड़े हादसे हुए, और हर वक्त आज तक की टीम ने छात्रों के हित में, छात्रों की सुरक्षा के हित में हर जगह ग्राउंड रियलिटी चेक किया, चाहे ओल्ड राजेंद्र नगर, चाहे दिल्ली के तमाम मुखर्जी नगर इलाके हो, तमाम जगहों पर। लेकिन उसके बावजूद, उसके बाद ये जरूर था कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बयान दिया था, चेतावनी दी थी पीजी वालों को, कोचिंग वालों को, लाइब्रेरी वालों को, कि उसके बाद एक्शन लिया जाएगा, लेकिन एक्शन क्या हुआ लिया गया ये आप इसी हालत से देख सकते हैं कि सत्य निकेतन साउथ कैंपस का ये पूरा इलाका है, 5 मंजिला इमारत इंक्लूडिंग बेसमेंट, बेसमेंट में काम चल रहा था, 40-50 साल पुरानी ये बिल्डिंग थी, और नतीजा ये हुआ कि बिल्डिंग की जो वो भरभरा के भारी बारिश हुई और वो बिल्डिंग गिर गई, छात्र दबे हुए। अब घंटों की मशक्कत, 1:30 बजे ये पूरा हादसा हुआ था और तकरीबन 6 से 7 घंटे हो चुके हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, फायर डिपार्टमेंट की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, बीच बीच में काम रोककर स्निफर डॉग की मदद ली जाती है ताकि ये पता लगाया जा सके कि अंदर कोई फंसा है या नहीं फंसा है। एक छात्र ने तो खुद वो वीडियो बनाकर भेजा, बहुत मुमकिन है कि उस छात्र को बाहर निकाल लिया गया होगा। तो ये स्थिति है यहाँ पर। जो बिल्डिंग ऑनर है आनंद बंसल, उसका नाम बताया जा रहा है, वो गुरुग्राम में रहता होगा, जाहिर सी बात है इस पीजी के कमाई से उसने लग्जरी कोठी बना ली होगी, उसमें रहता होगा, ये 40 साल जो जर्जर इमारत थी इसमें पीजी खोल लिया स्टूडेंट के रहने के लिए, जिसे मनमाना किराया वसूला। तो आनंद बंसल फरार है, ये खुद भी दिल्ली की सीएम ने बोला है, दिल्ली के पुलिस का कहना है कि उसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है, उसको तलाशा जा रहा है, एक्शन होगा जिस तरह से दिल्ली सीएम ने बोला है। लेकिन ये जरूरी है की एक बड़ा ड्राइव चलाया गया दिल्ली में।

0: एग्जैक्टली ये वाजिब पॉइंट है कि एक्शन तो होगा ही, आप कह रहे हैं, लेकिन एक्शन से ज्यादा एक शुद्धिकरण अभियान चलाया जाना चाहिए। एक ऐसी जर्जर इमारतों का, ऐसी खतरनाक इमारतों का चिन्हीकरण होना चाहिए, उनको ध्वस्त किया जाना चाहिए, उनको ध्वस्त किया जाना चाहिए अगर वो व्यक्ति जिनकी वो इमारतें हैं वो खुद करें, नहीं तो सरकार को इसमें जो है पहल करनी चाहिए ताकि कम से कम लोगों की जिंदगी तो ना जाए। हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा भी हमारे साथ जुड़ गए। सुशांत, हमने देखा कि 3 घंटे से ज्यादा समय तक तो मुख्यमंत्री थी मौके पर, मंत्रीगण भी थे, लेकिन अब चूंकि लगभग 7 घंटे का समय पार कर चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन, अभी तक ग्राउंड पर कौन डटा हुआ है, सब चले गए अभी हैं कोई? सुशांत आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर लें प्लीज। सुशांत आपके पास लौटते हैं, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, मैं दोबारा इसी सवाल के साथ आपके पास लौटूंगा। जी अनमोल, अब आपके पास आते हुए अनमोल, क्या एक्सपेक्ट करें, कितने घंटे का समय और लगेगा? क्योंकि जब ये बिल्डिंग गिरी थी तब लगभग 15 से 20 फीट तक मलबा था, वो मलबे का ढेर क्या थोड़ा सा कम हुआ है?
1: राजीव, मैं दोपहर से यहां पर मौजूद हूं। हां, मलबे का ढेर थोड़ा सा कम हुआ है, पर जब हमने दिल्ली फायर सर्विसेज और एनडीआरएफ के कुछ अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था कि कल सुबह से लेकर कल दोपहर तक का समय भी लग सकता है, क्योंकि 4 मंजिला इमारत थी, बड़ी इमारत थी, जो इसकी रूफ्स थी वो सारी की सारी ढह गई, तो कहीं ना कहीं बड़ी जो रूफ्स है जो कहीं ना कहीं बड़े स्लैब्स की तरह, उनको तोड़ने में वक्त लग रहा है, जिसके एक के नीचे एक कहीं ना कहीं लोगों के फंसे होने की जो आशंका है वो हो सकती है। उसी को देखते हुए देखा गया कि भारी मशीन क्रेन्स जो हैं, भारी मशीन्स हैं यहां पर बुलाई गई हैं। अभी भी अगर आप कोशिश करें तो मेरे पीछे मैं देख रहा हूं कि कई घंटों से जो कटर हैं वो यहां पर चल रहे हैं, कटर्स के जरिए जो बड़ी रूफ है उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही एक लेयर दूसरी लेयर जब तोड़ी जा रही थी, उसी भी देखा गया कि जो लोग अंदर मलबे में फंसे हुए थे उनको निकाला गया। वहीं राजीव, मैं दूसरी तस्वीर आपको इस इलाके की भी दिखाना चाहूंगा। स्टूडेंट्स का यह सारा इलाका है, दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस के जो बच्चे हैं यहां पर रहते हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जहां आपको नजर आएगा पीजी अकोमोडेशन नजर आएंगे, पर वहीं मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि छोटे छोटे यहां पर दरवाजे बने हुए। एक तस्वीर आप राजीव ये भी देखिए कि कैसे पतली पतली छोटी गलियां हैं, जहां आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे एग्जिट बने हुए हैं, जहां से ही जो लोग यहां पर रहते हैं वो अंदर जाएंगे, वहीं से बाहर आएंगे। तो ये भी एक बड़ा सवाल कि इतने साल से जो एमसीडी का जो प्रशासन था वो कहां था जब बच्चों की सुरक्षा की बात की जाए, क्योंकि यहां पर रेजिडेंशियल एरिया है, सब ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जहां पर कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी, पहला सवाल। और जो एग्जिट का गेट है, एंट्रेंस का गेट है, कितने छोटे छोटे हैं, आप समझिए कि अगर यहां पर कोई हादसा हो जाता है, आप देखिए ये 4 मंजिला इमारत है, 1, 2, 3 और 3 मंजिला ये इमारत है, अगर कोई हादसा हो जाए यहां पर, इतने सारे बच्चे रहते होंगे तो यहां से कैसे निकलेंगे? तो एक सवाल नहीं है, कहीं ना कहीं बिल्डिंग की मजबूती पर सवाल नहीं है, जैसे बिल्डिंग यहां पर बनाई गई है, जो यहां पर स्ट्रक्चर है उन पर भी बड़े सवाल राजीव यहां पर खड़े होते हैं।
0: बिल्कुल, अब किस पहलू की बात कर रहे हैं तो हर पहलू में दाग है ऐसा लगता है अनमोल। अरविंद, रेजिडेंशियल इलाका, वहां पर कमर्शियल एक्टिविटी कैसे हो रही थी? मतलब इतने इतने सवाल हैं कि मतलब आदमी हर हर हर विषय पर, हर पहलू पर सवाल ही सवाल हैं। लेकिन साथ साथ में अगर स्थानीय लोग, स्टूडेंट्स, कोई भी आपके आसपास हो उनसे बातचीत भी करें। अनमोल,
1: राजीव, मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि मेरे साथ बहुत सारे यहां पर जो छात्र हैं, एक तरफ तो आपको एम्बुलेंसेस की कतारें यहां पर नजर आएंगी, पर वहीं बहुत सारे छात्र भी नजर आएंगे। तो किन हालातों में सर आप यहां पर रह रहे हैं? बहुत बड़ा हादसा हो गया, आपके साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले ये छात्र होंगे, क्या हालात हैं जैसे आप रहते हैं यहां पर?
2: जैसे कि यहाँ पर हम लोग रहते हैं, सबसे पहली बात आती है कि पीजी की, तो पीजी में जैसे कि सबसे तो इतना छोटा सा रूम होता है और बाकी सारी जितनी भी अकोमोडेशन चीज़ें होती हैं, सबसे पहले तो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज झेलनी पड़ती है। आप आ रहे हो, पढ़ रहे हो वहाँ पे और बगल में हो जाए, सबसे बड़ा डर रहता है घर वालों को। अब जैसे मेरे घर वाले हैं, इनको पता लगा कि ऐसा कुछ हो रखा है, अब ये बोले तो पढ़ाई लिखाई छोड़, वापस आ जाओ, हमें हमारा बेटा चाहिए ना।
1: आपके घर वालों ने?
2: हाँ हाँ, अभी देखो ना, यहाँ मैसेज होगा, मैं आपको दिखा दूंगा, मेरी मम्मा का मैसेज होगा, मेरी मम्मा बहुत जल्दी पैनिक हो जाती है, हो सकता है बहुत बहुत के घर वाले होते हैं वो बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं।
1: कितना किराया देते हैं, एक बेड का देते हैं, कमरे का देते हैं?
2: एक बेड का देता हूँ मैं, वी बोथ आर लाइक रूममेट्स, ठीक है, हम एक देते हैं, हमें लाइक 14,000 पर है।
1: हाँ, पर फीस कितनी आप डीयू में देते हैं?
2: हमारी फीस है जैसे कि अभी फर्स्ट ईयर में हमें लगी थी 20,700।
1: हॉस्टल के लिए ट्राई किया कभी आपने?
2: नहीं, हॉस्टल वो तो अलग ही रहता, कट ऑफ उसका 2-3% बच्चे होते हैं भाई, आई गेस
1: जिनको पूरी डीयू में सिर्फ 100 में से अगर 2 या 3 बच्चे को हॉस्टल मिलता है,
2: आई गेस इतना तो पता नहीं होगा क्योंकि हॉस्टल वगैरह का हमने ट्राई ही नहीं किया क्योंकि हमें पहले से ही पता भाई वो बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हॉस्टल मिलना।
1: तो 14,000 में आप यहाँ पर रहते हैं, खाने की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था और मजबूती की व्यवस्था उनका आप कैसे देंगे?
2: अभी तो आप मजबूती की व्यवस्था आपके सामने है, ठीक है, और हम भी तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, हम भी बहुत कुछ जानते नहीं है यहाँ पर। अब ये देख करके फर्स्ट ईयर मतलब हम तो ऐसा हो रहा है ना कि हम तो सामने एडवर्टाइज करेंगे ये चीज़ कि हमें ये दिख रहा है भाई, हम 10 लोगों को बोलेंगे तो 10 लोग और डरेंगे।
0: मैं आपको अनमोल रोक रहा हूँ, इस बीच में बड़ी खबर देते हैं, दिल्ली बिल्डिंग हादसे से जुड़ी बड़ी खबर। एनडीआरएफ की 2 टीमें इस समय राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। 70 जवान हैं जो एनडीआरएफ के समय राहत बचाव का काम कर रहे हैं। चूंकि 5 मंजिला इमारत है तो मलबा बहुत ज्यादा है, एनडीआरएफ की 2 टीमें काम कर रहे हैं, फिर इक्विपमेंट्स हैं, मशीनें हैं, जेसीबी है, कटर मशीनें लगातार वहां पर लगाए गए हैं, लगातार जवान जुटे हुए हैं और बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी बहुत चलेगा। 7 घंटे से ज्यादा का समय तो हो गया, इतना ही और इससे ज्यादा समय लगने का भी अनुमान है। समस्या ये है कि जो सीमेंट के जो ये स्लैब्स हैं उनके नीचे लोग दबे हुए हो सकते हैं, तो ऐसे में बड़े सावधानी पूर्वक उनको धीरे धीरे करके काटा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई भीतर दबा हुआ हो उसको नुकसान हो जाए। तो एनडीआरएफ को बहुत ध्यानपूर्वक इस कार्य को करना पड़ रहा है, बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता अनमोल के पास चलते हैं। अनमोल, बात एक बार फिर से स्टूडेंट्स के साथ करें कि उनके परिवार की आय कितनी है कि 14,000 रुपए उनको रेंट देना पड़ रहा है और किसी भी तरह की कोई दूसरी व्यवस्था उनके लिए न सरकार की तरफ से न यूनिवर्सिटी प्रबंधन की तरफ से है।
1: इमैनुअल इधर तो राजीव, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं साइट है जो जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहां की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कुछ और जो छात्र हैं उनसे बातचीत कर जानना चाहेंगे। देखिए यहां पर भारी संख्या में जो छात्र हैं यहां पर जुड़े हैं। तो सर, रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल रहा है एक तरफ
3: जी,
1: पर क्या उम्मीद है, कुछ सुधार की उम्मीद है आपको यहाँ पर कुछ होगा?
3: उम्मीद कर सकते हैं लेकिन मैं मांग करता हूँ कि आपको याद होगा कि मुखर्जी नगर में जिस तरह से ग्राउंड पे पानी भरने से बच्चों की मौत हुई थी, आज उसी तरह सत्यनिकेतन में हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय से बच्चे पूरे भारत से पढ़ने आते हैं लेकिन कुछ ही कॉलेजेस में हॉस्टल हैं, बाकी कॉलेज में हॉस्टल ही नहीं। हम फीस देते हैं तो हम मांग करते हैं कि यूनिवर्सिटी से कि आप हमें हॉस्टल दीजिए, हमारे लिए अच्छे सुविधा कीजिए। आज जो जिन बच्चों का जान गया है, आज उनके पेरेंट्स से आप बात कीजिए, उनके दर्द को समझिए क्या है।
1: तो आपके पेरेंट्स से भी बातचीत हुई, वो भी डरे हुए हैं?
3: बिल्कुल डरे हुए हैं, मेरे को कई बार मेरे फोन किए, हमारी हालचाल लिए, मैंने अपने परिवार को बताया, वीडियो भेजा, तब वो जाकर संतुष्ट हुए कि ना मैं सेफ हूँ।
1: तो आप कितने पैसे देते हैं यहाँ पर पीजी के बेड पे है आपका प्रति क्या प्रति रूम वाला पीजी?
3: मैं इससे हट के रहता हूँ लेकिन वहाँ भी 15,000, 16,000, 12,000 इस हिसाब से रेंट लगते हैं रहने के।
1: अच्छी था बिल्डिंग यहाँ पर आप रहते हैं?
3: अब देखिए इसको देखकर तो हमको भी डर लग रहा है कि मैं जा रहा हूँ असुरक्षित है कि नहीं है, मैं भी डरा हुआ हूँ।
1: राजीव, कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के, उनका सीधा कहना है कि उनके अंदर डर है और जिन जिन विद्यार्थियों से हमने बात की उन्होंने साफ तौर पर बताया कि उनके माँ बाप का उनको फोन आ रहा है। तो माँ बाप जो दूर दराज बैठे हैं, जो बच्चों की फिक्र कर रहे हैं, जो अपनी मेहनत की जो गाड़ी कमाई है उसका पैसा भी देते हैं, तो उसका जो जवाब दिल्ली एमसीडी की तरफ से और प्रशासन की तरफ से ये मिलता है कि जो उनके बच्चों की जाने हैं वो कितनी सुरक्षित हैं या नहीं है। तो तस्वीरें मैं आपको राजीव दिखाना चाहूंगा, मेरे पीछे आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि कैसे जो क्रेन है यहाँ पर चल रहा है, एक के बाद एक जो यहाँ पर क्रेन है, बुलडोजर है यहाँ पर लाए जा रहे हैं और भारी संख्या में जो देखा जा रहा है कि कटर्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सारा जो एरिया उसको रोप कर दिया गया, काइंड ऑफ एक बैरिकेड कर दिया गया है ताकि जो एक ग्रीन कॉरिडोर है यहाँ पर बना रहे। आज दोपहर से ही देखा जा रहा है और बच्चों का एक आरोप ये भी है कि जो हादसा तकरीबन जो 1:40 पर हुआ उसके बाद देखा गया कि दिल्ली पुलिस और जो प्रशासन है यहाँ पर बहुत लेट पहुंचता है। देखा जाता है कुछ जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट है जो एनएसयू एबीवीपी से जुड़े हुए वो यहाँ पर पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों की इस चीज को लेकर भी नाराजगी, उनकी नाराजगी केवल हादसे को लेकर नहीं है, जो हादसे के बाद जो रिस्पांस होना चाहिए था प्रशासन का उसको लेकर भी है।
0: बिल्कुल, हमने अनमोल तस्वीरें देखी थी जब जो छात्र संगठन है वो पहल करते हुए दिखाई दिए थे, तस्वीरें सबसे पहले उन्हीं की आई है, वही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते दिखाई दिए हैं। टीमें तो बहुत बाद में पहुंची है, लोगों का आरोप यह है कि वो काफी देर बाद पहुंचे और एनएसवाई एबीवीपी वो दावा कर रहे हैं कि हम लोग पहले गए और हमारी प्राथमिकता है, तो चूंकि हमारे साथ ही पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनको किसी तरह से बचाया जाए, वो जितने लोगों का रेस्क्यू कर सके वो उन्होंने अपने स्तर पर जरूर प्रयास किया और कई लोगों को उन्होंने रेस्क्यू किया भी, इस बात के लिए उनकी सराहना होनी चाहिए। और इस बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, इसमें से एक तो छात्र है जिसकी जान गई है, एक मजदूर है जिसकी जान गई है और जो तीसरा शख्स जिसकी जान गई है उसके बारे में अब तक जानकारी नहीं मिल पाई, तो कुल तीन लोगों की अब तक जान चली गई है, 11 लोगों का कुल रेस्क्यू हुआ है। लेकिन सवाल एमसीडी पर, बहुत गंभीर सवाल है क्योंकि ये जो इमारत गिरी है इसमें भ्रष्टाचार का मतलब क्लियर ही अपने आप में प्रमाण है, बिना भ्रष्टाचार के ये इमारत खड़ी नहीं रह सकती थी, इस इमारत का इस इमारत को ढहना ही था लेकिन सही तरीके से कानूनी तरीके से, या इसको सील होना चाहिए था, यहां पर कोई भी एक्टिविटी होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन भ्रष्टाचार इतना कि बंद होने के बाद भी यह इमारत चलती रही और सिर्फ चलती नहीं रही, उसको उसका और विस्तार करने के प्रयास चल रहे थे, उसमें और खुदाई हो रही थी कि शायद बेसमेंट और खोद दिया जाए ताकि वहां पर दो चार कमरे और बना दिए जाए ताकि उससे थोड़ा सा और मुनाफा हो, थोड़ा सा और उससे पैसा कमा दिया जाए, यह रियलिटी है। और दिल्ली में ये कोई पहली बार तो है नहीं कि इमारत गिरी हो, बुराड़ी से लेकर करोल बाग से लेकर रोहिणी से लेकर अलग अलग घटनाएं आपके सामने हैं, अलग अलग घटनाओं में लोगों की जान गई है और लोगों की जान जाने के बाद आपको सरकारों के स्टेटमेंट भी याद होंगे, एमसीडी के स्टेटमेंट्स भी याद होंगे कि कार्रवाई होगी चीजें बदल देंगे, लेकिन क्या कुछ बदला? नहीं बदला। लेकिन अब लोग मांग कर रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, आप ड्राइव चलाइए, जो जर्जर इमारत है एक सेकेंड की देरी नहीं लगाइए, उसको तोड़िए। बड़ी खबर है, नजर लगातार बनी हुई है, रुकने छोड़े से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: स्टे इन द स्पा स्टेट ऑफ माइंड विद अ कोलर स्पा एट होम। No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
7: आगे आगे
8: अरे उधर
7: उधर गिरा
8: करेक्ट करेक्ट
9: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
4: जेके वॉल मैक्स
2: बेस्ट पेंट।
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।
3: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।

0: spa state of mind with a Kohler spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a Kohler spa at home.
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर यार करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: आगे आगे
2: उधर उधर
1: करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: In association with
5: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal Anmol.
6: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

दिल्ली में बड़ा हादसा, सत्य निकेतन इलाके में 5 मंजिला इमारत गिरी, अब तक 3 की मौत, मरने वालों में 1 छात्र 1 मजदूर शामिल, मलबे में दबे कई लोग। दिल्ली में इमारत गिरने के बाद राहत और बचाव का काम जारी, एम्स ट्रॉमा सेंटर और आरआर हॉस्पिटल में घायलों का इलाज, बिल्डिंग में चल रहा था पीजी। दिल्ली हादसे पर प्रधानमंत्री ने जताई संवेदना, गोवा में मौजूद गृहमंत्री शाह की भी नजर, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा बचेगा नहीं कोई गुनहगार। दिल्ली के एसआरसीसी में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को लेकर विपक्ष के सवालों पर नितिन नवीन का तंज, कहा प्रधानमंत्री ने कल नाराज फूफाओं को होम्योपैथी की दवा दी लेकिन आज इसका असर एलोपैथी वाली हाई एंटीबायोटिक जैसा हुआ। बिहार में उफान पर गंगा, 11 जिलों में 22 लाख लोग प्रभावित, राजधानी पटना से लेकर भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, पानी पानी।

नमस्कार, मैं हूं राजीव ढौंडियाल। देश की राजधानी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत गिरी और उसके बाद से अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 7 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है और लोगों को अभी तक ढूंढा जा रहा है, निकाला जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 3 लोगों की जान चली गई है। 11 छात्रों को अब तक मलबे से निकाला गया है, इनमें से 3 की तो मौत हो गई है। इनमें कई छात्र अभी मलबे में दबे हुए हैं, ऐसी आशंका है। मौके पर एनडीआरएफ की 2 कंपनियां मौजूद हैं और लगातार मलबे को हटाने का काम जारी है। लगातार प्रयास है कि जितने लोग वहां भीतर हो उनको जिंदा निकाला जा सके, ये प्रयास लगातार किया जा रहा है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। सत्य निकेतन में हादसा हुआ, 5 मंजिला ये इमारत थी जो कि गिर गई और ये इस इमारत का घिरना भ्रष्टाचार का जीता जागता प्रमाण था जो कि गिर गया और मलबे में कई लोग नीचे दबे हुए होने की आशंका है। रेस्क्यू का काम चल रहा है और एक पीजी हॉस्टल था जिसका मालिक आनंद बंसल था जो इस समय फरार है। मुख्यमंत्री लगभग 3 घंटों तक घटनास्थल पर रहे, फिर हॉस्पिटल भी पहुंचे और घायलों से मुलाकात भी उन्होंने की। कोशिश अभी सरकार की यही है, तमाम एजेंसीज की यही है कि लोगों को जिंदा निकाला जा सके, जिसको वो बचा सकते हैं उसको बचाया जाए। बहुत सारे लोग उम्मीद भी छोड़ चुके हैं लेकिन अब भी वहां पर बहुत सारे अपने दोस्त के लिए, अपने परिवार के सदस्य के लिए वहां पर इंतजार करें कि क्या पता वो जीवित हो, क्या पता वो बच जाए। लेकिन MCD दिल्ली सरकार, तमाम एजेंसियां लगातार सवालों में है कि कैसे ये जर्जर इमारत वहां पर संचालित हो रही थी, वहां पर पीजी कैसे चल रहा था, कैसे वहां पर बच्चों की जिंदगी खतरे में डालकर उसे चलाया जा रहा था। जिंदगी खतरे में भी डाल रहे थे बच्चे और अपनी जेब से पैसा भी दे रहे थे, और जिस व्यक्ति को पैसा दिया जा रहा था वो इस समय फरार चल रहा है।

0: ऐसा हादसा जिसने दिल्ली को हिला के रख दिया, ऐसा हादसा जिसने लोगों के दिलों में खौफ भर दिया। देखिए, दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में दोपहर करीब 1:30 बजे एक इमारत ढह गई। इमारत ढहते ही अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें देखिए, सिर्फ धूल का गुब्बार नजर आ रहा है और साथ में नजर आ रहा है कि कैसे मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है।
1: यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लोकल्स की मदद से जो है यहाँ ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ को भी इस वक्त बुला लिया गया है। एनडीआरएफ की भी एक बटालियन जो है, एक टीम जो है, वो इस वक्त यहाँ पहुंच गई है और अभी धीरे धीरे वो यहाँ पे स्पॉट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि कितनी भारी संख्या में जो यहाँ लोकल्स हैं, वो लोकल जो है यहाँ मदद कर रहे हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं। अभी ये बड़ी मशीन, अभी जो मशीनें हैं, जो कटर्स हैं, हैवी कटर्स हैं, बोल्डर कटर्स हैं, उन्हें भी अभी लेकर के यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो इस वक्त यहाँ आई है। और ये 5 मंजिला इमारत बताई जा रही है। अगर आप तस्वीरों में थोड़ा और क्लैरिटी से देखें यहाँ पर, तो ये देखें आप, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग थी और ये काफी बड़े इलाके में जो है ये पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर एक बॉयज हॉस्टल था और उसे बॉयज हॉस्टल में जो है ये पूरा हादसा हुआ है।
0: बताया जा रहा है कि इस इमारत में पीजी हॉस्टल था। सत्य निकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास बसा प्रमुख छात्र इलाका है। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं, इसी वजह से यहाँ दिन भर छात्रों की आवाजाही रहती है। हालांकि सत्य निकेतन में कुल कितने छात्र रहते हैं इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी बचाव काम चल रहा है, वो भी संभाल कर कि कहीं मलबे में दबे किसी शख्स को नुकसान न पहुंचे।
1: तो यहाँ पे जेसीबी चलाना वो खतरे से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि आखिर कितने लोग फंसे हैं और कौन कौन सी जगह फंसे हैं। अगर जेसीबी से मलबा हटाने के चक्कर में कुछ और लोग जो फंसे हुए हैं, जो शायद इंजर्ड हो, बस उनकी भी जान पर बना सकती है। और इसीलिए जेसीबी का अगर हम देखें तो ज्यादा इस्तेमाल ऐसे सिचुएशंस में नहीं किया जाता। और जो प्रिसाइज हैवी टूल्स होते हैं, जैसे बड़े ड्रिलर्स होते हैं, स्टील कटिंग मशीन्स होती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये पता लग पाए कि कहां कहां लोग फंसे हैं। अभी इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे ये समझ आ गया है कि यहां पर लोग नहीं फंसे हैं, जो बिल्डिंग के बाहर की लोकेशंस हैं, वहां पर अब जेसीबी की कार्रवाई जो है वो शुरू होती हुई दिख रही है। और बिल्डिंग के बाहर जहां गाड़ियों पर जो मलबा गिरा था उनसे अब मलबा हटाना शुरू किया जा रहा है। लेकिन बिल्डिंग जहां पर थी, जहां लोग फंसे हुए हैं, वहां पर अभी जेसीबी नहीं चलेगी। वहां पर अभी मेटल कटर्स चलेंगे, वहां पर अभी जीपीआर लगाया जाएगा, ये पता लगाया जाएगा कि कहां कहां लोग फंसे हैं, और उसके बाद वहां से मैन्युअली डिग करके ही लोगों को निकालना होगा या फिर हैंड यूजेबल मशीन से ही लोगों को निकालना होगा। अगर आप देखें यहां पे अभी भी प्रशासन को बहुत मुश्किलें हो रही हैं लोगों को समझाने में कि ये जगह खाली कर दे, क्योंकि ये जगह अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कहीं से भी मलबा और भी थोड़ा घिसक सकता है और लोगों को इंजरीज हो सकती है और लोगों को चोट आ सकती है।
0: बताया जा रहा है कि इमारत के बेसमेंट में काम चल रहा था, लेकिन अभी सही तौर पर ये नहीं मालूम चल सका कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। अनमोल बाली, अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
2: दिल्ली हादसों का शहर लगातार बन रहा, कभी आग लग जाती है और कभी बिल्डिंगें यहां पर गिरती चली जाती हैं, और सत्य निकेतन में भी यही हुआ है। इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मौके पर एनडीआरएफ की 2 कंपनियां मौजूद है और ग्राउंड जीरो पर एनडीआरएफ के आईजी एनएस बुंदेला ने क्या जानकारी दी है वो भी आपको सुनाते हैं।
3: तो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्टिव है अभी साइट पर, वो काम कर रही है, सुपरवाइज कर रही है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, जिसमें दिल्ली पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, एमसीडी है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग विंग है एमसीडी का, जो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं सब उसमें सपोर्ट दे रहा है। कम्युनिटी है, सिविल डिफेंस के लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें, और सब मिल के इसको कर रहे हैं कि हम जितनी जल्दी कार्रवाई करके जो जिंदा बचे हो उनको तुरंत सेफली बाहर निकाल सके।
2: एनडीआरएफ आईजी को आप सुन रहे थे, हमारे 2 संवाददाता इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुशांत मेहरा हमारे साथ है, अनमोल बाली हमारे साथ है। सुशांत, सबसे पहले आपके पास आते हुए इस समय का प्रोग्रेस बताइए। अब तो 7.5 घंटे से ज्यादा का समय लगभग हो गया है, क्या क्या प्रोग्रेस हुई है अब तक?
1: देखिए राजीव, आपको पहले सबसे पहले एक तस्वीर दिखा दूं कि एक और रेस्क्यू जो है वो यहाँ पर किया गया है। एक और शख्स को जो है वो यहाँ से एनडीआरएफ की टीम की तरफ से जो है वो निकाला गया, एम्बुलेंस जो है वो लगाई गई है, और अब से थोड़ी देर में एक और रेस्क्यू जो है वो किया जाएगा। लगभग 7 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। और जिस वक्त ये हादसा हुआ था उस वक्त मौके पर सबसे पहले इलाके के जो स्थानीय विधायक है अनिल शर्मा पहुंचे थे और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उनके भी चोट आई है। मैं सबसे पहले दिखाऊंगा कि उनके पैर में भी चोट आई है, कि जहां ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी लोगों को बचाने के चलते उनका पैर भी स्लिप हुआ था, उनके चोट भी आई है। अनिल जी, मैं सबसे पहले आपसे सुनना चाहूंगा कि किस वक्त ये हादसा हुआ, कितनी बड़ी ये पूरी बिल्डिंग थी, क्या इसका स्ट्रक्चर था, कितने लोग थे, कितने लोग और दबे हो सकते हैं?
4: ये बिल्डिंग 4 मंजिला बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, काफी पुरानी बनी हुई, कोई इसमें रिपेयर वर्क चल रहा था नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बेसमेंट में रिपेयर वर्क। उस रिपेयर वर्क की वजह से हुआ या कैसे हुआ ये कहना मुश्किल है, जांच का विषय है, परंतु हमने जो पता लगाया 13 बच्चे और तकरीबन 7 एम्प्लॉयर जो यहाँ लेबर काम कर रही थी, तकरीबन 20 लोग इसके अंदर हो मैक्सिमम होने चाहिए, ऐसा जो हमें जानकारी मिली है पड़ोस से और जो यहाँ पर काम कर रहे थे इधर उधर सारे एंगल से, तो उसमें से 9 बच्चों को निकाला है, 9 रेस्क्यू किए हैं जिसमें से एक शायद लेबर है, 3 की डेथ हो चुकी है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ कई घंटे खड़े होकर गई हैं, सारा खुद मॉनिटर कर रही हैं, लगातार फोन पे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, हमारी लोग सांसद मीनाक्षी जी सब लोग इसको ध्यान दे रहे हैं कि
1: बंसल जो बिल्डिंग का ऑनर है वो अभी फिलहाल है पुलिस ने FIR कर ली है, मानते हैं कि उसकी एक लापरवाही और एक MCD की भी एक जिम्मेदारी बनती है, जो दोषी है उन पर कार्रवाई की जाएगी?
4: जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होगी ही होगी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर MCD की लापरवाही है तो MCD पे कार्रवाई होगी, और जो बिल्डिंग जो रिपेयर कर रहा था उसने अगर उसकी पूरी तरीके से जो एक सिक्योरिटी लेके करना चाहिए था वो नहीं किया है तो उन पे कार्रवाई होनी ही चाहिए और होगी होगी।
1: अच्छा, इसके अलावा और भी कई सारी यहाँ पर PGs चल रहे हैं, स्टूडेंट्स ने भी कहा कि कई सारे PG हैं जो कि मनमाने पैसे भी वसूलते हैं और सुविधा नहीं है, क्या उन पर भी अब बड़े स्तर पर एक्शन होगा, क्योंकि मालवीय नगर के बाद सरकार ने बड़ा एक्शन जो है वो लिया था, कई सारे बेड एंड ब्रेकफास्ट के जो कॉन्सेप्ट चल रहे थे उन पर कार्रवाई करने की बात की थी, उसके लिए बाकायदा विधानसभा में कानून भी लाया गया, क्या इसको लेकर के अब मानते हैं कि बाकी जो इस तरीके के हादसे लाए दिन दिल्ली के अंदर होते हैं उसके लिए कड़ा कानून होने की जरूरत है?
4: मुझे लगता है कि कड़ा कानून होना ही चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ बोल के गई हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और कानून में कैसे इसको करा जाए जिससे कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो।
1: अच्छा, एक सवाल मेरा अब ये है कि अब कितना मलबा अब तक हटा चुका है और अभी कितने लोगों की आशंका है, और जो 11 लोग बताए गए थे रेस्क्यू किए गए थे क्या वो बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे या बिल्डिंग के बाहर भी लोग मौजूद थे, ये थोड़ा सा समझा दीजिए, और कितना मलबा अब तक निकल चुका है?
4: अभी 4 मंजिल के करीब जैसे मैंने बताया मकान था, ऊपर के 2.5 से 3 मंजिल तक का मलबा हटा दिया गया है, उसके अंदर 9 अंदर से बच्चे मिला के और लेबर मिला के निकाले गए हैं, 2 जो और साइड में जिनको जब बिल्डिंग गिरी जो चोट लगी ऐसे मिला के 11 लोग टोटल थे, तो 9 अंदर से बिल्डिंग से निकाले गए हैं। अभी और जांच चल रही है क्योंकि मैंने कहा कि हो सकता है 13 बच्चे मैक्सिमम रजिस्टर्ड थे, हो सकता है उस टाइम बच्चे कम हो, संडे करके बाहर घूमने गए हों, उसकी पूरी जानकारी अभी सरकार पुलिस भी कोशिश कर रही है, हम भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सबसे जरूरी है कि हम किसी भी तरीके से इस रेस्क्यू को जल्द से जल्द पूरा करें, अंदर गलती से भी कोई बच्चा या लेबर फंसा हुआ है तो उसको निकालें, उसके लिए पूरी सरकार उस तरह मॉनिटर ध्यान दे रही है,
1: मॉनिटर कर रही है। लेकिन एक बड़ी जानकारी, टोटल 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, 2 लोग वो हैं जो बिल्डिंग जब कोलैप्स हुई थी उसके आसपास मौजूद थे वो इसमें घायल हुए हैं, 9 लोग जो बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे वो घायल हुए हैं, उनमें से 3 लोगों की कैजुअल्टी हुई है। लेकिन आपको अब तस्वीरें दिखा दूं कि यहां पर अभी भी लगातार JCB और बड़ी जो क्रेन है उनके जरिए मलबा जो है वो हटाने की कवायद जो है वो चल रही है, क्योंकि ये बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है और मलबे के नीचे और भी लोग दबे हो सकते हैं, बहुत सावधानी के जरिए इस मलबे को निकालने की कवायद जो है वो यहाँ पर की जा रही है राजीव, क्योंकि अगर अंदर कोई शख्स दबा हो और एक स्ट्रक्चर को उठा करके क्रेन के जरिए अगर उसको सही तरीके से नहीं उठाया अगर वो दोबारा गिरता है, अगर उसके नीचे कोई बच्चा होता है तो वो भी दोबारा उसको वो घायल हो सकता है, उसको चोट आ सकती है, और इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सावधानी जो है वो इस पूरे हिस्से में जो है वो बरती जा रही है। लगभग 3 घंटे के आसपास मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर रहेंगे, इसके अलावा स्थानीय विधायक अगर मैं कहूँ तो वो भी अभी भी यहाँ पर मौजूद है, सांसद बासुरी स्वराज भी पिछले कई घंटों तक यहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आनंद बंसल जो कि इस पूरे घटना का इस बिल्डिंग का ऑनर था उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: के बाद हम सुनते हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा लेकिन उसके बाद भी हादसे हो ही जाते हैं। सुशांत आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास लौटते हैं। अनमोल आपके पास भी हमारे, लेकिन इस बीच में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कहा है जब वो हादसे वाली जगह पर पहुंचे थे और वहां से अस्पताल के लिए निकली थी, क्या कहा उन्होंने आपको सुनाते हैं।
5: अभी उम्मीद है कि शायद और बच्चे भी अंदर सभी तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है। हमारी टीमें जो है वो पूरी तरीके से काम कर रही है, नीचे ऑक्सीजन भी डाली गई है, कैमरा भी
6: काम कर रहे हैं।
5: बच्चों की जान है और कोई भी कल्प्रिट छोड़ा नहीं जाएगा, खास करके ये जिसका मकान है, जो यहाँ पे बिल्डिंग छोड़ के भाग गया, जो कि अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा था, बेसमेंट में खुदाई कर रहा था और जिसकी वजह से जो पिलर है वो डिसमेंटल हुआ और बिल्डिंग पूरी गिर गई, तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, और जिसके कारण से ये हादसा हुआ है सबको सजा भुगतनी पड़ेगी।
2: और दिल्ली की बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज भी हादसे वाली जगह पर पहुंची, उन्होंने भी हालात का जायजा लिया, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं।
7: जैसा आप जानते हैं कि सत्यनिकेतन में एक पीजी बिल्डिंग जो है वो गिर गई है, लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता रेस्क्यू ऑपरेशन है। ईश्वर की कृपा से 11 स्टूडेंट्स को रेस्क्यू कर लिया गया है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर फाइन। एनडीआरएफ लगी हुई है, एमसीडी के लोग लगे हुए हैं, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की सभी एजेंसियां यहां पर लगी हुई हैं। पर आपके माध्यम से मैं आश्वासन देना चाहूंगी कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो अभी हमारी फिलहाल हमारी प्राथमिकता है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
1: मुख्यमंत्री ने भी माना कि जो आरोपी है वो फरार है, बिल्डिंग का ऑनर, बिल्डिंग के अंदर 5 मंजिला इमारत थी और उसके नीचे भी काम जो है वो चल रहा था, क्या उस पर कार्रवाई, एक बड़ा एक्शन जो है वो, कि इस पूरे इलाके में कई ऐसी और बिल्डिंग है, क्या उन पर भी अब एक्शन होगा?
7: निश्चित होगा, और जो बिल्डिंग का ओनर है उसको भी, उसका भी जो घर है पता कर लिया गया है, गुड़गांव में वो अभी निवास कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, क्योंकि वो अनिवार्य है, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। धन्यवाद।
1: बातचीत करने के लिए बांसुरी स्वराज, नई दिल्ली से सांसद, साफ तौर पर कहना है कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। बड़े स्केल पर पूरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एक पूरी यहाँ पर जो है तमाम बिल्डिंग की उसकी इंस्पेक्शन जो है वो सरकार की तरफ से कराई जाएगी और जो ऑनर इस बिल्डिंग का उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। कैमरा पर्सन अमित बदवार के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
2: तो सांसद मुख्यमंत्री सबको आप लगातार सुन रहे हैं, लगातार सब यही बात कह रहे हैं, यही दोहरा रहे हैं कि जो भी अपराधी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस बीच में लगातार आपको बड़ी अपडेट भी दे रहे हैं, दिल्ली बिल्डिंग हादसे से जुड़ी बड़ी खबर, एमसीडी ऑफिस के बाहर अब एबीवीपी का प्रदर्शन देखने को मिला है। एबीवीपी जो कि बीजेपी से संबंधित एक छात्र संगठन है, वो एमसीडी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि एमसीडी से सवाल तो है लेकिन सवाल सरकार से भी है, और एबीवीपी प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे, ये एक तस्वीर, एनएसयूआई भी प्रोटेस्ट कर रहा था लेकिन यहां एबीवीपी प्रोटेस्ट करता हुआ दिखाई दिया और एमसीडी के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया। एमसीडी के जो मेयर हैं प्रवेश भाई, वो लगातार वो भी आज घटनास्थल पर दिखाई दिए हैं और मुख्यमंत्री के साथ तमाम मंत्रियों के साथ वो भी दिख रहे थे, लेकिन ये एबीवीपी का प्रदर्शन आप तो देख रहे हैं, एमसीडी ऑफिस के बाहर एबीवीपी का ये प्रोटेस्ट देखने को मिला है। सुशांत हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं, सुशांत एबीवीपी एमसीडी के खिलाफ प्रोटेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है।
1: देखिए राजीव, ये समझना होगा क्योंकि दिल्ली के अंदर 17 सितंबर को डूसू के इलेक्शन है, साउथ दिल्ली का ये पूरा कैंपस है, जो पीजी के अंदर बच्चे रहते थे उसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं और निश्चित तौर पर एमसीडी की एक बड़ी लापरवाही है और इसका असर डूसू चुनावों पर नजर ना आए, इसके लिए सीधे तौर पर एबीवीपी जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है वो इसके लिए अब जिम्मेदार एमसीडी को ठहरा रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पर क्योंकि एनएसयूआई बाकी जितने भी दल हैं वो इस पूरे मुद्दे पर अब बीजेपी को जो है वो घेरने की कोशिश करेंगे और उसका असर डूसू चुनावों पर ना पड़े, और यही वजह है जिसको लेकर के एक दिलचस्प तस्वीर जो है वो नजर आ रही है कि एबीवीपी के जो छात्र हैं वो एमसीडी दफ्तर के बाहर जो है वो इस वक्त प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको तस्वीरें और भी दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी जो है वो यहाँ पर पंकज सिंह जो है वो पहुंचे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन एक अलग तस्वीर जिस तरीके से एवीवीपी के छात्र प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, अब वो सवाल जो है वो खड़ा होता है कि आखिरकार क्योंकि एनएसयूआई और इसके अलावा आईसा ये तमाम जो है साउथ दिल्ली में अच्छा खासा चुनाव लड़ते हैं, डीयू के अंदर चुनावों के अंदर इनकी तस्वीर सामने आती है और वो हमलावर ना हो और इसका असर दूसरों चुनावों पर ना आए, इसी के चलते एवीवीपी जो है वो अब इस वक्त एमसीडी को घेरने की कोशिश में है।
2: चुनावों को ध्यान में रखते हुए ये प्रदर्शन हो रहा है। ठीक है सुशांत, नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए लौट रहे हैं हम आपके पास। लेकिन दिल्ली के सत्य निकेतन में जो कुछ हुआ है उसने सबको डरा कर रख दिया है कि क्या दिल्ली की इमारतें सुरक्षित हैं भी। अब हर कोई ये प्रश्न पूछ रहा है कि कभी आग लग जाती है कभी इमारत गिर जाती है। आज दोपहर इमारत गिरी, बड़ा हादसा हुआ, 11 लोगों को इमारत के मलबे से निकाला गया, 3 की जान चली गई है। 5 मंजिला इमारत गिरी तो आसपास के लोग दहल गए, उन्हें लगा कि भूकंप सा है। लेकिन इस इमारत के मलबे में फंसे छात्रों की चीख पुकार सुनी गई, हादसे की खबर लगी, इसके बाद तमाम लोग भी आए। बताया जा रहा है कि बेसमेंट में कुछ काम चल रहा था, कुछ खुदाई का काम चल रहा था और इस हादसे में दिल्ली की खतरनाक इमारतों को एक्सपोज एक तरीके से कर दिया है और भ्रष्टाचार का भी ये उदाहरण है।

0: दिल्ली में कितनी इमारतें इस तरह हादसे के इंतजार में हैं? आखिर कितने बेकसूर छात्रों की जिंदगी ज्यादा किराए के लालच में इस तरह दांव पर लगाई जाती रहेंगी? दिल्ली में लगातार हो रहे इन हादसों की जिम्मेदारी कब और कैसे तय होगी? दिल्ली का सत्य निकेतन इलाका, जहां 5 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया, पहली नजर में ये आपको हादसा लग सकता है, लेकिन ये हादसा नहीं बल्कि लालच और लापरवाही के कॉकटेल का नतीजा है। क्योंकि जब 40 साल पुरानी इमारत को 3 की जगह 5 मंजिल तक अवैध बना दिया जाए, 40 साल पुरानी इमारत की जांच करने वाला कोई न हो, बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भरा होने के बावजूद काम किया जा रहा, जबकि हादसे के वक्त छात्र कमरों में मौजूद थे, तो अब आप ही बताइए, क्या इसे हादसा कहना ठीक होगा?
1: यहाँ पर लिमिट ही खाली 2 या 3 फ्लोर्स के, बट इन लोगों ने 5 फ्लोर्स बनवा रखे थे। इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, नीचे बेसमेंट में काम चल रहा था, उसकी वजह से बिल्डिंग गिरी है। मैं उस टाइम पे अपना खाना ही खा रहा था, एकदम से सोफा हिलने लगा, प्रॉपर फील हुआ कि अर्थ क्यों आया, पर बाहर आके देखा तो धुआं वो हो रखा, तो फिर पता चला कि बिल्डिंग गिरी है।
2: लेबर लगी हुई थी सर, नीचे बेसमेंट में काम कर रहे थे सुबह।
3: अच्छा,
2: जब मैं मार्केट में आया तो मैंने देखा तो लेबर काम कर रही थी, प्लस यहाँ पर 2 कारपेंटर काम कर रहे थे।
3: अच्छा,
2: जब मैं मार्केट से होकर फिर मैं सीधा घर चला गया था, उसके बाद पता लगा तो ये बिल्डिंग गिरी है।
0: इस हादसे ने देश की राजधानी को एक बार फिर हिला दिया है। लोग डरे हुए हैं, क्योंकि वो जिन इमारतों में रह रहे हैं उनका भी ऐसा ही अंजाम हो सकता है, जैसा दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में दोपहर करीब 1:30 बजे इस इमारत के साथ हुआ।
4: बिल्डिंग की क्या हालत थी, बेसमेंट में कोई काम चल रहा?
5: बेसमेंट में काम चल रहा था, 2 दिन से पानी भरा हुआ था, और इसका क्या था कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, और आप कह सकते हो कि लीगली है, क्योंकि यहाँ पे अलाउड है कि आप 3 मंजिल से लेके 5-4 मंजिल तक कर सकते हो, मगर यहाँ ये बिल्डिंग थी 5वीं मंजिल तक।
4: अच्छा।
5: और मैक्सिमम स्टूडेंट थे, पीजी थे, और एक पीजी में 3 और 4 ही बच्चे रहते थे। संडे की वजह से स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे चाय की दुकान है, ब्रेड बटर लेने आते हैं। ये बिल्डिंग इस वजह से भी अब हम प्रे करते कि कोई नुकसान ना हो।
4: अभी बिल्डिंग का बेसमेंट में काम चल रहा था
5: पानी।
4: ये जो 40-50 साल, ये दिल्ली पुलिस आधिकारिक बयान दे रही है, 40-50 साल पुरानी बिल्डिंग थी, 5 मंजिला थी, बेसमेंट था उसमें, और बेसमेंट में काम चल रहा था, सीधे सीधे जो छात्र हैं जिसमें रह रहे थे उन सबकी जिंदगी दांव पर लगा दी बिल्डिंग के मालिक ने ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में।
0: इमारत ढहते ही यहाँ अफरा तफरी मच गई, धूल के गुब्बार में पूरे इलाके को घेर लिया।
6: मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लोकल्स की मदद से जो है यहाँ ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ को भी इस वक्त बुला लिया गया है, एनडीआरएफ की भी एक बटालियन जो है, एक टीम जो है वो इस वक्त यहाँ पहुंच गई है, और अभी धीरे धीरे वो यहाँ पे स्पॉट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि कितनी भारी संख्या में जो यहाँ लोकल्स हैं, वो लोकल जो है यहाँ मदद कर रहे हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं। अभी ये बड़ी अभी जो मशीनें हैं, जो कटर्स हैं, हैवी कटर्स हैं, बोल्डर कटर्स हैं, उन्हें भी अभी लेकर के यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो इस वक्त यहाँ आई है। और ये 5 मंजिला इमारत बताई जा रही है, अगर आप तस्वीरों में थोड़ा और क्लैरिटी से देखें यहाँ पर, तो ये देखें आप, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, और ये काफी बड़े इलाके में जो है ये पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर एक बॉयज हॉस्टल था, और उसे बॉयज हॉस्टल में जो है ये पूरा हादसा हुआ है।
0: बिल्डिंग गिरने के बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, कुछ हथौड़े से मलबा हटाने लगे।
4: दिखा दूं किस तरीके से रेस्क्यू जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। ये एक गाड़ी है जो कि बिल्डिंग के पास खड़ी थी, जब बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो उसकी हालत देखिए कि किस तरीके से इस पूरी गाड़ी के ऊपर बिल्डिंग का जो मलबा है वो भरभरा करके गिरा। पूरी गाड़ी जो है वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। अब इसको जेसीबी की मदद से जो है वो यहाँ से हटाया जा रहा है। आप ये समझिए कि जब मैं ये समझाने की कोशिश इसलिए भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये तस्वीरें देखने के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो मलबा, सोचिए उस बिल्डिंग के अंदर कई सारे लोग थे, और उनकी हालत क्या रही होगी जब ये बिल्डिंग पूरी तरीके से कोलैप्स हुई, जब गाड़ी की हालत इस तरीके की है।
0: सत्य निकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास बसा प्रमुख छात्र इलाका है। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं। इलाके में कई छात्र आवास,
6: जेसीबी की अगर बात करें तो यहाँ पे जेसीबी चलाना वो खतरे से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि आखिर कितने लोग फंसे हैं और कौन कौन सी जगह फंसे हैं। अगर जेसीबी से मलबा हटाने के चक्कर में कुछ और लोग जो फंसे हुए हैं, जो शायद इंजर्ड हो, बस उनकी भी जान पर बना सकती है। और इसीलिए जेसीबी का अगर हम देखें तो ज्यादा इस्तेमाल ऐसे सिचुएशंस में नहीं किया जाता। और जो प्रिसाइज हैवी टूल्स होते हैं, जैसे बड़े ड्रिलर्स होते हैं, स्टील कटिंग मशीन्स होती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये पता लग पाए कि कहां कहां लोग फंसे हैं। अभी इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे ये समझ आ गया है कि यहां पर लोग नहीं फंसे हैं, जो बिल्डिंग के बाहर की लोकेशंस हैं, वहां पर अब जेसीबी की कार्रवाई जो है वो शुरू होती हुई दिख रही है। और बिल्डिंग के बाहर जहां गाड़ियों पर जो मलबा गिरा था उनसे अब मलबा हटाना शुरू किया जा रहा है, लेकिन बिल्डिंग जहां पर थी जहां लोग फंसे हुए हैं वहां पर अभी जेसीबी नहीं चलेगी। वहां पर अभी मेटल कटर्स चलेंगे, वहां पर अभी जीपीआर लगाया जाएगा, ये पता लगाया जाएगा कि कहां कहां लोग फंसे हैं, और उसके बाद वहां से मैन्युअली डिग करके ही लोगों को निकालना होगा या फिर हैंड यूजेबल मशीन से ही लोगों को निकालना होगा। अगर आप देखें यहां पे अभी भी प्रशासन को बहुत मुश्किलें हो रही हैं लोगों को समझाने में कि ये जगह खाली कर दे, क्योंकि ये जगह अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कहीं से भी मलबा और भी थोड़ा घिसक सकता है और लोगों को इंजरीज हो सकती है और लोगों को चोट आ सकती है।
0: इस इमारत को लेकर सवाल ये है कि क्या इस बिल्डिंग का नक्शा पास था? 5 मंजिला इमारत बनाने की अगर अनुमति नहीं थी तो इसे रोका क्यों नहीं गया? 40 साल पुरानी इमारत में छात्रों को रहते बेसमेंट में काम की इजाजत कैसे दी गई? अनमोल बाली, अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
3: ये इमारत 50 साल पुरानी बताई जा रही थी, लेकिन इसके बेसमेंट में काम चल रहा था। इसका मालिक आनंद बंसल नाम का शख्स है जो कि गुरुग्राम का रहने वाला है। इस इमारत के नीचे मेडिकल शॉप भी चल रही थी और बताया ये जा रहा है कि इस इमारत में 10 कमरे थे।
0: दिल्ली में हादसों की वजह बनने वाली गैरकानूनी इमारत पर समय रहते लगाम क्यों नहीं लगाई जाती? आखिर हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जाता? दिल्ली के जिस सत्य निकेतन में यह हादसा हुआ वहां बड़ी संख्या में पीजी, रेंटेड रूम और हॉस्टल चलते हैं। यहां पर कितनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हादसे के बाद इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि रेस्क्यू करना मुश्किल हो गया। जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हादसे की जगह पहुंची तो उन्हें घटनास्थल का जायजा लेने के लिए दूसरी इमारत के ऊपर मंजिल का सहारा लेना पड़ा। अगर इलाके की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यहाँ छोटी छोटी गलियां हैं और घनी आबादी के बीच कई बहुमंजिला मकान मौजूद हैं। ऐसे ही एक इमारत गिरने से छात्र दब गए। मलबे में फंसे छात्र ने ये वीडियो बनाया जिसमें दबे हुए छात्र दिखाई दे रहे हैं। वहीं कई मलबे में दबे छात्रों ने फोन कर मदद मांगी। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब दिल्ली में इस तरह का हादसा हुआ हो। राजधानी दिल्ली में कई जगह ऐसे ही पीजी संचालित हो रहे हैं। कई जगह ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन नियमों की अनदेखी रहती है। दिल्ली में नियमों की अनदेखी और प्रशासन की बेरुखी की वजह से पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं। कुछ महीने पहले दिल्ली के मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग ने भयावह रूप ले लिया था और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी।
7: अगर आप नीचे बेसमेंट को, ये क्या है कि हवस है पैसे कमाने की, पीजी ही हो चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकोमोडेट करना, ज्यादा से ज्यादा भर्ती करना, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना, ये जो हवस है। राजेंद्र नगर में बेसमेंट को यूज कर रहे थे, वो हवस वो भी वही है। ये पीजी का भी मसला यही है। और अभी 3 महीने पहले अगर आपको ध्यान हो तो सैदुला जाब में 5 बच्चे इंजीनियरिंग और डॉक्टरी जो कर रहे थे वो मर गए। तो ये दरअसल क्या है कि ये एक तो ये हवस जो बन गई है कि ज्यादा से ज्यादा माल, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हो, चाहे पीजी वाले हो, चाहे जितने भी है, ये किराए पे देने के एक एक डब्बे का कमरे का मकान बना देते हैं, किराए पे दे देते हैं।
0: बेसमेंट की वजह से छात्रों की जान जाते हुए देश ने साल 2024 में देखा, जब ओल्ड राजेंद्र नगर में राउज IAS सर्किल के बेसमेंट में पानी भरने से 3 UPSC छात्रों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया गया। जब इसी साल जून के महीने में आज तक ने वहां जाकर पड़ताल की तो हमें बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लाइब्रेरी मिली।
8: एक लंबे वक्त से ये सिलसिला चलता हुआ चला आ रहा है। आप किसी भी दिल्ली के लोगों से पूछ लीजिए, जब भी वो कोई बिल्डिंग गिराएंगे तुरंत वहां पर दिल्ली पुलिस का कर्मचारी, एमसीडी का कर्मचारी वहां पर आ जाएगा और उसके बाद फिर सेटिंग करके जरिए, लोकल पार्षद के जरिए सेटिंग करके आप 3 मंजिल की जहां इमारत बननी वहां 5 मंजिल बना लीजिए और उसके बाद फिर हादसा होता है तो फिर सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगते हैं। तो जरूरी है सिस्टम में बड़े स्तर पर सुधार की। ओल्ड राजेंद्र नगर का हादसा आपको याद होगा, वहां पर किस तरीके से कोचिंग में यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र मर गए, उसके बाद आज तक की टीम ने वहां खुद जाकर बाकायदा रियलिटी चेक किया, खुद मुझ पर अटैक हुआ लेकिन वहां कोई बदलाव नहीं आया।
3: बदलाव आया होता तो हादसा ही नहीं होता। हादसा हुआ है यानी कि बदलाव नहीं आया है और संकेत है कि आप बदलाव करिए। अगर आप दिल्ली को नहीं बदलेंगे, आप पुराने ढर्रे पर चलते रहेंगे, करप्शन यूं ही चलता रहेगा, दिल्ली बदलेगी भी नहीं और ऐसे ही हादसे होते रहेंगे। हम फिर सवाल पूछेंगे और उन सवालों के बाद फिर से आक्रोश भी पैदा होगा, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा, फिर दिल्ली आगे बढ़ जाएगी, फिर सब पुराने हादसों को भूल जाएंगे, फिर नया हादसा होगा, फिर गुस्सा आएगा, फिर सवाल पूछेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा जो कि इस समय ग्राउंड जीरो पर। सुशांत, अभी की क्या तस्वीर है, क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने आप चूंकि विधायक से भी बात कर रहे थे अनिल शर्मा से, वो कह रहे थे कि रजिस्टर्ड है लगभग 13 रजिस्टर्ड है, यानी कि क्या सिर्फ 13 ही स्टूडेंट रह रहे थे पीजी में वहां पे, या ये नंबर ज्यादा है, क्या पता चलता है कि उस समय एग्जैक्ट कितने स्टूडेंट थे भीतर?
4: हाँ देखिए राजीव, जो विधायक है अनिल शर्मा उनकी तरफ से मानना है कि 13 जो स्टूडेंट थे वो रजिस्टर्ड थे, उसके अलावा लगभग 20 के आसपास का आंकड़ा जो है वो हो सकता है। लेकिन 11 अभी तक रेस्क्यू हुए हैं, 9 जो बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे, 2 जो बिल्डिंग के उस वक्त जब ये हादसा हुआ तो उसके आसपास मौजूद थे और उस दौरान जब ये हादसा हुआ तो उसका हादसे में वो घायल हुए, उनको भी रेस्क्यू किया गया, उनको भी कई चोटें जो है वो लगी है, ट्रॉमा सेंटर में है, वो एडमिट है। इसके अलावा कुछ सफदरजंग के अंदर एडमिट है और उसके अलावा कोई RR हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। लेकिन इस पूरे हादसे के अंदर अगर मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जारी है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात तक या तक कि कल सुबह तक भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल सकता है। एक शख्स अपने परिवार के साथ, परिवार की एक शख्स पवन नाम का लड़का जो कि इस बिल्डिंग में पिछले लगभग 6 या 7 महीने पहले आया था, मोतीलाल नेहरू कॉलेज का स्टूडेंट था, सुबह से उसका फोन नहीं लग रहा, उसके परिवार वाले उसको ढूंढते हुए यहां पर पहुंचे हैं। अब धीरे धीरे करके जब तस्वीर सामने आ रही है हादसे की तो लोग और उनके परिवार वाले जो है वो उनको ढूंढते हुए पहुंच रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि उनका परिवार का जो शख्स कहीं इस बिल्डिंग के अंदर हादसे का शिकार ना हुआ हो उसको ढूंढते पहुंचे। और आपको अब मैं तस्वीरें दिखा दूं कि दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो यहां पर पहुंचे, अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो तस्वीरें जरा आगे की दिखाएं कि किस तरीके से अब दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो यहां पर पहुंचे हैं हादसे की स्थिति का जायजा लेने के लिए, क्योंकि लगभग जो है अगर कहा जाए तो 7 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में, और अभी भी मुख्यमंत्री, दिल्ली की सांसद, दिल्ली के जो विधायक हैं वो एमसीडी के कमिश्नर, एमसीडी के मेयर और सब एक एक करके यहाँ पर पहुंचे हैं और
3: नजर बनी हुई है। आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास हम लौटते हैं। हादसे पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि 3 लोगों की मौत हुई है जबकि 8 वो बता रहे हैं कि अस्पताल में भर्ती हैं जिनका उपचार चल रहा है।
9: हमारे साथ दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर पंकज सिंह हैं। तो सर आप यहां पर पहुंचे हैं, देखा जा रहा है कि तकरीबन 3 लोग हैं उनकी मौत हो गई है, सर क्या है मेडिकल बिहाफ से, आप अगर हमें बता सके हेल्थ बिहाफ से क्या है इस समय की बड़ी जानकारी?
10: देखिए अभी तक से जो मेरे पास जानकारी है 3 की कैजुअल्टी, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो, 8 लोग एडमिट है और उनका इलाज चल रहा है, जो 5 एम्स में है, 1 सफदरजंग में है, 1 प्राइमस में, 1 RR में है और उनकी अभी 12-13 घंटा बाद हम एग्जैक्ट रिपोर्ट आपको दे पाएंगे। और अभी हम जो रेस्क्यू चल रहा है, NDRF की रेस्क्यू कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ और भी लोग हैं उसके अंदर। एक बार हम जितना लोग को रेस्क्यू करके बचा सके, क्योंकि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इस घटना को बयान करना बड़ा मुश्किल होगा। अभी फिलहाल आज का दिन रेस्क्यू पे लगाएंगे, कल से जो एक्शन करना वो करेंगे।
9: पंकज जी कितने जो लोग हैं रेस्क्यू किए गए हैं क्रिटिकल हैं, कितने जो है नॉर्मल है कुछ इसकी जानकारी?
10: मैंने बताया ना जी टोटल 11 थे, 11 में से 3 की कैजुअल्टी हो रखी है, 8 एडमिट हैं, उनकी स्थिति भी 12 घंटे ऑब्जर्वेशन में रहने के बाद वो एग्जैक्ट पिक्चर क्लियर बता पाएंगे।
3: यानी कि जो जिनका उपचार चल रहा है, जो उनकी संख्या 8 है, उनकी हालत गंभीर बनी हुई है, ये दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं। दिल्ली में इमारत के ढहने की न तो ये कोई पहली घटना है न आखिरी। ठीक 2 महीने पहले 8 जुलाई को दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर 16 में एक इमारत गिरी थी। तब 4 मंजिला अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, तब भी 3 लोगों की मौत हुई थी। आपको पता है कि तब क्या दावे थे, तब क्या बातें कही गई थी, तब जिम्मेदार अधिकारियों को की तरफ से क्या क्या कहा गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक बार फिर से इमारत गिर गई। अब सवाल यह है कि इन अधिकारियों को यह इमारतें दिखती क्यों नहीं।
11: दिल्ली के सत्य निकेतन में हादसे के बाद राजधानी में घर बनाने के नियमों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बने हुए घर के नीचे बेसमेंट बनाया जा सकता है, क्या इसके लिए कोई कानूनी अनुमति लेनी होगी, और अगर बिना अनुमति के बेसमेंट बना दिया तो क्या कार्रवाई हो सकती है, ये किसकी जिम्मेदारी थी।
8: दिल्ली के जो मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है, तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा वक्त का हो चुका है, बड़ी बात है कि वो खुद भी यहाँ पर जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको संचालित होते हुए देख रही है, एक बड़ी बात है, तारीफ की बात है। लेकिन यहाँ खड़े होकर वो ये भी देखे कि आसपास कितने अवैध पीजी चल रहे हैं। मैंने कई छात्रों से कुछ देर पहले बात की है, उन पर शिकंजा कसा जाए, अधिकारियों को सख्त ऑर्डर दिया जाए कि खास तौर से जो अवैध पीजी चल रहे हैं, कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, वहां पर क्या

0: दोषी है क्या या नहीं है, किस तरह से सुरक्षा के मानकों का वहाँ अनदेखी की जा रही है, वो तमाम चीजें देखने की जरूरत है, वरना इस तरह के हादसों को रोका जाना काफी मुश्किल होगा। देखिए, ऑन रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस ये कह चुकी है कि 40 से 50 साल ये पुरानी इमारत थी जिसमें पीजी का काम चल रहा था।
1: दिल्ली में इस तरह के हादसे समय समय पर सामने आते रहते हैं। जब हादसा होता है तो MCD समेत संबंधित एजेंसियों पर सवाल उठते हैं।

0: पर सवाल उठता है, लेकिन मामला ठंडा पड़ते ही सब कुछ पहले की तरह होने लगता है, जबकि सिस्टम में कमियों की बात मेयर पद पर बैठे लोग भी कबूलते हैं।
1: चाहते हैं कि बच्चे उसमें बच जाएं। पहले रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट है, सभी जायज आपके इस समय सभी जायज है, बहुत कमियां हैं सिस्टम में, बहुत कमियां मैं मानता हूं, लेकिन पहले अभी रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।
0: दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत इसलिए गिरी क्योंकि उसके बेसमेंट में काम चल रहा था। सवाल ये है कि क्या काम चलने से नींव कमजोर हुई और इमारत गिर गई।
2: ये जरूरी हो जाता है कि कम से कम जो जो जो जहां छात्र रहते हो, जो पीजी है, जो गर्ल्स हॉस्टल है, जो बॉयज हॉस्टल है, जो कोचिंग है, कम से कम वहां पर जो कंसर्न अधिकारी हैं, जो एमसीडी के अधिकारी हैं, वो जाएं, जाकर देखें कि वहां पर छात्र किस तरह से पढ़ाई करते हैं, किस तरह से रहते हैं। वहां पर एनओसी नहीं है, फायर की एनओसी नहीं है, कई जगह पर एमसीडी की एनओसी नहीं है, और धड़ल्ले से अवैध तरीके से वहां पर लोग रह रहे हैं। और बारिश होती है, जरा सी बारिश दिल्ली में हो जाती है तो आप सुनते होंगे कि दिल्ली में बिल्डिंग गिर गई। अगर आग लग जाती है तो उस बिल्डिंग में लोग फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। यहां पर
0: दिल्ली में बेसमेंट बनाने के लिए संबंधित अथॉरिटी से संशोधित बिल्डिंग प्लान की मंजूरी की जरूरत होती है, लेकिन अगर घर पहले बना हो तो उसके नीचे बेसमेंट में काम करने की छूट तो बहुत देखरेख के बाद ही दी जाती है, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ होता नहीं दिखता।
3: पीजी का काम चल रहा
4: है? नहीं, ये पीजी तो बना हुआ था ऑलरेडी, पुरानी बिल्डिंग थी ये, इसमें पीजी तो था। वो पीजी वाले तो लंच करने बच्चे चले गए, संडे का दिन था ना, तो लंच करने दूसरी मैच में चले गए, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता।
5: अपना घूम के एक बार पूरे सत्या में देख लो, देयर विल बी 20-25 सच बिल्डिंग्स जो आज गिरे, एक महीने बाद गिरे, एक साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी। विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई आधा दलाली करता है यहाँ पे, तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन।
6: जितनी भी पीजीज है सब में सीढ़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है और बच्चों का फायदा उठाया जाता है, साउथ कैंपस के सभी बच्चों का।
0: दिल्ली में ऐसे हादसे तब तक होते रहेंगे जब तक अवैध निर्माण पर लगाम नहीं लगती। दिल्ली में 75 लाख इमारतें बताई जाती है। दुर्भाग्य ये है कि चंद इमारतें ही सभी नियमों को पूरा करे हुए बनी है, इसलिए एक्सपर्ट की मांग है कि सरकार बाकी इमारतों को लेकर अभियान चलाए, क्योंकि 40 से 50 साल पुरानी हो चुकी इमारतों की दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या है।
7: जो इस बिल्डिंग का ओनर था, क्या उसको एक दिन के लिए भी, एक मिनट के लिए भी ये सोच नहीं आई कि वहां पे लोग निवासी अभी भी हैं? एटलीस्ट बिल्डिंग को खाली किया जाता। और जो हम बात करते हैं कि जेई आके इंस्पेक्ट कर ले, हमारे जेई बाय द वे कितने एजुकेटेड है इस मामले में कि वो आके को ढंग का इंस्पेक्ट भी करते, वो तो किसी और वजह से वहां पे आते और अपनी वो वजह पूरी करके निकल जाते वहां से। तो ये सारा सिस्टमिक चेंज जो हमें चाहिए विकसित भारत बनाने के लिए, एक सिस्टमिक चेंज की जरूरत है।
8: दिल्ली में पीजी के नाम पर किस तरह से छात्रों को लूटा जा रहा है, उनकी जान को जोखिम में डाला जा रहा है, उसे इस इलाके में रहने वाले एक छात्रा ने खबरदार किया है, बताया कि पीजी चलाने वाले कैसे सारे नियमों को ताक पर रखते हैं और उनका मकसद सिर्फ एक होता है, कमाई करना।
2: हाँ जी, किस तरह की स्थिति है, किस तरह से पीजी चलता है, कितने बेड होते हैं, कितने मकान मालिक का पैसा एक्सपेक्ट करते थे?
9: सर, यहाँ पर जैसे एक पीजी है, एक बिल्डिंग है, वहाँ पर ऑलमोस्ट 5 फ्लोर्स होते हैं हर पीजी पे। एक फ्लोर पे 6 या 7 कमरे होते हैं, एक कमरे में 2 बेड होते हैं। एक बेड का रेंट मिनिमम यहाँ पर 12,000 होता है और उस पीजी का साइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत से घरों में जो किचन का साइज होता है उतना उस पीजी के रूम का साइज होता है, और उसमें 2 बेड होते हैं साथ में, और उस एक बेड का रेंट 12,000 रुपए ये लोग लेते हैं। रेंट का टाइम एकदम एग्जैक्ट चाहिए इनको, खाना बहुत सारे पीजी
2: की मरम्मत कैसी होती है बिल्डिंग की, मारा जैसे
9: बेकार, बहुत बेकार सीलन आई होती है, जो दीवारें होती है उसमें पानी दिख रहा होता है कि बिल्डिंग में सीलन है, रूम्स की कंडीशन उतनी अच्छी।
2: ये जो बिल्डिंग गिरी है आपके बगल में, इसकी भी हालत ऐसी थी?
9: सर, इसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ इसकी हालत कैसी थी, मैंने सिर्फ बाहर से देखा था इस वाली बिल्डिंग को।
2: नीचे बेसमेंट का भी काम चल रहा है?
9: हाँ, नीचे।
2: लेकिन यहाँ जो पीजी चलते हैं, एक कमरे में 2 से 3 बेड और 12,000-13,000।
9: हाँ, इतना ही किराया होता है। बहुत सारे थोड़ा बड़ा साइज का कमरा होगा तो उसमें 3 बेड लगा देते हैं, 3 अलमीरा लगा देते हैं, उनका किराया थोड़ा सा 1,000 रुपए या 2,000 रुपए कम कर देते हैं।
10: और ये बिल्डिंग में 3 तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था, बिल्डिंग हल्की सी बाईं तरफ टिल्टेड थी जो कि खुला एरिया था, और अगर आप देखें जो बालकनी का एरिया है वो भी यूज किया गया था, जो पीछे साइड बालकनी का एरिया होता है वो यूज किया गया था फॉर क्रिएटिंग स्पेस फॉर रूम्स। तो ये भी मतलब मुझे समझ नहीं आता कि यहाँ पे एमसीडी अथॉरिटीज और ये मैप कैसे पास हो जाते हैं और ये बिल्डिंग कैसे कंस्ट्रक्ट हो जाती है, कौन सी अथॉरिटीज इसको अलाउ कर दे।

0: होती हैं, ये इनलीगल कंस्ट्रक्शन क्यों होता है। अभी आपने देखा हादसा होने के बाद मैं देखता हूँ सारी एजेंसीज जो हैं वो बहुत प्रोएक्टिव हो जाती हैं, बट ये सब होने के लिए हादसे का वेट किया जाता है। कि
1: एक बड़ी खबर इस समय आपको देते हैं, एबीवीपी का प्रोटेस्ट देखने को मिला था एमसीडी ऑफिस के बाहर। एबीवीपी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करते हुए दिखे थे, लेकिन इस बीच में खबर यह भी मिल रही है कि एबीवीपी के समर्थक और पुलिस के बीच में भिड़ंत हुई है एमसीडी दफ्तर के बाद। ये एबीवीपी के प्रदर्शन को लेकर बड़ी खबर है, प्रदर्शनकारियों को पुलिसकर्मी वहां से हटाते हुए भगाते हुए दिखाई दिए, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में झड़प भी हुई। हालांकि इसको एक पॉलिटिकल मूव भी बताया जा रहा है, क्योंकि दूसरे चुनाव नजदीक है और एबीवीपी नहीं चाहता कि दिल्ली के इन इलेक्शंस में, डीयू के इलेक्शंस में उसको किसी तरह का कोई नुकसान हो, क्योंकि एनएसयूआई से एक बड़ा मुद्दा बनाएगा। और अब एबीवीपी एमसीडी मतलब दिल्ली की सरकार में भी एमसीडी में भी बीजेपी ही है, तो ऐसे में वो प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे कि किसी तरह से एबीवीपी बनी रहे, इलेक्शन में किसी तरह का नुकसान ना हो। लेकिन अभी एमसीडी के बाहर जब प्रोटेस्ट कर रहे थे दफ्तर के बाहर, तो एबीवीपी के प्रदर्शन पर बड़ी खबर यह है कि पुलिस ने उनको हटाना चाहा, तो प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में भिड़ंत की खबर है, तो झड़प हुई है। आप तस्वीरें देखेंगे, एबीवीपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे आज, उन्होंने खूब नारेबाजी भी की है एमसीडी दफ्तर के बाहर। ये देखिए विरोध प्रदर्शन, ये पोस्टर, ये बैनर लेकर पहुंचे हुए थे एबीवीपी के कार्यकर्ता। एनएसयूआई ने भी बहुत आरोप लगाया आज एबीवीपी पर, और एनएसयूआई का दावा था कि हम सबसे पहले जो है छात्रों की मदद करने के लिए पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाई।
2: भाइयों, दिल्ली प्रशासन की वजह से, भ्रष्ट एमसीडी कमिश्नर की वजह से आज हमने अपने साथियों को खोया है। एबीवीपी इस कमिश्नर की इस्तीफा लेके रहेगी, चाहे इसके लिए रात भर रुकना पड़े।
1: तो ये एबीवीपी की मांग भी आपको समझ में आ गई कि एबीवीपी अब भ्रष्ट कमिश्नर के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है, कि जब तक कमिश्नर का इस्तीफा नहीं होगा, क्योंकि उनकी वजह से उनके साथी छात्रों की जान गई है, और ऐसे में वो चाहते हैं कि एमसीडी कमिश्नर को इस्तीफा देना होगा, वो इस्तीफा देंगे तब हम अपने प्रदर्शन रोकेंगे। मध्य निकेतन इलाके को डीयू साउथ कैंपस के आसपास का एक बड़ा स्टूडेंट हब माना जाता है। ये साउथ पेस्ट दिल्ली में पड़ता है, धौला कुआं, मोतीबाग, आर के पुरम और आनंद निकेतन वाले बेल्ट्स में ये काफी नजदीक भी है, और इसीलिए यहां पर छात्रों से रहने के नाम पर हजारों हजार रुपए लूटे जाते हैं।
3: यानी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि सरकार ये समझे कि जो हमारा देश का जो भविष्य है, जो दूसरे राज्यों से पढ़ाई करने के लिए आते हैं, वो किस तरीके से किन हालात के अंदर पढ़ते हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे, हमारे सारे सारे स्टूडेंट हैं, और सामने ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी, ये मैं जानना चाहूंगा जब ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी उस वक्त आप सब यहाँ मौजूद थे, क्या आपने देखा था?
4: सर आवाज काफी तेज आई थी, तो बाहर निकल के देखा तो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, तो कोई शौक वाली बात नहीं है। आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग सतनिकेतन में अभी गिना सकता हूँ जो गिरने वाली हालत में होंगी। डीयू के पास इतना करोड़ों का बजट रहता है, वो नहीं अगर चाहती तो एक कहीं ना आसपास एरिया बना के कहीं पूरा हॉस्टल एलोकेशन कर देती सारे डीयू के कैंपसेस को, बट पीजी माफिया को कैसे सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट? फिर पीजी माफिया से तो उनको चंदा मिलता है ना।
3: आप रूम का रेंट देते हैं?
4: ये 18,000 रुपए का एक रूम है, ये इतना छोटा रूम है, 18,000
3: रुपए
4: जी
3: पर पर्सन
4: नहीं पूरे रूम।
3: जरा दिखाइए कहाँ पर है, ये समझना होगा कि देखिए ये एक रूम है, अब इस रूम की हालत देखिए, ये महज 10x12 का कमरा है, एक लकड़ी का बेड नजर आएगा, पतला सा गद्दा नजर आएगा, और इस कमरे के अंदर दो लोगों के रहने की जो कॉस्ट है वो 18,000 रुपए, यानी 18,000 रुपए में आपको ये कमरा मिलेगा। और जिस तरीके
1: बिल्डिंग हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको देते हैं, हादसे में अब 4 लोगों की मौत हो गई है, मरने वालों की संख्या बढ़ गई है, ये बड़ी खबर है इस समय, और 4 लोगों की अब मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद जानकारी दी थी कि जो घायल हैं, जो पहले 8 संख्या थी, उनकी हालत अच्छी नहीं है, हालत उनकी खराब ही है, और ऑब्जर्वेशन में लगभग 12 घंटे के लिए तो कम से कम रखा ही गया है। लेकिन अब बड़ी खबर आपको देते हैं, 4 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। संवाददाता सुशांत इस खबर पर जुड़ गए हैं। सुशांत, 4 लोगों की मौत हो गई, जो चौथी मौत हुई है, क्या रिकवर की गई है बॉडी और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हॉस्पिटल में मौत हुई है?
3: इधर पंकज भैया,
1: सुशांत के पास हम जाएंगे क्योंकि उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री हैं, कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत करें। तो ये बड़ी खबर इसे मैं आपको देता हूं, 4 लोगों की मौत हो गई है, और ये चिंताजनक बात है क्योंकि 11 लोगों का रेस्क्यू हुआ था, उसमें से अभी तो 4 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और रात भर इस रेस्क्यू ऑपरेशन के चलने का अनुमान है। खुद स्थानीय विधायक ने जानकारी दी थी कि लगभग 2.5 से 3 मंजिला मलबा तो हटा दी गई। सुशांत हमारे साथ जुड़ गए। सुशांत, ये जो चौथी मौत हुई हॉस्पिटल में हुई है, रिकवर की गई है बॉडी?
3: हाँ, देखिए इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, जो कि यहाँ पहुंचे थे। 4 कैजुअलिटीज हुई हैं, ये 3 थी डेथ वो हॉस्पिटल में हुई थी, ये चौथी डेथ जो कंफर्म हुई है वो भी क्या हॉस्पिटल में हुई, और अभी कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और अभी कितने लोगों की उम्मीद है?
5: देखिए टोटल 12 है, 12 में से 4 की कैजुअलिटी हो गई है, 8 का इलाज चल रहा है और 5 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में है, 1 सफदरजंग में है, 1 हॉस्पिटल पार्क्स में है और 1 आर हॉस्पिटल में है, उनका इलाज चल रहा है। अभी इस टू अर्ली, थोड़ा सा एक बार और 12 घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद हम आपको फीडबैक दे पाएंगे।
3: ये चौथी जो कैजुअल्टी हुई, ये भी हॉस्पिटल में ही हुई है या फिर यहीं पर ही है?
5: यहीं पे हो गई थी डॉक्टर, बट वी आर ट्राइंग द बेस्ट, हमारे दिल्ली गवर्नमेंट डॉक्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं काम करने के लिए, यहीं हो गई थी बट उसकी डिक्लेरेशन वहां जाके हॉस्पिटल में हुई है।
3: अभी फिलहाल कितने लोग और अंदर हो सकते हैं फिलहाल?
5: देखिए जैसे ही यहाँ के लोगों से बातचीत हुई, लोग समझने की कोशिश की है, क्योंकि आज संडे का दिन था और बारिश हो रही थी तो लोग कम थे, लेकिन मुझे लगता है कि 4-5 लोग अंदर हो सकते हैं और हम ये रेस्क्यू ये कर रहे हैं कि उनको बचाया जा सके और उनका इलाज अच्छे से कर सके।
3: लेकिन एक बड़ी लापरवाही, दिल्ली के अंदर ये पहला हादसा नहीं है, मालवीय नगर, रोहिणी, उससे अलावा पालम, एक और हादसा दिल्ली के अंदर, कब इस पर लगाम लगेगी?
5: देखिए मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूं कि ऐसी किसी भी लापरवाही को बख्शा नहीं जाएगा। ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना का हमारे गृहमंत्री जी ने भी निंदा की है, हमारे मुख्यमंत्री ने भी की है और मैं आपको कहना चाहता हूं कि दिल्ली गवर्नमेंट आज जितने लोग को बचा सके उसके ऊपर लगी हुई है, रेस्क्यू करने पर लगी हुई है, हॉस्पिटल लोगों को अच्छा इलाज मिल सके उस पर लगी है। कल से जो भी नेगलिजेंसी रही है उसको बख्शा नहीं है।
3: एक आखिरी सवाल, जो लोग अभी हॉस्पिटल में हैं उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या कंडीशन है?
5: मैंने आपसे भी कहा कि उनका इलाज चल रहा है और ऑब्जर्वेशंस में है, ट्रीटमेंट चल रही है, अभी 10-12 घंटे के बाद एक पिक्चर क्लियर होकर सामने आएगी।
3: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, इनका साफ तौर पर कहना है कि 4 अब तक इस पूरे हादसे के अंदर लोगों की जान गई है, बाकी जो लोग हैं उनका इलाज जो है वो फिलहाल यहाँ पर चल रहा है ट्रॉमा सेंटर के अंदर।
1: सुशांत ये भी बताएं कि क्या, चूंकि वहाँ लगभग 13 लोग जो कि विधायक कह रहे थे कि वो रजिस्टर्ड है, इसके अलावा तो वहाँ काम भी तो चल रहा था खुदाई का, तो कितने मजदूर काम कर रहे थे, वो वहाँ उस समय थे जब बिल्डिंग गिरी या नहीं, क्या इस बारे में कोई जानकारी क्लैरिटी है?
3: देखिए जो हमारी बात हुई थी उसमें एक मजदूर वो कंफर्म हुआ था जिसकी डेथ हुई है, क्योंकि स्थानीय विधायक ने भी ये माना था कि एक मजदूर जो था, क्योंकि 1 बजे के आसपास ये पूरी घटना है, उस वक्त काफी सारे जो मजदूर अंदर लगे हुए थे वो खाना खाने के लिए बाहर गए थे क्योंकि लंच टाइम था, और उसके बाद जब ये उनमें से कुछ मजदूर अंदर भी थे, मैंने पहले भी आपको बताया था जब इस तरीके का कंस्ट्रक्शन या फिर कोई रिनोवेशन का काम चल रहा होता है उस दौरान कुछ मजदूर खाना लेने के लिए बाहर जाते हैं, कुछ अंदर ही रहते हैं, उनमें से जो व्यक्ति अंदर मौजूद था मजदूर उसकी एक जान गई है, एक जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहा था उसकी डेथ कन्फर्म हुई है, बाकी स्टूडेंट्स जो 3 है वो स्टूडेंट्स कन्फर्म हुए हैं। अभी और जो लोग जिनका इलाज अभी दिल्ली के सफदरजंग, आरआर हॉस्पिटल और एम्स ट्रॉमा सेंटर के अंदर चल रहा है उनकी स्थिति पर भी स्वास्थ्य मंत्री ने बताया।
1: सुशांत आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे, लेकिन 12 लोगों का कुल रेस्क्यू हुआ, उनमें से 4 लोगों की जान चली गई है, स्वास्थ्य मंत्री ने खुद इस बात की जानकारी दी है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एक एक अपडेट आज तक पर आपको मिलेगा, फिलहाल रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: स्टे इन द स्पा स्टेट ऑफ माइंड विद द कोलर स्पा एट होम। What your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
9: Shabam! Ek to ek. Ishram.

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
3: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
4: तो सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
2: मतलब
4: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
3: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
4: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
4: जेके वॉल मैक्स
2: बेस्ट पेंट।
4: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट। जेके मैक्स पेंट खुशियों के रंग।
5: देखे जन्म पहला पहला कदम।
6: हैवान की कहानी में हर किरदार का अपना रिश्ता है, उसमें जुड़े होते हैं आपके सपने, आपकी पसंद और आपकी कहानी। इसलिए घर के लिए चुनिए सिर्फ E3। The E3 Group, India's leading manufacturer of interior and exterior products. E3 Group celebrates the release of Hewan on the 11th of September.
7: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।

बारा हजर सत्यनिकेतन इलाके में 5 मंजिला इमारत गिरी, अब तक 4 लोगों की मौत, मरने वालों में 1 छात्र और 1 मजदूर शामिल, मलबे में कई लोग दबे। दिल्ली में इमारत गिरने के बाद राहत और बचाव का काम जारी, एम्स ट्रॉमा सेंटर और आर अस्पताल में घायलों का इलाज, बिल्डिंग में चल रहा था पीजी हॉस्टल। दिल्ली हादसे पर प्रधानमंत्री ने जताई संवेदना, गोवा में मौजूद अमित शाह ने भी रखी नजर, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा नहीं बचेगा कोई गुनहगार। दिल्ली गैस आरसीसी में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को लेकर विपक्ष के सवालों पर नितिन नवीन का तंज, कहा प्रधानमंत्री ने कल नाराज फूफाओं को होम्योपैथी की दवा दी लेकिन इसका असर एलोपैथी वाली हाई एंटीबायोटिक जैसा हुआ। बिहार में उफान पर गंगा, 11 जिलों के 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, राजधानी पटना से लेकर भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, पानी पानी।

0: बिल्डिंग हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको देते हैं। इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है और कुल 12 लोगों का रेस्क्यू किया गया था, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको देते हैं। साथ साथ आपको बताते हैं कि जो 8 लोग इस समय घायल हैं, जिनका दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में आर हॉस्पिटल सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा है, उनकी हालत भी बहुत अच्छी नहीं है, उनकी हालत भी गंभीर ही बताई जा रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने खुद इस बात की जानकारी दी कि मिनिमम 12 घंटे तो ऑब्जर्वेशन में वो रखे ही जाने हैं, ऐसी उनकी सिचुएशन है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि उनकी हालत कैसी है। लेकिन ये 12 घंटे ऑब्जर्वेशन का अर्थ ही यही है कि उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कुछ घंटे और रेस्क्यू ऑपरेशन के चलने की संभावना है। अनुमान उन्होंने, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने ये जताया है कि 5 से 6 लोग अभी और अंदर फंसे हो सकते हैं, संख्या थोड़ा सा और ज़्यादा हो सकती है, इसके आसपास ही लोग अंदर फंसे हुए हो सकते हैं और उनको निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। आज का दिन राहत और बचाव का और कल का दिन एक्शन का दिन होगा, ये भी उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा कि जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, खासतौर पर आनंद बंसल को, जो कि इस बिल्डिंग का मालिक है और इस घटना के बाद से ही वो फरार बताया जा रहा है। अभी मौत का आंकड़ा 4 है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, 2 NDRF की टीमें काम कर रहे हैं, लगभग 70 जवान इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन में वहां मलबे को हटा रहे हैं, उस कंक्रीट को लगातार काट कर भीतर लोगों को ढूंढ रहे हैं, मलबे को हटा रहे हैं। और अब आगे देखिए बारिश का आफतकाल, श्वेता सिंह के साथ।
1: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। यूं तो मॉनसून की विदाई का समय आ गया है, लेकिन बाढ़ बारिश से कई राज्यों के हालात खतरे के निशान से ऊपर के बने हुए हैं। बिहार में उफनती नदियां लाखों लोगों के सामने जीवन का संकट खड़ा कर रही हैं, तो यूपी में 2 दर्जन से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में है। मध्य प्रदेश में मंदाकिनी और नर्मदा का बढ़ता जलस्तर अलग चुनौती पेश कर रहा है, तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई गांव अब भी लगातार मूसलाधार बरसात और लैंडस्लाइड से त्रस्त हैं। मौसम का मिजाज संकेत दे रहा है कि आने वाले दिन अभी मुश्किलों भरे बने रहेंगे।

0: राजधानी में बारिश से कहीं राहत तो कहीं आफत है।
1: कल भी दिल्ली के कई इलाकों के अंदर जबरदस्त बारिश हुई थी और उसके बाद जल भराव भी जो है वो देखने को मिला था।
2: दिल्ली में भी हमारा ऑरेंज अलर्ट दे रखा है, कल भी हैवी रेनफॉल हुआ, आज भी जहां हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है।
0: बिहार में डूबे घाट घर, उफान पर नदियां, बाढ़ से त्राही माम।
1: जो घाट है पटना यूनिवर्सिटी के सामने कह लीजिए या फिर आगे पीएमसीएच दिखता है दूर तक, जहां तक हमारे सहयोगी नदीम कैमरे की नजर में दिखा सके, वो सारा जो मंडप बना हुआ है जब गंगा आरती जहां होती रही सामान्य दिनों में, वो सब कुछ डूब चुका है। और ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि गंगा ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है।
0: यूपी के 24 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में, वाराणसी प्रयागराज से लेकर बलिया चित्रकूट तक हाहाकार।
3: गंगा के जल स्तर ने न सिर्फ प्रयागराज बल्कि वाराणसी में भी प्रभावित कर दिया है उन इलाकों को जो गंगा के किनारे हैं, चाहे वो दशाश्वमेध घाट हो, हरिश्चंद्र घाट हो या मणिकर्णिका हो। ये गंगा मंदिर है, ये दशाश्वमेध तीर्थ क्षेत्र का, और ये पूरा ये यहाँ तक सीढ़ियों तक पानी आया हुआ है।
0: मध्य प्रदेश में नर्मदा, मंदाकिनी, बेतवा रौद्र रूप में, कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त।
4: मंदाकिनी उफान पर है, मंदाकिनी का रौद्र रूप देखने को मिला है और अब आलम यह है कि यहां पर लोगों के घरों में केवल मलबा दिखाई दे रहा है।
0: हिमाचल उत्तराखंड में जारी है सैलाब का सितम, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड से मुश्किल हालात। मॉनसून की विदाई से पहले सितंबर की बारिश पूरे जोरों पर है। जगह जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो मानवीय संकट की कहानी तो बता ही रही है, सिस्टम की भी पोल खोलती है। जरा देखिए जरा सी चूक कैसे जानलेवा हो सकती है। ये बाइक सवार भाग्यशाली था जो जान बच गई। कहीं प्रचंड वेग से बहता पानी इतना विकराल रूप धारण कर गया कि दुकान की छत के ऊपर से फ्लो करने लगा, तो कहीं जान बचाने के लिए सैलाब से जूझते इंसानों की मुश्किलें नजर आई। पानी की लहरों में इंसान तिनके की तरफ बह गए, तो कहीं ऐसा भी हुआ कि पानी के तेज बहाव में आस्था का केंद्र मंदिर भी जल समाधि ले गया। इस समय लगभग आधा भारत बाढ़ बारिश से जूझ रहा है, उफनती नदियों से खतरे के संकेत मिल रहे हैं। अलग अलग राज्यों के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इंसान, जानवर, खेत, मकान, दुकान, सड़क सब पानी के आगे बेबस है।
5: मॉनसून की लगातार बरसात और नेपाल की तरफ से जो बेहिसाब पानी आया है उसने बिहार के लगभग 16 जिलों में हाहाकार मचा दिया है। गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।
6: उसके बाद चारों तरफ जो है गंगा का पानी इस गांव में प्रवेश कर चुका है और इस गांव के साथ साथ अन्य अगल बगल के गांव भी जो हैं वो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं।
7: जो मरता है उसको मरने दीजिए, कोई देखने वाला नहीं है। अब
8: चलने फिरने बहुत दिक्कत हो रहा है, रोड टूट गया है, खाने पीने में दिक्कत हो रहा है, जाने उने में हो रहा है।
0: बिहार में बाढ़ का खतरा अब और गहरा गया है, एक दो नहीं 8 जिले अलर्ट पर हैं। पटना से लेकर भागलपुर और छपरा तक गंगा का बढ़ता जलस्तर लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। गंगा, गंडक और कोसी तीनों नदियां उफान पर हैं और लगातार बढ़ता पानी अब गांव और शहरों की तरफ बढ़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि अगले 24 घंटे बिहार के लिए बेहद भारी साबित हो सकते हैं।
9: पानी कब निकलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है सर। पानी जब फड़का खुलेगा उसके बाद ही पानी निकल सकता है, बीच कोई उपाय नहीं है पानी निकलने का। पानी आ रहा है लेकिन पानी जा कहाँ रहा है, पानी तो इसी में बंद है।
10: सरकार
11: कोई मदद ना, कोई देखे आवे ना करे कि दो गले कि भांस गले, मदद कब चीके।
10: पटना में अभी गंगा का पानी घाटों तक पहुंचा है। कई घाट जलमग्न हो चुके हैं, लेकिन अगर जलस्तर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो घाटों के बाद पानी रिहायशी इलाकों का रुख कर सकता है। अब सवाल यह है कि क्या पटना में पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा? क्या पटना में 2016 जैसी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है? पटना का ये वो इलाका है जहां लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। फिलहाल पटना के दियारा का इलाका पूरी तरह से बाढ़ में डूब चुका है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब नजर आ रहा है और इस सैलाब के बीच ही लोगों को बचाने की कोशिश भी चल रही है।
1: इस तरह गंगा का पानी पटना साहिब का जो इलाका है उसके गंगा किनारे वाले पूरे इलाके में अंदर जा चुका है। और जेपी मरीन ड्राइव से जब आप उतरते हैं नीचे की तरफ तो जो सड़क आगे की तरफ निकल जाती है, निचली सड़क, उस पूरी सड़क पे अब लोग जो देखिए कैसे प्रभावित हैं, चूंकि वो सड़क अब दिख नहीं रही है और उस रास्ते को भी बंद कर दिया गया है। एहतियातन प्रशासन ने वहां पर जाने पर रोक लगा रखी है, लेकिन तमाम घर जो हैं पटना सिटी के इलाके में वो डूब चुके हैं।
10: यहां हर तरफ पानी ही पानी है और हर कोई राहत के इंतजार में है। एसडीआरएफ की टीम बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है।
11: लोग एसडीआरएफ की टीम के साथ इस इलाके में आए हैं और खबर है कि यहाँ एक युवक डूब गया है, उसकी तलाश की जा रही है। और पूरा इलाका जो है ये मानस का, ये पूरी तरह से जलमग्न है और पूरा इलाका देखिए, ये घर जो है, एक वक्त में यहाँ पे गाड़ियाँ चलती थी लेकिन यहाँ अब जो है नदी का पानी है और पूरा इलाका अगर देखे तो डूब चुका है।
10: जिन इलाकों में यहाँ सड़कें थी वहाँ पानी ही पानी है, जहाँ गाड़ियाँ चलती थी वहाँ अब नावें चल रही हैं। बिजली के ऊंचे ऊंचे खंभे भी सैलाब में डूबे हुए हैं।
11: ये देखिए बिजली का पोल है और ये सड़क है और इसी सड़क पर हम लोग नाव से चल रहे हैं क्योंकि ये पूरा जो सड़क है वो डूब चुका है। और पूरा जो दियारा का इलाका देखिए अभी गंगा नदी के आगोश में है।
12: मेरे चाचा हुए जो वहाँ से देखिए यहाँ पे घर है, यहीं पे रहते थे लेकिन पुराना मकान में गए थे, उसी के क्रम में यहाँ रहे थे। तीव्र गति के कारण, पानी के बहाव के कारण, मतलब कि यहाँ पे डूब गए। जो कि सरकार से निवेदन करते हैं, जो भी कल माननीय मंत्री चाचा श्री राम कृपाल यादव
11: कृपाल जी कल यहाँ पहुँचे थे,
12: न आए थे दियारा में, हम भी उनके साथ थे। तो जल्द से जल्द यही गंगा मैया से अनुरोध है कि जल्द से जल्द बॉडी मिले।
10: ये हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीर है। गंगा के किनारे बसा पटना शहर डूबा हुआ है, सब जगह पानी ही पानी है। हाईवे नजर नहीं आ रहे हैं, गांव नहीं दिख रहे हैं, घर नहीं दिख रहे हैं, हर तरफ बर्बादी की कहानी है।
13: ज्यादा परेशानी है सर, कहीं आने जाने का कोई सुविधा नहीं है। अब जो जहाँ है वही स्थगित हो गया है। कोई ऐसा इमरजेंसी है तो बहुत समस्या है,
14: सब कुछ बंद है। अपराधी के तो अपराध करने पर सजा होता है, हमने कैसा ही सजा, दूरा पर से उतरना मुश्किल है। दूरा पर से उतरा ही में डूब गया है, देखिए दूरा पर से उतरला पर से डूबा।
10: कहा जा रहा है कि इस साल बाढ़ का 10 साल का रिकॉर्ड टूट सकता है। पटना के घाटों के किनारे गंगा नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है।
1: पटना में गंगा जब खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं तो क्या तस्वीर है पटना के अलग अलग घाटों पे, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए जो तस्वीरें निकल करके आ रही हैं, जो पूरा घाट का इलाका है पटना के किनारे का, वो पूरा स्ट्रेच इस वक्त गंगा नदी के पानी के अंदर जा चुका है। अमूमन इस पाथवे पे लोग सुबह के समय या शाम के समय वॉक करते हैं और इससे सटी हुई सीढ़ियां हैं जहां पर आरती का आयोजन और सब कुछ होता है। ये कृष्णा घाट है पटना का, जहां की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। और देखिए कृष्णा घाट का बोर्ड अब लगभग डूबने की स्थिति में है।
10: पटना में ऐसे हालात आज से 10 साल पहले 2016 में बने थे और अभी पटना में गंगा का जलस्तर 2016 के लेवल से बस कुछ ही सेंटीमीटर नीचे है। ये बहुत हद तक संभव है कि आने वाले दिनों में गंगा नदी उस जलस्तर को पार कर जाए। पटना के पास पुनपुन नदी का पानी भी अब खतरे के निशान को पार कर गया है।
15: रेलवे का जो दो ब्रिज है इस पुनपुन नदी में, वो जिसमें से एक ब्रिज डूब चुका है, जिसके कारण जो है पटना से गया लाइन जो है सिर्फ एक ही लाइन पर जो है अप डाउन की गाड़ियां चल रही है, जिसके कारण ट्रेनें रद्द हैं।
10: पुनपुन बाजार तक पानी पहुंच गया है और ऐसा पहली बार हुआ है। यहां रहने वाले लोग हैरान हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है।
15: इलाका देखिए पूरी तरह से जो है पुनपुन नदी से सटा हुआ निचला इलाका है पुनपुन बाजार का, जहां रौनक हुआ करती थी वहां अब जो है पानी ही पानी है और पूरा इलाका देखिए पूरी तरह से जो है डूब चुका है। जो
10: बिहार में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, बिहार सरकार ने 8 जिलों को अलर्ट पर रखा हुआ है। पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद बाढ़ के अलर्ट पर हैं। वैशाली के राघोपुर में भी बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। राघोपुर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे दियारा इलाके में मुश्किलें बढ़ी हैं। गांव से आने जाने वाले रास्ते पानी में डूब गए हैं। लोग जान माल बचाने के लिए जरूरी सामान लेकर गांव छोड़कर निकल रहे हैं। और ये है बेगूसराय। यहाँ 3 गांवों में बाढ़ की विभीषिका दिख रही है। ये जलमग्न गांव बेगूसराय जिले के मटिहानी प्रखंड के बलहपुर, महेंद्रपुर और सिंहपुर है। 3 गांव की आबादी करीब 8,000 है और ये गांव गंगा का जलस्तर बढ़ने से पिछले 3 दिनों से जलमग्न हो गए हैं। सड़कों पर गांव के प्रवेश के रास्ते के पास ही 2 से 3 फीट तक का पानी तेज बहाव के साथ बह रहा है। गांव के अंदर घरों में पानी भर गया है।
16: ये रास्ता जो है महेंद्रपुर, बलहपुर, सिंहपुर को जोड़ती है और इस सड़क पर अभी घुटना भर पानी है, लेकिन इसकी धार आप देख सकते हैं और जैसे जैसे गांव की तरफ लोग जाते हैं सड़कों पर पानी कमर भर हो जा रहा है, घरों के अंदर पानी गया है। लोग जान जोखिम में डालकर सड़कों से पैदल यात्रा भी कर रहे हैं, कई घरों को लोगों ने खाली भी कर दिया है।
10: ये हाल है बिहार के भागलपुर और उसके आसपास के इलाकों का।
6: पिछले रात से ही इस नेशनल हाईवे पे भी जो है वो गंगा का पानी चढ़ चुका है और तकरीबन इस वक्त जब हम यहाँ पर मौजूद हैं तो तकरीबन 1 फीट के आसपास जो है ये पानी नेशनल हाईवे पे चढ़ चुका है और चारों तरफ इधर आप देखिए किस तरीके से हाईवे के हालात हो गए हैं। हालांकि अभी भी लोग इस सड़क मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि अभी भी पानी तो बढ़ना शुरू हुआ है और अगले 24-48 घंटे में जो हाईवे पे पानी है वो और ज़्यादा उसका जलस्तर बढ़ेगा। कुछ लोगों से बात करते हैं, ये बताइए कब से पानी बढ़ना शुरू हुआ हाईवे पे?
17: कल से
6: उससे पहले हाईवे पे नहीं चढ़ा था इस पे। तो फिर कितना मुश्किल हो रहा है इस तरीके से, मतलब पानी पूरा चढ़ गया था, मतलब गाँव वाँव में भी चला गया होगा पानी,
17: पूरा गाँव घर डूब गया।
10: गंगा किनारे बने पुराने मकान और मंदिर गंगा की तेज धार के सामने बेबस हैं। नौगछिया का हाल तो और भी बुरा है, चारों तरफ से कोसी में आए बाढ़ से घिरा है। करीब 20 दिनों से पूरा इलाका जलमग्न है। बाढ़ का पानी घरों के अंदर तक पहुंच चुका है। 1500 से ज्यादा लोगों के घर प्रभावित हैं, जबकि 700 से अधिक परिवार बाढ़ की मार झेल रहे हैं। लोगों के लिए ये सिर्फ पानी नहीं है, ये कई दिनों से चल रही वो मुसीबत है जिसने घर, रोजी रोटी और सामान्य जिंदगी सब कुछ प्रभावित किया है। बिहार के खगड़िया में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जलस्तर बढ़ने से गोगरी और परबत्ता प्रखंड की 1 दर्जन से ज्यादा पंचायतें पहले ही बाढ़ की चपेट में थी। अब खगड़िया सदर में भी पानी फैल गया है। कुल मिलाकर बिहार के लिए आने वाले दिनों में हालात और भी कठिन होने वाले हैं, क्योंकि अभी तो गंगा किनारे बसे जिलों में खतरा है, लेकिन आगे बिहार में और भी नदियां उफान पर हैं, यानी पटना से लेकर बेगूसराय, वैशाली और भागलपुर तक बाढ़ का दायरा बढ़ता जा रहा है।
5: बिहार की ही तरह उत्तर प्रदेश में भी लगातार बरसात और बांधों से छोड़े जा रहे पानी के कारण कई जिले बाढ़ का संकट झेल रहे हैं। गंगा, यमुना, मंदाकिनी, टोंस, बेलन, सरयू, घाघरा और शारदा, इनके समेत कई नदियां उफान पर हैं। सैकड़ों गांवों का संपर्क बाकी इलाकों से टूट गया है, फसलें जलमग्न हो गई।
18: रोड हुआ करता था, पर पानी की वजह से सारे रोड पूरी तरीके से डूब चुके।
19: अगर अब बढ़ेगा तो दुर्घटना है।
20: यहाँ पर बहुत ज्यादा ही पानी है, जैसे लग रहा है कि पानी और बहुत आगे ही आएगा। दिन पर दिन पानी की बाढ़ बहुत तेज बढ़ती जा रही है।
21: घाटों से जो है कि एक दूसरे से संपर्क खत्म हो गया है।
22: यहाँ बहुत ज्यादा बाढ़ चल रही है, बहुत सारा यहाँ से नुकसान हो गया। बहुत ज्यादा बाढ़ से लोगों को निकलने में आने जाने में समस्या हो रही है।
23: ये उत्तर प्रदेश में तबाही की तस्वीर है, जहां आसमान से बरस रहा पानी और जमीन पर उपनती नदियां मिलकर कहर बरपा रही। कहीं गांव पानी में डूबे हैं, कहीं शहर की सड़कों पर सैलाब है, कहीं घरों में पानी घुस चुका है, तो कहीं तेज बहाव ने रास्तों को ही निगल लिया है। गंगा, यमुना, मंदाकिनी, वरुणा, कोसी, पांडव नदी, हर तरफ पानी का रौद्र रूप है और उसके आगे बेबस नजर आ रही है इंसानी जिंदगी। उत्तर प्रदेश में बाढ़ के हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा असर प्रयागराज में दिखाई दे रहा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि फिलहाल दोनों नदियों ने खतरे के निशान को पार नहीं किया है, लेकिन बाढ़ का पानी अब रिहायशी इलाकों और सड़कों तक पहुंचने लगा है। प्रयागराज के छोटा बघाड़ा इलाके से लेकर नाग वासुकी मंदिर तक जाने वाली सड़क पर पानी भर चुका है। कई जगहों पर सड़क और आसपास के इलाके पूरी तरह पानी में डूबे नजर आ रहे हैं।
24: जो पानी है वो धीरे धीरे अब रिहायशी इलाकों में घुसने भी लगा है। रिहायशी इलाके जो गंगा के किनारे थे, ये जो आप देख रहे हैं ये आम दिनों में ये सड़क है, यहाँ से फर्राटा भरती हुई गाड़ियां दिखाई पड़ती हैं। ये नागवासुकी का ये सड़क है, नागवासुकी ऐतिहासिक मंदिर है और यहाँ से अमूमन लोग आते जाते हैं, लेकिन पानी यहाँ तक पहुंच चुका है। जो सड़क के किनारे जो मकान बने हुए वहां तक पानी पहुंच चुका है और लोगों के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है।
23: हालात को देखते हुए जल पुलिस की टीमें भी लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। संगम क्षेत्र में भी पानी तेजी से फैल रहा है और कई रास्ते पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। संगम क्षेत्र में बाढ़ के हालात को देखते हुए नावों का संचालन भी फिलहाल बंद कर दिया गया है।
25: पानी बाढ़ की वजह से तो पानी बढ़ ही रहा है और लग रहा आने वाले समय में और बढ़ेगा। मूर्तियां लगभग ऊपर तक आ गया, मूर्ति डूबने के कगार के आसपास है।
26: जल स्तर बढ़ता है तो कम से कम इस रोड से सैकड़ों गांव का आना जाना रहता है। दुधिया से लेकर लेबर से लेकर नौकरी वाले तक के रोजाना मर्रा यही रास्ते से आते जाते हैं।
23: प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए भी पूरी तैयारी कर रखी है। खास तौर पर उन रिहायशी इलाकों पर नजर रखी जा रही है जहां पानी पहुंचने का खतरा ज्यादा है।
27: बहुत ज्यादा गंगा का पानी बढ़ रहा है। ये मंदिर भी डूब गए, हनुमान मंदिर है संकट मोचन, और बहुत सारे घर डूब गए हैं, झोपड़ी उपड़ी सब डूब गए हैं। यहाँ का निकलने में तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, गाड़ी उड़ी और बहुत सारा दर्शन भी नहीं हो पा रहा इस समय संकट मोचन का।
28: किसी को अचानक कुछ दिक्कत हो गई, बीमारी हो गई या कोई बीमार पड़ गया, कुछ भी हो गई, तो अब उसको ले जाना है इधर से, अब पास में हॉस्पिटल है तो वो 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर घूम के तब जाएगा। तब तक आदमी क्या हो जाए क्या नहीं, हाँ कोई पता नहीं है।
23: बाढ़ का असर सिर्फ सड़कों और रिहायशी इलाकों तक नहीं है। प्रयागराज के दारागंज समेत शहर के लगभग सभी प्रमुख घाट इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जो अंतिम संस्कार के लिए घाटों पर पहुंच रहे हैं।
24: ये ऐतिहासिक नागवासुकी मंदिर है। ये नागवासुकी मंदिर जो कभी भी प्रयागराज आया उसने इस मंदिर के दर्शन किए तो वो समझा सकते हैं कि देखिए किस तरीके से जो सीढ़ियां थी, ये पूरा करीब 25 से 30 सीढ़ियां होती हैं, लेकिन सारी सीढ़ियां डूब चुकी हैं, यानी कि पूरा जलस्तर जो है वो बढ़ करके नागवासुकी मंदिर के एक जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरा डूब चुका है।
23: प्रयागराज में गंगा और यमुना का बढ़ता जलस्तर सिर्फ नदी के किनारे तक सीमित नहीं है, पानी अब शहर की सड़कों और रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहा है। लगातार हो रही बारिश का असर अब वाराणसी में साफ दिखाई दे रहा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से एक के बाद एक घाट पानी में डूबते जा रहे हैं। गंगा का पानी घाटों से निकलकर गलियों तक पहुंच चुका है। इन गलियों से होकर लोग पूजा पाठ और अंतिम संस्कार के लिए घाटों तक पहुंचते थे, लेकिन अब रास्ते में ही पानी भर गया है।
24: जिस घाट पर दिन रात लोगों के अंतिम संस्कार होते हैं वो घाट भी डूब चुका है। और ये जो किनारे जो आप बोट्स नजर आ रहे हैं ये नॉर्मल घाट होते थे, यहाँ पर लोग आम दिनों में आते थे अपने अंतिम संस्कार के क्रिया करने के लिए, और जिसकी वजह से आप ये देखें मंदिर पूरा डूबा हुआ है, सिर्फ शिखर दिख रहा है।
23: वाराणसी में सिर्फ गंगा ही नहीं वरुणा नदी भी उफान पर है। वरुणा का पानी कई इलाकों में घुस चुका है। सलारपुर में हालात ऐसे हैं कि कई परिवार अपने घरों पर ताला लगाकर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं।
0: ये लगभग अभी 5-6 बार गंगा बढ़ेंगी घटेंगी, ये सिलसिला चलेगा। जब पितृ पक्ष आएगा, पितृ पक्ष के बाद ये बैक होंगी।
24: ये मान्यता है
0: और सदियों से चला जा रहा है ये।
24: आप लोग भी इसका अभ्यस्त हो गए हैं कि बस ऐसे?
0: हम लोग का अनुभव है, हर साल का अनुभव है। 5 बार गंगा बढ़ती है, 5 बार बैक होती है।
24: अभी कितनी बार बढ़ गई?
0: ये पहली बार हुई है।
24: अच्छा, अभी 4 बार बाकी?
0: अभी 4 बार बाकी है। 4 बार में हमको आशा है कि रोड तक जाएंगी गंगा। अच्छा, अभी और बढ़ने का आशा है। अभी तो बैक हो रही है, फिर आगे बढ़ेंगी वो।
23: बाढ़ से बचने के लिए 80 घाट के किनारे रहने वाले लोगों ने भी अपनी तरफ से इंतजाम शुरू कर दिए हैं। दुकानों और मकानों के दरवाजों पर ईंट, बालू और सीमेंट से मोटी दीवारें खड़ी की जा रही हैं, ताकि पानी घर और दुकान के अंदर दाखिल न हो सके।
2: हमारी क्या है, 5 तल्ले की शॉप है। अब पूरा शॉप खाली करने में समझिए साल भर लग जाएगा, तो उसमें हम लोग को ये मोटी दीवार 9 इंची की दीवार खड़ी करानी पड़ती है, और उसके ऊपर ये लोहे का चूरा लगता है ताकि पानी भी वाटरप्रूफ हो जाए और पानी अंदर जाए ना।
23: जिन घाटों पर बैठकर लोग पूजा करते थे वहीं अब पानी का कब्जा है। दशाश्वमेध, मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट समेत कई घाट पूरी तरह जलमग्न है। बनारस में गंगा का पानी सिर्फ घाटों तक नहीं रहा बल्कि अब गलियों, दुकानों और घरों तक पहुंच चुका है। और यही तस्वीर बताती है कि इस वक्त वाराणसी बाढ़ की मार से कितना परेशान है। चित्रकूट में मंदाकिनी का पानी अब धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन पानी के उतरते ही बाढ़ की वो तस्वीर सामने आ रही है जिसे देख कर लोग सहम गए हैं। हर तरफ सिर्फ बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। मंदाकिनी ने इस बार ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि 23 साल का रिकॉर्ड टूट गया। चित्रकूट के एक दो नहीं बल्कि 36 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए।
3: बहुत दिक्कत है। दिक्कत हाथ जाता ना तो खाने को है, ना तो कोई आ रहा देखने, या
4: ना कोई जा रहा है।
7: अगस्त के महीने में समथिंग 3 बार इस मोहल्ले बाहर आ चुकी है, तीसरी चौथी बार ये बाहर है। अभी 29 तारीख को बाहर आई थी समथिंग। यहाँ पे हमारे घरों के ऊपर से पानी चल रहा था, तब भी हमारे लिए प्रशासन कोई मदद नहीं थी।
23: अब पानी कम हुआ है तो रामघाट से लेकर आसपास के इलाकों तक तबाही साफ दिखाई दे रही है। कहीं सड़क पर कई फीट ऊंचा मलबा जमा है, तो कहीं घर और दुकानें टूटकर बाढ़ की ताकत की कहानी बता रही है। रामघाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा तक बाढ़ के तेज बहाव से क्षतिग्रस्त हो गई। बिजली के पोल उखड़ गए, मठ, मंदिरों और दुकानों की दीवारें टूट गई। कानपुर में गंगा से पहले पांडव नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है और कानपुर के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। 1 दर्जन से अधिक इलाकों में नदी का पानी खतरे से ऊपर बह रहा है। आलम यह है कि भौती इलाके के पास पनकी पुल पर ऊपर से पानी बह रहा है, जिसकी वजह से प्रशासन ने पुल को बंद कर दिया है। मुरादाबाद में भी कोसी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। नदी के उफान के चलते गणेश घाट, छहरिया, हिरनखेड़ा और रनिया ढेर समेत करीब 1 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में है। बाराबंकी और पीलीभीत में भी हालात मुश्किल हैं। गांवों का संपर्क टूट रहा है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। महोबा से मिर्जापुर तक नदियों का जलस्तर बढ़ा तो कई इलाकों में जलभराव ने जनजीवन रोक दिया। फरुखाबाद, फतेहपुर, बलिया, हर तरफ पानी का असर दिखाई दे रहा है। यानी पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक, बुंदेलखंड से लेकर तराई तक पूरा यूपी बाढ़ की मार झेल रहा है।
5: रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी मॉनसून एक्सप्रेस की तेज रफ्तार जारी है। आप देखते रहिए आज तक।

0: spa state of mind with a Kohler spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a Kohler spa at home.
1: हैवान की कहानी में हर किरदार का अपना रिश्ता है, उसमें जुड़े होते हैं आपके सपने, आपकी पसंद और आपकी कहानी। इसलिए घर के लिए चुनिए सिर्फ E3, the E3 Group, India's leading manufacturer of interior and exterior products. E3 Group celebrates the release of Hewan on the 11th of September.
2: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एक दो एक
3: श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: खाना कहाँ से मंगवाया?
3: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
5: जीके वॉल मैक्स।
3: बेस्ट प्राइमर
6: जीके मैक्स।
3: बेस्ट पेंट
6: जीके मैक्स।
3: जीके मैक्स। बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
4: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूं?
3: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: मैदानों में बाढ़ है तो पहाड़ों में बारिश अपने साथ दूसरी मुसीबत लेकर आती है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है और बारिश के साथ लैंडस्लाइड और अचानक बाढ़ का खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड में भी पहाड़ी इलाकों के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है। कई क्षेत्रों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो भीषण तबाही की कहानी बयां कर रही है।
1: कोटद्वार में उफनती कोल्हू नदी का तेज बहाव एक परिवार के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गया। नदी पार करते वक्त करीब 1.5 साल की मासूम बच्ची अचानक अपनी मां की गोद से फिसलकर तेज बहाव में बह गई। बच्ची को बचाने के लिए मां ने भी नदी में छलांग लगा दी, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि दोनों उसकी चपेट में आ गए। आसपास मौजूद लोग बेबस होकर ये मंजर देखते रह गए। टिहरी गढ़वाल में लगातार बारिश के बीच निर्माणाधीन रिंग रोड की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। कैमरे में कैद तस्वीरें दिखाती हैं किस तरह बारिश के दबाव के बीच सड़क को थामने के लिए बनाई गई दीवार पूरी तरह ढह गई। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बारिश ने कुछ ही मिनटों में ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि एक दुकान के अंदर खड़ा दुकानदार अपनी आंखों के सामने अपनी दुकान और सामान को पानी में डूबता छोड़कर जान बचाने के लिए भागने को मजबूर हो गया। जाबली में सड़क पर बहता पानी अचानक मलबे के सैलाब में बदल गया और देखते ही देखते तेज मटमैला पानी दुकान के ऊपर से बहने लगा। ऐसे लगा जैसे दुकान के ऊपर से झरना बह रहा हो। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि दुकानदार को सामान बचाने तक का मौका नहीं मिला। किसी तरह भागकर उसने अपनी जान बचाई। कांगड़ा के देहरा में फ्लैश फ्लड के बीच एक थ्री व्हीलर और उसके चालक की जान बाल बाल बची। थ्री व्हीलर वाले ने जैसे ही तेज बहाव में सड़क के ऊपर से अपनी गाड़ी को ले जाना चाहा, कुछ ही सेकंड में तेज धारा ने उस थ्री व्हीलर को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया और चालक भी वाहन से निकलने की कोशिश में फंस गया। हालात बिगड़ते देखकर स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और समय रहते चालक को बचा लिया गया। चमोली में हो रही बारिश पहाड़ों को लगातार तोड़ रही है। थराली देवाल मार्ग पर अचानक पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर सड़क पर आ गिरा। कैमरे में कैद तस्वीरों में मलबा और पत्थर ऐसे नीचे आते दिखाई दे रहे हैं जैसे पहाड़ से झरना नहीं बल्कि पूरी पहाड़ी बह रही हो। देखते ही देखते सड़क मलबे से पट गई और आवाजाही बाधित हो गई। चमोली में बारिश का असर सिर्फ पहाड़ियों तक सीमित नहीं है, सड़कें भी लगातार इसकी मार झेल रही हैं। उखीमठ केदारनाथ मार्ग पर मलबा आने से पूरा रास्ता बंद हो गया। रुक रुक कर मलबा गिरने के कारण यातायात प्रभावित हो गया। चंबा में पहाड़ से आया मलबा एक कार के लिए मुसीबत बन गया, लेकिन मौके पर मौजूद भारतीय सेना के जवानों ने वक्त रहते मोर्चा संभाल लिया। पठानकोट चंबा नेशनल हाईवे पर भारी बारिश के बीच अचानक पहाड़ी से मलबा सड़क पर आ गिरा और इसकी चपेट में एक कार फंस गई। ऊपर से लगातार मलबा गिर रहा था और रास्ते पर खड़ा रहना भी खतरनाक था। इसी दौरान वहां से गुजर रहे सेना के जवानों ने बिना समय गंवाए अपने ट्रक से रस्सी बांधी और कार को खींच

0: चंबा के भटियात इलाके में एक महिला का साहस उस वक्त सामने आया जब तेज बहाव के बीच एक बाइक सवार जिंदगी और मौत के बीच फंस गया। अचानक आए फ्लैश फ्लड ने सड़क को तेज बहती धारा में बदल दिया और बाइक सवार पानी के बीच फंस गया। हालात बिगड़ते देख वहां मौजूद एक महिला ने बिना घबराए अपना दुपट्टा आगे बढ़ाया ताकि बाइक सवार उसे पकड़कर सुरक्षित जगह तक पहुंच सके।
1: बाढ़ का असर देश के कई अन्य राज्यों में भी दिख रहा है। मध्य प्रदेश में उफनती मंदाकिनी के पानी का सैलाब लोगों को डरा रहा है, तो असम, कोलकाता, तमिलनाडु के कई इलाके पानी की भारी मार से प्रभावित है। कई राज्यों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की गई है।

0: आधा हिंदुस्तान इस वक्त बारिश और बाढ़ की दोहरी मार झेल रहा है। कहीं आसमान से लगातार आफत बरस रही है, तो कहीं उफनती नदियां शहरों और गांवों में सैलाब लेकर पहुंच गई है। दिल्ली NCR में सड़कें पानी में डूबी हैं, राजस्थान में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, मध्य प्रदेश में बाढ़ ने कई इलाकों की रफ्तार रोक दी है। और पश्चिम बंगाल में बाढ़ के पानी ने स्कूलों तक को अपनी चपेट में ले लिया है। कहीं घर डूबे हैं, कहीं सड़कें दरिया बन गई हैं, कहीं पुल पुलियों पर पानी का तेज बहाव है, तो कहीं लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ते पार कर रहे हैं। बारिश का ये दौर सिर्फ मुश्किलें नहीं बढ़ा रहा, कहीं कहीं ये बारिश जिंदगी पर भी भारी पड़ रही है। दिल्ली NCR में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बेहाल। मूसलाधार बारिश ने राजधानी की रफ्तार पर लगाया ब्रेक। सड़कों पर भरा पानी, वाहन चालकों की बढ़ी मुश्किलें। ये दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ऐसी बारिश हुई कि कोना कोना जलमग्न हो गया। पार्किंग से लेकर रनवे तक हर जगह पानी ही पानी था।
1: ऐसा पहले कभी नहीं देखा है, बहुत ज्यादा पानी है।
2: कितनी देर से खड़े हैं आप यहाँ पर?
1: यहाँ पे लगभग मैं खुद पिछले आधे घंटे से खड़ी हूँ। इंतजार हो रहा है कि थोड़ा पानी कम हो तो अराइवल के गेट्स की तरफ जाया जा सके।
2: पानी हुआ है अभी, 2 साल पहले एक बार हो रखा था, अभी इस बार ये अभी जस्ट देख रहा हूँ कि इस साल भी फिर हुआ है।
0: दिल्ली NCR में बारिश का सिलसिला शुक्रवार से लगातार जारी है। बारिश ने मौसम जरूर सुहाना कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की समस्या भी सामने आ रही है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी और फरीदाबाद के कई हिस्सों में शनिवार को तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, और इसके बाद नतीजा ये हुआ कि गुरुग्राम एक बार फिर डूब गया। बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। तापमान नीचे आने के साथ राजधानी की हवा में भी सुधार देखने को मिला है। दिल्ली के महिपालपुर में तेज बारिश

0: के बाद हालात बुरी तरह बिगड़ गए। वसंत कुंज से आईजीआई एयरपोर्ट और गुरुग्राम की तरफ जाने वाले रास्तों और अंडरपास में पानी भर गया। इंडिया गेट, गीता कॉलोनी, फिरोज शाह रोड और बाराखंभा रोड पर भी बारिश का असर साफ दिखाई दिया।
1: दिल्ली में जब भी बारिश होती है, अगर तेज बारिश होती है, तो सड़कों का यही हाल होता है। जो हॉस्पिटल से काम करने वाले लोग या कोई भी अगर आता है तो देखिए, बारिश के चलते यहाँ पे जो है हमेशा दिक्कत होती है।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मंगलवार तक भारी बारिश का अनुमान है।
2: NCR दिल्ली की बात करें, आज NCR दिल्ली में भी हमारा ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। कल भी हैवी रेनफॉल हुआ, आज भी जहां हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है। जो मेजर जो एक्टिविटी है NCR दिल्ली में आज ही है ज्यादा, कल इसमें कमी पाई जाएगी।
0: दिल्ली NCR में अगस्त में अनुमान से कम बारिश हुई, लेकिन सितंबर के पहले हफ्ते से ही लगातार बारिश हो रही है। ये तस्वीरें राजस्थान के 12 जिले के शाहबाद इलाके की हैं, जहां पिछले दो दिनों से हो रही झमाझम बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। नदी नाले उफान पर हैं और कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। शाहबाद की जीवनदायिनी कहीं जाने वाली रैपी नदी भी पूरे उफान पर है। चौराखेड़ी के पास पुलिया के ऊपर से तेज धार में पानी बह रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग बाइक और पैदल इसी रास्ते से गुजर रहे हैं। जरा सी चूक और एक बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन की ओर से बार बार सावधान रहने की चेतावनी दी जा रही है।

0: राजस्थान के धौलपुर में दो दिन से हो रही लगातार बारिश अब आफत बनती जा रही है। शनिवार के दिन हुई तेज बारिश से शहर के निचले इलाकों, बाजारों और सड़कों पर पानी भर गया। कई जगह सड़कें दरिया जैसी नजर आईं। मनिया इलाके के पास जलभराव की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। सवारियों से भरी इको वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पानी से भरी गहरी पोखर में पलट गई। वैन के पानी में गिरते ही अंदर मौजूद बच्चों और महिलाओं में चीख पुकार मच गई। मदद की आवाज सुनकर गांव वाले तुरंत मौके पर पहुंचे। वैन के शीशे और दरवाजे खोलकर और तोड़कर कई लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन तीन लोगों की मौत हो गई। धौलपुर में बारिश आफत बन गई है और जलभराव जानलेवा साबित हो रहा है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के घाटाल इलाके की हैं, जहां बाढ़ के पानी ने एक प्राथमिक स्कूल को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया है और अब हालत ऐसी है कि इस स्कूल में बच्चों की जगह सांपों ने डेरा डाल लिया है। स्कूली छात्रों ने ये वीडियो बनाया है जिसमें एक बड़ा जहरीला सांप स्कूल की बेंचों के ऊपर रेंगता दिखाई दे रहा है। स्कूल प्रशासन का कहना है कि बाढ़ के बाद स्कूल खोलने से पहले पूरे परिसर की जांच की जाएगी। देखिए ये तस्वीरें, सड़कें समंदर बन चुकी हैं, घरों में पानी घुसा है और उफनती नदियों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना में पिछले तीन दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। केन, व्यारमा, मिरहासन और पतने नदियां उफान पर हैं। कई जगह पुल और सड़कों के ऊपर से तेज बहाव में पानी गुजर रहा है। हालात को देखते हुए पुलिस ने लोगों को ऐसे रास्तों और पुलों को पार नहीं करने की हिदायत दी है। पन्ना शहर के निचले इलाकों में पानी भरने से कई घर डूब गए हैं। ग्रामीण इलाकों में सैकड़ों घर पूरी तरह जलमग्न हैं और लोग बाल्टी पंप के सहारे पानी निकालने में जुटे हैं। उधर महाराज सागर तालाब की बाउंड्री वॉल ढहने के बाद पानी मुख्य सड़क तक पहुंच गया, जिसके चलते रास्ता बंद करना पड़ा। यानी पन्ना में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही और पानी के साथ मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। पन्ना की तरह ही सतना की भी हालत है। सड़कों पर सैलाब है, पुल पुलियों के ऊपर पानी बह रहा है और कई घरों में बारिश का पानी घुस चुका है। मध्य प्रदेश के सतना में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। छोटे बड़े सभी नदी नाले उफान पर हैं और कई रास्तों पर जलभराव के चलते शहरों से कनेक्शन कट गया है। सतना सेमरिया, सतना चित्रकूट और सतना नागौद मार्ग बंद है। कई इलाकों में लोग घरों की निचली मंजिल छोड़कर ऊपर रहने को मजबूर हैं।
1: सितंबर का जो महीना होता है उसको मॉनसून की विदाई का महीना कहा जाता है। धीरे धीरे बारिश कम होने लगती है। मौसम वैज्ञानिकों ने भी सितंबर में बारिश के कम होने का अनुमान जताया था, लेकिन पहले हफ्ते में जिस तरह से बादल बरस रहे हैं उसने मौसम विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है। अगस्त में सामान्य से 16% कम बारिश हुई थी और सितंबर के पहले हफ्ते में ही उत्तर भारत के कई शहरों में भारी बारिश ने कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

0: सितंबर से मॉनसून विदाई की गाड़ी में सवार होने लगता है, लेकिन बारिश एक साथ खत्म नहीं होती बल्कि धीरे धीरे कम होती चली जाती है। सितंबर का पहला सप्ताह समाप्त होने को आया, लेकिन इस बार बारिश की वजह से कई राज्य त्रस्त हैं और अभी जल्द राहत की उम्मीद भी नहीं है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस वर्ष सितंबर की बारिश देश की कुल बारिश के मुकाबले सामान्य से कम रह सकती है। अगर बारिश सामान्य से कम रह सकती है तो इतनी बारिश हो क्यों रही है? बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात क्यों बने हुए हैं? मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इसका जवाब बंगाल की खाड़ी में पनप रहा सिस्टम है। दरअसल इसकी बड़ी वजह इस समय बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर एरिया है, जो पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है। इससे उत्तर से पूर्वी और मध्य भारत के कई हिस्सों में बारिश बढ़ी है। उत्तर भारत के कुछ हिस्से भी इसकी चपेट में हैं, यानी पूरे देश में मॉनसून मजबूत नहीं हुआ है, बल्कि खास मौसम सिस्टम कुछ इलाकों में बारिश को ज्यादा पावरफुल बना रहा है।
1: क्लाइमेट चेंज का ही एक जो नेम है उससे ये होता है, या तो बारिश हो रहा है तो बहुत ज्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, इसी को हम क्लाइमेट चेंज कह रहे हैं। तो जिसका जो अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश और भारत की बात करें तो क्लाइमेट चेंज का एक यही सबसे बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। बारिश नहीं हो रही तो नहीं हो रही, हो रही है तो काफी इंटेंस बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट चेंज का थोड़ा असर दिख रहा है।
0: दरअसल मॉनसून के पैटर्न में भी एक बदलाव देखने को मिल रहा है। बारिश के दिनों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन जब बारिश होती है तो कुछ राज्यों में कम समय में ज्यादा पानी गिर सकता है। इसीलिए एक तरफ तो सितंबर में एक ओर सामान्य से कम बारिश का अनुमान है, दूसरी ओर कुछ राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। सितंबर का मौसम विदाई का मौसम होता है और बारिश कम भी होने लगती है, लेकिन जाते जाते कई बार अपना तेज असर छोड़ जाती है, जैसा कि इन दिनों कई राज्यों में देखने को मिल रहा है।
2: मौसम पर रहेगी हमारी नजर, आप भी रहिए खबरदार। इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
3: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: स्टे इन द स्पा स्टेट ऑफ माइंड विद द कोलर स्पा एट होम। What your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
6: और वही कहाँ गए थे घूमने?
7: JK Max.
8: खाना कहाँ से मंगवाया?
7: JK Max. Best putty.
9: JK Wall Max.
7: Best primer.
10: JK Max.
7: Best paint.
10: JK Max.
7: JK Max. बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
8: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूं?
7: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: इन एसोसिएशन विद
1: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: लेकिन सवाल सिर्फ चंदे का नहीं, सवाल यह है कि इतना पैसा आया कहां से और गया कहां। चंदा 330 करोड़ रुपए से ज्यादा, लेकिन पार्टी का नाम देश की सियासत में लगभग गुमनाम। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक गुजरात की सत्यवादी रक्षक पार्टी को 2023 से 24 में 330 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा मिला। हैरानी ये कि 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी ने सिर्फ एक उम्मीदवार मैदान में उतारा। पार्टी के आधिकारिक पते पर आज तक की टीम पहुंची तो वहां मिला सिर्फ ताला।
4: है गुजरात के आणंद जिले के सत्यवादी रक्षक पार्टी का जो कार्यालय है, जो ऑफिशियल कार्यालय दर्ज किया गया है वहां पर है। आप देख सकते हैं कि यहां पर ताला लगा हुआ है। ये बंद फ्लैट पर न कोई नेम प्लेट है, न कोई बैनर है, न ही कोई झंडा है और न ही कोई पार्टी का कार्यकर्ता फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस पार्टी को साल 2023-24 में 330 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, लेकिन अब तक यानी कि पिछले 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें सिर्फ एक ही कैंडिडेट ने चुनावी मैदान में अपना जो पर्चा है वो भरा था, लेकिन उसके बाद कोई भी कैंडिडेट इस पार्टी से चुनावी मैदान में नहीं उतरा है।
3: पार्टी अध्यक्ष स्वाति बेन से मुलाकात हुई तो उन्होंने पार्टी से ही दूरी बना ली।
5: आपकी जो पार्टी थी 2023-24 में 330 करोड़ का चंदा मिला था और आपकी पार्टी से एक प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में उतरा था, अभी पार्टी का क्या स्टेटस है और क्या कार्यक्रम?
6: बंद कर दिया,
5: पार्टी बंद हो गई।
6: पार्टी बंद
5: कब से बंद है पार्टी?
6: 25 में से बंद है, 24 के लास्ट में से बंद है शायद।
3: यानी करोड़ों का चंदा, एक उम्मीदवार और अब पार्टी बंद होने का दावा। लेकिन सवाल सिर्फ चंदे का नहीं, सवाल है कि इतना पैसा आया कहां से और गया कहां।
5: अभी जो पार्टी है वो अभी नहीं चल रही, वो पार्टी अभी बंद कर दी गई है। अभी आगे क्या है, क्या राजनीतिक पार्टी अभी इसमें अपना निवेदन बयानबाजी कर रही है, अभी आगे क्या जांच के विषय के बाद सामने आएगा वो तब पता चलेगा। हिताली शाह आज तक आना।

0: अयोध्या के राम मंदिर में सीईओ राज का आगाज हो चुका है।
1: एयर मार्शल जितेंद्र मिश्री जी को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
0: और इसी के साथ सियासी बयानों की आहुतियों का दौर भी शुरू हो गया है।
2: कल इन्होंने एक सीईओ की नियुक्ति की है।
3: ऑपरेशन संदूर के अंदर कहीं कोई सच तो नहीं छुपा हुआ?
4: अब कल को ये भी बेचारे बदनाम होकर बाहर निकलेंगे।
0: जिस वक्त रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला, ठीक उसी समय विपक्ष ने इस ताजपोशी पर तीखे सवाल खड़े कर दिए। हाल ही में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कांड जैसी घटनाओं के सामने आने के बाद मंदिर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी एक सैन्य अफसर को सौंपी गई है, लेकिन कार्यभार संभालते ही ये नियुक्ति सियासत के केंद्र में आ गई। कांग्रेस नेताओं ने इस नियुक्ति को लेकर सरकार और ट्रस्ट पर ताबड़तोड़ हमले बोल दिए हैं। कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि मंदिर के प्रबंधन में संतों और धर्माचार्यों की भूमिका होनी चाहिए।
5: कि चंदा चोरी पे आप कुछ नहीं बोले हैं, जरा सा उस पे भी बोल दीजिए अध्यक्ष।
2: नहीं, चंदा चोरी देखिए मैं इसलिए बोल दूं कि अभी कल इन्होंने एक सीईओ की नियुक्ति की है।
5: वो ऑपरेशन सिंदूर में काम कर
2: चुके हैं।
5: आपने तब भी सबूत मांगा था?
2: नहीं नहीं, सबूत हमने नहीं मांगा, सीईओ की बात मैं कर रहा हूँ। राम मंदिर में सीईओ का क्या काम है आप बताइए ना भाई, भगवान का स्थान है, मंदिर है, वहाँ सीईओ क्या करेंगे? वहाँ तो धर्माचार्य की नियुक्ति होनी चाहिए, वहाँ तो परम पूज्य शंकराचार्य के द्वारा नामित होना चाहिए, जो हमारे चारों पीठ के शंकराचार्य हैं।
0: विपक्ष यही नहीं रुका, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने तो इस नियुक्ति को सीधे तौर पर ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ते हुए सवाल खड़े किए।
3: एयर चीफ को आपने,
0: उन्हें कोई योग्य चेहरा नहीं मिला जो ये प्रशासनिक जिम्मा किसी फौजी अफसर को सौंप दिया गया।
4: भाई ये काम साधु संतों का है, अब एयर मार्शल साहब ने हवाई जहाज उड़ाया, हवाई जहाज उड़ा लेते, अब इनके आरएसएस के जंगल में फंस गए वो, अब कल को ये भी बेचारे बदनाम होकर बाहर निकलेंगे। क्या तमाशा है भाई, मंदिर का काम मंदिर वालों को करने दो।
0: सवाल उठता है कि क्या जानबूझकर ऑपरेशन सिंदूर के हीरो को विवादों में घसीटा जा रहा है? क्या मंदिर की व्यवस्था सुधारने के बहाने सरकार पर सियासी निशाना साधने की कोशिश है? सवाल ये है कि क्या सिंदूर वीर के पास राम ट्रस्ट, कांग्रेस को कष्ट?

0: सत्यनिकेतन इलाके में 5 मंजिला इमारत गिरी, अब तक 5 की मौत, मरने वालों में 1 छात्र और 1 मजदूर शामिल, मलबे में कई लोग दबे। दिल्ली में इमारत गिरने के बाद राहत और बचाव का काम जारी, एम्स सोमवार सेंटर और आरआर हॉस्पिटल में घायलों का इलाज, बिल्डिंग में चल रहा था पीजी हॉस्टल। दिल्ली हादसे पर प्रधानमंत्री ने जताई संवेदना, गोवा में मौजूद अमित शाह की भी नजर, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा नहीं बचेगा गुनहगार। दिल्ली के एसआरसीसी में प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर विपक्ष के सवालों पर नितिन नवीन का तंज, कहा प्रधानमंत्री ने कल नाराज फूफाओं को होम्योपैथी की दवा दी लेकिन इसका असर एलोपैथी वाली हाई एंटीबायोटिक जैसा हुआ। बिहार में उफान पर गंगा, 11 जिलों में 22 लाख लोग प्रभावित, राजधानी पटना से लेकर भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, पानी।
1: नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम कहानियां विद शम्स। अभी जो मैंने कहानी सुनानी शुरू की और जब तक ये कहानी खत्म करूंगा तब तक हमारे देश में एक लड़की की आबरू लुट चुकी होगी, ये डेटा है। हर 17 मिनट में हमारे देश में एक बलात्कार होता है, हर घंटे करीब 3 से 4 और हर दिन 80 से 82, 82। मतलब हमारे देश में हर दिन 82 रेप के केसेस होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है कि पिछले 10 सालों में हमारे देश में 400 से थोड़ा ऊपर, 4 सवा 400 के करीब रेपिस्ट को अलग अलग

अदालतों ने सजाए मौत दी है पिछले 10-11 सालों में, लेकिन इनमें से फांसी हुई कितनी को माने वो रखता है। 400 से ज्यादा सजाएं तो हो चुकी हैं। आज भी इस देश के अलग अलग जेलों में ऐसे रेपिस्ट बंद हैं जिन्हें मौत की सजा मिली है, लेकिन 2020 निर्भया के 4 गुनहगारों को छोड़ दे तो कब सुना आपने कि किसी रेपिस्ट को फांसी हुई है? और 2020 से पहले 2002 में कोलकाता में धनंजय चटर्जी को हुई थी फांसी, तो मतलब 18 साल बाद दूसरी बार हमारे देश में रेपिस्ट को फांसी हुई। और 2020 के बाद हम 26 में हैं, 400 से ज्यादा लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, हुई एक को भी नहीं। ये तस्वीर है, और ये तस्वीर इसलिए आपको दिखाना चाह रहा हूं कि यही वो चीज है जिसकी वजह से रेपिस्ट और ऐसे बलात्कारियों के मन से कानून का खौफ दूर हो जाता है और उन्हें लगता है कि क्या हुआ अगर रेप कर भी लेंगे, आराम से कई साल जेल में गुजार देंगे। ये सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं, 2012 दिल्ली की 8 किलोमीटर की उस सड़क पर, 8 किलोमीटर के उस फासले में 6 दरिंदों ने निर्भया नाम की एक 22 साल की लड़की की आबरू लूटी थी। सिर्फ 8 किलोमीटर बात नहीं है, देश की राजधानी दिल्ली और 8 किलोमीटर का फासला बहुत बड़ा होता है, और उन 8 किलोमीटर के दायरे में 3 पुलिस स्टेशन आते हैं। पता नहीं कितनी नाकेबंदी है, कितने बैरिकेड्स होते हैं। किसी पुलिस वालों ने तब नहीं रोका उस बस को, और वो बस दंदनाती हुई दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती रही, और अंदर 6 दरिंदे बारी बारी से उस निर्भया के साथ जबरदस्ती करते रहे। उस निर्भया इंसिडेंट ने पहली बार शायद इस देश में रेप के मुद्दे को उठाया इस तरीके से कि हर एक गुस्से में था, लगा कि आज के बाद फिर इस देश में कम से कम महिलाओं के खिलाफ अपराध या बलात्कार जैसे मामलों में तो कानून सख्त होगा और अब चीजें बदलेंगी। लेकिन 14 साल बाद क्या बदला? वो 8 किलोमीटर का फासला था दिल्ली की सड़क पर, वो बढ़कर 47 किलोमीटर हो गया। मतलब खौफ इतना कि 8 किलोमीटर के दायरे में जिन 6 हैवानों ने निर्भया की आबरू लूटी, यहां 2 हैवानों ने पूरे 47 किलोमीटर तक 2 स्टेट की सड़कों को नापा। इस दौरान न जाने कितने बैरिकेड्स गुजरे, 2 राज्यों की सरहद आई, कितने सीसीटीवी कैमरे होंगे, कितनी जगह पर पुलिस की चेकिंग होगी। लेकिन क्या मजाल जो एक भी जगह पर, एक भी पोस्ट पर, एक भी नाकेबंदी पर, एक भी बैरिकेड्स पर, या किसी एक पुलिस वाले की पारखी नजर उस बस तक पहुंचे जिस बस की खिड़कियों पर लगे पर्दे के पीछे बारी बारी से 2 लोग 16 साल की एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। 2012 में 8 किलोमीटर था, 2026 में 47 किलोमीटर तक, फिर भी कानून की नजर नहीं पड़ी। ये कहानी है उसी ग्रेटर नोएडा की जो पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत होती है ग्रेटर नोएडा से। 4 अगस्त की वो रात थी, 4 अगस्त मुझे आज भी याद है कि दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश हो रही थी। हमारे ऑफिस के सामने ही पानी भर चुका था और बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी। एक लड़की मैनपुरी से चलती है, मैनपुरी में वो रहती थी, घर वालों से कुछ कहा सुनी हो गई तो उसने कहा कि चलो अपने कजन से मिल लेते हैं। मैनपुरी से वो एक बस में बैठती है और उसको नोएडा आना था, नोएडा में उसको उतरना था, लेकिन रात का वक्त, बारिश मूसलाधार, बस पहुंची परी चौक पर जो नोएडा है, यानी कि जहां हम बैठते हैं फिल्म सिटी, वहां से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है। परी चौक पर वो उतर जाती है गलतफहमी में कि शायद यही नोएडा का वो सेक्टर है जहां उसे उतरना था, क्योंकि बारिश हो रही है, अंधेरा भी है, और ग्रेटर नोएडा और नोएडा ये 2 शब्द जो है थोड़े से कंफ्यूज भी कर देते हैं। अब वो लड़की तेज बारिश, मूसलाधार बारिश के बीच ग्रेटर नोएडा में परी चौक के पास उतर जाती है। जब उतरती है तो देखती है कि वहां एक तो भी सन्नाटा है क्योंकि बारिश हो रही है, लोग कहीं ना कहीं खुले में होते नहीं है। किसी से उसने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये नोएडा नहीं, ग्रेटर नोएडा है। लड़की को लगा कि मैं गलत उतर गई, अब क्या करें। तभी वो इंतजार करने लगी किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, और तभी एक बस वहां आई, एक स्लीपर बस जिसकी खिड़कियों पर पर्दे लगे थे। लड़की बस को देखते ही हाथ देती है, बस रुक जाती है,
वो बताती है कि मुझे नोएडा सेक्टर यहां पहुंचना है। कंडक्टर उसे ऊपर बुला लेता है। अब वो लड़की ऊपर पहुंच जाती है, बस खाली है, क्योंकि ये बस एक सर्विस स्टेशन से सर्विस और कुछ उसमें काम था वो होने के बाद वापस ड्राइवर और कंडक्टर उसे लेकर जा रहे थे। ये प्राइवेट बस थी। जब लड़की अंदर गई तो पहली बार एहसास हुआ कि बस खाली है, कोई भी मुसाफिर नहीं। वो थोड़ी डरी, लेकिन इससे पहले कि फिर वो कोई फैसला कर पाती, रात का अंधेरा, बारिश, सन्नाटा, बस में कोई नहीं, बस के ड्राइवर और कंडक्टर की नीयत खराब होती है, लड़की को दबोच लेते हैं। एक बस चला रहा है और दूसरा बस की पिछली सीट पर उस लड़की को ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता और फिर जबरदस्ती करता है। इस दौरान ये बस परीचौक से चलती है और दिल्ली की तरफ अब घूम रही है। धीरे धीरे परीचौक से नोएडा मोड़ पर आती है। नोएडा में बाकायदा एक दिल्ली नोएडा बॉर्डर है, वहां पर बैरिकेड्स भी है, वहां पर बूथ भी है, पुलिस बूथ, वहां पर दोनों दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस दोनों करीब 100 मीटर के फासले पर मौजूद होते हैं। चलती बस में बीच सड़क पर बस दौड़ रही है और एक लड़की की आबरू लुट रही है, लेकिन किसी की नजर नहीं पड़ी। एक तो बारिश भी, ऊपर से पर्दे लगे हुए हैं। अब वो दिल्ली नोएडा बॉर्डर को भी क्रॉस कर जाती है, दिल्ली की सरहद में दाखिल हो जाती है। इसके बाद ये बस अब दिल्ली की सरहद में दाखिल होते हुए मयूर विहार और गीता कॉलोनी के रास्ते से अब रिंग रोड पर पहुंच जाती है। रिंग रोड वो इलाका है जहां पर अमूमन आप उसे कह सकते हैं कि एक तरह से शहर के बाहर का जो रास्ता होता है, मिनी हाईवे, सन्नाटा होता है अक्सर। वहां पे पुलिस या बूथ, इनकी भी कमी होती है। अब रिंग रोड पर बस पहुंचती है और इस दौरान में अब पहले ड्राइवर फिर कंडक्टर दोनों बारी बारी से हवानियत का खेल खेलते हैं। और फिर रिंग रोड पर जो कश्मीरी गेट है, जहां पर ISBT है, इंटर स्टेट बस टर्मिनल, दिल्ली का सबसे बड़ा बस अड्डा जिसे आप कहें, जहां से शायद पूरे देश के लिए बस चलती है, उस ISBT कश्मीरी गेट से पहले ये रिंग रोड पर एक जगह सन्नाटा, रात का अंधेरा, बारिश हो रही है, सड़क पर कोई है नहीं। बस रुकती है कुछ पल के लिए, उस लड़की को बस से नीचे उतार दिया जाता है, बस आगे निकल जाती है। अब वो लड़की अनजान, उसे कुछ पता नहीं, कश्मीरी गेट तक पहुंचती है। एक ऑटो वाला दिखाई देता है, वो उस ऑटो वाले के पास जाती है, अपनी कहानी सुनाती है। रो रही है बुरी तरह, कपड़े तितर बितर हैं। ऑटो वाला शरीफ इंसान था, उसने उसकी कहानी सुनी, वो समझ गया मामला क्या है। शायद वो दिल्ली का था, निर्भया केस भी उसे याद होगा। वो फौरन उसे पास के पुलिस बूथ में ले गया, जो कश्मीरी गेट के पुलिस बूथ है। पुलिस बूथ में एक पुलिस वाला भी बैठा था, ऑटो वाला जैसा वो शरीफ नहीं था। उस पुलिस बूथ में बैठे पुलिस वाले ने उस लड़की और ऑटो वाले से कहा कि ये तो बूथ है, तुम्हें अपनी शिकायत थाने में लिखानी है, तो एक काम करो, कश्मीरी गेट थाने जाओ। और वो पुलिस वाला उस ऑटो वाले से कहता है कि एक काम करो, तुम यहां तक ले आए तो इसको थाने तक ले जाओ। मतलब उस पुलिस वाले को अपनी जिम्मेदारी जो निभानी थी, उसने ऑटो वाले के कंधे पर रख दी। अगर वो ऑटो वाला भी शैतान होता तो क्या होता उस लड़की के साथ दूसरी बार उस रात को, आप सोचिए। लेकिन वो ऑटो वाला शरीफ था, शायद उस लड़की के लिए एक फरिश्ता बनकर आया था। उसे ऑटो में बिठाता है और अपने साथ उस कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन में ले जाता है। वो पैसे भी नहीं लेता। जब वो पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है, ऑटो वाले को लगता है कि अब वो सेफ हैंड में, सुरक्षित हाथों में, वो वहां से चल पड़ता है। लड़की जाकर थाने में बयान लिखाती है। जैसी वो कहानी बताती है, कश्मीरी गेट के पुलिस वाले भी अच्छे थे, वो उस लड़की की फौरन रिपोर्ट लिखते हैं, अपने सीनियर अफसरों को खबर देते हैं। अब वो बताती है कि मैं भटक गई, मैं परीचौक उतर गई, और मेरे साथ क्या हुआ इस पूरे रास्ते में। ये एक रेप का केस था। पुलिस वालों ने सुना, कायदे से ये मुकदमा जो है ये फिर परीचौक में आने वाले थाने का बनता है, क्योंकि वहीं से शुरुआत हुई थी इस कहानी की। लेकिन जीरो FIR नाम की एक चीज है जो यह हक देता है इस देश के किसी भी थाने को कि कहें क्राइम कहीं भी हुआ, आप फौरन FIR लिखो, बाद में आप चाहो तो ट्रांसफर कर दो उस केस को। कश्मीरी गेट पुलिस ने अपना फर्ज निभाते हुए उस लड़की की आप बीती सुनी और फौरन जीरो FIR दर्ज किया रेप के मामले में। उस लड़की ने जितना कुछ बता सकती थी बताया। आला पुलिस अफसर भी पहुंचे, उन्हें पता था मामला संगीन है। इसके बाद फौरन उसी रात पुलिस

टीम निकलती है उस बस को ढूंढने के लिए। इत्तेफाक से दिल्ली के तिमारपुर में ही एक जगह वो बस खड़ी मिल जाती है। फिर उस बस के जरिए पुलिस उन दोनों आरोपियों तक पहुंचती है, कंडक्टर और ड्राइवर। इन दोनों को फिर पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट जो ड्राइवर है वो कुलदीप और जो कंडक्टर है वो संदीप, ये दोनों नाम है, 22 और 35 साल की उम्र है दोनों की। इनमें से जो ड्राइवर है कुलदीप, ये तो शादीशुदा है। अब पुलिस इस मामले में चूंकि लड़की नाबालिग है पॉक्सो की धारा भी लगाती है, रेप की तो है ही है, तफ्तीश शुरू करती है। पुलिस जब तफ्तीश शुरू करती है तो सबसे पहले परिचौक से लेकर कश्मीरी गेट तक की पूरी दूरी को नापती है और ये देखती है पूरे सीन को रिक्रिएट कर कि 4 अगस्त की उस रात जब बारिश हो रही थी और 47 किलोमीटर तक चलती बस में सड़क पर नोएडा और दिल्ली जैसे शहर में एक लड़की के साथ जबरदस्ती हो रही है, तो किसी भी पुलिस वालों को इस बस को देख कर या फिर किसी और वजह से शक क्यों नहीं हुआ। जब उस रात की कहानी को टटोला गया तो पता चला कि नोएडा और दिल्ली के बीच की एक सरहद है, दो राज्यों को बांटने वाली यूपी और दिल्ली, वहां पे पुलिस थी, बैरिकेड था और उनकी मौजूदगी में बस वहां से निकली, लेकिन किसी को भनक नहीं लगी। कुछ कुछ दूरी पर पुलिस वाले बैरिकेड और डीटू भी दे रहे थे, उनमें से भी किसी ने बस को नहीं रोकने की कोशिश की। कई जगह सीसीटीवी कैमरे खराब थे। जब पुलिस ने अब बस की छानबीन की तो पता चला कि बस के अंदर भी जो सीसीटीवी कैमरा मैंडेटरी है, जिसको लगा होना चाहिए, वो है ही नहीं। बस के अंदर तमाम खिड़कियों पर पर्दे लगे हुए थे और वो पर्दे ऐसे थे कि बाहर से अंदर कुछ दिखाई नहीं दे सकता था। निर्भया केस के बाद 2012 में जब ये मुद्दा उठा तो बहुत सारे कानून बनाए गए, लेकिन ये सब शायद सिर्फ कागजों के लिए बनाए गए थे, कागजों पर है, हकीकत की जमीन पर आज भी शायद नहीं है। अगर होता तो शायद 4 अगस्त की रात ये जो कुछ हुआ वो नहीं हो पाता। पूछिए क्यों? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और कानून है, क्योंकि निर्भया के साथ 16 दिसंबर 2012 में जो हुआ, मुनीरका से लेकर महिपालपुर की उस दूरी, उस फासले में 8 किलोमीटर के, तब उस सफेद रंग की बस के की तमाम खिड़कियों पर पर्दे लगे थे। बस के अंदर 6 हैवान थे, उन्होंने बारी बारी से निर्भया को लूटा था। तब यह हुआ कि अगर पर्दे ना होते तो शायद दिल्ली की सड़क पर बाहर से सारी चीजें दिखाई देती और निर्भया के आबरू बच सकती थी। तो फिर यह हुआ कि क्यों? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, कानून, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लॉ ये कहते हैं कि किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो सड़क पर चल रही है, महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसमें कोई भी ऐसा कर्टन या पर्दा नहीं होगा जो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, जिससे बाहर से अंदर की चीजें न दिखाई दे, किसी में भी नहीं। ये कानून है, लॉ है और इसके लिए भारी भरकम चालान है। लेकिन 2012 की उस बस में भी जिसमें निर्भया सवार थी तब पर्दा था, और 4 अगस्त 2026 की इस बस में भी जो परिचौक से कश्मीरी गेट तक पहुंचे उसमें सारी खिड़कियों पर कर्टन थे, पर्दे थे। सवाल यह है कि बाकी चीजें क्या हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, चलिए छोड़ देते हैं। परिचौक से 47 किलोमीटर तक ये बस ट्रेवल करती है, 2 स्टेट के अंदर दाखिल होती है, दर्जनों पिकेट्स को ये क्रॉस करती है। क्या किसी पुलिस वाले को इस बस की खिड़कियों पर लगे पर्दे दिखाई नहीं दिए? और अमूमन सड़क पर पुलिस वालों कि जो मौजूदगी होती है उन्हें पता है डूज एंड डोंट्स क्या है। किसी भी अगर गाड़ी में कार के शीशे काले हों तो पुलिस रोककर चालान करती है, लेकिन यहां पूरी की पूरी बस पर्दे से ढकी है। एक भी पुलिस वालों ने यह जरूरी नहीं समझा कि इस बस को रोकें या फिर मैसेज दें आगे रुकवाएं और उसको कम से कम चेक ही कर लें, नहीं कोई ऐसी उम्मीद की कुछ ऐसा हो रहा हो, चालान तो बनता ही है, लेकिन नहीं, किसी ने नहीं किया। तो इसीलिए कह रहा हूं कि जो निर्भया के बाद हुआ, बहुत सारे शोर हंगामे, मोमबत्तियां जली, कानून बने, सब कागजों पर है, हकीकत में नहीं है, वरना ये बस पर्दों के साथ ये दंदनाती नहीं फिरती। सीसीटीवी कैमरा हर बस में इसीलिए है ताकि अगर कोई अकेला मुसाफिर भी है, खासतौर पर कोई महिला है, तो कम से कम पल पल की चीजें रिकॉर्ड हो, सीसीटीवी कैमरा का है।

0: और ये तो इस बस में ये हुआ, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। अगर आप यूं ही किसी बस का इंस्पेक्शन कर लें तो आपको हर तीसरा चौथा बस में तीसरी चौथी बस ऐसी दिखाई देगी, लेकिन किसी ने नहीं देखा। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया, दोनों के घर वालों से भी पूछताछ हुई। जिस रात ये इंसिडेंट हुआ उस रात ये बस एक्चुअली जो बस के ओनर है उसके हिसाब से ये ड्यूटी पर थी ही नहीं, क्योंकि इस बस में कुछ मेंटेनेंस का काम था, कुछ रिपेयर था, तो सर्विस स्टेशन इसको भेजा गया था और वहाँ सब कुछ हो गया। तो इन दोनों को भेजा गया, ड्राइवर और कंडक्टर को, कि जाओ सर्विस स्टेशन से इस बस को ले आओ, अगले दिन से इसकी ड्यूटी लगाएंगे। और ये दोनों खाली थे और खाली बस को लेकर आ रहे थे। और एक जॉय राइड, एक ये शब्द है जो मुझे निर्भया केस में सुनाई दिया। तब दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर थे नीरज कुमार, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस शब्द का इस्तेमाल भी किया था कि 16 दिसंबर 2012 को जब निर्भया के साथ हुआ तो वो जो 6 लोग उस बस में सवार थे वो कोई ड्यूटी पर नहीं थे, किसी सवारी को उठाने नहीं जा रहे थे, बल्कि वो बस को अब पार करने के लिए ले जा रहे थे जो उसके लिए फिक्स जगह थी, मतलब कोई काम नहीं था। तो वो जब खाली बस को लेकर जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि चलो क्यों ना कुछ पार्टी करें, मस्ती करें, और वो उसी बस में शराब पी रहे थे। और एक तरह से उस बस पर ये 6 लोग बैठकर उस दिन जॉय राइड पर निकले थे। यही 14 साल बाद दोहराया गया परी चौक से कश्मीरी गेट तक, वो 8 किलोमीटर या 47 किलोमीटर। निर्भया 8 किलोमीटर के दायरे में लुटी और ये 16 साल की लड़की 47 किलोमीटर के दायरे तक दोनों हैवानों से लूटते रहे। अब इस मामले में भी मुकदमा चलेगा, अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी बात आएगी, दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान भी आ रहे हैं कि हम सख्ती करेंगे, लेकिन इसी बीच अब नोएडा पुलिस की तरफ से भी आ रहा है कि हमें तो अब तक दिल्ली पुलिस ने कुछ बताया ही नहीं था। अब आजकल मैं बता दिया हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहां से ये ओरिजिन हुआ, जहां से शुरुआत हुई, जहां से वो लड़की बस में बैठी, कायदे से ये केस उधर का बनता है। पर उनकी शिकायत ये है कि दिल्ली पुलिस ने 0 FIR दर्ज कर इसकी जाँच तो की, हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। तो सरहदों और दो राज्यों के बीच की हमारी लड़ाई भी ऐसी ही चलती है जैसे बॉर्डर पर चलती है। लेकिन खैर ये लड़ाई भी निपट जाएगी, केस भी बनेगा, हो सकता है फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी जाए। और ये भी तय है कि इन दोनों को जो मैक्सिमम पॉक्सो से लेके बाकी धाराओं में सजा है वो भी दे दी जाएगी। फिर क्या होगा? केस क्लोज, लेकिन क्या रेप क्लोज होगा? अगर यही चीजें एक बस ड्राइवर और कंडक्टर के अंदर ये बातें रहेंगी कि मैं दंदनाती हुई दिल्ली या नोएडा की सड़कों पर बस चलाकर किसी लड़की की आबरू लूट सकते हैं और जब रास्ते में जितने भी पुलिस वाले बैरिकेड्स या बॉर्डर हो हमारा कोई कुछ नहीं करेगा, तो फिर कहां से रुकेगा? इसीलिए हमारे देश में हर 17 मिनट में एक रेप, हर घंटे 3 से 4 और हर दिन 80 से 82। 2024 का एक डेटा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, NCRB का। 2024 में हमारे देश में क्राइम अगेंस्ट वुमेन यानी महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए उसकी पूरी तस्वीर यह है कि 4,41,534 केस देश के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। 4,41,534 केसेस क्राइम अगेंस्ट वुमेन के तहत रजिस्टर है और इनमें से 29,536 केस, 29,536 हमारे देश में 29,536 निर्भया हर साल उनकी आबरू लूटी जाती है। 29,536 गहराई में सोचिए कि लगभग 30,000 अपने देश में लड़कियों की आबरू हर साल लूट जाती है। और सजा के नाम पर क्या होता है? 2020 निर्भया के 4 गुनहगार को फांसी, उससे 18 साल पहले धनंजय चटर्जी कोलकाता में उसको फांसी, मतलब पिछले 18 सालों में और अब 20 के बाद 6 और जोड़ दें तो 18 और 6 24 सालों में रेप के मामले में कुल 5 लोगों को फांसी हुई है। साल में होता उन करीब 30,000 रेप, 29,534 ही ले लेते हैं। फांसी पिछले 24 सालों में कितनी हुई? सिर्फ 5। पिछले 10 सालों में कितने लोगों को फांसी की सजा हुई? अराउंड 400। पर उस 400 में से कितनों को फांसी दी गई? 0। सब जेल में आराम से। और अपने यहां जेल के बारे में कितनी बार आपसे बोल कि जेल में कोई तकलीफ है नहीं, पैसे होने चाहिए। बल्कि जेल में जाकर अब आप ज्यादा बड़े मुजरिम बन रहे हैं। आप जेल सुधार गृह के नाम पर कहां सुधार गृह रहा, जहां से बड़े बड़े गैंग चल रहे हो, वहां से आप क्या उम्मीद करेंगे? तो तस्वीर डरावनी है, लेकिन उससे डरावना सच यही है कि जब तक सिर्फ कानून सख्त करने, कानून बना देने से कुछ नहीं होगा, जब तक कानून का खौफ मुजरिमों के दिल में ना हो कि अगर आज मैं जुर्म करूं तो अगले 1-2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर शायद मुझे सजाए मौत सिर्फ मिलेगी नहीं बल्कि लटका दिया जाएगा। तो जब तक ये खौफ नहीं होगा, 2014 में हम लोग निर्भया के लिए रोए, 2026 में इस बच्ची के लिए रोएंगे, आने वाले दिनों में फिर और भी ऐसे ही होगा। और जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा था, जितनी देर में आपने ये कहानी सुनी, एक रेप हो चुका है। तो बस इतना ही।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। भारत की रक्षा नीति से लेकर भविष्य की युद्ध रणनीति तक देश की सुरक्षा पर सीधी बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ देश के सबसे बड़े रणनीतिकारों और सुरक्षा विशेषज्ञों का महामंच आज तक सुरक्षा सभा, सिर्फ आज तक पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

दिल्ली में इमारत गिरने के बाद राहत और बचाव का काम जारी। बेसमेंट में खुदाई की वजह से हादसे की आशंका। बिल्डिंग में चल रहा था पीजी हॉस्टल। दिल्ली हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताई संवेदना। मौके पर पहुंचे सीएम रेखा गुप्ता, कहा नहीं बचेगा कोई गुनहगार। राहुल गांधी ने जताया दुख। दिल्ली गैस आरसीसी में पीएम मोदी के संबोधन को लेकर विपक्ष के सवालों पर नितिन नवीन का तंज, कहा प्रधानमंत्री ने कल नाराज फूफाओं को होम्योपैथी की दवा दी लेकिन आज उसका असर एलोपैथी वाले हाई एंटीबायोटिक जैसा हुआ। बिहार में उफान पर गंगा। 11 जिलों के 22 लाख लोग प्रभावित। राजधानी पटना से लेकर भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय पानी।

0: दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक 5 मंजिला इमारत गिर गई और इस इमारत के गिरने से 5 लोगों की अब तक मौत हो गई है। कई लोग इस समय घायल हैं जिनका दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। और ये बड़ी खबर आपको देते हैं, मृतकों का आंकड़ा अब बढ़कर 5 पहुंच गया है। दिल्ली बिल्डिंग हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज तक लगातार इस हादसे से जुड़ी हुई एक तस्वीर, ऑपरेशन से जुड़ी हुई एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है और सबसे पहले पहुंचा रहा है। इस मामले में इमारत के मालिक और दूसरे लोगों के खिलाफ FIR भी की गई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि जो भी अपराधी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। कई टीमें इस समय NDRF के काम कर रहे पुलिस है। सत्य निकेतन में यह हादसा हुआ, मलबे में दबे लोगों को अभी भी ढूंढा जा रहा है और PG चल रहा था लेकिन जर्जर इमारत में जो किसी भी समय गिर सकते थे उसके बावजूद इसे चलाया जा रहा था। इसमें बच्चे रखे गए थे, बच्चे इसमें रह रहे थे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद लगभग 3 घंटों तक मौके पर रहीं। मंत्री भी दिल्ली कैबिनेट के रहे, स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे और दूसरे मंत्री, स्थानीय विधायक, सांसद मौके पर रहे। फिर उसके बाद अस्पताल भी मुख्यमंत्री पहुंचे। प्रधानमंत्री ने भी इस हादसे पर दुख प्रकट किया है और घायलों के परिवारों को इस कठिन समय में उनके साथ होने की बात कही है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता हादसे वाली जगह पर पहुंची और उसके बाद वो वहां से अस्पताल के लिए गए। इस बीच में मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि आरोपी इमारत का जो मालिक है उसके समेत जो भी इसमें दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा।
1: अभी उम्मीद है कि शायद और बच्चे भी अंदर तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है। हमारी टीमें जो है वो पूरी तरीके से काम कर रही है। नीचे ऑक्सीजन भी डाली गई है, कैमरा भी
2: काम कर रहे हैं।
1: बच्चों की जान है और कोई भी कल्प्रिट छोड़ा नहीं जाएगा। खास करके ये जिसका मकान है, जो यहाँ पे बिल्डिंग छोड़ के भाग गया, जो कि अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा था, बेसमेंट में खुदाई कर रहा था और जिसकी वजह से जो पिलर है वो डिसमेंटल हुआ और बिल्डिंग पूरी गिर गई, तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। और जिसके कारण से ये हादसा हुआ है सबको सजा भुगतनी
0: पड़ेगी। अब आपको सीधा ग्राउंड जीरो पर ले चलते हैं। हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, अब तो लगभग 9 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया है, तो इस समय तक कितने लोगों को निकाल लिया गया है? अभी भी राहत बचाव का ऑपरेशन कितना लंबा चल सकता है? ग्राउंड जीरो पर इस समय क्या चल रहा है वो दिखाएं भी आप तस्वीरें।
3: देखिए राजीव, लगभग अगर मैं कहूं तो 10 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और सुबह लगभग 1:15 के आसपास ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। उसके बाद से ही फायर ब्रिगेड की टीम और उसके बाद एक के बाद एक सिविल डिफेंस, दिल्ली पुलिस और NDRF की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो इस वक्त कर रही हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक जानकारी दे दूं, अब तक 5 कैजुअल्टी जो है वो इस पूरे हादसे के अंदर अब तक ऑफिशियल डाटा जो है वो सामने आया है। 10 पेशेंट्स जो रेस्क्यू किए गए थे वो एम्स ट्रॉमा सेंटर में एडमिट किए गए थे, जिसको एम्स की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि 4 ब्रॉड डेथ जो है वो घोषित किए गए हैं एम्स की तरफ से। टोटल अब तक की जो कैजुअल्टी है वो 5 लोगों की है। इसके अलावा 12 के आसपास लोगों को यहां से रेस्क्यू किया गया है। कुछ

0: बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे, कुछ बिल्डिंग के बाहर भी जो है वो शख्स मौजूद थे जो कि इस हादसे का शिकार हुए। एक मजदूर था जो कि बिल्डिंग की बेसमेंट के अंदर काम कर रहा था, वो भी इस हादसे का एक शिकार जो है वो हुआ है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर दिल्ली की मुख्यमंत्री की तरफ से मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जो है वो दे दिए गए हैं। अब इसकी पूरे मामले की जांच जो है वो की जाएगी। हत्या दिल्ली पुलिस को ये निर्देश दिया गया है कि इस पूरे हादसे पर जो हरिओम बंसल है जो कि इस बिल्डिंग का मालिक है उसके खिलाफ FIR जो है वो दर्ज की जाए। इसके साथ ही मैं अपने सहयोगी से भी कहूंगा कि वो तस्वीरें भी दिखाएं क्योंकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार यहां पर जारी है। NDRF की टीमें जो है वो लगातार यहां पर मौजूद है और देर रात तक इसी तरीके का ऑपरेशन जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा क्योंकि जब लगभग 8-9 बजे के आसपास हमारी लोकल विधायक और इसके साथ साथ यहां पर जो मौजूद लोग थे उनसे जब बात हुई तो तब उस वक्त तकरीबन 2.5 से 3 मंजिल के आसपास मलबा जो है वो हटा लिया गया था। अब अगर बात की जाए तो लगभग ग्राउंड फ्लोर के आसपास तक मलबा जो है वो काफी हद तक हटा लिया गया है लेकिन अभी बेसमेंट और उसके आसपास का भी काफी मलबा जो है वो अभी यहाँ पर है और उस मलबे को हटाने के बाद ही पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर होगी क्योंकि स्थानीय विधायक की माने तो लगभग 13 के आसपास रजिस्टर्ड स्टूडेंट जो है वो उनकी नॉलेज में थे, उससे ज्यादा भी जो मजदूर थे वो भी अंदर थे और आसपास का जो पूरा हिस्सा था जब ये बिल्डिंग गिरी तो उसके आसपास कई सारे लोग बिल्डिंग के आसपास मौजूद थे वो भी इसका शिकार हुए थे। तो वो पूरा एक डाटा जो है वो सामने आएगा। अब देखना यह है कि अब तक कितनी कैजुअल्टी और कितने लोग जो है वो इस पूरे हादसे के अंदर शिकार हुए लेकिन एक बड़ा हादसा और इस हादसे के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी जो तय होनी चाहिए नगर निगम की वो एक बड़ी लापरवाही जिस तरीके से बिल्डिंग जो 5 मंजिला थी बिल्डिंग के अंदर रिनोवेशन का काम चल रहा था कि आखिरकार वो रिनोवेशन का काम कैसे चल रहा था, किसके पास उसकी परमिशन थी या नहीं थी, अब उसके जांच जो है वो की जाएगी। लेकिन हरिओम बंसल जो कि इस बिल्डिंग के मालिक है अब उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ेंगी क्योंकि इस पूरे हादसे को लेकर के दिल्ली की मुख्यमंत्री की तरफ से
1: मुश्किलें फिलहाल बढ़नी नहीं, ऐसे ही उनके सामने मुश्किलें पैदा होनी चाहिए कि वो एक नजीर बने और दूसरे लोग ऐसा करने से हिचकिचाएं। आपके पास मैं लौट रहा हूं। इस बीच में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज जो खुद लगातार घटनास्थल पर दिखाई दी, उन्होंने इस पूरी घटनाक्रम को लेकर क्या कहा, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने, सुशांत ने, आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आप जानते हैं कि सत्यनिकेतन में एक पीजी बिल्डिंग जो है वो गिर गई है लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता रेस्क्यू ऑपरेशन है। ईश्वर की कृपा से 11 स्टूडेंट्स को रेस्क्यू कर लिया गया है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर फाइन। NDRF लगी हुई है, MCD के लोग लगे हुए हैं, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की सभी एजेंसियां यहां पर लगी हुई हैं। पर आपके माध्यम से मैं आश्वासन देना चाहूंगी कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो अभी हमारी फिलहाल हमारी प्राथमिकता है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
0: मुख्यमंत्री ने भी माना कि जो आरोपी है वो फरार है, बिल्डिंग का ऑनर, बिल्डिंग के अंदर 5 मंजिला इमारत थी और उसके नीचे भी काम जो है वो चल रहा था, क्या उस पर कार्रवाई, एक बड़ा एक्शन जो है वो कि इस पूरे इलाके में कई ऐसी और बिल्डिंग है, क्या उन पर भी अब एक्शन होगा?
2: निश्चित होगा और जो बिल्डिंग का ओनर है उसको भी, उसका भी जो घर है पता कर लिया गया है, गुड़गांव में वो अभी निवास कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, क्योंकि वो अनिवार्य है, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। धन्यवाद।
0: बातचीत करने के लिए बांसुरी स्वराज, नई दिल्ली से सांसद, साफ तौर पर कहना है कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। बड़े स्केल पर पूरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एक पूरी यहाँ पर जो है तमाम बिल्डिंग की उसकी इंस्पेक्शन जो है वो सरकार की तरफ से कराई जाएगी और जो ऑनर इस बिल्डिंग का उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। कैमरा पर्सन अमित बदवार के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली। आज तक
1: सुशांत हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े। सुशांत, एक ये भी अपडेट आप दें कि अभी तक बीते कुछ घंटों में कितने नए लोगों का रेस्क्यू किया गया, ये संख्या अभी भी 12 ही है या 12 से बढ़ी है, एक तो ये, और दूसरा ये कि कार्रवाई के एंगल से अब आप बताएं कि दिल्ली सरकार ने अब तक क्या क्या एक्शन, किस किस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या कोई टीम बनाई गई है, क्या एक्शन होने वाला है आरोपियों पर?
0: देखिए, जब मुख्यमंत्री यहां से निकली थी और जब मुख्यमंत्री आई थी उस दौरान लगभग 3 लोगों को यहां से रेस्क्यू किया गया था और उसके बाद से अभी तक फिलहाल अगर कहा जाए तो पिछले 1.5 घंटे में किसी भी व्यक्ति का यहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो फिलहाल नहीं किया गया। हालांकि यहां पर जो मलबा है उसको हटाने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। जैसे जैसे मलबा हटेगा उसके बाद तस्वीर जो है वो सामने क्लियर होगी, लेकिन अब तक 12 लोगों को यहां से रेस्क्यू किया गया है। अब बात करें दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार

0: से रेस्क्यू किया गया है। अब बात करें दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार की तरफ से क्या क्या एक्शन जो है वो लिया गया है इस पूरे मामले पर, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। और मैं आपको ये जानकारी भी दे दूं कि अब इस पूरी मामले की जांच जो है वो पूरी तरीके से की जाएगी, और इसके अलावा ये हादसा कैसे हुआ, किसकी लापरवाही थी, इसके अलावा कौन कौन अधिकारी जिम्मेदार थे, उन सब के लिस्ट जो है वो बना करके खुद मुख्यमंत्री के पास जो है वो पेश की जाएगी। और उसके बाद जिस तरीके से मालवीय नगर का हादसा हुआ था, उसके बाद मुख्यमंत्री ने इलाके के जो जेई हैं और अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की थी, उसी तरीके की कार्रवाई जो है वो अब यहां पर भी जो है वो नजर आ सकती है। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने इलाके के जो विधायक है और सांसद है उनसे भी इस पूरे मामले के लिए रिपोर्ट जो है वो मांगी थी कि हादसा कैसे हुआ, किस वजह थी, क्या क्या कारण थे, कैसे ये बिल्डिंग के अंदर रिनोवेशन का काम जो है वो हो सकता है। और जो आरोपी है हरिओम बंसल, उसके खिलाफ अब FIR के निर्देश जो है वो दिए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, कहा है इसकी FIR जो है वो दर्ज की जाए। और उसके भाई जो कि आनंद बंसल है, उसकी भी बराबर में बिल्डिंग है। तो ऐसी कितनी यहां पर इस तरीके की बिल्डिंग है जहां पर बेसमेंट के अंदर इस तरीके का रिनोवेशन का काम चल रहा है और जहां पर स्टूडेंट्स रह रहे हैं और स्टूडेंट किन हालातों में रह रहे हैं, इन सब को लेकर के जांच जो है वो मांगी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। और आपको ये जानकारी भी दे दूं, हो सकता है कि कल सुबह तकरीबन 7 से 8 बजे के आसपास एक बार फिर मुख्यमंत्री जो है वो यहां पर पहुंचेंगी और वो स्थिति का जायजा लेने की, क्योंकि आज भी लगभग 3 घंटे के आसपास मुख्यमंत्री जो है वो यहां पर खड़ी रही थी और उस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तमाम लोगों को वो बता रही थी कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन करना है। तमाम अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी, MCD के जो कमिश्नर थे वो तक यहां पर मौजूद थे। और कल भी मुख्यमंत्री जो है वो उनके आने की उम्मीद जो है वो बताई जा रही है कि लगभग सुबह 7 से 8 बजे के आसपास यहां पर आएंगी। जो बांसुरी सौराष्ट्र वो लगभग 7 से 8 घंटे तक यहां पर मौजूद रही। सीधे तौर पर अब देखा जाए कि एक बड़ा मामला, एक बड़ा हादसा दिल्ली के अंदर मालवीय नगर रोहिणी के बाद अब दिल्ली के अंदर एक
1: बड़ा हादसा और बहुत बड़ा सवाल भी। सुशांत, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास हम लौट रहे हैं। इस हादसे पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से भी बयान आया, उन्होंने उस समय जानकारी दी कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको सुनाते हैं कुछ समय पहले जो हमने बातचीत की थी, आपको सुनाते हैं क्या कुछ का स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने।
2: साथ दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर पंकज सिंह हैं। तो सर, आप यहां पर पहुंचे हैं, देखा जा रहा है कि तकरीबन 3 लोग हैं उनकी मौत हो गई है। सर, क्या है मेडिकल बिहाफ से, आप अगर हमें बता सके हेल्थ बिहाफ से क्या है इस समय की बड़ी जानकारी?
3: देखिए, अभी तक से जो मेरे पास जानकारी है 3 की कैजुअल्टी, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो, 8 लोग एडमिट है और उनका इलाज चल रहा है, जो 5 एम्स में है, 1 सफदरजंग में, 1 प्राइमस में, 1 RR में है। और उनकी अभी 12-13 घंटा बाद हम एग्जैक्ट रिपोर्ट आपको दे पाएंगे। और अभी हम जो रेस्क्यू चल रहा है, NDRF की रेस्क्यू कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ और भी लोग हैं उसके अंदर। एक बार हम जितना लोग को रेस्क्यू करके बचा सके, क्योंकि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इस घटना को बयान करना बड़ा मुश्किल होगा। अभी फिलहाल आज का दिन रेस्क्यू पे लगाएंगे, कल से जो एक्शन करना वो करेंगे।
2: पंकज जी, कितने जो लोग हैं रेस्क्यू किए गए हैं, क्रिटिकल हैं, कितने जो है नॉर्मल है, कुछ इसकी जानकारी?
3: मैंने बताया ना जी, टोटल 11 थे, 11 में से 3 की कैजुअल्टी हो रखी है, 8 एडमिट हैं, उनकी स्थिति भी 12 घंटे ऑब्जर्वेशन में रहने के बाद वो एग्जैक्ट पिक्चर क्लियर बता पाएंगे।
1: तो ये बातचीत थोड़ी देर पहले की थी और मौत का आंकड़ा तब से बढ़ गया है और इस समय 5 है मौत का आंकड़ा और घायलों की संख्या अभी वही है। दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज दोपहर में लगभग 1 बजे के आसपास से हादसा हुआ, जब ये बहुमंजिला इमारत गिर गए। इस हादसे में कई छात्र घायल बताए जा रहे हैं और अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है।

0: ऐसा हादसा जिसने दिल्ली को हिला के रख दिया, ऐसा हादसा जिसने लोगों के दिलों में खौफ भर दिया। देखिए, दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में दोपहर करीब 1:30 बजे एक इमारत ढह गई। इमारत ढहते ही अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें देखिए, सिर्फ धूल का गुब्बार नजर आ रहा है और साथ में नजर आ रहा है कि कैसे मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है।
1: यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लोकल्स की मदद से जो है यहाँ ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ को भी इस वक्त बुला लिया गया है। एनडीआरएफ की भी एक बटालियन जो है, एक टीम जो है, वो इस वक्त यहाँ पहुंच गई है और अभी धीरे धीरे वो यहाँ पे स्पॉट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि कितनी भारी संख्या में जो यहाँ लोकल्स

0: वो लोकल लोकल जो है यहाँ मदद कर रहे हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं। अभी ये बड़ी मशीन, अभी जो मशीनें हैं, जो कटर्स हैं, हैवी कटर्स हैं, बोल्डर कटर्स हैं, उन्हें भी अभी लेकर के यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो इस वक्त यहाँ आई है। और ये 5 मंजिला इमारत बताई जा रही है। अगर आप तस्वीरों में थोड़ा और क्लैरिटी से देखें यहाँ पर, तो ये देखें आप, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग थी और ये काफी बड़े इलाके में जो है ये पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक बॉयज हॉस्टल था और उसे बॉयज हॉस्टल में जो है ये पूरा हादसा हुआ है।
1: बताया जा रहा है कि इस इमारत में पीजी हॉस्टल था। सत्य निकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास बसा प्रमुख छात्र इलाका है। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं, इसी वजह से यहाँ दिन भर छात्रों की आवाजाही रहती है। हालांकि सत्य निकेतन में कुल कितने छात्र रहते हैं इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी बचाव काम चल रहा है, वो भी संभाल कर कि कहीं मलबे में दबे किसी शख्स को नुकसान न पहुंचे।
0: तो यहाँ पे जेसीबी चलाना वो खतरे से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि आखिर कितने लोग फंसे हैं और कौन कौन सी जगह फंसे हैं। अगर जेसीबी से मलबा हटाने के चक्कर में कुछ और लोग जो फंसे हुए हैं, जो शायद इंजर्ड हो, बस उनकी भी जान पर बना सकती है। और इसीलिए जेसीबी का अगर हम देखें तो ज्यादा इस्तेमाल ऐसे सिचुएशंस में नहीं किया जाता। और जो प्रिसाइज हैवी टूल्स होते हैं, जैसे बड़े ड्रिलर्स होते हैं, स्टील कटिंग मशीन्स होती हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये पता लग पाए कि कहाँ कहाँ लोग फंसे हैं। अभी इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे ये समझ आ गया है कि यहाँ पर लोग नहीं फंसे हैं, जो बिल्डिंग के बाहर की लोकेशंस हैं वहां पर अब जेसीबी की कार्रवाई जो है वो शुरू होती हुई दिख रही है। और बिल्डिंग के बाहर जहां गाड़ियों पर जो मलबा गिरा था उनसे अब मलबा हटाना शुरू किया जा रहा है, लेकिन बिल्डिंग जहां पर थी, जहां लोग फंसे हुए हैं, वहां पर अभी जेसीबी नहीं चलेगी। वहां पर अभी मेटल कटर्स चलेंगे, वहां पर अभी जीपीआर लगाया जाएगा, ये पता लगाया जाएगा कि कहां कहां लोग फंसे हैं, और उसके बाद वहां से मैन्युअली डिग करके ही लोगों को निकालना होगा या फिर हैंड यूजेबल मशीन से ही लोगों को निकालना होगा। अगर आप देखें यहां पे अभी भी प्रशासन को बहुत मुश्किलें हो रही हैं लोगों को समझाने में कि ये जगह खाली कर दे, क्योंकि ये जगह अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कहीं से भी मलबा और भी थोड़ा घिसक सकता है और लोगों को इंजरीज हो सकती है और लोगों को चोट आ सकती है।
1: बताया जा रहा है कि इमारत के बेसमेंट में काम चल रहा था, लेकिन अभी सही तौर पर ये नहीं मालूम चल सका कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। अनमोल बाली, अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
2: दिल्ली में इस इमारत के गिरने के बाद एक और माफिया की चर्चा सबसे ज्यादा है, और वो माफिया है पीजी माफिया। ये पीजी माफिया यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के इर्द गिर्द जो है ये पीजीज बनाता है और फिर बड़े बड़े दाम पर वहां पर पीजीज को बेचा जाता है। अगर कुछ इलीगली काम करना हो तो आधिकारिक में पैसा भरो और उसके बाद जो काम करना हो वो करो। और इस इमारत के गिरने के बाद ये पीजी माफिया भी एक्सपोज हुआ है और अधिकारी भी।
3: खानी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि सरकार ये समझे कि जो हमारा देश का जो भविष्य है, जो दूसरे राज्यों से पढ़ाई करने के लिए आते हैं, वो किस तरीके से किन हालात के अंदर पढ़ते हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे, हमारे सारे स्टूडेंट हैं और सामने ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी। ये मैं जानना चाहूंगा, जब ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी उस वक्त आप सब यहाँ मौजूद थे, क्या आपने देखा था?
4: सर, आवाज काफी तेज आई थी तो बाहर निकल के देखा तो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, तो कोई शौक वाली बात नहीं है। आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग सतनिकेतन में अभी गिना सकता हूँ जो गिरने वाली हालत में होंगी। डीयू के पास इतना करोड़ों का बजट रहता है, वो नहीं अगर चाहती तो एक कहीं ना आसपास एरिया बना के कहीं पूरा हॉस्टल एलोकेशन कर देती सारे डीयू के कैंपसेस को, बट पीजी माफिया को कैसे सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट? फिर पीजी माफिया से तो उनको चंदा मिलता है ना।
3: आप रूम का रेंट देते हैं?
4: ये 18,000 रुपए का एक रूम है, ये इतना छोटा रूम है। 18,000 रुपए जी
3: पर पर्सन?
4: नहीं, पूरे रूम।
3: जरा दिखाइए कहाँ पर है ये समझना होगा कि देखिए ये एक रूम है। अब इस रूम की हालत देखिए, ये महज 10x12 का कमरा है। एक लकड़ी का बेड नजर आएगा, पतला सा गद्दा नजर आएगा, और इस कमरे के अंदर दो लोगों के रहने की जो कॉस्ट है वो 18,000 रुपए, यानी 18,000 रुपए में आपको ये कमरा मिलेगा। और जिस तरीके से स्टूडेंट ने बताया कि जो पीजी माफिया है वो इस पूरे इलाके में सक्रिय है, और इस तरीके के कई सैकड़ों अगर कहा जाए तो यहाँ पर पीजी जो है वो चलते हैं। छोटे छोटे कमरे और उसके अंदर ये वॉशरूम है, ये छोटा सा एक कमरे के अंदर आपको यहाँ पर वॉशरूम भी जो है वो नजर आएगा, जो कि मैज अगर कहा जाए तो 5x5 का एक पूरा वॉशरूम है। और भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं, और भी कई सारे स्टूडेंट आप भी यहीं पे रहते हैं, कितने आप पैसे देते हैं?
5: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं,
3: खाली हम आए। कितने पैसे देते हैं?
5: 9,000।
3: 9000 रुपए। इसके अलावा क्या मिलता है?
4: फैसिलिटीज एसी टीवी फ्रिज वगैरह सब है,
3: बस यही मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ ठीक है, चलिए और भी है, आपको और भी देखते हैं, और भी कई सारे जो स्टूडेंट हैं, आप भी यहीं पे रहते हैं? जब बिल्डिंग गिरी थी तो उस वक्त क्या आपने देखा, उस वक्त यहीं पर मौजूद थे?
5: हाँ, लाइक बालकनी के सामने ही गिरा था, तो मैंने देखा ये क्या बोलते हैं, लाइक जब मैं निकला देखा कि पूरा ऐसे डस्ट वगैरह से भरा हुआ था एंड ऑल, एंड फिर देखता हूँ कि लाइक जो पानी की टंकियां रहती है, 3-4 टंकियां ये गिरी हुई थी।
3: अमूमन जो बिजली कंपनियां हैं वो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक जो मीटर होते हैं, पावर के जो मीटर्स होते हैं, उनको बिल्डिंग के बाहर लगाना होता है, कहीं हादसा ना हो। लेकिन इस कमरे के अंदर मैं तीसरी मंजिल पर मौजूद हूं और इस बिल्डिंग के अंदर आपको यहां पर बिजली का मीटर नजर आएगा। किस तरीके से जो बिजली विभाग है उसकी भी एक बड़ी लापरवाही है, और यहां पर किस तरीके से बिजली का इस्तेमाल होता है, और यहां पर कई सारे कमरे जो है वो यहां पर आपको नजर आएंगे। ऐसे कितने कमरे हैं जो कि यहां पर बने हुए हैं, एक एक फ्लोर पर 3 से 4, 4, 5, 5 कमरे जो है वो यहां पर बने हुए।
2: एक बार फिर से आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलते हैं, हमारे संवाददाता सुशांत इस समय ग्राउंड पर लगातार डटे हुए हैं। आज तक प्रयास ये है कि एक एक जो अपडेट है वो आप तक पहुंचाया जाए। सुशांत, क्या उम्मीद करें, क्या एक्सपेक्ट करें कि कुछ घंटों में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, चूंकि आप बता रहे हैं कि बेसमेंट के इर्द गिर्द का ही एरिया बचा है, या सुबह तक ही खींच सकता है?
3: नहीं देखिए, ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अब सुबह तक ही जो है वो चलेगा, और काफ़ी मलबा जो है वो अब जो है वो बाहर निकाल करके साइड किया गया है, और उसको धीरे धीरे करके जो है वो बड़े बड़े ट्रकों और जेसीबी की मदद से जो है वो भर करके यहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि मलबा 5 मंजिल इमारत का था, भरभराकर की ये पूरी बिल्डिंग गिरी, कई कमरे थे और उसका मलबा, उसका सामान, ये सब कुछ वहाँ पर मौजूद था। उसको रेस्क्यू करने में जो टीम है उसको थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगभग सुबह 6-7-8 बजे तक जो है वो चलेगा निश्चित तौर पर, और उस बीच में अगर देखा जाए जो लोग अभी भी दबे हो सकते हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश जो है वो राज्य
2: क्या सुशांत इस समय भी स्नीफर डॉग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, खड़ा होता क्या है? अभी प्रशासन को लग रहा है, रेस्क्यू टीमों को लग रहा है कि लोग दबे हुए हो सकते हैं, या जितने दबे हुए थे वो सब निकाल लिए वो मानकर चल रहे हैं अब, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन भी क्या उसी गति से जिस सेंसिटिव तरीके से पहले से चला था वही सेंसिटिविटी अभी भी दिख रही है कि बड़ी बारीकी से अभी भी देख देख के रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है?
3: नहीं देखिए, अभी भी जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है उसी सेंसिटिविटी के साथ जो है वो चल रहा है, जितनी जेसीबी मशीन मौजूद थी उस वक्त उसके बाद और भी जेसीबी मशीनें जो है वो लाई गई हैं, और मैं आपको पीछे दिखाऊं कि देखिए किस तरीके से जेसीबी की जो मशीन्स हैं वो लगातार यहां पर काम कर रही हैं। हालांकि प्रशासन को लगता है कि अभी और भी कई लोग जो है वो इस हादसे के अंदर अभी दबे हो सकते हैं, क्योंकि बेसमेंट के अंदर काम चल रहा था, और बेसमेंट के अंदर जिस तरीके से मरम्मत का काम चल रहा था उसमें कई मजदूर भी जो है वो शामिल हो सकते हैं, उस घटना में हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो अभी प्रशासन की तरफ से ये पूरी कोशिश की जा रही है कि जो मलबा है उसको तरीके से हटाया जाए, और जो लोग अंदर फंसे हुए हैं अगर उनकी सांसें चल रही हैं तो उनको जल्दी से जल्दी बचा करके हॉस्पिटल ले जाया जा सके, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम की तरफ से यहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर भी जो है वो दिए गए थे, नीचे भेजे गए थे बेसमेंट की तरफ, उनको लगा था कि कहीं कोई अगर अंदर फंसा हुआ है तो उसको ऑक्सीजन जो है वो मिल सके, क्योंकि काफी कंजेस्टेड ये पूरा इलाका है, बेसमेंट में काम चल रहा था, इसके अलावा भरभराकर की जिस तरीके से ये पूरी बिल्डिंग गिरी, कई सारे स्टूडेंट जो है वो दबे हो सकते थे। जो तस्वीरें सामने आई वो काफी ज्यादा संवेदनशील तस्वीरें थी, और किस तरीके से रेस्क्यू कर करके निकाला गया, 5 लोगों की जान जो है वो जा चुकी है, कई सारे परिवार वाले जो है वो अब धीरे धीरे कर करके जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिनके बच्चों के नंबर फोन बंद पड़े थे, यहाँ पर अंदर बिल्डिंग में मौजूद थे, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, अब उनके परिवार वाले, उनके दोस्त जो है उनको ढूंढते हुए या तो वो एम्स ट्रॉमा सेंटर जा रहे हैं या सफदरजंग जा रहे हैं या फिर वो यहाँ पहुंच रहे हैं। एक बड़ा हादसा, कई सारे सवाल दिल्ली पुलिस पर, सवाल एमसीडी पर, क्योंकि उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जब इस तरीके के पीजी जो है वो चलते हैं तो उस पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। एक पीजी माफिया जो है वो दिल्ली के अंदर एक्टिव है, चाहे वो मुखर्जी नगर हो, चाहे वो राजेंद्र नगर हो, चाहे वो सत्यनिकेतन हो, ऐसे इलाके जहां पर इंस्टीट्यूट पास में है, यहां पर पढ़ाई करने के लिए दूसरे राज्यों से स्टूडेंट्स आते हैं, उनसे 12-12 हजार 15-15 हजार एक एक कमरे के वसूले जाते हैं।
2: ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है सुशांत, क्योंकि छात्रों की जान की कोई कीमत ही नहीं है ऐसे लगता है हमारे देश में, और दिल्ली में तो खासतौर पर कभी कोई जल जाता है, कभी कोई सड़क हादसे में मारा जाता है, कभी बिल्डिंग कोलैप्स में मारा जाता है, सरकारें आके यहाँ 2 आंसू दिखाती हैं और उसके बाद से वो वैसा ही उनका राजनीति करते हैं जैसे कि पहले करते हैं, तो उनके राजनीति करने में कोई बदलाव नहीं आता, ना वो सिस्टम को बदलने की खास सोचते हैं। और इस मामले के बाद भी उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं है कि सरकारें अपने काम करने के तरीके को बदलेंगी। सुशांत, एक आरोप यहाँ विधायक पर भी लग रहा है कि उनके भाई भी पीजी माफिया में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, और ये चूंकि हम जब लोगों से लगातार बात करते हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये बात बोल रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है?
6: बिल्कुल सर, मैं
3: देखिए, जब इस तरीके के आरोप लगते हैं तो निश्चित तौर पर ये सवाल उठते हैं, क्योंकि इलाके के विधायक और वो पास में ही रहने वाले हैं, हो सकता है कि उनके भी कई सारे हों, लेकिन अभी ये आरोप है उनका प्रूफ करना, क्योंकि जब इस तरीके के हादसे होते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव है, वो 17 सितंबर को है जब ये पूरा हादसा हुआ, उस दौरान भी यहाँ पर कई सारे NSUI के छात्र भी जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने भी यहाँ पर लोगों को बाहर निकाला, रेस्क्यू करा। तो अभी जो आरोप है वो सिर्फ आरोप है, या कि उनमें कितनी सच्चाई है वो उन बिल्डिंगों की इंस्पेक्शन करने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार जो विधायक के भाई पर ये आरोप लग रहे हैं अनिल शर्मा पे, क्या उसमें कितनी सच्चाई है, क्या वाकई ही उनके पीजी इस तरीके से चलते हैं, ये भी एक जांच का एक बड़ा विषय है। देखना होगा कि अगर उस तरीके के पीजी खुद जो नेता है वो चला रहे हैं, तो सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार इस सिस्टम से लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाएगी, किस तरीके
2: जांच
3: से
2: कौन करेगा,
3: जान जो है वो बचाई जाए,
2: सिस्टम को अपने खिलाफ जांच करनी है, और वो कितना न्याय अपने साथ करेगा या इन लोगों के साथ करेगा जिनकी जान गई है, इनके परिवार वालों के साथ करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल लगातार है। लेकिन मैं एक और पहलू पर थोड़ा सुशांत चर्चा चाहता हूँ, वो है NSUI वर्सेस ABVP। आज हमने बहुत सारे विजुअल्स देखे कि जब प्रशासन की टीम नहीं पहुंची थी तब स्टूडेंट्स पहुंच गए थे, NSUI दावा कर रहा है कि हम गए थे, हमने पहले रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, और बहुत सारे रील्स उन्होंने भी काटे हैं। ABVP कह रहा है कि नहीं, हम थे स्टूडेंट्स के साथ। तो कौन था जब बिल्डिंग गिरी, तो कौन था सबसे आगे जो लोगों की मदद कर रहा था, या मदद का दिखावा किया गया दोनों तरफ से, रील्स बनाए गए, किसी ने मदद नहीं की?
3: देखिए राजीव, देखिए जब भी चुनाव आता है, चाहे वो निगम का चुनाव हो, चाहे वो दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का, और उन चुनावों से पहले अगर इस तरीके के हादसे होते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम राजनीतिक दल जो है वो रोटी सेकने के लिए पहुंचते हैं। और इसी हादसे पर यह भी हुआ कि जब यह हादसा हुआ तो NSUI के कई सारे छात्र जो है वो यहां पर पहुंचे, उन्होंने रेस्क्यू करने की कोशिश करी, मलबा को हटाने की कोशिश करी, कुछ लोग दबे थे जो जिनको बचाया जा सकता था उनको अपने हाथों कंधों पर उठा करके एम्बुलेंस तक लेकर के गए। इसके अलावा ABVP के भी छात्र जो है वो यहां पर पहुंचे, उन्होंने भी कई सारे लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश करी, मदद के लिए आगे बढ़ाई। तब तक प्रशासन नहीं आया था, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्सिटी का एरिया है, कई सारे स्टूडेंट और जो कि राजनीतिक दल से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं, कुछ NSUI से, कुछ ISA के, ABVP के, तमाम राजनीतिक जो दल, स्टूडेंट यूनियन के जो दल हैं वो यहां पहुंचे, उन्होंने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। वो बात अलग है कि उस मदद के साथ साथ उन्होंने वीडियोज बनाकर के, रील बनाकर के ये भी जताने की कोशिश करी कि कौन सा दल जो है वो स्टूडेंट्स के लिए सबसे आगे है, क्योंकि 17 सितंबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव है, और ये पूरा कैंपस एरिया अगर कहा जाए तो यहाँ पर तमाम PG और आसपास अगर कहा जाए कई सारे कॉलेज है साउथ कैंपस के, तो वो राजनीति चमकाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। वहीं ABVP की तरफ से MCD दफ्तर पर जो है वो जाकर के प्रदर्शन किया गया, क्योंकि MCD की लापरवाही जो है वो सबसे ज्यादा बड़ी मानते हैं। तो कहीं ना कहीं, और भी जो प्रदर्शन था वो सिविल लाइन था, वहां पे नॉर्थ कैंपस है, वहां पर भी अगर देखा जाए तो ABVP और NSUI जो है वो चुनाव लड़ते हैं, उनके बीच में कांटे की टक्कर रहती है। तो इस मुद्दे को कहीं ना कहीं एक दूसरे के पाले में डालना या नहीं डालना, इस पूरी राजनीति का एक हिस्सा बनता हुआ नजर आया। हालांकि यहाँ पर जो तमाम लोग रहते हैं उन्होंने इस तरह की राजनीति का विरोध भी किया, कई तस्वीरें ऐसी भी आई जब लोग यहाँ पर राजनीति करने आए तो उनको यहाँ से, इलाके के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ से खंदेड़ा, और लोगों से ने यहाँ के जो प्रशासन है, चाहे वो पुलिस हो, NDRF हो, सिविल डिफेंस हो, उनको यहाँ पर काम करने की इजाजत भी दी, और वो लगातार काम कर रहे हैं। खुद मीडिया को भी एक दायरे के अंदर जो है वो समेट के रखा गया कि ताकि आगे हादसे की जगह पर ना जाने दिया जाए, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा एक जानकारी और दूं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जब इस तरीके के कभी हादसे होते हैं तो वो कभी उस हादसे के दौरान वहां पर नहीं पहुंचती है। इसके पीछे उनकी एक वजह है, वो चाहती नहीं कि कभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में कहीं कोई दिक्कत आए, क्योंकि जब मुख्यमंत्री पहुंचती है तो उनका एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत प्रशासन को उनके साथ लगना पड़ता है और रेस्क्यू ऑपरेशन रुक जाता है। और यही वजह थी कि जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंची तो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, दिल्ली के एमसीडी कमिश्नर वो और डीएम, डिविजनल कमिश्नर वो सब यहाँ पर पहुंचे हुए थे और सीएम के लिए अलग से प्रोटोकॉल जो है वो बनाया जाता है। तो मुख्यमंत्री अक्सर हादसे के एक दिन बाद जो है वो घटनास्थल पर पहुंचती है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई परेशानी ना हो, लोगों की जान जो है वो बचाई जा सके। लेकिन आज ये हादसा काफी ज्यादा बड़ा था और स्टूडेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा था, मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंची और उन्होंने 3 घंटे तक यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन
2: किया। बिल्कुल, वो 3 घंटे तक वहां पर दिखाई दे। सुशांत, नजर बनाए रखें, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इतने घंटे मशक्कत भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, अगर पहले भाग दौड़ कर ली जाती, पहले अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाता या पहले एमसीडी को थोड़ा सख्ती से बोलकर काम करने के लिए प्रेशराइज किया जाता और एमसीडी अपना काम करता तो आज ये नौबत नहीं आती। एक गलत तरीके से चल रही इमारत, जर्जर इमारत, उसमें ये स्टूडेंट्स नहीं होते, वो चल नहीं रहे होते। अगर वो चल नहीं रही होती तो स्टूडेंट्स की मौत भी नहीं होती। रुक रहे हम छोटे से ब्रेक के लिए, आप देख रहे आज
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

में 5 मंजिला इमारत गिरी, 4 से ज्यादा लोगों की मौत, कई घायल, बेसमेंट में खुदाई से हादसे की आशंका। दिल्ली में बिल्डिंग गिरने के बाद राहत का काम जारी, पीएम मोदी ने जताई संवेदना, सीएम रेखा ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, बोली नहीं बचेगा कोई गुनहगार। दिल्ली के एसआरसीसी में पीएम मोदी के संबोधन को लेकर विपक्ष के सवालों पर नितिन नवीन का तंज, कहा प्रधानमंत्री ने नाराज फूफाओं को होम्योपैथी की दवा दी लेकिन इसका असर एलोपैथी वाली हाई एंटीबायोटिक जैसा हुआ। लंदन के कार्यक्रम में शामिल संघ प्रमुख मोहन भागवत, कहा सबको एक मानता है हिंदू विचार, व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन जरूरी। बिहार में उफान पर गंगा, 12 से ज्यादा जिलों में 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, पटना में रिकॉर्ड स्तर पर नदी, गंडक, कोसी और घाघरा नदी भी उफान पर। और अब बड़ी खबर आपको देते हैं, रविवार में दोपहर में दिल्ली में बड़ा हादसा हुआ, सत्यनिकेतन इलाके में एक बहुमंजिला इमारत गिर गई। हादसे के बाद मौके पर राहत बचाव का काम शुरू हुआ और जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।

0: ऐसा हादसा जिसने दिल्ली को हिला के रख दिया, ऐसा हादसा जिसने लोगों के दिलों में खौफ भर दिया। देखिए, दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में दोपहर करीब 1:30 बजे एक इमारत ढह गई। इमारत ढहते ही अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें देखिए, सिर्फ धूल का गुब्बार नजर आ रहा है और साथ में नजर आ रहा है कि कैसे मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है।
1: यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लोकल्स की मदद से जो है यहाँ ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ को भी इस वक्त बुला लिया गया है। एनडीआरएफ की भी एक बटालियन जो है, एक टीम जो है, वो इस वक्त यहाँ पहुंच गई है और अभी धीरे धीरे वो यहाँ पे स्पॉट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि कितनी भारी संख्या में जो यहाँ लोकल्स हैं, वो लोकल जो है यहाँ मदद कर रहे हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं। अभी ये बड़ी मशीन, अभी जो मशीनें हैं, जो कटर्स हैं, हैवी कटर्स हैं, बोल्डर कटर्स हैं, उन्हें भी अभी लेकर के यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो इस वक्त यहाँ आई है। और ये 5 मंजिला इमारत बताई जा रही है। अगर आप तस्वीरों में थोड़ा और क्लैरिटी से देखें यहाँ पर, तो ये देखें आप, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग थी और ये काफी बड़े इलाके में जो है ये पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर एक बॉयज हॉस्टल था और उसे बॉयज हॉस्टल में जो है ये पूरा हादसा हुआ है।
0: बताया जा रहा है कि इस इमारत में पीजी हॉस्टल था। सत्य निकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास बसा प्रमुख छात्र इलाका है। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं, इसी वजह से यहाँ दिन भर छात्रों की आवाजाही रहती है। हालांकि सत्य निकेतन में कुल कितने छात्र रहते हैं इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी बचाव काम चल रहा है, वो भी संभाल कर कि कहीं मलबे में दबे किसी शख्स को नुकसान न पहुंचे।
1: तो यहाँ पे जेसीबी चलाना वो खतरे से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि आखिर कितने लोग फंसे हैं और कौन कौन सी जगह फंसे हैं। अगर जेसीबी से मलबा हटाने के चक्कर में कुछ और लोग जो फंसे हुए हैं, जो शायद इंजर्ड हो, बस उनकी भी जान पर बना सकती है। और इसीलिए जेसीबी का अगर हम देखें तो ज्यादा इस्तेमाल ऐसे सिचुएशंस में नहीं किया जाता। और जो प्रिसाइज हैवी टूल्स होते हैं, जैसे बड़े ड्रिलर्स होते हैं, स्टील कटिंग मशीन्स होती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये पता लग पाए कि कहां कहां लोग फंसे हैं। अभी इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे ये समझ आ गया है कि यहां पर लोग नहीं फंसे हैं, जो बिल्डिंग के बाहर की लोकेशंस हैं, वहां पर अब जेसीबी की कार्रवाई जो है वो शुरू होती हुई दिख रही है। और बिल्डिंग के बाहर जहां गाड़ियों पर जो मलबा गिरा था उनसे अब मलबा हटाना शुरू किया जा रहा है। लेकिन बिल्डिंग जहां पर थी, जहां लोग फंसे हुए हैं, वहां पर अभी जेसीबी नहीं चलेगी। वहां पर अभी मेटल कटर्स चलेंगे, वहां पर अभी जीपीआर लगाया जाएगा, ये पता लगाया जाएगा कि कहां कहां लोग फंसे हैं, और उसके बाद वहां से मैन्युअली डिग करके ही लोगों को निकालना होगा या फिर हैंड यूजेबल मशीन से ही लोगों को निकालना होगा। अगर आप देखें यहां पे अभी भी प्रशासन को बहुत मुश्किलें हो रही हैं लोगों को समझाने में कि ये जगह खाली कर दे, क्योंकि ये जगह अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कहीं से भी मलबा और भी थोड़ा घिसक सकता है और लोगों को इंजरीज हो सकती है और लोगों को चोट आ सकती है।
0: बताया जा रहा है कि इमारत के बेसमेंट में काम चल रहा था, लेकिन अभी सही तौर पर ये नहीं मालूम चल सका कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। अनमोल बाली, अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
2: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता हादसे वाली जगह पर पहुंची और उन्होंने भरोसा दिलाया कि इमारत के मालिक समेत जो भी जिम्मेदार होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा।
3: इस्तेमाल हो रहा है, हमारी टीमें जो है वो पूरी तरीके से काम कर रही है, नीचे ऑक्सीजन भी डाली गई है, कैमरा भी
4: काम कर रहे हैं
3: ना। बच्चों की जान है और कोई भी कल्प्रिट छोड़ा नहीं जाएगा, खास करके ये जिसका मकान है, जो यहाँ पे बिल्डिंग छोड़ के भाग गया, जो कि अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा था, बेसमेंट में खुदाई कर रहा था, और जिसकी वजह से जो पिलर है वो डिसमेंटल हुआ और बिल्डिंग पूरी गिर गई, तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, और जिसके कारण से ये हादसा हुआ है सबको सजा भुगतनी पड़ेगी।
2: जिन लोगों ने इमारत को ढहते हुए देखा वो खौफ ज्यादा है। अब उन लोगों की जुबानी आप सुनिए कि हादसा कैसे हुआ।
5: हॉस्टल डेज नाम की बिल्डिंग है, इसके साथ एक और बिल्डिंग पीजी गिरी है। हॉस्टल डेज तो है, वो बॉयज पीजी है प्रॉपर। 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी ये, एंड इसके साथ बगल वाली बिल्डिंग भी गिरी है, एंड जो ये येलो वाली बिल्डिंग है ये दोनों हिल रही थी जब वो गिरी है। तो इन दोनों में भी पीजीज ही है और इनके एंट्रेंस एक उधर से, एक पीछे की साइड से, दो साइड से एंट्रेंस है। और मलबे के चक्कर में इनका एंट्रेंस भी जहाँ तक है ब्लॉक हो चुका है। और 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी, जितने बच्चे रूम में थे वो तो सारे दब गए हैं, और जो बाहर थे बच्चे उनका पता नहीं है, और जितना भी रजिस्टर में एंट्रीज होंगे उसके हिसाब से ही पता चलेगा आप कितने बच्चे दबे हैं इसमें।
6: कम से कम 40 बच्चों के हताहत होने की खबर है, और ये सत्यनिकेतन में आप जो भी बिल्डिंगें देख रहे हैं सब बिल्डिंगें जर्जर हैं, इनकी कोई ये कभी भी गिर सकती है, इसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार इन बिल्डिंगों की स्थिति देखकर इन्हें सील करे, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, सरकार को बच्चों से शिक्षा से कोई मतलब नहीं है।
7: There will be 20 to 25 such buildings, जो आज गिरे, एक महीने बाद गिरे, एक साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी। विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई ही आधा दिल्ली करता है यहाँ पे, तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन।
8: दिल्ली पुलिस पे है, 1:45 पे दिल्ली पुलिस को फोन किया था, दिल्ली पुलिस 3:15 तक कहाँ थी, और दूसरी बात यहाँ के बिल्डिंग का ओनर कहाँ है।
9: और यहाँ पे जितनी भी पीजीज हैं सब में सीढ़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है, और बच्चों का फायदा उठाया जाता है, साउथ कैंपस के सभी बच्चों का, उनको खाना खराब दिया जाता है और उनकी मजबूरी है पीजीज की।
7: आधे बच्चे गंदे खाने से मर जाते हैं, जो बच रहे हैं वो बिल्डिंग गिरने से मर रहे हैं।
10: 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं जब हमारे सामने बिल्डिंग गिरी थी, तो काफी नीचे मतलब लेबर भी काम कर रही थी, इसमें 7 से 8 लेबर थी जो काम करे जा रही थी। अब उनका भी नहीं पता कि वो निकल पाए थे या नहीं निकल पाए थे, मगर मुझे इतना पता कि बहुत बच्चे हैं इसके नीचे, कम से कम 8-10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, मगर बाकी जितने भी यहाँ के मोहल्ले क्षेत्र के हैं सबने अपने हाथों से मलबा हटा के 4 लोगों को निकाल लिया गया है।
11: हम दुकान के अंदर बैठे थे, हमें एकदम आवाज आई जैसे भूकंप टाइप होता है, 1:30 बजे, हम अंदर इतनी नहीं आई, जो बाहर बच्चे खड़े थे उनके पास आवाज आई, हम फटाफट भाग के आए, यहाँ पे बहुत ज्यादा धुआं वगैरह था, सारी बिल्डिंग गिरी हुई थी, और अभी इन्होंने यहाँ से मजदूर वगैरह निकाल लिए हैं, उनकी डेड बॉडी मिली है, और 4 बच्चे निकाले हैं जिनकी सांसें चल रही थी, वो अभी उनको एम्बुलेंस ले गई है, बट वो मतलब अधमरे की हालत में थे।
2: सत्य निकेतन हादसे में 11 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है, जिनमें से 3 की मौत हो गई है, और 5 मंजिला जब इमारत गिरी तो आसपास के लोगों को लगा मानो भूकंप आ गया हो।

0: दिल्ली में कितनी इमारतें इस तरह हादसे के इंतजार में, आखिर कितने बेकसूर छात्रों की जिंदगी ज्यादा किराए के लालच में इस तरह दांव पर लगाई जाती रहेंगी। दिल्ली में लगातार हो रहे इन हादसों की जिम्मेदारी कब और कैसे तय होगी? दिल्ली का सत्य निकेतन इलाका जहां 5 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया, पहली नजर में ये आपको हादसा लग सकता है, लेकिन ये हादसा नहीं बल्कि लालच और लापरवाही के कॉकटेल का नतीजा है। क्योंकि जब 40 साल पुरानी इमारत को 3 की जगह 5 मंजिल तक अवैध बना दिया जाए, 40 साल पुरानी इमारत की जांच करने वाला कोई न हो, बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भरा होने के बावजूद काम किया जा रहा, जबकि हादसे के वक्त छात्र कमरों में मौजूद थे, तो अब आप ही बताइए क्या इसे हादसा कहना ठीक होगा?
1: यहाँ पर लिमिट ही खाली 2 या 3 फ्लोर्स के, बट इन लोगों ने 5 फ्लोर्स बनवा रखे थे। इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, नीचे बेसमेंट में काम चल रहा था, उसकी वजह से बिल्डिंग गिरी है। मैं उस टाइम पे अपना खाना ही खा रहा था, एकदम से सोफा हिलने लगा, प्रॉपर फील हुआ कि अर्थक्वेक आया, पर बाहर आके देखा तो धुआं वो हो रखा, तो फिर पता लगा कि बिल्डिंग गिरी है।
2: लेवर लगी हुई थी सर, नीचे बेसमेंट में काम कर रहे थे सुबह।
3: अच्छा,
2: जब मैं मार्केट में आया तो मैंने देखा तो लेवर काम कर रही थी, प्लस यहाँ पर 2 कारपेंटर काम कर रहे थे।
3: अच्छा,
2: जब मैं मार्केट से होकर फिर मैं सीधा घर चला गया था। अच्छा। उसके बाद पता लगा तो ये बिल्डिंग गिरी है सर।
0: इस हादसे ने देश की राजधानी को एक बार फिर हिला दिया है। लोग डरे हुए हैं क्योंकि वो जिन इमारतों में रह रहे हैं उनका भी ऐसा ही अंजाम हो सकता है, जैसा दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में दोपहर करीब 1:30 बजे इस इमारत के साथ हुआ।
4: बिल्डिंग की क्या हालत थी? बेसमेंट में कोई काम चल रहा
5: था? बेसमेंट में काम चल रहा था, 2 दिन से पानी भरा हुआ था, और इसका क्या था कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, और आप कह सकते हो कि इलीगली है, क्योंकि यहाँ पे अलाउड है कि आप 3 मंजिल से लेके 5-4 मंजिल तक कर सकते हो, मगर यहाँ ये बिल्डिंग थी 5वीं मंजिल तक।
4: अच्छा।
5: और मैक्सिमम स्टूडेंट थे, पीजीस थे, और एक पीजीस में 3 और 4 ही बच्चे रहते थे। संडे की वजह से स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे चाय की दुकान है, ब्रेड बटर लेने आते हैं। ये बिल्डिंग इस वजह से भी, अब हम प्रे करते कि कोई नुकसान ना हो।
4: अभी बिल्डिंग का बेसमेंट में काम चल रहा था
5: पानी।
4: ये जो 40-50 साल, ये दिल्ली पुलिस आधिकारिक बयान दे रही है, 40-50 साल पुरानी बिल्डिंग थी, 5 मंजिला थी, बेसमेंट था उसमें, और बेसमेंट में काम चल रहा था, सीधे सीधे जो छात्र हैं जिसमें रह रहे थे उन सबकी जिंदगी दांव पर लगा दी बिल्डिंग के मालिक ने ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में।
0: इमारत ढहते ही यहाँ अफरा तफरी मच गई, धूल के गुब्बार में पूरे इलाके को घेर लिया।
6: मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लोकल्स की मदद से जो है यहाँ ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ को भी इस वक्त बुला लिया गया है, एनडीआरएफ की भी एक बटालियन जो है, एक टीम जो है वो इस वक्त यहाँ पहुंच गई है, और अभी धीरे धीरे वो यहाँ पे स्पॉट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि कितनी भारी संख्या में जो यहाँ लोकल्स हैं, वो लोकल जो है यहाँ मदद कर रहे हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं। अभी ये बड़ी मशीन, अभी जो मशीनें हैं, जो कटर्स हैं, हैवी कटर्स हैं, बोल्डर कटर्स हैं, उन्हें भी अभी लेकर के यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो इस वक्त यहाँ आई है। और ये 5 मंजिला इमारत बताई जा रही है, अगर आप तस्वीरों में थोड़ा और क्लैरिटी से देखें यहाँ पर, तो ये देखें आप, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, और ये काफी बड़े इलाके में जो है ये पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर एक बॉयज हॉस्टल था, और उसे बॉयज हॉस्टल में जो है ये पूरा हादसा हुआ है।
0: बिल्डिंग गिरने के बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, कुछ हथौड़े से मलबा हटाने लगे।
4: आपको दिखा दूं किस तरीके से रेस्क्यू जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। ये एक गाड़ी है जो कि बिल्डिंग के पास खड़ी थी, जब बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो उसकी हालत देखिए कि किस तरीके से इस पूरी गाड़ी के ऊपर बिल्डिंग का जो मलबा है वो भरभरा करके गिरा, पूरी गाड़ी जो है वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। अब इसको जेसीबी की मदद से जो है वो यहाँ से हटाया जा रहा है। आप ये समझिए कि जब मैं ये समझाने की कोशिश इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि ये तस्वीरें देखने के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो मलबा, सोचिए उस बिल्डिंग के अंदर कई सारे लोग थे, और उनकी हालत क्या रही होगी जब ये बिल्डिंग पूरी तरीके से कोलैप्स हुई, जब गाड़ी की हालत इस तरीके की है।
0: सत्य निकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास बसा प्रमुख छात्र इलाका है। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं। इलाके में कई छात्र आवास है।
6: जेसीबी की अगर बात करें तो यहाँ पे जेसीबी चलाना वो खतरे से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि आखिर कितने लोग फंसे हैं और कौन कौन सी जगह फंसे हैं। अगर जेसीबी से मलबा हटाने के चक्कर में कुछ और लोग जो फंसे हुए हैं, जो शायद इंजर्ड हो, बस उनकी भी जान पर बना सकती है। और इसीलिए जेसीबी का अगर हम देखें तो ज्यादा इस्तेमाल ऐसे सिचुएशंस में नहीं किया जाता। और जो प्रिसाइज हैवी टूल्स होते हैं जैसे बड़े ड्रिलर्स होते हैं, स्टील कटिंग मशीन्स होती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये पता लग पाए कि कहां कहां लोग फंसे हैं। अभी इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो ऐसी लोकेशन है जहां पर यह समझ आ गया है कि यहां पर लोग नहीं फंसे हैं, जो बिल्डिंग के बाहर की लोकेशन है वहां पर अब जेसीबी की कार्रवाई जो है वो शुरू होती हुई दिख रही है। और बिल्डिंग के बाहर जहां गाड़ियों पर जो मलबा गिरा था उनसे अब मलबा हटाना शुरू किया जा रहा है, लेकिन बिल्डिंग जहां पर थी जहां लोग फंसे हुए हैं वहां पर अभी जेसीबी नहीं चलेगी। वहां पर अभी मेटल कटर्स चलेंगे, वहां पर अभी जीपीआर लगाया जाएगा, ये पता लगाया जाएगा कि कहां कहां लोग फंसे हैं, और उसके बाद वहां से मैन्युअली डिग करके ही लोगों को निकालना होगा या फिर हैंड यूजेबल मशीन से ही लोगों को निकालना होगा। अगर आप देखें यहां पे अभी भी प्रशासन को बहुत मुश्किलें हो रही हैं लोगों को समझाने में कि ये जगह खाली कर दे, क्योंकि ये जगह अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कहीं से भी मलबा और भी थोड़ा घिसक सकता है और लोगों को इंजरीज हो सकती है और लोगों को चोट आ सकती है।
0: इस इमारत को लेकर सवाल यह है कि क्या इस बिल्डिंग का नक्शा पास था? 5 मंजिला इमारत बनाने की अगर अनुमति नहीं थी तो इसे रोका क्यों नहीं गया? 40 साल पुरानी इमारत में छात्रों को रहते बेसमेंट में काम की इजाजत कैसे दी गई? अनमोल बाली अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
3: यह इमारत 50 साल पुरानी बताई जा रही है और इसके बेसमेंट में काम चल रहा था। इसका मालिक आनंद बंसल जो कि गुरुग्राम का रहने वाला इस समय फरार है और बताया जा रहा है कि मेडिकल शॉप भी वहां पर चलती थी और इस इमारत में 10 कमरे थे।
0: दिल्ली में हादसों की वजह बनने वाली गैर कानूनी इमारत पर समय रहते लगाम क्यों नहीं लगाई जाती? आखिर हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जाता? दिल्ली के जिस सत्य निकेतन में यह हादसा हुआ वहां बड़ी संख्या में पीजी, रेंटेड रूम और हॉस्टल चलते हैं। यहां पर कितनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हादसे के बाद इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि रेस्क्यू करना मुश्किल हो गया। जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हादसे की जगह पहुंची तो उन्हें घटनास्थल का जायजा लेने के लिए दूसरी इमारत के ऊपर मंजिल का सहारा लेना पड़ा। अगर इलाके की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यहाँ छोटी छोटी गलियां हैं और घनी आबादी के बीच कई बहुमंजिला मकान मौजूद हैं। ऐसे ही एक इमारत गिरने से छात्र दब गए। मलबे में फंसे छात्र ने ये वीडियो बनाया जिसमें दबे हुए छात्र दिखाई दे रहे हैं। वहीं कई मलबे में दबे छात्रों ने फोन कर मदद मांगी। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब दिल्ली में इस तरह का हादसा हुआ हो। राजधानी दिल्ली में कई जगह ऐसे ही पीजी संचालित हो रहे हैं, कई जगह ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन नियमों की अनदेखी रहती है। दिल्ली में नियमों की अनदेखी और प्रशासन की बेरुखी की वजह से पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं। कुछ महीने पहले दिल्ली के मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग ने भयावह रूप ले लिया था और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी।
7: अगर आप नीचे बेसमेंट को, ये क्या है कि हवस है पैसे कमाने की, पीजी ही हो चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकोमोडेट करना, ज्यादा से ज्यादा भर्ती करना, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना, ये जो हवस है। राजेंद्र नगर में बेसमेंट को यूज कर रहे थे, वो हवस वो भी वही है। ये पीजी का भी मसला यही है। और अभी 3 महीने पहले अगर आपको ध्यान हो तो सैदुला जाब में 5 बच्चे इंजीनियरिंग और डॉक्टरी जो कर रहे थे वो मर गए। तो ये दरअसल क्या है कि ये एक तो ये हवस जो बन गई है कि ज्यादा से ज्यादा माल, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हो, चाहे पीजी वाले हो, चाहे जितने भी है, ये किराए पे देने के, एक एक डब्बे का कमरे का मकान बना देते हैं, किराए पे दे देते हैं।
0: बेसमेंट की वजह से छात्रों की जान जाते हुए देश ने साल 2024 में देखा, जब ओल्ड राजेंद्र नगर में राउज IAS सर्किल के बेसमेंट में पानी भरने से 3 UPSC छात्रों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया गया। जब इसी साल जून के महीने में आज तक ने वहां जाकर पड़ताल की तो हमें बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लाइब्रेरी मिली।
8: एक लंबे वक्त से ये सिलसिला चलता हुआ चला आ रहा है। आप किसी भी दिल्ली के लोगों से पूछ लीजिए, जब भी वो कोई बिल्डिंग गिराएंगे तुरंत वहां पर दिल्ली पुलिस का कर्मचारी एमसीडी का कर्मचारी वहां पर आ जाएगा और उसके बाद फिर सेटिंग करके जरिए लोकल पार्षद के जरिए सेटिंग करके आप 3 मंजिल की जहां इमारत बननी है वहां 5 मंजिल बना लीजिए और उसके बाद फिर हादसा होता है तो फिर सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगते हैं। तो जरूरी है सिस्टम में बड़े स्तर पर सुधार की। ओल्ड राजेंद्र नगर का हादसा आपको याद होगा, वहां पर किस तरीके से कोचिंग में यूपीएससी के तैयारी करने वाले छात्र मर गए, उसके बाद आज तक की टीम ने वहां खुद जाकर बाकायदा रियलिटी चेक किया, खुद मुझ पर अटैक हुआ लेकिन वहां कोई बदलाव नहीं आया।
3: दिल्ली में इमारत के ढहने की न तो ये कोई पहली घटना है न ही अंतिम। ठीक 2 महीने पहले 8 जुलाई को रोहिणी के सेक्टर 16 में भी इमारत गिरी थी, 4 मंजिला अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिरी थी, उसके बाद भी अधिकारियों ने कहा लेकिन दिल्ली की तस्वीर नहीं बदली। एक और हादसा हो गया।
0: दिल्ली के सत्य निकेतन में हादसे के बाद राजधानी में घर बनाने के नियमों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बने हुए घर के नीचे बेसमेंट बनाया जा सकता है, क्या इसके लिए कोई कानूनी अनुमति लेनी होगी और अगर बिना अनुमति के बेसमेंट बना दिया तो क्या कार्रवाई हो सकती है, ये किसकी जिम्मेदारी थी।
8: दिल्ली के जो मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा वक्त का हो चुका है, बड़ी बात यह है कि वो खुद भी यहाँ पर जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको संचालित होते हुए देख रही है, एक बड़ी बात है, तारीफ की बात है, लेकिन यहाँ खड़े होकर वो ये भी देखे कि आसपास कितने अवैध पीजी चल रहे हैं। मैंने कई छात्रों से कुछ देर पहले बात की है, उन पर शिकंजा कसा जाए, अधिकारियों को सख्त ऑर्डर दिया जाए कि खास तौर से जो अवैध पीजी चल रहे हैं, कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, वहां पर क्या एनओसी है क्या या नहीं है, किस तरह से सुरक्षा के मानकों का वहां अनदेखी की जा रही है, वो तमाम चीजें देखने की जरूरत है वरना इस तरह के हादसों को रोका जाना काफी मुश्किल होगा। देखिए ऑन रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस ये कह चुकी है कि 40 से 50 साल ये पुरानी इमारत थी जिसमें पीजी का काम चल रहा था।
0: दिल्ली में इस तरह के हादसे समय समय पर सामने आते रहते हैं। जब हादसा होता है तो एमसीडी समेत संबंधित एजेंसियों पर सवाल उठता है लेकिन मामला ठंडा पड़ते ही सब कुछ पहले की तरह होने लगता है, जबकि सिस्टम में कमियों की बात मेयर पद पर बैठे लोग भी कबूलते हैं।
9: चाहते हैं कि बच्चे उसमें बच जाएं। पहले रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट है, सभी जायज आपके इस समय सभी जायज है, बहुत कमियां हैं सिस्टम में, बहुत कमियां मैं मानता हूं, लेकिन पहले अभी रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।
0: दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत इसलिए गिरी क्योंकि उसके बेसमेंट में काम चल रहा था। सवाल यह है कि क्या काम चलने से नींव कमजोर हुई और इमारत गिर गई।
8: यह जरूरी हो जाता है कि कम से कम जो जो जो जहां छात्र रहते हो, जो पीजी है, जो गर्ल्स हॉस्टल है, जो बॉयज हॉस्टल है, जो कोचिंग है, कम से कम वहां पर जो कंसर्न अधिकारी हैं, जो एमसीडी के अधिकारी हैं, वो जाएं, जाकर देखें कि वहां पर छात्र किस तरह से पढ़ाई करते हैं, किस तरह से रहते हैं। वहां पर एनओसी नहीं है, फायर की एनओसी नहीं है, कई जगह पर एमसीडी की एनओसी नहीं है और धड़ल्ले से अवैध तरीके से वहां पर लोग रह रहे हैं और बारिश होती है, जरा सी बारिश दिल्ली में हो जाती है तो आप सुनते होंगे कि दिल्ली में बिल्डिंग गिर गई, अगर आग लग जाती है तो उस बिल्डिंग में लोग फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। यहां पर
0: दिल्ली में बेसमेंट बनाने के लिए संबंधित अथॉरिटी से संशोधित बिल्डिंग प्लान की मंजूरी की जरूरत होती है, लेकिन अगर घर पहले बना हो तो उसके नीचे बेसमेंट में काम करने की छूट तो बहुत देखरेख के बाद ही दी जाती है, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ होता नहीं दिखता।
10: पीजी का काम चलता था?
11: नहीं, ये पीजी तो बना हुआ था ऑलरेडी, पुरानी बिल्डिंग थी ये, इसमें पीजी तो था। वो पीजी वाले तो लंच करने बच्चे चले गए, संडे का दिन था ना, तो लंच करने दूसरी मैच में चले गए, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता।
12: अपना घूम के एक बार पूरे सत्या में देख लो, देयर विल बी 20-25 सच बिल्डिंग्स जो आज गिरे, 1 महीने बाद गिरे, 1 साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी। विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई आधा दलाली करता है यहाँ पे, तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन।
13: जितनी भी पीजीज है सब में सिड़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है और बच्चों का फायदा उठाया जाता है, साउथ कैंपस के सभी बच्चों का।
0: दिल्ली में ऐसे हादसे तब तक होते रहेंगे जब तक अवैध निर्माण पर लगाम नहीं लगती। दिल्ली में 75 लाख इमारतें बताई जाती है, दुर्भाग्य ये है कि चंद इमारतें ही सभी नियमों को पूरा करे हुए बनी है, इसलिए एक्सपर्ट की मांग है कि सरकार बाकी इमारतों को लेकर अभियान चलाए क्योंकि 40 से 50 साल पुरानी हो चुकी इमारतों की दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या है।
14: जो इस बिल्डिंग का ओनर था, क्या उसको एक दिन के लिए भी, एक मिनट के लिए भी ये सोच नहीं आई कि वहां पे लोग निवासी अभी भी हैं? एटलीस्ट बिल्डिंग को खाली किया जाता। और जो हम बात करते हैं कि जेई आके इंस्पेक्ट कर ले, हमारे जेई बाय द वे कितने एजुकेटेड है इस मामले में कि वो आके को ढंग का इंस्पेक्ट भी करते, वो तो किसी और वजह से वहां पे आते और अपनी वो वजह पूरी करके निकल जाते वहां से। तो ये सारा सिस्टमिक चेंज जो हमें चाहिए विकसित भारत बनाने के लिए, एक सिस्टमिक चेंज की जरूरत है।
3: दिल्ली में हुए हादसे के बाद राजनीतिक दलों के नेताओं ने दुख जताया है। गोवा में गृहमंत्री शाह ने अपने कार्यक्रम को रोका तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी हादसे पर दुख जताया और विपक्ष अब सरकार पर हमलावर है।

0: ऐसा भयानक हादसा जिसने दिल्ली को दहला दिया। जैसे ही खबर आई कि सत्यनिकेतन में एक ऐसी इमारत जमींदोज हो गई है जिसमें छात्र रहा करते थे, तो पूरी दिल्ली में हड़कंप मच गया। गृह मंत्री अमित शाह गोवा में थे, वो बीजेपी के नए ऑफिस इनॉग्रेशन सेरेमनी में थे, लेकिन जैसे ही उन्हें हादसे की जानकारी हुई उन्होंने अपना कार्यक्रम रोक दिया। अमित शाह ने हादसे पर दुख जताया है।
1: एक समाचार है, एक दुखद घटना हुई है और उस दुखद घटना का समाचार सुनने के बाद हमारे देश के गृह मंत्री ने तुरंत निर्णय ले लिया कि ये कार्यक्रम यहाँ तक सीमित करके खत्म।
0: घटना बड़ी थी और तकलीफी हादसे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दुख जताया और हादसे वाली जगह पहुंची। एमसीडी के मेयर भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी हालातों का जायजा लिया है।
2: देखिए, हम तो चाहते हैं कि बच्चे उसमें बच जाएं। पहले रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट है। सभी जायजा आपके इस समय सभी जायजा बहुत कमियां हैं, सिस्टम में बहुत कमियां मैं मानता हूं, लेकिन पहले अभी रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।
0: अब इस हादसे पर विपक्ष हमलावर है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दिल्ली में सरकार की लापरवाही के कारण अब तक कई हादसे हो चुके हैं, सरकार को नींद से जागना होगा, बड़े स्तर पर एक्शन लेकर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी के भ्रष्टाचार का नतीजा है।
3: देखिए, मेरे को जो आसपास के रहने वाले लोगों ने बताया है कि पीजी के अंदर करीब 30 से 40 नौजवान बच्चे फंसे हुए हैं इस मलबे में, और आज से कुछ समय पहले की बात है जब साकेत सैजुला जाब में 4 मंजिल की इमारत गिरी तो कहा गया कि हम दिल्ली की सब बिल्डिंगों की ऑडिट कराएंगे, जो पैसा नहीं देता उसकी बिल्डिंग को सील कर देते हैं, पैसे की मांडवाली होती है, एक हफ्ते बाद बिल्डिंग को डीसील कर दिया जाता है। अभी क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। अभी रेखा गुप्ता कहेंगी हम बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं, आशीष सूद अलग कहेंगे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और क्या करेंगे बता देता हूं। एक जेई को सस्पेंड करेंगे और एक एई को सस्पेंड करेंगे और 15 दिन बाद उनको चुपचाप बहाल भी कर देंगे।
0: कांग्रेस भी सवाल पूछ रही है कि आखिर देश में छात्र सुरक्षित क्यों नहीं है।
4: जी चल रहे, ये बिल्कुल कोई इनकी किसी तरह का मापदंड नहीं है। एमसीडी क्या कर रही है, एनडीएमसी क्या कर रही है, यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स क्या कर रही है, अथॉरिटीज क्या कब तक जवाब नहीं देंगी। सारी अभी भी आप चेक कर लो, ये आसपास पीजी हैं सारी, आप चेक कर लो। उस टाइम भी मैं भी गया था वहां, आप लोगों के सामने हमने सबने कहा था कि इनको चेक कराओ, इनको कहीं ना कहीं इनकी कोई नॉर्म्स तो हो, स्टूडेंट कब तक बर्दाश्त करेंगे और कब तक अथॉरिटीज जवाब नहीं देंगी। ये मैं समझता हूँ कि आज हम सबके लिए बहुत ही दुख का टाइम है।
5: जब यूनिवर्सिटी में हॉस्टल ही नहीं है और इस निकेतन पे आपने रखा है तो और वो वही छत गिर जाती है तो सुरक्षित छात्र किसी तरीके से सुरक्षित नहीं है, और बड़ी दुख की बात है। तो प्रधानमंत्री जी ऐसा करिए, हमें एक दिन आप कुछ अपना वक्त दे दीजिए, हम रिपोर्ट कार्ड लिख के आपको लिखित रूप में दे देंगे।
0: सियासत अपनी जगह है, मगर ये भी सच है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री बदले, सरकार बदली, लेकिन हालात नहीं बदल पाए हैं। इसे हादसा कह देना, लेकिन ये लापरवाही सीधे सीधे मौत को आमंत्रण देने वाली जैसी है। सवाल ये है कि ऐसे हादसे कब तक होते रहेंगे। दिल्ली से अंशुल सिंह, अरविंद होजा और अनमोल बाली के साथ आज तक ब्यूरो।
6: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

केतन इलाके में 5 मंजिला इमारत गिरी, 4 से ज्यादा लोगों की मौत, कई घायल, बेसमेंट में खुदाई से हादसे की आशंका। दिल्ली में बिल्डिंग गिरने के बाद राहत का काम जारी, पीएम मोदी ने जताई संवेदना, सीएम रेखा ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, बोली नहीं बचेगा कोई गुनहगार। दिल्ली के एसआरसीसी में पीएम मोदी के संबोधन को लेकर विपक्ष के सवालों पर नितिन नवीन का तंज, कहा प्रधानमंत्री ने नाराज फूफाओं को होम्योपैथी की दवा दी लेकिन इसका असर एलोपैथी वाली हाई एंटीबायोटिक जैसा हुआ। लंदन के कार्यक्रम में शामिल संघ प्रमुख मोहन भागवत, कहा सबको एक मानता है हिंदू विचार, व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन जरूरी। बिहार में उफान पर गंगा, 12 से ज्यादा जिलों में 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, पटना में रिकॉर्ड स्तर पर नदी, गंडक, कोसी और घाघरा नदी भी उफान पर। और अब बड़ी खबर आपको देते हैं, रविवार में दोपहर में दिल्ली में बड़ा हादसा हुआ, सत्यनिकेतन इलाके में एक बहुमंजिला इमारत गिर गई। हादसे के बाद मौके पर राहत बचाव का काम शुरू हुआ और जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।

0: ऐसा हादसा जिसने दिल्ली को हिला के रख दिया, ऐसा हादसा जिसने लोगों के दिलों में खौफ भर दिया। देखिए, दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में दोपहर करीब 1:30 बजे एक इमारत ढह गई। इमारत ढहते ही अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें देखिए, सिर्फ धूल का गुब्बार नजर आ रहा है और साथ में नजर आ रहा है कि कैसे मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है।
1: यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लोकल्स की मदद से जो है यहाँ ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ को भी इस वक्त बुला लिया गया है। एनडीआरएफ की भी एक बटालियन जो है, एक टीम जो है वो इस वक्त यहाँ पहुंच गई है और अभी धीरे धीरे वो यहाँ पे स्पॉट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि कितनी भारी संख्या में जो यहाँ लोकल्स हैं, वो लोकल जो है यहाँ मदद कर रहे हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं। अभी ये बड़ी मशीन, अभी जो मशीनें हैं, जो कटर्स हैं, हैवी कटर्स हैं, बोल्डर कटर्स हैं, उन्हें भी अभी लेकर के यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो इस वक्त यहाँ आई है। और ये 5 मंजिला इमारत बताई जा रही है। अगर आप तस्वीरों में थोड़ा और क्लैरिटी से देखें यहाँ पर, तो ये देखें आप, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग थी और ये काफी बड़े इलाके में जो है ये पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर एक बॉयज हॉस्टल था और उसे बॉयज हॉस्टल में जो है ये पूरा हादसा हुआ है।
0: बताया जा रहा है कि इस इमारत में पीजी हॉस्टल था। सत्य निकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास बसा प्रमुख छात्र इलाका है। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं, इसी वजह से यहाँ दिन भर छात्रों की आवाज आई रहती है। हालांकि सत्य निकेतन में कुल कितने छात्र रहते हैं इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी बचाव काम चल रहा है, वो भी संभाल कर कि कहीं मलबे में दबे किसी शख्स को नुकसान न पहुंचे।
1: तो यहाँ पे जेसीबी चलाना वो खतरे से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि आखिर कितने लोग फंसे हैं और कौन कौन सी जगह फंसे हैं। अगर जेसीबी से मलबा हटाने के चक्कर में कुछ और लोग जो फंसे हुए हैं, जो शायद इंजर्ड हो, बस उनकी भी जान पर बना सकती है। और इसीलिए जेसीबी का अगर हम देखें तो ज्यादा इस्तेमाल ऐसे सिचुएशंस में नहीं किया जाता। और जो प्रिसाइज हैवी टूल्स होते हैं, जैसे बड़े ड्रिलर्स होते हैं, स्टील कटिंग मशीन्स होती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये पता लग पाए कि कहां कहां लोग फंसे हैं। अभी इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे ये समझ आ गया है कि यहां पर लोग नहीं फंसे हैं, जो बिल्डिंग के बाहर की लोकेशंस हैं वहां पर अब जेसीबी की कार्रवाई जो है वो शुरू होती हुई दिख रही है। और बिल्डिंग के बाहर जहां गाड़ियों पर जो मलबा गिरा था उनसे अब मलबा हटाना शुरू किया जा रहा है। लेकिन बिल्डिंग जहां पर थी, जहां लोग फंसे हुए हैं, वहां पर अभी जेसीबी नहीं चलेगी। वहां पर अभी मेटल कटर्स चलेंगे, वहां पर अभी जीपीआर लगाया जाएगा, ये पता लगाया जाएगा कि कहां कहां लोग फंसे हैं, और उसके बाद वहां से मैन्युअली डिग करके ही लोगों को निकालना होगा या फिर हैंड यूजेबल मशीन से ही लोगों को निकालना होगा। अगर आप देखें यहां पे अभी भी प्रशासन को बहुत मुश्किलें हो रही हैं लोगों को समझाने में कि ये जगह खाली कर दे, क्योंकि ये जगह अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कहीं से भी मलबा और भी थोड़ा घिसक सकता है और लोगों को इंजरीज हो सकती है और लोगों को चोट आ सकती है।
0: बताया जा रहा है कि इमारत के बेसमेंट में काम चल रहा था, लेकिन अभी सही तौर पर ये नहीं मालूम चल सका कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। अनमोल बाली, अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
2: जिन लोगों ने इमारत को ढहते हुए देखा वो खौफ ज्यादा है। अब उन लोगों की जुबानी आप सुनिए कि हादसा कैसे हुआ।
3: स्टिल डेज नाम की बिल्डिंग है, इसके साथ एक और बिल्डिंग पीजी गिरी।

0: तो इन दोनों में भी पीजीज ही है, और इनके एंट्रेंस एक उधर से एक पीछे की साइड से, दो साइड से एंट्रेंस है, और मलबे के चक्कर में इनका एंट्रेंस भी जहाँ तक है ब्लॉक हो चुका है, और 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी, जितने बच्चे रूम में थे वो तो सारे दब गए हैं, और जो बाहर थे बच्चे उनका पता नहीं है, और जितना भी रजिस्टर में एंट्रीज होंगी उसके हिसाब से पता चलेगा अब कितने बच्चे दबे हैं इसमें।
1: कम से कम 40 बच्चों के हताहत होने की खबर है, और ये सत्यनिकेतन में आप जो भी बिल्डिंगें देख रहे हैं सब बिल्डिंगें जर्जर, इनकी कोई ये कभी भी गिर सकती है, इसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, सरकार इन बिल्डिंगों की स्थिति देखकर इन्हें सील करे, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, सरकार को बच्चों से शिक्षा से कोई मतलब नहीं है।
2: There will be 20-25 such buildings, जो आज गिरे, एक महीने बाद गिरे, एक साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी। विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई आधा दिल्ली करता है यहाँ पे, तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन।
3: दिल्ली पुलिस पे है, 1:45 पे दिल्ली पुलिस को फोन किया था, दिल्ली पुलिस 3:15 तक कहाँ थी, और दूसरी बात यहाँ के बिल्डिंग का ओनर कहाँ है,
4: और यहाँ पे जितनी भी पीजीज हैं सब में सीढ़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है, और बच्चों का फायदा उठाया जाता है, साउथ कैंपस के सभी बच्चों का, उनको खाना खराब दिया जाता है, और उनकी मजबूरी है पीजीज की।
2: आधे बच्चे गंदे खाने से मर जाते हैं, जो बच रहे हैं वो बिल्डिंग गिरने से मर रहे हैं।
5: 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं जब हमारे सामने बिल्डिंग गिरी थी, तो काफी नीचे मतलब लेबर भी काम कर रही थी, इसमें 7 से 8 लेबर थी जो काम करे जा रही थी, अब उनका भी नहीं पता कि वो निकल पाए थे या नहीं निकल पाए थे, मगर मुझे इतना पता कि बहुत बच्चे हैं इसके नीचे, कम से कम 8-10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, मगर बाकी जितने भी यहाँ के मोहल्ले क्षेत्र के हैं सबने अपने हाथों से मलबा हटा के 4 लोगों को निकाल लिया गया है।
6: हम दुकान के अंदर बैठे थे, हमें एकदम आवाज आई जैसे भूकंप टाइप होता है, 1:30 बजे, हम अंदर इतनी नहीं आई, जो बाहर बच्चे खड़े थे उनके पास आवाज आई, हम फटाफट भाग के आए, यहाँ पे बहुत ज्यादा धुआं वगैरह था, सारी बिल्डिंग गिरी हुई थी, और अभी इन्होंने यहाँ से मजदूर वगैरह निकाले हैं, उनकी डेड बॉडी मिली, और 4 बच्चे निकाले हैं जिनकी सांसें चल रही थी, वो अभी उनको एम्बुलेंस ले गई है, बट वो मतलब अधमरे की हालत में थे।
7: सत्यनिकेतन हादसे में 11 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है, जिनमें से 3 की मौत हो गई है, और 5 मंजिला जब इमारत गिरी तो आसपास के लोगों को लगा मानो भूकंप आ गया हो।

0: दिल्ली में कितनी इमारतें इस तरह हादसे के इंतजार में हैं? आखिर कितने बेकसूर छात्रों की जिंदगी ज्यादा किराए के लालच में इस तरह दांव पर लगाई जाती रहेंगी? दिल्ली में लगातार हो रहे इन हादसों की जिम्मेदारी कब और कैसे तय होगी? दिल्ली का सत्य निकेतन इलाका, जहां 5 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया, पहली नजर में ये आपको हादसा लग सकता है, लेकिन ये हादसा नहीं बल्कि लालच और लापरवाही के कॉकटेल का नतीजा है। क्योंकि जब 40 साल पुरानी इमारत को 3 की जगह 5 मंजिल तक अवैध बना दिया जाए, 40 साल पुरानी इमारत की जांच करने वाला कोई न हो, बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भरा होने के बावजूद काम किया जा रहा, जबकि हादसे के वक्त छात्र कमरों में मौजूद थे, तो अब आप ही बताइए, क्या इसे हादसा कहना ठीक होगा?
1: यहाँ पर लिमिट ही खाली 2 या 3 फ्लोर्स के, बट इन लोगों ने 5 फ्लोर्स बनवा रखे थे। इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, नीचे बेसमेंट में काम चल रहा था, उसकी वजह से बिल्डिंग गिरी है। मैं उस टाइम पे अपना खाना ही खा रहा था, एकदम से सोफा हिलने लगा, प्रॉपर फील हुआ कि अर्थक्वेक आया, पर बाहर आके देखा तो धुआं वो हो रहा था, तो फिर पता लगा कि बिल्डिंग गिरी है।
2: लेवर लगी हुई थी सर, नीचे बेसमेंट में काम कर रहे थे सुबह।
3: अच्छा,
2: जब मैं मार्केट में आया तो मैंने देखा तो लेवर काम कर रही थी, प्लस यहाँ पर 2 कारपेंटर काम कर रहे थे।
3: अच्छा,
2: जब मैं मार्केट से होकर फिर मैं सीधा घर चला गया था, उसके बाद पता लगा तो ये बिल्डिंग गिरी है।
0: इस हादसे ने देश की राजधानी को एक बार फिर हिला दिया है। लोग डरे हुए हैं, क्योंकि वो जिन इमारतों में रह रहे हैं उनका भी ऐसा ही अंजाम हो सकता है, जैसा दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में दोपहर करीब 1:30 बजे इस इमारत के साथ हुआ।
4: बिल्डिंग की क्या हालत थी? बेसमेंट में कोई काम चल रहा
5: था? बेसमेंट में काम चल रहा था, 2 दिन से पानी भरा हुआ था, और इसका क्या था कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, और आप कह सकते हो कि इलीगली है, क्योंकि यहाँ पे अलाउड है कि आप 3 मंजिल से लेके 4 मंजिल तक कर सकते हो, मगर यहाँ ये बिल्डिंग थी 5वीं मंजिल तक।
4: अच्छा।
5: और मैक्सिमम स्टूडेंट थे, पीजीस थे, और एक पीजीस में 3 और 4 ही बच्चे रहते थे, और संडे की वजह से स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे चाय की दुकान है, ब्रेड बटर लेने आते हैं। ये बिल्डिंग इस वजह से भी, अब हम पे प्रे करते कि कोई नुकसान ना हो।
4: अभी बिल्डिंग का बेसमेंट में काम चल रहा था
5: पानी।
4: ये जो 40-50 साल, ये दिल्ली पुलिस आधिकारिक बयान दे रही है, 40-50 साल पुरानी बिल्डिंग थी, 5 मंजिला थी, बेसमेंट था उसमें, और बेसमेंट में काम चल रहा था, सीधे सीधे जो छात्र हैं जिसमें रह रहे थे उन सबकी जिंदगी दांव पर लगा दी बिल्डिंग।

0: के मालिक ने ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में।
1: इमारत ढहते ही यहाँ अफरा तफरी मच गई, धूल के गुब्बार में पूरे इलाके को घेर लिया।
2: मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लोकल्स की मदद से जो है यहाँ ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ को भी इस वक्त बुला लिया गया है, एनडीआरएफ की भी एक बटालियन जो है, एक टीम जो है वो इस वक्त यहाँ पहुंच गई है और अभी धीरे धीरे वो यहाँ पे स्पॉट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि कितनी भारी संख्या में जो यहाँ लोकल्स हैं, वो लोकल जो है यहाँ मदद कर रहे हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं। अभी ये बड़ी मशीन, अभी जो मशीनें हैं, जो कटर्स हैं, हैवी कटर्स हैं, बोल्डर कटर्स हैं, उन्हें भी अभी लेकर के यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो इस वक्त यहाँ आई है। और ये 5 मंजिला इमारत बताई जा रही है। अगर आप तस्वीरों में थोड़ा और क्लैरिटी से देखें यहाँ पर, तो ये देखें आप, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग थी और ये काफी बड़े इलाके में जो है ये पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर एक बॉयज हॉस्टल था और उसे बॉयज हॉस्टल में जो है ये पूरा हादसा हुआ है।
1: बिल्डिंग गिरने के बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, कुछ हथौड़े से मलबा हटाने लगे।
0: दिखा दूं किस तरीके से रेस्क्यू जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। ये एक गाड़ी है जो कि बिल्डिंग के पास खड़ी थी, जब बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो उसकी हालत देखिए कि किस तरीके से इस पूरी गाड़ी के ऊपर बिल्डिंग का जो मलबा है वो भरभरा करके गिरा। पूरी गाड़ी जो है वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। अब इसको जेसीबी की मदद से जो है वो यहाँ से हटाया जा रहा है। आप ये समझिए कि जब मैं ये समझाने की कोशिश इसलिए भी कर रहा हूँ कि ये तस्वीरें देखने के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो मलबा, सोचिए उस बिल्डिंग के अंदर कई सारे लोग थे और उनकी हालत क्या रही होगी जब ये बिल्डिंग पूरी तरीके से कोलैप्स हुई, जब गाड़ी की हालत इस तरीके की है।
1: सत्य निकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास बसा प्रमुख छात्र इलाका है। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं। इलाके में कई छात्र आवास है।
2: जेसीबी की अगर बात करें तो यहाँ पे जेसीबी चलाना वो खतरे से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि आखिर कितने लोग फंसे हैं और कौन कौन सी जगह फंसे हैं। अगर जेसीबी से मलबा हटाने के चक्कर में कुछ और लोग जो फंसे हुए हैं, जो शायद इंजर्ड हो, बस उनकी भी जान पर बना सकती है। और इसीलिए जेसीबी का अगर हम देखें तो ज्यादा इस्तेमाल ऐसे सिचुएशंस में नहीं किया जाता। और जो प्रिसाइज हैवी टूल्स होते हैं, जैसे बड़े ड्रिलर्स होते हैं, स्टील कटिंग मशीन्स होती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये पता लग पाए कि कहां कहां लोग फंसे हैं। अभी इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे ये समझ आ गया है कि यहां पर लोग नहीं फंसे हैं, जो बिल्डिंग के बाहर की लोकेशंस हैं, वहां पर अब जेसीबी की कार्रवाई जो है वो शुरू होती हुई दिख रही है। और बिल्डिंग के बाहर जहां गाड़ियों पर जो मलबा गिरा था उनसे अब मलबा हटाना शुरू किया जा रहा है। लेकिन बिल्डिंग जहां पर थी, जहां लोग फंसे हुए हैं, वहां पर अभी जेसीबी नहीं चलेगी। वहां पर अभी मेटल कटर्स चलेंगे, वहां पर अभी जीपीआर लगाया जाएगा, ये पता लगाया जाएगा कि कहां कहां लोग फंसे हैं, और उसके बाद वहां से मैन्युअली डिग करके ही लोगों को निकालना होगा या फिर हैंड यूजेबल मशीन से ही लोगों को निकालना होगा। अगर आप देखें यहां पे अभी भी प्रशासन को बहुत मुश्किलें हो रही हैं लोगों को समझाने में कि ये जगह खाली कर दे, क्योंकि ये जगह अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कहीं से भी मलबा और भी थोड़ा घिसक सकता है और लोगों को इंजरीज हो सकती है और लोगों को चोट आ सकती है।
1: इस इमारत को लेकर सवाल ये है कि क्या इस बिल्डिंग का नक्शा पास था? 5 मंजिला इमारत बनाने की अगर अनुमति नहीं थी तो इसे रोका क्यों नहीं गया? 40 साल पुरानी इमारत में छात्रों को रहते बेसमेंट में काम की इजाजत कैसे दी गई? अनमोल बाली, अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
3: यह इमारत 50 साल पुरानी बताई जा रही है और इसके बेसमेंट में काम चल रहा था। इसका मालिक आनंद बंसल, जो कि गुरुग्राम का रहने वाला, इस समय फरार है और बताया जा रहा है कि मेडिकल शॉप भी वहां पर चलती थी और इस इमारत में 10 कमरे थे।
1: दिल्ली में हादसों की वजह बनने वाली गैर कानूनी इमारत पर समय रहते लगाम क्यों नहीं लगाई जाती? आखिर हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जाता? दिल्ली के जिस सत्य निकेतन में यह हादसा हुआ, वहां बड़ी संख्या में पीजी, रेंटेड रूम और हॉस्टल चलते हैं। यहां पर कितनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हादसे के बाद कितनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि रेस्क्यू करना मुश्किल हो गया। जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हादसे की जगह पहुंची, तो उन्हें घटनास्थल का जायजा लेने के लिए दूसरी इमारत के ऊपर मंजिल का सहारा लेना पड़ा। अगर इलाके की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यहाँ छोटी छोटी गलियां हैं और घनी आबादी के बीच कई बहुमंजिला मकान मौजूद हैं। ऐसे ही एक इमारत गिरने से छात्र दब गए। मलबे में फंसे छात्र ने ये वीडियो बनाया जिसमें दबे हुए छात्र दिखाई दे रहे हैं। वहीं कई मलबे में दबे छात्रों ने फोन कर मदद मांगी। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब दिल्ली में इस तरह का हादसा हुआ हो। राजधानी दिल्ली में कई जगह ऐसे ही पीजी संचालित हो रहे हैं। कई जगह ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन नियमों की अनदेखी रहती है। दिल्ली में नियमों की अनदेखी और प्रशासन की बेरुखी की वजह से पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं। कुछ महीने पहले दिल्ली के मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग ने भयावह रूप ले लिया था और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी।
4: अगर आप नीचे बेसमेंट को, ये क्या है कि हवस है पैसे कमाने की, पीजी ही हो चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकोमोडेट करना, ज्यादा से ज्यादा भर्ती करना, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना, ये जो हवस है। राजेंद्र नगर में बेसमेंट को यूज कर रहे थे, वो हवस वो भी वही है। ये पीजी का भी मसला यही है। और अभी 3 महीने पहले अगर आपको ध्यान हो तो सैदुलाजाब में 5 बच्चे इंजीनियरिंग और डॉक्टरी जो कर रहे थे वो मर गए। तो ये दरअसल क्या है कि ये एक तो ये हवस जो बन गई है कि ज्यादा से ज्यादा माल, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हो, चाहे पीजी वाले हो, चाहे जितने भी है, ये किराए पे देने के, एक एक डब्बे का कमरे का मकान बना देते हैं, किराए पे दे देते हैं।
1: बेसमेंट की वजह से छात्रों की जान जाते हुए देश ने साल 2024 में देखा, जब ओल्ड राजेंद्र नगर में राउज IAS सर्किल के बेसमेंट में पानी भरने से 3 UPSC छात्रों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया गया। जब इसी साल जून के महीने में आज तक ने वहां जाकर पड़ताल की तो हमें बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लाइब्रेरी मिली।
0: एक लंबे वक्त से ये सिलसिला चलता हुआ चला आ रहा है। आप किसी भी दिल्ली के लोगों से पूछ लीजिए, जब भी वो कोई बिल्डिंग गिराएंगे तुरंत वहां पर दिल्ली पुलिस का कर्मचारी, MCD का कर्मचारी वहां पर आ जाएगा और उसके बाद फिर सेटिंग करके जरिए, लोकल पार्षद के जरिए सेटिंग करके आप 3 मंजिल की जहां इमारत बननी वहां 5 मंजिल बना लीजिए और उसके बाद फिर हादसा होता है तो फिर सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगते हैं। तो जरूरी है सिस्टम में बड़े स्तर पर सुधार की। ओल्ड राजेंद्र नगर का हादसा आपको याद होगा, वहां पर किस तरीके से कोचिंग में UPSC की तैयारी करने वाले छात्र मर गए। उसके बाद आज तक की टीम ने वहां खुद जाकर बाकायदा रियलिटी चेक किया, खुद मुझ पर अटैक हुआ लेकिन वहां कोई बदलाव नहीं आया।
3: दिल्ली में इमारत के ढहने की न तो ये कोई पहली घटना है न ही अंतिम। ठीक 2 महीने पहले 8 जुलाई को रोहिणी के सेक्टर 16 में भी इमारत गिरी थी, 4 मंजिला अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिरी थी, उसके बाद भी अधिकारियों ने कहा, लेकिन दिल्ली की तस्वीर नहीं बदली, एक और हादसा हो गया।
1: दिल्ली के सत्य निकेतन में हादसे के बाद राजधानी में घर बनाने के नियमों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बने हुए घर के नीचे बेसमेंट बनाया जा सकता है? क्या इसके लिए कोई कानूनी अनुमति लेनी होगी? और अगर बिना अनुमति के बेसमेंट बना दिया तो क्या कार्रवाई हो सकती है? ये किसकी जिम्मेदारी थी?
0: दिल्ली के जो मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है, तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा वक्त का हो चुका है, बड़ी बात यह है कि वो खुद भी यहाँ पर जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको संचालित होते हुए देख रही है, एक बड़ी बात है, तारीफ की बात है। लेकिन यहाँ खड़े होकर वो ये भी देखे कि आसपास कितने अवैध पीजी चल रहे हैं। मैंने कई छात्रों से कुछ देर पहले बात की है, उन पर शिकंजा कसा जाए, अधिकारियों को सख्त ऑर्डर दिया जाए कि खास तौर से जो अवैध पीजी चल रहे हैं, कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, वहां पर क्या NOC है क्या या नहीं है, किस तरह से सुरक्षा के मानकों का वहां अनदेखी की जा रही है, वो तमाम चीजें देखने की जरूरत है, वरना इस तरह के हादसों को रोका जाना काफी मुश्किल होगा। देखिए, ऑन रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस ये कह चुकी है कि 40 से 50 साल ये पुरानी इमारत थी जिसमें पीजी का काम चल रहा था।
1: दिल्ली में इस तरह के हादसे समय समय पर सामने आते रहते हैं। जब हादसा होता है तो MCD समेत संबंधित एजेंसियों पर सवाल उठता है, लेकिन मामला ठंडा पड़ते ही सब कुछ पहले की तरह होने लगता है, जबकि सिस्टम में कमियों की बात मेयर पद पर बैठे लोग भी कबूलते हैं।
5: चाहते हैं ये बच्चे उसमें बच जाएं। पहले पहले रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट है, सभी जायज आपके इस समय सभी जायज है, बहुत कमियां हैं सिस्टम में, बहुत कमियां मैं मानता हूं, लेकिन पहले अभी रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।
1: दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत इसलिए गिरी क्योंकि उसके बेसमेंट में काम चल रहा था। सवाल ये है कि क्या काम चलने से नींव कमजोर हुई और इमारत गिर गई।
0: ये जरूरी हो जाता है कि कम से कम जो जो जो जहां छात्र रहते हो, जो पीजी है, जो गर्ल्स हॉस्टल है, जो बॉयज हॉस्टल है, जो कोचिंग है, कम से कम वहां पर जो कंसर्न अधिकारी है, जो एमसीडी के अधिकारी है, वो जाएं, जाकर देखें कि वहां पर छात्र किस तरह से पढ़ाई करते हैं, किस तरह से रहते हैं। वहां पर एनओसी नहीं है, फायर की एनओसी नहीं है, कई जगह पर एमसीडी की एनओसी नहीं है, और धड़ल्ले से अवैध तरीके से वहां पर लोग रह रहे हैं, और बारिश होती है, जरा सी बारिश दिल्ली में हो जाती है तो आप सुनते होंगे कि दिल्ली में बिल्डिंग गिर गई, अगर आग लग जाती है तो उस बिल्डिंग में लोग फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। यहां पर
1: दिल्ली में बेसमेंट बनाने के लिए संबंधित अथॉरिटी से संशोधित बिल्डिंग प्लान की मंजूरी की जरूरत होती है, लेकिन अगर घर पहले बना हो तो उसके नीचे बेसमेंट में काम करने की छूट तो बहुत देखरेख के बाद ही दी जाती है, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ होता नहीं दिखता।
6: पीजी का काम चलता
7: है, ये पीजी तो बना हुआ था ऑलरेडी, पुरानी बिल्डिंग थी ये, इसमें पीजी तो था, वो पीजी वाले तो लंच करने बच्चे चले गए, संडे का दिन था ना, तो लंच करने दूसरी मैच में चले गए, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता।
8: अपना घूम के एक बार पूरे सत्या में देख लो, दे विल बी 20-25 सच बिल्डिंग्स जो आज गिरे, एक महीने बाद गिरे, एक साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी। विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई आधा दलाली करता है यहाँ पे, तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन।
9: जितनी भी पीजीज हैं सब में सीढ़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है और बच्चों का फायदा उठाया जाता है, साउथ कैंपस के सभी बच्चों का।
1: दिल्ली में ऐसे हादसे तब तक होते रहेंगे जब तक अवैध निर्माण पर लगाम नहीं लगती। दिल्ली में 75 लाख इमारतें बताई जाती है, दुर्भाग्य ये है कि चंद इमारतें ही सभी नियमों को पूरा करे हुए बनी है। इसलिए एक्सपर्ट की मांग है कि सरकार बाकी इमारतों को लेकर अभियान चलाए, क्योंकि 40 से 50 साल पुरानी हो चुकी इमारतों की दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या है।
10: जो इस बिल्डिंग का ओनर था, क्या उसको एक दिन के लिए भी, एक मिनट के लिए भी ये सोच नहीं आई कि वहां पे लोग निवासी अभी भी हैं? एटलीस्ट बिल्डिंग को खाली किया जाता। और जो हम बात करते हैं कि जेई आके इंस्पेक्ट कर ले, हमारे जेई बाय द वे कितने एजुकेटेड है इस मामले में कि वो आके को ढंग का इंस्पेक्ट भी करते, वो तो किसी और वजह से वहां पे आते और अपनी वो वजह पूरी करके निकल जाते वहां से। तो ये सारा सिस्टमिक चेंज जो हमें चाहिए, विकसित भारत बनाने के लिए एक सिस्टमिक चेंज की जरूरत है।
3: दिल्ली में हुए हादसे के बाद राजनीतिक दलों के नेताओं ने दुख जताया है। गोवा में गृहमंत्री शाह ने अपने कार्यक्रम को रोका तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी हादसे पर दुख जताया, और विपक्ष अब सरकार पर हमलावर है।

0: ऐसा भयानक हादसा जिसने दिल्ली को दहला दिया। जैसे ही खबर आई कि सत्यनिकेतन में एक ऐसी इमारत जमींदोज हो गई है जिसमें छात्र रहा करते थे, तो पूरी दिल्ली में हड़कंप मच गया। गृह मंत्री अमित शाह गोवा में थे, वो बीजेपी के नए ऑफिस इनॉग्रेशन सेरेमनी में थे, लेकिन जैसे ही उन्हें हादसे की जानकारी हुई उन्होंने अपना कार्यक्रम रोक दिया। अमित शाह ने हादसे पर दुख जताया है।
1: एक समाचार है, एक दुखद घटना हुई है और उस दुखद घटना का समाचार सुनने के बाद हमारे देश के गृह मंत्री ने तुरंत निर्णय ले लिया कि ये कार्यक्रम यहाँ तक सीमित करके खत्म।
0: घटना बड़ी थी और तकलीफी हादसे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दुख जताया और हादसे वाली जगह पहुंची। एमसीडी के मेयर भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी हालातों का जायजा लिया है।
2: देखिए, हम तो चाहते हैं कि बच्चे उसमें बच जाएं। पहले रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट है। सभी जायजा आपके इस समय सभी जायजा बहुत कमियां हैं, सिस्टम में बहुत कमियां मैं मानता हूं, लेकिन पहले अभी रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।
0: अब इस हादसे पर विपक्ष हमलावर है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दिल्ली में सरकार की लापरवाही के कारण अब तक कई हादसे हो चुके हैं, सरकार को नींद से जागना होगा, बड़े स्तर पर एक्शन लेकर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी के भ्रष्टाचार का नतीजा है।
3: देखिए, मेरे को जो आसपास के रहने वाले लोगों ने बताया है कि पीजी के अंदर करीब 30 से 40 नौजवान बच्चे फंसे हुए हैं इस मलबे में, और आज से कुछ समय पहले की बात है जब साकेत सैजुला जाब में 4 मंजिल की इमारत गिरी तो कहा गया कि हम दिल्ली की सब बिल्डिंगों की ऑडिट कराएंगे, जो पैसा नहीं देता उसकी बिल्डिंग को सील कर देते हैं, पैसे की मांडवाली होती है, एक हफ्ते बाद बिल्डिंग को डी सील कर दिया जाता है। अभी क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। अभी रेखा गुप्ता कहेंगी हम बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं, आशीष सुदलक कहेंगे हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, और क्या करेंगे बता देता हूं। एक जेई को सस्पेंड करेंगे और एक एई को सस्पेंड करेंगे और 15 दिन बाद उनको चुपचाप बहाल भी कर देंगे।
0: कांग्रेस भी सवाल पूछ रही है कि आखिर देश में छात्र सुरक्षित क्यों नहीं है।
4: जी चल रहे, ये बिल्कुल कोई इनकी कोई किसी तरह का मापदंड नहीं है। एमसीडी क्या कर रही है, एनडीएमसी क्या कर रही है, यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, अथॉरिटीज क्या, कब तक जवाब नहीं देंगी। सारी अभी भी आप चेक कर लो, ये आसपास पीजी हैं सारी, आप चेक कर लो। उस टाइम भी हमने मैं भी गया था वहां, आप लोगों के सामने हमने सबने कहा था कि इनको चेक कराओ, इनको कहीं ना कहीं इनकी कोई नॉर्म्स तो हो, स्टूडेंट कब तक बर्दाश्त करेंगे और कब तक अथॉरिटीज जवाब नहीं देंगी। ये मैं समझता हूँ कि आज हम सबके लिए बहुत ही दुख का टाइम है।
5: जब यूनिवर्सिटी में हॉस्टल ही नहीं है और इस निकेतन पे आपने रखा है तो और वो वही छत गिर जाती है तो सुरक्षित छात्र किसी तरीके से सुरक्षित नहीं है, और बड़ी दुख की बात है। तो प्रधानमंत्री जी, ऐसा करिए, हमें एक दिन आप कुछ अपना वक्त दे दीजिए, हम रिपोर्ट कार्ड लिख के आपको लिखित रूप में दे देंगे।
0: सियासत अपनी जगह है, मगर ये भी सच है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री बदले, सरकार बदली, लेकिन हालात नहीं बदल पाए हैं। इसे हादसा कह देना, लेकिन ये लापरवाही सीधे सीधे मौत को आमंत्रण देने वाली जैसी है। सवाल ये है कि ऐसे हादसे कब तक होते रहेंगे। दिल्ली से अंशुल सिंह, अरविंद होजा और अनमोल बाली के साथ आज तक ब्यूरो।
6: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

पांच मंजिला इमारत गिरी, चार से ज्यादा लोगों की मौत, कई घायल, बेसमेंट में खुदाई से हादसे की आशंका। दिल्ली में बिल्डिंग गिरने के बाद राहत का काम जारी, पीएम मोदी ने जताई संवेदना, सीएम रेखा ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, बोली नहीं बचेगा कोई गुनहगार। दिल्ली के एसआरसीसी में पीएम मोदी के संबोधन को लेकर विपक्ष के सवालों पर नितिन नवीन का तंज, कहा प्रधानमंत्री ने नाराज फूफाओं को होम्योपैथी की दवा दी लेकिन इसका असर एलोपैथी वाली हाई एंटीबायोटिक जैसा हुआ। लंदन के कार्यक्रम में शामिल संघ प्रमुख मोहन भागवत, कहा सबको एक मानता है हिंदू विचार, व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन जरूरी। बिहार में उफान पर गंगा, 12 से ज्यादा जिलों में 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, पटना में रिकॉर्ड स्तर पर नदी, गंडक, कोसी और घाघरा नदी भी उफान पर। और अब बड़ी खबर आपको देते हैं, रविवार में दोपहर में दिल्ली में बड़ा हादसा हुआ, सत्यनिकेतन इलाके में एक बहुमंजिला इमारत गिर गई। हादसे के बाद मौके पर राहत बचाव का काम शुरू हुआ और जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।

0: ऐसा हादसा जिसने दिल्ली को हिला के रख दिया, ऐसा हादसा जिसने लोगों के दिलों में खौफ भर दिया। देखिए, दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में दोपहर करीब 1:30 बजे एक इमारत ढह गई। इमारत ढहते ही अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें देखिए, सिर्फ धूल का गुब्बार नजर आ रहा है और साथ में नजर आ रहा है कि कैसे मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है।
1: यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लोकल्स की मदद से जो है यहाँ ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ को भी इस वक्त बुला लिया गया है। एनडीआरएफ की भी एक बटालियन जो है, एक टीम जो है वो इस वक्त यहाँ पहुंच गई है और अभी धीरे धीरे वो यहाँ पे स्पॉट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि कितनी भारी संख्या में जो यहाँ लोकल्स हैं, वो लोकल जो है यहाँ मदद कर रहे हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं। अभी ये बड़ी मशीन, अभी जो मशीनें हैं, जो कटर्स हैं, हैवी कटर्स हैं, बोल्डर कटर्स हैं, उन्हें भी अभी लेकर के यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो इस वक्त यहाँ आई है। और ये 5 मंजिला इमारत बताई जा रही है। अगर आप तस्वीरों में थोड़ा और क्लैरिटी से देखें यहाँ पर, तो ये देखें आप, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग थी और ये काफी बड़े इलाके में जो है ये पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर एक बॉयज हॉस्टल था और उसे बॉयज हॉस्टल में जो है ये पूरा हादसा हुआ है।
0: बताया जा रहा है कि इस इमारत में पीजी हॉस्टल था। सत्य निकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास बसा प्रमुख छात्र इलाका है। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं, इसी वजह से यहाँ दिन भर छात्रों की आवाजाही रहती है। हालांकि सत्य निकेतन में कुल कितने छात्र रहते हैं इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी बचाव काम चल रहा है, वो भी संभाल कर कि कहीं मलबे में दबे किसी शख्स को नुकसान न पहुंचे।
1: तो यहाँ पे जेसीबी चलाना वो खतरे से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि आखिर कितने लोग फंसे हैं और कौन कौन सी जगह फंसे हैं। अगर जेसीबी से मलबा हटाने के चक्कर में कुछ और लोग जो फंसे हुए हैं, जो शायद इंजर्ड हो, बस उनकी भी जान पर बना सकती है। और इसीलिए जेसीबी का अगर हम देखें तो ज्यादा इस्तेमाल ऐसे सिचुएशंस में नहीं किया जाता। और जो प्रिसाइज हैवी टूल्स होते हैं, जैसे बड़े ड्रिलर्स होते हैं, स्टील कटिंग मशीन्स होती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये पता लग पाए कि कहां कहां लोग फंसे हैं। अभी इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे ये समझ आ गया है कि यहां पर लोग नहीं फंसे हैं, जो बिल्डिंग के बाहर की लोकेशंस हैं, वहां पर अब जेसीबी की कार्रवाई जो है वो शुरू होती हुई दिख रही है। और बिल्डिंग के बाहर जहां गाड़ियों पर जो मलबा गिरा था उनसे अब मलबा हटाना शुरू किया जा रहा है। लेकिन बिल्डिंग जहां पर थी, जहां लोग फंसे हुए हैं, वहां पर अभी जेसीबी नहीं चलेगी। वहां पर अभी मेटल कटर्स चलेंगे, वहां पर अभी जीपीआर लगाया जाएगा, ये पता लगाया जाएगा कि कहां कहां लोग फंसे हैं, और उसके बाद वहां से मैन्युअली डिग करके ही लोगों को निकालना होगा या फिर हैंड यूजेबल मशीन से ही लोगों को निकालना होगा। अगर आप देखें यहां पे अभी भी प्रशासन को बहुत मुश्किलें हो रही हैं लोगों को समझाने में कि ये जगह खाली कर दे, क्योंकि ये जगह अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कहीं से भी मलबा और भी थोड़ा घिसक सकता है और लोगों को इंजरीज हो सकती है और लोगों को चोट आ सकती है।
0: बताया जा रहा है कि इमारत के बेसमेंट में काम चल रहा था, लेकिन अभी सही तौर पर ये नहीं मालूम चल सका कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। अनमोल बाली, अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
2: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता हादसे वाली जगह पर पहुंची और उन्होंने भरोसा दिलाया कि इमारत के मालिक समेत जो भी जिम्मेदार होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा।
3: हमारी टीमें जो है वो पूरी तरीके से काम कर रही है, नीचे ऑक्सीजन भी डाली गई है, कैमरा भी
4: काम कर रहे हैं ना,
3: जो सबसे महत्वपूर्ण बच्चों की जान है और कोई भी कल्पित छोड़ा नहीं जाएगा। खास करके ये जिसका मकान है, जो यहाँ पे बिल्डिंग छोड़ के भाग गया, जो कि अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा था, बेसमेंट में खुदाई कर रहा था, और जिसकी वजह से जो पिलर है वो डिसमेंटल हुआ और बिल्डिंग पूरी गिर गई, तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, और जिसके कारण से ये हादसा हुआ है सबको सजा भुगतनी पड़ेगी।
2: जिन लोगों ने इमारत को ढहते हुए देखा वो खौफ ज्यादा है। अब उन लोगों की जुबानी आप सुनिए कि हादसा कैसे हुआ।
5: हॉस्टल डेज नाम की बिल्डिंग है, इसके साथ एक और बिल्डिंग पीजी गिरी है। हॉस्टल डेज तो है, वो बॉयज पीजी है प्रॉपर। 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी ये, एंड इसके साथ बगल वाली बिल्डिंग भी गिरी है, एंड जो ये येलो वाली बिल्डिंग है ये दोनों हिल रही थी जब वो गिरी है। तो इन दोनों में भी पीजीज ही है और इनके एंट्रेंस एक उधर से एक पीछे की साइड से, दो साइड से एंट्रेंस है। और मलबे के चक्कर में इनका एंट्रेंस भी जहाँ तक है ब्लॉक हो चुका है, और 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी, जितने बच्चे रूम में थे वो तो सारे दब गए हैं, और जो बाहर थे बच्चे उनका पता नहीं है, और जितना भी रजिस्टर में एंट्रीज होंगे उसके हिसाब से पता चलेगा आप कितने बच्चे दबे हैं इसमें।
6: कम से कम 40 बच्चों के हताहत होने की खबर है, और ये सत्यनिकेतन में आप जो भी बिल्डिंगें देख रहे हैं सब बिल्डिंगें जर्जर, इनकी कोई ये कभी भी गिर सकती है, इसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार इन बिल्डिंगों की स्थिति देखकर इन्हें सील करे, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, सरकार को बच्चों से शिक्षा से कोई मतलब नहीं है।
7: There will be 20-25 such buildings, जो आज गिरे, एक महीने बाद गिरे, एक साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी। विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई आधा दिल्ली करता है यहाँ पे, तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन।
8: दिल्ली पुलिस पे है, 1:45 पे दिल्ली पुलिस को फोन किया था, दिल्ली पुलिस 3:15 तक कहाँ थी, और दूसरी बात यहाँ के बिल्डिंग का ओनर कहाँ है।
9: और यहाँ पे जितनी भी पीजीज हैं सब में सीढ़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है, और बच्चों का फायदा उठाया जाता है, साउथ कैंपस के सभी बच्चों का, उनको खाना खराब दिया जाता है, और उनकी मजबूरी है पीजीज की।
7: आधे बच्चे गंदे खाने से मर जाते हैं, जो बच रहे हैं वो बिल्डिंग गिरने से मर रहे हैं।
10: 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं जब हमारे सामने बिल्डिंग गिरी थी, तो काफी नीचे मतलब लेबर भी काम कर रही थी, इसमें 7 से 8 लेबर थी जो काम करे जा रही थी। अब उनका भी नहीं पता कि वो निकल पाए थे या नहीं निकल पाए थे, मगर मुझे इतना पता कि बहुत बच्चे हैं इसके नीचे, कम से कम 8-10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, मगर बाकी जितने भी यहाँ के मोहल्ले क्षेत्र के हैं सबने अपने हाथों से मलबा हटा के 4 लोगों को निकाल लिया गया है।
11: हम दुकान के अंदर बैठे थे, हमें एकदम आवाज आई जैसे भूकंप टाइप होता है, 1:30 बजे, हम अंदर इतनी नहीं आई, जो बाहर बच्चे खड़े थे उनके पास आवाज आई, हम फटाफट भाग के आए, यहाँ पे बहुत ज्यादा धुआं वगैरह था, सारी बिल्डिंग गिरी हुई थी, और अभी इन्होंने यहाँ से मजदूर वगैरह निकाले हैं, उनकी डेड बॉडी मिली है, और 4 बच्चे निकाले हैं जिनकी सांसें चल रही थी, वो अभी उनको एम्बुलेंस ले गई है, बट वो मतलब अधमरे की हालत में थे।
2: सत्य निकेतन हादसे में 11 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है, जिनमें से 3 की मौत हो गई है, और 5 मंजिला जब इमारत गिरी तो आसपास के लोगों को लगा मानो भूकंप आ गया हो।

0: दिल्ली में कितनी इमारतें इस तरह हादसे के इंतजार में, आखिर कितने बेकसूर छात्रों की जिंदगी ज्यादा किराए के लालच में इस तरह दांव पर लगाई जाती रहेंगी। दिल्ली में लगातार हो रहे इन हादसों की जिम्मेदारी कब और कैसे तय होगी? दिल्ली का सत्य निकेतन इलाका जहां 5 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया, पहली नजर में ये आपको हादसा लग सकता है, लेकिन ये हादसा नहीं बल्कि लालच और लापरवाही के कॉकटेल का नतीजा है। क्योंकि जब 40 साल पुरानी इमारत को 3 की जगह 5 मंजिल तक अवैध बना दिया जाए, 40 साल पुरानी इमारत की जांच करने वाला कोई न हो, बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भरा होने के बावजूद काम किया जा रहा, जबकि हादसे के वक्त छात्र कमरों में मौजूद थे, तो अब आप ही बताइए क्या इसे हादसा कहना ठीक होगा?
1: यहाँ पर लिमिट ही खाली 2 या 3 फ्लोर्स के, बट इन लोगों ने 5 फ्लोर्स बनवा रखे थे। इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, नीचे बेसमेंट में काम चल रहा था, उसकी वजह से बिल्डिंग गिरी है। मैं उस टाइम पे अपना खाना ही खा रहा था, एकदम से सोफा हिलने लगा, प्रॉपर फील हुआ कि अर्थक्वेक आया, पर बाहर आके देखा तो धुआं वो हो रखा, तो फिर पता लगा कि बिल्डिंग गिरी है।
2: लेवर लगी हुई थी सर, नीचे बेसमेंट में काम कर रहे थे सुबह।
3: अच्छा,
2: जब मैं मार्केट में आया तो मैंने देखा तो लेवर काम कर रही थी, प्लस यहाँ पर 2 कारपेंटर काम कर रहे थे।
3: अच्छा,
2: जब मैं मार्केट से होकर फिर मैं सीधा घर चला गया था। अच्छा। उसके बाद पता लगा तो ये बिल्डिंग गिरी है सर।
0: इस हादसे ने देश की राजधानी को एक बार फिर हिला दिया है। लोग डरे हुए हैं क्योंकि वो जिन इमारतों में रह रहे हैं उनका भी ऐसा ही अंजाम हो सकता है, जैसा दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में दोपहर करीब 1:30 बजे इस इमारत के साथ हुआ।
4: बिल्डिंग की क्या हालत थी? बेसमेंट में कोई काम चल रहा
5: था? बेसमेंट में काम चल रहा था, 2 दिन से पानी भरा हुआ था, और इसका क्या था कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, और आप कह सकते हो कि इलीगली है, क्योंकि यहाँ पे अलाउड है कि आप 3 मंजिल से लेके 5-4 मंजिल तक कर सकते हो, मगर यहाँ ये बिल्डिंग थी 5वीं मंजिल तक। और मैक्सिमम स्टूडेंट थे, पीजीस थे, और एक पीजीस में 3 और 4 ही बच्चे रहते थे। और संडे की वजह से स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे चाय की दुकान है, ब्रेड बटर लेने आते हैं। ये बिल्डिंग इस वजह से भी अब हम प्रे करते कि कोई नुकसान ना हो।
4: अभी बिल्डिंग का बेसमेंट में काम चल रहा था।
5: पानी,
4: ये जो 40-50 साल, ये दिल्ली पुलिस आधिकारिक बयान दे रही है, 40-50 साल पुरानी बिल्डिंग थी, 5 मंजिला थी, बेसमेंट था उसमें, और बेसमेंट में काम चल रहा था, सीधे सीधे जो छात्र हैं जिसमें रह रहे थे उन सबकी जिंदगी दांव पर लगा दी बिल्डिंग के मालिक ने ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में।
0: इमारत ढहते ही यहाँ अफरा तफरी मच गई, धूल के गुब्बार में पूरे इलाके को घेर लिया।
6: मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लोकल्स की मदद से जो है यहाँ ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ को भी इस वक्त बुला लिया गया है, एनडीआरएफ की भी एक बटालियन जो है, एक टीम जो है वो इस वक्त यहाँ पहुंच गई है, और अभी धीरे धीरे वो यहाँ पे स्पॉट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि कितनी भारी संख्या में जो यहाँ लोकल्स हैं, वो लोकल जो है यहाँ मदद कर रहे हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं। अभी ये बड़ी मशीन, अभी जो मशीनें हैं, जो कटर्स हैं, हैवी कटर्स हैं, बोल्डर कटर्स हैं, उन्हें भी अभी लेकर के यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो इस वक्त यहाँ आई है। और ये 5 मंजिला इमारत बताई जा रही है, अगर आप तस्वीरों में थोड़ा और क्लैरिटी से देखें यहाँ पर, तो ये देखें आप, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, और ये काफी बड़े इलाके में जो है ये पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक बॉयज हॉस्टल था, और उसे बॉयज हॉस्टल में जो है ये पूरा हादसा हुआ है।
0: बिल्डिंग गिरने के बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, कुछ हथौड़े से मलबा हटाने लगे।
4: आपको दिखा दूं किस तरीके से रेस्क्यू जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। ये एक गाड़ी है जो कि बिल्डिंग के पास खड़ी थी, जब बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो उसकी हालत देखिए कि किस तरीके से इस पूरी गाड़ी के ऊपर बिल्डिंग का जो मलबा है वो भरभरा करके गिरा, पूरी गाड़ी जो है वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। अब इसको जेसीबी की मदद से जो है वो यहाँ से हटाया जा रहा है। आप ये समझिए कि जब मैं ये समझाने की कोशिश इसलिए भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये तस्वीरें देखने के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो मलबा, सोचिए उस बिल्डिंग के अंदर कई सारे लोग थे, और उनकी हालत क्या रही होगी जब ये बिल्डिंग पूरी तरीके से कोलैप्स हुई, जब गाड़ी की हालत इस तरीके की है।
0: सत्य निकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास बसा प्रमुख छात्र इलाका है। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं। इलाके में कई छात्र आवास,
6: जेसीबी की अगर बात करें तो यहाँ पे जेसीबी चलाना वो खतरे से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि आखिर कितने लोग फंसे हैं और कौन कौन सी जगह फंसे हैं। अगर जेसीबी से मलबा हटाने के चक्कर में कुछ और लोग जो फंसे हुए हैं, जो शायद इंजर्ड हो, बस उनकी भी जान पर बना सकती है। और इसीलिए जेसीबी का अगर हम देखें तो ज्यादा इस्तेमाल ऐसे सिचुएशंस में नहीं किया जाता। और जो प्रिसाइज हैवी टूल्स होते हैं, जैसे बड़े ड्रिलर्स होते हैं, स्टील कटिंग मशीन्स होती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये पता लग पाए कि कहां कहां लोग फंसे हैं। अभी इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे ये समझ आ गया है कि यहां पर लोग नहीं फंसे हैं, जो बिल्डिंग के बाहर की लोकेशंस हैं, वहां पर अब जेसीबी की कार्रवाई जो है वो शुरू होती हुई दिख रही है। और बिल्डिंग के बाहर जहां गाड़ियों पर जो मलबा गिरा था उनसे अब मलबा हटाना शुरू किया जा रहा है, लेकिन बिल्डिंग जहां पर थी, जहां लोग फंसे हुए हैं, वहां पर अभी जेसीबी नहीं चलेगी। वहां पर अभी मेटल कटर्स चलेंगे, वहां पर अभी जीपीआर लगाया जाएगा, ये पता लगाया जाएगा कि कहां कहां लोग फंसे हैं, और उसके बाद वहां से मैन्युअली डिग करके ही लोगों को निकालना होगा या फिर हैंड यूजेबल मशीन से ही लोगों को निकालना होगा। अगर आप देखें यहां पे अभी भी प्रशासन को बहुत मुश्किलें हो रही हैं लोगों को समझाने में कि ये जगह खाली कर दे, क्योंकि ये जगह अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कहीं से भी मलबा और भी थोड़ा घिसक सकता है और लोगों को इंजरीज हो सकती है और लोगों को चोट आ सकती है।
0: इस इमारत को लेकर सवाल ये है कि क्या इस बिल्डिंग का नक्शा पास था? 5 मंजिला इमारत बनाने की अगर अनुमति नहीं थी तो इसे रोका क्यों नहीं गया? 40 साल पुरानी इमारत में छात्रों को रहते बेसमेंट में काम की इजाजत कैसे दी गई? अनमोल बाली, अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
3: ये इमारत 50 साल पुरानी बताई जा रही है और इसके बेसमेंट में काम चल रहा था। इसका मालिक आनंद बंसल, जो कि गुरुग्राम का रहने वाला है, इस समय फरार है और बताया जा रहा है कि मेडिकल शॉप भी वहां पर चलते थे और इस इमारत में 10 कमरे थे।
0: दिल्ली में हादसों की वजह बनने वाली गैर कानूनी इमारत पर समय रहते लगाम क्यों नहीं लगाई जाती? आखिर हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जाता? दिल्ली के जिस सत्य निकेतन में यह हादसा हुआ, वहां बड़ी संख्या में पीजी, रेंटेड रूम और हॉस्टल चलते हैं। यहां पर कितनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हादसे के बाद इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि रेस्क्यू करना मुश्किल हो गया। जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हादसे की जगह पहुंची तो उन्हें घटनास्थल का जायजा लेने के लिए दूसरी इमारत के ऊपर मंजिल का सहारा लेना पड़ा। अगर इलाके की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यहाँ छोटी छोटी गलियां हैं और घनी आबादी के बीच कई बहुमंजिला मकान मौजूद हैं। ऐसे ही एक इमारत गिरने से छात्र दब गए। मलबे में फंसे छात्र ने ये वीडियो बनाया जिसमें दबे हुए छात्र दिखाई दे रहे हैं। वहीं कई मलबे में दबे छात्रों ने फोन कर मदद मांगी। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब दिल्ली में इस तरह का हादसा हुआ हो। राजधानी दिल्ली में कई जगह ऐसे ही पीजी संचालित हो रहे हैं। कई जगह ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन नियमों की अनदेखी रहती है। दिल्ली में नियमों की अनदेखी और प्रशासन की बेरुखी की वजह से पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं। कुछ महीने पहले दिल्ली के मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग ने भयावह रूप ले लिया था और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी।
7: अगर आप नीचे बेसमेंट को, ये क्या है कि हवस है पैसे कमाने की, पीजी ही हो चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकोमोडेट करना, ज्यादा से ज्यादा भर्ती करना, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना, ये जो हवस है। राजेंद्र नगर में बेसमेंट को यूज कर रहे थे, वो हवस वो भी वही है। ये पीजी का भी मसला यही है। और अभी 3 महीने पहले अगर आपको ध्यान हो तो सैदुला जाब में 5 बच्चे इंजीनियरिंग और डॉक्टरी जो कर रहे थे वो मर गए। तो ये दरअसल क्या है कि ये एक तो ये हवस जो बन गई है कि ज्यादा से ज्यादा माल, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हो, चाहे पीजी वाले हो, चाहे जितने भी है, ये किराए पे देने के, एक एक डब्बे का कमरे का मकान बना देते हैं, किराए पे दे देते हैं।
0: बेसमेंट की वजह से छात्रों की जान जाते हुए देश ने साल 2024 में देखा, जब ओल्ड राजेंद्र नगर में राउज IAS सर्किल के बेसमेंट में पानी भरने से 3 UPSC छात्रों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया गया। जब इसी साल जून के महीने में आज तक ने वहां जाकर पड़ताल की तो हमें बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लाइब्रेरी मिली।
8: एक लंबे वक्त से ये सिलसिला चलता हुआ चला आ रहा है। आप किसी भी दिल्ली के लोगों से पूछ लीजिए, जब भी वो कोई बिल्डिंग गिराएंगे तुरंत वहां पर दिल्ली पुलिस का कर्मचारी, एमसीडी का कर्मचारी वहां पर आ जाएगा और उसके बाद फिर सेटिंग करके जरिए, लोकल पार्षद के जरिए सेटिंग करके आप 3 मंजिल की जहां इमारत बननी वहां 5 मंजिल बना लीजिए और उसके बाद फिर हादसा होता है तो फिर सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगते हैं। तो जरूरी है सिस्टम में बड़े स्तर पर सुधार की। ओल्ड राजेंद्र नगर का हादसा आपको याद होगा, वहां पर किस तरीके से कोचिंग में यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र मर गए, उसके बाद आज तक की टीम ने वहां खुद जाकर बाकायदा रियलिटी चेक किया, खुद मुझ पर अटैक हुआ लेकिन वहां कोई बदलाव नहीं आया।
3: दिल्ली में इमारत के ढहने की न तो ये कोई पहली घटना है न ही अंतिम। ठीक 2 महीने पहले 8 जुलाई को रोहिणी के सेक्टर 16 में भी इमारत गिरी थी, 4 मंजिला अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिरी थी, उसके बाद भी अधिकारियों ने कहा, लेकिन दिल्ली की तस्वीर नहीं बदली। एक और हादसा हो गया।
0: दिल्ली के सत्य निकेतन में हादसे के बाद राजधानी में घर बनाने के नियमों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बने हुए घर के नीचे बेसमेंट बनाया जा सकता है, क्या इसके लिए कोई कानूनी अनुमति लेनी होगी और अगर बिना अनुमति के बेसमेंट बना दिया तो क्या कार्रवाई हो सकती है, ये किसकी जिम्मेदारी थी।
8: कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है, तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा वक्त का हो चुका है, बड़ी बात यह है कि वो खुद भी यहाँ पर जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको संचालित होते हुए देख रही है, एक बड़ी बात है, तारीफ की बात है, लेकिन यहाँ खड़े होकर वो ये भी देखे कि आसपास कितने अवैध पीजी चल रहे हैं। मैंने कई छात्रों से कुछ देर पहले बात की है, उन पर शिकंजा कसा जाए, अधिकारियों को सख्त ऑर्डर दिया जाए कि खास तौर से जो अवैध पीजी चल रहे हैं, कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, वहां पर क्या एनओसी है क्या या नहीं है, किस तरह से सुरक्षा के मानकों का वहां अनदेखी की जा रही है, वो तमाम चीजें देखने की जरूरत है, वरना इस तरह के हादसों को रोका जाना काफी मुश्किल होगा। देखिए, ऑन रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस ये कह चुकी है कि 40 से 50 साल ये पुरानी इमारत थी जिसमें पीजी का काम चल रहा था।
0: दिल्ली में इस तरह के हादसे समय समय पर सामने आते रहते हैं। जब हादसा होता है तो एमसीडी समेत संबंधित एजेंसियों पर सवाल उठता है, लेकिन मामला ठंडा पड़ते ही सब कुछ पहले की तरह होने लगता है, जबकि सिस्टम में कमियों की बात मेयर पद पर बैठे लोग भी कबूलते हैं।
9: चाहते हैं कि बच्चे उसमें बच जाएं। पहले रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट है, सभी जायज हैं आपके, इस समय सभी जायज हैं, बहुत कमियां हैं सिस्टम में, बहुत कमियां मैं मानता हूं, लेकिन पहले अभी रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।
0: दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत इसलिए गिरी क्योंकि उसके बेसमेंट में काम चल रहा था। सवाल यह है कि क्या काम चलने से नींव कमजोर हुई और इमारत गिर गई।
8: यह जरूरी हो जाता है कि कम से कम जो जो जो जहां छात्र रहते हो, जो पीजी है, जो गर्ल्स हॉस्टल है, जो बॉयज हॉस्टल है, जो कोचिंग है, कम से कम वहां पर जो कंसर्न अधिकारी हैं, जो एमसीडी के अधिकारी हैं, वो जाएं, जाकर देखें कि वहां पर छात्र किस तरह से पढ़ाई करते हैं, किस तरह से रहते हैं। वहां पर एनओसी नहीं है, फायर की एनओसी नहीं है, कई जगह पर एमसीडी की एनओसी नहीं है और धड़ल्ले से अवैध तरीके से वहां पर लोग रह रहे हैं और बारिश होती है, जरा सी बारिश दिल्ली में हो जाती है तो आप सुनते होंगे कि दिल्ली में बिल्डिंग गिर गई, अगर आग लग जाती है तो उस बिल्डिंग में लोग फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। यहां पर
0: दिल्ली में बेसमेंट बनाने के लिए संबंधित अथॉरिटी से संशोधित बिल्डिंग प्लान की मंजूरी की जरूरत होती है, लेकिन अगर घर पहले बना हो तो उसके नीचे बेसमेंट में काम करने की छूट तो बहुत देखरेख के बाद ही दी जाती है, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ होता नहीं दिखता।
10: पीजी का काम चल रहा
11: है? नहीं, ये पीजी तो बना हुआ था ऑलरेडी, पुरानी बिल्डिंग थी ये, इसमें पीजी तो था, वो पीजी वाले तो लंच करने बच्चे चले गए, संडे का दिन था ना, तो लंच करने दूसरी मैच में चले गए, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता।
12: अपना घूम के एक बार पूरे सत्या में देख लो, देयर विल बी 20-25 सच बिल्डिंग्स जो आज गिरे, 1 महीने बाद गिरे, 1 साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी। विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई आधा दलाली करता है यहाँ पे, तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन।
13: जितनी भी पीजीज है सब में सिड़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है और बच्चों का फायदा उठाया जाता है, साउथ कैंपस के सभी बच्चों का।
0: दिल्ली में ऐसे हादसे तब तक होते रहेंगे जब तक अवैध निर्माण पर लगाम नहीं लगती, दिल्ली में 75 लाख इमारतें बताई जाती हैं। दुर्भाग्य ये है कि चंद इमारतें ही सभी नियमों को पूरा करे हुए बनी है। इसलिए एक्सपर्ट की मांग है कि सरकार बाकी इमारतों को लेकर अभियान चलाए, क्योंकि 40 से 50 साल पुरानी हो चुकी इमारतों की दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या है।
14: जो इस बिल्डिंग का ओनर था, क्या उसको एक दिन के लिए भी, एक मिनट के लिए भी ये सोच नहीं आई कि वहां पे लोग निवासी अभी भी हैं? एटलीस्ट बिल्डिंग को खाली किया जाता। और जो हम बात करते हैं कि जेई आके इंस्पेक्ट कर ले, हमारे जेई बाय द वे कितने एजुकेटेड है इस मामले में कि वो आके को ढंग का इंस्पेक्ट भी करते, वो तो किसी और वजह से वहां पे आते और अपनी वो वजह पूरी करके निकल जाते वहां से। तो ये सारा सिस्टमिक चेंज जो हमें चाहिए, विकसित भारत बनाने के लिए एक सिस्टमिक चेंज की जरूरत है।
3: दिल्ली में हुए हादसे के बाद राजनीतिक दलों के नेताओं ने दुख जताया है। गोवा में गृहमंत्री शाह ने अपने कार्यक्रम को रोका तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी हादसे पर दुख जताया और विपक्ष अब सरकार पर हमलावर है।

0: ऐसा भयानक हादसा जिसने दिल्ली को दहला दिया। जैसे ही खबर आई कि सत्यनिकेतन में एक ऐसी इमारत जमींदोज हो गई है जिसमें छात्र रहा करते थे, तो पूरी दिल्ली में हड़कंप मच गया। गृह मंत्री अमित शाह गोवा में थे, वो बीजेपी के नए ऑफिस इनॉग्रेशन सेरेमनी में थे, लेकिन जैसे ही उन्हें हादसे की जानकारी हुई उन्होंने अपना कार्यक्रम रोक दिया। अमित शाह ने हादसे पर दुख जताया है।
1: एक समाचार है, एक दुखद घटना हुई है और उस दुखद घटना का समाचार सुनने के बाद हमारे देश के गृह मंत्री ने तुरंत निर्णय ले लिया कि ये कार्यक्रम यहां तक सीमित करके खत्म।
0: घटना बड़ी थी और तकलीफी हादसे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दुख जताया और हादसे वाली जगह पहुंची। एमसीडी के मेयर भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी हालातों का जायजा लिया है।
2: देखिए, हम तो चाहते हैं कि बच्चे उसमें बच जाएं। पहले रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट है। सभी जायजा आपके इस समय सभी जायजा है, बहुत कमियां हैं सिस्टम में, बहुत कमियां मैं मानता हूं, लेकिन पहले अभी रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।
0: अब इस हादसे पर विपक्ष हमलावर है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दिल्ली में सरकार की लापरवाही के कारण अब तक कई हादसे हो चुके हैं, सरकार को नींद से जागना होगा, बड़े स्तर पर एक्शन लेकर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी के भ्रष्टाचार का नतीजा है।
3: देखिए, मेरे को जो आसपास के रहने वाले लोगों ने बताया है कि पीजी के अंदर करीब 30 से 40 नौजवान बच्चे फंसे हुए हैं इस मलबे में, और आज से कुछ समय पहले की बात है जब साकेत सैजुला जाब में 4 मंजिल की इमारत गिरी तो कहा गया कि हम दिल्ली की सब बिल्डिंगों की ऑडिट कराएंगे, जो पैसा नहीं देता उसकी बिल्डिंग को सील कर देते हैं, पैसे की मांडवाली होती है, एक हफ्ते बाद बिल्डिंग को डी सील कर दिया जाता है। अभी क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। अभी रेखा गुप्ता कहेंगी हम बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं, आशीष सूद अलग कहेंगे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और क्या करेंगे बता देता हूं। एक जेई को सस्पेंड करेंगे और एक एई को सस्पेंड करेंगे और 15 दिन बाद उनको चुपचाप बहाल भी कर देंगे।
0: कांग्रेस भी सवाल पूछ रही है कि आखिर देश में छात्र सुरक्षित क्यों नहीं है।
4: जी चल रहे, ये बिल्कुल कोई इनकी कोई वो कोई किसी तरह का मापदंड नहीं है। एमसीडी क्या कर रही है, एनडीएमसी क्या कर रही है, यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, अथॉरिटीज क्या, कब तक जवाब नहीं देंगी। सारी अभी भी आप चेक कर लो, ये आसपास पीजी हैं सारी, आप चेक कर लो। उस टाइम भी हमने मैं भी गया था वहां, आप लोगों के सामने हमने सबने कहा था कि इनको चेक कराओ, इनको कहीं ना कहीं इनकी कोई नॉर्म्स तो हो, स्टूडेंट कब तक बर्दाश्त करेंगे और कब तक अथॉरिटीज जवाब नहीं देंगी। ये मैं समझता हूँ कि आज हम सबके लिए बहुत ही दुख का टाइम है।
5: जब यूनिवर्सिटी में हॉस्टल ही नहीं है और इस निकेतन पे आपने रखा है तो और वो वही छत गिर जाती है तो सुरक्षित छात्र किसी तरीके से सुरक्षित नहीं है, और बड़ी दुख की बात है। तो प्रधानमंत्री जी ऐसा करिए, हमें एक दिन आप कुछ अपना वक्त दे दीजिए, हम रिपोर्ट कार्ड लिख के आपको लिखित रूप में दे देंगे।
0: सियासत अपनी जगह है, मगर ये भी सच है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री बदले, सरकार बदली, लेकिन हालात नहीं बदल पाए हैं। इसे हादसा कह देना लेकिन ये लापरवाही सीधे सीधे मौत को आमंत्रण देने वाली जैसी है। सवाल ये है कि ऐसे हादसे कब तक होते रहेंगे। दिल्ली से अंशुल सिंह, अरविंद होजा और अनमोल बाली के साथ आज तक ब्यूरो।
6: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

केतन इलाके में 5 मंजिला इमारत गिरी, 4 से ज्यादा लोगों की मौत, कई घायल, बेसमेंट में खुदाई से हादसे की आशंका। दिल्ली में बिल्डिंग गिरने के बाद राहत का काम जारी, पीएम मोदी ने जताई संवेदना, सीएम रेखा ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, बोली नहीं बचेगा कोई गुनहगार। दिल्ली के एसआरसीसी में पीएम मोदी के संबोधन को लेकर विपक्ष के सवालों पर नितिन नवीन का तंज, कहा प्रधानमंत्री ने नाराज फूफाओं को होम्योपैथी की दवा दी लेकिन इसका असर एलोपैथी वाली हाई एंटीबायोटिक जैसा हुआ। लंदन के कार्यक्रम में शामिल संघ प्रमुख मोहन भागवत, कहा सबको एक मानता है हिंदू विचार, व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन जरूरी। बिहार में उफान पर गंगा, 12 से ज्यादा जिलों में 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, पटना में रिकॉर्ड स्तर पर नदी, गंडक, कोसी और घाघरा नदी भी उफान पर। और अब बड़ी खबर आपको देते हैं, रविवार में दोपहर में दिल्ली में बड़ा हादसा हुआ, सत्य निकेतन इलाके में एक बहुमंजिला इमारत गिर गई। हादसे के बाद मौके पर राहत बचाव का काम शुरू हुआ और जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।

0: ऐसा हादसा जिसने दिल्ली को हिला के रख दिया, ऐसा हादसा जिसने लोगों के दिलों में खौफ भर दिया। देखिए, दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में दोपहर करीब 1:30 बजे एक इमारत ढह गई। इमारत ढहते ही अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें देखिए, सिर्फ धूल का गुब्बार नजर आ रहा है और साथ में नजर आ रहा है कि कैसे मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है।
1: यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लोकल्स की मदद से जो है यहाँ ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ को भी इस वक्त बुला लिया गया है। एनडीआरएफ की भी एक बटालियन जो है, एक टीम जो है, वो इस वक्त यहाँ पहुंच गई है और अभी धीरे धीरे वो यहाँ पे स्पॉट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि कितनी भारी संख्या में जो यहाँ लोकल्स हैं, वो लोकल जो है यहाँ मदद कर रहे हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं। अभी ये बड़ी अभी जो मशीनें हैं, जो कटर्स हैं, हैवी कटर्स हैं, बोल्डर कटर्स हैं, उन्हें भी अभी लेकर के यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो इस वक्त यहाँ आई है। और ये 5 मंजिला इमारत बताई जा रही है। अगर आप तस्वीरों में थोड़ा और क्लैरिटी से देखें यहाँ पर, तो ये देखें आप, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग थी और ये काफी बड़े इलाके में जो है ये पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर एक बॉयज हॉस्टल था और उसे बॉयज हॉस्टल में जो है ये पूरा हादसा हुआ है।
0: बताया जा रहा है कि इस इमारत में पीजी हॉस्टल था। सत्य निकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास बसा प्रमुख छात्र इलाका है। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं, इसी वजह से यहाँ दिन भर छात्रों की आवाजाही रहती है। हालांकि सत्य निकेतन में कुल कितने छात्र रहते हैं इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी बचाव काम चल रहा है, वो भी संभाल कर कि कहीं मलबे में दबे किसी शख्स को नुकसान न पहुंचे।
1: तो यहाँ पे जेसीबी चलाना वो खतरे से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि आखिर कितने लोग फंसे हैं और कौन कौन सी जगह फंसे हैं। अगर जेसीबी से मलबा हटाने के चक्कर में कुछ और लोग जो फंसे हुए हैं, जो शायद इंजर्ड हो, बस उनकी भी जान पर बना सकती है। और इसीलिए जेसीबी का अगर हम देखें तो ज्यादा इस्तेमाल ऐसे सिचुएशंस में नहीं किया जाता। और जो प्रिसाइज हैवी टूल्स होते हैं, जैसे बड़े ड्रिलर्स होते हैं, स्टील कटिंग मशीन्स होती हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये पता लग पाए कि कहाँ कहाँ लोग फंसे हैं। अभी इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे ये समझ आ गया है कि यहाँ पर लोग नहीं फंसे हैं, जो बिल्डिंग के बाहर की लोकेशंस हैं वहां पर अब जेसीबी की कार्रवाई जो है वो शुरू होती हुई दिख रही है। और बिल्डिंग के बाहर जहां गाड़ियों पर जो मलबा गिरा था उनसे अब मलबा हटाना शुरू किया जा रहा है। लेकिन बिल्डिंग जहां पर थी, जहां लोग फंसे हुए हैं, वहां पर अभी जेसीबी नहीं चलेगी। वहां पर अभी मेटल कटर्स चलेंगे, वहां पर अभी जीपीआर लगाया जाएगा, ये पता लगाया जाएगा कि कहां कहां लोग फंसे हैं, और उसके बाद वहां से मैन्युअली डिग करके ही लोगों को निकालना होगा या फिर हैंड यूजेबल मशीन से ही लोगों को निकालना होगा। अगर आप देखें यहां पे अभी भी प्रशासन को बहुत मुश्किलें हो रही हैं लोगों को समझाने में कि ये जगह खाली कर दे, क्योंकि ये जगह अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कहीं से भी मलबा और भी थोड़ा घिसक सकता है और लोगों को इंजरीज हो सकती है और लोगों को चोट आ सकती है।
0: बताया जा रहा है कि इमारत के बेसमेंट में काम चल रहा था, लेकिन अभी सही तौर पर ये नहीं मालूम चल सका कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। अनमोल बाली, अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
2: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता हादसे वाली जगह पर पहुंचे और उन्होंने भरोसा दिलाया कि इमारत के मालिक समेत जो भी जिम्मेदार होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा।
3: हमारी टीमें जो है वो पूरी तरीके से काम कर रही है, नीचे ऑक्सीजन भी डाली गई है, कैमरा भी
4: काम कर रहे हैं ना।
3: बच्चों की जान है और कोई भी कल्प्रिट छोड़ा नहीं जाएगा, खास करके ये जिसका मकान है, जो यहाँ पे बिल्डिंग छोड़ के भाग गया, जो कि अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा था, बेसमेंट में खुदाई कर रहा था, और जिसकी वजह से जो पिलर है वो डिसमेंटल हुआ और बिल्डिंग पूरी गिर गई, तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, और जिसके कारण से ये हादसा हुआ है सबको सजा भुगतनी
2: पड़ेगी। जिन लोगों ने इमारत को ढहते हुए देखा वो खौफ ज्यादा है। अब उन लोगों की जुबानी आप सुनिए कि हादसा कैसे हुआ।
5: हॉस्टल डेज नाम की बिल्डिंग है, इसके साथ एक और बिल्डिंग पीजी गिरी है। हॉस्टल डेज तो है वो बॉयज पीजी है प्रॉपर, 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी ये, एंड इसके साथ बगल वाली बिल्डिंग भी गिरी है, एंड जो ये येलो वाली बिल्डिंग है ये दोनों हिल रही थी जब वो गिरी है। तो इन दोनों में भी पीजीज ही है और इनके एंट्रेंस एक उधर से, एक पीछे की साइड से, दो साइड से एंट्रेंस है, और मलबे के चक्कर में इनका एंट्रेंस भी जहाँ तक है ब्लॉक हो चुका है। और 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी, जितने बच्चे रूम में थे वो तो सारे दब गए हैं, और जो बाहर थे बच्चे उनका पता नहीं है, और जितना भी रजिस्टर में एंट्रीज होंगे उसके हिसाब से पता चलेगा आप कितने बच्चे दबे हैं इसमें।
6: कम से कम 40 बच्चों के हताहत होने की खबर है, और ये सत्यनिकेतन में आप जो भी बिल्डिंगें देख रहे हैं सब बिल्डिंगें जर्जर, इनकी कोई ये कभी भी गिर सकती है, इसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार इन बिल्डिंगों की स्थिति देखकर इन्हें सील करे, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, सरकार को बच्चों से शिक्षा से कोई मतलब नहीं है।
7: There will be 20-25 such buildings जो आज गिरे, एक महीने बाद गिरे, एक साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी। विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई ही आधा दिल्ली करता है यहाँ पे, तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन।
8: 1:45 पे दिल्ली पुलिस को फोन किया था, दिल्ली पुलिस

0: हम लोग सभी बच्चों का, उनको खाना खराब दिया जाता है और उनकी मजबूरी है पीजीस की।
1: आधे बच्चे गंदे खाने से मर जाते हैं, जो बच रहे हैं वो बिल्डिंग गिरने से मर रहे हैं।
2: 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं जब हमारे सामने बिल्डिंग गिरी थी, तो काफी नीचे मतलब लेबर भी काम कर रही थी, इसमें 7 से 8 लेबर थी जो काम करे जा रही थी। अब उनका भी नहीं पता कि वो निकल पाए थे या नहीं निकल पाए थे, मगर मुझे इतना पता कि बहुत बच्चे हैं इसके नीचे, कम से कम 8-10 भी हो सकते, 15 भी हो सकते, 30 भी हो सकते, मगर बाकी जितने भी यहाँ के मोहल्ले क्षेत्र के हैं सबने अपने हाथों से मलबा हटा के 4 लोगों को निकाल लिया गया है।
3: हम दुकान के अंदर बैठे थे, हम एकदम आवाज आई जैसे भूकंप टाइप होता है 1:30 बजे, हम अंदर इतनी नहीं आई, जो बाहर बच्चे खड़े थे उनके पास आवाज आई, हम फटाफट भाग के आए। यहाँ पे बहुत ज्यादा धुआं वगैरह था, सारी बिल्डिंग गिरी हुई थी, और अभी इन्होंने यहाँ से मजदूर वगैरह निकाले हैं, उनकी डेड बॉडी मिली और 4 बच्चे निकाले हैं जिनकी सांसें चल रही थी, वो अभी उनको एम्बुलेंस ले गई है, बट वो मतलब अधमरे की हालत में थे।
4: सत्य निकेतन हादसे में 11 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है, जिनमें से 3 की मौत हो गई है और 5 मंजिला जब इमारत गिरी तो आसपास के लोगों को लगा मानो भूकंप आ गया हो।

0: दिल्ली में कितनी इमारतें इस तरह हादसे के इंतजार में हैं? आखिर कितने बेकसूर छात्रों की जिंदगी ज्यादा किराए के लालच में इस तरह दांव पर लगाई जाती रहेंगी? दिल्ली में लगातार हो रहे इन हादसों की जिम्मेदारी कब और कैसे तय होगी? दिल्ली का सत्य निकेतन इलाका, जहां 5 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया, पहली नजर में ये आपको हादसा लग सकता है, लेकिन ये हादसा नहीं बल्कि लालच और लापरवाही के कॉकटेल का नतीजा है। क्योंकि जब 40 साल पुरानी इमारत को 3 की जगह 5 मंजिल तक अवैध बना दिया जाए, 40 साल पुरानी इमारत की जांच करने वाला कोई न हो, बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भरा होने के बावजूद काम किया जा रहा, जबकि हादसे के वक्त छात्र कमरों में मौजूद थे, तो अब आप ही बताइए, क्या इसे हादसा कहना ठीक होगा?
1: यहाँ पर लिमिट ही खाली 2 या 3 फ्लोर्स के, बट इन लोगों ने 5 फ्लोर्स बनवा रखे थे। इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, नीचे बेसमेंट में काम चल रहा था, उसकी वजह से बिल्डिंग गिरी है। मैं उस टाइम पे अपना खाना ही खा रहा था, एकदम से सोफा हिलने लगा, प्रॉपर फील हुआ कि अर्थक्वेक आया, पर बाहर आके देखा तो धुआं वो हो रखा था, फिर पता लगा कि बिल्डिंग गिरी है।
2: लेवर लगी हुई थी सर, नीचे बेसमेंट में काम कर रहे थे सुबह।
3: अच्छा,
2: जब मैं मार्केट में आया तो मैंने देखा तो लेवर काम कर रही थी, प्लस यहाँ पर 2 कारपेंटर काम कर रहे थे।
3: अच्छा,
2: जब मैं मार्केट से होकर फिर मैं सीधा घर चला गया था। अच्छा। उसके बाद पता लगा तो ये बिल्डिंग गिरी है सर।
0: इस हादसे ने देश की राजधानी को एक बार फिर हिला दिया है। लोग डरे हुए हैं, क्योंकि वो जिन इमारतों में रह रहे हैं उनका भी ऐसा ही अंजाम हो सकता है, जैसा दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में दोपहर करीब 1:30 बजे इस इमारत के साथ हुआ।
4: बिल्डिंग की क्या हालत थी? बेसमेंट में कोई काम चल रहा?
5: बेसमेंट में काम चल रहा था, 2 दिन से पानी भरा हुआ था, और इसका क्या था कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, और आप कह सकते हो कि इलीगली है, क्योंकि यहाँ पे अलाउड है कि आप 3 मंजिल से लेके 4 मंजिल तक कर सकते हो, मगर यहाँ ये बिल्डिंग थी 5वीं मंजिल तक।
4: अच्छा।
5: और मैक्सिमम स्टूडेंट थे, पीजीस थे, और एक पीजीस में 3 और 4 ही बच्चे रहते थे। संडे की वजह से स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे चाय की दुकान है, ब्रेड बटर लेने आते हैं। ये बिल्डिंग इस वजह से भी अब हम पे प्रे करते कि कोई नुकसान ना हो।
4: अभी बिल्डिंग का बेसमेंट में काम चल रहा था
5: पानी।
4: ये जो 40-50 साल, ये दिल्ली पुलिस आधिकारिक बयान दे रही है, 40-50 साल पुरानी बिल्डिंग थी, 5 मंजिला थी, बेसमेंट था उसमें, और बेसमेंट में काम चल रहा था, सीधे सीधे जो छात्र हैं जिसमें रह रहे थे उन सबकी जिंदगी दांव पर लगा दी बिल्डिंग के मालिक ने ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में।
0: इमारत ढहते ही यहाँ अफरा तफरी मच गई, धूल के गुब्बार में पूरे इलाके को घेर लिया।
6: मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लोकल्स की मदद से जो है यहाँ ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ को भी इस वक्त बुला लिया गया है, एनडीआरएफ की भी एक बटालियन जो है, एक टीम जो है वो इस वक्त यहाँ पहुंच गई है, और अभी धीरे धीरे वो यहाँ पे स्पॉट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि कितनी भारी संख्या में जो यहाँ लोकल्स हैं, वो लोकल जो है यहाँ मदद कर रहे हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं। अभी ये बड़ी मशीन, अभी जो मशीनें हैं, जो कटर्स हैं, हैवी कटर्स हैं, बोल्डर कटर्स हैं, उन्हें भी अभी लेकर के यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो इस वक्त यहाँ आई है। और ये 5 मंजिला इमारत बताई जा रही है, अगर आप तस्वीरों में थोड़ा और क्लैरिटी से देखें यहाँ पर, तो ये देखें आप, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, और ये काफी बड़े इलाके में जो है ये पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक बॉयज हॉस्टल था, और उसे बॉयज हॉस्टल में जो है

0: ये पूरा हादसा हुआ है।
1: बिल्डिंग गिरने के बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, कुछ हथौड़े से मलबा हटाने लगे।
2: मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से रेस्क्यू जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। ये एक गाड़ी है जो कि बिल्डिंग के पास खड़ी थी, जब बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो उसकी हालत देखिए कि किस तरीके से इस पूरी गाड़ी के ऊपर बिल्डिंग का जो मलबा है वो भरभरा करके गिरा। पूरी गाड़ी जो है वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। अब इसको जेसीबी की मदद से जो है वो यहाँ से हटाया जा रहा है। आप ये समझिए कि जब मैं ये समझाने की कोशिश इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि ये तस्वीरें देखने के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो मलबा, सोचिए उस बिल्डिंग के अंदर कई सारे लोग थे और उनकी हालत क्या रही होगी जब ये बिल्डिंग पूरी तरीके से कोलैप्स हुई, जब गाड़ी की हालत इस तरीके की है।
1: सत्य निकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास बसा प्रमुख छात्र इलाका है। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं। इलाके में कई छात्र आवास है।
0: जेसीबी की अगर बात करें तो यहाँ पे जेसीबी चलाना वो खतरे से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि आखिर कितने लोग फंसे हैं और कौन कौन सी जगह फंसे हैं। अगर जेसीबी से मलबा हटाने के चक्कर में कुछ और लोग जो फंसे हुए हैं, जो शायद इंजर्ड हो, बस उनकी भी जान पर बना सकती है। और इसीलिए जेसीबी का अगर हम देखें तो ज्यादा इस्तेमाल ऐसे सिचुएशंस में नहीं किया जाता। और जो प्रिसाइज हैवी टूल्स होते हैं, जैसे बड़े ड्रिलर्स होते हैं, स्टील कटिंग मशीन्स होती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये पता लग पाए कि कहां कहां लोग फंसे हैं। अभी इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे ये समझ आ गया है कि यहां पर लोग नहीं फंसे हैं, जो बिल्डिंग के बाहर की लोकेशंस हैं वहां पर अब जेसीबी की कार्रवाई जो है वो शुरू होती हुई दिख रही है। और बिल्डिंग के बाहर जहां गाड़ियों पर जो मलबा गिरा था उनसे अब मलबा हटाना शुरू किया जा रहा है, लेकिन बिल्डिंग जहां पर थी, जहां लोग फंसे हुए हैं, वहां पर अभी जेसीबी नहीं चलेगी। वहां पर अभी मेटल कटर्स चलेंगे, वहां पर अभी जीपीआर लगाया जाएगा, ये पता लगाया जाएगा कि कहां कहां लोग फंसे हैं, और उसके बाद वहां से मैन्युअली डिग करके ही लोगों को निकालना होगा या फिर हैंड यूजेबल मशीन से ही लोगों को निकालना होगा। अगर आप देखें यहां पे अभी भी प्रशासन को बहुत मुश्किलें हो रही हैं लोगों को समझाने में कि ये जगह खाली कर दे, क्योंकि ये जगह अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कहीं से भी मलबा और भी थोड़ा घिसक सकता है और लोगों को इंजरीज हो सकती है और लोगों को चोट आ सकती है।
1: इस इमारत को लेकर सवाल ये है कि क्या इस बिल्डिंग का नक्शा पास था? 5 मंजिला इमारत बनाने की अगर अनुमति नहीं थी तो इसे रोका क्यों नहीं गया? 40 साल पुरानी इमारत में छात्रों को रहते बेसमेंट में काम की इजाजत कैसे दी गई? अनमोल बाली, अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
3: ये इमारत 50 साल पुरानी बताई जा रही है और इसके बेसमेंट में काम चल रहा था। इसका मालिक आनंद बंसल, जो कि गुरुग्राम का रहने वाला, इस समय फरार है और बताया जा रहा है कि मेडिकल शॉप भी वहां पर चलती थी और इस इमारत में 10 कमरे थे।
1: दिल्ली में हादसों की वजह बनने वाली गैरकानूनी इमारत पर समय रहते लगाम क्यों नहीं लगाई जाती? आखिर हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जाता? दिल्ली के जिस सत्य निकेतन में यह हादसा हुआ वहां बड़ी संख्या में पीजी, रेंटेड रूम और हॉस्टल चलते हैं। यहां पर कितनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हादसे के बाद इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि रेस्क्यू करना मुश्किल हो गया। जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हादसे की जगह पहुंची तो उन्हें घटनास्थल का जायजा लेने के लिए दूसरी इमारत की ऊपर मंजिल का सहारा लेना पड़ा। अगर इलाके की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यहाँ छोटी छोटी गलियां हैं और घनी आबादी के बीच कई बहुमंजिला मकान मौजूद हैं। ऐसे ही एक इमारत गिरने से छात्र दब गए। मलबे में फंसे छात्र ने ये वीडियो बनाया जिसमें दबे हुए छात्र दिखाई दे रहे हैं। वहीं कई मलबे में दबे छात्रों ने फोन कर मदद मांगी। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब दिल्ली में इस तरह का हादसा हुआ हो। राजधानी दिल्ली में कई जगह ऐसे ही पीजी संचालित हो रहे हैं, कई जगह ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन नियमों की अनदेखी रहती है। दिल्ली में नियमों की अनदेखी और प्रशासन की बेरुखी की वजह से पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं। कुछ महीने पहले दिल्ली के मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग ने भयावह रूप ले लिया था और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी।
4: अगर आप नीचे बेसमेंट को, ये क्या है कि हवस है पैसे कमाने की, पीजी ही हो चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकोमोडेट करना, ज्यादा से ज्यादा भर्ती करना, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना, ये जो हवस है। राजेंद्र नगर में बेसमेंट को यूज कर रहे थे, वो हवस वो भी वही है। ये पीजी का भी मसला यही है। और अभी 3 महीने पहले अगर आपको ध्यान हो तो सैदुला जाब में 5 बच्चे इंजीनियरिंग और डॉक्टरी जो कर रहे थे वो मर गए। तो ये दरअसल क्या है कि ये एक तो ये हवस जो बन गई है कि ज्यादा से ज्यादा माल, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हो, चाहे पीजी वाले हो, चाहे जितने भी है, ये किराए पे देने के, एक एक डब्बे का कमरे का मकान बना देते हैं, किराए पे दे देते हैं।
1: बेसमेंट की वजह से छात्रों की जान जाते हुए देश ने साल 2024 में देखा, जब ओल्ड राजेंद्र नगर में राउज IAS सर्किल के बेसमेंट में पानी भरने से 3 UPSC छात्रों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया गया। जब इसी साल जून के महीने में आज तक ने वहां जाकर पड़ताल की तो हमें बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लाइब्रेरी मिली।
2: एक लंबे वक्त से ये सिलसिला चलता हुआ चला आ रहा है। आप किसी भी दिल्ली के लोगों से पूछ लीजिए, जब भी वो कोई बिल्डिंग गिराएंगे तुरंत वहां पर दिल्ली पुलिस का कर्मचारी, MCD का कर्मचारी वहां पर आ जाएगा और उसके बाद फिर सेटिंग करके जरिए, लोकल पार्षद के जरिए सेटिंग करके, आप 3 मंजिल की जहां इमारत बननी वहां 5 मंजिल बना लीजिए और उसके बाद फिर हादसा होता है तो फिर सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगते हैं। तो जरूरी है सिस्टम में बड़े स्तर पर सुधार की। ओल्ड राजेंद्र नगर का हादसा आपको याद होगा, वहां पर किस तरीके से कोचिंग में UPSC के तैयारी करने वाले छात्र मर गए, उसके बाद आज तक की टीम ने वहां खुद जाकर बाकायदा रियलिटी चेक किया, खुद मुझ पर अटैक हुआ लेकिन वहां कोई बदलाव नहीं आया।
3: दिल्ली में इमारत के ढहने की न तो ये कोई पहली घटना है न ही अंतिम। ठीक 2 महीने पहले 8 जुलाई को रोहिणी के सेक्टर 16 में भी इमारत गिरी थी, 4 मंजिला अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिरी थी, उसके बाद भी अधिकारियों ने कहा, लेकिन दिल्ली की तस्वीर नहीं बदली। एक और हादसा हो गया।
1: दिल्ली के सत्य निकेतन में हादसे के बाद राजधानी में घर बनाने के नियमों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बने हुए घर के नीचे बेसमेंट बनाया जा सकता है? क्या इसके लिए कोई कानूनी अनुमति लेनी होगी? और अगर बिना अनुमति के बेसमेंट बना दिया तो क्या कार्रवाई हो सकती है? ये किसकी जिम्मेदारी थी?
2: दिल्ली के जो मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है, तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा वक्त का हो चुका है, बड़ी बात यह है कि वो खुद भी यहाँ पर जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको संचालित होते हुए देख रही है, एक बड़ी बात है, तारीफ की बात है, लेकिन यहाँ खड़े होकर वो ये भी देखे कि आसपास कितने अवैध पीजी चल रहे हैं। मैंने कई छात्रों से कुछ देर पहले बात की है, उन पर शिकंजा कसा जाए, अधिकारियों को सख्त ऑर्डर दिया जाए कि खास तौर से जो अवैध पीजी चल रहे हैं, कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, वहां पर क्या NOC है क्या या नहीं है, किस तरह से सुरक्षा के मानकों का वहां अनदेखी की जा रही है, वो तमाम चीजें देखने की जरूरत है, वरना इस तरह के हादसों को रोका जाना काफी मुश्किल होगा। देखिए, ऑन रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस ये कह चुकी है कि 40 से 50 साल ये पुरानी इमारत थी जिसमें पीजी का काम चल रहा था।
1: दिल्ली में इस तरह के हादसे समय समय पर सामने आते रहते हैं। जब हादसा होता है तो MCD समेत संबंधित एजेंसियों पर सवाल उठता है, लेकिन मामला ठंडा पड़ते ही सब कुछ पहले की तरह होने लगता है, जबकि सिस्टम में कमियों की बात मेयर पद पर बैठे लोग भी कबूलते हैं।
5: चाहते हैं कि बच्चे उसमें बच जाएं। पहले पहले रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट है, सभी जायज हैं आपके, इस समय सभी जायज हैं, बहुत कमियां हैं सिस्टम में, बहुत कमियां मैं मानता हूं, लेकिन पहले अभी रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।
1: दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत इसलिए गिरी क्योंकि उसके बेसमेंट में काम चल रहा था। सवाल यह है कि क्या काम चलने से नींव कमजोर हुई और इमारत गिर गई?
2: यह जरूरी हो जाता है कि कम से कम जो जो जो जहां छात्र रहते हो, जो पीजी है, जो गर्ल्स हॉस्टल है, जो बॉयज हॉस्टल है, जो कोचिंग है, कम से कम वहां पर जो कंसर्न अधिकारी हैं, जो MCD के अधिकारी हैं, वो जाएं, जाकर देखें कि वहां पर छात्र किस तरह से पढ़ाई करते हैं, किस तरह से रहते हैं। वहां पर NOC नहीं है, फायर की NOC नहीं है, कई जगह पर MCD की NOC नहीं है और धड़ल्ले से अवैध तरीके से वहां पर लोग रह रहे हैं और बारिश होती है, जरा सी बारिश दिल्ली में हो जाती है तो आप सुनते होंगे कि दिल्ली में बिल्डिंग गिर गई, अगर आग लग जाती है तो उस बिल्डिंग में लोग फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं यहाँ पर।
1: दिल्ली में बेसमेंट बनाने के लिए संबंधित अथॉरिटी से संशोधित बिल्डिंग प्लान की मंजूरी की जरूरत होती है, लेकिन अगर घर पहले बना हो तो उसके नीचे बेसमेंट में काम करने की छूट तो बहुत देखरेख के बाद ही दी जाती है। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ होता नहीं दिखता।
6: पीजी का काम चलता
7: था? नहीं, ये पीजी तो बना हुआ था ऑलरेडी, पुरानी बिल्डिंग थी ये, इसमें पीजी तो था। वो पीजी वाले तो लंच करने बच्चे चले गए, संडे का दिन था ना, तो लंच करने दूसरी मैच में चले गए, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता।
8: अपना घूम के एक बार पूरे सत्या में देख लो, देयर विल बी 20-25 सच बिल्डिंग्स जो आज गिरे, एक महीने बाद गिरे, एक साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी। विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई आधा दलाली करता है यहाँ पे, तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन।
9: जितनी भी पीजीज हैं सब में सीढ़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है और बच्चों का फायदा उठाया जाता है, साउथ कैंपस के सभी बच्चों का।
1: दिल्ली में ऐसे हादसे तब तक होते रहेंगे जब तक अवैध निर्माण पर लगाम नहीं लगती। दिल्ली में 75 लाख इमारतें बताई जाती है। दुर्भाग्य ये है कि चंद इमारतें ही सभी नियमों को पूरा करे हुए बनी है। इसलिए एक्सपर्ट की मांग है कि सरकार बाकी इमारतों को लेकर अभियान चलाए, क्योंकि 40 से 50 साल पुरानी हो चुकी इमारतों की दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या है।
10: जो इस बिल्डिंग का ओनर था, क्या उसको एक दिन के लिए भी, एक मिनट के लिए भी ये सोच नहीं आई कि वहां पे लोग निवासी अभी भी हैं? एटलीस्ट बिल्डिंग को खाली किया जाता। और जो हम बात करते हैं कि जेई आके इंस्पेक्ट कर ले, हमारे जेई बाय द वे कितने एजुकेटेड है इस मामले में कि वो आके को ढंग का इंस्पेक्ट भी करते, वो तो किसी और वजह से वहां पे आते और अपनी वो वजह पूरी करके निकल जाते वहां से। तो ये सारा सिस्टमिक चेंज जो हमें चाहिए विकसित भारत बनाने के लिए, एक सिस्टमिक चेंज की जरूरत है।
3: दिल्ली में हुए हादसे के बाद राजनीतिक दलों के नेताओं ने दुख जताया है। गोवा में गृहमंत्री शाह ने अपने कार्यक्रम को रोका तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी हादसे पर दुख जताया, और विपक्ष अब सरकार पर हमलावर है।

0: ऐसा भयानक हादसा जिसने दिल्ली को दहला दिया। जैसे ही खबर आई कि सत्यनिकेतन में एक ऐसी इमारत जमींदोज हो गई है जिसमें छात्र रहा करते थे, तो पूरी दिल्ली में हड़कंप मच गया। गृह मंत्री अमित शाह गोवा में थे, वो बीजेपी के नए ऑफिस इनॉग्रेशन सेरेमनी में थे, लेकिन जैसे ही उन्हें हादसे की जानकारी हुई उन्होंने अपना कार्यक्रम रोक दिया। अमित शाह ने हादसे पर दुख जताया है।
1: एक समाचार है, एक दुखद घटना हुई है और उस दुखद घटना का समाचार सुनने के बाद हमारे देश के गृह मंत्री ने तुरंत निर्णय ले लिया कि ये कार्यक्रम यहाँ तक सीमित करके खत्म।
0: घटना बड़ी थी और तकलीफी हादसे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दुख जताया और हादसे वाली जगह पहुंची। एमसीडी के मेयर भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी हालातों का जायजा लिया है।
2: देखिए, हम तो चाहते हैं कि बच्चे उसमें बच जाएं। पहले रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट है। सभी जायजा आपके इस समय सभी जायजा बहुत कमियां हैं, सिस्टम में बहुत कमियां मैं मानता हूं, लेकिन पहले अभी रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।
0: अब इस हादसे पर विपक्ष हमलावर है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दिल्ली में सरकार की लापरवाही के कारण अब तक कई हादसे हो चुके हैं, सरकार को नींद से जागना होगा, बड़े स्तर पर एक्शन लेकर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी के भ्रष्टाचार का नतीजा है।
3: देखिए, मेरे को जो आसपास के रहने वाले लोगों ने बताया है कि पीजी के अंदर करीब 30 से 40 नौजवान बच्चे फंसे हुए हैं इस मलबे में, और आज से कुछ समय पहले की बात है जब साकेत सैजुला जाब में 4 मंजिल की इमारत गिरी तो कहा गया कि हम दिल्ली की सब बिल्डिंगों की ऑडिट कराएंगे, जो पैसा नहीं देता उसकी बिल्डिंग को सील कर देते हैं, पैसे की मांडवाली होती है, एक हफ्ते बाद बिल्डिंग को डी सील कर दिया जाता है। अभी क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। अभी रेखा गुप्ता कहेंगी हम बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं, आशीष सूद अलग कहेंगे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और क्या करेंगे बता देता हूं। एक जेई को सस्पेंड करेंगे और एक एई को सस्पेंड करेंगे और 15 दिन बाद उनको चुपचाप बहाल भी कर देंगे।
0: कांग्रेस भी सवाल पूछ रही है कि आखिर देश में छात्र सुरक्षित क्यों नहीं है।
4: जी चल रहे ये बिल्कुल कोई इनकी कोई वो, कोई किसी तरह का मापदंड नहीं है। एमसीडी क्या कर रही है, एनडीएमसी क्या कर रही है, यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, अथॉरिटीज क्या कब तक जवाब नहीं देंगी। सारी अभी भी आप चेक कर लो, ये आसपास पीजी हैं सारी, आप चेक कर लो। उस टाइम भी हमने मैं भी गया था वहां, आप लोगों के सामने हमने सबने कहा था कि इनको चेक कराओ, इनको कहीं ना कहीं इनकी कोई नॉर्म्स तो हो, स्टूडेंट कब तक बर्दाश्त करेंगे और कब तक अथॉरिटीज जवाब नहीं देंगी। ये मैं समझता हूँ कि आज हम सबके लिए बहुत ही दुख का टाइम है।
5: जब यूनिवर्सिटी में हॉस्टल ही नहीं है और इस निकेतन पे आपने रखा है तो और वो वही छत गिर जाती है तो सुरक्षित छात्र किसी तरीके से सुरक्षित नहीं है, और बड़ी दुख की बात है। तो प्रधानमंत्री जी ऐसा करिए, हमें एक दिन आप कुछ अपना वक्त दे दीजिए, हम रिपोर्ट कार्ड लिख के आपको लिखित रूप में दे देंगे।
0: सियासत अपनी जगह है, मगर ये भी सच है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री बदले, सरकार बदली, लेकिन हालात नहीं बदल पाए हैं। इसे हादसा कह देना, लेकिन ये लापरवाही सीधे सीधे मौत को आमंत्रण देने वाली जैसी है। सवाल ये है कि ऐसे हादसे कब तक होते रहेंगे। दिल्ली से अंशुल सिंह, अरविंद होजा और अनमोल बाली के साथ आज तक ब्यूरो।
6: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

5 मंजिला इमारत गिरी, 4 से ज्यादा लोगों की मौत, कई घायल, बेसमेंट में खुदाई से हादसे की आशंका। दिल्ली में बिल्डिंग गिरने के बाद राहत का काम जारी, पीएम मोदी ने जताई संवेदना, सीएम रेखा ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, बोली नहीं बचेगा कोई गुनहगार। दिल्ली के एसआरसीसी में पीएम मोदी के संबोधन को लेकर विपक्ष के सवालों पर नितिन नवीन का तंज, कहा प्रधानमंत्री ने नाराज फूफाओं को होम्योपैथी की दवा दी लेकिन इसका असर एलोपैथी वाली हाई एंटीबायोटिक जैसा हुआ। लंदन के कार्यक्रम में शामिल संघ प्रमुख मोहन भागवत, कहा सबको एक मानता है हिंदू विचार, व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन जरूरी। बिहार में उफान पर गंगा, 12 से ज्यादा जिलों में 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, पटना में रिकॉर्ड स्तर पर नदी, गंडक, कोसी और घाघरा नदी भी उफान पर। और अब बड़ी खबर आपको देते हैं, रविवार में दोपहर में दिल्ली में बड़ा हादसा हुआ, सत्य निकेतन इलाके में एक बहुमंजिला इमारत गिर गई। हादसे के बाद मौके पर राहत बचाव का काम शुरू हुआ और जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।

0: ऐसा हादसा जिसने दिल्ली को हिला के रख दिया, ऐसा हादसा जिसने लोगों के दिलों में खौफ भर दिया। देखिए, दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में दोपहर करीब 1:30 बजे एक इमारत ढह गई। इमारत ढहते ही अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें देखिए, सिर्फ धूल का गुब्बार नजर आ रहा है और साथ में नजर आ रहा है कि कैसे मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है।
1: यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लोकल्स की मदद से जो है यहाँ ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ को भी इस वक्त बुला लिया गया है। एनडीआरएफ की भी एक बटालियन जो है, एक टीम जो है, वो इस वक्त यहाँ पहुंच गई है और अभी धीरे धीरे वो यहाँ पे स्पॉट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि कितनी भारी संख्या में जो यहाँ लोकल्स हैं, वो लोकल जो है यहाँ मदद कर रहे हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं। अभी ये बड़ी अभी जो मशीनें हैं, जो कटर्स हैं, हैवी कटर्स हैं, बोल्डर कटर्स हैं, उन्हें भी अभी लेकर के यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो इस वक्त यहाँ आई है। और ये 5 मंजिला इमारत बताई जा रही है। अगर आप तस्वीरों में थोड़ा और क्लैरिटी से देखें यहाँ पर, तो ये देखें आप, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग थी और ये काफी बड़े इलाके में जो है ये पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर एक बॉयज हॉस्टल था और उसे बॉयज हॉस्टल में जो है ये पूरा हादसा हुआ है।
0: बताया जा रहा है कि इस इमारत में पीजी हॉस्टल था। सत्य निकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास बसा प्रमुख छात्र इलाका है। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं, इसी वजह से यहाँ दिन भर छात्रों की आवाजाही रहती है। हालांकि सत्य निकेतन में कुल कितने छात्र रहते हैं इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी बचाव काम चल रहा है, वो भी संभाल कर कि कहीं मलबे में दबे किसी शख्स को नुकसान न पहुंचे।
1: तो यहाँ पे जेसीबी चलाना वो खतरे से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि आखिर कितने लोग फंसे हैं और कौन कौन सी जगह फंसे हैं। अगर जेसीबी से मलबा हटाने के चक्कर में कुछ और लोग जो फंसे हुए हैं, जो शायद इंजर्ड हो, बस उनकी भी जान पर बना सकती है। और इसीलिए जेसीबी का अगर हम देखें तो ज्यादा इस्तेमाल ऐसे सिचुएशंस में नहीं किया जाता। और जो प्रिसाइज हैवी टूल्स होते हैं, जैसे बड़े ड्रिलर्स होते हैं, स्टील कटिंग मशीन्स होती हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये पता लग पाए कि कहां लोग फंसे हैं। अभी इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे ये समझ आ गया है कि यहां पर लोग नहीं फंसे हैं, जो बिल्डिंग के बाहर की लोकेशंस हैं, वहां पर अब जेसीबी की कार्रवाई जो है वो शुरू होती हुई दिख रही है। और बिल्डिंग के बाहर जहां गाड़ियों पर जो मलबा गिरा था उनसे अब मलबा हटाना शुरू किया जा रहा है। लेकिन बिल्डिंग जहां पर थी, जहां लोग फंसे हुए हैं, वहां पर अभी जेसीबी नहीं चलेगी। वहां पर अभी मेटल कटर्स चलेंगे, वहां पर अभी जीपीआर लगाया जाएगा, ये पता लगाया जाएगा कि कहां लोग फंसे हैं, और उसके बाद वहां से मैन्युअली डिग करके ही लोगों को निकालना होगा या फिर हैंड यूजेबल मशीन से ही लोगों को निकालना होगा। अगर आप देखें यहां पे अभी भी प्रशासन को बहुत मुश्किलें हो रही हैं लोगों को समझाने में कि ये जगह खाली कर दे, क्योंकि ये जगह अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कहीं से भी मलबा और भी थोड़ा घिसक सकता है और लोगों को इंजरीज हो सकती है और लोगों को चोट आ सकती है।
0: बताया जा रहा है कि इमारत के बेसमेंट में काम चल रहा था, लेकिन अभी सही तौर पर ये नहीं मालूम चल सका कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। अनमोल बाली, अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
2: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता हादसे वाली जगह पर पहुंची और उन्होंने भरोसा दिलाया कि इमारत के मालिक समेत जो भी जिम्मेदार होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा।
3: इस्तेमाल हो रहा है, हमारी टीमें जो है वो पूरी तरीके से काम कर रही है, नीचे ऑक्सीजन भी डाली गई है, कैमरा भी
4: काम कर रहे हैं ना।
3: हमारे लिए बच्चों की जान है और कोई भी कल्पित छोड़ा नहीं जाएगा, खास करके ये जिसका मकान है, जो यहाँ पे बिल्डिंग छोड़ के भाग गया, जो कि अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा था, बेसमेंट में खुदाई कर रहा था, और जिसकी वजह से जो पिलर है वो डिसमेंटल हुआ और बिल्डिंग पूरी गिर गई, तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, और जिसके कारण से ये हादसा हुआ है सबको सजा भुगतनी पड़ेगी।
2: जिन लोगों ने इमारत को ढहते हुए देखा वो खौफ ज्यादा है। अब उन लोगों की जुबानी आप सुनिए कि हादसा कैसे हुआ।
5: हॉस्टल डेज नाम की बिल्डिंग है, इसके साथ एक और बिल्डिंग पीजी गिरी है। हॉस्टल डेज तो है वो बॉयज पीजी है प्रॉपर, 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी ये, एंड इसके साथ बगल वाली बिल्डिंग भी गिरी है, एंड जो ये येलो वाली बिल्डिंग है ये दोनों हिल रही थी जब वो गिरी है। तो इन दोनों में भी पीजीज ही है और इनके एंट्रेंस एक उधर से, एक पीछे की साइड से, दो साइड से एंट्रेंस है। और मलबे के चक्कर में इनका एंट्रेंस भी जहाँ तक है ब्लॉक हो चुका है और 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी, जितने बच्चे रूम में थे वो तो सारे दब गए हैं, और जो बाहर थे बच्चे उनका पता नहीं है, और जितना भी रजिस्टर में एंट्रीज होंगे उसके हिसाब से पता चलेगा आप कितने बच्चे दबे हैं इसमें।
6: कम से कम 40 बच्चों के हताहत होने की खबर है, और ये सत्यनिकेतन में आप जो भी बिल्डिंगें देख रहे हैं सब बिल्डिंगें जर्जर, इनकी कोई ये कभी भी गिर सकती है, इसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार इन बिल्डिंगों की स्थिति देखकर इन्हें सील करे, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, सरकार को बच्चों से शिक्षा से कोई मतलब नहीं है।
7: There will be 20 to 25 such buildings, जो आज गिरे, एक महीने बाद गिरे, एक साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी। विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई ही आधा दिल्ली करता है यहाँ पे, तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन।
8: 1:45 पे दिल्ली पुलिस को फोन किया था, दिल्ली पुलिस 3:15 तक कहाँ थी, और दूसरी बात यहाँ के बिल्डिंग का ओनर कहाँ है।
9: और यहाँ पे जितनी भी पीजीज हैं सब में सीढ़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है, और बच्चों का फायदा उठाया जाता है, साउथ कैंपस के सभी बच्चों का, उनको खाना खराब दिया जाता है और उनकी मजबूरी है पीजीज की।
7: आधे बच्चे गंदे खाने से मर जाते हैं, जो बच रहे हैं वो बिल्डिंग गिरने से मर रहे हैं।
10: 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं जब हमारे सामने बिल्डिंग गिरी थी, तो काफी नीचे मतलब लेबर भी काम कर रही थी, इसमें 7 से 8 लेबर थी जो काम करे जा रही थी। अब उनका भी नहीं पता कि वो निकल पाए थे या नहीं निकल पाए थे, मगर मुझे इतना पता कि बहुत बच्चे हैं इसके नीचे, कम से कम 8-10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, मगर बाकी जितने भी यहाँ के मोहल्ले क्षेत्र के हैं सबने अपने हाथों से मलबा हटा के 4 लोगों को निकाल लिया गया है।
11: हम दुकान के अंदर बैठे थे, हम एकदम आवाज आई जैसे भूकंप टाइप होता है, 1:30 बजे हम अंदर इतनी नहीं आई, जो बाहर बच्चे खड़े थे उनके पास आवाज आई, हम फटाफट भाग के आए। यहाँ पे बहुत ज्यादा धुआं वगैरह था, सारी बिल्डिंग गिरी हुई थी, और अभी इन्होंने यहाँ से मजदूर वगैरह निकाल लिए हैं, उनकी डेड बॉडी मिली है, और 4 बच्चे निकाले हैं जिनकी सांसें चल रही थी, वो अभी उनको एम्बुलेंस ले गई है, बट वो मतलब अधमरे की हालत में थे।
2: सत्यनिकेतन हादसे में 11 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है, जिनमें से 3 की मौत हो गई है, और 5 मंजिला जब इमारत गिरी तो आसपास के लोगों को लगा मानो भूकंप आ गया हो।

0: दिल्ली में कितनी इमारतें इस तरह हादसे के इंतजार में हैं? आखिर कितने बेकसूर छात्रों की जिंदगी ज्यादा किराए के लालच में इस तरह दांव पर लगाई जाती रहेंगी? दिल्ली में लगातार हो रहे इन हादसों की जिम्मेदारी कब और कैसे तय होगी? दिल्ली का सत्य निकेतन इलाका, जहां 5 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया, पहली नजर में ये आपको हादसा लग सकता है, लेकिन ये हादसा नहीं बल्कि लालच और लापरवाही के कॉकटेल का नतीजा है। क्योंकि जब 40 साल पुरानी इमारत को 3 की जगह 5 मंजिल तक अवैध बना दिया जाए, 40 साल पुरानी इमारत की जांच करने वाला कोई न हो, बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भरा होने के बावजूद काम किया जा रहा, जबकि हादसे के वक्त छात्र कमरों में मौजूद थे, तो अब आप ही बताइए, क्या इसे हादसा कहना ठीक होगा?
1: यहाँ पर लिमिट ही खाली 2 या 3 फ्लोर्स के, बट इन लोगों ने 5 फ्लोर्स बनवा रखे थे। इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, नीचे बेसमेंट में काम चल रहा था, उसकी वजह से बिल्डिंग गिरी है। मैं उस टाइम पे अपना खाना ही खा रहा था, एकदम से सोफा हिलने लगा, प्रॉपर फील हुआ कि अर्थक्वेक आया, पर बाहर आके देखा तो धुआं वो हो रखा था, फिर पता लगा कि बिल्डिंग गिरी है।
2: लेवर लगी हुई थी सर, नीचे बेसमेंट में काम कर रहे थे सुबह।
3: अच्छा।
2: जब मैं मार्केट में आया तो मैंने देखा तो लेवर काम कर रही थी, प्लस यहाँ पर 2 कारपेंटर काम कर रहे थे।
3: अच्छा।
2: जब मैं मार्केट से होकर फिर मैं सीधा घर चला गया था। अच्छा। उसके बाद पता लगा तो ये बिल्डिंग गिर गया है सर। बात
0: इस हादसे ने देश की राजधानी को एक बार फिर हिला दिया है। लोग डरे हुए हैं क्योंकि वो जिन इमारतों में रह रहे हैं उनका भी ऐसा ही अंजाम हो सकता है, जैसा दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में दोपहर करीब 1:30 बजे इस इमारत के साथ हुआ।
4: बिल्डिंग की क्या हालत थी? बेसमेंट में कोई काम चल रहा?
5: बेसमेंट में काम चल रहा था, 2 दिन से पानी भरा हुआ था, और इसका क्या था कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, और आप कह सकते हो कि लीगली है, क्योंकि यहाँ पे अलाउड है कि आप 3 मंजिल से लेके 4 मंजिल तक कर सकते हो, मगर यहाँ ये बिल्डिंग थी 5वीं मंजिल तक।
4: अच्छा।
5: और मैक्सिमम स्टूडेंट थे, पीजी थे, और एक पीजी में 3 और 4 ही बच्चे रहते थे। संडे की वजह से स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे चाय की दुकान है, ब्रेड बटर लेने आते हैं। ये बिल्डिंग इस वजह से भी अब हम प्रे करते कि कोई नुकसान ना हो।
4: अभी बिल्डिंग का बेसमेंट में काम चल रहा था
5: पानी।
4: ये जो 40-50 साल, ये दिल्ली पुलिस आधिकारिक बयान दे रही है, 40-50 साल पुरानी बिल्डिंग थी, 5 मंजिला थी, बेसमेंट था उसमें, और बेसमेंट में काम चल रहा था, सीधे सीधे जो छात्र हैं जिसमें रह रहे थे उन सबकी जिंदगी दांव पर लगा दी बिल्डिंग के मालिक ने ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में।
0: इमारत ढहते ही यहाँ अफरा तफरी मच गई, धूल के गुब्बार में पूरे इलाके को घेर लिया।
6: मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लोकल्स की मदद से जो है यहाँ ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ को भी इस वक्त बुला लिया गया है, एनडीआरएफ की भी एक बटालियन जो है, एक टीम जो है वो इस वक्त यहाँ पहुंच गई है, और अभी धीरे धीरे वो यहाँ पे स्पॉट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि कितनी भारी संख्या में जो यहाँ लोकल्स हैं, वो लोकल जो है यहाँ मदद कर रहे हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं। अभी ये बड़ी मशीन, अभी जो मशीनें हैं, जो कटर्स हैं, हैवी कटर्स हैं, बोल्डर कटर्स हैं, उन्हें भी अभी लेकर के यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो इस वक्त यहाँ आई है। और ये 5 मंजिला इमारत बताई जा रही है, अगर आप तस्वीरों में थोड़ा और क्लैरिटी से देखें यहाँ पर, तो ये देखें आप, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, और ये काफी बड़े इलाके में जो है ये पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर एक बॉयज हॉस्टल था, और उसे बॉयज हॉस्टल में जो है ये पूरा हादसा हुआ है।
0: बिल्डिंग गिरने के बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, कुछ हथौड़े से मलबा हटाने लगे।
4: आपको दिखा दूं किस तरीके से रेस्क्यू जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। ये एक गाड़ी है जो कि बिल्डिंग के पास खड़ी थी, जब बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो उसकी हालत देखिए कि किस तरीके से इस पूरी गाड़ी के ऊपर बिल्डिंग का जो मलबा है वो भरभरा करके गिरा। पूरी गाड़ी जो है वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। अब इसको जेसीबी की मदद से जो है वो यहाँ से हटाया जा रहा है। आप ये समझिए कि जब मैं ये समझाने की कोशिश इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि ये तस्वीरें देखने के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो मलबा, सोचिए उस बिल्डिंग के अंदर कई सारे लोग थे, और उनकी हालत क्या रही होगी जब ये बिल्डिंग पूरी तरीके से कोलैप्स हुई, जब गाड़ी की हालत इस तरीके की है।
0: सत्य निकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास बसा प्रमुख छात्र इलाका है। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं। इलाके में कई छात्र आवास
6: जेसीबी की अगर बात करें तो यहाँ पे जेसीबी चलाना वो खतरे से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि आखिर कितने लोग फंसे हैं और कौन कौन सी जगह फंसे हैं। अगर जेसीबी से मलबा हटाने के चक्कर में कुछ और लोग जो फंसे हुए हैं, जो शायद इंजर्ड हो बस, उनकी भी जान पर बना सकती है। और इसीलिए जेसीबी का अगर हम देखें तो ज्यादा इस्तेमाल ऐसे सिचुएशंस में नहीं किया जाता। और जो प्रिसाइस हैवी टूल्स होते हैं, जैसे बड़े ड्रिलर्स होते हैं, स्टील कटिंग मशीन्स होती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये पता लग पाए कि कहां कहां लोग फंसे हैं। अभी इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे ये समझ आ गया है कि यहां पर लोग नहीं फंसे हैं, जो बिल्डिंग के बाहर की लोकेशंस हैं वहां पर अब जेसीबी की कार्रवाई जो है वो शुरू होती हुई दिख रही है। और बिल्डिंग के बाहर जहां गाड़ियों पर जो मलबा गिरा था उनसे अब मलबा हटाना शुरू किया जा रहा है, लेकिन बिल्डिंग जहां पर थी जहां लोग फंसे हुए हैं वहां पर अभी जेसीबी नहीं चलेगी। वहां पर अभी मेटल कटर्स चलेंगे, वहां पर अभी जीपीआर लगाया जाएगा, ये पता लगाया जाएगा कि कहां कहां लोग फंसे हैं, और उसके बाद वहां से मैन्युअली डिग करके ही लोगों को निकालना होगा या फिर हैंड यूजेबल मशीन से ही लोगों को निकालना होगा। अगर आप देखें यहां पे अभी भी प्रशासन को बहुत मुश्किलें हो रही हैं लोगों को समझाने में कि ये जगह खाली कर दे, क्योंकि ये जगह अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कहीं से भी मलबा और भी थोड़ा घिसक सकता है और लोगों को इंजरीज हो सकती है और लोगों को चोट आ सकती है।
0: इस इमारत को लेकर सवाल ये है कि क्या इस बिल्डिंग का नक्शा पास था? 5 मंजिला इमारत बनाने की अगर अनुमति नहीं थी तो इसे रोका क्यों नहीं गया? 40 साल पुरानी इमारत में छात्रों को रहते बेसमेंट में काम की इजाजत कैसे दी गई? अनमोल बाली, अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
3: यह इमारत 50 साल पुरानी बताई जा रही है और इसके बेसमेंट में काम चल रहा था। इसका मालिक आनंद बंसल, जो कि गुरुग्राम का रहने वाला है, इस समय फरार है और बताया जा रहा है कि मेडिकल शॉप भी वहां पर चलती थी और इस इमारत में 10 कमरे थे।
0: दिल्ली में हादसों की वजह बनने वाली गैर कानूनी इमारत पर समय रहते लगाम क्यों नहीं लगाई जाती? आखिर हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जाता? दिल्ली के जिस सत्य निकेतन में यह हादसा हुआ वहां बड़ी संख्या में पीजी, रेंटेड रूम और हॉस्टल चलते हैं। यहां पर कितनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हादसे के बाद इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि रेस्क्यू करना मुश्किल हो गया। जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हादसे की जगह पहुंची तो उन्हें घटनास्थल का जायजा लेने के लिए दूसरी इमारत के ऊपर मंजिल का सहारा लेना पड़ा। अगर इलाके की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यहाँ छोटी छोटी गलियां हैं और घनी आबादी के बीच कई बहुमंजिला मकान मौजूद हैं। ऐसे ही एक इमारत गिरने से छात्र दब गए। मलबे में फंसे छात्र ने ये वीडियो बनाया जिसमें दबे हुए छात्र दिखाई दे रहे हैं। वहीं कई मलबे में दबे छात्रों ने फोन कर मदद मांगी। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब दिल्ली में इस तरह का हादसा हुआ हो। राजधानी दिल्ली में कई जगह ऐसे ही पीजी संचालित हो रहे हैं। कई जगह ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन नियमों की अनदेखी रहती है। दिल्ली में नियमों की अनदेखी और प्रशासन की बेरुखी की वजह से पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं। कुछ महीने पहले दिल्ली के मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग ने भयावह रूप ले लिया था और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी।
7: अगर आप नीचे बेसमेंट को, ये क्या है कि हवस है पैसे कमाने की, पीजी ही हो चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकोमोडेट करना, ज्यादा से ज्यादा भर्ती करना, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना, ये जो हवस है। राजेंद्र नगर में बेसमेंट को यूज कर रहे थे, वो हवस वो भी वही है। ये पीजी का भी मसला यही है। और अभी 3 महीने पहले अगर आपको ध्यान हो तो सैदुला जाब में 5 बच्चे इंजीनियरिंग और डॉक्टरी जो कर रहे थे वो मर गए। तो ये दरअसल क्या है कि ये एक तो ये हवस जो बन गई है कि ज्यादा से ज्यादा माल, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हो, चाहे पीजी वाले हो, चाहे जितने भी है, ये किराए पे देने के एक एक डब्बे का कमरे का मकान बना देते हैं, किराए पे दे देते हैं।
0: बेसमेंट की वजह से छात्रों की जान जाते हुए देश ने साल 2024 में देखा, जब ओल्ड राजेंद्र नगर में राउज IAS सर्किल के बेसमेंट में पानी भरने से 3 UPSC छात्रों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया गया। जब इसी साल जून के महीने में आज तक ने वहां जाकर पड़ताल की तो हमें बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लाइब्रेरी मिली।
8: एक लंबे वक्त से ये सिलसिला चलता हुआ चला आ रहा है। आप किसी भी दिल्ली के लोगों से पूछ लीजिए, जब भी वो कोई बिल्डिंग गिराएंगे तुरंत वहां पर दिल्ली पुलिस का कर्मचारी, एमसीडी का कर्मचारी वहां पर आ जाएगा और उसके बाद फिर सेटिंग करके जरिए, लोकल पार्षद के जरिए सेटिंग करके आप 3 मंजिल की जहां इमारत बननी वहां 5 मंजिल बना लीजिए और उसके बाद फिर हादसा होता है तो फिर सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगते हैं। तो जरूरी है सिस्टम में बड़े स्तर पर सुधार की। ओल्ड राजेंद्र नगर का हादसा आपको याद होगा, वहां पर किस तरीके से कोचिंग में यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र मर गए, उसके बाद आज तक की टीम ने वहां खुद जाकर बाकायदा रियलिटी चेक किया, खुद मुझ पर अटैक हुआ लेकिन वहां कोई बदलाव नहीं आया।
3: दिल्ली में इमारत के ढहने की न तो ये कोई पहली घटना है ना ही अंतिम। ठीक 2 महीने पहले 8 जुलाई को रोहिणी के सेक्टर 16 में भी इमारत गिरी थी, 4 मंजिला अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिरी थी, उसके बाद भी अधिकारियों ने कहा लेकिन दिल्ली की तस्वीर नहीं बदली। एक और हादसा हो गया।
0: दिल्ली के सत्य निकेतन में हादसे के बाद राजधानी में घर बनाने के नियमों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बने हुए घर के नीचे बेसमेंट बनाया जा सकता है, क्या इसके लिए कोई कानूनी अनुमति लेनी होगी और अगर बिना अनुमति के बेसमेंट बना दिया तो क्या कार्रवाई हो सकती है, ये किसकी जिम्मेदारी थी।
8: कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा वक्त का हो चुका है, बड़ी बात यह है कि वो खुद भी यहाँ पर जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको संचालित होते हुए देख रही है, एक बड़ी बात है, तारीफ की बात है, लेकिन यहाँ खड़े होकर वो ये भी देखे कि आसपास कितने अवैध पीजी चल रहे हैं। मैंने कई छात्रों से कुछ देर पहले बात की है, उन पर शिकंजा कसा जाए, अधिकारियों को सख्त ऑर्डर दिया जाए कि खास तौर से जो अवैध पीजी चल रहे हैं, कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, वहां पर क्या एनओसी है क्या या नहीं है, किस तरह से सुरक्षा के मानकों का वहां अनदेखी की जा रही है, वो तमाम चीजें देखने की जरूरत है, वरना इस तरह के हादसों को रोका जाना काफी मुश्किल होगा। देखिए ऑन रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस ये कह चुकी है कि 40 से 50 साल ये पुरानी इमारत थी जिसमें पीजी का काम चल रहा था।
0: दिल्ली में इस तरह के हादसे समय समय पर सामने आते रहते हैं। जब हादसा होता है तो एमसीडी समेत संबंधित एजेंसियों पर सवाल उठता है, लेकिन मामला ठंडा पड़ते ही सब कुछ पहले की तरह होने लगता है, जबकि सिस्टम में कमियों की बात मेयर पद पर बैठे लोग भी कबूलते हैं।
9: चाहते हैं कि बच्चे उसमें बच जाएं। पहले रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट है, सभी जाए जाएं, आपके इस समय सभी जाए जाएं, बहुत कमियां हैं सिस्टम में, बहुत कमियां मैं मानता हूं, लेकिन पहले अभी रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।
0: दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत इसलिए गिरी क्योंकि उसके बेसमेंट में काम चल रहा था। सवाल यह है कि क्या काम चलने से नींव कमजोर हुई और इमारत गिर गई।
8: ये जरूरी हो जाता है कि कम से कम जो जो जो जहां छात्र रहते हो, जो पीजी है, जो गर्ल्स हॉस्टल है, जो बॉयज हॉस्टल है, जो कोचिंग है, कम से कम वहां पर जो कंसर्न अधिकारी है, जो एमसीडी के अधिकारी है, वो जाएं, जाकर देखें कि वहां पर छात्र किस तरह से पढ़ाई करते हैं, किस तरह से रहते हैं। वहां पर एनओसी नहीं है, फायर की एनओसी नहीं है, कई जगह पर एमसीडी की एनओसी नहीं है और धड़ल्ले से अवैध तरीके से वहां पर लोग रह रहे हैं और बारिश होती है, जरा सी बारिश दिल्ली में हो जाती है तो आप सुनते होंगे कि दिल्ली में बिल्डिंग गिर गई, अगर आग लग जाती है तो उस बिल्डिंग में लोग फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। यहां पर
0: दिल्ली में बेसमेंट बनाने के लिए संबंधित अथॉरिटी से संशोधित बिल्डिंग प्लान की मंजूरी की जरूरत होती है, लेकिन अगर घर पहले बना हो तो उसके नीचे बेसमेंट में काम करने की छूट तो बहुत देखरेख के बाद ही दी जाती है, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ होता नहीं दिखता।
10: पीजी का काम चलता था, नहीं ये पीजी तो बना हुआ था ऑलरेडी, पुरानी बिल्डिंग थी ये, इसमें पीजी तो था, वो पीजी वाले तो लंच करने बच्चे चले गए, संडे का दिन था ना, तो लंच करने दूसरी मैच में चले गए, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता।
11: अपना घूम के एक बार पूरे सत्या में देख लो, देयर विल बी 20-25 सच बिल्डिंग्स जो आज गिरे, 1 महीने बाद गिरे, 1 साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी। विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई आधा दलाली करता है यहाँ पे, तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन।
12: जितनी भी पीजीज हैं सब में सीढ़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है और बच्चों का फायदा उठाया जाता है, साउथ कैंपस के सभी बच्चों का।
0: दिल्ली में ऐसे हादसे तब तक होते रहेंगे जब तक अवैध निर्माण पर लगाम नहीं लगती। दिल्ली में 75 लाख इमारतें बताई जाती हैं। दुर्भाग्य ये है कि चंद इमारतें ही सभी नियमों को पूरा करे हुए बनी है। इसलिए एक्सपर्ट की मांग है कि सरकार बाकी इमारतों को लेकर अभियान चलाए, क्योंकि 40 से 50 साल पुरानी हो चुकी इमारतों की दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या है।
13: जो इस बिल्डिंग का ओनर था, क्या उसको एक दिन के लिए भी, एक मिनट के लिए भी ये सोच नहीं आई कि वहां पे लोग निवासी अभी भी हैं? एटलीस्ट बिल्डिंग को खाली किया जाता। और जो हम बात करते हैं कि जेई आके इंस्पेक्ट कर ले, हमारे जेई बाय द वे कितने एजुकेटेड है इस मामले में कि वो आके को ढंग का इंस्पेक्ट भी करते, वो तो किसी और वजह से वहां पे आते और अपनी वो वजह पूरी करके निकल जाते वहां से। तो ये सारा सिस्टमिक चेंज जो हमें चाहिए विकसित भारत बनाने के लिए, एक सिस्टमिक चेंज की जरूरत है।
3: दिल्ली में हुए हादसे के बाद राजनीतिक दलों के नेताओं ने दुख जताया है। गोवा में गृहमंत्री शाह ने अपने कार्यक्रम को रोका तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी हादसे पर दुख जताया और विपक्ष अब सरकार पर हमलावर है।

0: ऐसा भयानक हादसा जिसने दिल्ली को दहला दिया। जैसे ही खबर आई कि सत्यनिकेतन में एक ऐसी इमारत जमींदोज हो गई है जिसमें छात्र रहा करते थे, तो पूरी दिल्ली में हड़कंप मच गया। गृह मंत्री अमित शाह गोवा में थे, वो बीजेपी के नए ऑफिस इनॉग्रेशन सेरेमनी में थे, लेकिन जैसे ही उन्हें हादसे की जानकारी हुई उन्होंने अपना कार्यक्रम रोक दिया। अमित शाह ने हादसे पर दुख जताया है।
1: एक समाचार है, एक दुखद घटना हुई है और उस दुखद घटना का समाचार सुनने के बाद हमारे देश के गृह मंत्री ने तुरंत निर्णय ले लिया कि ये कार्यक्रम यहाँ तक सीमित करके खत्म।
0: घटना बड़ी थी और तकलीफी हादसे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दुख जताया और हादसे वाली जगह पहुंची। एमसीडी के मेयर भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी हालातों का जायजा लिया है।
2: देखिए, हम तो चाहते हैं कि बच्चे उसमें बच जाएं। पहले रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट है। सभी जायजा आपके इस समय सभी जायजा बहुत कमियां हैं, सिस्टम में बहुत कमी है, मैं मानता हूँ, लेकिन पहले अभी रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ।
0: अब इस हादसे पर विपक्ष हमलावर है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दिल्ली में सरकार की लापरवाही के कारण अब तक कई हादसे हो चुके हैं, सरकार को नींद से जागना होगा, बड़े स्तर पर एक्शन लेकर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी के भ्रष्टाचार का नतीजा है।
3: देखिए, मेरे को जो आसपास के रहने वाले लोगों ने बताया है कि पीजी के अंदर करीब 30 से 40 नौजवान बच्चे फंसे हुए हैं इस मलबे में, और आज से कुछ समय पहले की बात है जब साकेत सैजुला जाब में 4 मंजिल की इमारत गिरी तो कहा गया कि हम दिल्ली की सब बिल्डिंगों की ऑडिट कराएंगे, जो पैसा नहीं देता उसकी बिल्डिंग को सील कर देते हैं, पैसे की मांडवाली होती है, एक हफ्ते बाद बिल्डिंग को डीसील कर दिया जाता है। अभी क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। अभी रेखा गुप्ता कहेंगी हम बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं, आशीष सूद अलग कहेंगे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और क्या करेंगे बता देता हूं। एक जेई को सस्पेंड करेंगे और एक एई को सस्पेंड करेंगे और 15 दिन बाद उनको चुपचाप बहाल भी कर देंगे।
0: कांग्रेस भी सवाल पूछ रही है कि आखिर देश में छात्र सुरक्षित क्यों नहीं है।
4: जी चल रहे, ये बिल्कुल कोई इनकी कोई किसी तरह का मापदंड नहीं है। एमसीडी क्या कर रही है, एनडीएमसी क्या कर रही है, यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, अथॉरिटीज क्या कब तक जवाब नहीं देंगी। सारी अभी भी आप चेक कर लो, ये आसपास पीजी हैं सारी, आप चेक कर लो। उस टाइम भी हमने मैं भी गया था वहाँ आप लोगों के सामने, हमने सबने कहा था कि इनको चेक कराओ, इनको कहीं ना कहीं इनकी कोई नॉर्म्स तो हो, स्टूडेंट कब तक बर्दाश्त करेंगे और कब तक अथॉरिटीज जवाब नहीं देंगी। ये मैं समझता हूँ कि आज हम सबके लिए बहुत ही दुख का टाइम है।
5: जब यूनिवर्सिटी में हॉस्टल ही नहीं है और इस निकेतन पे आपने रखा है तो और वो वही छत गिर जाती है तो सुरक्षित छात्र किसी तरीके से सुरक्षित नहीं है, और बड़ी दुख की बात है। तो प्रधानमंत्री जी ऐसा करिए, हमें एक दिन आप कुछ अपना वक्त दे दीजिए, हम रिपोर्ट कार्ड लिख के आपको लिखित रूप में दे देंगे।
0: सियासत अपनी जगह है, मगर ये भी सच है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री बदले, सरकार बदली, लेकिन हालात नहीं बदल पाए हैं। इसे हादसा कह देना, लेकिन ये लापरवाही सीधे सीधे मौत को आमंत्रण देने वाली जैसी है। सवाल ये है कि ऐसे हादसे कब तक होते रहेंगे। दिल्ली से अंशुल सिंह, अरविंद होजा और अनमोल बाली के साथ आज तक ब्यूरो।
6: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

इलाके में 5 मंजिला इमारत गिरी, 4 से ज्यादा लोगों की मौत, कई घायल, बेसमेंट में खुदाई से हादसे की आशंका। दिल्ली में बिल्डिंग गिरने के बाद राहत का काम जारी, पीएम मोदी ने जताई संवेदना, सीएम रेखा ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, बोली नहीं बचेगा कोई गुनहगार। दिल्ली के एसआरसीसी में पीएम मोदी के संबोधन को लेकर विपक्ष के सवालों पर नितिन नवीन का तंज कहा, प्रधानमंत्री ने नाराज फूफाओं को होम्योपैथी की दवा दी लेकिन इसका असर एलोपैथी वाली हाई एंटीबायोटिक जैसा हुआ। लंदन के कार्यक्रम में शामिल संघ प्रमुख मोहन भागवत कहा, सबको एक मानता है हिंदू विचार, व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन जरूरी। बिहार में उफान पर गंगा, 12 से ज्यादा जिलों में 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, पटना में रिकॉर्ड स्तर पर नदी, गंडक, कोसी और घाघरा नदी भी उफान पर। और अब बड़ी खबर आपको देते हैं, रविवार में दोपहर में दिल्ली में बड़ा हादसा हुआ, सत्यनिकेतन इलाके में एक बहुमंजिला इमारत गिर गई। हादसे के बाद मौके पर राहत बचाव का काम शुरू हुआ और जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।

0: ऐसा हादसा जिसने दिल्ली को हिला के रख दिया, ऐसा हादसा जिसने लोगों के दिलों में खौफ भर दिया। देखिए, दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में दोपहर करीब 1:30 बजे एक इमारत ढह गई। इमारत ढहते ही अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें देखिए, सिर्फ धूल का गुब्बार नजर आ रहा है और साथ में नजर आ रहा है कि कैसे मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है।
1: यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लोकल्स की मदद से जो है यहाँ ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ को भी इस वक्त बुला लिया गया है। एनडीआरएफ की भी एक बटालियन जो है, एक टीम जो है, वो इस वक्त यहाँ पहुंच गई है और अभी धीरे धीरे वो यहाँ पे स्पॉट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि कितनी भारी संख्या में जो यहाँ लोकल्स हैं, वो लोकल जो है यहाँ मदद कर रहे हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं। अभी ये बड़ी मशीन, अभी जो मशीनें हैं, जो कटर्स हैं, हैवी कटर्स हैं, बोल्डर कटर्स हैं, उन्हें भी अभी लेकर के यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो इस वक्त यहाँ आई है। और ये 5 मंजिला इमारत बताई जा रही है। अगर आप तस्वीरों में थोड़ा और क्लैरिटी से देखें यहाँ पर, तो ये देखें आप, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग थी और ये काफी बड़े इलाके में जो है ये पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर एक बॉयज हॉस्टल था और उसे बॉयज हॉस्टल में जो है ये पूरा हादसा हुआ है।
0: बताया जा रहा है कि इस इमारत में पीजी हॉस्टल था। सत्य निकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास बसा प्रमुख छात्र इलाका है। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं, इसी वजह से यहाँ दिन भर छात्रों की आवाजाही रहती है। हालांकि सत्य निकेतन में कुल कितने छात्र रहते हैं इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी बचाव काम चल रहा है, वो भी संभाल कर कि कहीं मलबे में दबे किसी शख्स को नुकसान न पहुंचे।
1: तो यहाँ पे जेसीबी चलाना वो खतरे से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि आखिर कितने लोग फंसे हैं और कौन कौन सी जगह फंसे हैं। अगर जेसीबी से मलबा हटाने के चक्कर में कुछ और लोग जो फंसे हुए हैं, जो शायद इंजर्ड हो, बस उनकी भी जान पर बना सकती है। और इसीलिए जेसीबी का अगर हम देखें तो ज्यादा इस्तेमाल ऐसे सिचुएशंस में नहीं किया जाता। और जो प्रिसाइज हैवी टूल्स होते हैं, जैसे बड़े ड्रिलर्स होते हैं, स्टील कटिंग मशीन्स होती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये पता लग पाए कि कहां कहां लोग फंसे हैं। अभी इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे ये समझ आ गया है कि यहां पर लोग नहीं फंसे हैं, जो बिल्डिंग के बाहर की लोकेशंस हैं, वहां पर अब जेसीबी की कार्रवाई जो है वो शुरू होती हुई दिख रही है। और बिल्डिंग के बाहर जहां गाड़ियों पर जो मलबा गिरा था उनसे अब मलबा हटाना शुरू किया जा रहा है। लेकिन बिल्डिंग जहां पर थी, जहां लोग फंसे हुए हैं, वहां पर अभी जेसीबी नहीं चलेगी। वहां पर अभी मेटल कटर्स चलेंगे, वहां पर अभी जीपीआर लगाया जाएगा, ये पता लगाया जाएगा कि कहां कहां लोग फंसे हैं, और उसके बाद वहां से मैन्युअली डिग करके ही लोगों को निकालना होगा या फिर हैंड यूजेबल मशीन से ही लोगों को निकालना होगा। अगर आप देखें यहां पे अभी भी प्रशासन को बहुत मुश्किलें हो रही हैं लोगों को समझाने में कि ये जगह खाली कर दे, क्योंकि ये जगह अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कहीं से भी मलबा और भी थोड़ा घिसक सकता है और लोगों को इंजरीज हो सकती है और लोगों को चोट आ सकती है।
0: बताया जा रहा है कि इमारत के बेसमेंट में काम चल रहा था, लेकिन अभी सही तौर पर ये नहीं मालूम चल सका कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। अनमोल बाली, अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
2: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता हादसे वाली जगह पर पहुंचे और उन्होंने भरोसा दिलाया कि इमारत के मालिक समेत जो भी जिम्मेदार होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा।
3: उम्मीद है कि शायद और बच्चे भी अंदर हों, सभी तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है, हमारी टीमें जो है वो पूरी तरीके से काम कर रही है, नीचे ऑक्सीजन भी डाली गई है, कैमरा भी
4: काम कर रहे हैं ना।
3: बच्चों की जान है और कोई भी कल्पित छोड़ा नहीं जाएगा, खास करके ये जिसका मकान है, जो यहाँ पे बिल्डिंग छोड़ के भाग गया, जो कि अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा था, बेसमेंट में खुदाई कर रहा था, और जिसकी वजह से जो पिलर है वो डिसमेंटल हुआ और बिल्डिंग पूरी गिर गई, तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, और जिसके कारण से ये हादसा हुआ है सबको सजा भुगतनी
2: पड़ेगी। जिन लोगों ने इमारत को ढहते हुए देखा वो खौफ ज्यादा है। अब उन लोगों की जुबानी आप सुनिए कि हादसा कैसे हुआ।
5: हॉस्टल डेज नाम की बिल्डिंग है, इसके साथ एक और बिल्डिंग पीजी गिरी है। हॉस्टल डेज तो है, वो बॉयज पीजी है प्रॉपर, 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी ये, एंड इसके साथ बगल वाली बिल्डिंग भी गिरी है, एंड जो ये येलो वाली बिल्डिंग है ये दोनों हिल रही थी जब वो गिरी है। तो इन दोनों में भी पीजीज ही है और इनके एंट्रेंस एक उधर से एक पीछे की साइड से, दो साइड से एंट्रेंस है, और मलबे के चक्कर में इनका एंट्रेंस भी जहाँ तक है ब्लॉक हो चुका है। और 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी, जितने बच्चे रूम में थे वो तो सारे दब गए हैं, और जो बाहर थे बच्चे उनका पता नहीं है, और जितना भी रजिस्टर में एंट्रीज होंगे उसके हिसाब से ही पता चलेगा अब कितने बच्चे दबे हैं इसमें।
6: कम से कम 40 बच्चों के हताहत होने की खबर है, और ये सत्य निकेतन में आप जो भी बिल्डिंगें देख रहे हैं सब बिल्डिंगें जर्जर, इनकी कोई ये कभी भी गिर सकती है, इसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार इन बिल्डिंगों की स्थिति देखकर इन्हें सील करे, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, सरकार को बच्चों से शिक्षा से कोई मतलब नहीं है।
7: There will be 20-25 such buildings जो आज गिरे, एक महीने बाद गिरे, एक साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी। विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई आधा दिल्ली करता है यहाँ पे, तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन।
8: दिल्ली पुलिस पे है, 1:45 पे दिल्ली पुलिस को फोन किया था, दिल्ली पुलिस 3:15 तक कहाँ थी, और दूसरी बात यहाँ के बिल्डिंग का ओनर कहाँ है।
9: और यहाँ पे जितनी भी पीजीज हैं सब में सीढ़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है, और बच्चों का फायदा उठाया जाता है, साउथ कैंपस के सभी बच्चों का, उनको खाना खराब दिया जाता है और उनकी मजबूरी है पीजीज की।
7: आधे बच्चे गंदे खाने से मर जाते हैं, जो बच रहे हैं वो बिल्डिंग गिरने से मर रहे हैं।
10: 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं जब हमारे सामने बिल्डिंग गिरी थी, तो काफी नीचे मतलब लेबर भी काम कर रही थी, इसमें 7 से 8 लेबर थी जो काम करे जा रही थी। अब उनका भी नहीं पता कि वो निकल पाए थे या नहीं निकल पाए थे, मगर मुझे इतना पता कि बहुत बच्चे हैं इसके नीचे, कम से कम 8-10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, मगर बाकी जितने भी यहाँ के मोहल्ले क्षेत्र के हैं सबने अपने हाथों से मलबा हटा के 4 लोगों को निकाल लिया गया है।
11: हम दुकान के अंदर बैठे थे, हम एकदम आवाज आई जैसे भूकंप टाइप होता है, 1:30 बजे, हम अंदर इतनी नहीं आई, जो बाहर बच्चे खड़े थे उनके पास आवाज आई, हम फटाफट भाग के आए। यहाँ पे बहुत ज्यादा धुआं वगैरह था, सारी बिल्डिंग गिरी हुई थी, और अभी इन्होंने यहाँ से मजदूर वगैरह निकाले हैं, उनकी डेड बॉडी मिली, और 4 बच्चे निकाले हैं जिनकी सांसें चल रही थी, वो अभी उनको एम्बुलेंस ले गई है, बट वो मतलब अधमरे की हालत में थे।

0: दिल्ली में कितनी इमारतें इस तरह हादसे के इंतजार में हैं? आखिर कितने बेकसूर छात्रों की जिंदगी ज्यादा किराए के लालच में इस तरह दांव पर लगाई जाती रहेंगी? दिल्ली में लगातार हो रहे इन हादसों की जिम्मेदारी कब और कैसे तय होगी? दिल्ली का सत्य निकेतन इलाका, जहां 5 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया, पहली नजर में ये आपको हादसा लग सकता है, लेकिन ये हादसा नहीं बल्कि लालच और लापरवाही के कॉकटेल का नतीजा है। क्योंकि जब 40 साल पुरानी इमारत को 3 की जगह 5 मंजिल तक अवैध बना दिया जाए, 40 साल पुरानी इमारत की जांच करने वाला कोई न हो, बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भरा होने के बावजूद काम किया जा रहा, जबकि हादसे के वक्त छात्र कमरों में मौजूद थे, तो अब आप ही बताइए क्या इसे हादसा कहना ठीक होगा?
1: यहाँ पर लिमिट ही खाली 2 या 3 फ्लोर्स के, बट इन लोगों ने 5 फ्लोर्स बनवा रखे थे। इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, नीचे बेसमेंट में काम चल रहा था, उसकी वजह से बिल्डिंग गिरी है। मैं उस टाइम पे अपना खाना ही खा रहा था, एकदम से सोफा हिलने लगा, प्रॉपर फील हुआ कि अर्थक्वेक आया, पर बाहर आके देखा तो धुआं वो हो रखा, तो फिर पता लगा कि बिल्डिंग गिरी है।
2: लेवर लगी हुई थी सर, नीचे बेसमेंट में काम कर रहे थे सुबह।
3: अच्छा,
2: जब मैं मार्केट में आया तो मैंने देखा तो लेवर काम कर रही थी, प्लस यहाँ पर 2 कारपेंटर काम कर रहे थे।
3: अच्छा,
2: जब मैं मार्केट से होकर फिर मैं सीधा घर चला गया था। अच्छा। उसके बाद पता लगा तो ये बिल्डिंग गिरी है सर।
0: इस हादसे ने देश की राजधानी को एक बार फिर हिला दिया है। लोग डरे हुए हैं क्योंकि वो जिन इमारतों में रह रहे हैं उनका भी ऐसा ही अंजाम हो सकता है, जैसा दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में दोपहर करीब 1:30 बजे इस इमारत के साथ हुआ।
4: बिल्डिंग की क्या हालत थी? बेसमेंट में कोई काम चल रहा?
5: बेसमेंट में काम चल रहा था, 2 दिन से पानी भरा हुआ था, और इसका क्या था कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, और आप कह सकते हो कि इलीगली है, क्योंकि यहाँ पे अलाउड है कि आप 3 मंजिल से लेके 4 मंजिल तक कर सकते हो, मगर यहाँ ये बिल्डिंग थी 5वीं मंजिल तक।
4: अच्छा।
5: और मैक्सिमम स्टूडेंट थे, पीजीस थे, और एक पीजीस में 3 और 4 ही बच्चे रहते थे। संडे की वजह से स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे क्या करते, नीचे चाय की दुकान है, ब्रेड बटर लेने आते हैं। ये बिल्डिंग इस वजह से भी अब हम पे प्रे करते कि कोई नुकसान ना हो।
4: अभी बिल्डिंग का बेसमेंट में काम चल रहा था
5: पानी।
4: ये जो 40-50 साल, ये दिल्ली पुलिस आधिकारिक बयान दे रही है, 40-50 साल पुरानी बिल्डिंग थी, 5 मंजिला थी, बेसमेंट था उसमें, और बेसमेंट में काम चल रहा था, सीधे सीधे जो छात्र हैं जिसमें रह रहे थे उन सबकी जिंदगी दांव पर लगा दी बिल्डिंग के मालिक ने ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में।
0: इमारत ढहते ही यहाँ अफरा तफरी मच गई, धूल के गुब्बार में पूरे इलाके को घेर लिया।
6: मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लोकल्स की मदद से जो है यहाँ ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ को भी इस वक्त बुला लिया गया है, एनडीआरएफ की भी एक बटालियन जो है, एक टीम जो है वो इस वक्त यहाँ पहुंच गई है, और अभी धीरे धीरे वो यहाँ पे स्पॉट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि कितनी भारी संख्या में जो यहाँ लोकल्स हैं, वो लोकल जो है यहाँ मदद कर रहे हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं। अभी ये बड़ी अभी जो मशीनें हैं, जो कटर्स हैं, हैवी कटर्स हैं, बोल्डर कटर्स हैं, उन्हें भी अभी लेकर के यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो इस वक्त यहाँ आई है। और ये 5 मंजिला इमारत बताई जा रही है, अगर आप तस्वीरों में थोड़ा और क्लैरिटी से देखें यहाँ पर, तो ये देखें आप, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, और ये काफी बड़े इलाके में जो है ये पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक बॉयज हॉस्टल था, और उसे बॉयज हॉस्टल में जो है ये पूरा हादसा हुआ है।
0: बिल्डिंग गिरने के बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, कुछ हथौड़े से मलबा हटाने लगे।
4: मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से रेस्क्यू जो है वो यहां पे किया जा रहा है। ये एक गाड़ी है जो कि बिल्डिंग के पास खड़ी थी, जब बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो उसकी हालत देखिए कि किस तरीके से इस पूरी गाड़ी के ऊपर बिल्डिंग का जो मलबा है वो भरभरा करके गिरा, पूरी गाड़ी जो है वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। अब इसको जेसीबी की मदद से जो है वो यहाँ से हटाया जा रहा है। आप ये समझिए कि जब मैं ये समझाने की कोशिश इसलिए भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये तस्वीरें देखने के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो मलबा, सोचिए उस बिल्डिंग के अंदर कई सारे लोग थे, और उनकी हालत क्या रही होगी जब ये बिल्डिंग पूरी तरीके से कोलैप्स हुई, जब गाड़ी की हालत इस तरीके की है।
0: सत्य निकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास बसा प्रमुख छात्र इलाका है। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं। इलाके में कई छात्र आवास

0: जेसीबी की अगर बात करें तो यहाँ पे जेसीबी चलाना वो खतरे से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि आखिर कितने लोग फंसे हैं और कौन कौन सी जगह फंसे हैं। अगर जेसीबी से मलबा हटाने के चक्कर में कुछ और लोग जो फंसे हुए हैं, जो शायद इंजर्ड हो, बस उनकी भी जान पर बना सकती है। और इसीलिए जेसीबी का अगर हम देखें तो ज्यादा इस्तेमाल ऐसे सिचुएशंस में नहीं किया जाता। और जो प्रिसाइज हैवी टूल्स होते हैं, जैसे बड़े ड्रिलर्स होते हैं, स्टील कटिंग मशीन्स होती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये पता लग पाए कि कहां कहां लोग फंसे हैं। अभी इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे ये समझ आ गया है कि यहां पर लोग नहीं फंसे हैं, जो बिल्डिंग के बाहर की लोकेशंस हैं वहां पर अब जेसीबी की कार्रवाई जो है वो शुरू होती हुई दिख रही है। और बिल्डिंग के बाहर जहां गाड़ियों पर जो मलबा गिरा था उनसे अब मलबा हटाना शुरू किया जा रहा है, लेकिन बिल्डिंग जहां पर थी, जहां लोग फंसे हुए हैं, वहां पर अभी जेसीबी नहीं चलेगी। वहां पर अभी मेटल कटर्स चलेंगे, वहां पर अभी जीपीआर लगाया जाएगा, ये पता लगाया जाएगा कि कहां कहां लोग फंसे हैं, और उसके बाद वहां से मैन्युअली डिग करके ही लोगों को निकालना होगा या फिर हैंड यूजेबल मशीन से ही लोगों को निकालना होगा। अगर आप देखें यहां पे अभी भी प्रशासन को बहुत मुश्किलें हो रही हैं लोगों को समझाने में कि ये जगह खाली कर दे, क्योंकि ये जगह अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कहीं से भी मलबा और भी थोड़ा घिसक सकता है और लोगों को इंजरीज हो सकती है और लोगों को चोट आ सकती है।
1: इस इमारत को लेकर सवाल ये है कि क्या इस बिल्डिंग का नक्शा पास था? 5 मंजिला इमारत बनाने की अगर अनुमति नहीं थी तो इसे रोका क्यों नहीं गया? 40 साल पुरानी इमारत में छात्रों को रहते बेसमेंट में काम की इजाजत कैसे दी गई? अनमोल बाली अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
2: ये इमारत 50 साल पुरानी बताई जा रही है और इसके बेसमेंट में काम चल रहा था। इसका मालिक आनंद बंसल, जो कि गुरुग्राम का रहने वाला है, इस समय फरार है और बताया जा रहा है कि मेडिकल शॉप भी वहां पर चलते थे और इस इमारत में 10 कमरे थे।
1: दिल्ली में हादसों की वजह बनने वाली गैर कानूनी इमारत पर समय रहते लगाम क्यों नहीं लगाई जाती? आखिर हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जाता? दिल्ली के जिस सत्य निकेतन में यह हादसा हुआ वहां बड़ी संख्या में पीजी, रेंटेड रूम और हॉस्टल चलते हैं। यहां पर कितनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हादसे के बाद इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि रेस्क्यू करना मुश्किल हो गया। जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हादसे की जगह पहुंची तो उन्हें घटनास्थल का जायजा लेने के लिए दूसरी इमारत के ऊपर मंजिल का सहारा लेना पड़ा। अगर इलाके की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यहाँ छोटी छोटी गलियां हैं और घनी आबादी के बीच कई बहुमंजिला मकान मौजूद हैं। ऐसे ही एक इमारत गिरने से छात्र दब गए। मलबे में फंसे छात्र ने ये वीडियो बनाया जिसमें दबे हुए छात्र दिखाई दे रहे हैं। वहीं कई मलबे में दबे छात्रों ने फोन कर मदद मांगी। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब दिल्ली में इस तरह का हादसा हुआ हो। राजधानी दिल्ली में कई जगह ऐसे ही पीजी संचालित हो रहे हैं। कई जगह ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन नियमों की अनदेखी रहती है। दिल्ली में नियमों की अनदेखी और प्रशासन की बेरुखी की वजह से पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं। कुछ महीने पहले दिल्ली के मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग ने भयावह रूप ले लिया था और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी।
3: अगर आप नीचे बेसमेंट को, ये क्या है कि हवस है पैसे कमाने की, पीजी ही हो चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकोमोडेट करना, ज्यादा से ज्यादा भर्ती करना, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना, ये जो हवस है। राजेंद्र नगर में बेसमेंट को यूज कर रहे थे, वो हवस वो भी वही है। ये पीजी का भी मसला यही है। और अभी 3 महीने पहले अगर आपको ध्यान हो तो सैदुला जाब में 5 बच्चे इंजीनियरिंग और डॉक्टरी जो कर रहे थे वो मर गए। तो ये दरअसल क्या है कि ये एक तो ये हवस जो बन गई है कि ज्यादा से ज्यादा माल, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हो, चाहे पीजी वाले हो, चाहे जितने भी है, ये किराए पे देने के, एक एक डब्बे का कमरे का मकान बना देते हैं, किराए पे दे देते हैं।
1: बेसमेंट की वजह से छात्रों की जान जाते हुए देश ने साल 2024 में देखा, जब ओल्ड राजेंद्र नगर में राउज IAS सर्किल के बेसमेंट में पानी भरने से 3 UPSC छात्रों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया गया। जब इसी साल जून के महीने में आज तक ने वहां जाकर पड़ताल की तो हमें बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लाइब्रेरी मिली।
4: एक लंबे वक्त से ये सिलसिला चलता हुआ चला आ रहा है। आप किसी भी दिल्ली के लोगों से पूछ लीजिए, जब भी वो कोई बिल्डिंग गिराएंगे तुरंत वहां पर दिल्ली पुलिस का कर्मचारी, एमसीडी का कर्मचारी वहां पर आ जाएगा और उसके बाद फिर सेटिंग करके जरिए, लोकल पार्षद के जरिए सेटिंग करके आप 3 मंजिल की जहां इमारत बननी वहां 5 मंजिल बना लीजिए और उसके बाद फिर हादसा होता है तो फिर सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगते हैं। तो जरूरी है सिस्टम में बड़े स्तर पर सुधार की। ओल्ड राजेंद्र नगर का हादसा आपको याद होगा, वहां पर किस तरीके से कोचिंग में यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र मर गए, उसके बाद आज तक की टीम ने वहां खुद जाकर बाकायदा रियलिटी चेक किया, खुद मुझ पर अटैक हुआ लेकिन वहां कोई बदलाव नहीं आया।
2: दिल्ली में इमारत के ढहने की न तो ये कोई पहली घटना है ना ही अंतिम। ठीक 2 महीने पहले 8 जुलाई को रोहिणी के सेक्टर 16 में भी इमारत गिरी थी, 4 मंजिला अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिरी थी, उसके बाद भी अधिकारियों ने कहा, लेकिन दिल्ली की तस्वीर नहीं बदली। एक और हादसा हो गया।
1: दिल्ली के सत्य निकेतन में हादसे के बाद राजधानी में घर बनाने के नियमों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बने हुए घर के नीचे बेसमेंट बनाया जा सकता है, क्या इसके लिए कोई कानूनी अनुमति लेनी होगी और अगर बिना अनुमति के बेसमेंट बना दिया तो क्या कार्रवाई हो सकती है, ये किसकी जिम्मेदारी थी।
4: कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है, तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा वक्त का हो चुका है, बड़ी बात यह है कि वो खुद भी यहाँ पर जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको संचालित होते हुए देख रही है, एक बड़ी बात है, तारीफ की बात है, लेकिन यहाँ खड़े होकर वो ये भी देखे कि आसपास कितने अवैध पीजी चल रहे हैं। मैंने कई छात्रों से कुछ देर पहले बात की है, उन पर शिकंजा कसा जाए, अधिकारियों को सख्त ऑर्डर दिया जाए कि खास तौर से जो अवैध पीजी चल रहे हैं, कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, वहां पर क्या एनओसी है क्या या नहीं है, किस तरह से सुरक्षा के मानकों का वहां अनदेखी की जा रही है, वो तमाम चीजें देखने की जरूरत है, वरना इस तरह के हादसों को रोका जाना काफी मुश्किल होगा। देखिए, ऑन रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस ये कह चुकी है कि 40 से 50 साल ये पुरानी इमारत थी जिसमें पीजी का काम चल रहा था।
1: दिल्ली में इस तरह के हादसे समय समय पर सामने आते रहते हैं। जब हादसा होता है तो एमसीडी समेत संबंधित एजेंसियों पर सवाल उठता है, लेकिन मामला ठंडा पड़ते ही सब कुछ पहले की तरह होने लगता है, जबकि सिस्टम में कमियों की बात मेयर पद पर बैठे लोग भी कबूलते हैं।
5: चाहते हैं कि बच्चे उसमें बच जाएं। पहले रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट है, सभी जाए आपके इस समय, सभी जाए जाए, बहुत कमियां हैं सिस्टम में, बहुत कमियां मैं मानता हूं, लेकिन पहले अभी रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।
1: दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत इसलिए गिरी क्योंकि उसके बेसमेंट में काम चल रहा था। सवाल यह है कि क्या काम चलने से नींव कमजोर हुई और इमारत गिर गई।
4: यह जरूरी हो जाता है कि कम से कम जो जहां छात्र रहते हो, जो पीजी है, जो गर्ल्स हॉस्टल है, जो बॉयज हॉस्टल है, जो कोचिंग है, कम से कम वहां पर जो कंसर्न अधिकारी हैं, जो एमसीडी के अधिकारी हैं, वो जाकर देखें कि वहां पर छात्र किस तरह से पढ़ाई करते हैं, किस तरह से रहते हैं। वहां पर एनओसी नहीं है, फायर की एनओसी नहीं है, कई जगह पर एमसीडी की एनओसी नहीं है और धड़ल्ले से अवैध तरीके से वहां पर लोग रह रहे हैं और बारिश होती है, जरा सी बारिश दिल्ली में हो जाती है तो आप सुनते होंगे कि दिल्ली में बिल्डिंग गिर गई, अगर आग लग जाती है तो उस बिल्डिंग में लोग फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। यहां पर
1: दिल्ली में बेसमेंट बनाने के लिए संबंधित अथॉरिटी से संशोधित बिल्डिंग प्लान की मंजूरी की जरूरत होती है, लेकिन अगर घर पहले बना हो तो उसके नीचे बेसमेंट में काम करने की छूट तो बहुत देखरेख के बाद ही दी जाती है, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ होता नहीं दिखता।
6: पीजी का काम चल रहा
7: है, नहीं ये पीजी तो बना हुआ था ऑलरेडी, पुरानी बिल्डिंग थी ये, इसमें पीजी तो था, वो पीजी वाले तो लंच करने बच्चे चले गए, संडे का दिन था ना, तो लंच करने दूसरी मैच में चले गए, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता।
8: अपना घूम के एक बार पूरे सत्या में देख लो, देयर विल बी 20-25 सच बिल्डिंग्स जो आज गिरे, 1 महीने बाद गिरे, 1 साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी। विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई आधा दलाली करता है यहाँ पे, तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन।
9: जितनी भी पीजीज हैं सब में सीढ़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है और बच्चों का फायदा उठाया जाता है, साउथ कैंपस के सभी बच्चों का।
1: दिल्ली में ऐसे हादसे तब तक होते रहेंगे जब तक अवैध निर्माण पर लगाम नहीं लगती। दिल्ली में 75 लाख इमारतें बताई जाती हैं। दुर्भाग्य ये है कि चंद इमारतें ही सभी नियमों को पूरा करे हुए बनी है। इसलिए एक्सपर्ट की मांग है कि सरकार बाकी इमारतों को लेकर अभियान चलाए, क्योंकि 40 से 50 साल पुरानी हो चुकी इमारतों की दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या है।
10: जो इस बिल्डिंग का ओनर था, क्या उसको एक दिन के लिए भी, एक मिनट के लिए भी ये सोच नहीं आई कि वहां पे लोग निवासी अभी भी हैं? एटलीस्ट बिल्डिंग को खाली किया जाता। और जो हम बात करते हैं कि जेई आके इंस्पेक्ट कर ले, हमारे जेई बाय द वे कितने एजुकेटेड है इस मामले में कि वो आके को ढंग का इंस्पेक्ट भी करते, वो तो किसी और वजह से वहां पे आते और अपनी वो वजह पूरी करके निकल जाते वहां से। तो ये सारा सिस्टमिक चेंज जो हमें चाहिए, विकसित भारत बनाने के लिए एक सिस्टमिक चेंज की जरूरत है।
2: दिल्ली में हुए हादसे के बाद राजनीतिक दलों के नेताओं ने दुख जताया है। गोवा में गृहमंत्री शाह ने अपने कार्यक्रम को रोका तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी हादसे पर दुख जताया और विपक्ष अब सरकार पर हमलावर है।

0: ऐसा भयानक हादसा जिसने दिल्ली को दहला दिया। जैसे ही खबर आई कि सत्यनिकेतन में एक ऐसी इमारत जमींदोज हो गई है जिसमें छात्र रहा करते थे, तो पूरी दिल्ली में हड़कंप मच गया। गृह मंत्री अमित शाह गोवा में थे, वो बीजेपी के नए ऑफिस इनॉग्रेशन सेरेमनी में थे, लेकिन जैसे ही उन्हें हादसे की जानकारी हुई उन्होंने अपना कार्यक्रम रोक दिया। अमित शाह ने हादसे पर दुख जताया है।
1: एक समाचार है, एक दुखद घटना हुई है और उस दुखद घटना का समाचार सुनने के बाद हमारे देश के गृह मंत्री ने तुरंत निर्णय ले लिया कि ये कार्यक्रम यहाँ तक सीमित करके खत्म।
0: घटना बड़ी थी और तकलीफी हादसे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दुख जताया और हादसे वाली जगह पहुंची। एमसीडी के मेयर भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी हालातों का जायजा लिया है।
2: देखिए, हम तो चाहते हैं कि बच्चे उसमें बच जाएं। पहले रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट है। सभी जायजा आपके इस समय सभी जायजा बहुत कमियां हैं, सिस्टम में बहुत कमियां मैं मानता हूं, लेकिन पहले अभी रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।
0: अब इस हादसे पर विपक्ष हमलावर है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दिल्ली में सरकार की लापरवाही के कारण अब तक कई हादसे हो चुके हैं, सरकार को नींद से जागना होगा, बड़े स्तर पर एक्शन लेकर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी के भ्रष्टाचार का नतीजा है।
3: देखिए, मेरे को जो आसपास के रहने वाले लोगों ने बताया है कि पीजी के अंदर करीब 30 से 40 नौजवान बच्चे फंसे हुए हैं इस मलबे में, और आज से कुछ समय पहले की बात है जब साकेत सैजुला जाब में 4 मंजिल की इमारत गिरी तो कहा गया कि हम दिल्ली की सब बिल्डिंगों की ऑडिट कराएंगे, जो पैसा नहीं देता उसकी बिल्डिंग को सील कर देते हैं, पैसे की मांडवाली होती है, एक हफ्ते बाद बिल्डिंग को डी सील कर दिया जाता है। अभी क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। अभी रेखा गुप्ता कहेंगी हम बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं, आशीष सूद अलग कहेंगे हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, और क्या करेंगे बता देता हूं। एक जेई को सस्पेंड करेंगे और एक एई को सस्पेंड करेंगे और 15 दिन बाद उनको चुपचाप बहाल भी कर देंगे।
0: कांग्रेस भी सवाल पूछ रही है कि आखिर देश में छात्र सुरक्षित क्यों नहीं है।
4: जी चल रहे ये बिल्कुल कोई इनकी कोई वो कोई किसी तरह का मापदंड नहीं है। एमसीडी क्या कर रही है, एनडीएमसी क्या कर रही है, यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, अथॉरिटीज क्या, कब तक जवाब नहीं देंगी। सारी अभी भी आप चेक कर लो, ये आसपास पीजी हैं सारी, आप चेक कर लो। उस टाइम भी हमने मैं भी गया था वहाँ आप लोगों के सामने, हमने सबने कहा था कि इनको चेक कराओ, इनको कहीं ना कहीं इनकी कोई नॉर्म्स तो हो, स्टूडेंट कब तक बर्दाश्त करेंगे और कब तक अथॉरिटीज जवाब नहीं देंगी। ये मैं समझता हूँ कि आज हम सबके लिए बहुत ही दुख का टाइम है।
5: जब यूनिवर्सिटी में हॉस्टल ही नहीं है और इस निकेतन पे आपने रखा है तो और वो वही छत गिर जाती है तो सुरक्षित छात्र किसी तरीके से सुरक्षित नहीं है, और बड़ी दुख की बात है। तो प्रधानमंत्री जी ऐसा करिए, हमें एक दिन आप कुछ अपना वक्त दे दीजिए, हम रिपोर्ट कार्ड लिख के आपको लिखित रूप में दे देंगे।
0: सियासत अपनी जगह है, मगर ये भी सच है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री बदले, सरकार बदली, लेकिन हालात नहीं बदल पाए हैं। इसे हादसा कह देना, लेकिन ये लापरवाही सीधे सीधे मौत को आमंत्रण देने वाली जैसी है। सवाल ये है कि ऐसे हादसे कब तक होते रहेंगे। दिल्ली से अंशुल सिंह, अरविंद होजा और अनमोल बाली के साथ आज तक ब्यूरो।
6: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

में 5 मंजिला इमारत गिरी, 4 से ज्यादा लोगों की मौत, कई घायल, बेसमेंट में खुदाई से हादसे की आशंका। दिल्ली में बिल्डिंग गिरने के बाद राहत का काम जारी, पीएम मोदी ने जताई संवेदना, सीएम रेखा ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, बोली नहीं बचेगा कोई गुनहगार। दिल्ली के एसआरसीसी में पीएम मोदी के संबोधन को लेकर विपक्ष के सवालों पर नितिन नवीन का तंज कहा, प्रधानमंत्री ने नाराज फूफाओं को होम्योपैथी की दवा दी लेकिन इसका असर एलोपैथी वाली हाई एंटीबायोटिक जैसा हुआ। लंदन के कार्यक्रम में शामिल संघ प्रमुख मोहन भागवत कहा, सबको एक मानता है हिंदू विचार, व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन जरूरी। बिहार में उफान पर गंगा, 12 से ज्यादा जिलों में 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, पटना में रिकॉर्ड स्तर पर नदी, गंडक, कोसी और घाघरा नदी भी उफान पर। और अब बड़ी खबर आपको देते हैं, रविवार में दोपहर में दिल्ली में बड़ा हादसा हुआ, सत्यनिकेतन इलाके में एक बहुमंजिला इमारत गिर गई। हादसे के बाद मौके पर राहत बचाव का काम शुरू हुआ और जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।

0: ऐसा हादसा जिसने दिल्ली को हिला के रख दिया, ऐसा हादसा जिसने लोगों के दिलों में खौफ भर दिया। देखिए, दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में दोपहर करीब 1:30 बजे एक इमारत ढह गई। इमारत ढहते ही अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें देखिए, सिर्फ धूल का गुब्बार नजर आ रहा है और साथ में नजर आ रहा है कि कैसे मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है।
1: यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लोकल्स की मदद से जो है यहाँ ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ को भी इस वक्त बुला लिया गया है। एनडीआरएफ की भी एक बटालियन जो है, एक टीम जो है, वो इस वक्त यहाँ पहुंच गई है और अभी धीरे धीरे वो यहाँ पे स्पॉट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि कितनी भारी संख्या में जो यहाँ लोकल्स हैं, वो लोकल जो है यहाँ मदद कर रहे हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं। अभी ये बड़ी अभी जो मशीनें हैं, जो कटर्स हैं, हैवी कटर्स हैं, बोल्डर कटर्स हैं, उन्हें भी अभी लेकर के यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो इस वक्त यहाँ आई है। और ये 5 मंजिला इमारत बताई जा रही है। अगर आप तस्वीरों में थोड़ा और क्लैरिटी से देखें यहाँ पर, तो ये देखें आप, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग थी और ये काफी बड़े इलाके में जो है ये पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक बॉयज हॉस्टल था और उसे बॉयज हॉस्टल में जो है ये पूरा हादसा हुआ है।
0: बताया जा रहा है कि इस इमारत में पीजी हॉस्टल था। सत्य निकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास बसा प्रमुख छात्र इलाका है। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं, इसी वजह से यहाँ दिन भर छात्रों की आवाज आई रहती है। हालांकि सत्य निकेतन में कुल कितने छात्र रहते हैं इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी बचाव काम चल रहा है, वो भी संभाल कर कि कहीं मलबे में दबे किसी शख्स को नुकसान न पहुंचे।
1: तो यहाँ पे जेसीबी चलाना वो खतरे से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि आखिर कितने लोग फंसे हैं और कौन कौन सी जगह फंसे हैं। अगर जेसीबी से मलबा हटाने के चक्कर में कुछ और लोग जो फंसे हुए हैं, जो शायद इंजर्ड हो, बस उनकी भी जान पर बना सकती है। और इसीलिए जेसीबी का अगर हम देखें तो ज्यादा इस्तेमाल ऐसे सिचुएशंस में नहीं किया जाता। और जो प्रिसाइज हैवी टूल्स होते हैं, जैसे बड़े ड्रिलर्स होते हैं, स्टील कटिंग मशीन्स होती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये पता लग पाए कि कहां कहां लोग फंसे हैं। अभी इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे ये समझ आ गया है कि यहां पर लोग नहीं फंसे हैं, जो बिल्डिंग के बाहर की लोकेशंस हैं, वहां पर अब जेसीबी की कार्रवाई जो है वो शुरू होती हुई दिख रही है। और बिल्डिंग के बाहर जहां गाड़ियों पर जो मलबा गिरा था उनसे अब मलबा हटाना शुरू किया जा रहा है। लेकिन बिल्डिंग जहां पर थी, जहां लोग फंसे हुए हैं, वहां पर अभी जेसीबी नहीं चलेगी, वहां पर अभी मेटल कटर्स चलेंगे, वहां पर अभी जीपीआर लगाया जाएगा, ये पता लगाया जाएगा कि कहां कहां लोग फंसे हैं, और उसके बाद वहां से मैन्युअली डिग करके ही लोगों को निकालना होगा या फिर हैंड यूजेबल मशीन से ही लोगों को निकालना होगा। अगर आप देखें यहां पे अभी भी प्रशासन को बहुत मुश्किलें हो रही हैं लोगों को समझाने में कि ये जगह खाली कर दे, क्योंकि ये जगह अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कहीं से भी मलबा और भी थोड़ा घिसक सकता है और लोगों को इंजरीज हो सकती है और लोगों को चोट आ सकती है।
0: बताया जा रहा है कि इमारत के बेसमेंट में काम चल रहा था, लेकिन अभी सही तौर पर ये नहीं मालूम चल सका कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। अनमोल बाली, अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
2: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता हादसे वाली जगह पर पहुंचे और उन्होंने भरोसा दिलाया कि इमारत के मालिक समेत जो भी जिम्मेदार होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा।
3: हमारी टीमें जो है वो पूरी तरीके से काम कर रही है, नीचे ऑक्सीजन भी डाली गई है, कैमरा भी
4: काम कर रहे हैं।
3: बच्चों की जान है और कोई भी कल्पित छोड़ा नहीं जाएगा, खास करके ये जिसका मकान है, जो यहाँ पे बिल्डिंग छोड़ के भाग गया, जो कि अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा था, बेसमेंट में खुदाई कर रहा था, और जिसकी वजह से जो पिलर है वो डिसमेंटल हुआ और बिल्डिंग पूरी गिर गई, तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, और जिसके कारण से ये हादसा हुआ है सबको सजा भुगतनी पड़ेगी।
2: जिन लोगों ने इमारत को ढहते हुए देखा वो खौफ ज्यादा है। अब उन लोगों की जुबानी आप सुनिए कि हादसा कैसे हुआ।
5: हॉस्टल डेज नाम की बिल्डिंग है, इसके साथ एक और बिल्डिंग पीजी की गिरी है। हॉस्टल डेज तो है, वो बॉयज पीजी है प्रॉपर, 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी ये, एंड इसके साथ बगल वाली बिल्डिंग भी गिरी है, एंड जो ये येलो वाली बिल्डिंग है ये दोनों हिल रही थी जब वो गिरी है। तो इन दोनों में भी पीजीज ही है और इनके एंट्रेंस एक उधर से एक पीछे की साइड से, दो साइड से एंट्रेंस है, और मलबे के चक्कर में इनका एंट्रेंस भी जहाँ तक है ब्लॉक हो चुका है। और 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी, जितने बच्चे रूम में थे वो तो सारे दब गए हैं, और जो बाहर थे बच्चे उनका पता नहीं है, और जितना भी रजिस्टर में एंट्रीज होंगे उसके हिसाब से ही पता चलेगा अब कितने बच्चे दबे हैं इसमें।
6: कम से कम 40 बच्चों के हताहत होने की खबर है, और ये सत्यनिकेतन में आप जो भी बिल्डिंगें देख रहे हैं सब बिल्डिंगें जर्जर, इनकी कोई ये कभी भी गिर सकती है, इसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार इन बिल्डिंगों की स्थिति देखकर इन्हें सील करे, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, सरकार को बच्चों से शिक्षा से कोई मतलब नहीं है।
7: There will be 20 to 25 such buildings, जो आज गिरे, एक महीने बाद गिरे, एक साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी। विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई आधा दिल्ली करता है यहाँ पे, तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन।
8: दिल्ली पुलिस पे है, 1:45 पे दिल्ली पुलिस को फोन किया था, दिल्ली पुलिस 3:15 तक कहाँ थी, और दूसरी बात यहाँ के बिल्डिंग का ओनर कहाँ है।
9: और यहाँ पे जितनी भी पीजीज हैं सब में सीढ़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है, और बच्चों का फायदा उठाया जाता है, साउथ कैंपस के सभी बच्चों का, उनको खाना खराब दिया जाता है और उनकी मजबूरी है पीजीज की।
7: आधे बच्चे गंदे खाने से मर जाते हैं, जो बच रहे हैं वो बिल्डिंग गिरने से मर रहे हैं।
10: 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं जब हमारे सामने बिल्डिंग गिरी थी, तो काफी नीचे मतलब लेबर भी काम कर रही थी, इसमें 7 से 8 लेबर थी जो काम करे जा रही थी। अब उनका भी नहीं पता कि वो निकल पाए थे या नहीं निकल पाए थे, मगर मुझे इतना पता कि बहुत बच्चे हैं इसके नीचे, कम से कम 8-10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, मगर बाकी जितने भी यहाँ के मोहल्ले क्षेत्र के हैं सबने अपने हाथों से मलबा हटा के 4 लोगों को निकाल लिया गया है।
11: हम दुकान के अंदर बैठे थे, हम एकदम आवाज आई जैसे भूकंप टाइप होता है, 1:30 बजे हम अंदर इतनी नहीं आई, जो बाहर बच्चे खड़े थे उनके पास आवाज आई, हम फटाफट भाग के आए। यहाँ पे बहुत ज्यादा धुआं वगैरह था, सारी बिल्डिंग गिरी हुई थी, और अभी इन्होंने यहाँ से मजदूर वगैरह निकाले हैं, उनकी डेड बॉडी मिली है, और 4 बच्चे निकाले हैं जिनकी सांसें चल रही थी, वो अभी उनको एम्बुलेंस ले गई है, बट वो मतलब अधमरे की हालत में थे।
2: सत्य निकेतन हादसे में 11 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है, जिनमें से 3 की मौत हो गई है, और 5 मंजिला जब इमारत गिरी तो आसपास के लोगों को लगा मानो भूकंप आ गया हो।

0: दिल्ली में कितनी इमारतें इस तरह हादसे के इंतजार में हैं? आखिर कितने बेकसूर छात्रों की जिंदगी ज्यादा किराए के लालच में इस तरह दांव पर लगाई जाती रहेंगी? दिल्ली में लगातार हो रहे इन हादसों की जिम्मेदारी कब और कैसे तय होगी? दिल्ली का सत्य निकेतन इलाका, जहां 5 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया, पहली नजर में ये आपको हादसा लग सकता है, लेकिन ये हादसा नहीं बल्कि लालच और लापरवाही के कॉकटेल का नतीजा है। क्योंकि जब 40 साल पुरानी इमारत को 3 की जगह 5 मंजिल तक अवैध बना दिया जाए, 40 साल पुरानी इमारत की जांच करने वाला कोई न हो, बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भरा होने के बावजूद काम किया जा रहा, जबकि हादसे के वक्त छात्र कमरों में मौजूद थे, तो अब आप ही बताइए क्या इसे हादसा कहना ठीक होगा?
1: यहाँ पर लिमिट ही खाली 2 या 3 फ्लोर्स के, बट इन लोगों ने 5 फ्लोर्स बनवा रखे थे। इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, नीचे बेसमेंट में काम चल रहा था, उसकी वजह से बिल्डिंग गिरी है। मैं उस टाइम पे अपना खाना ही खा रहा था, एकदम से सोफा हिलने लगा, प्रॉपर फील हुआ कि अर्थक्वेक आया, पर बाहर आके देखा तो धुआं वो हो रखा था, फिर पता लगा कि बिल्डिंग गिरी है।
2: लेवर लगी हुई थी सर, नीचे बेसमेंट में काम कर रहे थे सुबह।
3: अच्छा।
2: जब मैं मार्केट में आया तो मैंने देखा तो लेवर काम कर रही थी, प्लस यहाँ पर 2 कारपेंटर काम कर रहे थे।
3: अच्छा।
2: जब मैं मार्केट से होकर फिर मैं सीधा घर चला गया था। अच्छा। उसके बाद पता लगा तो ये बिल्डिंग गिरी है सर।
0: इस हादसे ने देश की राजधानी को एक बार फिर हिला दिया है। लोग डरे हुए हैं क्योंकि वो जिन इमारतों में रह रहे हैं उनका भी ऐसा ही अंजाम हो सकता है, जैसा दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में दोपहर करीब 1:30 बजे इस इमारत के साथ हुआ।
4: बिल्डिंग की क्या हालत थी? बेसमेंट में कोई काम चल रहा
5: था? बेसमेंट में काम चल रहा था, 2 दिन से पानी भरा हुआ था, और इसका क्या था कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, और आप कह सकते हो कि इलीगली है, क्योंकि यहाँ पे अलाउड है कि आप 3 मंजिल से लेके 5-4 मंजिल तक कर सकते हो, मगर यहाँ ये बिल्डिंग थी 5वीं मंजिल तक। और मैक्सिमम स्टूडेंट थे, पीजीस थे, और एक पीजीस में 3 और 4 ही बच्चे रहते थे। संडे की वजह से स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे क्या करते, नीचे चाय की दुकान है, ब्रेड बटर लेने आते हैं। ये बिल्डिंग इस वजह से भी अब हम प्रे करते कि कोई नुकसान ना हो।
4: अभी बिल्डिंग का बेसमेंट में काम चल रहा था
5: पानी।
4: ये जो 40-50 साल ये दिल्ली पुलिस आधिकारिक बयान दे रही है, 40-50 साल पुरानी बिल्डिंग थी, 5 मंजिला थी, बेसमेंट था उसमें, और बेसमेंट में काम चल रहा था, सीधे सीधे जो छात्र हैं जिसमें रह रहे थे उन सबकी जिंदगी दांव पर लगा दी बिल्डिंग के मालिक ने ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में।
0: इमारत ढहते ही यहाँ अफरा तफरी मच गई, धूल के गुब्बार में पूरे इलाके को घेर लिया।
6: मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लोकल्स की मदद से जो है यहाँ ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ को भी इस वक्त बुला लिया गया है, एनडीआरएफ की भी एक बटालियन जो है, एक टीम जो है वो इस वक्त यहाँ पहुंच गई है, और अभी धीरे धीरे वो यहाँ पे स्पॉट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि कितनी भारी संख्या में जो यहाँ लोकल्स हैं, वो लोकल जो है यहाँ मदद कर रहे हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं। अभी ये बड़ी अभी जो मशीनें हैं, जो कटर्स हैं, हैवी कटर्स हैं, बोल्डर कटर्स हैं, उन्हें भी अभी लेकर के यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो इस वक्त यहाँ आई है। और ये 5 मंजिला इमारत बताई जा रही है, अगर आप तस्वीरों में थोड़ा और क्लैरिटी से देखें यहाँ पर, तो ये देखें आप, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग थी और ये काफी बड़े इलाके में जो है ये पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक बॉयज हॉस्टल था, और उसे बॉयज हॉस्टल में जो है ये पूरा हादसा हुआ है।
0: बिल्डिंग गिरने के बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, कुछ हथौड़े से मलबा हटाने लगे।
4: आपको दिखा दूं किस तरीके से रेस्क्यू जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। ये एक गाड़ी है जो कि बिल्डिंग के पास खड़ी थी, जब बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो उसकी हालत देखिए कि किस तरीके से इस पूरी गाड़ी के ऊपर बिल्डिंग का जो मलबा है वो भरभरा करके गिरा, पूरी गाड़ी जो है वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। अब इसको जेसीबी की मदद से जो है वो यहाँ से हटाया जा रहा है। आप ये समझिए कि जब मैं ये समझाने की कोशिश इसलिए भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये तस्वीरें देखने के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो मलबा, सोचिए उस बिल्डिंग के अंदर कई सारे लोग थे, और उनकी हालत क्या रही होगी जब ये बिल्डिंग पूरी तरीके से कोलैप्स हुई, जब गाड़ी की हालत इस तरीके की है।
0: सत्य निकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास बसा प्रमुख छात्र इलाका है। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं। इलाके में कई छात्र आवास,
6: जेसीबी की अगर बात करें तो यहाँ पे जेसीबी चलाना वो खतरे से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि आखिर कितने लोग फंसे हैं और कौन कौन सी जगह फंसे हैं। अगर जेसीबी से मलबा हटाने के चक्कर में कुछ और लोग जो फंसे हुए हैं, जो शायद इंजर्ड हो, बस उनकी भी जान पर बना सकती है। और इसीलिए जेसीबी का अगर हम देखें तो ज्यादा इस्तेमाल ऐसे सिचुएशंस में नहीं किया जाता। और जो प्रिसाइज हैवी टूल्स होते हैं, जैसे बड़े ड्रिलर्स होते हैं, स्टील कटिंग मशीन्स होती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये पता लग पाए कि कहां कहां लोग फंसे हैं। अभी इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे ये समझ आ गया है कि यहां पर लोग नहीं फंसे हैं, जो बिल्डिंग के बाहर की लोकेशंस हैं, वहां पर अब जेसीबी की कार्रवाई जो है वो शुरू होती हुई दिख रही है। और बिल्डिंग के बाहर जहां गाड़ियों पर जो मलबा गिरा था उनसे अब मलबा हटाना शुरू किया जा रहा है, लेकिन बिल्डिंग जहां पर थी, जहां लोग फंसे हुए हैं, वहां पर अभी जेसीबी नहीं चलेगी। वहां पर अभी मेटल कटर्स चलेंगे, वहां पर अभी जीपीआर लगाया जाएगा, ये पता लगाया जाएगा कि कहां कहां लोग फंसे हैं, और उसके बाद वहां से मैन्युअली डिग करके ही लोगों को निकालना होगा या फिर हैंड यूजेबल मशीन से ही लोगों को निकालना होगा। अगर आप देखें यहां पे अभी भी प्रशासन को बहुत मुश्किलें हो रही हैं लोगों को समझाने में कि ये जगह खाली कर दे, क्योंकि ये जगह अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कहीं से भी मलबा और भी थोड़ा घिसक सकता है और लोगों को इंजरीज हो सकती है और लोगों को चोट आ सकती है।
0: इस इमारत को लेकर सवाल ये है कि क्या इस बिल्डिंग का नक्शा पास था? 5 मंजिला इमारत बनाने की अगर अनुमति नहीं थी तो इसे रोका क्यों नहीं गया? 40 साल पुरानी इमारत में छात्रों को रहते बेसमेंट में काम की इजाजत कैसे दी गई? अनमोल बाली अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
3: ये इमारत 50 साल पुरानी बताई जा रही है और इसके बेसमेंट में काम चल रहा था। इसका मालिक आनंद बंसल, जो कि गुरुग्राम का रहने वाला है, इस समय फरार है और बताया जा रहा है कि मेडिकल शॉप भी वहां पर चलती थी और इस इमारत में 10 कमरे थे।
0: दिल्ली में हादसों की वजह बनने वाली गैर कानूनी इमारत पर समय रहते लगाम क्यों नहीं लगाई जाती? आखिर हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जाता? दिल्ली के जिस सत्य निकेतन में यह हादसा हुआ वहां बड़ी संख्या में पीजी, रेंटेड रूम और हॉस्टल चलते हैं। यहां पर कितनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हादसे के बाद इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि रेस्क्यू करना मुश्किल हो गया। जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हादसे की जगह पहुंची तो उन्हें घटनास्थल का जायजा लेने के लिए दूसरी इमारत के ऊपर मंजिल का सहारा लेना पड़ा। अगर इलाके की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यहाँ छोटी छोटी गलियां हैं और घनी आबादी के बीच कई बहुमंजिला मकान मौजूद हैं। ऐसे ही एक इमारत गिरने से छात्र दब गए। मलबे में फंसे छात्र ने ये वीडियो बनाया जिसमें दबे हुए छात्र दिखाई दे रहे हैं। वहीं कई मलबे में दबे छात्रों ने फोन कर मदद मांगी। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब दिल्ली में इस तरह का हादसा हुआ हो। राजधानी दिल्ली में कई जगह ऐसे ही पीजी संचालित हो रहे हैं। कई जगह ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन नियमों की अनदेखी रहती है। दिल्ली में नियमों की अनदेखी और प्रशासन की बेरुखी की वजह से पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं। कुछ महीने पहले दिल्ली के मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग ने भयावह रूप ले लिया था और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी।
7: अगर आप नीचे बेसमेंट को, ये क्या है कि हवस है पैसे कमाने की, पीजी ही हो चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकोमोडेट करना, ज्यादा से ज्यादा भर्ती करना, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना, ये जो हवस है। राजेंद्र नगर में बेसमेंट को यूज कर रहे थे, वो हवस वो भी वही है। ये पीजी का भी मसला यही है। और अभी 3 महीने पहले अगर आपको ध्यान हो तो सैदुला जाब में 5 बच्चे इंजीनियरिंग और डॉक्टरी जो कर रहे थे वो मर गए। तो ये दरअसल क्या है कि ये एक तो ये हवस जो बन गई है कि ज्यादा से ज्यादा माल, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हो, चाहे पीजी वाले हो, चाहे जितने भी है, ये किराए पे देने के, एक एक डब्बे का कमरे का मकान बना देते हैं, किराए पे दे देते हैं।
0: बेसमेंट की वजह से छात्रों की जान जाते हुए देश ने साल 2024 में देखा, जब ओल्ड राजेंद्र नगर में राउज IAS सर्किल के बेसमेंट में पानी भरने से 3 UPSC छात्रों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया गया। जब इसी साल जून के महीने में आज तक ने वहां जाकर पड़ताल की तो हमें बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लाइब्रेरी मिली।
4: एक लंबे वक्त से ये सिलसिला चलता हुआ चला आ रहा है। आप किसी भी दिल्ली के आप लोगों से पूछ लीजिए, जब भी वो कोई बिल्डिंग गिराएंगे तुरंत वहां पर दिल्ली पुलिस का कर्मचारी, एमसीडी का कर्मचारी वहां पर आ जाएगा और उसके बाद फिर सेटिंग करके जरिए, लोकल पार्षद के जरिए सेटिंग करके आप 3 मंजिल की जहां इमारत बननी वहां 5 मंजिल बना लीजिए और उसके बाद फिर हादसा होता है तो फिर सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगते हैं। तो जरूरी है सिस्टम में बड़े स्तर पर सुधार की। ओल्ड राजेंद्र नगर का हादसा आपको याद होगा, वहां पर किस तरीके से कोचिंग में यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र मर गए, उसके बाद आज तक की टीम ने वहां खुद जाकर बाकायदा रियलिटी चेक किया, खुद मुझ पर अटैक हुआ लेकिन वहां कोई बदलाव नहीं आया।
3: दिल्ली में इमारत के ढहने की न तो ये कोई पहली घटना है न ही अंतिम। ठीक 2 महीने पहले 8 जुलाई को रोहिणी के सेक्टर 16 में भी इमारत गिरी थी, 4 मंजिला अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिरी थी, उसके बाद भी अधिकारियों ने कहा लेकिन दिल्ली की तस्वीर नहीं बदली। एक और हादसा हो गया।
0: दिल्ली के सत्य निकेतन में हादसे के बाद राजधानी में घर बनाने के नियमों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बने हुए घर के नीचे बेसमेंट बनाया जा सकता है, क्या इसके लिए कोई कानूनी अनुमति लेनी होगी और अगर बिना अनुमति के बेसमेंट बना दिया तो क्या कार्रवाई हो सकती है, ये किसकी जिम्मेदारी थी।
4: दिल्ली के जो मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा वक्त का हो चुका है, बड़ी बात यह है कि वो खुद भी यहाँ पर जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको संचालित होते हुए देख रही है, एक बड़ी बात है, तारीफ की बात है, लेकिन यहाँ खड़े होकर वो ये भी देखें कि आसपास कितने अवैध पीजी चल रहे हैं। मैंने कई छात्रों से कुछ देर पहले बात की है, उन पर शिकंजा कसा जाए, अधिकारियों को सख्त ऑर्डर दिया जाए कि खास तौर से जो अवैध पीजी चल रहे हैं, कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, वहां पर क्या एनओसी है क्या या नहीं है, किस तरह से सुरक्षा के मानकों का वहां अनदेखी की जा रही है, वो तमाम चीजें देखने की जरूरत है, वरना इस तरह के हादसों को रोका जाना काफी मुश्किल होगा। देखिए ऑन रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस ये कह चुकी है कि 40 से 50 साल ये पुरानी इमारत थी जिसमें पीजी का काम चल रहा था।
0: दिल्ली में इस तरह के हादसे समय समय पर सामने आते रहते हैं। जब हादसा होता है तो एमसीडी समेत संबंधित एजेंसियों पर सवाल उठता है, लेकिन मामला ठंडा पड़ते ही सब कुछ पहले की तरह होने लगता है, जबकि सिस्टम में कमियों की बात मेयर पद पर बैठे लोग भी कबूलते हैं।
8: चाहते हैं कि बच्चे उसमें बच जाएं। पहले रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट है, सभी जायज आपके इस समय सभी जायज है, बहुत कमियां हैं सिस्टम में, बहुत कमियां मैं मानता हूं, लेकिन पहले अभी रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।
0: दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत इसलिए गिरी क्योंकि उसके बेसमेंट में काम चल रहा था। सवाल यह है कि क्या काम चलने से नींव कमजोर हुई और इमारत गिर गई।
4: यह जरूरी हो जाता है कि कम से कम जो जो जो जहां छात्र रहते हो, जो पीजी है, जो गर्ल्स हॉस्टल है, जो बॉयज हॉस्टल है, जो कोचिंग है, कम से कम वहां पर जो कंसर्न अधिकारी हैं, जो एमसीडी के अधिकारी हैं, वो जाएं, जाकर देखें कि वहां पर छात्र किस तरह से पढ़ाई करते हैं, किस तरह से रहते हैं। वहां पर एनओसी नहीं है, फायर की एनओसी नहीं है, कई जगह पर एमसीडी की एनओसी नहीं है और धड़ल्ले से अवैध तरीके से वहां पर लोग रह रहे हैं और बारिश होती है, जरा सी बारिश दिल्ली में हो जाती है तो आप सुनते होंगे कि दिल्ली में बिल्डिंग गिर गई, अगर आग लग जाती है तो उस बिल्डिंग में लोग फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। यहां पर
0: दिल्ली में बेसमेंट बनाने के लिए संबंधित अथॉरिटी से संशोधित बिल्डिंग प्लान की मंजूरी की जरूरत होती है, लेकिन अगर घर पहले बना हो तो उसके नीचे बेसमेंट में काम करने की छूट तो बहुत देखरेख के बाद ही दी जाती है, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ होता नहीं दिखता।
9: पीजी का काम चल रहा
10: है, नहीं ये पीजी तो बना हुआ था ऑलरेडी, पुरानी बिल्डिंग थी ये, इसमें पीजी तो था, वो पीजी वाले तो लंच करने बच्चे चले गए, संडे का दिन था ना, तो लंच करने दूसरी मैच में चले गए, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता।
11: अपना घूम के एक बार पूरे सत्या में देख लो, देयर विल बी 20-25 सच बिल्डिंग्स जो आज गिरे, 1 महीने बाद गिरे, 1 साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी। विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई आधा दलाली करता है यहाँ पे, तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन।
12: जितनी भी पीजीज हैं सब में सीडन लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है और बच्चों का फायदा उठाया जाता है, साउथ कैंपस के सभी बच्चों का।
0: दिल्ली में ऐसे हादसे तब तक होते रहेंगे जब तक अवैध निर्माण पर लगाम नहीं लगती, दिल्ली में 75 लाख इमारतें बताई जाती हैं। दुर्भाग्य ये है कि चंद इमारतें ही सभी नियमों को पूरा करे हुए बनी है। इसलिए एक्सपर्ट की मांग है कि सरकार बाकी इमारतों को लेकर अभियान चलाए, क्योंकि 40 से 50 साल पुरानी हो चुकी इमारतों की दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या है।
13: जो इस बिल्डिंग का ओनर था, क्या उसको एक दिन के लिए भी, एक मिनट के लिए भी ये सोच नहीं आई कि वहां पे लोग निवासी अभी भी हैं? एटलीस्ट बिल्डिंग को खाली किया जाता। और जो हम बात करते हैं कि जेई आके इंस्पेक्ट कर ले, हमारे जेई बाय द वे कितने एजुकेटेड है इस मामले में कि वो आके को ढंग का इंस्पेक्ट भी करते, वो तो किसी और वजह से वहां पे आते और अपनी वो वजह पूरी करके निकल जाते वहां से। तो ये सारा सिस्टमिक चेंज जो हमें चाहिए विकसित भारत बनाने के लिए, एक सिस्टमिक चेंज की जरूरत है।
3: दिल्ली में हुए हादसे के बाद राजनीतिक दलों के नेताओं ने दुख जताया है। गोवा में गृहमंत्री शाह ने अपने कार्यक्रम को रोका तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी हादसे पर दुख जताया और विपक्ष अब सरकार पर हमलावर है।

0: ऐसा भयानक हादसा जिसने दिल्ली को दहला दिया। जैसे ही खबर आई कि सत्य निकेतन में एक ऐसी इमारत जमींदोज हो गई है जिसमें छात्र रहा करते थे, तो पूरी दिल्ली में हड़कंप मच गया। गृह मंत्री अमित शाह गोवा में थे, वो बीजेपी के नए ऑफिस इनॉग्रेशन सेरेमनी में थे, लेकिन जैसे ही उन्हें हादसे की जानकारी हुई उन्होंने अपना कार्यक्रम रोक दिया। अमित शाह ने हादसे पर दुख जताया है।
1: एक समाचार है, एक दुखद घटना हुई है और उस दुखद घटना का समाचार सुनने के बाद हमारे देश के गृह मंत्री ने तुरंत निर्णय ले लिया कि ये कार्यक्रम न्यायालय तक सीमित करके खत्म।
0: घटना बड़ी थी और तकलीफी हादसे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दुख जताया और हादसे वाली जगह पहुंची। एमसीडी के मेयर भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी हालातों का जायजा लिया है।
2: देखिए, हम तो चाहते हैं कि बच्चे उसमें बच जाएं। पहले रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट है। सभी जायज आपके इस समय सभी जायज है, बहुत कमियां हैं सिस्टम में, बहुत कमियां मैं मानता हूं, लेकिन पहले अभी रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।
0: अब इस हादसे पर विपक्ष हमलावर है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दिल्ली में सरकार की लापरवाही के कारण अब तक कई हादसे हो चुके हैं, सरकार को नींद से जागना होगा, बड़े स्तर पर एक्शन लेकर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी के भ्रष्टाचार का नतीजा है।
3: देखिए, मेरे को जो आसपास के रहने वाले लोगों ने बताया है कि पीजी के अंदर करीब 30 से 40 नौजवान बच्चे फंसे हुए हैं इस मलबे में, और आज से कुछ समय पहले की बात है जब साकेत सैजुला जाब में 4 मंजिल की इमारत गिरी तो कहा गया कि हम दिल्ली की सब बिल्डिंगों की ऑडिट कराएंगे, जो पैसा नहीं देता उसकी बिल्डिंग को सील कर देते हैं, पैसे की मांडवाली होती है, एक हफ्ते बाद बिल्डिंग को डी सील कर दिया जाता है। अभी क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। अभी रेखा गुप्ता कहेंगी हम बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं, आशीष सूद अलग कहेंगे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और क्या करेंगे बता देता हूं। एक जेई को सस्पेंड करेंगे और एक एई को सस्पेंड करेंगे और 15 दिन बाद उनको चुपचाप बहाल भी कर देंगे।
0: कांग्रेस भी सवाल पूछ रही है कि आखिर देश में छात्र सुरक्षित क्यों नहीं है।
4: जी चल रहे हैं, ये बिल्कुल कोई इनकी किसी तरह का मापदंड नहीं है। एमसीडी क्या कर रही है, एनडीएमसी क्या कर रही है, यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, अथॉरिटीज क्या, कब तक जवाब नहीं देंगी। सारी अभी भी आप चेक कर लो, ये आसपास पीजी हैं सारी, आप चेक कर लो। उस टाइम भी मैं भी गया था वहां, आप लोगों के सामने हमने सबने कहा था कि इनको चेक कराओ, इनको कहीं ना कहीं इनकी कोई नॉर्म्स तो हो। स्टूडेंट कब तक बर्दाश्त करेंगे और कब तक अथॉरिटीज जवाब नहीं देंगी, ये मैं समझता हूँ कि आज हम सबके लिए बहुत ही दुख का टाइम है।
5: जब यूनिवर्सिटी में हॉस्टल ही नहीं है और इस निकेतन पे आपने रखा है, तो और इस निकेतन पे आपने रखा है तो और वो ही छत गिर जाती है, तो सुरक्षित छात्र किसी तरीके से सुरक्षित नहीं है। आपको लिखित रूप में दे देंगे।
0: सियासत अपनी जगह है, मगर ये भी सच है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री बदले, सरकार बदली, लेकिन हालात नहीं बदल पाए हैं। इसे हादसा कह देना, लेकिन ये लापरवाही सीधे सीधे मौत को आमंत्रण देने वाली जैसी है। सवाल ये है कि ऐसे हादसे कब तक होते रहेंगे। दिल्ली से अंशुल सिंह, अरविंद होजा और अनमोल बाली के साथ आज तक ब्यूरो।
6: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

ज्यादा लोगों की मौत का ये घायल, बेसमेंट में खुदाई से हादसे की आशंका। दिल्ली में बिल्डिंग गिरने के बाद राहत का काम जारी, पीएम मोदी ने जताई संवेदना, सीएम रेखा ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, बोली नहीं बचेगा कोई गुनहगार। दिल्ली के एसआरसीसी में पीएम मोदी के संबोधन को लेकर विपक्ष के सवालों पर नितिन नवीन का तंज, कहा प्रधानमंत्री ने नाराज फूफाओं को होम्योपैथी की दवा दी लेकिन इसका असर एलोपैथी वाली हाई एंटीबायोटिक जैसा हुआ। लंदन के कार्यक्रम में शामिल संघ प्रमुख मोहन भागवत, कहा सबको एक मानता है हिंदू विचार, व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन जरूरी। बिहार में उफान पर गंगा, 12 से ज्यादा जिलों में 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, पटना में रिकॉर्ड स्तर पर नदी, गंडक, कोसी और घाघरा नदी भी उफान पर। और अब बड़ी खबर आपको देते हैं, रविवार में दोपहर में दिल्ली में बड़ा हादसा हुआ, सत्यनिकेतन इलाके में एक बहुमंजिला इमारत गिर गई। हादसे के बाद मौके पर राहत बचाव का काम शुरू हुआ और जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।

0: ऐसा हादसा जिसने दिल्ली को हिला के रख दिया, ऐसा हादसा जिसने लोगों के दिलों में खौफ भर दिया। देखिए, दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में दोपहर करीब 1:30 बजे एक इमारत ढह गई। इमारत ढहते ही अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें देखिए, सिर्फ धूल का गुब्बार नजर आ रहा है और साथ में नजर आ रहा है कि कैसे मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है।
1: यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लोकल्स की मदद से जो है यहाँ ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ को भी इस वक्त बुला लिया गया है। एनडीआरएफ की भी एक बटालियन जो है, एक टीम जो है, वो इस वक्त यहाँ पहुंच गई है और अभी धीरे धीरे वो यहाँ पे स्पॉट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि कितनी भारी संख्या में जो यहाँ लोकल्स हैं, वो लोकल जो है यहाँ मदद कर रहे हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं। अभी ये बड़ी मशीन, अभी जो मशीनें हैं, जो कटर्स हैं, हैवी कटर्स हैं, बोल्डर कटर्स हैं, उन्हें भी अभी लेकर के यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो इस वक्त यहाँ आई है। और ये 5 मंजिला इमारत बताई जा रही है। अगर आप तस्वीरों में थोड़ा और क्लैरिटी से देखें यहाँ पर, तो ये देखें आप, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग थी और ये काफी बड़े इलाके में जो है ये पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर एक बॉयज हॉस्टल था और उसे बॉयज हॉस्टल में जो है ये पूरा हादसा हुआ है।
0: बताया जा रहा है कि इस इमारत में पीजी हॉस्टल था। सत्य निकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास बसा प्रमुख छात्र इलाका है। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं, इसी वजह से यहाँ दिन भर छात्रों की आवाजाही रहती है। हालांकि सत्य निकेतन में कुल कितने छात्र रहते हैं इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी बचाव काम चल रहा है, वो भी संभाल कर कि कहीं मलबे में दबे किसी शख्स को नुकसान न पहुंचे।
1: तो यहाँ पे जेसीबी चलाना वो खतरे से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि आखिर कितने लोग फंसे हैं और कौन कौन सी जगह फंसे हैं। अगर जेसीबी से मलबा हटाने के चक्कर में कुछ और लोग जो फंसे हुए हैं, जो शायद इंजर्ड हो, बस उनकी भी जान पर बना सकती है। और इसीलिए जेसीबी का अगर हम देखें तो ज्यादा इस्तेमाल ऐसे सिचुएशंस में नहीं किया जाता। और जो प्रिसाइज हैवी टूल्स होते हैं, जैसे बड़े ड्रिलर्स होते हैं, स्टील कटिंग मशीन्स होती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये पता लग पाए कि कहां लोग फंसे हैं। अभी इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे ये समझ आ गया है कि यहां पर लोग नहीं फंसे हैं, जो बिल्डिंग के बाहर की लोकेशंस हैं, वहां पर अब जेसीबी की कार्रवाई जो है वो शुरू होती हुई दिख रही है। और बिल्डिंग के बाहर जहां गाड़ियों पर जो मलबा गिरा था उनसे अब मलबा हटाना शुरू किया जा रहा है। लेकिन बिल्डिंग जहां पर थी, जहां लोग फंसे हुए हैं, वहां पर अभी जेसीबी नहीं चलेगी। वहां पर अभी मेटल कटर्स चलेंगे, वहां पर अभी जीपीआर लगाया जाएगा, ये पता लगाया जाएगा कि कहां लोग फंसे हैं, और उसके बाद वहां से मैन्युअली डिग करके ही लोगों को निकालना होगा या फिर हैंड यूजेबल मशीन से ही लोगों को निकालना होगा। अगर आप देखें यहां पे अभी भी प्रशासन को बहुत मुश्किलें हो रही हैं लोगों को समझाने में कि ये जगह खाली कर दे, क्योंकि ये जगह अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कहीं से भी मलबा और भी थोड़ा घिसक सकता है और लोगों को इंजरीज हो सकती है और लोगों को चोट आ सकती है।
0: बताया जा रहा है कि इमारत के बेसमेंट में काम चल रहा था, लेकिन अभी सही तौर पर ये नहीं मालूम चल सका कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। अनमोल बाली, अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
2: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता हादसे वाली जगह पर पहुंची और उन्होंने भरोसा दिलाया कि इमारत के मालिक समेत जो भी जिम्मेदार होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा।
3: इस्तेमाल हो रहा है, हमारी टीमें जो है वो पूरी तरीके से काम कर रही है, नीचे ऑक्सीजन भी डाली गई है, कैमरा भी
4: काम कर रहे
3: हैं ना। बच्चों की जान है और कोई भी कल्प्रिट छोड़ा नहीं जाएगा, खास करके ये जिसका मकान है, जो यहाँ पे बिल्डिंग छोड़ के भाग गया, जो कि अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा था, बेसमेंट में खुदाई कर रहा था, और जिसकी वजह से जो पिलर है वो डिसमेंटल हुआ और बिल्डिंग पूरी गिर गई, तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, और जिसके कारण से ये हादसा हुआ है सबको सजा भुगतनी पड़ेगी।
2: जिन लोगों ने इमारत को ढहते हुए देखा वो खौफ ज्यादा है। अब उन लोगों की जुबानी आप सुनिए कि हादसा कैसे हुआ।
5: हॉस्टल डेज नाम की बिल्डिंग है, इसके साथ एक और बिल्डिंग पीजी गिरी है। हॉस्टल डेज तो है, वो बॉयज पीजी है प्रॉपर, 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी ये, एंड इसके साथ बगल वाली बिल्डिंग भी गिरी है, एंड जो ये येल्लो वाली बिल्डिंग है ये दोनों हिल रही थी जब वो गिरी है, तो इन दोनों में भी पीजीज ही है। और इनके एंट्रेंस एक उधर से, एक पीछे की साइड से, दो साइड से एंट्रेंस है, और मलबे के चक्कर में इनका एंट्रेंस भी जहाँ तक है ब्लॉक हो चुका है। और 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी, जितने बच्चे रूम में थे वो तो सारे दब गए हैं, और जो बाहर थे बच्चे उनका पता नहीं है, और जितना भी रजिस्टर में एंट्रीज होंगे उसके हिसाब से ही पता चलेगा आप कितने बच्चे दबे हैं इसमें।
6: कम से कम 40 बच्चों के हताहत होने की खबर है, और ये सत्यनिकेतन में आप जो भी बिल्डिंगें देख रहे हैं सब बिल्डिंगें जर्जर हैं, इनकी कोई ये कभी भी गिर सकती है, इसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार इन बिल्डिंगों की स्थिति देखकर इन्हें सील करे, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, सरकार को बच्चों से शिक्षा से कोई मतलब नहीं है।
7: There will be 20 to 25 such buildings जो आज गिरे, एक महीने बाद गिरे, एक साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी। विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई आधा दिल्ली करता है यहाँ पे, तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन।
8: दिल्ली पुलिस पे है, 1:45 पे दिल्ली पुलिस को फोन किया था, दिल्ली पुलिस 3:15 तक कहाँ थी, और दूसरी बात यहाँ के बिल्डिंग का ओनर कहाँ है।
9: और यहाँ पे जितनी भी पीजीज हैं सब में सीढ़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है, और बच्चों का फायदा उठाया जाता है, साउथ कैंपस के सभी बच्चों का, उनको खाना खराब दिया जाता है और उनकी मजबूरी है पीजीज की।
7: आधे बच्चे गंदे खाने से मर जाते हैं, जो बच रहे हैं वो बिल्डिंग गिरने से मर रहे हैं।
10: 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं जब हमारे सामने बिल्डिंग गिरी थी, तो काफी नीचे मतलब लेबर भी काम कर रही थी, इसमें 7 से 8 लेबर थी जो काम करे जा रही थी। अब उनका भी नहीं पता कि वो निकल पाए थे या नहीं निकल पाए थे, मगर मुझे इतना पता कि बहुत बच्चे हैं इसके नीचे, कम से कम 8-10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, मगर बाकी जितने भी यहाँ के मोहल्ले क्षेत्र के हैं सबने अपने हाथों से मलबा हटा के 4 लोगों को निकाल लिया गया है।
11: हम दुकान के अंदर बैठे थे, हमें एकदम आवाज आई जैसे भूकंप टाइप होता है, 1:30 बजे, हम अंदर इतनी नहीं आई, जो बाहर बच्चे खड़े थे उनके पास आवाज आई, हम फटाफट भाग के आए, यहाँ पे बहुत ज्यादा धुआं वगैरह था, सारी बिल्डिंग गिरी हुई थी, और अभी इन्होंने यहाँ से मजदूर वगैरह निकाल लिए हैं, उनकी डेड बॉडी मिली है, और 4 बच्चे निकाले हैं जिनकी सांसें चल रही थी, वो अभी उनको एम्बुलेंस ले गई है, बट वो मतलब अधमरे की हालत में थे।
2: सत्य निकेतन हादसे में 11 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है, जिनमें से 3 की मौत हो गई है, और 5 मंजिला जब इमारत गिरी तो आसपास के लोगों को लगा मानो भूकंप आ गया हो।

दिल्ली में कितनी इमारतें इस तरह हादसे के इंतजार में, आखिर कितने बेकसूर छात्रों की जिंदगी ज्यादा किराए के लालच में इस तरह दांव पर लगाई जाती रहेंगी। दिल्ली में लगातार हो रहे इन हादसों की जिम्मेदारी कब और कैसे तय होगी? दिल्ली का सत्य निकेतन इलाका जहां 5 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया, पहली नजर में ये आपको हादसा लग सकता है, लेकिन ये हादसा नहीं बल्कि लालच और लापरवाही के

0: वाला कोई न हो। बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भरा होने के बावजूद काम किया जा रहा, जबकि हादसे के वक्त छात्र कमरों में मौजूद थे। तो अब आप ही बताइए, क्या इसे हादसा कहना ठीक होगा?
1: यहाँ पर लिमिट ही खाली 2 या 3 फ्लोर्स के, बट इन लोगों ने 5 फ्लोर्स बनवा रखे थे। इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, नीचे बेसमेंट में काम चल रहा था, उसकी वजह से बिल्डिंग गिरी है। मैं उस टाइम पे अपना खाना ही खा रहा था, एकदम से सोफा हिलने लगा, प्रॉपर फील हुआ कि अर्थक्वेक आया। पर बाहर आके देखा तो धुआं वो आ रखा, तो फिर पता लगा कि बिल्डिंग गिरी है।
2: लेवर लगी हुई थी सर, नीचे बेसमेंट में काम कर रहे थे सुबह।
3: अच्छा,
2: जब मैं मार्केट में आया तो मैंने देखा तो लेवर काम कर रही थी, और यहाँ पर दो कारपेंटर काम कर रहे थे।
3: अच्छा,
2: जब मैं मार्केट से होकर फिर मैं सीधा घर चला गया था, उसके बाद पता लगा तो ये बिल्डिंग गिरी है।
0: इस हादसे ने देश की राजधानी को एक बार फिर हिला दिया है। लोग डरे हुए हैं, क्योंकि वो जिन इमारतों में रह रहे हैं उनका भी ऐसा ही अंजाम हो सकता है, जैसा दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में दोपहर करीब 1:30 बजे इस इमारत के साथ हुआ।
4: क्या हालत थी? बेसमेंट में कोई काम चल रहा
5: था? बेसमेंट में काम चल रहा था, 2 दिन से पानी भरा हुआ था, और इसका क्या था कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, और आप कह सकते हो कि इलीगली है, क्योंकि यहाँ पे अलाउड है कि आप 3 मंजिल से लेके 5-4 मंजिल तक कर सकते हो, मगर यहाँ ये बिल्डिंग थी 5वीं मंजिल तक।
4: अच्छा।
5: और मैक्सिमम स्टूडेंट थे, पीजी थे, और एक पीजी में 3 और 4 ही बच्चे रहते थे। और संडे की वजह से स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे चाय की दुकान है, ब्रेड बटर लेने आते हैं। ये बिल्डिंग इस वजह से भी, अब हम प्रे करते हैं कि कोई नुकसान ना हो।
4: अभी बिल्डिंग का बेसमेंट में
5: काम चल रहा था पानी।
4: ये जो 40-50 साल, ये दिल्ली पुलिस आधिकारिक बयान दे रही है, 40-50 साल पुरानी बिल्डिंग थी, 5 मंजिला थी, बेसमेंट था उसमें, और बेसमेंट में काम चल रहा था, सीधे सीधे जो छात्र हैं जिसमें रह रहे थे उन सबकी जिंदगी दांव पर लगा दी बिल्डिंग के मालिक ने, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में।
0: इमारत ढहते ही यहां अफरा तफरी मच गई, धूल के गुब्बार में पूरे इलाके को घेर लिया।
6: मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लोकल्स की मदद से जो है यहाँ ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ को भी इस वक्त बुला लिया गया है, एनडीआरएफ की भी एक बटालियन जो है, एक टीम जो है वो इस वक्त यहाँ पहुंच गई है, और अभी धीरे धीरे वो यहाँ पे स्पॉट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि कितनी भारी संख्या में जो यहाँ लोकल्स हैं, वो लोकल जो है यहाँ मदद कर रहे हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं। अभी ये बड़ी मशीन, अभी जो मशीनें हैं, जो कटर्स हैं, हैवी कटर्स हैं, बोल्डर कटर्स हैं, उन्हें भी अभी लेकर के यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो इस वक्त यहाँ आई है। और ये 5 मंजिला इमारत बताई जा रही है, अगर आप तस्वीरों में थोड़ा और क्लैरिटी से देखें यहाँ पर, तो ये देखें आप, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, और ये काफी बड़े इलाके में जो है ये पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर एक बॉयज हॉस्टल था, और उसे बॉयज हॉस्टल में जो है ये पूरा हादसा हुआ है।
0: बिल्डिंग गिरने के बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, कुछ हथौड़े से मलबा हटाने लगे।
4: किस तरीके से रेस्क्यू जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है, ये एक गाड़ी है जो कि बिल्डिंग के पास खड़ी थी, जब बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो उसकी हालत देखिए कि किस तरीके से इस पूरी गाड़ी के ऊपर बिल्डिंग का जो मलबा है वो भर भरा करके गिरा, पूरी गाड़ी जो है वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। अब इसको जेसीबी की मदद से जो है वो यहाँ से हटाया जा रहा है। आप ये समझिए कि जब मैं ये समझाने की कोशिश इसलिए भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये तस्वीरें देखने के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो मलबा, सोचिए उस बिल्डिंग के अंदर कई सारे लोग थे, और उनकी हालत क्या रही होगी जब ये बिल्डिंग पूरी तरीके से कोलैप्स हुई, जब गाड़ी की हालत इस तरीके की है।
0: सत्य निकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास बसा प्रमुख छात्र इलाका है, यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं। इलाके में कई छात्र आवास,
6: जेसीबी की अगर बात करें तो यहाँ पे जेसीबी चलाना वो खतरे से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि आखिर कितने लोग फंसे हैं और कौन कौन सी जगह फंसे हैं। अगर जेसीबी से मलबा हटाने के चक्कर में कुछ और लोग जो फंसे हुए हैं, जो शायद इंजर्ड हो, बस उनकी भी जान पर बना सकती है, और इसीलिए जेसीबी का अगर हम देखें तो ज्यादा इस्तेमाल ऐसे सिचुएशंस में नहीं किया जाता। और जो प्रिसाइज हैवी टूल्स होते हैं, जैसे बड़े ड्रिलर्स होते हैं, स्टील कटिंग मशीन्स होती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ये पता लग पाए कि कहां कहां लोग फंसे हैं। अभी इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे ये समझ आ गया है कि यहां पर लोग नहीं फंसे हैं, जो बिल्डिंग के बाहर की लोकेशंस हैं वहां पर अब जेसीबी की कार्रवाई जो है वो शुरू होती हुई दिख रही है, और बिल्डिंग के बाहर जहां गाड़ियों पर जो मलबा गिरा था उनसे अब मलबा हटाना शुरू किया जा रहा है। लेकिन बिल्डिंग जहां पर थी, जहां लोग फंसे हुए हैं, वहां पर अभी जेसीबी नहीं चलेगी, वहां पर अभी

0: दिल कटस चलेंगे वहां पर, अभी GPR लगाया जाएगा, ये पता लगाया जाएगा कि कहां कहां लोग फंसे हैं और उसके बाद वहां से मैन्युअली डिक करके ही लोगों को निकालना होगा या फिर हैंड यूजेबल मशीन से ही लोगों को निकालना होगा। अगर आप देखें यहां पे अभी भी प्रशासन को बहुत मुश्किलें हो रही हैं लोगों को समझाने में कि ये जगह खाली कर दे, क्योंकि ये जगह अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है, कहीं से भी मलबा और भी थोड़ा घिसक सकता है और लोगों को इंजरीज हो सकती है और लोगों को चोट आ सकती है।
1: इस इमारत को लेकर सवाल ये है कि क्या इस बिल्डिंग का नक्शा पास था? 5 मंजिला इमारत बनाने की अगर अनुमति नहीं थी तो इसे रोका क्यों नहीं गया? 40 साल पुरानी इमारत में छात्रों को रहते बेसमेंट में काम की इजाजत कैसे दी गई? अनमोल बाली अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
2: ये इमारत 50 साल पुरानी बताई जा रही है और इसके बेसमेंट में काम चल रहा था। इसका मालिक आनंद बंसल, जो कि गुरुग्राम का रहने वाला, इस समय फरार है और बताया जा रहा है कि मेडिकल शॉप भी वहां पर चलती थी और इस इमारत में 10 कमरे थे।
1: दिल्ली में हादसों की वजह बनने वाली गैर कानूनी इमारत पर समय रहते लगाम क्यों नहीं लगाई जाती? आखिर हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जाता? दिल्ली के जिस सत्य निकेतन में यह हादसा हुआ, वहां बड़ी संख्या में PG, रेंटेड रूम और हॉस्टल चलते हैं। यहां पर कितनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हादसे के बाद इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि रेस्क्यू करना मुश्किल हो गया। जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हादसे की जगह पहुंची तो उन्हें घटनास्थल का जायजा लेने के लिए दूसरी इमारत के ऊपर मंजिल का सहारा लेना पड़ा। अगर इलाके की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यहाँ छोटी छोटी गलियां हैं और घनी आबादी के बीच कई बहुमंजिला मकान मौजूद हैं। ऐसे ही एक इमारत गिरने से छात्र दब गए। मलबे में फंसे छात्र ने ये वीडियो बनाया जिसमें दबे हुए छात्र दिखाई दे रहे हैं। वहीं कई मलबे में दबे छात्रों ने फोन कर मदद मांगी। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब दिल्ली में इस तरह का हादसा हुआ हो। राजधानी दिल्ली में कई जगह ऐसे ही PG संचालित हो रहे हैं। कई जगह ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन नियमों की अनदेखी रहती है। दिल्ली में नियमों की अनदेखी और प्रशासन की बेरुखी की वजह से पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं। कुछ महीने पहले दिल्ली के मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग ने भयावह रूप ले लिया था और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी।
3: अगर आप नीचे बेसमेंट को, ये क्या है कि हवस है पैसे कमाने की, PG ही हो चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकोमोडेट करना, ज्यादा से ज्यादा भर्ती करना, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना, ये जो हवस है। राजेंद्र नगर में बेसमेंट को यूज कर रहे थे, वो हवस वो भी वही है। ये पीजी का भी मसला यही है। और अभी 3 महीने पहले अगर आपको ध्यान हो तो सैदुलाजाब में 5 बच्चे इंजीनियरिंग और डॉक्टरी जो कर रहे थे वो मर गए। तो ये दरअसल क्या है कि ये एक तो ये हवस जो बन गई है कि ज्यादा से ज्यादा माल, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हो, चाहे पीजी वाले हो, चाहे जितने भी है, ये किराए पे देने के, एक एक डब्बे का कमरे का मकान बना देते हैं, किराए पे दे देते हैं।
1: बेसमेंट की वजह से छात्रों की जान जाते हुए देश ने साल 2024 में देखा, जब ओल्ड राजेंद्र नगर में राउज IAS सर्किल के बेसमेंट में पानी भरने से 3 UPSC छात्रों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया गया। जब इसी साल जून के महीने में आज तक ने वहां जाकर पड़ताल की तो हमें बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लाइब्रेरी मिली।
4: एक लंबे वक्त से ये सिलसिला चलता हुआ चला आ रहा है। आप किसी भी दिल्ली के लोगों से पूछ लीजिए, जब भी वो कोई बिल्डिंग गिराएंगे तुरंत वहां पर दिल्ली पुलिस का कर्मचारी, MCD का कर्मचारी वहां पर आ जाएगा और उसके बाद फिर सेटिंग करके जरिए, लोकल पार्षद के जरिए सेटिंग करके आप 3 मंजिल की जहां इमारत बननी वहां 5 मंजिल बना लीजिए और उसके बाद फिर हादसा होता है तो फिर सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगते हैं। तो जरूरी है सिस्टम में बड़े स्तर पर सुधार की। ओल्ड राजेंद्र नगर का हादसा आपको याद होगा, वहां पर किस तरीके से कोचिंग में UPSC की तैयारी करने वाले छात्र मर गए, उसके बाद आज तक की टीम ने वहां खुद जाकर बाकायदा रियलिटी चेक किया, खुद मुझ पर अटैक हुआ लेकिन वहां कोई बदलाव नहीं आया।
2: दिल्ली में इमारत के ढहने की न तो ये कोई पहली घटना है न ही अंतिम। ठीक दो महीने पहले 8 जुलाई को रोहिणी के सेक्टर 16 में भी इमारत गिरी थी, 4 मंजिला अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिरी थी, उसके बाद भी अधिकारियों ने कहा लेकिन दिल्ली की तस्वीर नहीं बदली, एक और हादसा हो गया।
1: दिल्ली के सत्य निकेतन में हादसे के बाद राजधानी में घर बनाने के नियमों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बने हुए घर के नीचे बेसमेंट बनाया जा सकता है, क्या इसके लिए कोई कानूनी अनुमति लेनी होगी, और अगर बिना अनुमति के बेसमेंट बना दिया तो क्या कार्रवाई हो सकती है, ये किसकी जिम्मेदारी थी।
4: दिल्ली के जो मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा वक्त का हो चुका है, बड़ी बात यह है कि वो खुद भी यहाँ पर जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको संचालित होते हुए देख रही है, एक बड़ी बात है, तारीफ की बात है, लेकिन यहाँ खड़े होकर वो ये भी देखे कि आसपास कितने अवैध पीजी चल रहे हैं। मैंने कई छात्रों से कुछ देर पहले बात की है, उन पर शिकंजा कसा जाए, अधिकारियों को सख्त ऑर्डर दिया जाए कि खास तौर से जो अवैध पीजी चल रहे हैं, कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, वहां पर क्या एनओसी है क्या या नहीं है, किस तरह से सुरक्षा के मानकों का वहां अनदेखी की जा रही है, वो तमाम चीजें देखने की जरूरत है, वरना इस तरह के हादसों को रोका जाना काफी मुश्किल होगा। देखिए ऑन रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस ये कह चुकी है कि 40 से 50 साल ये पुरानी इमारत थी जिसमें पीजी का काम चल रहा था।
1: दिल्ली में इस तरह के हादसे समय समय पर सामने आते रहते हैं, जब हादसा होता है तो MCD समेत संबंधित एजेंसियों पर सवाल उठता है, लेकिन मामला ठंडा पड़ते ही सब कुछ पहले की तरह होने लगता है, जबकि सिस्टम में कमियों की बात मेयर पद पर बैठे लोग भी कबूलते हैं।
5: चाहते हैं कि बच्चे उसमें बच जाएं, पहले रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट है, सभी जायज आपके इस समय सभी जायज है, बहुत कमियां हैं सिस्टम में, बहुत कमियां मैं मानता हूं, लेकिन पहले अभी रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।
1: दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत इसलिए गिरी क्योंकि उसके बेसमेंट में काम चल रहा था, सवाल यह है कि क्या काम चलने से नींव कमजोर हुई और इमारत गिर गई।
4: ये जरूरी हो जाता है कि कम से कम जो जो जो जहां छात्र रहते हो, जो पीजी है, जो गर्ल्स हॉस्टल है, जो बॉयज हॉस्टल है, जो कोचिंग है, कम से कम वहां पर जो कंसर्न अधिकारी है, जो MCD के अधिकारी है, वो जाएं, जाकर देखें कि वहां पर छात्र किस तरह से पढ़ाई करते हैं, किस तरह से रहते हैं। वहां पर NOC नहीं है, फायर की NOC नहीं है, कई जगह पर MCD की NOC नहीं है, और धड़ल्ले से अवैध तरीके से वहां पर लोग रह रहे हैं, और बारिश होती है, जरा सी बारिश दिल्ली में हो जाती है तो आप सुनते होंगे कि दिल्ली में बिल्डिंग गिर गई, अगर आग लग जाती है तो उस बिल्डिंग में लोग फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। यहां पर
1: दिल्ली में बेसमेंट बनाने के लिए संबंधित अथॉरिटी से संशोधित बिल्डिंग प्लान की मंजूरी की जरूरत होती है, लेकिन अगर घर पहले बना हो तो उसके नीचे बेसमेंट में काम करने की छूट तो बहुत देखरेख के बाद ही दी जाती है, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ होता नहीं दिखता।
6: पीजी का काम चल रहा
7: है, नहीं ये पीजी तो बना हुआ था ऑलरेडी, पुरानी बिल्डिंग थी ये, इसमें पीजी तो था, वो पीजी वाले तो लंच करने बच्चे चले गए, संडे का दिन था ना, तो लंच करने दूसरी मैस में चले गए, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता।
8: अपना घूम के एक बार पूरे सत्या में देख लो, दे विल बी 20 to 25 सच बिल्डिंग्स जो आज गिरे, एक महीने बाद गिरे, एक साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी। विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई आधा दलाली करता है यहाँ पे, तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन।
9: जितनी भी पीजीज हैं सब में सीढ़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है और बच्चों का फायदा उठाया जाता है, साउथ कैंपस के सभी बच्चों का।
1: दिल्ली में ऐसे हादसे तब तक होते रहेंगे जब तक अवैध निर्माण पर लगाम नहीं लगती। दिल्ली में 75 लाख इमारतें बताई जाती है, दुर्भाग्य ये है कि चंद इमारतें ही सभी नियमों को पूरा करे हुए बनी है, इसलिए एक्सपर्ट की मांग है कि सरकार बाकी इमारतों को लेकर अभियान चलाए, क्योंकि 40 से 50 साल पुरानी हो चुकी इमारतों की दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या है।
10: जो इस बिल्डिंग का ओनर था, क्या उसको एक दिन के लिए भी, एक मिनट के लिए भी ये सोच नहीं आई कि वहां पे लोग निवासी अभी भी हैं? एटलीस्ट बिल्डिंग को खाली किया जाता, और जो हम बात करते हैं कि JEE आके इंस्पेक्ट कर ले, हमारे JEE बाय द वे कितने एजुकेटेड है इस मामले में कि वो आके को ढंग का इंस्पेक्ट भी करते, वो तो किसी और वजह से वहां पे आते और अपनी वो वजह पूरी करके निकल जाते वहां से। तो ये सारा सिस्टमिक चेंज जो हमें चाहिए, विकसित भारत बनाने के लिए एक सिस्टमिक चेंज की जरूरत है।
2: दिल्ली में हुए हादसे के बाद राजनीतिक दलों के नेताओं ने दुख जताया है। गोवा में गृहमंत्री शाह ने अपने कार्यक्रम को रोका तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी हादसे पर दुख जताया, और विपक्ष अब सरकार पर हमलावर है।

0: ऐसा भयानक हादसा जिसने दिल्ली को दहला दिया। जैसे ही खबर आई कि सत्य निकेतन में एक ऐसी इमारत जमींदोज हो गई है जिसमें छात्र रहा करते थे, तो पूरी दिल्ली में हड़कंप मच गया। गृह मंत्री अमित शाह गोवा में थे, वो बीजेपी के नए ऑफिस इनॉग्रेशन सेरेमनी में थे, लेकिन जैसे ही उन्हें हादसे की जानकारी हुई उन्होंने अपना कार्यक्रम रोक दिया। अमित शाह ने हादसे पर दुख जताया है।
1: एक समाचार है, एक दुखद घटना हुई है और उस दुखद घटना का समाचार सुनने के बाद हमारे देश के गृह मंत्री ने तुरंत निर्णय ले लिया कि ये कार्यक्रम यहां तक सीमित करके खत्म।
0: घटना बड़ी थी और तकलीफी हादसे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दुख जताया और हादसे वाली जगह पहुंची। एमसीडी के मेयर भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी हालातों का जायजा लिया है।
2: देखिए, हम तो चाहते हैं कि बच्चे उसमें बच जाएं। पहले रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट है। सभी जायजा आपके इस समय सभी जायजा बहुत कमियां हैं, सिस्टम में बहुत कमियां मैं मानता हूं, लेकिन पहले अभी रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।
0: अब इस हादसे पर विपक्ष हमलावर है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दिल्ली में सरकार की लापरवाही के कारण अब तक कई हादसे हो चुके हैं, सरकार को नींद से जागना होगा, बड़े स्तर पर एक्शन लेकर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी के भ्रष्टाचार का नतीजा है।
3: देखिए, मेरे को जो आसपास के रहने वाले लोगों ने बताया है कि पीजी के अंदर करीब 30 से 40 नौजवान बच्चे फंसे हुए हैं इस मलबे में, और आज से कुछ समय पहले की बात है जब साकेत सैजुला जाब में 4 मंजिल की इमारत गिरी तो कहा गया कि हम दिल्ली की सब बिल्डिंगों की ऑडिट कराएंगे, जो पैसा नहीं देता उसकी बिल्डिंग को सील कर देते हैं, पैसे की मांडवाली होती है, एक हफ्ते बाद बिल्डिंग को डी सील कर दिया जाता है। अभी क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। अभी रेखा गुप्ता कहेंगी हम बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं, आशीष सूद अलग कहेंगे हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, और क्या करेंगे बता देता हूं। एक जेई को सस्पेंड करेंगे और एक एई को सस्पेंड करेंगे और 15 दिन बाद उनको चुपचाप बहाल भी कर देंगे।
0: कांग्रेस भी सवाल पूछ रही है कि आखिर देश में छात्र सुरक्षित क्यों नहीं है।
4: जी चल रहे ये बिल्कुल कोई इनकी कोई वो कोई किसी तरह का मापदंड नहीं है। एमसीडी क्या कर रही है, एनडीएमसी क्या कर रही है, यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, अथॉरिटीज क्या, कब तक जवाब नहीं देंगी। सारी अभी भी आप चेक कर लो, ये आसपास पीजी हैं सारी, आप चेक कर लो। उस टाइम भी हमने मैं भी गया था वहां आप लोगों के सामने, हमने सबने कहा था कि इनको चेक कराओ, इनको कहीं ना कहीं इनकी कोई नॉर्म्स तो हो, स्टूडेंट कब तक बर्दाश्त करेंगे और कब तक अथॉरिटीज जवाब नहीं देंगी। ये मैं समझता हूं कि आज हम सबके लिए बहुत ही दुख का टाइम है।
5: जब यूनिवर्सिटी में हॉस्टल ही नहीं है और इस निकेतन पे आपने रखा है तो और वो वही छत गिर जाती है तो सुरक्षित छात्र किसी तरीके से सुरक्षित नहीं है, और बड़ी दुख की बात है। तो प्रधानमंत्री जी ऐसा करिए, हमें एक दिन आप कुछ अपना वक्त दे दीजिए, हम रिपोर्ट कार्ड लिख के आपको लिखित रूप में दे देंगे।
0: सियासत अपनी जगह है, मगर ये भी सच है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री बदले, सरकार बदली, लेकिन हालात नहीं बदल पाए हैं। इसे हादसा कह देना, लेकिन ये लापरवाही सीधे सीधे मौत को आमंत्रण देने वाली जैसी है। सवाल ये है कि ऐसे हादसे कब तक होते रहेंगे। दिल्ली से अंशुल सिंह, अरविंद होजा और अनमोल बाली के साथ आज तक ब्यूरो।
6: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

इलाके में 5 मंजिला इमारत गिरी, 4 से ज्यादा लोगों की मौत, कई घायल, बेसमेंट में खुदाई से हादसे की आशंका। दिल्ली में बिल्डिंग गिरने के बाद राहत का काम जारी, पीएम मोदी ने जताई संवेदना, सीएम रेखा ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, बोले नहीं बचेगा कोई गुनहगार। दिल्ली के एसआरसीसी में पीएम मोदी के संबोधन को लेकर विपक्ष के सवालों पर नितिन नवीन का तंज, कहा प्रधानमंत्री ने नाराज फूफाओं को होम्योपैथी की दवा दी लेकिन इसका असर एलोपैथी वाली हाई एंटीबायोटिक जैसा हुआ। लंदन के कार्यक्रम में शामिल संघ प्रमुख मोहन भागवत, कहा सबको एक मानता है हिंदू विचार, व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन जरूरी। बिहार में उफान पर गंगा, 12 से ज्यादा जिलों में 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, पटना में रिकॉर्ड स्तर पर नदी, गंडक, कोसी और घाघरा नदी भी उफान पर। और अब बड़ी खबर आपको देते हैं, रविवार में दोपहर में दिल्ली में बड़ा हादसा हुआ, सत्यनिकेतन इलाके में एक बहुमंजिला इमारत गिर गई। हादसे के बाद मौके पर राहत बचाव का काम शुरू हुआ और जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।

0: ऐसा हादसा जिसने दिल्ली को हिला के रख दिया, ऐसा हादसा जिसने लोगों के दिलों में खौफ भर दिया। देखिए, दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में दोपहर करीब 1:30 बजे एक इमारत ढह गई। इमारत ढहते ही अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें देखिए, सिर्फ धूल का गुब्बार नजर आ रहा है और साथ में नजर आ रहा है कि कैसे मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है।
1: यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लोकल्स की मदद से जो है यहाँ ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ को भी इस वक्त बुला लिया गया है। एनडीआरएफ की भी एक बटालियन जो है, एक टीम जो है, वो इस वक्त यहाँ पहुंच गई है और अभी धीरे धीरे वो यहाँ पे स्पॉट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि कितनी भारी संख्या में जो यहाँ लोकल्स हैं, वो लोकल जो है यहाँ मदद कर रहे हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं। अभी ये बड़ी मशीन, अभी जो मशीनें हैं, जो कटर्स हैं, हैवी कटर्स हैं, बोल्डर कटर्स हैं, उन्हें भी अभी लेकर के यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो इस वक्त यहाँ आई है। और ये 5 मंजिला इमारत बताई जा रही है। अगर आप तस्वीरों में थोड़ा और क्लैरिटी से देखें यहाँ पर, तो ये देखें आप, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग थी और ये काफी बड़े इलाके में जो है ये पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक बॉयज हॉस्टल था और उसे बॉयज हॉस्टल में जो है ये पूरा हादसा हुआ है।
0: बताया जा रहा है कि इस इमारत में पीजी हॉस्टल था। सत्य निकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास बसा प्रमुख छात्र इलाका है। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं, इसी वजह से यहाँ दिन भर छात्रों की आवाज आई रहती है। हालांकि सत्य निकेतन में कुल कितने छात्र रहते हैं इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी बचाव काम चल रहा है, वो भी संभाल कर कि कहीं मलबे में दबे किसी शख्स को नुकसान न पहुंचे।
1: तो यहाँ पे जेसीबी चलाना वो खतरे से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि आखिर कितने लोग फंसे हैं और कौन कौन सी जगह फंसे हैं। अगर जेसीबी से मलबा हटाने के चक्कर में कुछ और लोग जो फंसे हुए हैं, जो शायद इंजर्ड हो, बस उनकी भी जान पर बना सकती है। और इसीलिए जेसीबी का अगर हम देखें तो ज्यादा इस्तेमाल ऐसे सिचुएशंस में नहीं किया जाता। और जो प्रिसाइज हैवी टूल्स होते हैं, जैसे बड़े ड्रिलर्स होते हैं, स्टील कटिंग मशीन्स होती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये पता लग पाए कि कहां कहां लोग फंसे हैं। अभी इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे ये समझ आ गया है कि यहां पर लोग नहीं फंसे हैं, जो बिल्डिंग के बाहर की लोकेशंस हैं, वहां पर अब जेसीबी की कार्रवाई जो है वो शुरू होती हुई दिख रही है। और बिल्डिंग के बाहर जहां गाड़ियों पर जो मलबा गिरा था उनसे अब मलबा हटाना शुरू किया जा रहा है। लेकिन बिल्डिंग जहां पर थी, जहां लोग फंसे हुए हैं, वहां पर अभी जेसीबी नहीं चलेगी। वहां पर अभी मेटल कटर्स चलेंगे, वहां पर अभी जीपीआर लगाया जाएगा, ये पता लगाया जाएगा कि कहां कहां लोग फंसे हैं, और उसके बाद वहां से मैन्युअली डिग करके ही लोगों को निकालना होगा या फिर हैंड यूजेबल मशीन से ही लोगों को निकालना होगा। अगर आप देखें यहां पे अभी भी प्रशासन को बहुत मुश्किलें हो रही हैं लोगों को समझाने में कि ये जगह खाली कर दे, क्योंकि ये जगह अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कहीं से भी मलबा और भी थोड़ा घिसक सकता है और लोगों को इंजरीज हो सकती है और लोगों को चोट आ सकती है।
0: बताया जा रहा है कि इमारत के बेसमेंट में काम चल रहा था, लेकिन अभी सही तौर पर ये नहीं मालूम चल सका कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। अनमोल बाली, अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
2: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता हादसे वाली जगह पर पहुंची और उन्होंने भरोसा दिलाया कि इमारत के मालिक समेत जो भी जिम्मेदार होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा।
3: इस्तेमाल हो रहा है, हमारी टीमें जो है वो पूरी तरीके से काम कर रही है, नीचे ऑक्सीजन भी डाली गई है, कैमरा भी
4: काम कर रहे हैं ना,
3: बच्चों की जान है और कोई भी कल्प्रिट छोड़ा नहीं जाएगा। खास करके ये जिसका मकान है, जो यहाँ पे बिल्डिंग छोड़ के भाग गया, जो कि अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा था, बेसमेंट में खुदाई कर रहा था, और जिसकी वजह से जो पिलर है वो डिसमेंटल हुआ और बिल्डिंग पूरी गिर गई, तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, और जिसके कारण से ये हादसा हुआ है सबको सजा भुगतनी पड़ेगी।
2: जिन लोगों ने इमारत को ढहते हुए देखा वो खौफजदा हैं। अब उन लोगों की जुबानी आप सुनिए कि हादसा कैसे हुआ।
5: हॉस्टल डेज नाम की बिल्डिंग है, इसके साथ एक और बिल्डिंग पीजी गिरी है। हॉस्टल डेज तो है, वो बॉयज पीजी है प्रॉपर। 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी ये, एंड इसके साथ बगल वाली बिल्डिंग भी गिरी है, एंड जो ये येलो वाली बिल्डिंग है ये दोनों हिल रही थी जब वो गिरी है। तो इन दोनों में भी पीजीज ही है और इनके एंट्रेंस एक उधर से, एक पीछे की साइड से, दो साइड से एंट्रेंस है। और मलबे के चक्कर में इनका एंट्रेंस भी जहाँ तक है ब्लॉक हो चुका है। और 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी, जितने बच्चे रूम में थे वो तो सारे दब गए हैं, और जो बाहर थे बच्चे उनका पता नहीं है, और जितना भी रजिस्टर में एंट्रीज होंगे उसके हिसाब से ही पता चलेगा अब कितने बच्चे दबे हैं इसमें।
6: कम से कम 40 बच्चों के हताहत होने की खबर है, और ये सत्यनिकेतन में आप जो भी बिल्डिंगें देख रहे हैं सब बिल्डिंगें जर्जर, इनकी कोई ये कभी भी गिर सकती है, इसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार इन बिल्डिंगों की स्थिति देखकर इन्हें सील करे, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, सरकार को बच्चों से शिक्षा से कोई मतलब नहीं है।
7: There will be 20 to 25 such buildings, जो आज गिरे, एक महीने बाद गिरे, एक साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी। विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई ही आधा दिल्ली करता है यहाँ पे, तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन।
8: दिल्ली पुलिस पे है, 1:45 पे दिल्ली पुलिस को फोन किया था, दिल्ली पुलिस 3:15 तक कहाँ थी, और दूसरी बात यहाँ के बिल्डिंग का ओनर कहाँ है।
9: और यहाँ पे जितनी भी पीजीज हैं सब में सीढ़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है, और बच्चों का फायदा उठाया जाता है, साउथ कैंपस के सभी बच्चों का, उनको खाना खराब दिया जाता है, और उनकी मजबूरी है पीजीज की।
7: आगे बच्चे गंदे खाने से मर जाते हैं, जो बच रहे हैं वो बिल्डिंग गिरने से मर रहे हैं।
10: 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं जब हमारे सामने बिल्डिंग गिरी थी, तो काफी नीचे मतलब लेबर भी काम कर रही थी, इसमें 7 से 8 लेबर थी जो काम करे जा रही थी। अब उनका भी नहीं पता कि वो निकल पाए थे या नहीं निकल पाए थे, मगर मुझे इतना पता कि बहुत बच्चे हैं इसके नीचे, कम से कम 8-10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, मगर बाकी जितने भी यहाँ के मोहल्ले क्षेत्र के हैं सबने अपने हाथों से मलबा हटा के 4 लोगों को निकाल लिया गया है।
11: हम दुकान के अंदर बैठे थे, हमें एकदम आवाज आई जैसे भूकंप टाइप होता है, 1:30 बजे, हम अंदर इतनी नहीं आई, जो बाहर बच्चे खड़े थे उनके पास आवाज आई, हम फटाफट भाग के आए। यहाँ पे बहुत ज्यादा धुआं वगैरह था, सारी बिल्डिंग गिरी हुई थी, और अभी इन्होंने यहाँ से मजदूर वगैरह निकाले हैं, उनकी डेड बॉडी मिली, और 4 बच्चे निकाले हैं जिनकी सांसें चल रही थी, वो अभी उनको एम्बुलेंस ले गई है, बट वो मतलब अधमरे की हालत में थे।
2: सत्यनिकेतन हादसे में 11 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है, जिनमें से 3 की मौत हो गई है, और 5 मंजिला जब इमारत गिरी तो आसपास के लोगों को लगा मानो भूकंप आ गया हो।

0: दिल्ली में कितनी इमारतें इस तरह हादसे के इंतजार में, आखिर कितने बेकसूर छात्रों की जिंदगी ज्यादा किराए के लालच में इस तरह दांव पर लगाई जाती रहेंगी। दिल्ली में लगातार हो रहे इन हादसों की जिम्मेदारी कब और कैसे तय होगी? दिल्ली का सत्य निकेतन इलाका जहां 5 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया, पहली नजर में ये आपको हादसा लग सकता है, लेकिन ये हादसा नहीं बल्कि लालच और लापरवाही के कॉकटेल का नतीजा है। क्योंकि जब 40 साल पुरानी इमारत को 3 की जगह 5 मंजिल तक अवैध बना दिया जाए, 40 साल पुरानी इमारत की जांच करने वाला कोई न हो, बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भरा होने के बावजूद काम किया जा रहा, जबकि हादसे के वक्त छात्र कमरों में मौजूद थे, तो अब आप ही बताइए क्या इसे हादसा कहना ठीक होगा?
1: यहाँ पर लिमिट ही खाली 2 या 3 फ्लोर्स के, बट इन लोगों ने 5 फ्लोर्स बनवा रखे थे। इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, नीचे बेसमेंट में काम चल रहा था, उसकी वजह से बिल्डिंग गिरी है। मैं उस टाइम पे अपना खाना ही खा रहा था, एकदम से सोफा हिलने लगा, प्रॉपर फील हुआ कि अर्थक्वेक आया, पर बाहर आके देखा तो धुआं वो हो रखा, तो फिर पता लगा कि बिल्डिंग गिरी है।
2: लेवर लगी हुई थी सर, नीचे बेसमेंट में काम कर रहे थे सुबह।
3: अच्छा।
2: जब मैं मार्केट में आया तो मैंने देखा तो लेवर काम कर रही थी, प्लस यहाँ पर 2 कारपेंटर काम कर रहे थे।
3: अच्छा।
2: जब मैं मार्केट से होकर फिर मैं सीधा घर चला गया था, उसके बाद पता लगा तो ये बिल्डिंग गिरी है।
0: इस हादसे ने देश की राजधानी को एक बार फिर हिला दिया है। लोग डरे हुए हैं क्योंकि वो जिन इमारतों में रह रहे हैं उनका भी ऐसा ही अंजाम हो सकता है, जैसा दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में दोपहर करीब 1:30 बजे इस इमारत के साथ हुआ।
4: क्या हालत थी? बेसमेंट में कोई काम चल रहा
5: था? बेसमेंट में काम चल रहा था, 2 दिन से पानी भरा हुआ था, और इसका क्या था कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, और आप कह सकते हो कि इलीगली है, क्योंकि यहाँ पे अलाउड है कि आप 3 मंजिल से लेके 4 मंजिल तक कर सकते हो, मगर यहाँ ये बिल्डिंग थी 5वीं मंजिल तक।
4: अच्छा।
5: और मैक्सिमम स्टूडेंट थे, पीजीस थे, और एक पीजीस में 3 और 4 ही बच्चे रहते थे। संडे की वजह से स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे चाय की दुकान है, ब्रेड बटर लेने आते हैं। ये बिल्डिंग इस वजह से भी, अब हम प्रे करते कि कोई नुकसान ना हो।
4: अभी बिल्डिंग का बेसमेंट में काम चल रहा था
5: पानी।
4: ये जो 40-50 साल ये दिल्ली पुलिस आधिकारिक बयान दे रही है, 40-50 साल पुरानी बिल्डिंग थी, 5 मंजिला थी, बेसमेंट था उसमें, और बेसमेंट में काम चल रहा था, सीधे सीधे जो छात्र हैं जिसमें रह रहे थे उन सबकी जिंदगी दांव पर लगा दी बिल्डिंग के मालिक ने ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में।
0: इमारत ढहते ही यहाँ अफरा तफरी मच गई, धूल के गुब्बार में पूरे इलाके को घेर लिया।
6: मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लोकल्स की मदद से जो है यहाँ ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ को भी इस वक्त बुला लिया गया है, एनडीआरएफ की भी एक बटालियन जो है, एक टीम जो है वो इस वक्त यहाँ पहुंच गई है, और अभी धीरे धीरे वो यहाँ पे स्पॉट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि कितनी भारी संख्या में जो यहाँ लोकल्स हैं, वो लोकल जो है यहाँ मदद कर रहे हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं। अभी ये बड़ी मशीन, अभी जो मशीनें हैं, जो कटर्स हैं, हैवी कटर्स हैं, बोल्डर कटर्स हैं, उन्हें भी अभी लेकर के यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो इस वक्त यहाँ आई है। और ये 5 मंजिला इमारत बताई जा रही है, अगर आप तस्वीरों में थोड़ा और क्लैरिटी से देखें यहाँ पर, तो ये देखें आप, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग थी और ये काफी बड़े इलाके में जो है ये पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर एक बॉयज हॉस्टल था, और उसे बॉयज हॉस्टल में जो है ये पूरा हादसा हुआ है।
0: बिल्डिंग गिरने के बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, कुछ हथौड़े से मलबा हटाने लगे।
4: किस तरीके से रेस्क्यू जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है, ये एक गाड़ी है जो कि बिल्डिंग के पास खड़ी थी, जब बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो उसकी हालत देखिए कि किस तरीके से इस पूरी गाड़ी के ऊपर बिल्डिंग का जो मलबा है वो भर भरा करके गिरा, पूरी गाड़ी जो है वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। अब इसको जेसीबी की मदद से जो है वो यहाँ से हटाया जा रहा है। आप ये समझिए कि जब मैं ये समझाने की कोशिश इसलिए भी कर रहा हूँ कि ये तस्वीरें देखने के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो मलबा, सोचिए उस बिल्डिंग के अंदर कई सारे लोग थे, और उनकी हालत क्या रही होगी जब ये बिल्डिंग पूरी तरीके से कोलैप्स हुई, जब गाड़ी की हालत इस तरीके की है।
0: सत्य निकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास बसा प्रमुख छात्र इलाका है, यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं। इलाके में कई छात्र आवास,
6: जेसीबी की अगर बात करें तो यहाँ पे जेसीबी चलाना वो खतरे से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि आखिर कितने लोग फंसे हैं और कौन कौन सी जगह फंसे हैं। अगर जेसीबी से मलबा हटाने के चक्कर में कुछ और लोग जो फंसे हुए हैं, जो शायद इंजर्ड हो बस, उनकी भी जान पर बना सकती है। और इसीलिए जेसीबी का अगर हम देखें तो ज्यादा इस्तेमाल ऐसे सिचुएशंस में नहीं किया जाता। और जो प्रिसाइज हैवी टूल्स होते हैं, जैसे बड़े ड्रिलर्स होते हैं, स्टील कटिंग मशीन्स होती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये पता लग पाए कि कहां कहां लोग फंसे हैं। अभी इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे ये समझ आ गया है कि यहां पर लोग नहीं फंसे हैं, जो बिल्डिंग के बाहर की लोकेशंस हैं वहां पर अब जेसीबी की कार्रवाई जो है वो शुरू होती हुई दिख रही है। और बिल्डिंग के बाहर जहां गाड़ियों पर जो मलबा गिरा था उनसे अब मलबा हटाना शुरू किया जा रहा है, लेकिन बिल्डिंग जहां पर थी जहां लोग फंसे हुए हैं वहां पर अभी जेसीबी नहीं चलेगी, वहां पर अभी मेटल कटर्स चलेंगे, वहां पर अभी जीपीआर लगाया जाएगा, ये पता लगाया जाएगा कि कहां कहां लोग फंसे हैं, और उसके बाद वहां से मैन्युअली डिक करके ही लोगों को निकालना होगा या फिर हैंड यूजेबल मशीन से ही लोगों को निकालना होगा। अगर आप देखें यहां पे अभी भी प्रशासन को बहुत मुश्किलें हो रही हैं लोगों को समझाने में कि ये जगह खाली कर दे, क्योंकि ये जगह अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कहीं से भी मलबा और भी थोड़ा घिसक सकता है और लोगों को इंजरीज हो सकती है और लोगों को चोट आ सकती है।
0: इस इमारत को लेकर सवाल ये है कि क्या इस बिल्डिंग का नक्शा पास था? 5 मंजिला इमारत बनाने की अगर अनुमति नहीं थी तो इसे रोका क्यों नहीं गया? 40 साल पुरानी इमारत में छात्रों को रहते बेसमेंट में काम की इजाजत कैसे दी गई? अनमोल बाली अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
7: ये इमारत 50 साल पुरानी बताई जा रही है और इसके बेसमेंट में काम चल रहा था। इसका मालिक आनंद बंसल, जो कि गुरुग्राम का रहने वाला, इस समय फरार है और बताया जा रहा है कि मेडिकल शॉप भी वहां पर चलती थी और इस इमारत में 10 कमरे थे।
0: दिल्ली में हादसों की वजह बनने वाली गैर कानूनी इमारत पर समय रहते लगाम क्यों नहीं लगाई जाती? आखिर हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जाता? दिल्ली के जिस सत्य निकेतन में यह हादसा हुआ वहां बड़ी संख्या में पीजी, रेंटेड रूम और हॉस्टल चलते हैं। यहां पर कितनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हादसे के बाद इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि रेस्क्यू करना मुश्किल हो गया। जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हादसे की जगह पहुंची तो उन्हें घटनास्थल का जायजा लेने के लिए दूसरी इमारत के ऊपर मंजिल का सहारा लेना पड़ा। अगर इलाके की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यहाँ छोटी छोटी गलियां हैं और घनी आबादी के बीच कई बहुमंजिला मकान मौजूद हैं। ऐसे ही एक इमारत गिरने से छात्र दब गए। मलबे में फंसे छात्र ने ये वीडियो बनाया जिसमें दबे हुए छात्र दिखाई दे रहे हैं। वहीं कई मलबे में दबे छात्रों ने फोन कर मदद मांगी। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब दिल्ली में इस तरह का हादसा हुआ हो। राजधानी दिल्ली में कई जगह ऐसे ही पीजी संचालित हो रहे हैं। कई जगह ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन नियमों की अनदेखी रहती है। दिल्ली में नियमों की अनदेखी और प्रशासन की बेरुखी की वजह से पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं। कुछ महीने पहले दिल्ली के मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग ने भयावह रूप ले लिया था और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी।
8: अगर आप नीचे बेसमेंट को, ये क्या है कि हवस है पैसे कमाने की, पीजी ही हो चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकोमोडेट करना, ज्यादा से ज्यादा भर्ती करना, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना, ये जो हवस है। राजेंद्र नगर में बेसमेंट को यूज कर रहे थे, वो हवस वो भी वही है। ये पीजी का भी मसला यही है। और अभी 3 महीने पहले अगर आपको ध्यान हो तो सैदुल्ला जाब में 5 बच्चे इंजीनियरिंग और डॉक्टरी जो कर रहे थे वो मर गए। तो ये दरअसल क्या है कि ये एक तो ये हवस जो बन गई है कि ज्यादा से ज्यादा माल, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हो, चाहे पीजी वाले हो, चाहे जितने भी है, ये किराए पे देने के, एक एक डब्बे का कमरे का मकान बना देते हैं, किराए पे दे देते हैं।
0: बेसमेंट की वजह से छात्रों की जान जाते हुए देश ने साल 2024 में देखा, जब ओल्ड राजेंद्र नगर में राउज IAS सर्किल के बेसमेंट में पानी भरने से 3 UPSC छात्रों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया गया। जब इसी साल जून के महीने में आज तक ने वहां जाकर पड़ताल की तो हमें बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लाइब्रेरी मिली।
9: एक लंबे वक्त से ये सिलसिला चलता हुआ चला आ रहा है। आप किसी भी दिल्ली के लोगों से पूछ लीजिए, जब भी वो कोई बिल्डिंग गिराएंगे तुरंत वहां पर दिल्ली पुलिस का कर्मचारी, एमसीडी का कर्मचारी वहां पर आ जाएगा और उसके बाद फिर सेटिंग करके जरिए, लोकल पार्षद के जरिए सेटिंग करके आप 3 मंजिल की जहां इमारत बननी वहां 5 मंजिल बना लीजिए और उसके बाद फिर हादसा होता है तो फिर सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगते हैं। तो जरूरी है सिस्टम में बड़े स्तर पर सुधार की। ओल्ड राजेंद्र नगर का हादसा आपको याद होगा, वहां पर किस तरीके से कोचिंग में यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र मर गए, उसके बाद आज तक की टीम ने वहां खुद जाकर बाकायदा रियलिटी चेक किया, खुद मुझ पर अटैक हुआ लेकिन वहां कोई बदलाव नहीं आया।
7: दिल्ली में इमारत के ढहने की न तो ये कोई पहली घटना है ना ही अंतिम। ठीक 2 महीने पहले 8 जुलाई को रोहिणी के सेक्टर 16 में भी इमारत गिरी थी, 4 मंजिला अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिरी थी, उसके बाद भी अधिकारियों ने कहा लेकिन दिल्ली की तस्वीर नहीं बदली। एक और हादसा हो गया।
0: दिल्ली के सत्य निकेतन में हादसे के बाद राजधानी में घर बनाने के नियमों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बने हुए घर के नीचे बेसमेंट बनाया जा सकता है, क्या इसके लिए कोई कानूनी अनुमति लेनी होगी और अगर बिना अनुमति के बेसमेंट बना दिया तो क्या कार्रवाई हो सकती है, ये किसकी जिम्मेदारी थी।
9: दिल्ली के जो मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है, तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा वक्त का हो चुका है, बड़ी बात यह है कि वो खुद भी यहाँ पर जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको संचालित होते हुए देख रही है, एक बड़ी बात है, तारीफ की बात है, लेकिन यहाँ खड़े होकर वो ये भी देखें कि आसपास कितने अवैध पीजी चल रहे हैं। मैंने कई छात्रों से कुछ देर पहले बात की है, उन पर शिकंजा कसा जाए, अधिकारियों को सख्त ऑर्डर दिया जाए कि खास तौर से जो अवैध पीजी चल रहे हैं, कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, वहां पर क्या एनओसी है क्या या नहीं है, किस तरह से सुरक्षा के मानकों का वहां अनदेखी की जा रही है, वो तमाम चीजें देखने की जरूरत है, वरना इस तरह के हादसों को रोका जाना काफी मुश्किल होगा। देखिए, ऑन रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस ये कह चुकी है कि 40 से 50 साल ये पुरानी इमारत थी जिसमें पीजी का काम चल रहा था।
0: दिल्ली में इस तरह के हादसे समय समय पर सामने आते रहते हैं। जब हादसा होता है तो एमसीडी समेत संबंधित एजेंसियों पर सवाल उठता है, लेकिन मामला ठंडा पड़ते ही सब कुछ पहले की तरह होने लगता है, जबकि सिस्टम में कमियों की बात मेयर पद पर बैठे लोग भी कबूलते हैं।
10: चाहते हैं कि बच्चे उसमें बच जाएं। पहले रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट है, सभी जायज आपके इस समय सभी जायज है, बहुत कमियां हैं सिस्टम में, बहुत कमियां मैं मानता हूं, लेकिन पहले अभी रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।
0: दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत इसलिए गिरी क्योंकि उसके बेसमेंट में काम चल रहा था। सवाल यह है कि क्या काम चलने से नींव कमजोर हुई और इमारत गिर गई।
9: यह जरूरी हो जाता है कि कम से कम जो जो जो जहां छात्र रहते हो, जो पीजी है, जो गर्ल्स हॉस्टल है, जो बॉयज हॉस्टल है, जो कोचिंग है, कम से कम वहां पर जो कंसर्न अधिकारी हैं, जो एमसीडी के अधिकारी हैं, वो जाकर देखें कि वहां पर छात्र किस तरह से पढ़ाई करते हैं, किस तरह से रहते हैं। वहां पर एनओसी नहीं है, फायर की एनओसी नहीं है, कई जगह पर एमसीडी की एनओसी नहीं है और धड़ल्ले से अवैध तरीके से वहां पर लोग रह रहे हैं और बारिश होती है, जरा सी बारिश दिल्ली में हो जाती है तो आप सुनते होंगे कि दिल्ली में बिल्डिंग गिर गई, अगर आग लग जाती है तो उस बिल्डिंग में लोग फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। यहाँ पर
0: दिल्ली में बेसमेंट बनाने के लिए संबंधित अथॉरिटी से संशोधित बिल्डिंग प्लान की मंजूरी की जरूरत होती है, लेकिन अगर घर पहले बना हो तो उसके नीचे बेसमेंट में काम करने की छूट तो बहुत देखरेख के बाद ही दी जाती है, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ होता नहीं दिखता।
11: पीजी का काम चलता
12: था, ये पीजी तो बना हुआ था ऑलरेडी, पुरानी बिल्डिंग थी ये, इसमें पीजी तो था, वो पीजी वाले तो लंच करने बच्चे चले गए, संडे का दिन था ना, तो लंच करने दूसरी मैच में चले गए, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता।
13: अपना घूम के एक बार पूरे सत्या में देख लो, There will be 20-25 such buildings, जो आज गिरे, एक महीने बाद गिरे, एक साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी। विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई आधा दलाली करता है यहाँ पे, तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन।
14: जितनी भी पीजीज है सब में सिड़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है और बच्चों का फायदा उठाया जाता है, साउथ कैंपस सभी बच्चों का।
0: दिल्ली में ऐसे हादसे तब तक होते रहेंगे जब तक अवैध निर्माण पर लगाम नहीं लगती। दिल्ली में 75 लाख इमारतें बताई जाती हैं। दुर्भाग्य ये है कि चंद इमारतें ही सभी नियमों को पूरा करे हुए बनी है। इसलिए एक्सपर्ट की मांग है कि सरकार बाकी इमारतों को लेकर अभियान चलाए, क्योंकि 40 से 50 साल पुरानी हो चुकी इमारतों की दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या है।
15: जो इस बिल्डिंग का ओनर था, क्या उसको एक दिन के लिए भी, एक मिनट के लिए भी ये सोच नहीं आई कि वहां पे लोग निवासी अभी भी हैं? एटलीस्ट बिल्डिंग को खाली किया जाता। और जो हम बात करते हैं कि जेई आके इंस्पेक्ट कर ले, हमारे जेई बाय द वे कितने एजुकेटेड है इस मामले में कि वो आके को ढंग का इंस्पेक्ट भी करते। वो तो किसी और वजह से वहां पे आते और अपनी वो वजह पूरी करके निकल जाते वहां से। तो ये सारा सिस्टमिक चेंज जो हमें चाहिए, विकसित भारत बनाने के लिए एक सिस्टमिक चेंज की जरूरत है।
7: दिल्ली में हुए हादसे के बाद राजनीतिक दलों के नेताओं ने दुख जताया है। गोवा में गृहमंत्री शाह ने अपने कार्यक्रम को रोका तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी हादसे पर दुख जताया और विपक्ष अब सरकार पर हमलावर है।
16: ऐसा भयानक हादसा जिसने दिल्ली को दहला दिया। जैसे ही खबर आई कि सत्यनिकेतन में एक ऐसी इमारत जमींदोज हो गई है जिसमें छात्र रहा करते थे, तो पूरी दिल्ली में हड़कंप मच गया। गृह मंत्री अमित शाह गोवा में थे, वो बीजेपी के नए ऑफिस इनॉग्रेशन सेरेमनी में थे, लेकिन जैसे ही उन्हें हादसे की जानकारी हुई उन्होंने अपना कार्यक्रम रोक दिया। अमित शाह ने हादसे पर दुख जताया है।
17: एक समाचार है, एक दुखद घटना हुई है और उस दुखद घटना का समाचार सुनने के बाद हमारे देश के गृह मंत्री ने तुरंत निर्णय ले लिया कि कार्यक्रम।
16: घटना बड़ी थी और तकलीफी हादसे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दुख जताया और हादसे वाली जगह पहुंची। एमसीडी के मेयर भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी हालातों का जायजा लिया है।
10: देखिए, हम तो चाहते हैं ये बच्चे उसमें बच जाएं। पहले रेस्क्यू होने दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट है, सभी जायज आपके इस समय सभी जायज हैं, बहुत कमियां हैं सिस्टम में, बहुत कमियां मैं मानता हूं, लेकिन पहले अभी रेस्क्यू होने दीजिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।
16: अब इस हादसे पर विपक्ष हमलावर है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दिल्ली में सरकार की लापरवाही के कारण अब तक कई हादसे हो चुके हैं, सरकार को नींद से जागना होगा, बड़े स्तर पर एक्शन लेकर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी के भ्रष्टाचार का नतीजा है।
18: देखिए, मेरे को जो आसपास के रहने वाले लोगों ने बताया है कि पीजी के अंदर करीब 30 से 40 नौजवान बच्चे फंसे हुए हैं इस मलबे में, और आज से कुछ समय पहले की बात है जब साकेत सैजुला जाब में 4 मंजिल की इमारत गिरी तो कहा गया कि हम दिल्ली की सब बिल्डिंगों की ऑडिट कराएंगे, जो पैसा नहीं देता उसकी बिल्डिंग को सील कर देते हैं, पैसे की मांडवाली होती है, एक हफ्ते बाद बिल्डिंग को डीसील कर दिया जाता है। अभी क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। अभी रेखा गुप्ता कहेंगी हम बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं, आशीष सूद अलग कहेंगे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और क्या करेंगे बता देता हूं। एक जेई को सस्पेंड करेंगे और एक एई को सस्पेंड करेंगे और 15 दिन बाद उनको चुपचाप बहाल भी कर देंगे।
16: कांग्रेस भी सवाल पूछ रही है कि आखिर देश में छात्र सुरक्षित क्यों नहीं है।
19: जी चल रहे ये बिल्कुल कोई इनकी कोई वो, कोई किसी तरह का मापदंड नहीं है। एमसीडी क्या कर रही है, एनडीएमसी क्या कर रही है, यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, अथॉरिटीज क्या, कब तक जवाब नहीं देंगी? सारी अभी भी आप चेक कर लो, ये आसपास पीजी हैं सारी, आप चेक कर लो। उस टाइम भी हमने मैं भी गया था वहां, आप लोगों के सामने हमने सबने कहा था कि इनको चेक कराओ, इनको कहीं ना कहीं इनकी कोई नॉर्म्स तो हो, स्टूडेंट कब तक बर्दाश्त करेंगे और कब तक अथॉरिटीज जवाब नहीं देंगी? ये मैं समझता हूँ कि आज हम सबके लिए बहुत ही दुख का टाइम है।
20: जब यूनिवर्सिटी में हॉस्टल ही नहीं है और इस निकेतन पे आपने रखा है तो और वो वही छत गिर जाती है तो सुरक्षित छात्र किसी तरीके से सुरक्षित नहीं है, और बड़ी दुख की बात है। तो प्रधानमंत्री जी ऐसा करिए, हमें एक दिन आप कुछ अपना वक्त दे दीजिए, हम रिपोर्ट कार्ड लिख के आपको लिखित रूप में दे देंगे।
16: सियासत अपनी जगह है, मगर ये भी सच है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री बदले, सरकार बदली, लेकिन हालात नहीं बदल पाए हैं। इसे हादसा कह देना, लेकिन ये लापरवाही सीधे सीधे मौत को आमंत्रण देने वाली जैसी है। सवाल ये है कि ऐसे हादसे कब तक होते रहेंगे। दिल्ली से अंशुल सिंह, अरविंद होजा और अनमोल बाली के साथ आज तक ब्यूरो।
7: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

केतन इलाके में 5 मंजिला इमारत गिरी, 4 से ज्यादा लोगों की मौत, कई घायल, बेसमेंट में खुदाई से हादसे की आशंका। दिल्ली में बिल्डिंग गिरने के बाद राहत का काम जारी, पीएम मोदी ने जताई संवेदना, सीएम रेखा ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, बोली नहीं बचेगा कोई गुनहगार। दिल्ली के एसआरसीसी में पीएम मोदी के संबोधन को लेकर विपक्ष के सवालों पर नितिन नवीन का तंज, कहा प्रधानमंत्री ने नाराज फूफाओं को होम्योपैथी की दवा दी लेकिन इसका असर एलोपैथी वाली हाई एंटीबायोटिक जैसा हुआ। लंदन के कार्यक्रम में शामिल संघ प्रमुख मोहन भागवत, कहा सबको एक मानता है हिंदू विचार, व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन जरूरी। बिहार में उफान पर गंगा, 12 से ज्यादा जिलों में 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, पटना में रिकॉर्ड स्तर पर नदी, गंडक, कोसी और घाघरा नदी भी उफान पर। और अब बड़ी खबर आपको देते हैं, रविवार में दोपहर में दिल्ली में बड़ा हादसा हुआ, सत्यनिकेतन इलाके में एक बहुमंजिला इमारत गिर गई। हादसे के बाद मौके पर राहत बचाव का काम शुरू हुआ और जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।

0: ऐसा हादसा जिसने दिल्ली को हिला के रख दिया, ऐसा हादसा जिसने लोगों के दिलों में खौफ भर दिया। देखिए, दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में दोपहर करीब 1:30 बजे एक इमारत ढह गई। इमारत ढहते ही अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें देखिए, सिर्फ धूल का गुब्बार नजर आ रहा है और साथ में नजर आ रहा है कि कैसे मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है।
1: यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लोकल्स की मदद से जो है यहाँ ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ को भी इस वक्त बुला लिया गया है। एनडीआरएफ की भी एक बटालियन जो है, एक टीम जो है, वो इस वक्त यहाँ पहुंच गई है और अभी धीरे धीरे वो यहाँ पे स्पॉट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि कितनी भारी संख्या में जो यहाँ लोकल्स हैं, वो लोकल जो है यहाँ मदद कर रहे हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं। अभी ये बड़ी मशीन, अभी जो मशीनें हैं, जो कटर्स हैं, हैवी कटर्स हैं, बोल्डर कटर्स हैं, उन्हें भी अभी लेकर के यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो इस वक्त यहाँ आई है। और ये 5 मंजिला इमारत बताई जा रही है। अगर आप तस्वीरों में थोड़ा और क्लैरिटी से देखें यहाँ पर, तो ये देखें आप, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग थी और ये काफी बड़े इलाके में जो है ये पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर एक बॉयज हॉस्टल था और उसे बॉयज हॉस्टल में जो है ये पूरा हादसा हुआ है।
0: बताया जा रहा है कि इस इमारत में पीजी हॉस्टल था। सत्य निकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास बसा प्रमुख छात्र इलाका है। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं, इसी वजह से यहाँ दिन भर छात्रों की आवाजाही रहती है। हालांकि सत्य निकेतन में कुल कितने छात्र रहते हैं इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी बचाव काम चल रहा है, वो भी संभाल कर कि कहीं मलबे में दबे किसी शख्स को नुकसान न पहुंचे।
1: तो यहाँ पे जेसीबी चलाना वो खतरे से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि आखिर कितने लोग फंसे हैं और कौन कौन सी जगह फंसे हैं। अगर जेसीबी से मलबा हटाने के चक्कर में कुछ और लोग जो फंसे हुए हैं, जो शायद इंजर्ड हो, बस उनकी भी जान पर बना सकती है। और इसीलिए जेसीबी का अगर हम देखें तो ज्यादा इस्तेमाल ऐसे सिचुएशंस में नहीं किया जाता। और जो प्रिसाइज हैवी टूल्स होते हैं, जैसे बड़े ड्रिलर्स होते हैं, स्टील कटिंग मशीन्स होती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये पता लग पाए कि कहां कहां लोग फंसे हैं। अभी इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे ये समझ आ गया है कि यहां पर लोग नहीं फंसे हैं, जो बिल्डिंग के बाहर की लोकेशंस हैं, वहां पर अब जेसीबी की कार्रवाई जो है वो शुरू होती हुई दिख रही है। और बिल्डिंग के बाहर जहां गाड़ियों पर जो मलबा गिरा था उनसे अब मलबा हटाना शुरू किया जा रहा है। लेकिन बिल्डिंग जहां पर थी, जहां लोग फंसे हुए हैं, वहां पर अभी जेसीबी नहीं चलेगी। वहां पर अभी मेटल कटर्स चलेंगे, वहां पर अभी जीपीआर लगाया जाएगा, ये पता लगाया जाएगा कि कहां कहां लोग फंसे हैं, और उसके बाद वहां से मैन्युअली डिग करके ही लोगों को निकालना होगा या फिर हैंड यूजेबल मशीन से ही लोगों को निकालना होगा। अगर आप देखें यहां पे अभी भी प्रशासन को बहुत मुश्किलें हो रही हैं लोगों को समझाने में कि ये जगह खाली कर दे, क्योंकि ये जगह अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कहीं से भी मलबा और भी थोड़ा घिसक सकता है और लोगों को इंजरीज हो सकती है और लोगों को चोट आ सकती है।
0: बताया जा रहा है कि इमारत के बेसमेंट में काम चल रहा था, लेकिन अभी सही तौर पर ये नहीं मालूम चल सका कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। अनमोल बाली, अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
2: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता हादसे वाली जगह पर पहुंची और उन्होंने भरोसा दिलाया कि इमारत के मालिक समेत जो भी जिम्मेदार होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा।
3: इस्तेमाल हो रहा है, हमारी टीमें जो है वो पूरी तरीके से काम कर रही है, नीचे ऑक्सीजन भी डाली गई है, कैमरा भी
4: काम कर रहे हैं
3: ना। बच्चों की जान है और कोई भी कल्पित छोड़ा नहीं जाएगा, खास करके ये जिसका मकान है, जो यहाँ पे बिल्डिंग छोड़ के भाग गया, जो कि अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा था, बेसमेंट में खुदाई कर रहा था, और जिसकी वजह से जो पिलर है वो डिसमेंटल हुआ और बिल्डिंग पूरी गिर गई, तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, और जिसके कारण से ये हादसा हुआ है सबको सजा भुगतनी पड़ेगी।
2: जिन लोगों ने इमारत को ढहते हुए देखा वो खौफ ज्यादा है। अब उन लोगों की जुबानी आप सुनिए कि हादसा कैसे हो।
5: हॉस्टल डेज नाम की बिल्डिंग है, इसके साथ एक और बिल्डिंग पीजी गिरी है। हॉस्टल डेज तो है, वो बॉयज पीजी है प्रॉपर। 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी ये, एंड इसके साथ बगल वाली बिल्डिंग भी गिरी है, एंड जो ये येलो वाली बिल्डिंग है ये दोनों हिल रही थी जब वो गिरी है। तो इन दोनों में भी पीजीज ही है और इनके एंट्रेंस एक उधर से, एक पीछे की साइड से, दो साइड से एंट्रेंस है। और मलबे के चक्कर में इनका एंट्रेंस भी जहाँ तक है ब्लॉक हो चुका है। और 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी, जितने बच्चे रूम में थे वो तो सारे दब गए हैं, और जो बाहर थे बच्चे उनका पता नहीं है, और जितना भी रजिस्टर में एंट्रीज होंगे उसके हिसाब से पता चलेगा आप कितने बच्चे दबे हैं इसमें।
6: कम से कम 40 बच्चों के हताहत होने की खबर है, और ये सत्यनिकेतन में आप जो भी बिल्डिंगें देख रहे हैं सब बिल्डिंगें जर्जर, इनकी कोई ये कभी भी गिर सकती है, इसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार इन बिल्डिंगों की स्थिति देखकर इन्हें सील करे, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, सरकार को बच्चों से शिक्षा से कोई मतलब नहीं है।
7: There will be 20-25 such buildings, जो आज गिरे, एक महीने बाद गिरे, एक साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी। विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई ही आधा दिल्ली करता है यहाँ पे, तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन।
8: दिल्ली पुलिस पे है, 1:45 पे दिल्ली पुलिस को फोन किया था, दिल्ली पुलिस 3:15 तक कहाँ थी, और दूसरी बात यहाँ के बिल्डिंग का ओनर कहाँ है।
9: और यहाँ पे जितनी भी पीजीज हैं सब में सीढ़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है, और बच्चों का फायदा उठाया जाता है, साउथ कैंपस के सभी बच्चों का, उनको खाना खराब दिया जाता है और उनकी मजबूरी है पीजीज की।
7: आधे बच्चे गंदे खाने से मर जाते हैं, जो बच रहे हैं वो बिल्डिंग गिरने से मर रहे हैं।
10: 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं जब हमारे सामने बिल्डिंग गिरी थी, तो काफी नीचे मतलब लेबर भी काम कर रही थी, इसमें 7 से 8 लेबर थी जो काम करे जा रही थी। अब उनका भी नहीं पता कि वो निकल पाए थे या नहीं निकल पाए थे, मगर मुझे इतना पता कि बहुत बच्चे हैं इसके नीचे, कम से कम 8-10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, मगर बाकी जितने भी यहाँ के मोहल्ले क्षेत्र के हैं सबने अपने हाथों से मलबा हटा के 4 लोगों को निकाल लिया गया है।
11: हम दुकान के अंदर बैठे थे, हमें एकदम आवाज आई जैसे भूकंप टाइप होता है, 1:30 बजे, हम अंदर इतनी नहीं आई, जो बाहर बच्चे खड़े थे उनके पास आवाज आई, हम फटाफट भाग के आए, यहाँ पे बहुत ज्यादा धुआं वगैरह था, सारी बिल्डिंग गिरी हुई थी, और अभी इन्होंने यहाँ से मजदूर वगैरह निकाल लिए हैं, उनकी डेड बॉडी मिली है, और 4 बच्चे निकाले हैं जिनकी सांसें चल रही थी, वो अभी उनका एम्बुलेंस ले गई है, बट वो मतलब अधमरे की हालत में थे।
2: सत्य निकेतन हादसे में 11 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है, जिनमें से 3 की मौत हो गई है, और 5 मंजिला जब इमारत गिरी तो आसपास के लोगों को लगा मानो भूकंप आ गया हो।

0: दिल्ली में कितनी इमारतें इस तरह हादसे के इंतजार में, आखिर कितने बेकसूर छात्रों की जिंदगी ज्यादा किराए के लालच में इस तरह दांव पर लगाई जाती रहेंगी। दिल्ली में लगातार हो रहे इन हादसों की जिम्मेदारी कब और कैसे तय होगी? दिल्ली का सत्य निकेतन इलाका जहां 5 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया, पहली नजर में ये आपको हादसा लग सकता है, लेकिन ये हादसा नहीं बल्कि लालच और लापरवाही के कॉकटेल का नतीजा है। क्योंकि जब 40 साल पुरानी इमारत को 3 की जगह 5 मंजिल तक अवैध बना दिया जाए, 40 साल पुरानी इमारत की जांच करने वाला कोई न हो, बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भरा होने के बावजूद काम किया जा रहा, जबकि हादसे के वक्त छात्र कमरों में मौजूद थे, तो अब आप ही बताइए क्या इसे हादसा कहना ठीक होगा?
1: यहाँ पर लिमिट ही खाली 2 या 3 फ्लोर्स के, बट इन लोगों ने 5 फ्लोर्स बनवा रखे थे। इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, नीचे बेसमेंट में काम चल रहा था, उसकी वजह से बिल्डिंग गिरी है। मैं उस टाइम पे अपना खाना ही खा रहा था, एकदम से सोफा हिलने लगा, प्रॉपर फील हुआ कि अर्थक्वेक आया, पर बाहर आके देखा तो धुआं वो हो रखा, तो फिर पता लगा कि बिल्डिंग गिरी है।
2: लेवर लगी हुई थी सर, नीचे बेसमेंट में काम कर रहे थे सुबह।
3: अच्छा,
2: जब मैं मार्केट में आया तो मैंने देखा तो लेबर काम कर रही थी, प्लस यहाँ पर 2 कारपेंटर काम कर रहे थे।
3: अच्छा,
2: जब मैं मार्केट से होकर फिर मैं सीधा घर चला गया था। अच्छा। उसके बाद पता लगा तो ये बिल्डिंग गिरी है सर।
0: इस हादसे ने देश की राजधानी को एक बार फिर हिला दिया है। लोग डरे हुए हैं क्योंकि वो

0: क्या हालत थी? बेसमेंट में कोई काम चल रहा?
1: बेसमेंट में काम चल रहा था, दो दिन से पानी भरा हुआ था और इसका क्या था कि अंडर कंस्ट्रक्शन था और आप कह सकते हो कि इलीगली है, क्योंकि यहाँ पे अलाउड है कि आप 3 मंजिल से लेके 5-4 मंजिल तक कर सकते हो, मगर यहाँ ये बिल्डिंग थी 5वीं मंजिल तक।
2: अच्छा।
1: और मैक्सिमम स्टूडेंट थे, पीजीज थे, और एक पीजीज में 3 और 4 ही बच्चे रहते थे। और संडे की वजह से स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे चाय की दुकान है, ब्रेड बटर लेने आते हैं। ये बिल्डिंग इस वजह से भी अब हम पे प्रे करते कि कोई नुकसान ना हो।
0: अभी बिल्डिंग का बेसमेंट में काम चल रहा था।
1: पानी,
0: ये जो 40-50 साल, ये दिल्ली पुलिस आधिकारिक बयान दे रही है, 40-50 साल पुरानी बिल्डिंग थी, 5 मंजिला थी, बेसमेंट था उसमें, और बेसमेंट में काम चल रहा था। सीधे सीधे जो छात्र हैं जिसमें रह रहे थे, उन सबकी जिंदगी दांव पर लगा दी बिल्डिंग के मालिक ने ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में।
3: इमारत ढहते ही यहाँ अफरा तफरी मच गई, धूल के गुब्बार में पूरे इलाके को घेर लिया।
4: मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लोकल्स की मदद से जो है यहाँ ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ को भी इस वक्त बुला लिया गया है, एनडीआरएफ की भी एक बटालियन जो है, एक टीम जो है, वो इस वक्त यहाँ पहुंच गई है और अभी धीरे धीरे वो यहाँ पे स्पॉट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि कितनी भारी संख्या में जो यहाँ लोकल्स हैं, वो लोकल जो है यहाँ मदद कर रहे हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं। अभी ये बड़ी मशीन, अभी जो मशीनें हैं, जो कटर्स हैं, हैवी कटर्स हैं, बोल्डर कटर्स हैं, उन्हें भी अभी लेकर के यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो इस वक्त यहाँ आई है। और ये 5 मंजिला इमारत बताई जा रही है, अगर आप तस्वीरों में थोड़ा और क्लैरिटी से देखें यहाँ पर, तो ये देखें आप, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग थी और ये काफी बड़े इलाके में जो है ये पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक बॉयज हॉस्टल था और उसे बॉयज हॉस्टल में जो है ये पूरा हादसा हुआ है।
3: बिल्डिंग गिरने के बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, कुछ हथौड़े से मलबा हटाने लगे।
5: आपको दिखा दूं किस तरीके से रेस्क्यू जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। ये एक गाड़ी है जो कि बिल्डिंग के पास खड़ी थी, जब बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो उसकी हालत देखिए कि किस तरीके से इस पूरी गाड़ी के ऊपर बिल्डिंग का जो मलबा है वो भरभरा करके गिरा। पूरी गाड़ी जो है वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। अब इसको जेसीबी की मदद से जो है वो यहाँ से हटाया जा रहा है। आप ये समझिए कि जब मैं ये समझाने की कोशिश इसलिए भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये तस्वीरें देखने के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो मलबा, सोचिए, उस बिल्डिंग के अंदर कई सारे लोग थे और उनकी हालत क्या रही होगी जब ये बिल्डिंग पूरी तरीके से कोलैप्स हुई, जब गाड़ी की हालत इस तरीके की है।
3: सत्य निकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास बसा प्रमुख छात्र इलाका है। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं। इलाके में कई छात्र आवास है।
4: जेसीबी की अगर बात करें तो यहाँ पे जेसीबी चलाना वो खतरे से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि आखिर कितने लोग फंसे हैं और कौन कौन सी जगह फंसे हैं। अगर जेसीबी से मलबा हटाने के चक्कर में कुछ और लोग जो फंसे हुए हैं, जो शायद इंजर्ड हो, बस उनकी भी जान पर बना सकती है। और इसीलिए जेसीबी का अगर हम देखें तो ज्यादा इस्तेमाल ऐसे सिचुएशंस में नहीं किया जाता। और जो प्रिसाइज हैवी टूल्स होते हैं, जैसे बड़े ड्रिलर्स होते हैं, स्टील कटिंग मशीन्स होती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये पता लग पाए कि कहां कहां लोग फंसे हैं। अभी इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे ये समझ आ गया है कि यहां पर लोग नहीं फंसे हैं, जो बिल्डिंग के बाहर की लोकेशंस हैं, वहां पर अब जेसीबी की कार्रवाई जो है वो शुरू होती हुई दिख रही है। और बिल्डिंग के बाहर जहां गाड़ियों पर जो मलबा गिरा था उनसे अब मलबा हटाना शुरू किया जा रहा है। लेकिन बिल्डिंग जहां पर थी, जहां लोग फंसे हुए हैं, वहां पर अभी जेसीबी नहीं चलेगी, वहां पर अभी मेटल कटर्स चलेंगे, वहां पर अभी जीपीआर लगाया जाएगा, ये पता लगाया जाएगा कि कहां कहां लोग फंसे हैं, और उसके बाद वहां से मैन्युअली डिग करके ही लोगों को निकालना होगा या फिर हैंड यूजेबल मशीन से ही लोगों को निकालना होगा। अगर आप देखें यहां पे अभी भी प्रशासन को बहुत मुश्किलें हो रही हैं लोगों को समझाने में कि ये जगह खाली कर दे, क्योंकि ये जगह अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कहीं से भी मलबा और भी थोड़ा घिसक सकता है और लोगों को इंजरीज हो सकती है और लोगों को चोट आ सकती है।
3: इस इमारत को लेकर सवाल ये है कि क्या इस बिल्डिंग का नक्शा पास था? 5 मंजिला इमारत बनाने की अगर अनुमति नहीं थी तो इसे रोका क्यों नहीं गया? 40 साल पुरानी इमारत में छात्रों को रहते बेसमेंट में काम की इजाजत कैसे दी गई? अनमोल बाली, अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
6: ये इमारत 50 साल पुरानी बताई जा रही है और इसके बेसमेंट में काम चल रहा था। इसका मालिक आनंद बंसल, जो कि गुरुग्राम का रहने वाला है, इस समय फरार है और बताया जा रहा है कि मेडिकल शॉप भी वहां पर चलती थी।

0: और इस इमारत में 10 कमरे थे।
1: दिल्ली में हादसों की वजह बनने वाली गैर कानूनी इमारत पर समय रहते लगाम क्यों नहीं लगाई जाती? आखिर हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जाता? दिल्ली के जिस सत्य निकेतन में यह हादसा हुआ, वहां बड़ी संख्या में पीजी, रेंटेड रूम और हॉस्टल चलते हैं। यहां पर कितनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हादसे के बाद कितनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि रेस्क्यू करना मुश्किल हो गया। जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हादसे की जगह पहुंची तो उन्हें घटनास्थल का जायजा लेने के लिए दूसरी इमारत के ऊपर मंजिल का सहारा लेना पड़ा। अगर इलाके की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यहाँ छोटी छोटी गलियां हैं और घनी आबादी के बीच कई बहुमंजिला मकान मौजूद हैं। ऐसे ही एक इमारत गिरने से छात्र दब गए। मलबे में फंसे छात्र ने ये वीडियो बनाया जिसमें दबे हुए छात्र दिखाई दे रहे हैं। वहीं कई मलबे में दबे छात्रों ने फोन कर मदद मांगी। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब दिल्ली में इस तरह का हादसा हुआ हो। राजधानी दिल्ली में कई जगह ऐसे ही पीजी संचालित हो रहे हैं। कई जगह ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन नियमों की अनदेखी रहती है। दिल्ली में नियमों की अनदेखी और प्रशासन की बेरुखी की वजह से पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं। कुछ महीने पहले दिल्ली के मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग ने भयावह रूप ले लिया था और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी।
2: अगर आप नीचे बेसमेंट को, ये क्या है कि हवस है पैसे कमाने की, पीजी ही हो चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकोमोडेट करना, ज्यादा से ज्यादा भर्ती करना, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना, ये जो हवस है। राजेंद्र नगर में बेसमेंट को यूज कर रहे थे, वो हवस वो भी वही है। ये पीजी का भी मसला यही है। और अभी 3 महीने पहले अगर आपको ध्यान हो तो सैदुला जाब में 5 बच्चे इंजीनियरिंग और डॉक्टरी जो कर रहे थे वो मर गए। तो ये दरअसल क्या है कि ये एक तो ये हवस जो बन गई है कि ज्यादा से ज्यादा माल, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हो, चाहे पीजी वाले हो, चाहे जितने भी है, ये किराए पे देने के, एक एक डब्बे का कमरे का मकान बना देते हैं, किराए पे दे देते हैं।
1: बेसमेंट की वजह से छात्रों की जान जाते हुए देश ने साल 2024 में देखा, जब ओल्ड राजेंद्र नगर में राउज IAS सर्किल के बेसमेंट में पानी भरने से 3 UPSC छात्रों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया गया। जब इसी साल जून के महीने में आज तक ने वहां जाकर पड़ताल की तो हमें बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लाइब्रेरी मिली।
3: एक लंबे वक्त से ये सिलसिला चलता हुआ चला आ रहा है। आप किसी भी दिल्ली के लोगों से पूछ लीजिए, जब भी वो कोई बिल्डिंग गिराएंगे तुरंत वहां पर दिल्ली पुलिस का कर्मचारी, MCD का कर्मचारी वहां पर आ जाएगा और उसके बाद फिर सेटिंग करके जरिए, लोकल पार्षद के जरिए सेटिंग करके आप 3 मंजिल की जहां इमारत बननी वहां 5 मंजिल बना लीजिए और उसके बाद फिर हादसा होता है तो फिर सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगते हैं। तो जरूरी है सिस्टम में बड़े स्तर पर सुधार की। ओल्ड राजेंद्र नगर का हादसा आपको याद होगा, वहां पर किस तरीके से कोचिंग में UPSC की तैयारी करने वाले छात्र मर गए। उसके बाद आज तक की टीम ने वहां खुद जाकर बाकायदा रियलिटी चेक किया, खुद मुझ पर अटैक हुआ लेकिन वहां कोई बदलाव नहीं आया।
0: दिल्ली में इमारत के ढहने की न तो ये कोई पहली घटना है ना ही अंतिम। ठीक 2 महीने पहले 8 जुलाई को रोहिणी के सेक्टर 16 में भी इमारत गिरी थी, 4 मंजिला अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिरी थी, उसके बाद भी अधिकारियों ने कहा, लेकिन दिल्ली की तस्वीर नहीं बदली। एक और हादसा हो गया।
1: दिल्ली के सत्य निकेतन में हादसे के बाद राजधानी में घर बनाने के नियमों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बने हुए घर के नीचे बेसमेंट बनाया जा सकता है? क्या इसके लिए कोई कानूनी अनुमति लेनी होगी? और अगर बिना अनुमति के बेसमेंट बना दिया तो क्या कार्रवाई हो सकती है? ये किसकी जिम्मेदारी थी?
3: दिल्ली के जो मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है, तकरीबन एक घंटे से ज्यादा वक्त का हो चुका है। बड़ी बात यह है कि वो खुद भी यहाँ पर जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको संचालित होते हुए देख रही है। एक बड़ी बात है, तारीफ की बात है, लेकिन यहाँ खड़े होकर वो ये भी देखे कि आसपास कितने अवैध पीजी चल रहे हैं। मैंने कई छात्रों से कुछ देर पहले बात की है, उन पर शिकंजा कसा जाए, अधिकारियों को सख्त ऑर्डर दिया जाए कि खास तौर से जो अवैध पीजी चल रहे हैं, कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, वहां पर क्या एनओसी है क्या या नहीं है, किस तरह से सुरक्षा के मानकों का वहाँ अनदेखी की जा रही है, वो तमाम चीजें देखने की जरूरत है, वरना इस तरह के हादसों को रोका जाना काफी मुश्किल होगा। देखिए, ऑन रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस ये कह चुकी है कि 40 से 50 साल ये पुरानी इमारत थी जिसमें पीजी का काम चल रहा था।
1: दिल्ली में इस तरह के हादसे समय समय पर सामने आते रहते हैं। जब हादसा होता है तो MCD समेत संबंधित एजेंसियों पर सवाल उठता है, लेकिन मामला ठंडा पड़ते ही सब कुछ पहले की तरह होने लगता है, जबकि सिस्टम में कमियों की बात मेयर पद पर बैठे लोग भी कबूलते हैं।
4: चाहते हैं कि बच्चे उसमें बच जाएं। पहले रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट है, सभी जाए आपके इस समय, सभी जाए जाए, बहुत कमियां हैं सिस्टम में, बहुत कमियां मैं मानता हूं, लेकिन पहले अभी रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।
1: दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत इसलिए गिरी क्योंकि उसके बेसमेंट में काम चल रहा था। सवाल यह है कि क्या काम चलने से नींव कमजोर हुई और इमारत गिर गई।
3: यह जरूरी हो जाता है कि कम से कम जो जो जो जहां छात्र रहते हो, जो पीजी है, जो गर्ल्स हॉस्टल है, जो बॉयज हॉस्टल है, जो कोचिंग है, कम से कम वहां पर जो कंसर्न अधिकारी हैं, जो MCD के अधिकारी हैं, वो जाएं, जाकर देखें कि वहां पर छात्र किस तरह से पढ़ाई करते हैं, किस तरह से रहते हैं। वहां पर NOC नहीं है, फायर की NOC नहीं है, कई जगह पर MCD की NOC नहीं है, और धड़ल्ले से अवैध तरीके से वहां पर लोग रह रहे हैं। और बारिश होती है, जरा सी बारिश दिल्ली में हो जाती है तो आप सुनते होंगे कि दिल्ली में बिल्डिंग गिर गई। अगर आग लग जाती है तो उस बिल्डिंग में लोग फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। यहां पर
1: दिल्ली में बेसमेंट बनाने के लिए संबंधित अथॉरिटी से संशोधित बिल्डिंग प्लान की मंजूरी की जरूरत होती है, लेकिन अगर घर पहले बना हो तो उसके नीचे बेसमेंट में काम करने की छूट तो बहुत देखरेख के बाद ही दी जाती है, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ होता नहीं दिखता।
5: पीजी का काम चल रहा
6: है? नहीं, ये पीजी तो बना हुआ था ऑलरेडी, पुरानी बिल्डिंग थी ये, इसमें पीजी तो था। वो पीजी वाले तो लंच करने बच्चे चले गए, संडे का दिन था ना, तो लंच करने दूसरी मैच में चले गए, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता।
7: अपना घूम के एक बार पूरे सत्या में देख लो, देयर विल बी 20-25 सच बिल्डिंग्स जो आज गिरे, एक महीने बाद गिरे, एक साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी। विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई आधा दलाली करता है यहाँ पे, तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन।
8: जितनी भी पीजीज है सब में सीढ़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है और बच्चों का फायदा उठाया जाता है, साउथ कैंपस के सभी बच्चों का।
1: दिल्ली में ऐसे हादसे तब तक होते रहेंगे जब तक अवैध निर्माण पर लगाम नहीं लगती। दिल्ली में 75 लाख इमारतें बताई जाती है। दुर्भाग्य ये है कि चंद इमारतें ही सभी नियमों को पूरा करे हुए बनी है, इसलिए एक्सपर्ट की मांग है कि सरकार बाकी इमारतों को लेकर अभियान चलाए, क्योंकि 40 से 50 साल पुरानी हो चुकी इमारतों की दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या है।
9: जो इस बिल्डिंग का ओनर था, क्या उसको एक दिन के लिए भी, एक मिनट के लिए भी ये सोच नहीं आई कि वहां पे लोग निवासी अभी भी हैं? एटलीस्ट बिल्डिंग को खाली किया जाता। और जो हम बात करते हैं कि JEE आके इंस्पेक्ट कर ले, हमारे JEE बाय द वे कितने एजुकेटेड है इस मामले में कि वो आके को ढंग का इंस्पेक्ट भी करते, वो तो किसी और वजह से वहां पे आते और अपनी वो वजह पूरी करके निकल जाते वहां से। तो ये सारा सिस्टमिक चेंज जो हमें चाहिए, विकसित भारत बनाने के लिए एक सिस्टमिक चेंज की जरूरत है।
0: दिल्ली में हुए हादसे के बाद राजनीतिक दलों के नेताओं ने दुख जताया है। गोवा में गृहमंत्री शाह ने अपने कार्यक्रम को रोका तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी हादसे पर दुख जताया, और विपक्ष अब सरकार पर हमलावर है।

0: ऐसा भयानक हादसा जिसने दिल्ली को दहला दिया। जैसे ही खबर आई कि सत्यनिकेतन में एक ऐसी इमारत जमींदोज हो गई है जिसमें छात्र रहा करते थे, तो पूरी दिल्ली में हड़कंप मच गया। गृह मंत्री अमित शाह गोवा में थे, वो बीजेपी के नए ऑफिस इनॉग्रेशन सेरेमनी में थे, लेकिन जैसे ही उन्हें हादसे की जानकारी हुई उन्होंने अपना कार्यक्रम रोक दिया। अमित शाह ने हादसे पर दुख जताया है।
1: एक समाचार है, एक दुखद घटना हुई है, और उस दुखद घटना का समाचार सुनने के बाद हमारे देश के गृह मंत्री ने तुरंत निर्णय ले लिया कि ये कार्यक्रम यहां तक सीमित करके खत्म।
0: घटना बड़ी थी और तकलीफी हादसे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दुख जताया और हादसे वाली जगह पहुंची। एमसीडी के मेयर भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी हालातों का जायजा लिया है।
2: देखिए, हम तो चाहते हैं कि बच्चे उसमें बच जाएं। पहले रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट है। सभी जायजा आपके इस समय सभी जायजा बहुत कमियां हैं, सिस्टम में बहुत कमियां मैं मानता हूं, लेकिन पहले अभी रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।
0: अब इस हादसे पर विपक्ष हमलावर है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दिल्ली में सरकार की लापरवाही के कारण अब तक कई हादसे हो चुके हैं, सरकार को नींद से जागना होगा, बड़े स्तर पर एक्शन लेकर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी के भ्रष्टाचार का नतीजा है।
3: देखिए, मेरे को जो आसपास के रहने वाले लोगों ने बताया है कि पीजी के अंदर करीब 30 से 40 नौजवान बच्चे फंसे हुए हैं इस मलबे में, और आज से कुछ समय पहले की बात है जब साकेत सैजुला जाब में 4 मंजिल की इमारत गिरी तो कहा गया कि हम दिल्ली की सब बिल्डिंगों की ऑडिट कराएंगे, जो पैसा नहीं देता उसकी बिल्डिंग को सील कर देते हैं, पैसे की मांडवाली होती है, एक हफ्ते बाद बिल्डिंग को डी सील कर दिया जाता है। अभी क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। अभी रेखा गुप्ता कहेंगी हम बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं, आशीष सुदलक कहेंगे हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, और क्या करेंगे बता देता हूं। एक जेई को सस्पेंड करेंगे और एक एई को सस्पेंड करेंगे, और 15 दिन बाद उनको चुपचाप बहाल भी कर देंगे।
0: कांग्रेस भी सवाल पूछ रही है कि आखिर देश में छात्र सुरक्षित क्यों नहीं है।
4: जी चल रहे, ये बिल्कुल कोई इनकी कोई कोई किसी तरह का मापदंड नहीं है। एमसीडी क्या कर रही है, एनडीएमसी क्या कर रही है, यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, अथॉरिटीज क्या, कब तक जवाब नहीं देंगी। सारी अभी भी आप चेक कर लो, ये आसपास पीजी हैं सारी, आप चेक कर लो। उस टाइम भी हमने मैं भी गया था वहां, आप लोगों के सामने हमने सबने कहा था कि इनको चेक कराओ, इनको कहीं ना कहीं इनकी कोई नॉर्म्स तो हो, स्टूडेंट कब तक बर्दाश्त करेंगे और कब तक अथॉरिटीज जवाब नहीं देंगी। ये मैं समझता हूँ कि आज हम सबके लिए बहुत ही दुख का टाइम है।
5: जब यूनिवर्सिटी में हॉस्टल ही नहीं है और इस निकेतन पे आपने रखा है, तो और वो वही छत गिर जाती है, तो सुरक्षित छात्र किसी तरीके से सुरक्षित नहीं है, और बड़ी दुख की बात है। तो प्रधानमंत्री जी, ऐसा करिए, हमें एक दिन आप कुछ अपना वक्त दे दीजिए, हम रिपोर्ट कार्ड लिख के आपको लिखित रूप में दे देंगे।
0: सियासत अपनी जगह है, मगर ये भी सच है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री बदले, सरकार बदली, लेकिन हालात नहीं बदल पाए हैं। इसे हादसा कह देना, लेकिन ये लापरवाही सीधे सीधे मौत को आमंत्रण देने वाली जैसी है। सवाल ये है कि ऐसे हादसे कब तक होते रहेंगे। दिल्ली से अंशुल सिंह, अरविंद होजा और अनमोल बाली के साथ आज तक ब्यूरो।
6: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: भारत की रक्षा नीति से लेकर भविष्य की युद्ध रणनीति तक देश की सुरक्षा पर सीधी बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ देश के सबसे बड़े रणनीतिकारों और सुरक्षा विशेषज्ञों का महामंच आज तक सुरक्षा सभा सिर्फ आज तक पर।
1: गांधी जी के आंदोलन करने का तरीका क्या आज के समय भी उतना प्रासंगिक है?
2: जो तुम गाली देते हो ना गांधी जी, 70 साल की उम्र में दो लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए, पढ़ लो।
3: जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जो गांधी जी ने वापस ले लिया था, वो भी तो किसी और की वजह से लिया था। चौरी चौरा में जो हुआ इंसिडेंट, उनसे उनको क्या मतलब था? अगर वो उसको जारी रखते, क्या पता उस समय इंडिपेंडेंस को थोड़ा जल्दी हो जाता।
2: ताली बजाओ इनके लिए, ये ताली डिजर्व करते हैं।

इलाके में 5 मंजिला इमारत गिरी, 4 से ज्यादा लोगों की मौत, कई घायल, बेसमेंट में खुदाई से हादसे की आशंका। दिल्ली में बिल्डिंग गिरने के बाद राहत का काम जारी, पीएम मोदी ने जताई संवेदना, सीएम रेखा ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, बोली नहीं बचेगा कोई गुनहगार। दिल्ली के एसआरसीसी में पीएम मोदी के संबोधन को लेकर विपक्ष के सवालों पर नितिन नवीन का तंज, कहा प्रधानमंत्री ने नाराज फूफाओं को होम्योपैथी की दवा दी लेकिन इसका असर एलोपैथी वाली हाई एंटीबायोटिक जैसा हुआ। लंदन के कार्यक्रम में शामिल संघ प्रमुख मोहन भागवत, कहा सबको एक मानता है हिंदू विचार, व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन जरूरी। बिहार में उफान पर गंगा, 12 से ज्यादा जिलों में 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, पटना में रिकॉर्ड स्तर पर नदी, गंडक, कोसी और घाघरा नदी भी उफान पर। और अब बड़ी खबर आपको देते हैं, रविवार में दोपहर में दिल्ली में बड़ा हादसा हुआ, सत्यनिकेतन इलाके में एक बहुमंजिला इमारत गिर गई। हादसे के बाद मौके पर राहत बचाव का काम शुरू हुआ और जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।

0: ऐसा हादसा जिसने दिल्ली को हिला के रख दिया, ऐसा हादसा जिसने लोगों के दिलों में खौफ भर दिया। देखिए, दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में दोपहर करीब 1:30 बजे एक इमारत ढह गई। इमारत ढहते ही अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें देखिए, सिर्फ धूल का गुब्बार नजर आ रहा है और साथ में नजर आ रहा है कि कैसे मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है।
1: यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लोकल्स की मदद से जो है यहाँ ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ को भी इस वक्त बुला लिया गया है। एनडीआरएफ की भी एक बटालियन जो है, एक टीम जो है, वो इस वक्त यहाँ पहुंच गई है और अभी धीरे धीरे वो यहाँ पे स्पॉट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि कितनी भारी संख्या में जो यहाँ लोकल्स हैं, वो लोकल जो है यहाँ मदद कर रहे हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं। अभी ये बड़ी मशीन, अभी जो मशीनें हैं, जो कटर्स हैं, हैवी कटर्स हैं, बोल्डर कटर्स हैं, उन्हें भी अभी लेकर के यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो इस वक्त यहाँ आई है। और ये 5 मंजिला इमारत बताई जा रही है। अगर आप तस्वीरों में थोड़ा और क्लैरिटी से देखें यहाँ पर, तो ये देखें आप, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग थी और ये काफी बड़े इलाके में जो है ये पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर एक बॉयज हॉस्टल था और उसे बॉयज हॉस्टल में जो है ये पूरा हादसा हुआ है।
0: बताया जा रहा है कि इस इमारत में पीजी हॉस्टल था। सत्य निकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास बसा प्रमुख छात्र इलाका है। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं, इसी वजह से यहाँ दिन भर छात्रों की आवाज आई रहती है। हालांकि सत्य निकेतन में कुल कितने छात्र रहते हैं इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी बचाव काम चल रहा है, वो भी संभाल कर कि कहीं मलबे में दबे किसी शख्स को नुकसान न पहुंचे।
1: तो यहाँ पे जेसीबी चलाना वो खतरे से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि आखिर कितने लोग फंसे हैं और कौन कौन सी जगह फंसे हैं। अगर जेसीबी से मलबा हटाने के चक्कर में कुछ और लोग जो फंसे हुए हैं, जो शायद इंजर्ड हो, बस उनकी भी जान पर बना सकती है। और इसीलिए जेसीबी का अगर हम देखें तो ज्यादा इस्तेमाल ऐसे सिचुएशंस में नहीं किया जाता। और जो प्रिसाइज हैवी टूल्स होते हैं, जैसे बड़े ड्रिलर्स होते हैं, स्टील कटिंग मशीन्स होती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये पता लग पाए कि कहां कहां लोग फंसे हैं। अभी इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे ये समझ आ गया है कि यहां पर लोग नहीं फंसे हैं, जो बिल्डिंग के बाहर की लोकेशंस हैं, वहां पर अब जेसीबी की कार्रवाई जो है वो शुरू होती हुई दिख रही है। और बिल्डिंग के बाहर जहां गाड़ियों पर जो मलबा गिरा था उनसे अब मलबा हटाना शुरू किया जा रहा है। लेकिन बिल्डिंग जहां पर थी, जहां लोग फंसे हुए हैं, वहां पर अभी जेसीबी नहीं चलेगी। वहां पर अभी मेटल कटर्स चलेंगे, वहां पर अभी जीपीआर लगाया जाएगा, ये पता लगाया जाएगा कि कहां कहां लोग फंसे हैं, और उसके बाद वहां से मैन्युअली डिग करके ही लोगों को निकालना होगा या फिर हैंड यूजेबल मशीन से ही लोगों को निकालना होगा। अगर आप देखें यहां पे अभी भी प्रशासन को बहुत मुश्किलें हो रही हैं लोगों को समझाने में कि ये जगह खाली कर दे, क्योंकि ये जगह अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कहीं से भी मलबा और भी थोड़ा घिसक सकता है और लोगों को इंजरीज हो सकती है और लोगों को चोट आ सकती है।
0: बताया जा रहा है कि इमारत के बेसमेंट में काम चल रहा था, लेकिन अभी सही तौर पर ये नहीं मालूम चल सका कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। अनमोल बाली, अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
2: दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता हादसे वाली जगह पर पहुंचे और उन्होंने भरोसा दिलाया कि इमारत के मालिक समेत जो भी जिम्मेदार होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा।
3: इस्तेमाल हो रहा है, हमारी टीमें जो है वो पूरी तरीके से काम कर रही है, नीचे ऑक्सीजन भी डाली गई है, कैमरा भी
4: काम कर रहे हैं ना,
3: बच्चों की जान है और कोई भी कल्प्रिट छोड़ा नहीं जाएगा। खास करके ये जिसका मकान है, जो यहाँ पे बिल्डिंग छोड़ के भाग गया, जो कि अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा था, बेसमेंट में खुदाई कर रहा था, और जिसकी वजह से जो पिलर है वो डिसमेंटल हुआ और बिल्डिंग पूरी गिर गई, तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, और जिसके कारण से ये हादसा हुआ है सबको सजा भुगतनी
2: पड़ेगी। जिन लोगों ने इमारत को ढहते हुए देखा वो खौफजदा हैं। अब उन लोगों की जुबानी आप सुनिए कि हादसा कैसे हुआ।
5: हॉस्टल डेज नाम की बिल्डिंग है, इसके साथ एक और बिल्डिंग पीजी की गिरी है। हॉस्टल डेज तो है, वो बॉयज पीजी है प्रॉपर, 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी ये, एंड इसके साथ बगल वाली बिल्डिंग भी गिरी है, एंड जो ये येलो वाली बिल्डिंग है ये दोनों हिल रही थी जब वो गिरी है। तो इन दोनों में भी पीजीज ही है और इनके एंट्रेंस एक उधर से, एक पीछे की साइड से, दो साइड से एंट्रेंस है। और मलबे के चक्कर में इनका एंट्रेंस भी जहाँ तक है ब्लॉक हो चुका है, और 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी, जितने बच्चे रूम में थे वो तो सारे दब गए हैं, और जो बाहर थे बच्चे उनका पता नहीं है, और जितना भी रजिस्टर में एंट्रीज होंगे उसके हिसाब से ही पता चलेगा अब कितने बच्चे दबे हैं इसमें।
6: कम से कम 40 बच्चों के हताहत होने की खबर है, और ये सत्यनिकेतन में आप जो भी बिल्डिंगें देख रहे हैं सब बिल्डिंगें जर्जर, इनकी कोई ये कभी भी गिर सकती है, इसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार इन बिल्डिंगों की स्थिति देखकर इन्हें सील करे, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, सरकार को बच्चों से शिक्षा से कोई मतलब नहीं है।
7: There will be 20 to 25 such buildings, जो आज गिरे, एक महीने बाद गिरे, एक साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी। विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई आधा दिल्ली करता है यहाँ पे, तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन।
8: दिल्ली पुलिस पे है, 1:45 पे दिल्ली पुलिस को फोन किया था, दिल्ली पुलिस 3:15 तक कहाँ थी, और दूसरी बात यहाँ के बिल्डिंग का ओनर कहाँ है।
9: और यहाँ पे जितनी भी पीजीज हैं सब में सीढ़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है, और बच्चों का फायदा उठाया जाता है, साउथ कैंपस के सभी बच्चों का, उनको खाना खराब दिया जाता है, और उनकी मजबूरी है पीजीज की।
7: आधे बच्चे गंदे खाने से मर जाते हैं, जो बच रहे हैं वो बिल्डिंग गिरने से मर रहे हैं।
10: 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं जब हमारे सामने बिल्डिंग गिरी थी, तो काफी नीचे मतलब लेबर भी काम कर रही थी, इसमें 7 से 8 लेबर थी जो काम करे जा रही थी, अब उनका भी नहीं पता कि वो निकल पाए थे या नहीं निकल पाए थे, मगर मुझे इतना पता कि बहुत बच्चे हैं इसके नीचे, कम से कम 8-10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, मगर बाकी जितने भी यहाँ के मोहल्ले क्षेत्र के हैं सबने अपने हाथों से मलबा हटा के 4 लोगों को निकाल लिया गया है।
11: हम दुकान के अंदर बैठे थे, हम एकदम आवाज आई जैसे भूकंप टाइप होता है, 1:30 बजे हम अंदर इतनी नहीं आई, जो बाहर बच्चे खड़े थे उनके पास आवाज आई, हम फटाफट भाग के आए, यहाँ पे बहुत ज्यादा धुआं वगैरह था, सारी बिल्डिंग गिरी हुई थी, और अभी इन्होंने यहाँ से मजदूर वगैरह निकाले हैं, उनकी डेड बॉडी मिली, और 4 बच्चे निकाले हैं जिनकी सांसें चल रही थी, वो अभी उनको एम्बुलेंस ले गई है, बट वो मतलब अधमरे की हालत में थे।
2: सत्यनिकेतन हादसे में 11 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है, जिनमें से 3 की मौत हो गई है, और 5 मंजिला जब इमारत गिरी तो आसपास के लोगों को लगा मानो भूकंप आ गया हो।

0: दिल्ली में कितनी इमारतें इस तरह हादसे के इंतजार में, आखिर कितने बेकसूर छात्रों की जिंदगी ज्यादा किराए के लालच में इस तरह दांव पर लगाई जाती रहेंगी। दिल्ली में लगातार हो रहे इन हादसों की जिम्मेदारी कब और कैसे तय होगी? दिल्ली का सत्य निकेतन इलाका, जहां 5 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया, पहली नजर में ये आपको हादसा लग सकता है, लेकिन ये हादसा नहीं बल्कि लालच और लापरवाही के कॉकटेल का नतीजा है। क्योंकि जब 40 साल पुरानी इमारत को 3 की जगह 5 मंजिल तक अवैध बना दिया जाए, 40 साल पुरानी इमारत की जांच करने वाला कोई न हो, बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भरा होने के बावजूद काम किया जा रहा, जबकि हादसे के वक्त छात्र कमरों में मौजूद थे, तो अब आप ही बताइए क्या इसे हादसा कहना ठीक होगा?
1: यहाँ पर लिमिट ही खाली 2 या 3 फ्लोर्स के, बट इन लोगों ने 5 फ्लोर्स बनवा रखे थे। इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, नीचे बेसमेंट में काम चल रहा था, उसकी वजह से बिल्डिंग गिरी है। मैं उस टाइम पे अपना खाना ही खा रहा था, एकदम से सोफा हिलने लगा, प्रॉपर फील हुआ कि अर्थक्वेक आया, पर बाहर आके देखा तो धुआं वो हो रहा था, तो फिर पता लगा कि बिल्डिंग गिरी है।
2: लेवर लगी हुई थी सर, नीचे बेसमेंट में काम कर रहे थे सुबह।
3: अच्छा,
2: जब मैं मार्केट में आया तो मैंने देखा तो लेवर काम कर रही थी, और यहाँ पर 2 कारपेंटर काम कर रहे थे।
3: अच्छा,
2: जब मैं मार्केट से होकर फिर मैं सीधा घर चला गया था। अच्छा। उसके बाद पता लगा तो ये बिल्डिंग गिरी है।
0: इस हादसे ने देश की राजधानी को एक बार फिर हिला दिया है। लोग डरे हुए हैं, क्योंकि वो जिन इमारतों में रह रहे हैं उनका भी ऐसा ही अंजाम हो सकता है, जैसा दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में दोपहर करीब 1:30 बजे इस इमारत के साथ हुआ।
4: बिल्डिंग की क्या हालत थी? बेसमेंट में कोई काम चल रहा
5: था? बेसमेंट में काम चल रहा था, 2 दिन से पानी भरा हुआ था, और इसका क्या था कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, और आप कह सकते हो कि इलीगली है, क्योंकि यहाँ पे अलाउड है कि आप 3 मंजिल से लेके 4 मंजिल तक कर सकते हो, मगर यहाँ ये बिल्डिंग थी 5वीं मंजिल तक।
4: अच्छा।
5: और मैक्सिमम स्टूडेंट थे, पीजीस थे, और एक पीजीस में 3 और 4 ही बच्चे रहते थे। संडे की वजह से स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे चाय की दुकान है, ब्रेड बटर लेने आते हैं। ये बिल्डिंग इस वजह से भी अब हम प्रे करते कि कोई नुकसान ना हो।
4: अभी बिल्डिंग का बेसमेंट में काम चल रहा था
5: पानी।
4: ये जो 40-50 साल, ये दिल्ली पुलिस आधिकारिक बयान दे रही है, 40-50 साल पुरानी बिल्डिंग थी, 5 मंजिला थी, बेसमेंट था उसमें, और बेसमेंट में काम चल रहा था, सीधे सीधे जो छात्र हैं जिसमें रह रहे थे उन सबकी जिंदगी दांव पर लगा दी बिल्डिंग के मालिक ने ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में।
0: इमारत ढहते ही यहां अफरा तफरी मच गई, धूल के गुब्बार में पूरे इलाके को घेर लिया।
6: मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लोकल्स की मदद से जो है यहाँ ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ को भी इस वक्त बुला लिया गया है, एनडीआरएफ की भी एक बटालियन जो है, एक टीम जो है, वो इस वक्त यहाँ पहुंच गई है, और अभी धीरे धीरे वो यहाँ पे स्पॉट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि कितनी भारी संख्या में जो यहाँ लोकल्स हैं, वो लोकल जो है यहाँ मदद कर रहे हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं। अभी ये बड़ी मशीन, अभी जो मशीनें हैं, जो कटर्स हैं, हैवी कटर्स हैं, बोल्डर कटर्स हैं, उन्हें भी अभी लेकर के यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो इस वक्त यहाँ आई है। और ये 5 मंजिला इमारत बताई जा रही है, अगर आप तस्वीरों में थोड़ा और क्लैरिटी से देखें यहाँ पर, तो ये देखें आप, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, और ये काफी बड़े इलाके में जो है ये पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर एक बॉयज हॉस्टल था, और उसे बॉयज हॉस्टल में जो है ये पूरा हादसा हुआ है।
0: बिल्डिंग गिरने के बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, कुछ हथौड़े से मलबा हटाने लगे।
4: आपको दिखा दूं किस तरीके से रेस्क्यू जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। ये एक गाड़ी है जो कि बिल्डिंग के पास खड़ी थी, जब बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो उसकी हालत देखिए कि किस तरीके से इस पूरी गाड़ी के ऊपर बिल्डिंग का जो मलबा है वो भरभरा करके गिरा, पूरी गाड़ी जो है वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। अब इसको जेसीबी की मदद से जो है वो यहाँ से हटाया जा रहा है। आप ये समझिए कि जब मैं ये समझाने की कोशिश इसलिए भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये तस्वीरें देखने के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो मलबा, सोचिए उस बिल्डिंग के अंदर कई सारे लोग थे, और उनकी हालत क्या रही होगी जब ये बिल्डिंग पूरी तरीके से कोलैप्स हुई, जब गाड़ी की हालत इस तरीके की है।
0: सत्य निकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास बसा प्रमुख छात्र इलाका है। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं। इलाके में कई छात्र आवास,
6: जेसीबी की अगर बात करें तो यहाँ पे जेसीबी चलाना वो खतरे से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि आखिर कितने लोग फंसे हैं और कौन कौन सी जगह फंसे हैं। अगर जेसीबी से मलबा हटाने के चक्कर में कुछ और लोग जो फंसे हुए हैं, जो शायद इंजर्ड हो, बस उनकी भी जान पर बना सकती है। और इसीलिए जेसीबी का अगर हम देखें तो ज्यादा इस्तेमाल ऐसे सिचुएशंस में नहीं किया जाता। और जो प्रिसाइज हैवी टूल्स होते हैं, जैसे बड़े ड्रिलर्स होते हैं, स्टील कटिंग मशीन्स होती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये पता लग पाए कि कहां कहां लोग फंसे हैं। अभी इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे ये समझ आ गया है कि यहां पर लोग नहीं फंसे हैं, जो बिल्डिंग के बाहर की लोकेशंस हैं, वहां पर अब जेसीबी की कार्रवाई जो है वो शुरू होती हुई दिख रही है। और बिल्डिंग के बाहर जहां गाड़ियों पर जो मलबा गिरा था उनसे अब मलबा हटाना शुरू किया जा रहा है, लेकिन बिल्डिंग जहां पर थी, जहां लोग फंसे हुए हैं, वहां पर अभी जेसीबी नहीं चलेगी। वहां पर अभी मेटल कटर्स चलेंगे, वहां पर अभी जीपीआर लगाया जाएगा, ये पता लगाया जाएगा कि कहां कहां लोग फंसे हैं, और उसके बाद वहां से मैन्युअली डिग करके ही लोगों को निकालना होगा या फिर हैंड यूजेबल मशीन से ही लोगों को निकालना होगा। अगर आप देखें यहां पे अभी भी प्रशासन को बहुत मुश्किलें हो रही हैं लोगों को समझाने में कि ये जगह खाली कर दे, क्योंकि ये जगह अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कहीं से भी मलबा और भी थोड़ा घिसक सकता है और लोगों को इंजरीज हो सकती है और लोगों को चोट आ सकती है।
0: इस इमारत को लेकर सवाल यह है कि क्या इस बिल्डिंग का नक्शा पास था? 5 मंजिला इमारत बनाने की अगर अनुमति नहीं थी तो इसे रोका क्यों नहीं गया? 40 साल पुरानी इमारत में छात्रों को रहते बेसमेंट में काम की इजाजत कैसे दी गई? अनमोल बाली, अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
3: ये इमारत 50 साल पुरानी बताई जा रही है और इसके बेसमेंट में काम चल रहा था। इसका मालिक आनंद बंसल, जो कि गुरुग्राम का रहने वाला, इस समय फरार है और बताया जा रहा है कि मेडिकल शॉप भी वहां पर चलते थे और इस इमारत में 10 कमरे थे।
0: दिल्ली में हादसों की वजह बनने वाली गैर कानूनी इमारत पर समय रहते लगाम क्यों नहीं लगाई जाती? आखिर हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जाता? दिल्ली के जिस सत्य निकेतन में यह हादसा हुआ, वहां बड़ी संख्या में पीजी, रेंटेड रूम और हॉस्टल चलते हैं। यहां पर कितनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हादसे के बाद इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि रेस्क्यू करना मुश्किल हो गया। जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हादसे की जगह पहुंची तो उन्हें घटनास्थल का जायजा लेने के लिए दूसरी इमारत के ऊपर मंजिल का सहारा लेना पड़ा। अगर इलाके की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यहाँ छोटी छोटी गलियां हैं और घनी आबादी के बीच कई बहुमंजिला मकान मौजूद हैं। ऐसे ही एक इमारत गिरने से छात्र दब गए। मलबे में फंसे छात्र ने ये वीडियो बनाया जिसमें दबे हुए छात्र दिखाई दे रहे हैं। वहीं कई मलबे में दबे छात्रों ने फोन कर मदद मांगी। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब दिल्ली में इस तरह का हादसा हुआ हो। राजधानी दिल्ली में कई जगह ऐसे ही पीजी संचालित हो रहे हैं। कई जगह ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन नियमों की अनदेखी रहती है। दिल्ली में नियमों की अनदेखी और प्रशासन की बेरुखी की वजह से पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं। कुछ महीने पहले दिल्ली के मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग ने भयावह रूप ले लिया था और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी।
7: अगर आप नीचे बेसमेंट को, ये क्या है कि हवस है पैसे कमाने की, पीजी ही हो चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकोमोडेट करना, ज्यादा से ज्यादा भर्ती करना, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना, ये जो हवस है। राजेंद्र नगर में बेसमेंट को यूज कर रहे थे, वो हवस वो भी वही है। ये पीजी का भी मसला यही है। और अभी 3 महीने पहले अगर आपको ध्यान हो तो सैदुला जाब में 5 बच्चे इंजीनियरिंग और डॉक्टरी जो कर रहे थे वो मर गए। तो ये दरअसल क्या है कि ये एक तो ये हवस जो बन गई है कि ज्यादा से ज्यादा माल, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हो, चाहे पीजी वाले हो, चाहे जितने भी है, ये किराए पे देने के, एक एक डब्बे का कमरे का मकान बना देते हैं, किराए पे दे देते हैं।
0: बेसमेंट की वजह से छात्रों की जान जाते हुए देश ने साल 2024 में देखा, जब ओल्ड राजेंद्र नगर में राउज IAS सर्किल के बेसमेंट में पानी भरने से 3 UPSC छात्रों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया गया। जब इसी साल जून के महीने में आज तक ने वहां जाकर पड़ताल की तो हमें बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लाइब्रेरी मिली।
8: एक लंबे वक्त से ये सिलसिला चलता हुआ चला आ रहा है। आप किसी भी दिल्ली के लोगों से पूछ लीजिए, जब भी वो कोई बिल्डिंग गिराएंगे तुरंत वहां पर दिल्ली पुलिस का कर्मचारी, एमसीडी का कर्मचारी वहां पर आ जाएगा और उसके बाद फिर सेटिंग करके जरिए, लोकल पार्षद के जरिए सेटिंग करके आप 3 मंजिल की जहां इमारत बननी वहां 5 मंजिल बना लीजिए और उसके बाद फिर हादसा होता है तो फिर सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगते हैं। तो जरूरी है सिस्टम में बड़े स्तर पर सुधार की। ओल्ड राजेंद्र नगर का हादसा आपको याद होगा, वहां पर किस तरीके से कोचिंग में यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र मर गए, उसके बाद आज तक की टीम ने वहां खुद जाकर बाकायदा रियलिटी चेक किया, खुद मुझ पर अटैक हुआ लेकिन वहां कोई बदलाव नहीं आया।
3: दिल्ली में इमारत के ढहने की न तो ये कोई पहली घटना है न ही अंतिम। ठीक 2 महीने पहले 8 जुलाई को रोहिणी के सेक्टर 16 में भी इमारत गिरी थी, 4 मंजिला अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिरी थी, उसके बाद भी अधिकारियों ने कहा, लेकिन दिल्ली की तस्वीर नहीं बदली। एक और हादसा हो गया।
0: दिल्ली के सत्य निकेतन में हादसे के बाद राजधानी में घर बनाने के नियमों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बने हुए घर के नीचे बेसमेंट बनाया जा सकता है? क्या इसके लिए कोई कानूनी अनुमति लेनी होगी? और अगर बिना अनुमति के बेसमेंट बना दिया तो क्या कार्रवाई हो सकती है? ये किसकी जिम्मेदारी थी?
8: कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है, तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा वक्त का हो चुका है, बड़ी बात यह है कि वो खुद भी यहाँ पर जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको संचालित होते हुए देख रही है, एक बड़ी बात है, तारीफ की बात है। लेकिन यहाँ खड़े होकर वो ये भी देखे कि आसपास कितने अवैध पीजी चल रहे हैं। मैंने कई छात्रों से कुछ देर पहले बात की है, उन पर शिकंजा कसा जाए, अधिकारियों को सख्त ऑर्डर दिया जाए कि खास तौर से जो अवैध पीजी चल रहे हैं, कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, वहां पर क्या एनओसी है क्या या नहीं है, किस तरह से सुरक्षा के मानकों का वहां अनदेखी की जा रही है, वो तमाम चीजें देखने की जरूरत है, वरना इस तरह के हादसों को रोका जाना काफी मुश्किल होगा। देखिए, ऑन रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस ये कह चुकी है कि 40 से 50 साल ये पुरानी इमारत थी जिसमें पीजी का काम चल रहा था।
0: दिल्ली में इस तरह के हादसे समय समय पर सामने आते रहते हैं। जब हादसा होता है तो एमसीडी समेत संबंधित एजेंसियों पर सवाल उठता है, लेकिन मामला ठंडा पड़ते ही सब कुछ पहले की तरह होने लगता है, जबकि सिस्टम में कमियों की बात मेयर पद पर बैठे लोग भी कबूलते हैं।
9: चाहते हैं कि बच्चे उसमें बच जाएं। पहले रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट है, सभी जायज हैं आपके, इस समय सभी जायज हैं, बहुत कमियां हैं सिस्टम में, बहुत कमियां मैं मानता हूं, लेकिन पहले अभी रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।
0: दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत इसलिए गिरी क्योंकि उसके बेसमेंट में काम चल रहा था। सवाल यह है कि क्या काम चलने से नींव कमजोर हुई और इमारत गिर गई?
8: यह जरूरी हो जाता है कि कम से कम जो जो जो जहां छात्र रहते हो, जो पीजी है, जो गर्ल्स हॉस्टल है, जो बॉयज हॉस्टल है, जो कोचिंग है, कम से कम वहां पर जो कंसर्न अधिकारी हैं, जो एमसीडी के अधिकारी हैं, वो जाकर देखें कि वहां पर छात्र किस तरह से पढ़ाई करते हैं, किस तरह से रहते हैं। वहां पर एनओसी नहीं है, फायर की एनओसी नहीं है, कई जगह पर एमसीडी की एनओसी नहीं है और धड़ल्ले से अवैध तरीके से वहां पर लोग रह रहे हैं और बारिश होती है, जरा सी बारिश दिल्ली में हो जाती है तो आप सुनते होंगे कि दिल्ली में बिल्डिंग गिर गई, अगर आग लग जाती है तो उस बिल्डिंग में लोग फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। यहां पर
0: दिल्ली में बेसमेंट बनाने के लिए संबंधित अथॉरिटी से संशोधित बिल्डिंग प्लान की मंजूरी की जरूरत होती है, लेकिन अगर घर पहले बना हो तो उसके नीचे बेसमेंट में काम करने की छूट तो बहुत देखरेख के बाद ही दी जाती है, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ होता नहीं दिखता।
10: पीजी का काम चल रहा
11: है? नहीं, ये पीजी तो बना हुआ था ऑलरेडी, पुरानी बिल्डिंग थी ये, इसमें पीजी तो था, वो पीजी वाले तो लंच करने बच्चे चले गए, संडे का दिन था ना, तो लंच करने दूसरी मैच में चले गए, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता।
12: अपना घूम के एक बार पूरे सत्या में देख लो, देयर विल बी 20 to 25 सच बिल्डिंग्स जो आज गिरे, 1 महीने बाद गिरे, 1 साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी। विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई आधा दलाली करता है यहाँ पे, तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन।
13: जितनी भी पीजीज है सब में सीढ़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है और बच्चों का फायदा उठाया जाता है, साउथ कैंपस के सभी बच्चों का।
0: दिल्ली में ऐसे हादसे तब तक होते रहेंगे जब तक अवैध निर्माण पर लगाम नहीं लगती, दिल्ली में 75 लाख इमारतें बताई जाती हैं। दुर्भाग्य ये है कि चंद इमारतें ही सभी नियमों को पूरा करे हुए बनी है। इसलिए एक्सपर्ट की मांग है कि सरकार बाकी इमारतों को लेकर अभियान चलाए, क्योंकि 40 से 50 साल पुरानी हो चुकी इमारतों की दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या है।
14: जो इस बिल्डिंग का ओनर था, क्या उसको एक दिन के लिए भी, एक मिनट के लिए भी ये सोच नहीं आई कि वहां पे लोग निवासी अभी भी हैं? एटलीस्ट बिल्डिंग को खाली किया जाता। और जो हम बात करते हैं कि जेई आके इंस्पेक्ट कर ले, हमारे जेई बाय द वे कितने एजुकेटेड है इस मामले में कि वो आके को ढंग का इंस्पेक्ट भी करते, वो तो किसी और वजह से वहां पे आते और अपनी वो वजह पूरी करके निकल जाते वहां से। तो ये सारा सिस्टमिक चेंज जो हमें चाहिए विकसित भारत बनाने के लिए, एक सिस्टमिक चेंज की जरूरत है।
3: दिल्ली में हुए हादसे के बाद राजनीतिक दलों के नेताओं ने दुख जताया है। गोवा में गृहमंत्री शाह ने अपने कार्यक्रम को रोका तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी हादसे पर दुख जताया और विपक्ष अब सरकार पर हमलावर है।

0: ऐसा भयानक हादसा जिसने दिल्ली को दहला दिया। जैसे ही खबर आई कि सत्यनिकेतन में एक ऐसी इमारत जमींदोज हो गई है जिसमें छात्र रहा करते थे, तो पूरी दिल्ली में हड़कंप मच गया। गृह मंत्री अमित शाह गोवा में थे, वो बीजेपी के नए ऑफिस इनॉग्रेशन सेरेमनी में थे, लेकिन जैसे ही उन्हें हादसे की जानकारी हुई उन्होंने अपना कार्यक्रम रोक दिया। अमित शाह ने हादसे पर दुख जताया है।
1: एक समाचार है, एक दुखद घटना हुई है और उस दुखद घटना का समाचार सुनने के बाद हमारे देश के गृह मंत्री ने तुरंत निर्णय ले लिया कि ये कार्यक्रम यहाँ तक सीमित करके खत्म।
0: घटना बड़ी थी और तकलीफी हादसे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दुख जताया और हादसे वाली जगह पहुंची। एमसीडी के मेयर भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी हालातों का जायजा लिया है।
2: देखिए, हम तो चाहते हैं कि बच्चे उसमें बच जाएं। पहले रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट है। सभी जायजा आपके इस समय सभी जायजा बहुत कमियां हैं, सिस्टम में बहुत कमियां मैं मानता हूं, लेकिन पहले अभी रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।
0: अब इस हादसे पर विपक्ष हमलावर है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दिल्ली में सरकार की लापरवाही के कारण अब तक कई हादसे हो चुके हैं, सरकार को नींद से जागना होगा, बड़े स्तर पर एक्शन लेकर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी के भ्रष्टाचार का नतीजा है।
3: देखिए, मेरे को जो आसपास के रहने वाले लोगों ने बताया है कि पीजी के अंदर करीब 30 से 40 नौजवान बच्चे फंसे हुए हैं इस मलबे में, और आज से कुछ समय पहले की बात है जब साकेत सैजुला जाब में 4 मंजिल की इमारत गिरी तो कहा गया कि हम दिल्ली की सब बिल्डिंगों की ऑडिट कराएंगे, जो पैसा नहीं देता उसकी बिल्डिंग को सील कर देते हैं, पैसे की मांडवाली होती है, एक हफ्ते बाद बिल्डिंग को डी सील कर दिया जाता है। अभी क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। अभी रेखा गुप्ता कहेंगी हम बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं, आशीष सूद अलग कहेंगे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और क्या करेंगे बता देता हूं। एक जेई को सस्पेंड करेंगे और एक एई को सस्पेंड करेंगे और 15 दिन बाद उनको चुपचाप बहाल भी कर देंगे।
0: कांग्रेस भी सवाल पूछ रही है कि आखिर देश में छात्र सुरक्षित क्यों नहीं है।
4: जी चल रहे हैं, ये बिल्कुल कोई इनकी कोई किसी तरह का मापदंड नहीं है। एमसीडी क्या कर रही है, एनडीएमसी क्या कर रही है, यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, अथॉरिटीज क्या, कब तक जवाब नहीं देंगी। सारी अभी भी आप चेक कर लो, ये आसपास पीजी हैं सारी, आप चेक कर लो। उस टाइम भी हमने मैं भी गया था वहां, आप लोगों के सामने हमने सबने कहा था कि इनको चेक कराओ, इनको कहीं ना कहीं इनकी कोई नॉर्म्स तो हो, स्टूडेंट कब तक बर्दाश्त करेंगे और कब तक अथॉरिटीज जवाब नहीं देंगी। ये मैं समझता हूँ कि आज हम सबके लिए बहुत ही दुख का टाइम है।
5: जब यूनिवर्सिटी में हॉस्टल ही नहीं है और इस निकेतन पे आपने रखा है तो और वो वही छत गिर जाती है तो सुरक्षित छात्र किसी तरीके से सुरक्षित नहीं है, और बड़ी दुख की बात है। तो प्रधानमंत्री जी ऐसा करिए, हमें एक दिन आप कुछ अपना वक्त दे दीजिए, हम रिपोर्ट कार्ड लिख के आपको लिखित रूप में दे देंगे।
0: सियासत अपनी जगह है, मगर ये भी सच है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री बदले, सरकार बदली, लेकिन हालात नहीं बदल पाए हैं। इसे हादसा कह देना लेकिन ये लापरवाही सीधे सीधे मौत को आमंत्रण देने वाली जैसी है। सवाल ये है कि ऐसे हादसे कब तक होते रहेंगे। दिल्ली से अंशुल सिंह, अरविंद होजा और अनमोल बाली के साथ आज तक ब्यूरो।
6: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

जिला इमारत गिरी, चार से ज्यादा लोगों की मौत, कई घायल, बेसमेंट में खुदाई से हादसे की आशंका। दिल्ली में बिल्डिंग गिरने के बाद राहत का काम जारी, पीएम मोदी ने जताई संवेदना, सीएम रेखा ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, बोले नहीं बचेगा कोई गुनहगार। दिल्ली के एसआरसीसी में पीएम मोदी के संबोधन को लेकर विपक्ष के सवालों पर नितिन नवीन का तंज, कहा प्रधानमंत्री ने नाराज फूफाओं को होम्योपैथी की दवा दी लेकिन इसका असर एलोपैथी वाली हाई एंटीबायोटिक जैसा हुआ। लंदन के कार्यक्रम में शामिल संघ प्रमुख मोहन भागवत, कहा सबको एक मानता है हिंदू विचार, व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन जरूरी। बिहार में उफान पर गंगा, 12 से ज्यादा जिलों में 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, पटना में रिकॉर्ड स्तर पर नदी, गंडक, कोसी और घाघरा नदी भी उफान पर। और अब बड़ी खबर आपको देते हैं, रविवार में दोपहर में दिल्ली में बड़ा हादसा हुआ, सत्य निकेतन इलाके में एक बहुमंजिला इमारत गिर गई। हादसे के बाद मौके पर राहत बचाव का काम शुरू हुआ और जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।

0: ऐसा हादसा जिसने दिल्ली को हिला के रख दिया, ऐसा हादसा जिसने लोगों के दिलों में खौफ भर दिया। देखिए, दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में दोपहर करीब 1:30 बजे एक इमारत ढह गई। इमारत ढहते ही अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें देखिए, सिर्फ धूल का गुब्बार नजर आ रहा है और साथ में नजर आ रहा है कि कैसे मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है।
1: यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लोकल्स की मदद से जो है यहाँ ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ को भी इस वक्त बुला लिया गया है। एनडीआरएफ की भी एक बटालियन जो है, एक टीम जो है, वो इस वक्त यहाँ पहुंच गई है और अभी धीरे धीरे वो यहाँ पे स्पॉट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि कितनी भारी संख्या में जो यहाँ लोकल्स हैं, वो लोकल जो है यहाँ मदद कर रहे हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं। अभी ये बड़ी अभी जो मशीनें हैं, जो कटर्स हैं, हैवी कटर्स हैं, बोल्डर कटर्स हैं, उन्हें भी अभी लेकर के यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो इस वक्त यहाँ आई है। और ये 5 मंजिला इमारत बताई जा रही है। अगर आप तस्वीरों में थोड़ा और क्लैरिटी से देखें यहाँ पर, तो ये देखें आप, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग थी और ये काफी बड़े इलाके में जो है ये पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक बॉयज हॉस्टल था और उसे बॉयज हॉस्टल में जो है ये पूरा हादसा हुआ है।
0: बताया जा रहा है कि इस इमारत में पीजी हॉस्टल था। सत्य निकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास बसा प्रमुख छात्र इलाका है। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं, इसी वजह से यहाँ दिन भर छात्रों की आवाज आई रहती है। हालांकि सत्य निकेतन में कुल कितने छात्र रहते हैं इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी बचाव काम चल रहा है, वो भी संभाल कर कि कहीं मलबे में दबे किसी शख्स को नुकसान न पहुंचे।
1: तो यहाँ पे जेसीबी चलाना वो खतरे से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि आखिर कितने लोग फंसे हैं और कौन कौन सी जगह फंसे हैं। अगर जेसीबी से मलबा हटाने के चक्कर में कुछ और लोग जो फंसे हुए हैं, जो शायद इंजर्ड हो, बस उनकी भी जान पर बना सकती है। और इसीलिए जेसीबी का अगर हम देखें तो ज्यादा इस्तेमाल ऐसे सिचुएशंस में नहीं किया जाता। और जो प्रिसाइज हैवी टूल्स होते हैं, जैसे बड़े ड्रिलर्स होते हैं, स्टील कटिंग मशीन्स होती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये पता लग पाए कि कहां कहां लोग फंसे हैं। अभी इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे ये समझ आ गया है कि यहां पर लोग नहीं फंसे हैं, जो बिल्डिंग के बाहर की लोकेशंस हैं, वहां पर अब जेसीबी की कार्रवाई जो है वो शुरू होती हुई दिख रही है। और बिल्डिंग के बाहर जहां गाड़ियों पर जो मलबा गिरा था उनसे अब मलबा हटाना शुरू किया जा रहा है। लेकिन बिल्डिंग जहां पर थी, जहां लोग फंसे हुए हैं, वहां पर अभी जेसीबी नहीं चलेगी।